हम तुमसे भी प्रार्थना करें। हे मेरे प्रिय जनों, आत्मीय जनों, बहुत रात गवाई सोए कर, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था कौड़ी बदले जाए। रात तुमने सोकर गवा दी, दिन तुमने खा खा कर गवा दिया, बड़ा अनमोल जन्म मिला था तुमने, ऐसे ही बेकार इसको टाल दिया। अब मत टालो, हमारी बात मानो, देर मत करो, फिर एक दिन ऐसा आएगा समय गुजरता चला जाएगा, शरीर भी साथ ना देगा, मन भी साथ ना देगा, शरीर साथ छोड़ जाएगा, फिर पछताए का हुई जब चिड़िया चुग गई, फिर पछताने से कुछ ना होगा। इसलिए आज ही नाम जपन, नाम रटन, भगवान की भक्ति प्रारंभ कर दो। तुम भले ही बागेश्वर धाम ना आ पाओ, तुम ऐसी भक्ति में डूबो, तुम जहां रहो वहां बागेश्वर धाम बन जाए। और तुम्हें देखकर लोग कहें कि ये बालाजी का चेला है। किसका चेला है? और कोई बालाजी के बारे में, बागेश्वर धाम के बारे में उल्टा बोले, उनके सामने तुम ज्यादा जप करो, उनके सामने नचो, हम बागेश्वर वाले हैं। और कोई ज्यादा जले तो उनके सामने और चिल्लाओ, लगा के आग सोहरत में, हमने ये शौक पाले हैं, कोई पूछे तो कह देना हम बागेश्वर वाले हैं। प्रायः सांसारिक चिंतन में परमात्मा का चिंतन कर पाना बड़ा कठिन होता है। तो कई लोग प्रश्न करते हैं कि हम तो भाई महाराज गृहस्थी जीव हैं, गृहस्थ में रहते हैं, अब गृहस्थ में रहकर भगवान का भजन कैसे संभव है? तो हमारे पास इसका एक छोटा सा उपाय है। प्रिय जनों, गृहस्थ में भी भगवान को पाया ही जा सकता है। और परमात्मा जब भी प्रकट भय, वो गृहस्थ में ही प्रकट भय। साधु बनना जरूरी नहीं, मजबूरी नहीं, बन जाओ तो ठीक है, भाई घरवाली खतरनाक हो ज्यादा तो साधु बन जाओ, ठीक है, अच्छा है, भाई राग गा गया हो परिवार से तो साधु बन जाओ, घर छोड़ने का मन है तो साधु बनो। तो आप कहो कि वाह, अब घर में रह के कैसे भजन करें? घर में रह के भजन कर सकते हो, पति में परमेश्वर देखो, पत्नी में छोटी मोटी देवी के दर्शन करो, बालक में कृष्ण के दर्शन करो, बालिका में किशोरी जू के दर्शन करो। तो बेटा अथवा बेटी को भोजन कराते वक्त ये नहीं माने कि हम अपने बालक अथवा बालिका को भोजन करा रहे, ये मान करके उनको भोजन पवाएं, हम श्री ठाकुर जी को, ठाकुरानी जी को भोजन पवा रहे हैं, जगदम्बिका को भोजन पवा रहे हैं, कोई एक नाता भाव सुपुत्र तो है ही है, बालक बालिका तो है ही है, पर ठाकुर दृष्टि यदि रखेंगे, भेद दृष्टि ना रख करके अभेद दृष्टि रखेंगे, ठाकुर दृष्टि रखेंगे, तो गृहस्थ में भी आपका भजन हो जाएगा, गृहस्थ में भी नाम जप हो जाएगा, गृहस्थ में भी भगवत दर्शन का भाव बन जाएगा। और जाग की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जो जिस भाव से भगवान को भजता है, भगवान उसको वैसे ही दिखाई पड़ते हैं। अब देखो, नामदेव जी को तो कुत्ता में भी परमात्मा के दर्शन हो गए, हम लोगों को तो मनुष्य महात्मा में भी परमात्मा के दर्शन नहीं हो रहे हैं, तो दृष्टि का कमाल है। पर नामदेव जी कुत्ता में ठाकुर जी के दर्शन कर लेते, हम लोग संतों में भी भगवान को नहीं देख पाते, माँ बाप में भी भगवान को नहीं देख पाते। तो गृहस्थ व्यक्ति यदि अपने विचारों का परिवर्तन कर ले, तो जो उपलब्धि, जो गति साधु बनने के बाद महात्मा की होगी, वो गति तुम्हारी गृहस्थ में रह करके हो जाएगी। वो स्थान आपको भी प्राप्त हो पाएगा गृहस्थ में रहकर, जो महात्मा बनकर के पाया जाता है वो भगवान का। अच्छा महाराज, गृहस्थ में बड़े काम धाम रहते, रोटी बोटी बनानी पड़ती है, झाड़ू पोछा लगाना पड़ता, अब देखो बड़ा मुश्किल है। अरे कोई दिक्कत नहीं, आप रोटी बनाओ, फिल्मी गाना सुनने की बजाय ठाकुर जी के भजन सुनो, कीर्तन गाओ, एक रोटी बनाओ, सीताराम चूल्हे पर रखो, सीताराम
बिल्ला चला।

0: सीताराम, उसके बाद में रोटी को बर्तन में रखो सीताराम, सब्जी बनाओ सीताराम, कढ़ाई चलाओ सीताराम, सीता स्वर में चलाओ, बढ़िया कढ़ाई ली, करछली ली, उसको क्या कहते हैं चम्मच, चम्मच ली, अब सब्जी बन रही है सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, लो बढ़िया, देखो करछली भी चल गई, चम्मच भी चल गई, भजन भी हो गया, नाम का नाम काम का काम, ये आदत डाल लो, गाड़ी चला रहे अब तुम फिल्मी गाना लगा फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए, ठटरी के बरे नकटा मुँह से चंदा है, दोनों कानों में लगा लिया तुमने वो एयर टूथ, अब ऐसा करके ऐसे लगने लगता जैसे भीतर से एनाकोंडा निकल रहा है, सांप जैसे निकलने जाएगा अब आदमी। अब हम जब शुरू शुरू में ये चले थे तब तो हम बहुत कंफ्यूज हो गए थे, ये कान में लगाने वाले एक शुरू शुरू में वो चले थे, इतना चलता था काला सा एयर ड्राइव, एयर ट्रूथ, एयर बर्ड, बर्ड है बर्ड्स, एयर बर्ड्स जब शुरू शुरू में चला तो हम जब जाते थे बसों में यात्रा करते थे, कभी वृंदावन कभी अयोध्या, संतों के पास आना जाना लगा रहता था, गाड़ी वाड़ी तो थी नहीं, बस पे जाते थे, नई नई जब ये चली थी तो लोग लगा लेते थे और बातें करते बस आता, तो हमें लगता था इसके पास कोई देवता है वो आपस में बात कर रहा, तो हम जिनके बगल में बैठे थे वो पूरे रास्ता भर हमारी उसके प्रति बड़ी अच्छी श्रद्धा, हम क्या भाई बड़ा सज्जन आदमी है, कोई महात्मा है जींस पैंट में, बाद में पता लगा वो कान से लुगाई से बात करता रहा है, यह बर्ड्स लगा करके आओ आओ, जब जब वो गाली देने लगा था हम समझ गए कि यहाँ कोई देवता योवता नहीं है, सामने कोई देवी हो इसकी घरवाली है, आओ तो हमें पर बाद में पता लगा, हमको बताओ तो लो हमारे जैसे अनपढ़ गवार को, हम तो सीधे साधे आदमी, हम क्या पता सीधे साधे आदमी, तो आदमी ये लगा करके कुछ, उसका एक सर्वोत्तम उपाय है कि कान में लगाना ही है, संतों के वचन लगाओ, वचनामृत लगाओ, रोज शाम को 7 बजे हमारे प्रवचन आते हैं यूट्यूब पर, बागेश्वर धाम चैनल पर, रोज शाम को 7 बजे वो खोल लो, रोज कोई ना कोई बढ़िया नई बात मिलेगी, पता नहीं कौन सी बात तुम्हारे दिल को छू जाए और तुम्हारा जीवन बदल जाए, है?
1: नारियल के प्रयोग से जीवन में कैसे संपन्नता आएगी, नारियल के प्रयोग से खराब ग्रहों से छुटकारा कैसे मिलेगा और नारियल के प्रयोग से बड़ा कष्ट कैसे कट जाएगा, जानिए नवरात्रि में नारियल के प्रयोग मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे, तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं, खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर, खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है, खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है, ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
7: आज शारदीय नवरात्र का चौथा दिन विधि विधान से हो रही मां दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा, मंदिरों में भक्तों की भीड़। पश्चिम बंगाल में शक्ति आराधना के लिए सजे भव्य पंडाल, हावड़ा में केदार धाम की थीम पर सजा पंडाल, दूर दूर से पहुंच रहे हैं भक्त। गुजरात में गूंज रही है गरबा की तान, रंग बिरंगे परिधानों में पूरे जोश और आस्था के साथ गरबा नृत्य में डूबे नजर आए लोग। दिल्ली रामलीला की धूम, ब्रॉडवे रामलीला में 100 से ज्यादा कलाकार देंगे प्रस्तुति, दिखेगा आधुनिकता और परंपरा का संगम। हैदराबाद में भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 मैच आज शाम 7 बजे से शुरू होगा मुकाबला, सीरीज में भारत 2-1 से आगे। पहाड़ों पर जारी बर्फबारी का दौर, कश्मीर के कई इलाकों में भारी हिमपात, चारों ओर बिछी बर्फ की सफेद चादर।

0: जीएनटी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शारदीय नवरात्र के महापर्व का आज तीसरा दिन है। आज विधि विधान से हो रही है माँ दुर्गा के स्वरूप कुष्मांडा की पूजा। दिल्ली के झंडे वाला मंदिर सहित तमाम मंदिरों में आधी रात से ही लोग माता के दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। आज तड़के माँ की मंगला आरती भी हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कहा जाता है कि ब्रह्मांड की रचना करने के बाद देवी ने अपनी मुस्कान से ही अलग अलग शक्तिशाली देवों की रचना की। कुछ मान्यताओं और कथाओं में माँ कुष्मांडा को ही त्रिशक्ति देवियों का जनक माना गया है। माँ कुष्मांडा की कृपा से आयु, यश, बल और धन में अपार वृद्धि होती है। नवरात्र के चौथे दिन माँ के मंत्र का जाप करने से हमेशा माँ कुष्मांडा कृपा दृष्टि बनाए रखती है। मान्यता है कि माँ कुष्मांडा की उपासना करने से व्याधियों से मुक्ति मिलती है और हमें सुख, समृद्धि और उन्नति की प्राप्ति होती है। धर्म ग्रंथ के जानकार कहते हैं कि जब चारों तरफ अंधकार छाया था और सृष्टि का नहीं था कोई अस्तित्व, तब माता ने अपनी मंद मंद मुस्कान से ब्रह्मांड में जीवन की उत्पत्ति की। इसलिए माता को आदि शक्ति और जगत जननी कहा गया है। तो ये तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शारदीय नवरात्र का चौथा दिन, जब माँ भगवती के चौथे स्वरूप कुष्मांडा की पूजा अर्चना हो रही है। भक्त सुबह से ही मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंच चुके हैं। दूसरी तस्वीर छतरपुर मंदिर की है। देखिए किस तरह से माँ को फूलों से सजाया गया है। माँ का बेहद ही भव्य तरीके से श्रृंगार किया गया है। पीले फूल माँ को चढ़ाए गए हैं। और तीसरी तस्वीर है महाकाली मंदिर की अकोला से।
1: सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी भक्तों को एवं देशवासियों को बद्री भगत झंडे वाला देवी मंदिर सोसाइटी की ओर से शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। इन शारदीय नवरात्रों में आज माँ भगवती का चतुर्थ स्वरूप कुष्मांडा के रूप में पूजन किया गया है। आज के दिन माँ भगवती पराम्बा ने जो है इस ब्रह्मांड को अपने उदर में धारण कर लिया था, इसीलिए इनको कुष्मांडा का नाम दिया जाता है। कुष्मांडा के रूप में इनका भक्तजन जो है पूजन करते हैं। आज के दिन साधक जन अपने मन को अनाहत चक्र में स्थित कर भगवती की उपासना और भी भगवती की उपासना का पड़ाव और भी आगे बढ़ा देते हैं, जिससे साधक जनों को भगवती की पूजा अर्चना करने में, भगवती की अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने में एवं भगवती से साक्षात्कार करने के लिए वे निश्चित रूप से अग्रसित होते हैं। और इसी क्रम में, इसी चतुर्थ नवरात्र के क्रम में आप सब देख सकते हैं कि मेरे पीछे भी भक्त लोग भी प्रातः 4 बजे से जो है माँ के चतुर्थ स्वरूप का दर्शन करने के लिए बड़े ही लालायित हैं।

चिरंदन तुमको बंदर रख सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन की रेकाज। मन मंदिर में सजे बियारी, मन मोहन छवि प्यारी, वंशी बजैया राष्ट्र रजैया।

शक्ति उत्सव में गरबा का रंग भी खूब जमता है, खासकर गुजरात में जहां हर पंडाल में महाशक्ति के महाउत्सव का जय घोष है। ये रौनक, की सजावट, ये चमक, ये दमक दुर्गा महोत्सव की है। रंग बिरंगी रोशनी, पारंपरिक परिधान, माता रानी के भजन और गरबा के साथ पूरा माहौल भक्तिमय और उत्सवमय नजर आता है। आयोजन में बड़ी संख्या में उत्साह के साथ लोगों ने हिस्सा लिया। हर किसी के कदम गरबा और डांडिया की लय पर थिरकते नजर आए। देखिए बेहद खूबसूरत तस्वीरें हम गुजरात से आपको दिखा रहे हैं। सूरत में किस तरह से लोग पूरे पारंपरिक वेशभूषा में, चनिया चोली में, केड़िया में डांडिया गरबा रास करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर है वडोदरा से। गुजरात के वडोदरा में भी ये 9 दिन शक्ति के माने जाते हैं और बेहद ही भव्य तरीके से यहाँ गरबा खेला जाता है। ये 9 दिन किसी महापर्व से कम नहीं होते गुजरात के लिए। तो ये 9 दिन लोग डांडिया खेलते हैं और देखिए पारंपरिक वेशभूषा पहने लोग डांडिया खेलते हैं। हर दिन का रंग अलग होता है, हर दिन की थीम अलग होती है और पूरे जोश के साथ यहाँ डांडिया खेला जाता है और इसके लिए इनाम भी मिलता है। जी हाँ, अगर आपकी ड्रेस सबसे अलग, सबसे यूनिक होगी तो आपको इसके लिए प्राइज भी मिलेगा। इसीलिए बड़ी मेहनत करते हैं लोग गुजरात में ये 9 दिन गरबा रास करते हुए और शक्ति का उत्सव यहाँ मनाया जाता है और गुजरात में बेहद ही भव्य तरीके से 9 दिन के नवरात्रे मनाए जाते हैं।

धर्म आस्था और परंपरा की अनुपम छटा, भक्तिभाव से सराबोर माहौल और जय श्री राम के गगन भेदी जयकारे। संगम नगरी प्रयागराज में पारंपरिक श्रृंगार चौकियों की भव्य शोभा यात्रा ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। सजी धजी चौकियां, आकर्षक साज सज्जा और उत्साह के बीच सड़कों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। प्रभु श्री राम के आदर्शों और मर्यादा का संदेश देती इस परंपरा को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े और पूरी श्रद्धा के साथ इस ऐतिहासिक आयोजन के साक्षी बने। इस भव्य आयोजन का सबसे खास और भावपूर्ण क्षण तब आया जब कोतवाली में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की चौकियों का मिलन हुआ। इस अलौकिक दृश्य ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया और पूरा वातावरण भक्ति रस से गुंजायमान हो उठा। तो नवरात्रि के तमाम रंग गुड न्यूज टुडे आपको दिन भर दिखाता रहेगा। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं और आज हम आपको बताएंगे देवी के उन नामों के बारे में जिनको लेने से, जिनका उच्चारण करने से आप अपने जीवन की हर मुश्किल को दूर कर सकते हैं। कौन से हैं वो देवी के नाम और क्या है उनकी महिमा, इस विषय पर बात करेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 14 अक्टूबर 2026 दिन बुधवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान है कन्या राशि में, बुध और शुक्र तुला राशि में, चंद्रमा वृश्चिक राशि में, राहु कुंभ राशि में,

0: केतु फिलहाल संचरण कर रहे हैं सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि देवी के नामों की महिमा क्या है। देखिए, देवी के माता के अनंत नाम हैं और देवी के बहुत सारे नाम मंत्रों और श्लोकों के माध्यम से लिए जाते हैं। अलग अलग मंत्रों और श्लोकों में देवी के नाम आते हैं, लेकिन हर व्यक्ति मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकता, हर व्यक्ति मंत्र नहीं पढ़ सकता। उसमें त्रुटि होने की, गलती होने की संभावना रहती है, और अगर आप गलत मंत्र पढ़ेंगे, गलत नाम लेंगे, तो मंत्र से लाभ होने के बजाय आपको नुकसान होगा। ऐसी दशा में देवी के 32 नामों का उच्चारण करना चाहिए। देवी के 32 नामों का उच्चारण काफी लाभदायक होता है। मंत्र जपने की तुलना में देवी के नाम जपने से फायदा ज्यादा होता है। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब ये जानते हैं कि देवी के 32 नामों की महिमा क्या है और 32 नामों को प्रयोग करने का तरीका क्या है। देखिए, दोनों समय पूजा के दौरान, सुबह और शाम दोनों समय देवी के सामने इन 32 नामों को पढ़ना चाहिए। हर एक नाम एक सिद्ध मंत्र है, तो टेक्निकली ये 32 नाम 32 सिद्ध मंत्र हैं। हर नाम को ठीक से कहिए और देवी का, मां दुर्गा का स्मरण करिए। आप पूजा के दौरान अगर ठीक तरीके से इन नामों का उच्चारण करेंगे तो आपको संपूर्ण पूजा का फल प्राप्त होगा। जब आप 32 नाम कह लें, कहने के बाद अपनी प्रार्थना करिएगा, आपकी पूजा संपूर्ण होगी। आप दुर्गा सप्तशती के बड़े श्लोक नहीं पढ़ पाते, आपको मंत्र पढ़ने में कठिनाई होती है, नवरात्रि में या उसके अलावा भी अगर आप देवी के 32 नाम सुबह और शाम पढ़ें, तो आपकी हर मनोकामना केवल इन नामों का उच्चारण करने से पूरी हो जाएगी। चर्चा हमारी जारी है। आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो देवी का हर एक नाम एक सिद्ध मंत्र है, और जब आप देवी के 32 नाम सावधानी से और श्रद्धा पूर्वक कहते हैं तो आपके जीवन में बड़े परिवर्तन होते हैं। बड़ी पूजा का फल मिलता है और आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। अब जान लेते हैं कि देवी के 32 नाम कौन से हैं। दुर्गा, दुर्गति शमनी, दुर्गाद्वि निवारिणी, दुर्ग मच्छेदनी, दुर्ग साधिनी, दुर्ग नाशिनी, दुर्गतो धारिणी, दुर्ग निहंत्री, दुर्ग मापहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्ग दैत्य लोक दवानला, दुर्गमा, दुर्गमा लोका, दुर्ग मात्म स्वरूपिणी, दुर्ग मार्ग प्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्ग मध्यान भासिनी, दुर्ग मोहा, दुर्ग मगा, दुर्ग मार्थ स्वरूपिणी, दुर्गमा सुर संघत्री, दुर्ग मायुध धारिणी, दुर्ग मांगी, दुर्ग माता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्ग भामा, दुर्गमो और दुर्ग तारिणी। ये माता दुर्गा के देवी के 32 नाम हैं और इनका उच्चारण करने से आपको देवी की पूजा का संपूर्ण फल अपने जीवन में प्राप्त होगा। अब जानते हैं कि देवी के 32 नामों का विशेष प्रयोग कैसे करेंगे। एक पीले कागज पर लाल इंक से, लाल रंग से लिखकर सारे नाम अपने पास रखिए, अपने पर्स में, अपने बैग में। आप दुर्घटना से और वाद विवाद आदि से सुरक्षित रहेंगे। एक लोटे में जल भरकर अपने सामने रखें। इसके बाद आसन पर बैठें और बोल बोल कर देवी के 32 नाम को कहिएगा। नाम कहने के 5 मिनट बाद इस जल को घर के कोने कोने में छिड़क दीजिएगा। तंत्र मंत्र और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा होगी। किसी भी मुकदमे, वाद विवाद और परीक्षा में सफलता के लिए रोज सवेरे इन नामों को जरूर कहिए। 1 महीने तक लगातार रोज सुबह अगर इन नामों का उच्चारण करें तो आप अपनी बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। नवरात्रि में माँ दुर्गा को लगातार 3 दिन तक रात के समय में लाल फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपकी शारीरिक समस्याओं में सुधार होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 14 अक्टूबर 2026 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल माता दुर्गा को हरी इलायची अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उस इलायची को खा लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
4: हाँ, शारदीय नवरात्र का चौथा दिन विधि विधान से हो रही माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा, मंदिरों में भक्तों की भीड़। पश्चिम बंगाल में शक्ति आराधना के लिए सजे भव्य पंडाल, हावड़ा में केदारधाम की थीम पर सजा पंडाल, दूर दूर से पहुंच रहे हैं यहाँ भक्त। गुजरात में गूंज रही है गरबा की तान, रंग बिरंगे परिधानों में पूरे जोश और आस्था के साथ गरबा नृत्य में डूबे नजर आए लोग। दिल्ली रामलीला की धूम, ब्रॉडवे रामलीला में 100 से ज्यादा कलाकार देंगे प्रस्तुति, दिखेगा आधुनिक तौर परंपरा का संगम। हैदराबाद में भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 मैच आज शाम 7 बजे से शुरू होगा मुकाबला। सीरीज में भारत 2-1 से आगे। पहाड़ों पर जारी बर्फबारी का दौर, कश्मीर के कई इलाकों में भारी हिमपात, चारों ओर बिछी बर्फ की सफेद चादर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
4: नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
0: नमस्कार।
4: सबसे पहले आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्र के पावन दिन चल रहे हैं, ऐसे में नारियल का खास तौर पे प्रयोग होता है पूजा में। जी हाँ, नवरात्र में नारियल के चमत्कारी प्रयोग क्या है उस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
0: अगर आपके स्वास्थ्य के लिए कोई खराब दशा चल रही है, कोई प्रतिकूल दशा चल रही है जिसमें आपकी सेहत बिगड़ सकती हो या खराब हो सकती हो, तो नियमित रूप से दोनों समय देवी कवच का पाठ करें। इसको दुर्गा कवच भी कहते हैं। कितना भी खराब वक्त आपके स्वास्थ्य के लिए चल रहा हो, अगर आप निरंतर देवी कवच का पाठ करेंगे तो स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं से बचे रहेंगे।
4: और आइए अब जान लेते हैं 14 अक्टूबर 2026 यानी कि बुधवार का पंचांग क्या है।
0: दिनांक 14 अक्टूबर 2026 दिन बुधवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
4: और आइए अब जान लेते हैं पंडित जी से, नारियल का फल धार्मिक रूप से इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है?
0: आज हम आपको बता रहे हैं कि नारियल का प्रयोग अगर आप नवरात्रि में करें या सामान्य जीवन में मुश्किलों के आने पर करें तो नारियल के प्रयोग से आपकी समस्याएं कैसे दूर होंगी। सबसे पहले जानते हैं कि नारियल का फल धार्मिक रूप से इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। देखिए, नारियल का फल हर पूजा उपासना में संपन्नता के लिए प्रयोग किया जाता है और नारियल को समृद्धि का और लक्ष्मी जी का स्वरूप मानते हैं, इसीलिए इसको श्री फल भी कहा जाता है। देवी की पूजा में, खास तौर से माता दुर्गा की पूजा में नारियल का विशेष प्रयोग होता है। चूंकि इसका स्वरूप मानव की खोपड़ी की तरह होता है, इसीलिए इसको बलि के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नारियल का जल, नारियल की गिरी और नारियल का खोल, तीनों का पूजा में अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है। नारियल के फल का प्रयोग अन्य

0: करने के लिए जरूरी है।
1: तो आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं नारियल की, तो आइए जानते हैं प्रयोग या पूजा के लिए हमें किस प्रकार का नारियल लेकर आना चाहिए और किस प्रकार का नारियल होना चाहिए।
0: देखिए, अगर आप नारियल का प्रयोग करना चाहते हैं या नारियल के फल से पूजा करना चाहते हैं तो किस प्रकार का नारियल होना चाहिए। नारियल भूरे रंग का, ब्राउन कलर का होना चाहिए। इसके अंदर गिरी और जल दोनों होना चाहिए। प्रयोग करने के पहले इसकी जटाओं को हटा लेना चाहिए। हालांकि अगर आप कलश पर नारियल रखेंगे तो उसको जटाओं के साथ रखेंगे, लेकिन अगर आप नारियल तोड़ेंगे तो तोड़ने के पहले इसकी जटाएं हटा ली जाएंगी।
1: और अब जानेंगे आज के राशिफल के बारे में, तो चलिए जान लेते हैं जिन लोगों की राशि है मेष, वृष और मिथुन, क्या कहता है उनका राशिफल।
0: मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें, सेहत गड़बड़ है, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार की समस्या हल होगी, किसी मंगल कार्य में व्यस्त रहेंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, करियर में सफलता मिलेगी, किसी मित्र के सहयोग से लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है।

0: बार प्रयोग किया जाएगा। देखिए, नवरात्रि में किसी भी दिन एक नारियल ले लीजिए, इसको चारों तरफ से रक्षा सूत्र से बांध लीजिए या इसको कलश के मुख पर रख दें या देवी के चरणों में रख दीजिएगा। पूरी नवरात्रि इसको वहीं पर रहने दीजिएगा और जब नवरात्रि समाप्त हो जाए तो दशमी तिथि पर इसको तोड़ करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करिएगा। ये प्रसाद बड़ा अद्भुत होगा और इसको ग्रहण करने से आपके मन की, आपके शरीर की मुश्किलें दूर हो जाएंगी।
1: और अब जानेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के राशिफल के बारे में।
0: कर्क राशि, करियर में आपको लाभ होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, देवी को हरी इलायची अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, धन के खर्चों पर नियंत्रण रखें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन का लाभ होगा, परिवार की समस्या हल होगी, यात्रा के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और शो में वक्त हो गया आज के सवालों को और उनके जवाब देने का, तो चलिए जान लेते हैं पंडित जी से ही कि आज का पहला सवाल वो किसका लेने वाले हैं।
0: जी, आज का पहला प्रश्न राधा श्याम मंडल जी ने हमें लिखा है, पश्चिम बंगाल से लिखते हैं। 30 अक्टूबर 1967 का जन्म है, 2:52 दोपहर में, मिदनापुर पश्चिम बंगाल। ये कह रहे हैं कि मैं कर्ज में डूबा हुआ हूं, कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है, कर्ज से मुक्ति कब तक मिलेगी। राधा श्याम जी, आपकी कुंडली बनती है मीन लग्न की और कन्या राशि की, महादशा शनि की और अंतर दशा बुध की चल रही है। सबसे पहले मैं कहूंगा कि जून 2000

0: आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि आपके स्वास्थ्य का मामला बहुत बेहतर नहीं दिखाई दे रहा है। अगले साल अक्टूबर के बाद आपका स्थान परिवर्तन होगा, उसके बाद स्थितियां बेहतर होंगी और धीरे धीरे आप अपने कर्जे चुका पाएंगे। साल 2028 में कर्ज चुक जाने की संभावना बन रही है। एक मूंगा बनवा के पहन लें, 8-10 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को प्रातः मूंगा धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और प्रार्थना करें तो आपको लाभ होगा।
1: अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं पंडित जी से उसका जवाब, तो आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। हमें सवाल भेजने के लिए हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। और इसी के साथ अब वक्त हो गया आज के दूसरे प्रश्न का, तो जानेंगे पंडित जी से आज का दूसरा प्रश्न वो किसका लेने वाले हैं।
0: जी अगला प्रश्न दविंदर पाल जी ने रामपुर से लिखा है। 4 अक्टूबर 1991 का जन्म है। 1:10 AM रामपुर उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मेरे पहला शादी का डिवोर्स हो गया है, लेकिन कुछ मामले अभी उसमें चल रहे हैं, तो पूरी तरह से छुटकारा कब तक मिलेगा, दूसरा विवाह कब तक होगा और भविष्य में करियर कैसा रहेगा। दविंदर जी, आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और कर्क राशि की, महादशा शुक्र की और अंतर दशा केतु की चल रही है। जून 2027 तक आते आते आपको पहले विवाह के मुकदमों से, विवादों से छुटकारा बड़ी आसानी से मिल जाएगा और 2028 के आरंभ में आपकी दूसरी शादी होगी। लेकिन निवेदन ये है कि आप जब भी दूसरी शादी भी करिएगा तो उसमें कुंडली एक बार मिला लीजिएगा। फिलहाल एक मोती बनवा के पहने, 10-12 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करें। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपको लाभ होगा।
1: तो चलिए जान लेते हैं कि नारियल के प्रयोग से अपनी खराब ग्रह दशाओं से आप कैसे बच सकते हैं।
0: अब आपको बताते हैं कि अगर आपकी कोई खराब ग्रह दशा चल रही हो, अगर कोई ग्रह आपको पीड़ा दे रहा हो, तो नारियल के प्रयोग से अपनी खराब ग्रह दशा से कैसे बचेंगे। नवरात्रि में किसी भी रात को एक नारियल ले लीजिएगा, इसको अपनी गोद में रख करके नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर, नारियल को अपनी गोद में रख करके देवी के सामने बैठिएगा और इसके बाद एक विशेष मंत्र है, इस मंत्र का 1 माला 3 माला 7 माला या 11 माला जप करिएगा। मंत्र देखिए स्क्रीन पर, शांति कर्मणि सर्वत्र तथा दुस्वप्न प्रदर्शने, शांति कर्मणि सर्वत्र तथा दुस्वप्न प्रदर्शने, ग्रह पीड़ासु चोग्रासु महात्म्य श्रुणुयान मम, ग्रह पीड़ासु चोग्रासु महात्म्य श्रुणुयान मम। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का 16वां श्लोक है। एक माला या 3 माला कम से कम पढ़िएगा और इसके बाद देवी से ग्रह शांति की प्रार्थना करिएगा। अगले दिन सुबह सुबह इस नारियल को बहते जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। अगर आप ऐसा नवरात्रि में 1 रात को भी कर लेते हैं तो आपको खराब ग्रह दशाओं से बड़ी आसानी से छुटकारा मिल जाएगा।
1: और आइए जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का क्या कहता है राशिफल।
0: तुला राशि, सेहत आपकी कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। जल्दबाजी में काम करने से बचिए। देवी को हरी इलायची अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, मानसिक समस्या हल होगी। करियर में लाभ के योग हैं। परिवार में मंगल कार्य होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन खर्च पर ध्यान दें। परिवार में अशांति से बचाव करें। हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: और चलिए अब जानेंगे पंडित जी से कि नवरात्रि में नारियल के प्रयोग से संतान प्राप्ति का उपाय कैसे मिल सकता है।
0: आप नवरात्रि में नारियल का प्रयोग करके संतान की प्राप्ति भी कर सकते हैं। तो नवरात्रि में नारियल का प्रयोग संतान प्राप्ति के लिए कैसे करें। नवरात्रि में किसी भी रात को पति पत्नी एक साथ देवी को नारियल अर्पित करें। नारियल पर रक्षा सूत्र बांध लें और उसको पीली चुनरी में रखकर देवी को अर्पित करिएगा। अर्पित करने के बाद पति पत्नी एक साथ संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। नवरात्रि भर इस नारियल को देवी के सामने रहने दीजिएगा और नवरात्र

0: बेडरूम में रख लीजिएगा। जब आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी तब चुनरी में से नारियल निकालकर जल में प्रवाहित कर दीजिएगा।
1: तो चलिए अब जानते हैं कि नवरात्रि में किसी भी तरह के तंत्र मंत्र को काटने का उपाय क्या है।
0: बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि मेरे ऊपर नजर दोष है, मेरे ऊपर तंत्र मंत्र है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो नवरात्रि में आप इसको भी समाप्त कर सकते हैं। कैसे? एक सूखा नारियल ले लीजिए, नारियल का गोला, बहुत लोग उसको गोला ही कहते हैं, तो एक सूखा नारियल गोले वाला ले लें। इसको ऊपर से थोड़ा सा काट कर ढक्कन की तरह निकाल लें। अब इसके अंदर चीनी भरकर वही ढक्कन जो नारियल का थोड़ा टुकड़ा निकाला था वही वापस लगा दें। इसको किसी पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर सीधा रखकर दबा दीजिएगा। मिट्टी के अंदर रहने से चींटियां और कीड़े धीरे धीरे इसको खाते जाएंगे और वो जैसे जैसे इसको खाते जाएंगे आपको नकारात्मक ऊर्जा से, तंत्र मंत्र से, निगेटिव एनर्जी से छुटकारा मिलेगा।
1: और शो में इसी के साथ वक्त हो गया आज के अंतिम राशिफल को जानने का। तो चलिए जान लेते हैं जिन लोगों की राशि है मकर, कुंभ और मीन, क्या कहता है उनका राशिफल।
0: मकर राशि, करियर की समस्या आपकी हल होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा, मानसिक चिंता दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं। खान पान में सावधानी रखें, देवी को हरी इलायची अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब जान लेते हैं पंडित जी से आज का तीसरा प्रश्न, उन्हें कहां से और किसने भेजा है।
0: जी, अगला प्रश्न हमें अनिल कटारिया ने लिखा है और अनिल कटारिया जी हमें मेरठ से मेल लिखते हैं। 18 जनवरी 1960 का जन्म है, 5:05 प्रातः, मेरठ उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैं विवाह करना चाहता हूं, अगर मैं अब विवाह करूं तो विवाह कैसा रहेगा और मेरा स्वास्थ्य भविष्य में कैसा रहेगा। अनिल जी आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और सिंह राशि की, महादशा बृहस्पति की और अंतर दशा राहु की चल रही है। देखिए बिल्कुल आप विवाह कर सकते हैं, आपकी कुंडली में विवाह की संभावनाएं बनती हैं, लेकिन विवाह आपके लिए एवरेज ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि विवाह से जीवन में बड़ा आनंद बड़ा सुख आ जाएगा, कुल मिला जुला के काम चलाऊ एवरेज स्थिति बनी रहेगी। दूसरा, किडनी का, यूरिन का, प्रोस्टेट का थोड़ा ध्यान रखिएगा। आने वाले समय में साल 2027 में आपके स्वास्थ्य का मामला अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। भविष्य बेहतर हो, जीवन में चैन सुकून से रह सकें, एक मूंगा बनवा के पहनिए, लगभग 12-14 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को सवेरे मूंगा पहने, रोज शाम को एक बार काल भैरव अष्टक या तो पढ़ें या तो सुने तो जीवन बेहतर होगा।
1: गुडलक में अब वक्त हो गया आज के अंतिम प्रश्न का, तो जानेंगे पंडित जी से ही आज का अंतिम और चौथा प्रश्न वो किसका लेने वाले हैं।
0: जी अगला प्रश्न रमेश जी ने देहरादून से हमें लिखा है, अपने भतीजे के बारे में जानना चाहते हैं। इनके भतीजे की जन्म तारीख है 24 अगस्त 1992, 4:25 शाम को, देहरादून उत्तराखंड। ये कह रहे हैं कि मेरे भतीजे की तबीयत बहुत खराब रहती है और स्वास्थ्य की वजह से उसकी पढ़ाई भी छूट गई है, तो भविष्य में वो क्या करे और स्वास्थ्य कैसे बेहतर होगा। रमेश जी आपके भतीजे की कुंडली बनती है धनु लग्न की और मिथुन राशि की, महादशा शनि की और अंतर दशा मंगल की चल रही है। देखिए पहली बात ये है कि इनको डाइजेशन का भी ध्यान रखना है और अपनी मानसिक स्थिति का भी ध्यान रखना है, क्योंकि इनकी ज्यादातर जो समस्याएं हैं वो साइकोलॉजिकल हैं, वो मानसिक हैं। दूसरी बात यह है कि बहुत पढ़ाई पे फोकस करने की आवश्यकता नहीं है, इनको किसी व्यापार की तरफ, खाने पीने का, कपड़े का, कॉस्मेटिक्स का, ऐसे किसी व्यापार की तरफ अगर आप इनको ले जाएं तो इनके लिए काफी बेहतर होगा। बेहतर स्वास्थ्य और जीवन के लिए इनको एक माणिक्य बनवा के पहना दें, 8-9 रत्ती का माणिक्य, तांबे या सोने में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को सवेरे माणिक्य इनको पहनाएं और इनको बोलिए कि रोज सुबह शाम एक एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें या राम रक्षा स्तोत्र सुने तो उससे काफी फर्क पड़ेगा।
1: जिनका जन्मदिन आने वाला है उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए जान लेते हैं कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा।

0: 14 अक्टूबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, करियर में लाभकारी परिवर्तन होगा, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी, अविवाहितों के विवाह में विलंब हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर गणेश जी की उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और इसी के साथ वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या देवी की उपासना में देवी को सिंदूर अर्पित करना आवश्यक है? सामान्यतः महिलाएं देवी को हमेशा सिंदूर अर्पित कर सकती हैं। जिन बालिकाओं का विवाह नहीं हो पा रहा हो, उनको नवरात्रि में देवी को सिंदूर अवश्य अर्पित करना चाहिए। पुरुष किसी भी हाल में देवी को सिंदूर अर्पित नहीं करेंगे।
1: और अब वक्त हो गया शुभ पहर के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं 14 अक्टूबर 2026 यानी कि बुधवार का शुभ पहर कौन सा है।
0: दिनांक 14 अक्टूबर 2026 दिन बुधवार, शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में देवी को, माता को हरी इलायची अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की और आपके मन की चिंताएं दूर होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, 14 अक्टूबर बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में।
1: और गुडलक में अब जानेंगे आज की गुडलक राशि के बारे में, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से ही कि आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों की शिक्षा कैसी रहती है। आज की गुडलक राशि है मकर। आरंभ में देखा गया है कि इनकी शिक्षा में समस्या आती है, लेकिन आगे चल करके बाद में इनको लाभ होता है। अगर आपकी राशि मकर है तो अच्छी शिक्षा के लिए आपको शिव जी की पूजा करनी चाहिए।
1: और इसी के साथ हम पहुंच गए गुडलक के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी हमें रोज एक नया महा उपाय बताते हैं, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आपका छोटा बच्चा है, उसकी सेहत बार बार बिगड़ रही है या उसको बार बार चोट लग जाती है, तो क्या करेंगे? नवरात्रि में किसी भी दिन देवी को एक छेद वाला तांबे का सिक्का अर्पित करेंगे। इसके बाद देवी के मंत्र का ओम दुं दुर्गाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करें या दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इसके बाद सिक्के को लाल धागे में डाल करके बच्चे के गले में, जिसको बार बार सेहत की दिक्कत होती है या चोट लगती है, उसके गले में पहना दीजिएगा।
1: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: कौन से हैं देवी के चमत्कारी नाम, क्या है देवी के नाम को जपने का विधान, और देवी के नाम से मिलेंगे कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: दुनिया के कई हिस्से ऐसे हैं जहां अक्टूबर के महीने में सर्दी विदा लेती है, ऐसा ही एक इलाका है चिली की मध्य क्षेत्र, कहने को तो यहां बसंत का मौसम आ चुका है, लेकिन इस बार सर्दी मानो यहां ठहर सी गई है और बर्फबारी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मौसम का यही मिजाज अब लोगों को हैरान कर रहा है।
7: बर्फ की इन वादियों ने चिली के लोगों को चौंका रखा है, अक्टूबर के महीने में इतनी बर्फ किसी करिश्मे से कम नहीं है। ये जगह राजधानी सैंटियागो से कुछ दूरी पर है, जहां कई बड़े स्की रिजॉर्ट बर्फ की मोटी चादर से ढके हैं। ये हाल तब है जब इस महीने यहां स्कीइंग का सीजन खत्म हो जाता है, लेकिन इस बार भारी बर्फबारी ने बर्फीले सीजन को करीब एक महीना आगे बढ़ा दिया है।
8: Fue histórico porque no es común estar abierto a tener esta cantidad de nieve en esta fecha de partida y extender la temporada, alargarla más de un mes de lo que más ha alargado alguna vez en la historia, también es muy particular.
7: Chile के इस इलाके में बर्फ अभी तक आबाद कैसे है, इसे लेकर तमाम थ्योरी हैं, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका अल नीनो की बताई जा रही है। हाल के दशकों के सबसे पावरफुल अल नीनो की वजह से ही मध्य चिली में सर्दियों के दौरान और वसंत की शुरुआत तक भारी बारिश और बर्फबारी हुई है। वजह जो भी हो, यहां आए लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है।
9: Estamos muy felices porque la temporada de nieve se extendió. Normalmente el año pasado el último viaje lo hicimos el 19 de septiembre. Este año ya vamos a cumplir casi un mes más y tenemos mucha nieve.
7: मौसम की इस बर्फ मिजाजी ने चिली के इस इलाके को पर्यटन का सबसे बड़ा हब बना दिया है। बर्फ में पर्यटन के इस आनंद को टूरिज्म का व्हाइट बूम कहा जा रहा है। लोग यहां बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। अक्टूबर में इतनी ज्यादा बर्फ देखना यहां आए लोगों के लिए किसी करिश्मे से कम नहीं है।
10: Es un evento raro, pero igual es bueno disfrutar porque podemos disfrutar de este efecto climático que puede que pase que no vuelva a pasar.
7: फिलहाल चिली में बर्फबारी ने सर्दियों के मौसम को उम्मीद से कहीं ज्यादा लंबा कर दिया है। जहां आमतौर पर इस वक्त बर्फीले खेलों का सीजन खत्म हो जाता है, वहीं इस बार पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर और पर्यटकों की रौनक बरकरार है। ये बर्फ जहां पर्यटकों के लिए सौगात बनकर बरसी है, तो वहीं पर्यावरण के जानकारों के लिए सवाल बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: और आपको उन वीडियोस के साथ छोड़े जाते हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर बेहद पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ आपको गुदगुदाएंगे, तो कुछ आपको इमोशनल कर जाएंगे।
11: माँ का रूप मन में बसी मूरत जैसी हो तो क्या बात है। हर हाथ अपनी कल्पनाओं को आकार नहीं दे सकते, पर जिन्हें ये कला आती है उन तक पहुँच तो सकते हैं। लगता है ये भी उन तक पहुँच गए हैं। माँ की मूर्ति बड़ी दूर से आई लगती है, तभी तो रेलवे प्लेटफॉर्म से होकर गुजर रही है। पर माँ के आने की खुशी, उन्हें अपने घर ले जाने की खुशी इन लड़कों के चेहरों पर साफ देखी जा सकती है। कुछ सेकंड का ये वीडियो लोगों का दिल छू रहा है। पांव छोटे हैं पर संगीत की धुन खूब परखते हैं। अभ्यास लगता नहीं कि बहुत ज्यादा हुआ है। सांस्कृतिक कार्यक्रम का कोई मंच भी नहीं और ना ही दर्शकों की भीड़ है, फिर भी इन चेहरों पर मुस्कान देखिए और कमर में देखिए लचक। मानो आज तो स्कूल में दिन ही बन गया। तस्वीरें बिहार के एक सरकारी स्कूल की बताई जा रही है, जहां इनकी शिक्षिका ने इन्हें यहां के लोक नृत्य झिझिया से परिचय कराया है, ताकि बच्चे अपनी लोक कला, परंपरा और संस्कृति को जान सकें, उससे जुड़ सके।

0: छोटी हैं पर कमाल की हैं। शरीर में ऐसी फुर्ती, ऐसी ऊर्जा, चेहरे पर ऐसे भाव जैसे हर पल नया शब्द लिख रही हूँ। नजरें नहीं हटा पाएंगे आप। भाव भंगिमा से लेकर इनका गेटअप सब लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। लोग इस बच्ची में देवी दुर्गा की झलक देख रहे हैं। नवरात्र है तो डांडिया और गरबे की धूम भी है। इनसे त्योहार की रौनक में चार चांद जो लग जाते हैं और रंगोली माँ के स्वागत में मन के उत्साह को बयां करती है। इस तस्वीर में दोनों साथ आ गए हैं। रंगोली के जरिए डांडिया की झलक पेश की गई है, पर रंगों का चुनाव इतना प्यारा है कि लोग इस रंगोली को बार बार देख रहे हैं।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
8: कौन से हैं देवी के चमत्कारी नाम, क्या है देवी के नाम को जपने का विधान, और देवी के नाम से मिलेंगे कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
9: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
10: शारदीय नवरात्र का चौथा दिन विधि विधान से हो रही माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा, जीएनटी पर दिन भर देखिए आस्था के अनोखे रंग।
11: शक्ति उत्सव पर हैदराबाद के भाग्यलक्ष्मी मंदिर का भव्य श्रृंगार, फूलों से सजाया गया मंदिर का मुख्य द्वार, महाआरती में भक्तों की कतार।
10: शारदीय नवरात्र पर गुजरात में गरबा की धूम, राजकोट में पारंपरिक मशाल गरबा बना आकर्षण का केंद्र, सूरत में रंग बिरंगी पोशाक में थिरके लोग।
11: प्रयागराज में आस्था और परंपरा की अनुपम छटा, श्रृंगार चौकियों की भव्य शोभा यात्रा, राम लक्ष्मण की चौकियों के मिलन पर भावुक हुए श्रद्धालु।
10: जम्मू कश्मीर में मौसम की मेहरबानी बरकरार, गुरेज समेत कई इलाकों में ताजा बर्फबारी, श्रीनगर में भी तापमान में गिरावट।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: उम्मीदों भरे पहर की खुशो भरी शुरुआत, सुप्रभात, मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत, नई सुबह नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर।
11: नमस्कार, सुप्रभात, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव। तो बिना रुके बिना थमे अगले एक घंटे में गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होने वाली है, लेकिन सबसे पहले नजर आज की उन पांच खबरों पर जिनमें है इंडिया के लिए शुभ समाचार।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
10: शुभ समाचार की शुरुआत करेंगे शारदीय नवरात्र के साथ। शक्ति उपासना के महापर्व का चौथा दिन है, देशभर में आस्था और भक्ति की जगमग है, मंदिर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहे हैं, देवी मां के दर्शन पूजन के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। आज मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना हो रही है, मान्यता है कि मां कुष्मांडा अपने भक्तों को आरोग्यता और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। आपको देश के प्रमुख मंदिरों से आस्था और भक्ति के तमाम रंग आगे दिखाएंगे।
11: तो देखिए, नवरात्र में हर तरफ माँ दुर्गा की भक्ति का रंग जो है वो चढ़ा हुआ है, कहीं भव्य पंडालों में माँ का अलौकिक दरबार सजा हुआ है, तो कहीं रंग बिरंगी रोशनी और मनमोहक सजावट ने पूरे माहौल को दिव्य बना दिया है। भक्ति के इस रंग में आपको भी लिए चलेंगे ऐसे पंडाल में जहाँ भगवान विष्णु के दिव्य स्वरूप और उनकी अवतार गाथा को बेहद खूबसूरती से उकेरा गया है।
10: तो बात गरबा की भी होगी, नवरात्र में गरबा का रंग ऐसा चढ़ा कि हर तरफ उत्सव का माहौल नजर आ रहा है। गुजरात की धरती पर शुरू होने वाली गरबा की पारंपरिक धुनें देश के अलग अलग शहरों में भी लोगों को अपने साथ झूमने पर मजबूर कर रही हैं। कहीं पारंपरिक गुजराती गरबा की छटा है तो कहीं डांडिया की खनक, कहीं लोक संस्कृति की झलक है तो कहीं आधुनिक संगीत के साथ थिरकती नई पीढ़ी। आपको दिखाएंगे नवरात्र में गरबा के अलग अलग रंग,
11: और आपको रामलीला की तैयारियों की झलक भी आज के कार्यक्रम में हम दिखाएंगे। देखिए, दिल्ली के ब्रॉडवे रामलीला में रामायण को आधुनिक तकनीक और नए अंदाज के साथ मंच पर उतारने की पूरी तैयारी है। यहाँ पर 100 से ज्यादा कलाकारों और अभिनय और 3D विजुअल इफेक्ट्स दर्शकों को रामायण के प्रमुख प्रसंगों का खास अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस देने वाले हैं। ब्रॉडवे रामलीला की कोशिश रामायण को आधुनिक मंच और तकनीक के जरिए आज की पीढ़ी तक पहुंचाने की है।
10: तो खूबसूरत वादियों में बर्फबारी का नजारा दिखाने के लिए आपको जम्मू कश्मीर भी हम लिए चलेंगे। यहाँ गुलमर्ग और बूटा पथरी की ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है, इससे कश्मीर की खूबसूरती में चार चांद लग गए हैं, नजारों पर बर्फ की परत छप गई है। बूटा पथरी का इलाका सफेद चादर से ढक गया है। नवरात्र से लेकर कश्मीर में हुई बर्फबारी तक सारी बातें होंगी आगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया फटाफट अंदाज में सुबह 9 बजे की 9 गुड न्यूज का।
11: नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप माँ कुष्मांडा की विधि विधान से पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब सृष्टि में चारों ओर अंधकार था और ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं था, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से इस ब्रह्मांड की संरचना की थी।
10: दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में नवरात्र के चौथे दिन सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतारें लगी हुई हैं। तमाम लोग माता के दर्शन पूजन के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। वहीं झंडेवालान मंदिर में माँ दुर्गा की आरती उतारी गई।
11: दिल्ली के छतरपुर स्थित आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ में नवरात्र के चौथे दिन सुबह से श्रद्धालु और भक्तों की कतारें लगी हुई हैं। तमाम लोग माता के दर्शन पूजन के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। वहीं छतरपुर स्थित आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ में मां दुर्गा की आरती उतारी गई, साथ ही श्रद्धालुओं ने जय माता दी के जयकारे भी लगाए।
10: पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की रौनक देखते ही बन रही है। अलग अलग थीम पर तैयार किए गए पूजा पंडाल श्रद्धालुओं और दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। हावड़ा के सहयात्री क्लब ने केदारनाथ धाम की थीम पर भव्य दुर्गा पूजा पंडाल तैयार किया है। खास बात यह है कि पंडाल के निर्माण में प्राकृतिक सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया है।
11: नवरात्रि पे गरबा की धूम देखने को मिली। पारंपरिक गुजराती परिधानों में सजे पुरुषों और महिलाओं ने गरबा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ढोल की थाप और गुजराती गीतों पर देर रात तक लोग झूमते नजर आए। गरबा का जश्न रात 3 बजे तक चला। वहीं महिलाओं ने सुरक्षा व्यवस्था की जमकर तारीफ की।
10: अयोध्या में दीपोत्सव पर एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। इस साल रामनगरी में 30 लाख दिए जलाने की योजना बनाई गई है। राम की पैड़ी को रोशनी से जगमग करने के लिए 35,000 स्वयं सेवक जुटेंगे। भव्य दीपोत्सव के जरिए अयोध्या एक बार फिर से आस्था भक्ति और दिव्यता का अनूठा संगम पेश करने जा रही है।
11: आसमान से बरसती ये फुहारे उत्तरी कश्मीर के खूबसूरत नजारों में चार चांद लगा रही हैं। बूटा पथरी समेत गुलमर्ग के ऊंचे इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है, जिससे यहाँ पे बर्फ की एक नई परत जम गई है। बूटा पथरी इलाका बर्फ की चादर से पूरी तरीके से ढका हुआ नजर आ रहा है।
10: देश में पहली बार ग्लेशियर झील पर स्वदेशी अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया गया। इसे उत्तराखंड के चमोली जिले में वसुधारा ताल में स्थापित किया गया। इस सिस्टम की मदद से अब 2 घंटे पहले ही संभावित बाढ़ जैसी आपदा की चेतावनी मिल सकेगी, जिससे समय रहते जान माल के नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी।
11: आयुष्मान खुराना सारा अली खान स्टारर फिल्म उड़ता तीर का दूसरा ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म उड़ता तीर का पहला ट्रेलर 23 सितंबर को रिलीज किया गया था, जिसमें आयुष्मान के पाकिस्तानी जासूस के किरदार से पर्दा उठा, तो अब दूसरे ट्रेलर में उनके कुछ अनोखे कारनामे नजर आ रहे हैं। ये फिल्म 23 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों

शुभ समाचार की शुभ शुरुआत नवरात्र के शुभ दिन के साथ। आज नवरात्रि का चौथा दिन है और देश भर में मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना पूरे भक्ति भाव के साथ की जा रही है। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। वहीं झंडेवालान मंदिर में भी मां के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मां कुष्मांडा की भक्ति और आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। उधर कोलकाता में दुर्गा उत्सव की रौनक देखने को मिल रही है, जहां भव्य पंडालों और आकर्षक सजावट के बीच भक्त मां दुर्गा की आराधना कर रहे हैं। आज मां कुष्मांडा की विशेष पूजा अर्चना के साथ देश भर में नवरात्रि का उत्साह चरम पर है। वहीं झारखंड के जमशेदपुर में पंडालों के जरिए विष्णु लोक की अद्भुत झलक देखने को मिल रही है। झारखंड की राजधानी रांची के गोलमुरी में झारखंडी बाला पंडाल श्रद्धालुओं के आकर्षण का मुख्य केंद्र बना हुआ है। हजारीबाग में दुर्गा पंडाल में केदारनाथ धाम की भव्य झलक भक्तों को आध्यात्मिक अनुभव करा रही है। दिल्ली से लेकर कोलकाता, काशी से मुंबई तक हर जगह मां दुर्गा की भक्ति, भव्य पंडाल की सजावट और श्रद्धालुओं की आस्था नवरात्रि के इस पावन पर्व को और भी ज्यादा खास बना रही है।

0: इन शारदीय नवरात्रों में आज माँ भगवती का चतुर्थ स्वरूप कूष्मांडा के रूप में पूजन किया गया है। आज के दिन माँ भगवती ने, माँ भगवती पराम्बा ने जो है इस ब्रह्मांड को अपने उदर में धारण कर लिया था, इसीलिए इनको कूष्मांडा का नाम दिया जाता है। कूष्मांडा के रूप में इनका भक्तजन जो है पूजन करते हैं।
1: जय माता दी सबको। मैंने पहला और आखिरी नवरात्रि का व्रत रखा है, जिसमें बहुत ही श्रद्धा पूर्वक व्रत रखा है, जिससे माता रानी ने मुझे आज यहाँ पर बुलाया है।
2: मैं कम से कम 40-45 साल से लगातार आ रही आती हूँ। मैं हर नवरात्र में होता है कि माता बुलाती है, मैं आती हूँ और पूरे नवरात्रि रखते हैं, फलाहार रहते हैं। जय माता दी।
1: अब जैसे काफ़ी लोग फलाहार वगैरह करते हैं, मैं तो कुछ नहीं खाती पूरा दिन, सिर्फ पानी वगैरह, सिर्फ रात को एक बार ही खाती हूँ। बाकी अगर इस मंदिर की बात करूँ, इस मंदिर में कम से कम नहीं तो 10-12 साल हो गए, मैं हर नवरात्रि आती हूँ।
3: तो देखिए, झंडे वालान की तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे थे और अब राजधानी दिल्ली के छतरपुर मंदिर की रौनक आपको दिखाते हैं। यहाँ माँ के दर्शन पूजन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है लगातार पहुंच रहे हैं। छतरपुर मंदिर माँ कात्यायनी का धाम माना जाता है और देश के सबसे प्रसिद्ध और भव्य धार्मिक स्थलों में से एक है। ये अक्षरधाम के बाद दिल्ली का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। नवरात्र के पावन अवसर पर यहाँ की रौनक देखने लायक होती है।

और अब आपको अकोला लिए चलते हैं। अकोला में देवी के एक दिव्य धाम की झलक आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र के अकोला में 200 साल पुराने मां महाकाली मंदिर में नवरात्रि के दौरान भक्ति का अनूठा माहौल देखने को मिल रहा है। यहां माता रानी की आराधना और साधना के लिए श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा के साथ पहुंच रहे हैं। खास बात यह है कि मंदिर में मराठी और हिंदी में माता की आरती करने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। माँ महाकाली का ये स्वरूप अपने पारंपरिक रौद्र रूप के अलग सौम्य और शांति इसमें दिखाई आपको देगी। महाराष्ट्र के कासार समाज के लिए माता महाकाली कुलदेवी के रूप में विशेष आस्था का केंद्र है। नवरात्र के दिनों में बड़ी संख्या में भक्त माँ के दर्शन पूजन के लिए यहाँ पहुँचते हैं।

0: वहीं धर्म आस्था और परंपरा की अनुपम छटा भक्तिभाव से सराबोर माहौल और जय श्री राम के गगनभेदी जयकारे। संगम नगरी प्रयागराज में पारंपरिक श्रृंगार चौकियों की भव्य शोभा यात्रा ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। सजी धजी चौकियां, आकर्षक साज सज्जा और उत्साह के बीच सड़कों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। प्रभु श्री राम के आदर्श और मर्यादा का संदेश देती इस परंपरा को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस दौरान उमड़े और पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस ऐतिहासिक आयोजन के साक्षी बने। इस भव्य आयोजन का सबसे खास और भावपूर्ण क्षण तब आया जब कोतवाली में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की चौकियों का मिलन हुआ। इस अलौकिक दृश्य ने श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया और पूरा वातावरण भक्ति रस से गुंजायमान हो रहा। प्रयागराज की अनूठी परंपरा न सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं की जीवंत पहचान भी है।
1: तो नवरात्र के पावन दिन चल रहे हैं। आज मां भगवती के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना पूरा देश कर रहा है। सुबह से मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। हमारे साथ हमारे तीन सहयोगी इनसे जुड़ रहे हैं। हमारे साथ धर्मेंद्र दुबे मुंबई से जुड़ रहे हैं, हमारे साथ रिदम जैन जयपुर से जुड़ रही हैं और हमारे साथ धनंजय

0: साबले अकोला से जुड़ रहे हैं, तो चलिए सबसे पहले मुंबई का रुख करना चाहूंगी। धर्मेंद्र, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और कितने भक्त हैं जो सुबह से मां के दर्शन के लिए वहां पहुंच चुके हैं?
1: बिल्कुल, देखिए इससे पहले हमने मुंबा देवी से लाइव दिया था और अपने गुड न्यूज़ टुडे के दर्शकों को माता रानी का दर्शन कराया था, लेकिन आपको बताएं कि मुंबई में तमाम ऐसे घरगुरुती और बड़े बड़े पंडाल भी होते हैं जो देवियों की स्थापना करते हैं। इस समय मैं मुंबई के पवई इलाके में हूं और सबसे पहले आप खुद भी माता रानी का दर्शन करें, देखें बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। और चौथा दिन है, जैसा कि हमेशा ही थीम होती है ड्रेसिंग को लेकर के, आज नेवी ब्लू की थीम है और ब्लू कलर की साड़ी का श्रृंगार माता रानी को कराया गया है। माथे पे हमेशा की तरह वही तेज नजर आ रहा है, साथ ही साथ मुकुट देखें बकायदा डायमंड लगे हुए हैं और बहुत ही भव्य तरीके से इस पूरे पंडाल को थीम भी दी गई है। स्पेशली देवी माँ को शंकर भगवान से जोड़ने की कोशिश इस पंडाल ने किया है। देखें हर कोई यहाँ पर दर्शन कर रहा है, सुबह का वक्त है, लोग अपने कामों पर मंजिल की तरफ जा रहे हैं और आकर के माता रानी का दर्शन करते हैं। बड़ी देवी तो यहाँ विराजमान है ही, लेकिन उनके साथ ही साथ छोटी प्रतिमा भी माता रानी की यहाँ पर रखी गई है। हर कोई यहाँ पर आकर के इन्हें टीका चढ़ाता है और फूल हार जो भी होते हैं चढ़ाते हैं। मंडल के बहुत सारे तमाम सदस्य भी यहाँ पर आए हैं, प्लीज आप सभी यहाँ पर आ जाएं और बात करने की कोशिश करते हैं इनसे, क्या कुछ डिटेल है। जोर से बोलो
2: जय माता दी।
1: आवाज नहीं आई।
2: जय माता दी,
1: जय भवानी,
2: जय अंबे।
1: इस तरह की गूंज मुंबई के हर उन बड़े पंडालों पर है जहां देवियों की प्रतिमाओं का विराजमान किया गया है। सब आप थोड़ा सा बताएं कि माता रानी किस नाम से बहुत ज्यादा चर्चित हैं और क्या खास इस बार?
3: ये दुर्गा देवी का रूप है हमारा, हर साल जो है ये मंडल का 30वां साल है। मैं ये जय भवानी मित्र मंडल का अध्यक्ष हूँ और हमारी देवी है ये पवैची आई भवानी नाम से यहाँ पे चलती है, फेमस है। और 30 साल में बहुत चढ़तार हुए हैं ये देवी, पहले अंदर हम लोग इतने कीचड़ में खेलते थे, आज बहुत अच्छा है भगवान इनके इनके ही माध्यम से ये जो रोड बना है आज पूरा, ये जो रोड मिलता है और ये जो पंडाल इतना भव्य दिव्य आप देख रहे हो इसका
1: तमाम लोग।
3: जी इनके
1: आप थोड़ा सा बताएं कि नवरात्रि बहुत ज्यादा स्पेशल तो होती है, गरबा खेलते हैं और घरों में क्या?
4: धर्मेंद्र बिल्कुल लोगों से बात करेंगे और साथ ही में कितना उत्साह जो है श्रद्धालुओं में वो साफ नजर आ रहा है, लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को जो सुबह सुबह GNT खोलकर बैठे हैं उनको आप माँ के दर्शन करवा दें। पीछे दरबार नजर आ रहा है और बहुत ही खूबसूरती से माँ को सजाया भी गया है, जैसे आपने कहा आज नीले रंग के वस्त्र खासतौर पर माँ को पहनाए गए। माँ के दर्शन करा दे हमारे GNT के दर्शकों को, क्योंकि चौथा दिन है, बेहद खास दिन है और ऐसे में बहुत से लोग ऐसे हैं जो मंदिर नहीं जा पाए हैं और GNT देख रहे हैं, तो दर्शन एक बार करा दे उसके बाद लोगों से बात करें।
1: बिल्कुल, मैं फिर से एक बार वीडियो जलने सिद्धेश से कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा माता रानी के दर्शन जो है हमारे सभी दर्शकों को कराएं। वाकई में बहुत ज्यादा भव्य विशाल तो नजर आ ही रही हैं, लेकिन खास तौर से माता रानी का जो चेहरा है आप देखें, बिल्कुल तेज आ रहा है इस चेहरे पर आकर और ऐसा लगता है कि जो कोई यहाँ आएगा जिस भी तरीके की मन्नतें मांगेगा माता रानी उनकी मन्नतें पूरी कर देंगे। मुकुट देखिए बकायदा गोल्डन वगैरह सब यहाँ पर लगाया गया है। खास बात यह है कि माता रानी के ऊपर आशीर्वाद देते हुए भगवान शिव शंकर भी विराजमान है और देखिए ऊपर से नीचे लगातार। खास बात यह है कि हर रोज यहाँ पर गरबा तो खेला ही जाता है, हर कलर की थीम होती है और हमेशा ही रोजाना ही माता रानी के श्रृंगार साड़ियों के साथ में बदले जाते हैं। आज ब्लू कलर की साड़ी के साथ माता रानी को यहाँ तैयार कर दिया गया है और जहाँ तक भी नजर जाए ऐसा लगता है लगातार देखते रहें। वाकई में 9 दिन का इंतजार बड़ी बेसब्री से हर किसी को होता है। फिर से एक बार थोड़ा सा छोटी माता रानी भी यहाँ पर है, इन्हें भी देखें, इन्हें भी ब्लू कलर की साड़ी में बाकायदा श्रृंगार करके रखवा दिया गया है। शेर की सवारी के साथ माता रानी यहाँ पर मौजूद हैं और सबसे ज्यादा यहाँ पर जो खुश होते हैं वो महिलाएं होती है। थोड़ा सा फिर एक बार आप आएं, मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि नवरात्रि आपके लिए स्पेशली कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है?
5: हम लोग के लिए तो बहुत ही ज्यादा पैसे रहे और ये 30 साल तो गए, लेकिन और 100 साल हम लोग राह दे सकते हैं।
0: जयपुर का रुख करते हैं। रिदम जैन हमारे साथ जुड़ी हुई है। रिदम, आज आपकी मौजूदगी कहाँ पर है और भक्त जो है जरा उनसे बात करिए, पहले माँ के दर्शन हमें करवाइए और सुबह सुबह का वक्त है, अगर कोई भजन कीर्तन हो जाए तो और भी अच्छा।
6: बिल्कुल, मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि जयपुर के माँ वैष्णो देवी मंदिर में मैं मौजूद हूँ और माँ के दर्शन हम कराएंगे आपको, माँ का श्रृंगार दिखाएंगे आपको। बहुत ही खूबसूरत श्रृंगार आज माँ का हुआ है। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप, नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा का आज दिन है और माँ कुष्मांडा के लिए बोला जाता है कि रॉयल ब्लू कलर जो है वो उससे श्रृंगार किया जाना चाहिए। तो रॉयल ब्लू और पर्पल टोन में ही आज माँ का श्रृंगार किया गया है। फूलों से उनका दरबार जो है वो सजाया गया है। सुबह से ही भक्तों की भीड़ यहाँ पे लगी हुई है और अभी इस समय पे इस मंदिर में मंत्रोच्चार चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ की अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो दूसरी तरफ भोग की तैयारी, हलवा पूरी का जो भोग है उसकी तैयारियां चल रही है। हर दिन अलग अलग परिवार सुबह और शाम
4: बिल्कुल यहाँ पे अपनी तरफ से नजर आ रहा है, चाहे पहला दिन हो चाहे चौथा दिन हो, लेकिन जो श्रद्धालु हैं वो लगातार मंदिरों का रुख कर रहे हैं। धनंजय साबले हमारे साथ अकोला से जुड़े हुए हैं। धनंजय, पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि टीका लगाए आप पर ऐसा लग रहा है कि माँ का रंग तो चढ़ गया है और आज चौथा दिन है, तो साथ में आप हमको माँ के दर्शन करवा दें, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था धर्मेंद्र से भी कि बहुत से लोग ऐसे हैं अब ऑफिस जाना है, किसी को स्कूल जाना है, लेकिन हाँ दिल में माँ के लिए अटूट श्रद्धा है। ऐसे में हमारे जीएनटी के दर्शकों को सबसे पहले माता रानी के दरबार के दर्शन कराएं आप।
7: ताली जो है वो उनके दर्शन करवा दूं, कितनी सुंदर मूर्ति है यहाँ आप देख सकते हो कि जिस तरीके से माँ के सुंदर रूप है और महाकाली का रूप अगर देखा जाए या फिर उसकी बात की जाए तो रौद्र रूप उनका जो सामने आता है, लेकिन ये सौम्य रूप वाली जो महाकाली है उसकी आरती आराधना साधना यहाँ पर लगभग शुरू है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर आरती करने के लिए भक्त जो है सुबह से ही यहाँ पर जो है पहले माँ की आरती और उसके बाद जो है अपने दूसरे काम के सबसे अहम यहाँ पर होता है, क्योंकि माँ का आज चौथा दिन है। माँ पुष्पांडा को खुश करने के लिए आज नीली साड़ी जो है वो परिधान किए हर महिला ने जो है यहाँ पर आरती करते नजर आ रहे हैं। आरती करते समय जो है माँ की जो यहाँ पर आराधना है साधना है वो करते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और माँ काली जो है वो अपने आप में एक बहुत सबके सुख दुख के लिए और सबसे खुश और शांति के लिए जो है हर प्रयास करने वाली माता यहाँ पर मानी जाती है सरगम की।
0: जी धनंजय जी, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। फिलहाल नवरात्र में माँ दुर्गा की आराधना के साथ उत्सव के रंग भी खूब खिल रहे हैं। कहीं पंडालों में देवी देवताओं के धाम साकार किए गए हैं तो कहीं लोगों के पसंदीदा जायकों को सजावट का हिस्सा बनाया गया है। मिट्टी की पारंपरिक कला से लेकर बाबा केदारनाथ की झलक तक देखने को मिल रही है, यानी हर पंडाल अपनी अलग कहानी कह रहा है। इन सबसे खास है माँ के दर्शन के लिए उमड़ती श्रद्धा, जो इस उत्सव को और भी ज्यादा खास बना रही है।

0: नवरात्र के इन पावन दिनों में हर तरफ माँ दुर्गा की भक्ति का रंग चढ़ा है। कहीं भव्य पंडालों में माँ का अलौकिक दरबार सजा है, कहीं रंग बिरंगी रोशनी और मनमोहक सजावट ने पूरे माहौल को दिव्य बना दिया है। ऐसा लगता है मानो धरती पर माँ दुर्गा का धाम उतर आया हो। भक्ति के इस रंग में अब दर्शन कीजिए एक ऐसे धाम के, जहाँ भगवान विष्णु के दिव्य स्वरूप और उनकी अवतार गाथा को बेहद खूबसूरती से उकेरा गया है। झारखंड के जमशेदपुर में दुर्गा पूजा के लिए भव्य पंडाल तैयार किया गया है। ये श्रद्धालुओं को भगवान विष्णु के अलौकिक लोक की अनुभूति कराता है। पंडाल की बारीक नक्काशी, आकर्षक सजावट और भव्य संरचना देखते ही बनती है। अब बात जायके की तो गोल गप्पे और झालमुड़ी का अपना ही अंदाज है। झारखंड की राजधानी रांची में दुर्गा पूजा के एक पंडाल को इसी चटपटे जायके की थीम पर सजाया गया है।
1: दुर्गा पूजा का त्योहार है तो अब हम एक ऐसे पंडाल में इस वक्त हैं। रांची में वैसे भी दुर्गा पूजा काफी बड़े स्केल पे होता है और इस पंडाल को सजाया जा रहा है। हर लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ और नाम सुनते ही जीभ में पानी आ जाए ऐसा जो है डिश है वो फुचका यानी गोलगप्पा। गोलगप्पा किसे पसंद नहीं। ये देखिए पंडाल में इस बार आकर्षण का ये केंद्र होगा, गोलगप्पों से इसे तैयार किया जा रहा है।
0: पंडाल के सामने झालमुड़ी के बड़े बड़े कोन नजर आएंगे, गोलगप्पे की झलक भी लोगों को खूब लुभा रही है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में दुर्गा पूजा के लिए बाबा केदारनाथ धाम की भव्य झलक पेश करता पंडाल तैयार किया गया है। केदारनाथ मंदिर की बनावट और उसकी खूबसूरती को बेहद आकर्षक अंदाज में दर्शाया गया है। मंडप की सजावट ऐसी है कि हर कोई इसे देखने के लिए ठहर रहा है। पश्चिम बंगाल के पुलिया में कला और आस्था का अनूठा मेल देखने को मिल रहा है। यहाँ एक दुर्गा पूजा समिति अपने 100 साल पूरे होने का जश्न मना रही है। इस खास मौके पर पंडाल को टेराकोटा कला की थीम पर सजाया गया है, जिसमें पारंपरिक कलाकारी की खूबसूरत झलक देखने को मिल रही है। पंडाल की थीम से मेल खाती माँ दुर्गा की प्रतिमा भी पारंपरिक कला की खूबसूरती को दर्शाती है। माँ का स्वरूप और प्रतिमा की बारीक कलाकारी श्रद्धा के साथ बंगाल की समृद्ध कला परंपरा की झलक पेश करती है। बंगाल की दुर्गा पूजा का आकर्षण सरहदों को पार कर दुनिया भर के लोगों को खींच लाता है। कोलकाता के अलीपुर में सजे एक खूबसूरत पूजा पंडाल में कई देशों से आए विदेशी मेहमान भी पहुंचे। पंडाल की शानदार सजावट और अनूठी थीम ने उनका ध्यान खींचा। मेहमानों ने माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने शीश झुकाकर आशीर्वाद लिया और इस दौरान बंगाल की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और आस्था को करीब से जाना। आस्था के रंग, कला की खूबसूरती और परंपराओं की मिठास, दुर्गा पूजा हर किसी को अपने रंग में रंग लेती है। हावड़ा से बैद्यनाथ झा, पुरुलिया से अनिल गिरी और रांची से सत्यजीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो देखिए आपको माता रानी के दर्शन कराने के लिए हमारे संवाददाता लगातार अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा रिदम के पास चलेंगे जो हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं। रिदम, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि देखिए नवरात्र की बात हो और राजस्थान का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? खैर अभी आप जयपुर के किस मंदिर में मौजूद है और किस तरीके से माँ का यहाँ पे श्रृंगार किया गया है और क्या कुछ तैयारियां नवरात्र के चौथे दिन? रिदम,
3: बिल्कुल, मैं जयपुर के माँ वैष्णो देवी मंदिर में मौजूद हूँ और आज नवरात्रि का चौथा दिन, क्योंकि माँ कुष्मांडा का दिन है और माँ को रॉयल ब्लू कलर से सजाया जाता है। हर दिन एक अलग रंग जो है वो माँ के लिए होता है और आज का जो रंग वो रॉयल ब्लू है, तो रॉयल ब्लू और पर्पल के शेड में ही ये जो माँ की साड़ी है वो आज नजर आ रही है। बहुत ही खूबसूरत श्रृंगार जो है वो माँ का किया गया है इस मंदिर में। मैं देख पा रही हूँ लगातार जो भक्त हैं वो सुबह से आ रहे हैं, अपनी मनोकामनाएं माँ के सामने रख रहे हैं, क्योंकि माँ कुष्मांडा को सृष्टि की रचयिता कहा जाता है और ऊर्जा की देवी कहा जाता है। और ऊर्जा की जब हम बात करते हैं तो हर एक व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा चाहता है, पॉजिटिव एनर्जी चाहता है, बस वैसी ही एनर्जी यहाँ आके महसूस होती है। दूसरी ओर मैं आपको भोग की तैयारियां दिखाऊंगी, क्योंकि हर दिन अलग अलग परिवार सुबह और शाम यहाँ पे भोग की व्यवस्था करते हैं, तो वही तैयारियां भी चल रही है। हलवा पूरी का भोग यहाँ पे लगाया जा रहा है। वही श्रृंगार की अगर मैं वापस से बात करूं तो श्रृंगार भी माँ का दिन में एक बार नहीं पर 6 से 7 बार बदला जाता है। तो 6 से 7 रूप हमें हर दिन माँ के देखने को
2: बिल्कुल
3: मिलते हैं।
2: माँ इस समय हर दिन का अलग रूप होता है। 9 दिन नवरात्र में माँ को अलग अलग रंगों से सजाया जाता है और जैसे कि आपने दिखाया नीले रंग की साड़ी आज माँ को पहनाई गई है। सीधे रुक करते हैं मुंबई का और धर्मेंद्र भी पंडाल में इस वक्त मौजूद हैं। नीले रंग की साड़ी माँ ने पहनी है, बेहद खूबसूरत माँ लग रही है। वहां भोग की क्या तैयारी है?
4: देखिए आपको बताएं कि सुबह से ही जो भी लोग अपने मंजिलों की तरफ जा रहे हैं वो माता रानी का के यहाँ पर दर्शन करते हैं और साथ ही साथ कुछ देर में माता रानी के यहाँ पर आरती भी होने वाली है। और जो खबर है उसके हिसाब से महाराष्ट्र की जो संस्कृति को दिखाते हुए भजन कीर्तन है माता रानी के, वो भी आज दोपहर को 2 बजे इस जगह पर शुरू हो जाएंगे। फिर से एक बार क्या थीम है वो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। माता रानी तो यहाँ पर अपने दरबार में विराजमान है ही, लेकिन उनके आसपास जो थीम बनाई गई है वो बहुत ज़्यादा भव्य, बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही है। वाकई में तारीफ करनी होगी उस कारीगर की, उस आर्टिस्ट की, जिसने माता रानी के दरबार को कुछ इस तरीके से बनाया है। आप देखें हर कोई यहाँ पर आता है, सम्मिलित होता है माता रानी के साथ में और कहीं ना कहीं बहुत ही बेसब्री से इंतजार होता है इस नवरात्रि का। नवरात्रि यानी 9 दिन 9 रातें माता रानी के साथ लोग बिताते हैं। थोड़ा सा फिर से
2: बिल्कुल धर्मेंद्र, बहुत ही खास तौर पर ये सजाया गया है माँ का दरबार। हमारे साथ धनंजय भी जुड़े हुए, धनंजय के पास यहाँ पे सीधे चलते हैं। धनंजय ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, लेकिन आप हमको माँ के दर्शन कराए और साथ ही में क्या वहाँ पर भी आरती की तैयारियां हैं?
5: बिल्कुल, महिलाएं जो है आरती कह रही है दुर्गे दुर्गा तुम्हारी पर मराठी
6: दर्शन सरोवर दे तारक संजय बड़ी जय देव जय देव जय महिषासुर जय से चारी संजय पर बोले
2: देखिए माँ के 9 दिन हर कोई माँ को अपने तरीके से प्रसन्न करने की कोशिश करता है और कोई भोग के जरिए कोई भजन के जरिए। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम तस्वीरों के लिए। बुलेटिन में इस वक्त वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद शहर शहर गरबा के रंग आपको दिखाएंगे।
7: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रहा है।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
9: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर
2: जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: शारदीय नवरात्र का चौथा दिन विधि विधान से हो रही माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा, जीएनटी पर दिनभर देखिए आस्था के अनोखे रंग। शक्ति उत्सव पर हैदराबाद के भाग्यलक्ष्मी मंदिर का भव्य श्रृंगार, फूलों से सजाया गया मंदिर का मुख्य द्वार, महाआरती में भक्तों की लगी लंबी कतारें। शारदीय नवरात्र पर गुजरात में गरबा की धूम, राजकोट में पारंपरिक मशाल, गरबा बना आकर्षण का केंद्र, सूरत में रंग बिरंगी पोशाक में थिरके लोग। प्रयागराज में आस्था और परंपरा की अनुपम छटा, श्रृंगार चौकियों की भव्य शोभा यात्रा, राम लक्ष्मण की चौकियों के मिलन पर भावुक हुए श्रद्धालु। जम्मू कश्मीर में मौसम की मेहरबानी बरकरार, गुरेज समेत कई इलाकों में ताजा बर्फबारी, श्रीनगर में भी तापमान में गिरावट।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।

तो देखिए, नवरात्र में गुजरात की धरती पर गरबा के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कहीं हाथों में जलती मशालें और सिर पर अग्नि कलश लेकर अनूठा स्वास्तिक रास हो रहा है, तो कहीं 120 साल पुरानी डोरी रास की परंपरा आज भी पूरे उत्साह से निभाई जा रही है। महिला पुलिस कर्मियों का गरबा हो या फिर एक साथ 5,000 से ज्यादा लोगों का पारंपरिक गरबा रास, तस्वीरें आपको बता रही हैं कि लोगों में डांडिया और गरबा को लेकर कितना उत्साह है। देखिए, हर तस्वीर में भक्ति, संस्कृति और उत्साह का अद्भुत संगम नजर आ रहा है। आधुनिकता के इस दौर में भी गुजरात की धरती अपने प्राचीन परंपराओं को पूरे गर्व के साथ अपने अंदर संजोए हुए है। गरबा का ये अनूठा रंग है जहाँ हर थाप में परंपरा है और हर कदम माँ की आराधना।

और चलिए अब आपको लिए चलते हैं गुजरात के जामनगर, जहां नवरात्र के रंग में रंगी शाम गरबा की थाप के साथ और भी ज्यादा खास बन गई। दिन में युवाओं ने गरबा की शानदार प्रस्तुतियां दी तो रात होते ही हाथों में जलती मशाले लेकर कलाकारों ने पारंपरिक स्वास्तिक रास की अद्भुत प्रस्तुति दी। गुजरात के जामनगर और आसपास के इलाकों में नवरात्र के दौरान स्वास्तिक रास की खास परंपरा देखने को मिलती है। आग की रोशनी, पारंपरिक धुने और कदमों के तालमेल के बीच कलाकार इस रास को बेहद खास अंदाज में पेश करते हैं। स्वास्तिक की पवित्र आकृति से जुड़ा ये अनूठा आयोजन गुजरात की समृद्ध लोक संस्कृति और नवरात्र की आस्था का खूबसूरत संगम पेश करता है।

तो देखिए, नवरात्र में आधुनिक गरबा आयोजनों की धूम भले ही बढ़ गई है, लेकिन गुजरात के सौराष्ट्र में आज भी प्राचीन गरबा परंपराओं की जो चमक है वो बरकरार है। राजकोट के बजरंग गर्ब मंडल में इसी परंपरा की अनूठी झलक जो है वो देखने को मिल रही है, जहां पे युवतियां दोनों हाथों में जलते मशाले लेकर और सर पर अग्निपात्र धारण कर माँ आदिशक्ति की आराधना करते हुए नजर आएंगी। आग की लपटों के बीच गरबा की प्रस्तुति श्रद्धा, साहस और परंपरा का अद्भुत संगम पेश करती है। बजरंग गरबे मंडल में इस विशेष जलते गरबा रास का आयोजन नवरात्र के तीसरे, छठे और नौवे दिन किया जाता है। इस अनूठे आयोजन को देखने के लिए हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग उमड़ते हैं। पिछले 19 वर्षों से मंडल इस परंपरा को लगातार आगे बढ़ा रहा है।

0: हम लोग प्रैक्टिस में दो महीने पहले प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं और प्रैक्टिस में 3 से 4 बार हम लोगों को एक राष्ट्र खेला जाता है और नवरात्रि में तीसरे छठे और नौवे नौरते में राष्ट्र ध्वज करते हैं और हजारों की संख्या में पब्लिक हमको निहारने के लिए और प्राउड फील होता है कि हम लोग खेलते हैं ये वाला।
1: अब आपको लिए चलते हैं गुजरात के वडोदरा, जहां नवरात्र के उत्साह में महिला पुलिसकर्मियां और पुलिस अधिकारियों के लिए खास गरबा आयोजन किया गया। ड्यूटी की जिम्मेदारियों के बीच महिला पुलिसकर्मियों ने पारंपरिक परिधानों में गरबा की थाप पर कदम मिलाए। रंग बिरंगी चनिया चोली, गुजराती लोक धुने और तालियों की गूंज, हर तरफ उत्सव का माहौल नजर आया। कानून व्यवस्था संभालने वाली महिला कर्मियों का एक अलग अंदाज भी देखने को मिला। किसी ने गोल घेरे में गरबा किया तो किसी ने साथियों के साथ कदम से कदम मिलाकर नृत्य किया।
2: देखो, महिला पुलिस कर्मचारी हो कि पुरुष कर्मचारी हो, हमारी ट्रेनिंग इतनी जबरदस्त होती है कि हमारी मन में जबरदस्त शक्ति भरी है और हम सारी दुर्गा स्वरूपी हैं और हर महिला बहुत रेडी होती है क्योंकि हमारी बार बार ट्रेनिंग होती है और हम ऐसे सारे आयोजन एवरी वीक करते हैं जो भी त्यौहार होती है। तो ये सब महिलाएं तो मेंटली बहुत स्ट्रांग है, ये सब दुर्गा हैं, लड़के आती है चोरों को, अनिष्ट तत्वों को पकड़ के लाती है।
3: जो रूटीन काम होता है वो यूनिफॉर्म में होता है और ये जो हमने चोली पहन के सब ग्राउंड में जाते हैं तो पब्लिक को पता नहीं चलता और जो लड़के हैं जो लड़कियों के पीछे रहते हैं या उसको कुछ परेशान करते हैं तो उनको पता नहीं चलता और हम उनकी देख रेख कर सकते हैं लड़कियों की और सुरक्षा में हम तैनात हैं। इसलिए
4: नवरात्रि का त्यौहार है, दुर्गा का मतलब शक्ति का ही त्यौहार है, तो शहर की पूरी महिलाएं और जो बच्चियां हैं वो सिर्फ पूरी नवरात्रि इंजॉय कर सके इसलिए हम सभी ने पहले से ही बहुत सारी तैयारी करके रखी है, पेट्रोलिंग कर दिया है। ये सारी महिलाएं ट्रेडिशनल में रहेंगी और नवरात्रि पर जो भी असामाजिक तत्व है उन पर वो अपनी बाज नजर रखेगी।
1: तो देखिए, आधुनिक दौर में गरबा के भव्य आयोजन, एसी डोम और हाई प्रोफाइल गरबा नाइट्स लोगों को खूब अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन गुजरात में आज भी ऐसी परंपराएं जिंदा हैं, जीवंत हैं, जिनकी पहचान आधुनिकता से नहीं बल्कि अपनी अनूठी विरासत से है। ऐसी ही एक परंपरा है नवसारी जिले के गढ़देवी शहर के कुंभारवाड़ इलाके का पारंपरिक डोरी रास। यहाँ हनुमान जी मंदिर के प्रांगण में नवरात्र के दौरान युवा पारंपरिक अंदाज में डोरी रास खेलते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि डोरी और डांडिया का अनूठा मेल होता है। डोरी के साथ डांडिया बांध के कलाकार लय और ताल के साथ रास प्रस्तुत करते हैं। कदमों का तालमेल और डोरी को साधने का हुनर इस नृत्य को दूसरे गरबा आयोजनों से एकदम अलग पहचान देता है। करीब 120 वर्षों से चली आ रही यह परंपरा लगभग 10 पीढ़ियों से आगे बढ़ाई जा रही है और देखिए, बदलते दौर में भी स्थानीय युवा इस पूरे उत्साह के साथ निभा रहे हैं। डोरी राज आज सिर्फ एक नृत्य नहीं, एक डांस नहीं, बल्कि गढ़देवी की सांस्कृतिक पहचान और पीढ़ियों से सहेजी जा रही विरासत का प्रतीक बन चुका है।

0: नवरात्र उत्सव के ये रंग गुजरात में जगह जगह देखने को मिल रहे हैं। यहाँ के लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है गरबा का रोमांच। ये सिर्फ नृत्य नहीं बल्कि माँ की शक्ति के प्रति भक्ति का एक ऐसा रंग है जो हर किसी को हर्ष से सराबोर कर देता है। शक्ति की आराधना के इस उत्सव में सूरत भी चमक रहा है। सूरत के इस विशाल पंडाल में गरबा का यह भव्य आयोजन हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ढोल नगाड़ों की थाप पर हजारों लोग माँ की आराधना में झूम रहे हैं। महिलाएं खूबसूरत चनिया चोली में सज रही हैं, तो वहीं पुरुष भी पारंपरिक केडियो जो एक खास तरह का प्रिंटेड या कढ़ाई वाला कुर्ता होता है के साथ धोती पहने खूब फब रहे हैं। शक्ति की आराधना के इस जश्न में कोई माँ दुर्गा के वेश में नजर आया तो किसी ने जगन्नाथ का रूप धारण किया।
1: जगन्नाथ पुरी का फेस बनाया है और पगड़ी पहनी है। मैं 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ। मैं तो बोलना चाह रहा हूँ कि आप सब भी आओ और यशवी फैमिली के साथ सब मजा करो।
0: टोलियां बनाकर गरबे की धुन पर नाचते झूमते इस जन सैलाब में महिलाओं और पुरुषों का उत्सव देखते बन रहा है।
2: बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर गरबा खेल के। हम लोग पिछले 15 साल से गरबा खेल रहे हैं और हम लोग पूरे साल मेहनत कर रहे थे गरबा का। आज हमारा गरबा का दूसरा दिन है लेकिन बहुत मजा आ रहा है। पूरे साल हम लोग वेट कर रहे हैं। हम लोग 5 महीने पहले से प्रैक्टिस चालू कर लेते हैं गरबा खेलने का। बहुत मजा आता है हम लोग को गरबा खेलने में।
0: इस जश्न में क्या आम क्या खास, हर शख्स पूरी आस्था के साथ सम्मिलित होता है। अहमदाबाद के आईपीएस मेस में आयोजित नवरात्रि गरबा महोत्सव में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघ भी दोनों शामिल हुए। मां की विशेष आरती के साथ गरबा पंडाल का उद्घाटन हुआ। सीएम और डिप्टी सीएम समेत पुलिस के सभी आला अफसर और उनके परिवार ने अम्बे माँ के दरबार में शीश झुकाया। इसके बाद गरबा के ऐसे रंग बिखरे कि हर कोई झूमने पर मजबूर हो गया। इस कार्यक्रम में उत्सव का माहौल दिखा जिसमें डिप्टी सीएम हर्ष संघवी भी गरबा की पारंपरिक धुन पर थिरकते नजर आए। गुजरात के उत्सव की धड़कनों में गरबा बसता है। जब गरबा और डांडिया शुरू होता है तो गुजरात में जैसे सारी दुनिया समा जाती है। राजकोट में गरबा के इसी रूप का शानदार नजारा देखने को मिला। रासविला गरबा महोत्सव में जहां पंडाल में पारंपरिक गरबा में एक साथ 5,000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ गरबा किया, ये अद्भुत नजारा हर किसी को मुग्ध करने वाला रहा। इस महोत्सव में गरबा खेलने वालों की भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो माँ के भक्तों का सैलाब ही उमड़ पड़ा हो। रंग बिरंगे परिधान और गुजराती गीतों के धुन पर लोग दिल खोल कर झूमते दिखे। गायक गायिकाओं और वाद्य यंत्र से निकलते सुर गरबा में शामिल लोगों को जोश से भर रहे थे, तो अलग अलग वेशभूषा वाले सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। इतने बड़े पैमाने पर आयोजित गरबा महोत्सव से अलग जामनगर में 8 दशक से भी ज्यादा पुराना पारंपरिक गरबा अभी भी लोकप्रिय है, जिसका नाम है अठंगारास। गोप गुंडन रास और कान गोपी रास के नाम से भी जाना जाता है।
3: हम लोग अठंगा रास भी खेलते हैं, तो भगवान द्वारकाधीश ने गोपियों के साथ किया था वही रास हम यहाँ पे रजू करते हैं।
0: भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़ा श्री आशापुरा गरबी मंडल का ये पारंपरिक रास श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। इस रास में मंडल के 16 सदस्य रस्सियों के माध्यम से तालमेल और अनुशासन के साथ प्रस्तुति देते हैं। रास की अनूठी शैली और कलाकारों के बीच शानदार समन्वय दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। समय के साथ अनेक बदलाव आए हैं, लेकिन जय श्री आशापुरा गरवी मंडल ने अपनी मूल परंपरा, संस्कृति और गौरव को आज भी अक्षुण बनाए रखा है। वाकई में हर साल जब गरबा का उत्सव का शुभारंभ होता है तो गुजरात की रौनक अलग ही रहती है। परंपराओं के निर्वहन के साथ ही बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं, जहां हजारों लोग शामिल होते हैं और देर रात तक गरबा खेला जाता है। जामनगर से दर्शन ठक्कर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: और इंस्टा स्टोरी में हम आपको उन कलाकारों की इंस्टा रील दिखाते हैं जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसाने और गुदगुदाने में भी पीछे नहीं है। देखिए अर्जुन बिजलानी की फनी इंस्टा स्टोरी।
5: देखिए पुरुष और महिला में एक लाइन का अंतर है। हाँ। पुरुष इस कान से सुनता है, इस कान से निकाल देता है। महिलाएं दोनों कान से सुनती हैं, फिर मुंह से निकालना शुरू करती हैं।
6: सुबह कितने बजे उठते हो?
7: हम उठते नहीं है, जबरदस्ती उठाया जाता है। रात को सोते भी नहीं है, जबरदस्ती सुलाया जाता है।
4: तो चलिए इसी के साथ शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
9: कौन से हैं देवी के चमत्कारी नाम? क्या है देवी के नाम को जपने का विधान? और देवी के नाम से मिलेंगे कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
8: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है
13: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
14: आज शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन विधि विधान से हो रही मां दुर्गा की कुष्मांडा स्वरूप की पूजा, गुड न्यूज टुडे पर दिन भर देखिए आस्था के अनोखे रंग। शक्ति उत्सव पर हैदराबाद के भाग्यलक्ष्मी मंदिर का भव्य श्रृंगार, फूलों से सजाया गया मंदिर का मुख्य द्वार, महाआरती में भक्तों की लंबी कतारें। शारदीय नवरात्र पे गुजरात में गरबा की धूम, राजकोट में पारंपरिक मशाल गरबा बना आकर्षण का मुख्य केंद्र, सूरत में रंग बिरंगी पोशाक में थिरके लोग। प्रयागराज में आस्था और परंपरा की अनुपम छटा, श्रृंगार चौकियों की भव्य शोभा यात्रा, राम लक्ष्मण की चौकियों के मिलन पर भावुक हुए श्रद्धालु। जम्मू कश्मीर में मौसम की मेहरबानी बरकरार, गुरेज समेत कई इलाकों में ताजा बर्फबारी, श्रीनगर में भी तापमान में आई गिरावट।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है,

आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं और आज हम आपको बताएंगे देवी के उन नामों के बारे में जिनको लेने से, जिनका उच्चारण करने से आप अपने जीवन की हर मुश्किल को दूर कर सकते हैं। कौन से हैं वो देवी के नाम और क्या है उनकी महिमा, इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 14 अक्टूबर 2026 दिन बुधवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 14 अक्टूबर 2026 दिन बुधवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान है कन्या राशि में, बुध और शुक्र तुला राशि में, चंद्रमा वृश्चिक राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, मंगल और बृहस्पति कर्क राशि में और केतु फिलहाल संचरण कर रहे हैं सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि देवी के नामों की महिमा क्या है। देखिए, देवी के, माता के अनंत नाम हैं और देवी के बहुत सारे नाम मंत्रों और श्लोकों के माध्यम से लिए जाते हैं। अलग अलग मंत्रों और श्लोकों में देवी के नाम आते हैं, लेकिन हर व्यक्ति मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकता, हर व्यक्ति मंत्र नहीं पढ़ सकता। उसमें त्रुटि होने की, गलती होने की संभावना रहती है और अगर आप गलत मंत्र पढ़ेंगे, गलत नाम लेंगे तो मंत्र से लाभ होने के बजाय आपको नुकसान होगा। ऐसी दशा में देवी के 32 नामों का उच्चारण करना चाहिए। देवी के 32 नामों का उच्चारण काफी लाभदायक होता है। मंत्र जपने की तुलना में देवी के नाम जपने से फायदा ज्यादा होता है।
चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी। हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार की समस्या हल होगी, किसी मंगल कार्य में व्यस्त रहेंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, करियर में सफलता मिलेगी, किसी मित्र का सहयोग मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, देवी को हरी इलायची अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि देवी के 32 नामों की महिमा क्या है और 32 नामों को प्रयोग करने का तरीका क्या है। देखिए, दोनों समय पूजा के दौरान, सुबह और शाम दोनों समय देवी के सामने इन 32 नामों को पढ़ना चाहिए। हर एक नाम एक सिद्ध मंत्र है, तो टेक्निकली ये 32 नाम 32 सिद्ध मंत्र हैं। हर नाम को ठीक से कहिए और देवी का, मां दुर्गा का स्मरण करिए। आप पूजा के दौरान अगर ठीक तरीके से इन नामों का उच्चारण करेंगे तो आपको संपूर्ण पूजा का फल प्राप्त होगा। जब आप 32 नाम कह लें, कहने के बाद अपनी प्रार्थना करिएगा, आपकी पूजा संपूर्ण होगी। आप दुर्गा सप्तशती के बड़े श्लोक नहीं पढ़ पाते, आपको मंत्र पढ़ने में कठिनाई होती है, नवरात्रि में या उसके अलावा भी अगर आप देवी के 32 नाम सुबह और शाम पढ़ें तो आपकी हर मनोकामना केवल इन नामों का उच्चारण करने से पूरी हो जाएगी। चर्चा हमारी जारी है। आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें,
ऑफिस में विवादों से बचाव करें, धन के खर्चों पर नियंत्रण रखें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, धन का लाभ होगा, परिवार की समस्या हल होगी, यात्रा के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।

करने से बचें। देवी को हरी इलायची अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, मानसिक समस्या हल होगी।

कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो देवी का हर एक नाम एक सिद्ध मंत्र है, और जब आप देवी के 32 नाम सावधानी से और श्रद्धा पूर्वक कहते हैं तो आपके जीवन में बड़े परिवर्तन होते हैं, बड़ी पूजा का फल मिलता है और आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। अब जान लेते हैं कि देवी के 32 नाम कौन से हैं। दुर्गा, दुर्गति शमनी, दुर्गाद्वि निवारिणी, दुर्ग मच्छेदनी, दुर्ग साधिनी, दुर्ग नाशिनी, दुर्गतो धारिणी, दुर्ग निहंत्री, दुर्ग मापहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्ग दैत्य लोक दवानला, दुर्गमा, दुर्गमा लोका, दुर्ग मात्म स्वरूपिणी, दुर्ग मार्ग प्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्ग मध्यान भासिनी, दुर्ग मोहा, दुर्ग मगा, दुर्ग मार्थ स्वरूपिणी, दुर्गमा सुर संघत्री, दुर्गमायुध धारिणी, दुर्ग मांगी, दुर्ग माता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्ग भामा, दुर्गमो और दुर्ग तारिणी। ये माता दुर्गा के देवी के 32 नाम हैं और इनका उच्चारण करने से आपको देवी की पूजा का संपूर्ण फल अपने जीवन में प्राप्त होगा। अब जानते हैं कि देवी के 32 नामों का विशेष प्रयोग कैसे करेंगे। एक पीले कागज पर लाल इंक से लाल रंग से लिखकर सारे नाम अपने पास रखिए, अपने पर्स में, अपने बैग में। आप दुर्घटना से और वाद विवाद आदि से सुरक्षित रहेंगे। एक लोटे में जल भरकर अपने सामने रखें। इसके बाद आसन पर बैठें और बोल बोल कर देवी के 32 नाम को कहिएगा। नाम कहने के 5 मिनट बाद इस जल को घर के कोने कोने में छिड़क दीजिएगा। तंत्र मंत्र और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा होगी। किसी भी मुकदमे, वाद विवाद और परीक्षा में सफलता के लिए रोज सवेरे इन नामों को जरूर कहिए। 1 महीने तक लगातार रोज सुबह अगर इन

का उच्चारण करें तो आप अपनी बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन खर्च पर ध्यान दें, परिवार में अशांति से बचें, हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा, मानसिक चिंता दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं, खान पान में सावधानी रखें, देवी को हरी इलायची अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। नवरात्रि में मां दुर्गा को लगातार 3 दिन तक रात के समय में लाल फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपकी शारीरिक समस्याओं में सुधार होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 14 अक्टूबर 2026 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल माता दुर्गा को हरी इलायची अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उस इलायची को खा लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

अपने काम को काम ना मानो, भगवान का काम मान। हम तो हर चीज गुरु जी की मान लेते हैं कि सब बालाजी का है, सब चीज बालाजी करवा रहे। रथ यात्रा क्यों कर रहे? बालाजी के लिए, बालाजी के लिए। हाँ, अरे सब बालाजी के चाकर हैं, सब बालाजी के जीव हैं, इनकी मति सुमति बनी रहे, इसलिए हम रथ यात्रा कर रहे हैं। ये भाव मानकर हम कर रहे हैं। अब लोगों का अपना अपना भाव है, कोई कहेगा अरे बाबा ऐसा, अरे वो ऐसा, अरे लो ठीक है। तुमसे भी हम यही कहेंगे, तुम जब भजन कीर्तन करोगे, हनुमान जी के बनोगे, मंदिर पर आओगे, धाम पे पेशी करने आओगे, चार लोग मुंह चलाएं, ए, ए, ए, ए, ए, ए, कहां पड़े बेफिजूली में, ये वो करने दो, कहने दो, उनका काम है, वो कहेंगे ही। दोनों प्रकार के लोग रहे, नास्तिक और आस्तिक हमेशा से रहे। आस्तिक लोगों से हमेशा नास्तिकों को दिक्कत रही है, उल्लुओं को दिन से दिक्कत है ही है। उल्लुओं को कैसे दिक्कत है? दिन से दिक्कत है। तो अभक्तों को भक्ति से दिक्कत है। इसलिए हे मेरे प्रियजनों, मेरे पागलों, हम तुमसे यही कहना चाहते, जहां रहो, जैसे रहो, जहां पर भी रहो, वहीं पर भगवान के रहो। किसके रहो? बोलो बोलो बोलो बोलो। क्योंकि आप इस जन्म को पा करके खाए कमाए और मर जाए, इसके लिए थोड़ी जन्म हुआ है। जन्म लिया, बीए की, शादी की, लड़के किए, नौकरी पाई, जमा पूंजी की और मर गए, बस इतना ही कर गए। ज्यादातर लोग इतना ही कर गए। क्या इसीलिए तुम्हारा जन्म हुआ? जो तुम कर रहे वो तो पशु भी कर रहा है। पशुओं में भी बाल बच्चे पैदा कर ही लेते हैं, खाते हैं, पड़े रहते हैं, मर जाते हैं। तो तुम में और पशुओं में अंतर क्या? अंतर इतना ही है, तुम बिना सींग पूंछ के पशु हो, वो सींग पूंछ के पशु। फिर क्या किया जाए? इस जन्म को पाकर जिस परमात्मा ने जन्म दिया है, उस परमात्मा को पाया जाए, मोक्ष पाया जाए, ताकि बार बार जन्म ना लेना पड़े। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे। आज जगत गुरु शंकराचार्य जी कह रहे, जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी कह रहे, पुनः जन्म लोगे पुनः मरोगे। जो रामायण में भी ये लिखा, जो जन्मे सो निश्चय नासा, जो नासे सो पुनः प्रकाशा। इसलिए संसार में जो भी तुम्हारे जीवन में चल रहा, उसे भगवान की नाटक लीला मानकर आगे बढ़ो, भगवान का भजन करो, मोक्ष पाओ, मोक्ष पाने का प्रयत्न करो। यही तुम्हारे जीवन का सही सिद्धांत है। बाकी सिद्धांत कुछ भी ठीक ठाक नहीं है, ये सब बेफिजूली की बातें हैं। ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, जो हो गया वो कम है क्या? जो तुमने कल चाहा था वो आज हो गया, अब भी तुम संतुष्ट हो क्या? हलुआ हो? तुमने चाह कराए कि मकान में रहते मकान हो जाए, लो मकान हो गया, खुश हो? मकान तो हो गया, फार्म हाउस और हो जाए। जो किराए की गाड़ी पे चलते, काश हमारी मोटरसाइकिल हो तो हम ससुराल जाएंगे, लो अब मोटरसाइकिल ले ली। मोटरसाइकिल तो हो गई पर बरसात में मजा नहीं आता है, चार पहिया होनी चाहिए। अब चार पहिया ले ली, छोटी वाली सुजुकी, छोटे पहिया है, नीचे फंस जाती है, काश बोलेरो होती मजा आ जाता। जिन पे बिलोरो है, क्यों तुम आनंद में? हाँ, है तो ठीक, एवरेज गड़बड़ है, लग्जरी नहीं है, तो कौन सी चाहिए? फॉर्चूनर। अच्छा, अब जिन पे फॉर्चूनर है, ठीक ठाक है, आनंद है, अब तो खुश हो गए, फॉर्चूनर है, फॉर्चूनर बड़ी बड़ी अद्भुत है। डिफेंडर। अच्छा, डिफेंडर वालों से पूछो, आज ही हम एक चेला की डिफेंडर में बैठे, हमें बता रहा था 6 महीने पहले खरीदी। अच्छा, डिफेंडर वालों से पूछो, क्यों? अच्छी गाड़ी है, अच्छी गाड़ी, डिफेंडर है, लग्जरी है, लग्जरी है, खुश हो? रेंज रोवर। अच्छा, जिन पर रेंज रोवर है उनसे पूछो, क्यों भाई? खुश हो? खुश, रेंज रोवर है, रेंज रोवर, इसको 3 करोड़ की आती है, 3 करोड़ की, 3.5 करोड़ की आती है, इतनी महंगी गाड़ी है, इतने में पूरा गाँव खरीद लेगा, और 3 करोड़ की तुम्हारे पास रेंज रोवर, खुश? फिर फरारी। अच्छा, फरारी। जिन पे ये सब गाड़ियां हैं तो वो वेंटेज कार लेना चाहता, जिन पे ये सब हो जाए अब खुश हो? क्यों? रोल्स रॉयस। अच्छा, अब ये भी हो गई, अब खुश हो? फिर नीचे सड़क पे चलते समय जाम लग जाता है,
तो हेलीकॉप्टर उड़न खटोला खरीद रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो उड़न खटोला हो जाएगा, खुश हो। अब क्या हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया ठटरी के बरे, रात को नहीं उड़ता है तो चार्टेड। अच्छा अच्छा, प्राइवेट जेट। हाँ ठीक है ठीक है, प्राइवेट जेट खरीद लो, खरीद हो गया, खुश हो। खुश तो है, दिल्ली में एक मकान हो जाता, क्यों आते जाते रहते ना। हाँ ठीक है, एक लोग आई वहां भी रखेगा क्या? नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, पर मकान होना चाहिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलो दिल्ली में मकान हो गया, अब दुबई, दुबई में हो गया, अब अमेरिका, अब यहां का तो पूरा हो गया, चांद पे प्लाटिंग चल रही है। ये मन है, क्या है बोलो बोलो बोलो दीपक भाई, इसको मन कहते, मन मतंग माने नहीं, जब लगी धका न खाए, ये मन मानता नहीं है माया मरी न मन मरा, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। ये मन मानता नहीं है, जो पीछे बैठे वो आगे आना चाहते, जो आगे हैं वो इधर आना चाहते, जो इधर हैं वो इधर घुसना चाहते, जो इधर घुसे वो इधर टंगना चाहते, जो इधर टंग जाते वो इधर टंगना चाहते, जो इधर टंग जाते वो इधर ही बैठना चाहते, और जो इधर बैठ जाते वो सेल्फी लेते। ये मन है, क्या है बोलो बोलो बोलो बोलो। संतुष्टि तुम्हें जीवन में कदापि कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती, इसलिए तुमसे हमारी प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके मेरे पागलो, अपनी खुशी बर्बाद कल के चक्कर में मत करो, आज का आनंद लूटो, अभी आनंद लूटो, इस पल में आनंद लूटो, कल आनंद नहीं मिलेगा, कल हो सकता मर जाओ, फिर क्या करोगे, इसलिए मेरे पागलो जियो, अभी मैं संत ना बन पाओ तो चल पाएगा, संतोषी बन जाओ, संत से कम ना कहलाओ। क्या बन जाओ बोलो बोलो बोलो बोलो, संतोषी बन जा। मेरे प्रिय जनों, हम भगवान के भक्त ना बन पाए, किसी भक्त के चरणों को पकड़ लें तो बेड़ा पार हो जाता, हमसे ही देखो, हम भक्त तो नहीं बन पाए, पर हमने परम भगवत भक्त जिन्होंने एक पैर पर खड़े होकर 125,000,000 हनुमान चालीसा का पाठ 84 साल की अवस्था तक करते रहे, 84 वर्ष जिन्होंने केवल हनुमान चालीसा पढ़ा, ऐसे दिव्य भगवत प्राप्त संत परमहंस महात्मा सन्यासी बाबा की हमने चरण को पकड़ लिया, उसका परिणाम देखो, हम संत नहीं बन पाए पर उनका चमत्कार है कि आज कुछ कहने लायक बन गए हैं। बालाजी की भक्ति मिल गई, इससे बड़ा क्या हो सकता, हम तुमसे भी प्रार्थना करें, हे मेरे प्रिय जनों, आत्मीय जनों, बहुत रात गवाई सोए कर दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था कौड़ी बदले जाए, रात तुमने सोकर गवा दी, दिन तुमने खा खा कर गवा दिया, बड़ा अनमोल जन्म मिला था तुमने, ऐसे ही बेकार इसको टाल दिया, अब मत टालो, हमारी बात मानो, देर मत करो, फिर एक दिन ऐसा आएगा, समय गुजरता चला जाएगा, शरीर भी साथ ना देगा, मन भी साथ ना देगा, शरीर साथ छोड़ जाएगा, फिर पछताए का हुई जब चिड़िया चुग गई, फिर पछताने से कुछ ना होगा, इसलिए आज ही नाम जपन नाम रटन भगवान की भक्ति प्रारंभ कर दो, तुम भले ही बागेश्वर धाम ना आ पाओ, तुम ऐसी भक्ति में डूबो, तुम जहां रहो वहां बागेश्वर धाम बन जाए, और तुम्हें देखकर लोग कहें कि ये बालाजी का चेला है, किसका चेला है, और कोई बालाजी के बारे में बागेश्वर धाम के बारे में उल्टा बोले, उनके सामने तुम ज्यादा जप करो, उनके सामने नचो, हम बागेश्वर वाले हैं, और कोई ज्यादा जले तो उनके सामने और चिल्लाओ, लगा के आग सुहरत में, हमने ये शौक पाले हैं, कोई पूछे तो कह देना हम बागेश्वर वाले हैं। प्रायः सांसारिक चिंतन में परमात्मा का चिंतन कर पाना बड़ा कठिन होता है, तो कई लोग प्रश्न करते हैं कि हम तो भाई महाराज गृहस्थी जीव हैं, गृहस्थ में रहते हैं, अब गृहस्थ में रहकर भगवान का भजन कैसे संभव है,
तो हमारे पास इसका एक छोटा सा उपाय है। प्रियजनों, ग्रस्त में भी भगवान को पाया ही जा सकता, और परमात्मा जब भी प्रकट भय वो गृहस्थ में ही प्रकट भय। साधु बनना जरूरी नहीं, मजबूरी नहीं, बन जाओ तो ठीक है, भाई घरवाली खतरनाक हो ज्यादा तो साधु बन जाओ, ठीक है, अच्छा है, वैराग्य आ गया हो परिवार से तो साधु बन जाओ,

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
2: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
3: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
4: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
1: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
5: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
6: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
1: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
7: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
1: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं, जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
8: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
1: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
9: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्पररी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
10: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
9: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना कम है डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूं हॉस्पिटल में।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
11: दो साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अग्ना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
5: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है, मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
1: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
12: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
5: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
13: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
14: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
1: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
15: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 ईयर्स बैक व्हेन वी शिफ्टेड टू इंडिया, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, वी स्टार्टेड यूजिंग इट। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
1: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
16: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
1: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
8: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेंपरेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेंपरेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
17: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में, डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
3: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो कहीं चलना हो बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
18: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है, इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
19: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ, अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
20: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
2: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने कमर कहीं भी जरा भी दर्द नहीं और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
3: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो कहीं चलना हो बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
4: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है मैनु जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है, अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
7: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 ने घर मंगा सकते।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
21: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
22: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
23: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
22: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
24: और दुर्भाग्य कहता है
22: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
23: अविश्वास में विश्वास बसता है,
22: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
22: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
21: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
22: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट दिखा लाल, सही दिखा सही लाल।
3: त्योहारी सीजन में कारोबारियों के लिए शुभ समाचार, दुर्गा पूजा से दिवाली तक 7 लाख करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान CAIT की रिपोर्ट में किया गया दावा। छठ दिवाली पर बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए गुड न्यूज, दिल्ली से पटना चलेगी 16 कोच की स्पेशल वंदे भारत ट्रेन, लगभग 13 घंटे में पूरा होगा सफर। मध्य प्रदेश के दमोह पहुंची पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा, कल होगी यात्रा का समापन, बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। आज शारदीय नवरात्र का चौथा दिन विधि विधान से हो रही मां दुर्गा की कुष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना, GNT पर दिन भर देखिए आस्था के अनोखे रंग। जम्मू कश्मीर में मौसम की मेहरबानी बरकरार, गुरेज समेत कई इलाकों में ताजा बर्फबारी, श्रीनगर में भी तापमान में गिरावट।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
3: नवरात्रि के चौथे दिन देश भर में आज मां दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की हो रही पूजा अर्चना, मान्यता है कि मां कुष्मांडा ने अपनी मुस्कान से की थी ब्रह्मांड की रचना। पूरे ब्रह्मांड के तेज की स्वामिनी मानी जाती है मां कुष्मांडा। मां कुष्मांडा की पूजा उपासना से रोग शोक का होता है नाश, जटिल रोगों से भी मिलती है मुक्ति। शेर पर सवार 8 भुजाओं वाली बेहद शांत मुद्रा के भक्त वत्सल देवी है मां कुष्मांडा। हाथों में कुंभ चक्र गदा, सिद्धि निधि का जाप करने वाली माला, कमल का फूल और अस्त्र शस्त्र धारण करती है मां कुष्मांडा। हरे वस्त्र धारण करके मां कुष्मांडा का पूजन करना चाहिए। मान्यताओं के मुताबिक मां कुष्मांडा को मालपुआ, पेठा, कद्दू की मिठाई का लगा सकते हैं भोग। माँ की उपासना से जन्म जन्मांतर के सभी कष्ट और निराशा का अंत होता है। जानकार बताते हैं कि माँ कुष्मांडा की कृपा से आयु, यश, बल और धन में अपार वृद्धि होती है। दिल्ली के झंडे वाला आनंद मंदिर में नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा का भव्य श्रृंगार किया गया। माँ कुष्मांडा की उतारी गई आरती, आरती में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। श्रद्धालुओं ने जमकर लगाए जय माता दी के जयकारे, भक्तों ने पूजा कर लिया मां का आशीर्वाद। दिल्ली के छतरपुर में नवरात्र के लेके उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में लोगों ने की मां की पूजा अर्चना। सुबह से छतरपुर मंदिर में लगी भक्तों की भीड़, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। हैदराबाद में देवी नवरात्र के चौथे दिन चार मीनार स्थित भाग्यलक्ष्मी मंदिर में महाआरती का आयोजन, सुबह से ही दर्शनों के लिए लगी लोगों की लंबी कतारें। मां भाग्यलक्ष्मी मंदिर में मां का किया गया विशेष श्रृंगार, भक्तों ने जमकर लगाए जयकारे। देवी नवरात्र के चौथे दिन हैदराबाद के भाग्यलक्ष्मी मंदिर में श्रद्धालुओं ने मां की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। पूरी में नवरात्र के चौथे दिन भगवान जगन्नाथ की उतारी गई विशेष आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस दौरान शामिल हुए। भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए सुबह से ही लगी भक्तों की लंबी कतारें, भक्तों ने जमकर लगाए जयकारे। जमशेदपुर में दुर्गा पूजा को लेकर श्रद्धालु में खासा उत्साह, पूजा पंडालों में मां दुर्गा के दर्शन के लिए लग रही लोगों की भीड़। जमशेदपुर के विश्वजीत मिल पूजा पंडाल को काल्पनिक थीम पर भव्य पंडाल की तरह सजाया गया, भगवान विष्णु के सभी अवतारों को इस दौरान दर्शाया गया। पूजा पंडाल के जरिए सनातन संस्कृति को जीवंत रखने की पहल, पंडाल बना आकर्षण का मुख्य केंद्र। रायसेन में नवरात्र के चौथे दिन मां कंकाली मंदिर में उमड़ा आस्था का जन सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन पूजन। नवरात्र के अवसर पर मां कंकाली के दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंच रहे श्रद्धालु, भक्तों ने की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना। प्रयागराज में पारंपरिक श्रृंगार चौकियों की भव्य शोभा यात्रा, सजधजी चौकी और श्री राम के जयकारों के बीच श्रद्धालु भक्ति और उत्साह में सराबोर नजर आए। प्रयागराज की रामलीला परंपरा में कोतवाली में भगवान श्री राम और लक्ष्मण की चौकियों का खास मिलन, दृश्य को देखकर श्रद्धालु भाव विभोर उठे। श्रृंगार चौकियों की शोभा यात्रा धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विरासत की अनूठी मिसाल, प्रभु श्री राम के आदर्श और मर्यादा का संदेश देती इस परंपरा को देखने के लिए बड़ी संख्या में जुटे इस दौरान श्रद्धालु। अकोला के प्राचीन महाकाली मंदिर में उमड़ी श्रद्धा, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने की मां के दर्शन। महाराष्ट्र के अकोला स्थित मां महाकाली मंदिर में मराठी और हिंदी में आरती करने की वर्षों पुरानी परंपरा, कासार समाज नवरात्र में करते हैं विशेष पूजा। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की दिख रही रौनक, अलग अलग थीम पे बनाए जा रहे दुर्गा पूजा पंडाल। हावड़ा के सहयात्री क्लब ने तैयार किया भव्य दुर्गा पूजा पंडाल, केदारनाथ धाम की थीम पे तैयार किया गया भव्य पूजा पंडाल। केदारनाथ मंदिर की तर्ज पे बनाए गए मंडप को देखने पहुंच रहे श्रद्धालु और दर्शक पंडाल के जरिए हावड़ा में ही केदारनाथ की यात्रा का अनुभव ले सकेंगे श्रद्धालु। मंडप के निर्माण में प्राकृतिक सामानों का किया गया इस्तेमाल, अग्निरोधी सुरक्षा को ध्यान में रखकर भी किया गया इसका निर्माण। लगभग 26 लाख रुपए की लागत से करीब 2 महीने में तैयार किया गया पूजा पंडाल, उद्घाटन के बाद आम दर्शकों के लिए खोला जाएगा ये मंडप। राजकोट में नवरात्रि के चौथे दिन गरबा की दिखी धूम, बजरंग गरबी मंडल ने पारंपरिक अग्नि गरबा किया पेश। राजकोट में अग्नि गरबा के दौरान 6 महिलाएं सिर पे जलते हुए गरबा के बर्तन और हाथों में मशाले लेकर नृत्य करते हुए नजर आई, लोगों के लिए बनाई गई आकर्षण का मुख्य केंद्र। राजकोट में बजरंग गरबी मंडल की अग्नि गरबा परंपरा लगातार 18वीं साल जारी है। नवरात्रि के दौरान पेश किया जाने वाला यह अनोखा आयोजन गुजराती संस्कृति और पारंपरिक गरबा। अहमदाबाद नवरात्रि गरबा महोत्सव का आयोजन, सीएम भूपेंद्र पटेल और डिप्टी सीएम इस दौरान हुए शामिल। नवरात्रि के अवसर पर महाआरती का भी आयोजन हुआ, सीएम भूपेंद्र पटेल और डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने मां जगदम्बा की आरती कर प्रवेश की सुख समृद्धि की कामना की। जामनगर में नवरात्रि के दौरान कडियावाड़ के युवाओं ने जलते हुए अंगारों पर किया स्वास्तिक रास, बड़ी संख्या में लोग इस दौरान शामिल हुए। जामनगर के कडियावाड़ में नवरात्रि के अवसर पर युवाओं ने 52 साल पुरानी परंपरा को निभाया, जलते अंगारों पर रास कर युवाओं ने धार्मिक आस्था और परंपरा का अनूठा उदाहरण पेश किया।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही
4: हैं। खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
6: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है।

0: होता है, और सबसे ज्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए, और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाई और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयाँ खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना, जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं, फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं, और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है, लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा, ये कोई मामूल। लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है, और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूरनकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च, जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है। आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक। चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लेग्जेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरनकंद। यह है सूरनकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग। क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास। अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू। लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो, सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार। कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है। वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन। ये है इंद्रायन की जड़। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है। ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है, बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: त्योहारी सीजन में कारोबारियों के लिए शुभ समाचार। दुर्गा पूजा से दिवाली तक 7 लाख करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान, CAIT की रिपोर्ट में दावा। छठ दिवाली पर बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए गुड न्यूज आई सामने। दिल्ली से पटना चलेंगी 16 कोच की स्पेशल वंदे भारत ट्रेन, लगभग 13 घंटे में पूरा होगा सफर।

मध्य प्रदेश के दमोह पहुंचे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा, कल होगा यात्रा का समापन, बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। आज शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन विधि विधान से हो रही मां दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा, गुड न्यूज टुडे पर दिन भर देखिए आस्था के अनोखे रंग। जम्मू कश्मीर में मौसम की मेहरबानी बरकरार, गुरेज समेत कई इलाकों में ताजा बर्फबारी, श्रीनगर में भी तापमान में आई गिरावट।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। और देखिए, जीएनटी स्पेशल में आज बात मां के चौथे स्वरूप यानी कि मां कुष्मांडा की करेंगे। देखिए, नवरात्रि का चौथा दिन मां कुष्मांडा की आराधना को समर्पित होता है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से नवरात्रि के चौथे दिन जो उत्साह है श्रद्धालुओं का, वो देखते ही बन रहा है। आपको बता दें कि माता कुष्मांडा अष्टभुजी देवी हैं जो सूर्यलोक में निवास करती हैं और अपने तेज से ब्रह्मांड को अलोकित करती हैं। विधि विधान से पूजा करने पर रोग, शोक और बाधाओं का नाश होता है। भक्तों को आयु, यश, बल, आरोग्य और समृद्धि प्राप्त होती है। तो आज हमारे इस स्पेशल शो में हम बात करेंगे कैसे करें मां कुष्मांडा की आराधना, उनका पूजन और उनके आशीर्वाद से कैसे मिलेगी सूर्य और गुरु की कृपा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि देश भर में भक्त जो हैं वो मां कुष्मांडा का आशीर्वाद लेने के लिए लगातार मंदिर पहुंच रहे हैं। दिल्ली से लेकर काशी कन्याकुमारी तक मां की आराधना जो है वो की जा रही है। मंदिरों में लंबी कतारें लगी हैं। सुबह से ही जो भक्त हैं लंबी कतारों में खड़े हुए हैं। भक्त मां के दर्शन के लिए दूर दूर से मंदिरों में पहुँच रहे हैं। जयपुर की बात करें तो जयपुर में भी मां के भव्य स्वरूप के दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो चाहे दिल्ली हो, जयपुर हो, महाराष्ट्र हो, सुबह से ही भक्त जो हैं मंदिरों के बाहर लंबी कतारें लगा के खड़े हुए हैं ताकि मां का आशीर्वाद मिल सके।
1: शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन यानी कि मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा का आज दिन है और मां कुष्मांडा के दर्शन हम जयपुर से मां वैष्णो देवी मंदिर से आप सभी को कराते हैं, जहां आज का रंग नीला है। तो नीले ही रंग में मां का भव्य श्रृंगार किया गया है। मां का जो दरबार है वो फूलों से सजाया गया है और इस मंदिर में सुबह से ही भक्तों की आवाजाही है। सभी भक्त मां को प्रसन्न करने के लिए फूल लेके आ रहे हैं, चुनरी लेके आ रहे हैं जो मां को अर्पित कर रहे हैं। साथ ही साथ में भोग की भी खास तैयारियां की गई हैं, जहां पे सुबह और शाम अलग अलग परिवार की तरफ से भोग तैयार किया जाता है। हलवा पूरी का भोग यहां पे लगाया जाता है, उसी की तैयारियां यहां पे अभी नजर आ रही हैं। और वैसे ही जैसे भोग हर दिन अलग अलग परिवार की तरफ से होता है, वैसे ही माँ का जो श्रृंगार है वो भी बदलता रहता है। मंदिरों में अक्सर एक बार श्रृंगार किया जाता है, एक रूप है जो देवी को दिया जाता है। पर इस मंदिर की खासियत यह है कि पूरे दिन में करीब 6 से 7 बार माँ के अलग अलग रूप स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं। पंडित जी से हम बातचीत करेंगे, जिनसे जानेंगे आज की क्या मान्यता है। पंडित जी, आज चौथा दिन है नवरात्रि का, आज की क्या मान्यता है, कैसे माँ को आज पूजा जाता है?
2: शारदीय नवरात्रों का ये चौथा नवरात्र है। चौथी मातेश्वरी का नाम कुष्मांडा माता के नाम से जाना जाता है। खेल खेल में इस पृथ्वी को प्रकट करने वाली, इसकी रचना करने वाली मातेश्वरी का नाम भगवान के द्वारा कुष्मांडा माता रखा गया है। भगवान को प्रसन्न करने से इनका नाम कुष्मांडा माता रखा गया है। पृथ्वी की रचना करने वाली, पृथ्वी को हरा भरा रखने वाली, पृथ्वी को पूर्ण रूप से संचार करने वाली और पृथ्वी का पालन करने वाली मातेश्वरी ये सदा जन और जीव चराचर को पूर्ण रूप से पालन करती है, उनमें रक्षा और सुरक्षा करती है। हर प्रकार से मातेश्वरी का आशीर्वाद सब जीवों को प्राप्त होता है। मातेश्वरी की शक्ति से जीवों का पालन होता है, उनका संचार होता है। आज का चौथा नवरात्र पूर्ण रूप से मातेश्वरी की जो आराधना करता है उसके हर घर में पूर्ण रूप से सुख शांति, सुख समृद्धि आती है, खुशहाली आती है, देश कुशल होता है और हर प्रकार से मनोइच्छा परिपूर्ण होती है।
1: माँ की आराधना के लिए आज की आज एक किस तरीके से माँ को पूजा जाए? आज
2: मातेश्वरी की आराधना करने से भगवान मातेश्वरी के फल चढ़ाए, मातेश्वरी के मन क्रम वचन से उनको सामने अपनी मनोइच्छा प्रकट करे, उस प्रकट करने से मातेश्वरी पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्रदान करती है। मन क्रम वचन से जो मातेश्वरी की आराधना करता है मातेश्वरी आशीर्वाद प्रदान करती है। मन हर आदमी के मन की गति जानती है, ये मातेश्वरी सदा ही मनुष्य के जीवन सफल करने वाली है।
1: देखिए, बिल्कुल पंडित जी का यही कहना है कि सच्चे मन से अगर माँ से कुछ भी मांगा जाए आज के दिन, तो माँ दुर्गा माँ का ये चौथा स्वरूप जो है वो आपकी आराधना जो है, जो आपकी आस्था है, उसको जरूर सुनेगा, आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेगा और आपको आशीर्वाद आज जरूर मिलेगा। तो जो भी मांगे सच्चे मन से मांगे, क्योंकि माँ कुष्मांडा का आज दिन है और कहा जाता है कि सृष्टि की रचयिता माँ कुष्मांडा है, उन्होंने अपनी मुस्कान से ये ब्रह्मांड को रचा है और साथ ही में इनको ऊर्जा की देवी भी कहा जाता है। तो ऊर्जा की जब बात करें तो ऊर्जा हमेशा हम सकारात्मक ऊर्जा की ज्यादा बात करना पसंद करते हैं। पॉजिटिव एनर्जी सभी को अपने आसपास चाहिए और ऐसी ही जो एनर्जी है वो इस समय पे नवरात्रि में हर दिन माँ के दर्शन करके हर भक्त को मिल रही है, अलग अलग स्वरूप देख के हर भक्त को मिल रही है। तो यही एनर्जी के लिए इस नवरात्रि हर दिन माँ के पास आइए, दर्शन कीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। कैमरामैन मनोज के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज टुडे, जयपुर।
0: तो नवरात्र का चौथा दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना हो रही है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। कहते हैं माँ से कुछ भी मांगा जाए तो माँ झोलियां भर देती हैं, लेकिन आपको बता दें कि नवरात्रि के हर दिन की महिमा ही खास है और देवी माँ का हर रूप अनुपम है। इन 9 दिनों में देवी के सभी स्वरूपों की भव्य उपासना की जाती है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे नवरात्रि के चौथे दिन पूजे जाने वाली देवी की महिमा के बारे में, जिनकी उपासना करके न सिर्फ मनोकामनाओं की पूर्ति की जा सकती है बल्कि नवग्रहों को भी बलवान बनाया जा सकता है। साथ ही आज के कार्यक्रम में हम ये भी जानेंगे कि माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करने का मंत्र क्या है। तो चलिए कर लेते हैं माँ कुष्मांडा के दिव्य दर्शन।

0: जो सूर्यवासिनी है, अंधकार नाशिनी है, जिनकी आभा सूर्य के समान चमकीली है, उन्हें समस्त ब्रह्मांड के तेज की स्वामिनी माना गया है। धर्मग्रंथ के जानकार कहते हैं कि जब चारों तरफ छाया था अंधकार और सृष्टि का नहीं था अस्तित्व, कहते हैं कि तब माता ने मंद मंद मुस्कान से ब्रह्मांड में जीवन की उत्पत्ति की, इसलिए माता को आदिशक्ति और जगत जननी कहा गया, जिनकी कृपा का फल है अमोघ, अक्षय है, जिनके हाथ में सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। ऐसी भगवती के विराट स्वरूप को देव महादेव सभी नमन करते हैं।
1: दुर्गा कवच में इनको कहा गया है कुष्मांडिज चतुर्थकम, कुष्मांडा चतुर्थ दिवस की देवी हैं, और कुष्मांडा नाम उस परंपरा उस दिव्य शक्ति से जोड़ा जाता है जिसने अपनी सृजनात्मक शक्ति से ब्रह्मांड को प्रकाशित किया। इन्हें सौर ऊर्जा और जीवनदायिनी शक्ति की भी द्योतक माना जाता है। यह कुष्मांडा देवी हैं जिसके अंदर पूरा संसार समाहित हो, उस देवी का नाम कुष्मांडा है।
0: जिनकी उपासना से रोग शोक का नाश होता है, माना जाता है कि माँ दुर्गा का चौथा भव्य स्वरूप है माँ कुष्मांडा। कहते हैं कि नवरात्र में जो भी भक्त माता कुष्मांडा की विधिवत उपासना करता है, माता की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हम अपनी खास पेशकश में आपको माता कुष्मांडा की महिमा बताएंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि कैसा है भगवती का स्वरूप। माँ कुष्मांडा सिंह पर सवार बहुत शांत मुद्रा की भक्त वत्सल देवी है। आठ भुजाओं वाली माँ कुष्मांडा के एक हाथ में कुंभ है, दूसरे हाथ में चक्र, तीसरे हाथ में गदा। माँ के चौथे हाथ में सिद्धियों और निधियों का जाप करने वाली माला है। माँ कुष्मांडा के बाकी हाथों में कमल का फूल और अस्त्र शस्त्र विद्यमान है। माना जाता है कि माँ कुष्मांडा की उपासना से जटिल रोगों से मुक्ति मिल जाती है और भक्तों के समस्त रोग शोक नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं माता की उपासना से आध्यात्मिक उन्नति होती है। चलिए आपको बताते हैं कि माँ कुष्मांडा की शास्त्रों में महिमा क्या है। नवरात्रि की चतुर्थी तिथि को माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। उनकी हल्की हंसी से ही उत्पन्न हुआ है ब्रह्मांड, इसलिए उन्हें कुष्मांडा नाम मिला। संसार में जितना भी तेज है वो इन्हीं से उत्पन्न हुआ है। माँ का वाहन सिंह है, माँ की आठ भुजाएं हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। इनके साथ हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र और गदा है। माँ के आठवें हाथ में सभी मनोकामनाओं को पूरी कर देने वाली जपमाला है। संस्कृत भाषा में कुष्मांडा को कुम्हड़ कहते हैं, इसलिए इन देवी को कुम्हड़ा विशेष रूप से प्रिय है। ज्योतिष में इनका संबंध बुध ग्रह से है। माँ कुष्मांडा अनाहत चक्र को नियंत्रित करती हैं।
1: माँ कुष्मांडा के स्वरूप किया अगर वर्णन किया जाए तो यह अष्टभुजा देवी है और सिंह पर सवार हैं, और उनके हाथों में विविध प्रकार के आयुध और हाथ में करस लिए हुए हैं, ऐसा देवी का स्वरूप है। सुरा संपूर्ण कलशम रुद्रालुप्तमेव च अधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में, ऐसा इनका स्वरूप शास्त्रों में बताया गया है।
0: अद्भुत है माँ कुष्मांडा की महिमा। इनकी उपासना शांत मन से और मधुर ध्वनि के साथ करनी चाहिए। माना जाता है कि अजय होने का वरदान भी माँ कुष्मांडा से ही मिल सकता है। तो आइए जान लेते हैं जगदम्बा के इस स्वरूप की उपासना कैसे करना फलकारी होगा। हरे वस्त्र धारण करके माँ कूष्मांडा का पूजन करें। पूजा के दौरान माँ को हरी इलायची, सौंफ या कुम्हड़ा अर्पित करें। पूजा के दौरान हल्की सुगंध और घंटी आदि का प्रयोग जरूर करें। इसके बाद उनके मुख्य मंत्र ओम कूष्मांडा देव्ये नमः का 108 बार जाप करें। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। इस दिन माँ सरस्वती के मंत्रों का जाप भी लाभकारी होगा। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि लंबी आयु, प्रसिद्धि और शोहरत पाने के लिए माँ कूष्मांडा की उपासना की जाती है। माना जाता है कि कुंडली के बुध से है माँ कूष्मांडा का संबंध। तो आइए जानते हैं माँ कूष्मांडा की कृपा से कैसे मिल सकता है हमारे जीवन के सभी व्याधियों के दूर होने का वरदान। माँ कूष्मांडा की उपासना से हकलाहट, वाणी और अभिव्यक्ति की समस्या दूर होती है। शिक्षा और एकाग्रता से जुड़ी सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। मानसिक समस्याएं और दुविधा जैसी परेशानियों से भी छुटकारा मिलता है। त्वचा और रूप सौंदर्य की समस्याओं में भी जल्द आराम मिलता है। कान, नाक और गले के रोग में भी माँ कूष्मांडा की कृपा से दूर हो सकते हैं। धन और कारोबार की हर समस्या का समाधान करती है माँ कूष्मांडा।
1: कूष्मांडा मतलब दुर्गा, जिसके अंदर सारा संसार जिनको समाहित जिनके अंदर हो, तो इनकी आराधना में जितनी भी श्रद्धा भक्ति भाव से हो सके इन भगवती का पूजन करके हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जो हमें पहले भी बताया करो चंडी विनायक, तो जो चंडी रूप है दुर्गा का, यह रूप दुर्गा दुर्गति दूर कर मंगल कर सब काज, ऐसा भी कहा गया है कि दुर्गति को दूर करती हैं और सारे जीवन के कार्यों को मंगलमय बना देती हैं। इसलिए इनका स्वरूप हर प्रकार से पूजन दर्शन से लाभदायी होता है।
0: नवरात्रि में माँ के चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा का ध्यान करें। विधि विधान से माँ की पूजा आराधना करें। समस्त कष्टों से मुक्ति पाने का यही सबसे उत्तम रास्ता है। आगे हम जानेंगे माँ कूष्मांडा का प्रिय भोग और सफलता पाने का महामंत्र, साथ ही जानेंगे माँ की कृपा से कैसे बलवान कर सकते हैं कुंडली का बुध।
2: माँ कूष्मांडा की विशेष कृपा पाने के लिए भक्ति भाव से उनकी उपासना करना बेहद जरूरी है और अगर माँ को उनका विशेष भोग अर्पित कर दिया जाए तो यकीनन देवी माँ शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगी। नवरात्रि के 9 दिनों की उपासना से 9 ग्रह भी बलवान हो जाते हैं, तो आखिर नवरात्रि के 4थे दिन की उपासना से कौन सा ग्रह आपका बलवान होगा और देवी से कैसे पाएं खुशियों का वरदान, चलिए आपको बताते हैं।

0: कहा जाता है कि ब्रह्मांड की रचना करने के बाद देवी ने अपनी मुस्कान से ही अलग अलग शक्तिशाली देवों की रचना की। कुछ मान्यताओं और कथाओं में मां कुष्मांडा को ही तीन शक्ति देवियों का जनक माना गया है।
1: इनका तो अगर हम मंत्र कहें तो इनका तो मूल मंत्र ही जो नवार्ण मंत्र हमारे यहाँ जप का कहा गया है, दुर्गा सप्तशती में जो बताया गया है, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडायै विच्चे, उसमें ऐम से महाकाली, ह्रीम से महालक्ष्मी, क्लीम से सरस्वती और चामुंडा से दुर्गा, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती सहिता त्रिगुणात्मिका भगवती दुर्गा। तो यह इनका जो पूजन करने से त्रिगुणात्मिका जो शक्तियां हैं महाकाली का महालक्ष्मी महासरस्वती तीनों के पूजन दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है।
0: कहते हैं कि इन्हीं महाशक्तियों से त्रिदेवों का जन्म हुआ। तो देखा आपने, ब्रह्मांड को जन्म देने वाली देवी से ही जन्मी है ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां भी। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि नवरात्र में मां कुष्मांडा की उपासना अमोघ है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो अगर मां कुष्मांडा को उनके प्रिय भोग अर्पित किए जाएं तो अति शीघ्र प्रसन्न हो जाती है मां। तो देखिए कौन सा भोग है मां कुष्मांडा को अति प्रिय।
1: मां के प्रसाद में पेठा, मुख्य रूप से पेठा, जो एक सफेद कुछ कोहणे का बनता है पेठा, वह प्रसाद भगवती को भोग लगाना चाहिए। पेठे से बनी मिठाइयां हैं। और अगर पूरा नैवेद्य भोग लगाना हो भोजन का तो सब्जी में भी जो हरा कद्दू जिसको हम कोहणा बोलते हैं उसकी सब्जी बना करके, और इस समय मूल रूप से है कि सात्विक भोजन बनना चाहिए, शुद्ध जल का प्रयोग करना चाहिए और सात्विक भाव से भगवती का नैवेद्य बना के प्रसाद भगवती को अर्पित करना चाहिए।
0: माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाएं, फिर मालपुए को किसी ब्राह्मण या गरीब को दान दे दें। ऐसा करने से बुद्धि के विकास के साथ ही निर्णय क्षमता भी उत्तम हो जाएगी। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि कुंडली के बुध से संबंध रखने के कारण कुंडली के बुध से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान बड़ी ही आसानी से पाया जा सकता है। माना जाता है कि अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर अवस्था में है तो देखिए नवरात्र के चौथे दिन किन उपायों से बलवान होगा आपका बुध। हरि वस्त्र धारण करके मां की पूजा करें, मां को हरि के साथ पंचमुखी रुद्राक्ष की माला अर्पित करें, इसके बाद मां दुर्गा के किसी भी मंत्र का जाप करें, फिर बुध के मंत्र ओम बूम बुधाय नमः का 108 बार जाप करें। माला को धारण कर लें या अपने पास रख लें। आज के दिन मां कुष्मांडा को हरी इलायची अर्पित करें, आपकी बुध संबंधी समस्या दूर होंगी। मां कुष्मांडा की कृपा से आयु यश बल और धन में अपार वृद्धि होती है। नवरात्रि के चौथे दिन मां के मंत्रों का जाप करने से हमेशा बनी रहती है मां कुष्मांडा कृपा दृष्टि। तो देखिए मां कुष्मांडा का वो चमत्कारी मंत्र, माना जाता है कि इन मंत्रों का जाप गुप्त रूप से किया जाए तो उसके चमत्कारी लाभ देखने को मिल सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडा रूपेण संस्था नमस्तस्तये नमस्तस्तये नमस्तस्तये नमो नमः। इस मंत्र का जितना ज्यादा जाप करेंगे मां की कृपा उतनी ही ज्यादा बरसेगी।
1: सर्वोत्तम है पूरा दुर्गा कवच का पाठ करें। मार्कंडेय पुराण दुर्गा सप्तशती में जो दुर्गा कवच है उसका पाठ करें, क्योंकि आज का जो सांसारिक जीवन है अशांत है, बहुत से प्रकार की समस्याएं जीवन में हैं, तो दुर्गा कवच का पाठ तो सर्वोत्तम है। और नहीं तो फिर आप धूप या दीप जला करके नवार्ण मंत्र, लाल चंदन की माला या रुद्राक्ष की माला या स्फटिक की माला लेकर के गोमुखी में, क्योंकि गोप हमारे यहाँ कहा गया गोपनीयम प्रयत्न, कोई भी जप गुप्त होना चाहिए, तो गोमुखी में हाथ डाल करके और तर्जनी उंगली का प्रयोग माले में न हो, 108 बार कम से कम ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडायै विच्चे इस मंत्र का जप करना चाहिए।
0: माना जाता है कि नवदुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा की उपासना से जन्म जन्मांतर के कष्ट और निराशा का अंत हो जाता है। आगे हम आपको बताएंगे माँ कूष्मांडा को प्रसन्न करने का महा उपाय। आप बने रहिए हमारे साथ।
2: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं एक ऐसा अचूक उपाय जिससे प्रसन्न होंगी देवी कूष्मांडा और आपको देंगे खुशियों की सौगात। इन उपायों को अपनाएं और देवी माँ से आशीर्वाद पाएं।

0: वाणी अमोघ है, भगवती की उपासना। माना जाता है कि नवरात्र की चौथी रात माँ कूष्मांडा की उपासना करने से माता अपने भक्तों पर कृपा लौटाती हैं। माना जाता है कि माँ कूष्मांडा की उपासना करने से व्याधियों में मुक्ति करती हैं और उसे सुख समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। साथ ही माना जाता है कि माता की उपासना करने से आत्मविश्वास और आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है, मन को सुकून मिलता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि माँ कूष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए ज्योतिष में कुछ विशिष्ट उपाय भी बताए गए हैं। इन उपायों से माँ कूष्मांडा की कृपा बहुत जल्द मिल सकती है। तो आइए जानते हैं माँ को प्रसन्न करने के महा उपाय। नवरात्रि में विवाहित महिला की पूजा करें, उन्हें भोजन में दही और हलवा खिलाएं। इसके बाद उन्हें फल, सूखे मेवे और सौभाग्य का सामान दें। इससे माँ कूष्मांडा प्रसन्न होती है और भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती है।
1: महाप्रयोग के बारे में कहा जाए तो इस दिन भगवती की दुर्गा रूप में उपासना करनी चाहिए, और क्योंकि दुर्गा भय का नाश करती हैं, तो उस भय से निकालने वाली, उस भय को दूर करने वाली जो देवी हैं, इन देवी को एक नारियल अर्पण करें और अर्पण करके भगवती से प्रार्थना करें, भगवती मैं यह नारिकेल आपको बलि रूप में प्रदान करता हूँ, आप इस बलिदान को ग्रहण करिए और हमारे जीवन में, हमारे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करिए।
0: माना जाता है कि नवरात्र में हर दिन देवी की उपासना के लिए फलकारी है, तो आप भी नवरात्र की चौथी तिथि पर माँ कूष्मांडा की सच्चे मन से साधना करें, जिससे आपकी साधना से देवी माँ प्रसन्न हो जाएं और आपको मिल सके सुखी जीवन का वरदान। तो आप भी ज्योतिष में बताए इन उपायों को अपनाएं और माँ कूष्मांडा से सुख संपन्नता का वरदान पाएं।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में बिखरते रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
3: शक्ति उपासना का चौथा दिन, श्रद्धालु विधि विधान से कर रहे मां दुर्गा कुष्मांडा स्वरूप की पूजा, पूजा पंडालों में भी जनसैलाब।
4: झांसी में दिखा त्रेता जैसी जनकपुर का नजारा, 102 साल पुरानी राम बारात में उमड़ा आस्था का मेला, भव्य झांकियों ने मोहा सभी का मन।
3: यूपी के महोबा में शक्ति उत्सव की धूम, गरबा और डांडिया महोत्सव में 350 से ज्यादा महिलाओं की मनमोहक प्रस्तुति, नन्ही बच्चों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।
4: मध्य प्रदेश के दमोह पहुंची पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा, कल होगा यात्रा का समापन, बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु।
3: छठ दिवाली पर बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए गुड न्यूज, दिल्ली से पटना चलेगी 16 कोच की स्पेशल वंदे भारत ट्रेन, लगभग 13 घंटे में पूरा होगा सफर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
3: सच गई खबरों की प्लेट तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत, लंच टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव। तो देखिए खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषा नहीं है। हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर वायरल न्यूज तक हर अहम खबर दिखाने वाले हैं, लेकिन पहले शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 अच्छी खबरों के साथ।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबर।
3: नवरात्रि के चौथे दिन देशभर में आज मां दुर्गा की कुष्मांडा स्वरूप की हो रही है पूजा। मान्यता है कि मां कुष्मांडा ने अपनी मुस्कान से ही की थी ब्रह्मांड की रचना। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा का भव्य तरीके से किया गया श्रृंगार। दिल्ली के छतरपुर में नवरात्र को लेकर उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में लोगों ने की मां की पूजा। हैदराबाद में देवी नवरात्र के चौथे दिन चारमीनार स्थित भाग्यलक्ष्मी मंदिर में महाआरती का आयोजन, सुबह से दर्शन के लिए लगी लंबी कतार। पुरी में नवरात्र के चौथे दिन भगवान जगन्नाथ की उतारी गई विशेष आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल।
4: राजकोट में नवरात्रि के चौथे दिन गरबा की धूम, बजरंग गरबी मंडल ने पारंपरिक अग्नि गरबा किया पेश। वडोदरा में गरबा के रंग बिरंगे महिला पुलिस कर्मी पारंपरिक गरबा पोशाक में आई। जामनगर में नवरात्रि के दौरान कड़ियावाड़ के युवाओं ने जलते हुए अंगारों पर किया स्वास्तिक राज, बड़ी संख्या में लोग इस दौरान शामिल हुए। अहमदाबाद नवरात्रि गरबा महोत्सव का आयोजन, सीएम भूपेंद्र पटेल और डिप्टी सीएम इस दौरान शामिल हुए। सूरत में गरबा उत्सव की दिखी धूम, पारंपरिक गुजराती परिधानों में महिला और पुरुषों ने जमकर किया गरबा।
3: नई दिल्ली से पटना के बीच चलेगी पूजा स्पेशल वंदे भारत ट्रेन, रेलवे ने जारी किया स्केड्यूल। दशहरा, दिवाली और छठ पर घर जाने वालों के लिए गुड न्यूज, पुणे मुंबई अहमदाबाद और श्रीगंगानगर के लिए चलेगी पूजा स्पेशल ट्रेन, कई अन्य जगहों के लिए भी चलेंगी ट्रेनें। तिरुवन्नामलाई के अरुणाचलेश्वर के दरबार में पहुंचे म्यूजिक कंपोजर ने निरुद्ध, विधि विधान से की पूजा पाठ। मणिपुर के चूराचांदपुर में जिला स्तरीय अंडर 18 फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन, कई टीमों ने लिया हिस्सा। दिल्ली में केरल टूरिज्म में नेटवर्क केरल का आयोजन, कलाकारों ने दी शानदार प्रस्तुति।
4: अयोध्या में इस साल भी दीपोत्सव पर नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। इस साल 30 लाख दिए जलाने की योजना। 35,000 स्वयं सेवक सजाएंगे राम की पैड़ी। असम के नाहरकटिया और आसपास के इलाकों के युवाएं मिली बहुउद्देश्य खेल परिसर की सौगात, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने किया इसका उद्घाटन। विमान हादसा टालकर 180 लोगों की जान बचाने वाले कैप्टन स्मिथ मछार को ये सबसे छोटे हनुमान चालीसा गिफ्ट करेंगे निकुंज वागड़िया। जम्मू कश्मीर में मौसम की मेहरबानी लगातार बरकरार, गुरेज समेत कई इलाकों में ताजा बर्फबारी जारी। बर्फबारी से चारों ओर बिछी बर्फ की सफेद चादर, सड़कों पर भी जमी बर्फ की परत।
3: फिल्म आज का महिषासुर का फर्स्ट लुक जारी, टेरेंस लुइस के साथ पद्मिनी कोल्हापुरे, चंदन रॉय और आयशा ऐमान आएंगे नजर। फिल्म खोसला का घोसला 2 की नई रिलीज डेट का ऐलान, अगले साल 5 मार्च को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की फिल्म उड़ता तीर का दूसरा ट्रेलर हुआ रिलीज, 23 अक्टूबर को फिल्म होगी रिलीज। हनुमान अंश पर पवन पुत्र की कृपा बरकरार, 68वें दिन में भी 337 करोड़ से ज्यादा की कमाई। अजय देवगन की दृश्यम 3 ने रचा इतिहास, 12 दिन में 500 करोड़ पार, बनी 2026 की दूसरी बड़ी फिल्म।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
4: तो चलिए 25 अच्छी खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से, आपके लिए खबरों की प्लेट बिल्कुल तैयार है।
3: तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेंडिंग न्यूज के साथ।
4: आज शारदीय नवरात्र का चौथा दिन, विधि विधान से हो रही माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना।
3: छठ दिवाली पर बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए गुड न्यूज, दिल्ली से पटना चलेगी 16 कोच की स्पेशल वंदे भारत ट्रेन।
4: त्योहारी सीजन में कारोबारियों के लिए शुभ समाचार, दुर्गा पूजा से दिवाली तक 7 लाख करोड़ का कारोबार का अनुमान।
3: जम्मू कश्मीर में मौसम की मेहरबानी बरकरार, गुरेज समेत कई इलाकों में ताजा बर्फबारी, श्रीनगर में भी तापमान में आई गिरावट।
4: हैदराबाद में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच चौथा टी20 मैच आज शाम 7 बजे से शुरू हो गए मुकाबला, सीरीज में भारत 2-1 से आगे।

देशभर में शक्ति की उपासना का महापर्व पूरे उत्साह उमंग और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। नवरात्र की रौनक हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती ही जा रही है। शहर शहर आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। आज नवरात्र का चौथा दिन है। देशभर के मंदिरों में मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की पूरे भक्तिभाव के साथ की जा रही है। दिल्ली के छतरपुर और कालकाजी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। वहीं झंडेवालान मंदिर में भी मां के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मां कुष्मांडा की भक्ति और आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। हैदराबाद के भाग्यलक्ष्मी मंदिर में भी इस शुभ मौके पर सुबह सुबह महाआरती की गई तो अकोला के 200 साल पुराने महाकाली मंदिर में भी नवरात्र की अनूठी परंपरा निभाई गई। यहां माता रानी की आराधना और साधना के लिए श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा के साथ पहुंच रहे हैं। खास बात यह है कि मंदिर में मराठी और हिंदी में माता की आरती करने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। आज भी इस परंपरा का पालन पूरी श्रद्धा, निष्ठा और भक्ति के साथ निभाई जाती है।

0: पंडाल के अंदर रोशनी के ऐसे इफेक्ट्स तैयार किए गए हैं जो दर्शकों को अलग ही आध्यात्मिक दुनिया में ले जाते हैं। वहीं झारखंड के जमशेदपुर में पंडालों के जरिए विष्णु लोक की अद्भुत झलक देखने को मिल रही है, तो पश्चिम बंगाल के हावड़ा में दुर्गा पंडाल में केदारनाथ धाम की भव्य झलक भक्तों को आध्यात्मिक अनुभव प्रदान कर रही है। यानी कि कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि हर पंडाल कुछ ना कुछ कहानी कहता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है।
1: तो आज नवरात्र का चौथा दिन और माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना इस वक्त हो रही है और हर कोई मंदिर पहुंचा हुआ है माँ के दर्शन पाने के लिए। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, धर्मेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से और धनंजय साबले हमसे जुड़ रहे हैं अकोला से। तो चलिए सबसे पहले अकोला चलते हैं। धनंजय जी, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं? सुबह आपने माता के दर्शन करवाए, आज का रंग है नीला, और इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं?
2: मंदिर में जो अशर पूजा वाले
0: लौटेंगे, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल फॉल्ट है। जी जी जी जी, बताएं बताएं बताएं धनंजय।
2: वो नासिक के वहीं की माता है, लेकिन एक माता के भक्त महिला है जो है उसको लड़की से यहाँ पर महिलाओं से भजन के भी एक थोड़ा बाहर करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे आज माता का भजन बहुत जोरों शोरों से चल रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल धनंजय, जुड़े रहिए हमारे साथ। और देखिए जो नौ दिन है ये इतने ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं कि हर कोई माँ की श्रद्धा में लीन हो जाता है, सराबोर हो जाता है, और उसकी झलक यहाँ पे साफ तौर पे देखने को मिल रही थी। हम धर्मेंद्र के पास चलते हैं। धर्मेंद्र, सुबह से ही मैं और गीतिका आपसे यहाँ पर बात कर रहे हैं और आपने माँ के दर्शन भी करवाए। किस तरीके से माँ को आज विशेष तौर पे, क्योंकि आज चौथा दिन है, नीले रंग के वस्त्र पहनाए गए हैं, फिलहाल क्या दृश्य, क्या कुछ कार्यक्रम आज चौथा दिन है नवरात्र का?
3: बिल्कुल, आपको बताएं कि सुबह 9 बजे का जो लाइव हम गुड न्यूज टुडे के दर्शकों के साथ हमने दिखाया था वो मुंबई के पवई इलाके के देवी माँ के दरबार में थे, लेकिन इस समय हम पहुंच चुके हैं असलफा की माता रानी के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर हैं। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले हमारे दर्शक जो हैं माता रानी का आशीर्वाद करें। आपको बताएं कि इस समय हम जहां मौजूद हैं, माता त्रिपुरा सुंदरी माँ कामिका देवी का अवतार, उनकी थीम पर ये माता रानी यहां पर विराजमान है। सालों से यहां पर लोग जो है इनकी सेवा कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बेहद ही सुंदर लग रही हैं और बहुत सारे मुख के साथ इस समय यहाँ पर उन्होंने अवतार ले लिया है। एक बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं और आप देखें बहुत ही ज़्यादा भव्य लग रही हैं और तेज इनके चेहरे पे साफ तौर से देखा जा रहा है। और अभी इनका श्रृंगार का काम चल रहा है, कुछ देर में आरती भी यहाँ पर होने वाली है और जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, जो सेवादार हैं, वो लगातार जुटे हुए हैं माता रानी का श्रृंगार करने के लिए। और चूंकि इनकी जो हाइट है अच्छी खासी है, बहुत ऊंची हैं माता रानी, और जब इनका आगमन हुआ था तो मुझे लगता है सैकड़ों की तादाद में देवी भक्त जो हैं यहाँ पर जुटे थे। सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा वीडियोज एंड पिक्चर्स इनके वायरल हुए और ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिली हैं। और अभी भी देखिए सारे के सारे सेवादार जो हैं यहाँ पर जुटे हुए हैं,
1: लग रही हैं माँ, और बहुत ही सुंदर तरीके से माँ का
3: जी
1: जो श्रृंगार है वो किया गया है। और लौटूंगी आपके पास धर्मेंद्र। इस बीच अकोला में देवी के एक दिव्य धाम की झलक आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र के अकोला में 200 साल पुराने माँ महाकाली मंदिर में नवरात्रि के दौरान भक्ति का अनूठा माहौल देखने को

मिल रहा है यहाँ माता रानी की आराधना और साधना के लिए श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा के साथ पहुंच रहे हैं। खास बात यह है कि मंदिर में मराठी और हिंदी में माता की आरती करने की परंपरा जो वर्षों से चली आ रही है आज भी बरकरार है। मां महाकाली का ये स्वरूप अपने पारंपरिक रौद्र रूप से अलग सौम्य और शांत दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र के कसार समाज के लिए माता महाकाली कुलदेवी के रूप में विशेष आस्था का केंद्र है, तो नवरात्र के दिनों में बड़ी संख्या में भक्त माँ के दर्शन पूजन के लिए यहाँ पहुँचते।

0: इंदौर के प्रसिद्ध मां अन्नपूर्णा मंदिर में नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। मां के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्त जो है लगातार यहां पे पहुंच रहे हैं। करीब 70 साल पुराना मां अन्नपूर्णा का ये मंदिर सफेद संगमरमर से बना हुआ है और अपनी सुंदरता और भव्यता के कारण श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र है। माँ अन्नपूर्णा को अन्न और पोषण की देवी माना जाता है। मंदिर से जुड़ा अन्न क्षेत्र इसी सेवा भावना का प्रतीक है, जहाँ जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने की परंपरा को महत्व दिया जाता है। नवरात्रि के दौरान मंदिरों में भक्तों की संख्या बढ़ जाती है। सुबह से ही श्रद्धालु माँ के दर्शन के लिए पहुँचते हैं और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। यहाँ माँ के दर्शन के साथ सेवा और समर्पण का संदेश भी मिलता है।
1: 7-8 साल से यहाँ आ रहा हूँ। इस मंदिर की मान्यता बहुत पुरानी है कि माँ अन्नपूर्णा सबकी मनोकामना पूरा करती है, और अभी अभी नवरात्रि स्टार्ट हुआ है तो हम सब माँ का आशीर्वाद लेने आए हुए हैं अपने दोस्तों के साथ में।
2: आया हूँ मंदिर में, शांति रखती है बहुत ज्यादा, पैर रखते से काफी शांति का अभाव हुआ मुझे, और काफी समय से मन था मेरा यहाँ पे आके मिलने का। तो बस
3: माँ अन्नपूर्णा मतलब हमेशा 12 महीने लोगों के घर में अन्नपूर्णा का पूरा भंडार भर का आशीर्वाद देती है, और ये हमेशा मतलब जो है जागृत मंदिर है।
4: तो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी बना गोल्डन थीम पंडाल इस नवरात्र श्रद्धालुओं के बीच खूब सुर्खियां बटोर रहा है। जैसा कि इस पंडाल की थीम है, पूरा पंडाल सोने की दिव्य चमक दमक का एहसास करा रहा है। पंडाल के अंदर विराजमान मां दुर्गा की प्रतिमा को असली सोने के आभूषण से सजाया गया है। इसके साथ ही पंडाल में विराजमान कार्तिक, गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती मां की प्रतिमाओं को भी बेहद खूबसूरत सोने के आभूषणों से सजाया गया है। इन आभूषणों का वजन 100 किलोग्राम बताया जा रहा है। साथ ही इनकी करीब करीब कीमत जो है वो 140 करोड़ बताई जा रही है। पंडाल में सोने के आभूषणों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। मां की प्रतिमा के सामने 8 फीट ऊंचा बैरिगेट लगाया गया है। इस पंडाल को सेंट्रल कॉलोनी दुर्गा पूजा समिति ने बनाया है, जो इस वर्ष अपना 64वां वार्षिकोत्सव मना रही है।
0: झारखंड के धनबाद में भी दुर्गा उत्सव की जो रौनक है वो छाई हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शहर से लेकर गांवों तक पूजा समितियां अपने अपने पंडालों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में कतरास की GNM दुर्गा पूजा समिति की ओर से इस बार भव्य और आकर्षक पूजा पंडाल जो है तैयार किया गया है। इस पंडाल की खासियत यह है कि इसे थाईलैंड के मशहूर अरुण टेम्पल के प्रतिरूप में बनाया जा रहा है, जो कि अपनी अनूठी बनावट और सजावट की वजह से अभी से सुर्खियां बटोर रहा है। करीब 40 लाख रुपए की लागत से तैयार हो रहे इस पंडाल में शंख और सीप समेत अलग अलग सजावटी सामग्रियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पंडाल को भव्य रूप देने के लिए पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर से आए कारीगर पिछले 3 महीने से दिन रात मेहनत कर रहे हैं।
4: वहीं धर्म, आस्था और परंपरा की अनुपम छटा भी देखने को मिली। भक्तिभाव से सराबोर माहौल और जय श्री राम के गगनभेदी जयकारे संगम नगरी प्रयागराज में पारंपरिक श्रृंगार चौकियों की भव्य शोभा यात्रा ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया, सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। सजी धजी चौकियां, आकर्षक साज सज्जा और उत्साह के बीच सड़कों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। प्रभु श्री राम के आदर्शों और मर्यादा का संदेश देती इस परंपरा को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े और पूरी श्रद्धा के साथ इस ऐतिहासिक आयोजन के साक्षी बने। इस भव्य आयोजन का सबसे खास और भावपूर्ण क्षण तब आया जब कोतवाली में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की चौकियों का मिलन हुआ।
0: तो आज माता के चौथे रूप की स्वरूप की पूजा अर्चना हो रही है, और हमारे संवाददाता जो है लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, धनंजय सावले के पास चलते हैं, जो अकोला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय, पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं कि अकोला में खास तौर पर बहुत ही ज्यादा खास तरीके से नवरात्रि को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आपके पीछे महिलाएं नजर आ रही हैं, वो भी भक्ति गीत गा रही हैं। क्या अभी नजारा जो है वो देखने को मिल रहा है धनंजय?
5: बिल्कुल सरगम जी, देखिए यहाँ पर जो है महिलाओं का जो भजन मंडली है वो 9 दिन जो है माँ की आराधना साधना करते हैं भजन के जरिए। आप देख सकते हो कि यहाँ पर महिलाएं जो है वो अपने भजन में, माता के भजन में पूरी तरीके से लीन है। कुछ ही देर पहले यहाँ पे माता का जगराता भी हुआ था, और कितना प्रसन्न चेहरा हर महिला का है कि माँ के गुणगान गाते समय ये महिलाएं जो है वो पूरी तरीके से ये भजन कहने में। कुछ देर पहले इन्होंने फुगड़ी भेजो मराठी में एक पारंपरिक खेल और एक महिलाओं का खास खेल माना जाता है वो फुगड़ी, वो भी खेली गई। मानो माता के दरबार में जो है हर महिला जो है वो बेहद खुश नजर आती है, क्योंकि ये नौ दिन उनके लिए बेहद जो है एक आदर पूर्वक होते हैं, एक सम्मान के होते हैं। और इसीलिए देखिए आपकी यहाँ पर जो भजन मंडली है, हर जो है हर महिला जो है इस भजन में इतनी लीन यहाँ पर दिखाई दे रही है। मानो हमारा कैमरा जरूर उनके सामने है, लेकिन वो कैमरे के सामने न देखते हुए भजनों में इतने तल्लीन और इतने लीन हुए हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से ये भजन मंडली जो है यहाँ पर भजन गाते नजर आ रहे हैं, अब एक भजन खत्म हुआ है फिर से एक और भजन वो गाएंगे, क्योंकि इस महिलाओं को जो है वो बेहद ये नौ दिन बहुत महत्वपूर्ण होते, कितने महत्वपूर्ण होते हैं ये नौ दिन।
6: भजन गाएंगे बोलो गाओ
7: दो गर्दत गर्दत हमें समझ दो।

0: बेहद खूबसूरत ढोल मंजीरों की धुन और उस पर ये भजन कीर्तन अपने आप में बेहद भव्य नजारा है। अकोला से धनंजय जी आपके पास लौटेंगे, लेकिन फिलहाल रुक करते हैं मुंबई का और धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, इससे पहले आप पवई के पंडाल में मौजूद थे, अभी आप असल्फा के पंडाल में मौजूद हैं, वहां अलग थीम थी, इस पंडाल की क्या थीम है, क्या नजारा है, जरा दिखाइए एक बार।
1: बिल्कुल, कुछ देर पहले ही मैंने माता रानी का दर्शन कराया, फिर से एक बार मैं आपको करवाना चाह रहा हूँ। आप देख रहे हैं इस समय माता त्रिपुरा सुंदरी माँ कामाख्या देवी का ये दरबार है और वाकई में इतने सारे मुख के साथ यहाँ पर विराजमान हुई हैं। खास बात यह है कि नवरात्रि में ना बच्चे किस तरीके से चीजें कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक इनके समीप एक छोटी देवी भी यहाँ पर विराजमान है, जिनके सामने फल फ्रूट यहाँ पर रखे गए हैं और बहुत ही कायदे से, बड़े प्यारे तरीके से, बड़े ही अस्तीले से माता रानी का यहाँ पर लोग आते हैं, आशीर्वाद करते हैं, लेते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं, मिन्नतें करते हैं। खास बात यह है कि मैं वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश से कहूँगा कि थोड़ा सा तस्वीरें इस तरफ भी दिखाएं। ये देखिए तमाम बच्चे यहाँ पर इस समय मौजूद हैं, एक छोटी सी प्यारी सी देवी इस समय है मेरे साथ और ये कुछ बना रही है। बेटा जरा दिखाओ क्या बना रहे हो। अच्छा, इस बच्चे ने पूरी कोशिश करी है कि माता रानी की जो आकृति है, उनकी तस्वीर है, वो यहाँ पर निकाले, हालांकि ये माता रानी नहीं लग रही है। क्या नाम है आपका?
2: यशवी।
1: अच्छा, जोर से बोलो
2: यशवी।
1: जोर से बोलो जय माता दी, माता रानी की जय। जय भवानी, सब लोग बोलो जय भवानी।
3: जय अम्बे।
1: आवाज नहीं आ रही। जय भवानी।
3: जय अम्बे।
1: देवी मात की
3: जय।
1: आपका क्या नाम है?
2: लक्ष्मी।
1: लक्ष्मी नाम है। हमारे साथ लक्ष्मी है। कैसी लग रही हैं देवी?
2: अच्छी।
1: रोज आ जाते हो?
2: हाँ।
1: स्कूल नहीं जाना?
2: जाती हूँ।
1: आप क्या बोलोगे बेटा, क्या नाम आपका?
4: उत्कर्ष।
1: अच्छा, तो देखिए तमाम बच्चे यहाँ पर इस समय मौजूद है, लेकिन थोड़ा मंडल के हम सदस्यों से भी बात करेंगे, पदाधिकारी हमारे। क्या नाम है साहब?
5: शेखर ठाकुर।
1: शेखर, कितने साल हो गए और इस बार क्या अवतार है, क्या कहेंगे अपनी तरफ से?
5: अभी इस टोटल हमें 26 साल हो गए ये। हाँ। अभी इसके ये जो है त्रिपुरा सुंदरी है कामाख्या देवी, ये बेसिकली अगर देखा जाए तो तंत्र की देवी है ये, और बाकी
1: और कितने साल हो गए?
5: 26 साल हो गए।
1: अच्छा, ये बताइए क्या और कुछ यहाँ पे आप करते हैं नवरात्रि के उत्सव?
5: जैसे हम लोग यहाँ पे कैंप लगाते हैं, मेडिकल कैंप लगते हैं, जिसमें हड्डियों के हड्डी मतलब बेसिकली जो भी है मोतियाबिंदी के ऑपरेशन है वो फ्री में करवा के देते हैं मंडल हम लोग,
1: और भंडारा वगैरह
5: भंडारा होता है।
1: शेखर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब माता रानी आ रही थी, साकी नाका के माता रानी के नाम से मशहूर है, तमाम वीडियो तमाम वायरल, इतने लोग जुटे थे, कैसे आप लोगों ने सबको संभाला?
5: ये बेसिकली अब ये जो संभाल रहे तो माता रानी खुद संभाल रहे और ये हम लोग अपने आप वो टाइम पे आ जाते हैं, खाली हम बता
0: देते हैं। देख सकते हैं हम धर्मेंद्र किस तरीके से जो लोग हैं वो हर्षोल्लास से भरे हुए हैं, क्योंकि देखिए मौका ही ऐसा है, नवरात्र है, 9 दिन जो है माता रानी की पूजा आराधना होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें तमाम जानकारी देने के लिए और नवरात्र के बेहद ही खास रंग दिखाने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि भारत की आध्यात्मिक परंपरा सनातन धर्म और राष्ट्रीय एकता का संदेश लेकर प्रसिद्ध रामकथावाचक मुरारी बापू एक विशेष धार्मिक यात्रा पर निकले हैं, जिसका नाम है भारत स्वास्थ्य यात्रा। इस यात्रा का मकसद है देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद धार्मिक स्थलों को जोड़ना और लोगों के बीच धर्म, प्रेम, शांति और एकता का संदेश पहुंचाना। मुरारजी बापू की भारत स्वास्थ्य यात्रा 2 चरणों में हो रही है, जिसके पहले चरण की शुरुआत 10 अक्टूबर को कन्याकुमारी से हो चुकी है और 23 अक्टूबर को केदारनाथ पहुंचकर यात्रा का पहला जो चरण है वो समाप्त होगा। यात्रा का दूसरा चरण 14 नवंबर से 22 नवंबर 2026 तक चलेगा। इसकी शुरुआत गुजरात के द्वारका से होगी और यात्रा ओडिशा के जगन्नाथपुरी में होगी। यात्रा की शुरुआत से पहले कन्याकुमारी में उद्घाटन कार्यक्रम हुआ, जिसमें श्रृंगेरी शारदा पीठ के शंकराचार्य भी शामिल हुए। यात्रा के दौरान श्रद्धालु कई बड़े धार्मिक और ऐतिहासिक स्थानों से गुजरेंगे। इसमें श्रृंगेरी, हम्पी, ओंकारेश्वर, झांसी, मथुरा, कुरुक्षेत्र जैसे इलाके भी शामिल हैं।
4: प्रसिद्ध संत श्री मुरारी बापू की स्वास्थ्य की यात्रा शुरू हो गई और आप देखिए कितनी ज्यादा भीड़ है कन्याकुमारी में मौजूद है। ये यात्रा कन्याकुमारी से केदारनाथ तक जाएगी। बड़ी संख्या में यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो हिस्सा लेंगे और आपको बता दें कि कन्याकुमारी से शुरू होकर इस आध्यात्मिक परंपरा की यात्रा को लेकर।
6: और बुलेटिन में इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए शहर शहर गरबा के रंग।

बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में बिखरते रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: शक्ति उपासना का 4th दिन श्रद्धालु विधि विधान से कर रहे माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा, पूजा पंडालों में भी जन सैलाब।
8: झांसी में दिखा त्रेता जैसे जनकपुर का नजारा, 102 साल पुरानी राम बारात में उमड़ा आस्था का मेला, भव झांकियों ने मोहा सभी का मन।
7: उत्तर प्रदेश के महोबा में शक्ति उत्सव की धूम, गरबा और डांडिया महोत्सव में 350 से ज्यादा महिलाओं की मनमोहक प्रस्तुति, नन्ही बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
8: मध्य प्रदेश के दमोह पहुंची पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा, कल होगा यात्रा का समापन, बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु।
7: छठ दिवाली पर बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए गुड न्यूज, दिल्ली से पटना चलेगी 16 कोच की स्पेशल वंदे भारत ट्रेन, लगभग 13 घंटे में पूरा होगा सफर।
5: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

तो नवरात्र में गुजरात की धरती पर गरबा के अलग अलग जो रंग हैं वो देखने को मिल रहे हैं। कहीं हाथों में जलती मशालें और सिर पर अग्नि कलश लेकर अनूठा स्वास्तिक रास हो रहा है, तो कहीं 120 साल पुरानी डोरी डांस की परंपरा आज भी पूरे उत्साह से निभाई जा रही है। महिला पुलिस कर्मियों का गरबा हो या एक साथ 5,000 से ज्यादा लोगों का पारंपरिक गरबा रास, हर तस्वीर में भक्ति, संस्कृति और उत्साह का अद्भुत संगम जो है वो देखने को मिल रहा है। आधुनिकता के इस दौर में भी गुजरात की धरती अपनी प्राचीन परंपराओं को पूरे गर्व के साथ अपने साथ संजोए हुए है। गरबा का ये अनूठा रंग है जहाँ हर थाप में परंपरा है और हर कदम माँ की आराधना की ओर।

और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं बुंदेलखंड। बुंदेलखंड की ऐतिहासिक धरती महोबा में इस बार नवरात्रि का पर्व केवल भक्ति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये नारी शक्ति के शौर्य का गवाह भी बना। शहर के सरस्वती विद्या मंदिर कॉलेज में मंगलवार की रात मां चंडिका उत्सव समिति की ओर से भव्य गरबा और डांडिया नाइट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ माँ दुर्गा के चित्र के समक्ष द्वीप प्रज्वलन और छोटी बच्चियों द्वारा प्रस्तुत गणेश वंदना के साथ हुआ। इस कार्यक्रम का सबसे खास और आकर्षक हिस्सा रहा लड़कियों और महिलाओं का तलवार डांस। महोत्सव में 350 से ज्यादा महिलाओं ने न केवल गरबा की थाप पर नृत्य किया, बल्कि हाथों में चमचमाती तलवारें लहराकर समाज को महिला सशक्तिकरण और आत्मरक्षा का कड़ा संदेश भी दिया।

तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं गुजरात के जामनगर, जहां पे नवरात्र के रंग में रंगी शाम गरबा की थाप के साथ और भी ज्यादा खास बन गई। दिन में युवाओं ने गरबा की शानदार प्रस्तुतियां दी तो रात होते ही हाथों में जलती मशाले लेकर कलाकारों ने पारंपरिक स्वास्तिक रास की अद्भुत प्रस्तुति दी। गुजरात के जामनगर और आसपास के इलाकों में नवरात्र के दौरान स्वास्तिक रास की खास परंपरा देखने को मिलती है। आग की रोशनी, पारंपरिक धुनों और कदमों के तालमेल के बीच कलाकार इस रास को बेहद खास अंदाज में पेश करते हैं। स्वास्तिक की पवित्र आकृति से जुड़ा ये अनूठा आयोजन गुजरात की समृद्ध लोक संस्कृति और नवरात्र की आस्था का खूबसूरत संगम पेश करता है।

0: नवरात्रि में आधुनिक गरबा आयोजन का महत्व भले ही बड़ा हो, लेकिन सौराष्ट्र में आज भी प्राचीन गरबे का महत्व उतना ही है। राजकोट में बेटियों ने दोनों हाथों में मशाल और सर पर आग में लिपटा हुआ गरबा लेकर माता जी की आराधना की। इस दौरान स्टेज पर फायर सेफ्टी की पूरी व्यवस्था भी की गई। सिर्फ 6 लड़कियों को ही इस खास रास को करने का अवसर मिलता है। जिन्हें ये मौका मिलता है वे स्वयं को भाग्यशाली मानती हैं और इस रास से पहले कई दिनों तक विशेष अभ्यास भी करा जाता है। ये गरबा रास नवरात्र के तीसरे, छठे और नवे दिन आयोजित किया जाता है, जिसे देखने के लिए हजारों लोग यहाँ उमड़ पड़ते हैं। पिछले 19 वर्षों से बजरंग गरबी मंडल में जलते गरबा का रास आयोजन किया जा रहा है।
1: पहले ये गरबी की प्रैक्टिस शुरू करवा देते हैं। दो महीने पहले ही हमको ये रास की शुरुआत प्रैक्टिस करने के लिए बुला लेते हैं। नवरात्रि से पहले हम 3 से 4 बार इसमें प्रैक्टिस करते हैं। नहीं, डर नहीं लगता क्योंकि नव दुर्गा माँ हमारे साथ खेलती होता, डरने की तो कोई बात ही नहीं है।
2: ये रास करने के लिए हमें 2 महीने अगाउ प्रैक्टिस करनी पड़ती है और ये रास 6 बार ही कर सकती है। रास करते समय मुझे ऐसा फील होता है कि साथ नव दुर्गा हमारे साथ खेल रही है।
3: इस रास की खासियत है वो सड़क पे इंडोनी रास बोलते हैं इसको, वो माथे पे इंडोनी, उसके ऊपर गरबा, उसके ऊपर इंडोनी और दो, एक हाथ में 2 मसाल और सड़क पे वो रास रजू करते हैं। हम सरकार की गाइडलाइन मुझे फायर सेफ्टी वगैरह जो साधन हो उसके सेफ्टी के लिए रखते हैं हम सब।
4: कितने साल से ये रास?
3: 18 साल है और 19 में प्रवेश किया है हमने।
5: आधुनिक दौर में गरबा के भव्य आयोजन, एसी डोम और हाई प्रोफाइल गरबा नाइट्स लोगों को खूब आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन गुजरात में आज भी ऐसी परंपराएं जिंदा है, जीवंत हैं, जिनकी पहचान आधुनिकता से नहीं बल्कि अपनी अनूठी विरासत से है। ऐसी ही एक परंपरा है नवसारी जिले के गणदेवी शहर के कुम्भारवाड़ इलाके का पारंपरिक डोरी राज। यहाँ हनुमान जी मंदिर के प्रांगण में नवरात्र के दौरान युवा पारंपरिक अंदाज में डोरी राज खेलते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि डोरी और डांडिया का अनूठा मेल इसमें होता है। डोरी के साथ डांडिया बांधकर कलाकार लय और ताल के साथ रास प्रस्तुत करते हैं। कदमों का तालमेल और डोरी को साधने का हुनर इस नृत्य को दूसरे गरबा आयोजनों से अलग पहचान देता है।
0: करीब 120 वर्षों से चली आ रही ये परंपरा लगभग 10 पीढ़ियों से आगे बढ़ाई जा रही है। बदलते दौर में भी स्थानीय युवा इसे पूरे उत्साह के साथ निभा रहे हैं। डोरी रास आज सिर्फ नृत्य नहीं बल्कि गणदेवी के सांस्कृतिक पहचान और पीढ़ियों से सहेजी जा रही विरासत का प्रतीक बन चुका है।
6: 68 इयर्स हमारी अभी उम्र है, तो मैं जब छोटा सा तब से खेलता हूँ। अभी 68 वर्ष का हुआ, मेरा पिता भी अभी 100 वर्ष साल के ऊपर हो गया, ऑफ हो गया, तो ये भी खेला था, मेरा दादा भी खेला था और ये लगभग 120 वर्ष पहले की ये परंपरा है। और 120 वर्ष पहले जब भी वो हमारा बाप दादे प्रजापति है, हम तो कुंभारी काम करते थे, कोई सुथारी काम करते थे।
7: जो वडील हमारे गरबा गाते हैं उस पर गरबा की ताल झूमते हैं और हमारा पौराणिक 120 साल पुराना डोरी रास खेलते हैं, जिसमें 12 खिलैये होते हैं जो 6-6 की जोड़ी में गरबे की स्टेप लेके लेते हुए घूमते हैं और फिर वो गुट्ठा जो चोटला होता है ऐसे गुट्ठा बनाते हैं और फिर ऐसे उसे इसे गर्व के स्टेप लेते रहते फिर से खोलते हैं।
0: तो भक्ति और आस्था का पर्व नवरात्र शुरू हो चुका है। पूरे देश में, खासकर गुजरात में, शक्ति उपासना के पर्व की रौनक हर तरफ बिखरी हुई है। भव्य पंडालों में गरबा डांडिया नाइट्स के लिए शानदार मंच और मैदान सजे हैं। आस्था, उल्लास और भक्ति के इस संगम के बीच चनिया चोली, साड़ियां, कुर्ते और पारंपरिक आभूषणों में सजी महिलाएं और पुरुष गरबा के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं।

0: नवरात्र उत्सव के ये रंग गुजरात में जगह जगह देखने को मिल रहे हैं। यहाँ के लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है गरबा का रोमांच। ये सिर्फ नृत्य नहीं बल्कि माँ की शक्ति के प्रति भक्ति का एक ऐसा रंग है जो हर किसी को हर्ष से सराबोर कर देता है। शक्ति की आराधना के इस उत्सव में सूरत भी चमक रहा है। सूरत के इस विशाल पंडाल में गरबा का यह भव्य आयोजन हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ढोल नगाड़ों की थाप पर हजारों लोग माँ की आराधना में झूम रहे हैं। महिलाएं खूबसूरत चनिया चोली में सज रही हैं, तो वहीं पुरुष भी पारंपरिक केडियो, जो एक खास तरह का प्रिंटेड या कढ़ाई वाला कुर्ता होता है, के साथ धोती पहने खूब फब रहे हैं। शक्ति की आराधना के इस जश्न में कोई माँ दुर्गा के वेश में नजर आया तो किसी ने जगन्नाथ का रूप धारण किया।
1: जगन्नाथ पुरी का फेस बनाया है और पगड़ी पहनी है। मैं 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ। मैं तो बोलना चाह रहा हूँ कि आप सब भी आओ और यशवी फैमिली के साथ सब मजा करो।
0: टोलियां बनाकर गरबे की धुन पर नाचते झूमते इस जन सैलाब में महिलाओं और पुरुषों का उत्सव देखते बन रहा है।
2: बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर गरबा खेल के। हम लोग पिछले 15 साल से गरबा खेल रहे हैं और हम लोग पूरे साल में उत्सव कर रहे हैं। गरबा का आज हमारा गरबा का दूसरा दिन है, लेकिन बहुत मजा आ रहा है। पूरे साल हम लोग वेट करते हैं। हम लोग 5 महीने पहले से प्रैक्टिस चालू कर लेते हैं गरबा खेलने का। बहुत मजा आता है हम लोग को गरबा खेलने में।
0: इस जश्न में क्या आम क्या खास, हर शख्स पूरी आस्था के साथ सम्मिलित होता है। अहमदाबाद के आईपीएस मेस में आयोजित नवरात्रि गरबा महोत्सव में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी दोनों शामिल हुए। मां की विशेष आरती के साथ गरबा पंडाल का उद्घाटन हुआ। सीएम और डिप्टी सीएम समेत पुलिस के सभी आला अफसर और उनके परिवार ने अम्बे माँ के दरबार में शीश झुकाया। इसके बाद गरबा के ऐसे रंग बिखरे कि हर कोई झूमने पर मजबूर हो गया। इस कार्यक्रम में उत्सव का माहौल दिखा, जिसमें डिप्टी सीएम हर्ष संघवी भी गरबा की पारंपरिक धुन पर थिरकते नजर आए। गुजरात के उत्सव की धड़कनों में गरबा बसता है। जब गरबा और डांडिया शुरू होता है तो गुजरात में जैसे सारी दुनिया समा जाती है। राजकोट में गरबा के इसी रूप का शानदार नजारा देखने को मिला। रासलीला गरबा महोत्सव में जहां पंडाल में पारंपरिक गरबा में एक साथ 5,000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ गरबा किया, ये अद्भुत नजारा हर किसी को मुग्ध करने वाला रहा। इस महोत्सव में गरबा खेलने वालों की भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो माँ के भक्तों का सैलाब ही उमड़ पड़ा हो। रंग बिरंगे परिधान और गुजराती गीतों के धुन पर लोग दिल खोल कर झूमते दिखे। गायक गायिकाओं और वाद्य यंत्र से निकलते सुर गरबा में शामिल लोगों को जोश से भर रहे थे, तो अलग अलग वेशभूषा वाले सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। इतने बड़े पैमाने पर आयोजित गरबा महोत्सव से अलग जामनगर में 8 दशक से भी ज्यादा पुराना पारंपरिक गरबा अभी भी लोकप्रिय है, जिसका नाम है अठंगारास। गोप गुंडन राज और कान गोपी राज के नाम से भी जाना जाता है।
3: हम लोग अठंगा रास भी खेलते हैं, तो भगवान द्वारकाधीश ने गोपियों के साथ किया था, वही रास हम यहाँ पे रजू करते हैं।
0: भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़ा श्री आशापुरा गरबी मंडल का ये पारंपरिक रास श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। इस रास में मंडल के 16 सदस्य रस्सियों के माध्यम से तालमेल और अनुशासन के साथ प्रस्तुति देते हैं। रास की अनूठी शैली और कलाकारों के बीच शानदार समन्वय दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। समय के साथ अनेक बदलाव आए हैं, लेकिन जय श्री आशापुरा गरवी मंडल ने अपनी मूल परंपरा, संस्कृति और गौरव को आज भी अक्षुण बनाए रखा है। वाकई में हर साल जब गरबा का उत्सव का शुभारंभ होता है तो गुजरात की रौनक अलग ही रहती है। परंपराओं के निर्वहन के साथ ही बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं, जहां हजारों लोग शामिल होते हैं और देर रात तक गरबा खेला जाता है। जामनगर से दर्शन ठक्कर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: तो शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर मंदिरों के साथ साथ शक्ति पीठों में भी श्रद्धालुओं की आस्था उमड़ रही है। नवरात्र के दौरान हिमाचल प्रदेश के शक्ति पीठों में भी देश भर से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देवी माँ के प्रति आस्था रखने वाली कई जानी मानी हस्तियाँ भी शक्ति पीठों की यात्रा पर निकल रही हैं। प्रसिद्ध कथावाचक जय किशोरी भी कांगड़ा में मौजूद माँ ब्रजेश्वरी देवी के दरबार में पहुंची। यहाँ उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना कर माता रानी का आशीर्वाद लिया और माँ के चरणों में अपना शीश नवाया। और अब आस्था की ताकत और हुनर का अनोखा संगम देखिए। गुजरात के राजकोट में डॉक्टर निकुंज वागड़िया ने महज 1 सेंटीमीटर चौड़ी और 4 सेंटीमीटर लंबी हनुमान चालीसा लिखी है। 21 पनों की इस चालीसा का वजन सिर्फ 1 ग्राम है। दावा यह है कि दुनिया की सबसे छोटी हनुमान चालीसा ये है। डॉक्टर निकुंज इस हनुमान चालीसा को अपनी बहादुरी से देश का नाम ऊंचा करने वाले कैप्टन स्मिथ मछार को गिफ्ट करना चाहते हैं।
0: आकार में इतना छोटा है कि उंगलियां भी बड़ी दिख रही हैं, पर आस्था इतनी बड़ी है कि लिखते लिखते पूरी हनुमान चालीसा लिख डाली। लिखावट छोटी है पर साफ है। सिर्फ देखने दिखाने के लिए नहीं लिखी गई है, बल्कि इसे आसानी से पढ़ा जा सके, इसे लिखा है गुजरात के डॉक्टर निकुंज वागड़िया ने। डॉक्टर निकुंज मिनिएचर आर्टिस्ट है। उनका दावा है कि उन्होंने दुनिया की सबसे छोटी हनुमान चालीसा लिखी है। इसका आकार महज 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 4 सेंटीमीटर लंबा है। इसमें कुल 21 पन्ने हैं और इसका वजन 1 ग्राम है। आकार इतना छोटा है कि इसे छोटी सी शीशी में संभाल कर रखा जा सकता है। डॉक्टर वागड़िया ने इस हनुमान चालीसा को कैप्टन स्मिथ के नाम किया है। कैप्टन स्मिथ ने अपनी बहादुरी से फ्लाइंग दुबई के 180 यात्रियों की जान बचाई थी। कैप्टन स्मिथ ने बताया था कि जब वो को-पायलट के हमले से जख्मी हुए थे, तब उन्हें हनुमान चालीसा पढ़ने से ही शक्ति मिली थी। ये सुनकर ही डॉक्टर निकुंज को ये आइडिया आया।
5: मिनिएचर आर्टिस्ट होने के नाते मैंने विश्व की सबसे छोटी हनुमान चालीसा लिखी है। एक 10mm x 40mm उसकी साइज़ है और ये दुनिया की सबसे छोटी हनुमान चालीसा है, जो जिसका वेट है वो 1 ग्राम ही है और जिसका नॉमिनेशन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हुआ है। तो वो स्पेशली मैंने कैप्टन के लिए तैयार की है और मैं उनको गिफ्ट देना चाहता हूँ, क्योंकि अब दूसरी बार ऐसी कोई भी दुर्घटना उनके साथ ना बने और ऐसा कुछ भी हो तो हनुमान जी का पूर्ण रक्षा उन्हें प्राप्त हो, इसलिए मैंने खास उनके लिए ये सबसे छोटी वाली हनुमान चालीसा तैयार की है, जो विश्व में एक ही है।
0: इस हनुमान चालीसा को खास कागज पर लिखा गया है ताकि ये लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। इसका फॉन्ट भी पुराने धार्मिक ग्रंथों जैसी रखी गई है। डॉक्टर निकुंज वागड़िया के नाम 258 मिनिएचर किताबें लिखने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये रामायण और महाभारत जैसे बड़े ग्रंथों को भी छोटे आकार में लिख चुके हैं। राजकोट से रौनक मजेठिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: तो चलिए लंच टाइम में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको ले जाएंगे जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियों के बीच।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में बिखरते रिश्ते। 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
7: और चलिए आपको जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियों में लिए चलते हैं, जहां पर्यटन नगरी गुलमर्ग और गुरेज में बर्फबारी के बाद एक अलग ही नजारा देखने को मिला। हरी भरी पहाड़ियां अब सफेद बर्फ की चादर से ढक गई हैं। गुलमर्ग के ऊंचाई वाले इलाकों में जिसमें बूटा पथरी भी शामिल है, में ताजा बर्फबारी हुई है, जिसके बाद पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। उत्तरी कश्मीर की वादियों में बर्फ की नई परत जमने से यहां का नजारा बेहद खूबसूरत हो गया है। खासतौर पर बूटा पथरी में बर्फबारी के बाद पहाड़ों और आसपास के इलाकों में सफेद चादर ओढ़ ली है। पहाड़ी इलाकों में पारा गिरने के साथ मैदानी क्षेत्रों में भी गुलाबी ठंड देखने को मिल रही है। गुलमर्ग और गुरेज में मौसम के इस बदले मिजाज ने जहां कश्मीर की वादियों में खूबसूरती ला दी है, वहीं वहां चार चांद भी लगा दिए हैं। फिलहाल उत्तरी कश्मीर के उन ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद कुदरत का मनमोहक नजारा देखने को मिल रहा है, और आने वाले समय में पूरी घाटी सफेद बर्फ की चादर से ढकी होगी।
8: पूरे कश्मीर में गुरुवार से ही मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हुई, जबकि मैदानी इलाकों में बारिशों के कारण अब ठंड ने दस्तक दी है। अगर श्रीनगर में दिन के तापमान की बात की जाए तो मात्र मंगलवार को 15 डिग्री सेंटीग्रेड श्रीनगर का अधिकतम तापमान रहा, जबकि पहाड़ी इलाकों में खासतौर से गुलमर्ग और गुरेज में तापमान शून्य के आसपास ही रिकॉर्ड किया गया, वो भी रात के बीच में। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल आने वाले 48 घंटे तक पहाड़ों पर और हल्की बर्फबारी हो सकती है, जिससे अब पूरी तरह से कश्मीर में ठंड की शुरुआत हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद मौसम फिर संभलेगा। लेकिन पहाड़ों पर हुई इस ताज़ा बर्फबारी से लोगों ने राहत भी ली है, क्योंकि कश्मीर में पिछले कई हफ्तों से सूखे का मौसम चल रहा था, लेकिन अब इस बर्फबारी ने न सिर्फ किसानों के लिए जो है एक राहत लाई है, बल्कि साथ ही साथ अब कश्मीर में विंटर टूरिज्म की भी शुरुआत इस बर्फबारी के साथ होने लगी है। गुड न्यूज टुडे के लिए श्रीनगर से अशरफ वानी।
9: तो देखिए कश्मीर की वादियों में बर्फबारी तो रंग जमा ही रही है, साथ ही श्रीनगर में जश्न डल ने भी पर्यटकों का दिल जीत लिया है। डल लेक में झील की खूबसूरती, कश्मीर की समृद्ध संस्कृति और यहाँ की परंपराओं का संगम जो है वो देखने को मिल रहा है। जश्न डल के जरिए पर्यटकों को कश्मीर की खूबसूरती और सांस्कृतिक विरासत को करीब से महसूस करने का, उसे एक्सपीरियंस करने का मौका दिया जा रहा है। डल झील की दिलकश वादियों के बीच इस उत्सव ने लोगों का दिल जीत लिया है। वैसे डल लेक के नज़ारा के अलावा यहाँ पर्यटकों के लिए वाटर स्पोर्ट्स का भी आयोजन किया गया है। स्थानीय लोगों से लेकर पर्यटक इन स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रहे हैं। दरअसल ये खिलाड़ियों के लिए उत्साह बढ़ाने वाला मौका है।
10: ये एक प्रोग्राम जो है हर साल जेएनके पुलिस ऑर्गेनाइज करती है और इसको बहुत एंथुजियाज्म के साथ कश्मीर में वेट किया जाता है। ये सिर्फ एक जश्न कश्मीर में इस डल लेक का ही नहीं है, ये मैं बल्कि कहूँगा ये जश्न कश्मीर है कि ये जो हमारा जो कश्मीर का रिच कल्चर है, ट्रेडिशन है, हेरिटेज है, उन सब का एक बहुत अच्छा मुजाहरा है।
11: मैं बहुत ही अच्छी नज़र से इसको देखती हूँ क्योंकि मतलब मैं बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड भी थी दो दिन से, एंड मैं बहुत ज़्यादा मतलब जो जैन के स्पोर्ट्स पुलिस टीम है मैं उसको बहुत ज़्यादा मैं उनकी बहुत ज़्यादा ग्लैड और थैंकफुल हूँ क्योंकि उन्होंने ये इवेंट किया। इस जो ड्रैगन इस जो जश्न डल है इसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा मतलब जो नेशनल हो इसमें हमें बहुत ज़्यादा मतलब स्कोप बहुत ज़्यादा है। कायाकिंग, कैनोइंग है, डैम बोट है, स्विमिंग है, ड्रैगन बोट है, एंड मैं पर्सनली ड्रैगन बोट खेल रही हूँ एंड मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है ड्रैगन बोट में। अभी तो अच्छा जा रहा है, हम देख रहे हैं, लास्ट ईयर भी हमने पार्टिसिपेट लिया था और ये सेकेंड एडिशन है जो मैंने पार्टिसिपेट लिया है इसमें। अभी यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, ड्रैगन बोट हो रहा है, कैनो हो रहा है और पार्टिसिपेशन गर्ल्स का भी है, बॉयज़ का भी है सेम।
7: तो चीन में एक पुरानी और खतरनाक इमारत को खूबसूरत पार्क में बदल दिया गया है। खास बात यह है कि यहाँ एक बड़ा बरगद का पेड़ इमारत की दीवारों और छत के बीच से फैला हुआ है। पेड़ की छांव में लोग आराम कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे एक बेकार पड़ी इमारत लोगों के लिए खास जगह बन गई।
12: एक पुरानी इमारत जो कभी खतरा बनी हुई थी आज लोगों के लिए सुकून की जगह बन गई है। चीन के फुजियान प्रांत के क्वांजोज शहर में इस जगह को एक छोटे से पार्क में बदल दिया गया है। इसे पॉकेट पार्क कहा जाता है, यानी ऐसी छोटी जगह जहां लोग कुछ देर बैठ सके और आराम कर सके। इस पार्क के दरवाजे को बेहद खास तरीके से सजाया गया है। यहाँ चीनी मिट्टी के टूटे टुकड़ों से बनी कलाकारी और पारंपरिक डिजाइन देखने को मिलते हैं। ये डिजाइन इस इलाके की पुरानी संस्कृति की झलक दिखाते हैं। लेकिन इस जगह की सबसे खास बात है ये विशाल बरगद का पेड़। इसकी जड़ें और शाखाएं पुरानी इमारत की दीवारों और छत के साथ फैल गई हैं। पेड़ की घनी पत्तियां धूप से बचाती हैं और नीचे ठंडी छांव देती है। इसी वजह से इस जगह को ट्री हाउस यानी पेड़ वाला घर कहा जा रहा है। करीब 400 स्क्वायर मीटर में फैले इस पार्क को तैयार करने में 5 महीने से ज्यादा का वक्त लगा। ये इमारत कई सालों से खाली पड़ी थी और खतरनाक मानी जाती थी। अब इसे नया रूप देकर लोगों के लिए खोल दिया गया है। आसपास रहने वाले लोग यहां आ सकते हैं और छांव में बैठ सकते हैं और कुछ पल सुकून से बिता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: तो चलिए इसी के साथ लंच टाइम में आज के लिए बस इतना ही।
7: बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
6: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
7: शक्ति उपासना का चौथा दिन, श्रद्धालु विधि विधान से कर रहे मां दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा, पूजा पंडालों में भी जनसैलाब। झांसी में दिखा त्रेता जैसी जनकपुर का नजारा, 102 साल पुरानी राम बारात में उमड़ा आस्था का मेला, भव्य झांकियों ने मोहा मन। उत्तर प्रदेश के महोबा में शक्ति उत्सव की धूम, गरबा डांडिया महोत्सव में 350 से ज्यादा महिलाओं की मनमोहक प्रस्तुति, नन्ही बच्चियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश के दमोह पहुंची पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा, कल होगा यात्रा का समापन, बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। दिवाली पर बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए गुड न्यूज, दिल्ली से पटना चलेगी 16 कोच की स्पेशल वंदे भारत ट्रेन, लगभग 13 घंटे में पूरा होगा सफर।
5: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
7: नवरात्रि के चौथे दिन देशभर में आज मां दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की हो रही है पूजा, मान्यता है कि मां कुष्मांडा ने अपनी मुस्कान से की थी ब्रह्मांड की रचना। पूरे ब्रह्मांड के तेज की स्वामिनी मानी जाती है मां कुष्मांडा, मां कुष्मांडा की पूजा उपासना से रोग शोक का होता है नाश। शेर पर सवार 8 भुजाओं वाली बेहद शांत मुद्रा की भक्त वत्सल देवी है मां कुष्मांडा, हाथों में कुंभ चक्र गदा सिद्धि निधि का जाप करने वाली माला कमल का फूल और अस्त्र शस्त्र धारण करती है मां कुष्मांडा। हरे वस्त्र धारण करके करना चाहिए मां कुष्मांडा का पूजन, मान्यताओं के मुताबिक मां कुष्मांडा को मालपुआ पेठा कद्दू की मिठाई का लगा सकते हैं भोग। मां की उपासना से जन्म जन्मांतर के कष्ट और निराशा नष्ट होते ही, जानकार बताते हैं कि मां कुष्मांडा की कृपा से आयु यश बल और धन में अपार वृद्धि होती है। दिल्ली के झंडेवालन मंदिर में नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा का भव्य तरीके से किया गया श्रृंगार। मां कुष्मांडा की उतारी गई आरती, आरती में बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। श्रद्धालुओं ने जमकर लगाए जय माता दी के जयकारे, भक्तों ने पूजा कर लिया मां का आशीर्वाद। दिल्ली के छतरपुर में नवरात्र को लेकर उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में लोगों ने की मां की पूजा। सुबह से छतरपुर मंदिर में लगी भक्तों की भीड़, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। हैदराबाद में देवी नवरात्र के चौथे दिन चार मीनार स्थित भाग्य लक्ष्मी मंदिर में महाआरती का आयोजन, सुबह से दर्शन के लिए लगी लंबी कतार। मां भाग्य लक्ष्मी मंदिर में मां का किया गया विशेष श्रृंगार, भक्तों ने जमकर लगाए जयकारे। देवी नवरात्र के चौथे दिन हैदराबाद के भाग्य लक्ष्मी मंदिर में श्रद्धालुओं ने मां की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। पुरी में नवरात्र के चौथे दिन भगवान जगन्नाथ की उतारी गई विशेष आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतारें, भक्तों ने जमकर लगाए जयकारे। अकोला में मां सप्तरिंगी का प्राचीन मंदिर में उमड़ी आस्था, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन पूजन। सप्तशृंगी मंदिर में विजयादशमी के दिन सोना अर्पित करने की है विशेष परंपरा, श्रद्धालु मां के चरणों में सोना चढ़ाकर अपनी आस्था करते हैं प्रकट। मां सप्तशृंगी मंदिर में श्रद्धालु मां की पूजा अर्चना कर परिवार की सुख समृद्धि और मनोकामनाओं की जमकर लगाते हैं जयकारे। जयपुर में नवरात्र के चौथे दिन मां वैष्णो देवी का भव्य श्रृंगार, मां को विशेष नीले रंग की साड़ी पहनाकर फूलों से सजाया गया दरबार। मां के श्रृंगार की खास परंपरा, दिन भर 4 से 6 बार तक बदल दी जाती है साड़ी, मां की साड़ी सबसे ज्यादा सुंदर और अलग। जमशेदपुर में दुर्गा पूजा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह, पूजा पंडालों में मां दुर्गा के दर्शन के लिए लग रही है लोगों की भीड़। जमशेदपुर के विश्वजीत मेल पूजा पंडाल को काल्पनिक थीम पर भव्य तरीके से सजाया गया, भगवान विष्णु के सभी अवतारों को दर्शाया गया। पूजा पंडाल के जरिए सनातन संस्कृति को जीवंत रखने की पहल, पंडाल बना आकर्षण का केंद्र। रायसेन में नवरात्र के चौथे दिन मां कंकाली मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किए। नवरात्र के अवसर पर मां कंकाली के दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंच रहे श्रद्धालु, भक्तों ने की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना। प्रयागराज में पारंपरिक श्रृंगार, चौकियों की भव्य शोभा यात्रा, सजी धजी चौकियां और जय श्री राम के जयकारों के बीच श्रद्धालु भक्ति और उत्साह में सराबोर नजर आए। प्रयागराज की रामलीला परंपरा में कोतवाली में भगवान श्री राम और लक्ष्मण की चौकियों का खास मिलन। श्रृंगार चौकियों की शोभा यात्रा धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विरासत की अनूठी मिसाल, प्रभु श्री राम के आदर्शों और मर्यादा का संदेश देती इस परंपरा को देखने के लिए बड़ी संख्या में जुटे यहां श्रद्धालु। अकोला के प्राचीन महाकाली मंदिर में उमड़ी श्रद्धा, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए मां के दर्शन। महाराष्ट्र के अकोला स्थित मां महाकाली मंदिर में मराठी और हिंदी में आरती करने की वर्षों पुरानी परंपरा, कासार समाज नवरात्र में करते हैं विशेष पूजा। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की रौनक, अलग अलग थीम पर बनाए गए दुर्गा पूजा पंडाल। हावड़ा के सहयात्री क्लब ने तैयार किया भव्य दुर्गा पूजा पंडाल, केदारनाथ धाम की थीम पर तैयार किया गया भव्य पूजा पंडाल। केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर बनाए गए मंडप को देखने पहुंच रहे हैं श्रद्धालु और दर्शक, पंडाल के जरिए हावड़ा में केदारनाथ की यात्रा का अनुभव ले सकेंगे श्रद्धालु। मंडप के निर्माण में प्राकृतिक सामानों का किया गया इस्तेमाल, अग्निरोधी सुरक्षा को ध्यान में रखकर भी किया गया निर्माण। लगभग 26 लाख रुपए की लागत से करीब 2 महीने में तैयार किया गया पूजा पंडाल, उद्घाटन के बाद आम दर्शकों के लिए खोला जाएगा मंडप। पश्चिम बंगाल महाअष्टमी से पहले ही दिखने लगी है यहां दुर्गा पूजा की रौनक, पुरुलिया में तैयार किया गया भव्य दुर्गा पूजा पंडाल। पुरुलिया की नडीहा बारोयारी दुर्गा पूजा कमेटी का दुर्गा पंडाल बना आकर्षण का केंद्र, टेराकोटा थीम पर तैयार किए गए पूजा पंडाल देखने पहुंच रहे श्रद्धालु। इस साल अपना 100वां साल मना रही है नडीहा बारोयारी दुर्गा पूजा कमेटी, खास अंदाज में बेहद सुंदर तरीके से की गई पंडाल की सजावट। पंडाल की सजावट में बंगाल की पारंपरिक कला और स्थानीय सांस्कृतिक शैली दिख रही है, पंडाल की थीम के साथ तैयार की गई मां दुर्गा की बेहद सुंदर प्रतिमा। दुर्गा पूजा पंडाल और दुर्गा प्रतिमा की सजावट में बारीक कलाकारी और पारंपरिक शिल्प का किया गया इस्तेमाल। पंडाल में की गई लाइटिंग लगा रही है चार चांद। कोलकाता के कालीघाट में मिलन संघ दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन। पंडाल के उद्घाटन कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हुई शामिल। हरियाणा के करनाल में दशहरे की तैयारी। तैयार किया जा रहा 75 फीट ऊंचा रावण। अब की बार गर्दन घुमाकर लोगों को देखेगा रावण का पुतला। करनाल में रावण के पुतले बनाने में जुटे मुस्लिम कारीगर। पिछले 20 साल से यूपी से आकर यहां दशहरे के लिए रावण के पुतले बनाता है ये परिवार। त्योहार के बीच रेल यात्रा करने वालों के लिए राहत वाली न्यूज। पटना से नई दिल्ली के बीच चलेगी वंदे भारत पूजा स्पेशल ट्रेन। नई दिल्ली से 16 अक्टूबर 18 अक्टूबर और 21 अक्टूबर से 25 नवंबर तक पटना के लिए हर सोमवार बुधवार और शनिवार को चलेगी पूजा स्पेशल वंदे भारत ट्रेन। झांसी में 102 साल पुरानी राम बारात धूमधाम से निकली। भगवान श्री राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के स्वरूपों के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। राम बारात में भगवान शिव और माता पार्वती की झांकी बनी लोगों के आकर्षण का केंद्र। श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा और आरती कर भगवान का स्वागत किया। बैंड बाजा धार्मिक झांकियों और जय श्री राम के जयकारों से गूंजा पूरा इलाका। मां काली की झांकी अग्नि प्रदर्शन और दक्षिण भारत से आए कलाकारों ने दी शानदार प्रस्तुति। लोगों ने कैमरे में कैद की तस्वीरें।

0: राजकोट में अग्नि गरबा के दौरान छह महिलाएं सर पर जलते हुए गरबा के बर्तन और हाथों में मशाले लेकर नृत्य करती नजर आई, लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने। राजकोट में बजरंग गरबी मंडल की अग्नि गरबा परंपरा लगातार 18वें साल भी जारी, नवरात्रि के दौरान पेश किया जाने वाला यह अनोखा आयोजन गुजराती संस्कृति और पारंपरिक गरबा है। अहमदाबाद नवरात्रि गरबा महोत्सव का आयोजन, सीएम भूपेंद्र पटेल और डिप्टी सीएम हुए शामिल। नवरात्रि के अवसर पर महाआरती का भी आयोजन, सीएम भूपेंद्र पटेल और डिप्टी सीएम हर सांगवी ने मां जगदम्बा की आरती कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। जामनगर में नवरात्रि के दौरान काठियावाड़ के युवाओं ने जलते हुए अंगारों पर किया स्वास्तिक राज, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। जामनगर के काठियावाड़ में नवरात्रि के अवसर पर युवाओं ने 52 साल पुरानी परंपरा निभाई, जलते अंगारों पर रास कर युवाओं ने धार्मिक आस्था और परंपरा का अनूठा उदाहरण पेश किया। जामनगर में नवरात्रि में आस्था और परंपरा का अनोखा संगम, नवरात्रि के दौरान काठियावाड़ का स्वास्तिक रास आकर्षण का केंद्र बना। वडोदरा में गरबा के रंग में रंगी महिला पुलिसकर्मी, पारंपरिक गरबा पोशाक में आई नजर। वडोदरा में नवरात्रि के उत्साह के बीच महिला पुलिसकर्मियों का पारंपरिक गरबा लुक आकर्षण का केंद्र बना, रंग बिरंगे गुजराती परिधानों ने बढ़ा दी उत्सव की रौनक। सूरत में गरबा उत्सव की धूम, पारंपरिक गुजराती परिधानों में महिला और पुरुषों ने गरबा किया। नवरात्र के चौथे दिन गरबा महोत्सव में उत्साह चरम पर, ढोल की थाप और संगीत पर झूमते नजर आए लोग। नवरात्र के गरबा महोत्सव में महिलाओं ने सुरक्षा इंतजामों की सराहना की, रात 3 बजे तक गरबा डांस किया। नवसारी में भी गरबा की रौनक, बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। नवसारी में पारंपरिक डोरी रास की अनूठी छटा, करीब 120 साल से चली आ रही है ये परंपरा। अयोध्या में इस साल भी दीपोत्सव पर नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी, इस साल 30 लाख दिए जलाने की है योजना। आगामी त्योहारों को लेकर यूपी पुलिस सतर्क, लखनऊ जोन के एडीजी प्रवीण कुमार ने अयोध्या में तैयारियों की समीक्षा की और अफसरों को जरूरी निर्देश दिए। असम के नाहरकटिया और आसपास के इलाके के युवाओं को मिली बहुउद्देशीय खेल परिसर की सौगात, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने किया उद्घाटन। क्रिकेट ग्राउंड, तैराकी पूल, फुटबॉल ग्राउंड और एथलेटिक्स की सुविधाओं से लैस है नाहरकटिया खेल परिसर। इंदौर में भारत वेस्टइंडीज T20 मैच के बाद नगर निगम में चला विशेष सफाई अभियान, 3 दिन की सफाई में निकले सूखे कचरे को किया गया रिसाइकल।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में बिखरते रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: शक्ति उपासना का चौथा दिन श्रद्धालु विधि विधान से कर रहे माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा, पूजा पंडालों में भी जनसैलाब। झांसी में दिखा त्रेता जैसी जनकपुर का नजारा, 102 साल पुरानी राम बारात में उमड़ा आस्था का मेला, भव्य झांकियों ने मोहा मन। यूपी के महोबा में भक्ति और शक्ति उत्सव की धूम, गरबा और डांडिया महोत्सव में 350 से ज्यादा महिलाओं की मनमोहक प्रस्तुति। मध्य प्रदेश के दमोह पहुंची पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा, कल होगा यात्रा का समापन, बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। छठ दिवाली पर बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए गुड न्यूज, दिल्ली से पटना चलेगी 16 कोच की स्पेशल वंदे भारत ट्रेन, लगभग 13 घंटे में पूरा होगा सफर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है।
4: हेलो दोस्तों, मैं हूँ रिंकी, आप सबकी प्यारी रिंकी भाभी। सीरियल्स के ड्रामे से लेकर रियलिटी शोज और वेब सीरीज की सारी हलचल तक, यहाँ मिलेगी आपको मनोरंजन की हर न्यूज। लेकिन सबसे पहले देखिए आज की हेडलाइंस।
5: बहू और बेटिया की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए, होगी वसुधा और देव की हल्दी की रस्म, शुरू होगा देव वसुधा का हल्दी वाला रोमांस। दिखेगी अनुपमा की तड़प, दिग्विजय और आरवी करेंगे गुंडों से लड़ाई। आरंभी पर लगेंगे इल्जाम, शुरू होगा कोर्टरूम ड्रामा। साइली और सचिन के सामने आएगा अपने बेटे लक्ष्य का सच, जेल जाएगी रोशनी। सीरियल हमारी भाभी नंबर वन में बंसरी और अनंत के बीच शुरू होगी नोकझोंक, मुस्कान पर अत्याचार करेगा लक्ष्य। पति पत्नी और पंगा के सेट पर खास मेहमान बनकर आएंगी कंटेस्टेंट्स की मम्मियाँ, एंटरटेनमेंट से भरा होगा एपिसोड।
6: आज जमीन पर उतरे कितने सितारे हैं,
7: नवरात्रि एक ऐसा त्योहार है।
5: कौन बनेगा करोड़पति में होगा नवरात्रि स्पेशल, मीका और फाल्गुनी बनेंगे खास मेहमान।
7: जब इसका ब्रॉडकास्ट होगा ना तो हमको कोई नहीं देखेगा, सिर्फ आप दोनों को देखेगा।
8: कुछ लव स्टोरीज ना झगड़े से शुरू होती है।
5: बदलेगी मन्नत, तन्वी डोगरा बनकर आएगी नई मन्नत, साथ होंगे नमिक पॉल। और नवरात्रि के मौके पर कनिका महेश्वरी और येशा ज्योत्सना मनाएंगी नवरात्रि का त्योहार, करेंगी माता रानी की पूजा सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

सीरियल उड़ने की आशा में चल रहा है इमोशनल ड्रामा, जहां सचिन और सैली को पता चल गया है कि लक्ष्य ही उनका बेटा है, तो वहीं दूसरी तरफ रोशनी जेल जा चुकी है। ऐसे में सीरियल में देखने को मिल रही है रिश्तों की उलझने।

सलाखों के पीछे पहुंची रोशनी। स्टारचर्स के सीरियल उड़ने की आशा में आज देशमुख हाउस में माहौल गमगीन हो गया है। और हो भी क्यों ना, रोशनी का सच भी आ गया और तो और सचिन और सायली को ये भी पता चल गया कि लक्ष्य उनका ही बेटा है। ऐसे में देखिए आज सायली माता रानी की तस्वीर के आगे बैठकर फूट फूट कर रो रही है और सचिन उसका सहारा बना हुआ है। इसी बीच दौड़ता हुआ आ जाता है लक्ष्य और देखिए कैसे उसके आते ही सायली जाकर उसे गले लगा लेती है, फूट फूट कर रोने लगती है, उसकी बलाएं लेती है, उसके माथे को चूमने लगती है। भाई 7 साल लक्ष्य उसके सामने ही था पर उसे ये नहीं पता था कि ये उसका असली बेटा है।

0: সচ্ছলে ওরে কি সচ্ছলে কবি আপনাকে বলতে ওরে তো
1: भाई साहिली ने लक्ष्य को इस तरह अपने सीने से चिपका लिया जैसे अब वो उससे जुदा होना ही नहीं चाहती। पर उसे क्या पता कि लक्ष्य अब भी रोशनी को ही अपनी माँ मानता है। तभी तो देखिए कैसे घर वालों के बीच भी वो अपनी माँ रोशनी को ही ढूंढ रहा है। भाई रोशनी के ना होने पर लक्ष्य का चेहरा उतर गया और वो उदास होने लगा। इससे पहले कि उसकी आंखों से आंसू बहते सचिन पहुंच गया उसे मनाने के लिए और तो और उसे ये यकीन दिलाने के लिए जल्द ही उसकी माँ रोशनी आ जाएगी। भाई लक्ष्य की खुशी के लिए सचिन ने प्रॉमिस तो कर दिया लेकिन अब वो ये टेंशन में है कि ये प्रॉमिस निभाएगा कैसे। फिलहाल तो लक्ष्य वहाँ से चला जाता है और साइली उसका दिल तड़प उठता है और वो उसके पीछे जाने लगती है।
2: साइली बड़ा थोड़ा घर से काम ले जाओ, बच्चों का मन ना बहुत कोमल होता है, ऐसे जमाने के बारे में सही गलत के बारे में उनको लेता है। अभी उसे जाने दे, उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए।
1: भाई सचिन जानता है कि सिचुएशन क्या है इसीलिए देखिए कैसे वो अपनी साहेली को समझाता है और उसे सीने से लगाकर उसको दिलासा देता है कि आज नहीं तो कल लक्ष्य साहेली को अपनी माँ मान ही लेगा जब उसे रोशनी का सच पता चलेगा। फिलहाल तो रोशनी का सच आने के बाद रोशनी सलाखों के पीछे पहुँच गई है और देखिए कैसे दीवार पर बार बार साहेली का नाम लिख रही है और उसे मिटाने की कोशिश कर रही है। उससे उसका गुस्सा साफ साफ झलक रहा है, यानी रोशनी साहिली की जानी दुश्मन बन चुकी है और तो और बस इंतजार कर रही है कि जल्द से जल्द जेल के बाहर निकले। इसी बीच वहाँ पर आ जाती है हवलदारनी भी लेकिन देखिए कैसे रोशनी उसको भी दिखाती है अपना गुस्सा। खैर देखना होगा क्या रोशनी का ये गुस्सा साहिली और उसके परिवार के लिए जानलेवा होगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
3: सीरियल हमारी भाभी नंबर वन में जहाँ एक तरफ बंसरी और अनंत के बीच चल रही है नोकझोंक तो वहीं दूसरी तरफ बदल गए हैं लक्ष्य के मिजाज। लक्ष्य अब मुस्कान को सबक सिखाना चाहता है इसलिए वह मुस्कान पर कर रहा है अत्याचार। आइए देखते हैं आखिर क्या ड्रामा चल रहा है।
4: तू सफर मेरा है तू ही मेरी मंजिल।
5: एक तरफ बंसरी और अनंत की नोकझोंक तो दूसरी तरफ मुस्कान पर अत्याचार करता लक्ष्य।
4: तू ही दुआ में शामिल तेरे बिना।
5: एक तरफ मियां बीवी की नाराजगी तो दूसरी तरफ लक्ष्य और मुस्कान की नफरतें। टीवी के सीरियल हमारी भाभी नंबर वन में कहानी में नया ट्विस्ट आ गया है। जब से बंसरी 300 करोड़ की मालकिन बनी है, तब से बदले बदले हैं उसके पति अनंत के अंदाज। आज भी देखिए कैसे वो उससे सवाल जवाब कर रहा है, उसे टॉन्ट मार रहा है और उसकी हर बात को नकार रहा है। हालांकि बंसरी अनंत को समझाने की कोशिश कर रही है कि कैसे उसने लक्ष्य को पुलिस स्टेशन से बचाया, लेकिन अनंत कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं।
6: बोलिए मालकिन, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता
0: हूँ? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं?
6: 300 करोड़ की मालकिन हो आप बंसरी कापड़िया। मैंने कहा था कि पैसों को यूज करने की अथॉरिटी सिर्फ आपके पास है और उनको अरेंज करने की जिम्मेदारी मेरे पास। ये तो बस आपके इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं बंसरी ना, है ना?
0: मुझे गलत समझ रहे, वो पुलिस लालू को लेने आई थी और आप सो रहे थे और इसलिए मुझे लालू के साथ जाना पड़ा पुलिस स्टेशन। अगर मैं नहीं जाती ना तो वो हमारे लालू मैंने FIR कर दी थी। आप सो रहे थे इसलिए मैंने बाहर से कहा कि आपको जल्द से जल्द जगाए और फिर पुलिस स्टेशन भेजे। आपको पता है पुलिस स्टेशन में क्या हुआ है? लालू को हर मुश्किल से बचाने के लिए आपका साथ देना ही जरूरी है। हमारे साथ फोन बंद करने गए थे, पानी ना पी मन बना रखते और उससे मैं जब अपने कुछ ऐसे बोल जाते हैं ना तो इस वजह से अपने को साथ नहीं छोड़ा जाता है। अच्छा आप मतलब छोड़िए, अभी हम जब से नीचे चलते हैं ऊपर से पूरे परिवार के साथ बैठ के खाना खाते हैं। वैसे भी जब पूरे परिवार के साथ बैठने का मौका मिले तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। चलिए
5: भाई, अनंत तो अपने होश खो बैठा है। तभी तो देखिए कैसे वो नशे में धुत घर पर आया है। तब भी बंसरी अपने पति अनंत का पूरा ख्याल रख रही है, लेकिन मियां बीवी के इस रिश्ते में दरार जरूर आ गई है। अब देखना होगा बंसरी अपने रिश्ते को कैसे संभालती है।

0: तो नहीं है।
1: वहीं दूसरी तरफ रिश्ते तो मुस्कान और लक्ष्य के भी बिगड़ गए हैं। असल में मुस्कान ने लक्ष्य पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाया था। हालांकि बंसरी भाभी ने लक्ष्य को बचा जरूर लिया, लेकिन अब लक्ष्य का अंदाज ही बदल गया है। सीधा साधा लक्ष्य अब मुस्कान से नफरत करने लगा है। दिल में मुस्कान के लिए प्यार जरूर है, लेकिन लक्ष्य को मुस्कान को सबक सिखाना है और अपने दर्द का एहसास भी दिलाना है। तभी तो आज वो ये फूल लेकर आया है जिसमें है एलर्जी की दवा। तभी तो मुस्कान को ये फूल लेते ही हो जाती है एलर्जी।

0: अब ऐसे में इस एलर्जी का एंटीडोट लक्ष्य के पास है, लेकिन वो मुस्कान को दे नहीं रहा, उसे तड़पा रहा है और मुस्कान की हालत बिगड़ती जा रही है।
1: डोंट वरी, इस एलर्जी का एंटीडोट है मेरे पास, पर जब तक मेरी बहन सही सलामत घर वापस नहीं आ जाती, मैं तुम्हें ऐसे ही तड़पाऊंगा। तुम्हें एंटीडोट नहीं मिलेगा। हे, डोंट टच मी। तुम्हें ऐसे पेन नहीं देती, बट अब देखूंगा, दिल पे पत्थर रख के देखूंगा। मैं तुझे हर पल तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ।
0: भाई लक्ष्य को बदला जरूर लेना है, लेकिन वो मुस्कान से दिल ही दिल में प्यार भी करता है और उसकी ये तड़प लक्ष्य से देखी नहीं जाती। तभी वो मुस्कान को एंटीडोट दे देता है, लेकिन साथ ही ये चेतावनी भी देता है कि अब मुस्कान की जिंदगी आसान नहीं होगी, क्योंकि लक्ष्य हर मुमकिन कोशिश करेगा मुस्कान को दर्द पहुँचाने की।
1: अपने नेचर के अगेंस्ट आके ये सब कर रहा हूँ ताकि तुम मेरा पेन समझ सको। मैं तुम्हें उतना ही पेन दूंगा जितने में तुम जिंदा रह सको। भाभी माँ की कसम बीच में आ रही है, इसलिए तुम्हारी जान नहीं लूंगा, तुम्हारी लाइफ को पत्थर बना दूंगा। तुम्हारे लिए हर एक पल मुश्किलों से भरा हुआ होने वाला है।
2: पति प्यारा मिला था, बीवी प्यारी थोड़ी ना मिली थी।
3: एक बात तो इस बात से ऑडियंस भी ये करेगी, अग्री करेगी कि मुस्कान ने कभी लक्ष्य को कोई हार्म नहीं पहुंचाया है, ठीक है? अरे नहीं पहुंचाया भाई, मैंने कभी इसे कुछ ऐसे चोट पहुंचाई है। मैंने जो भी अब तक कॉन्स्पिरेसी रची है वो सिर्फ बंसरी के अगेंस्ट रची है और अनंत भाई के अगेंस्ट एक बार किया है, लेकिन तेरे साथ क्या किया है?
2: प्यार में धोखा, सबसे बड़ा हर्ट तो वही होता है, किसी के इमोशन के साथ, किसी के फीलिंग्स के साथ खेलना।
3: तो फिर उस दिन जब लगा था तो पट्टी पे घाव भी तो मैंने लगाया, सॉरी मरहम भी तो मैंने लगाया था।
2: मरहम तो फिजिकल मतलब जो कट होता है उस पे किया था, जो अंदर जो मुझे दर्द दिया है उसका क्या। सबसे बड़ा तो धोखा मेरे साथ हुआ है, तो वो धोखे का अब तो वही हो रहा है, रेज है, अब निकल रहा है इधर
3: फेंकने के लिए मुंह पर, और उसको एलर्जी हाँ। उससे मुझे होने के लिए उन्होंने वो फूल लेकर आए, प्यार से लेकर आए कि कांग्रेचुलेशंस, और जो फेंका है मेरे मुंह पे प्यार से।
2: फूल तो टॉर्चर के लिए लेके आया हूँ।
3: के बाद जो मैं छींकना शुरू की वो मैं रुकी ही नहीं हूँ, फिर मुझे एलर्जी हो रही है, फिर बहुत प्यार से मुझे उन्होंने एंटीडोट भी पिलाया है। उसका कैसे पिलाया बताओ?
2: बहुत प्यार से एंटीडोट पिलाया, आप देखिएगा, आप उसके लिए तो जरूर देखिएगा कि आपको बहुत मजा आने वाला है, कि लक्ष्य जो था अब लक्ष्य एकदम बदलने वाला है। मतलब आप सरप्राइज हो जाएंगे कि लक्ष्य ऐसा हो सकता है, ये आपने सोचा भी नहीं होगा। सिर्फ लक्ष्य अब ये
3: वॉयलेंस पर तो नहीं उतर,
2: वॉयलेंस में नहीं, मतलब नहीं वॉयलेंस पे तो नहीं उतरा है, मतलब ये हो गया है कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जो तुमने मुझे दर्द दिया था ना, अब वो दर्द मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैं तुमसे प्यार भी बहुत करता हूँ, लेकिन वो जो पेन है मेरे अंदर, वो पेन मैं अब तुम्हें फील कराऊंगा कि तुमने मुझसे किस किस चीजों से गो थ्रू करवाया है। मैं तुम्हें कोई हार्म नहीं पहुंचाऊंगा।
3: अभी उसने बिना हाथ लगाए, मतलब बिना हाथ जो लगाए, भी किया है वो बिना हाथ लगाए,
2: बिना हाथ लगाए।
0: तो भाई रिश्तों की उलझन तो साफ देखने को जाहिर है, अब देखना होगा कैसे ये रिश्ते सुलझेंगे और गलत फहमियाँ दूर होंगी। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
4: रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा में इस हफ्ते खास मेहमान बनकर आई हैं कंटेस्टेंट्स की मम्मियां। ऐसे में सभी सितारे अपनी अपनी मम्मी के साथ नजर आए। आइए देखते हैं सेट के बाहर की ये झलकियां, जहां आज कंटेस्टेंट्स की खुशी देखते ही बन रही है।

भाई शुरू हो गया है पति पत्नी और पंगा का सीजन 2। ऐसे में हो रही है नए एपिसोड की शूटिंग और इस एपिसोड में खास मेहमान बनकर आए हैं पति पत्नी और पंगा के कलाकारों के पेरेंट्स, यानी कि होगा फैमिली वीक, जहां आपकी होगी कलाकारों के मम्मी से मुलाकात।

0: सोनाली मुनावर। और ये कलाकारों का अंदाज आज बेहद ही अनोखा है। वही सभी कलाकार देसी और वेस्टर्न अंदाज में नजर आ रहे हैं। ऐसे में भाई इस शो की शुरुआत काफी धमाकेदार हुई है और इनके कलाकार सभी का खूब एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि जब फैमिली वीक होगा तो कौन से कलाकारों की कौन सी पोल खुलती है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: ग्लैमर गॉसिप और हाई वोल्टेज ड्रामा मनोरंजन की दुनिया से हम लेकर आए हैं कुछ ऐसी रॉकिंग और शॉकिंग खबरें जो आपके चेहरे पर ले आएंगी एक प्यारी सी मुस्कान। आइए आपको ले चलते हैं आज की रॉकिंग खबरों की ओर।
2: सही है ना मैडम?
3: हो गया हो गया हो गया।
4: मेरे वीर दा विराट दा ढाबा।
0: पेश है बॉलीवुड ओटीटी और टीवी की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। आ गया है मन्नत 2.0 जिसमें बदल गए हैं लीड्स। मन्नत 2 में नजर आएंगी तन्वी डोगरा जो निभाएंगी मन्नत का किरदार, तो साथ है नमिक पॉल जो निभा रहे हैं कबीर का किरदार। देख लीजिए इसकी पहली झलक जहां पहले ही दिन हो गई है मन्नत और कबीर में नोकझोंक। इसी के साथ मन्नत और विक्रांत भी आए हैं इन्हें प्रमोट करने के लिए क्योंकि अब मन्नत और विक्रांत की जोड़ी देखने को नहीं मिलेगी।
3: कितने?
5: गुड जॉब कबीर, हमारे 5-स्टार रेस्टोरेंट के सामने इसके ढाबे की कोई औकात नहीं है। ब्लडी फुटपाथ गर्ल।
6: तभी इसके ढाबे को मिट्टी में मिला रहा हूँ मॉम। ये जिद भारी पड़ेगी तुमको।
7: बुलडोजर तो आपका भी भारी था मिस्टर अब्रॉय, देख लो उल्टा मुड़ गया।
8: कुछ लव स्टोरीज ना झगड़े से शुरू होती है,
9: पर इनकी स्टोरी में एक ऐसा सच है जो ये दोनों नहीं जानते।
10: नई मन्नत की नई कहानी शुरू होने जा रही है,
3: उससे मिलने आइएगा सर।
0: साथ ही देख लीजिए विराट दा ढाबा के ये इनसाइट फोटोज जो कि है मन्नत का नया ढाबा

0: नवरात्रि एक ऐसा त्योहार है
1: सनेड़ो सनेड़ो
0: जो पूरे देश को खुशियों उमंग और उत्सव के रंग में बिल्कुल रंग दे।
2: कौन बनेगा करोड़पति में खास मेहमान बनकर आए हैं मीका और फाल्गुनी पाठक और यहाँ पर हो रहा है नवरात्रि स्पेशल। देख लीजिए इस एपिसोड के कुछ एडवांस नजारे।
3: सारी दुनिया आपसे एक डायलॉग सुनना चाहती है अग्निपथ का, पंजाबी में बोलना पड़ेगा।
4: जी मेरा नाम है विजय सिंह बिना नाम चौहान
5: जी, चार लाइन गुजराती में भी
4: रिश्ता माँ तमारो बाप लागे छे।
6: हेलो हेलो,
4: नाम छे शाइन साहब।
3: पूरे वर्ल्ड में एक ही सुपरस्टार है
5: को मेरा एक फेमस डायलॉग है वो बोल।
3: अच्छा चलो।
2: शो फैमिली फुल हाउस विद रोहित शर्मा में खास मेहमान बनकर आई है शहनाज गिल और साथ है मीका, जहां रोहित कह रहे हैं शहनाज का फेमस डायलॉग, तो वहीं मीका ने अपने गाने से रंग जमा दिया।
5: आपको मेरा एक फेमस डायलॉग है वो बोल।
3: अच्छा चलो।
5: क्या करूँ मैं, मर जाऊँ?
3: क्या करूँ मैं, मर जाऊँ?
5: मेरी कोई फीलिंग नहीं है।
3: मेरी कोई फीलिंग नहीं है।
5: साडा कुत्ता कुत्ता
3: साडा कुत्ता कुत्ता
5: थोड़ा कुत्ता टॉमी
3: थोड़ा कुत्ता टॉमी।
5: क्या करूँ मैं, मर जाऊँ?
3: मैंने तो अभी तक सिर्फ टीवी पे सुना था, आज लाइव देख लिया।
2: खन्ना और श्रद्धा आर्या की बन गई है जोड़ी। स्टार प्लस के आने वाले नए शो में ये दोनों साथ साथ नजर आने वाले हैं, जिसकी पहली झलक सास बहू और बेटियां आपके लिए लेकर आया है। आपको बता दें कि ये शो की प्रोड्यूसर हैं एकता कपूर और हो सकता है इस शो का नाम हो धागा, लेकिन अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं है।
7: शूट कब से बताइए ना प्लीज। मैं शो का नाम क्या है, शो का नाम क्या है? मैं शो का नाम क्या है, शो का नाम क्या है?
8: मैं इस दिवाली
2: जल्द आएगा जी रिश्तों का मेला दिवाली स्पेशल एपिसोड, जिसमें जी परिवार फिर एक बार साथ साथ आएगा अपने दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए। देख लीजिए इसकी ये खास झलक।
8: इस दिवाली रिश्तों में घोल ले मिठास, खुशियों की लेकर सौगात, आ रहा है जी रिश्तों का मेला।
9: जिस राधा ने देखा जिंदगी का सबसे बुरा दौर, उसके कदम बढ़े नई उम्मीद।
2: होगा जी टीवी के दो शोज गंगा माई की बेटियां और जी अनमोल टीवी के शो हमारी राधा का महासंगम एपिसोड, जहां राधा की मदद करेंगी गंगा माई और उनकी बेटियां। देख लीजिए ये प्रोमो।
10: इंदुरानी के पास चले गए, फिर हमने जी कर्ची को अपना हथियार बनाया, ढाबा खोला। राधा,
11: हम आज तक कृष्ण जी के बिना कुछ होने की है, उनके बिना उनके बिना।
10: कभी कभी हम अपनी आदत को ना जरूरत समझने लगते हैं। भोलेनाथ ने तुम्हारे हाथ में जो हुनर दिया है ना खाना बनाने का, उसे दुनिया को दिखाओ।
11: आपसे वादा करते हैं, आज से हम भी अपने हुनर को हथियार बना
10: हथियार।
2: की फिल्म ये प्रेम मोहलिया, जिसकी रिलीज डेट सामने आई है। ये फिल्म 27 नवंबर को रिलीज होने वाली है।

0: आजा आजा लड़ना।
1: भाई बिग बॉस में बिग बवाल हो रहा है, जहाँ पर हो गई है नकुल और गुल्लू में फाइट। ऐसे में घर वाले अब चाहते हैं कि नकुल को घर से बेघर किया जाए।
0: पूरे दिन चुगली चुगली चुगली। आजा आजा लड़ना।
2: स्काउट को भी नहीं समझ रहे, बोल रहा है एक बंदे को छेजन मत पकड़ो। अरे लग गई रहती उसको,
3: हाथ उठाएगा यहाँ पे आके।
2: बोल रहा है इन दोनों को बात करने दो। अरे क्या चालू है इधर,
3: ये दो दिन का आया अपने पे राज कर रहा है। टास्क में भी हार्मफुल हो सकता है।
4: ये नहीं जाएगा तो बैग पैक कर लो अपने। बिग बॉस को बाहर निकालो, घर से बाहर चाहिए, नहीं तो हम लोग बाहर जाएंगे।
5: ये तो बहुत खतरनाक इंसान है यार।
6: सभी घर वाले फॉरेन लिविंग एरिया में एकत्रित हो जाएंगे।
7: नवरात्रि का त्योहार है और ऐसे में आपके चहेते सितारे बड़े ही धूमधाम से यह त्योहार मना रहे हैं। जहां कणिका नवरात्रि के रंग में रंग चुकी है, तो वहीं येशा और ज्योत्सना माता रानी की पूजा कर रही हैं। आइए देखते हैं नवरात्रि के ये रंग।
8: कनिका मान खेले गरबा,

0: पर क्या करें, इस बार वो बिग बॉस के घर में है, तो इस बार सास बहू और बेटिया याद कर रहा है कनिका मान की ये खास नवरात्रि जो उन्होंने सास बहू और बेटिया संग बनाई थी। बिग बॉस 20 में कनिका मान सबके दिल जीत रही है।
1: सो प्लीज वेलकम हरियाणा की छोरी बिग बॉस 20 की सदस्य नंबर 1 कनिका।
0: कुछ लोगों को उनका रियल किरदार पसंद आ रहा है और शायद कुछ को नहीं।
2: घी में कल दाल बनेगी, घी में कल दाल बनेगी और आज आपको
3: ना उड़ती गई तो देखियो नहीं बनेगी कल।
2: तो बात पता करना क्या है, नहीं बनेगी, रोक के दिखाएंगे।
0: खैर जो भी हो, सास बहू और बेटियां उनके साथ उनके पहले सीजन से जुड़ा हुआ है, तो नवरात्रि के खास मौके पर हम लेकर आए हैं कनिका मान की ये नवरात्रि। इस साल तो बिग बॉस 20 के घर में वो कैद है और इसलिए नवरात्रि नहीं मना पा रही हैं, लेकिन आज हम उनको पसंद करने वालों के लिए लेकर आए हैं कनिका की नवरात्रि, जहां वो गरबा कर रही हैं, माता रानी की पूजा कर रही हैं, माँ का जयकारा लगा रही हैं। पानीपत की रहने वाली पंजाबी कुड़ी माता रानी को बहुत मानती है और उनकी फैमिली में ट्रेडिशन है जो इस साल उनके रियलिटी शो की वजह से पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन हम एक माध्यम है कि हम वो नवरात्रि कनिका के साथ मना सके और अपने दर्शकों के साथ भी।
4: जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। अरे वाह, तो नॉर्मली सास बहू बेटियां हमेशा हर सीन के बीच में आती हैं सीन के बारे में पूछने, और आज वो मेरी पूजा के बीच में पहुंच चुके हैं। आई एम सो हैप्पी कि आप लोग भी माता रानी के दर्शन कर पाएंगे। तो नॉर्मली क्योंकि हम लोग शूट 12-14 आवर्स करते हैं, सुबह से लेकर रात तक सेट पे होते हैं, तो पूजा करने का टाइम नहीं मिल पाता है, तो हमने सोचा क्यों ना हम अपने मेकअप रूम में मंदिर बना लें, माता रानी की पूजा करें। तो वैसे इस बार नवरात्रि भी मैं नहीं रख पाऊंगी क्योंकि पिछले 3 साल से नहीं रख पा रही हूँ। तो पहले जब घर पे होती थी तो हर साल नवरात्रि रखती थी, क्योंकि मम्मी रात को मुझे वो कुट्टू के आटे के पकौड़े बना के देती थी, पूड़ियाँ बना के देती थी, तो सारा दिन की भूख से वो कवर हो जाता था। लेकिन यहाँ हॉस्टल में भी खाना नहीं मिलता था प्रॉपर, एंड यहाँ पे भी खुद बनाते हैं, मेड आती है, उनको वो सब नहीं बनाना आता है। तो मैंने सोचा कि नहीं, माता रानी जी आपकी श्रद्धा बस मेरे दिल में है, मैं व्रत नहीं रख पाती हूँ।
0: तो भाई कनिका इस साल व्रत तो नहीं रख रही हैं, क्योंकि 24 घंटा उन्हें बिग बॉस के घर में रहना पड़ता है, खुद ही खाना बनाना पड़ता है, खुद ही टास्क करने पड़ते हैं। खैर कोई बात नहीं, हम मना लेते हैं कनिका के साथ ये नवरात्रि माता रानी की पूजा करके। तो कनिका की थाली तैयार है, माता रानी तैयार है और सारी सजावट भी, और कनिका ने अपनी नवरात्रि की ये पूजा सम्पन्न

0: हरियाणा और पंजाब में माता रानी चार दिन नवरात्रि को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसे में उसी धूमधाम को कनिका ने हमेशा कायम रखा है।
1: तो मैं छोटे होते से ही सुपर एक्साइटेड रहती थी जब पड़ोस की आंटी आती थी बुलाने के लिए कि अच्छा आज हमारे घर में कंजी है। मुझे लगता था वाओ, पर मैं उन घरों में जाती थी जहाँ पे आंटियाँ ज़्यादा पैसे और ज़्यादा गिफ्ट देती थी। तो मैं मेरी फेवरेट वाली आंटी वाली लिस्ट होती थी कि अच्छा उनके घर में पहले जाना है, फिर उनके, फिर बाद में मैं जाती थी कि जो अच्छा कम गिफ्ट देती थी ना उनके घर बाद में जाती थी। और फिर उस बाद मैंने खुद ही व्रत रखना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मम्मी ने बताया कि तुम व्रत रखोगी तो तुम्हें सबका वो कन्याओं को बुला के उनके पैर धोने हैं, ये सब करना है। मुझे और एक्साइटिंग लगा तो मैंने व्रत तो रख लिया लेकिन भूख सहन नहीं हुई। आई वॉज इन सेवेंथ क्लास उस टाइम पे, और मेरे को फिर मेरी दादी बोलती है अच्छा अगर तुम छत के नीचे छुप के कुछ खा लोगी ना वो माना नहीं जाएगा, वो माता रानी देखती नहीं। मुझे ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मिल गया। मैंने कहा अरे वाह। तो मैं व्रत भी रखती थी, मम्मी को बताती भी नहीं थी, और वो ऐसे छत के नीचे छुप के लेंटर के वो जो सेल्फ बनी होती है उसके नीचे छुप के खा पीत के सब सब मिठाई खा रही हूँ, पनीर खा रही हूँ, सब खा रही हूँ, और वैसे मैं व्रत रखा है। तो मम्मी का रात को वो आलू वाला रायता भी खाना होता है, कुट्टू के आटे के पकौड़े भी, मैंने व्रत रखा है मम्मी सारा दिन। तो फुल एक्साइटिंग रहे हैं मेरे नवरात्रे बचपन से।
0: भाई कनिका मुंबई में है और यहाँ पर उन्हें गरबा खेलना बहुत पसंद है, खासकर दया बहन का गरबा। तो हमारे लिए उन्होंने एक खास गरबा परफॉर्मेंस दी।

0: पॉजिटिव बहुत हो जाता है, तो हम लोग हर दिन ही सेट पे आके मेकअप रूम में आरती करते हैं, पूजा करते हैं, नीचे भी हम लोग सेट पे भी करते हैं, तो ऑलरेडी बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव रहता है। लेकिन क्योंकि नवरात्रे शुरू हो चुके हैं तो ज़रूरी है अलग से माता रानी की आरती करनी, तो क्योंकि टाइम तो मिलता नहीं है, बिकॉज वी वर्क फॉर 14 आवर्स, समटाइम्स 15 आवर्स टू, तो सुबह से लेकर रात तक सेट पे होते हैं, तो मुझे लगा क्यों ना हम सेट पे ही मंदिर बना लें अपने मेकअप रूम में, तो हमने यहीं शुरू कर दिया। इस बार मैं व्रत नहीं रख पाऊंगी, सॉरी माता रानी, पर ऐसी आरती रहेगी चलती।
1: तो कनिका भले ही इस बार हर साल की तरह अपनी नवरात्रि ना मना रही, लेकिन हमने इन यादों के साथ उसे गुजर करने की कोशिश करी। बिग बॉस 20 के घर में कनिका के अलग अलग तेवर देखने को मिलते हैं।
2: कनिका, मैं आपको एक विशेष अधिकार दे रहा हूँ, यानी आप पपेट मास्टर और घर में आने वाले बाकी सदस्य कठपुतलियाँ, आपको जो भी सबसे ज्यादा नापसंद आता है उससे कुछ छीन लिया जाएगा। तो बताइए कनिका।
3: मुझे लगता है कि वो अपनी ही दुनिया में रहते हैं, वन साइडेड कॉन्वर्सेशंस होती हैं, उनका अपना ही एक वर्ल्ड है, मैं उनके साथ अनहर्ड फील कर रही हूँ।
1: उम्मीद करें कि जल्द ही वो बाहर आए और एक बार फिर से अपने फैंस का दिल जीते।

0: नवरात्रि का खास माहौल है, उसी माहौल में रंग गई हैं येशा रुकानी और ज्योत्सना चंदोला। भाई दोनों सहेलियां हैं और आज देखिए दोनों एक शूट पर मिली तो इन्होंने अपनी नवरात्रि मना डाली। शूटिंग के चलते ये लोग नवरात्रि तो नहीं बना रहे, लेकिन आज खास सास बहू और बेटिया संग येशा और ज्योत्सना ने बनाई नवरात्रि। माता रानी की पूजा की और साथ में गरबा भी खेला। यही तो माता रानी के इस त्योहार का ट्रेडिशनल तरीका है, पूजा और फिर गरबा। तो चलिए चलते हैं येशा रुकानी और ज्योत्सना के पास, जो माता रानी को सजाकर मना रही हैं शारदीय नवरात्रि का ये त्योहार सास बहू और बेटिया साथ।
1: तो सास बहू और बेटिया के साथ आज हम सेट पे मनाने जा रहे हैं नवरात्रि और हम आरती करने वाले हैं। और नवरात्रि मतलब आई कांट एक्सप्लेन, मतलब इतनी एक्साइटेड हो जाती हूँ नाम से ही। वो मेरा सबसे फेवरेट फेस्टिवल है और गुज्जू हो तो मेरा हक है भाई।
2: और डांडिया खेलने में तो आप बहुत ही माहिर हैं,
1: सिखाने में और डांडिया मारने में।
2: हाँ, और मैं मारने में, आप सिखाने में।
1: करेक्ट।
2: पता नहीं टाइम मिले ना मिले तो यहीं पे मेकअप रूम में मंदिर बना के जरा थोड़ी बहुत भगवान के लिए आरती की जाए और ये जो फेस्टिवल है नवरात्रि इसकी शुरुआत की जाए आप लोगों के साथ। सो लेट्स डू इट।
1: तो आप देख सकते हैं कैसे हमने एक छोटी सी जगह पे माता रानी को बिठाया है, विराजमान किया है, चुन्नी लगाई है और फूल सजाए हैं और अब हम दिया जलाने वाले हैं।
0: ये शो ज्योत्सना ने देखिए कितनी खूबसूरती से माता रानी को सजाया है, भले ही सेट पर हो लेकिन पूजा पूरे श्रद्धा भाव से करें। इन्होंने दिया जलाया, माता रानी की आरती की और सबकी सुख संपत्ति

0: जय माता दी।
1: जय माता दी।
0: एक दो तीन चार, माता जी की जय जयकार।
2: नवरात्रि पर पूजा के साथ खास होता है गरबा का त्यौहार। जी हाँ, गरबा ट्रेडिशनल तरीका है नवरात्रि मनाने का। और देखिए, यशा रुगानी जो कि गुजरात की रहने वाली हैं, इसलिए वो गरबा में एक्सपर्ट है और आज वो ज्योत्सना को भी सिखा रही हैं गरबा। तो देखिए कैसी है इन दोनों सहेलियों की गरबा वाली छटा।
1: सास बहू और बेटिया के सारे व्यूअर्स को
0: हैप्पी नवरात्रि। चलो, अभी हमने माता रानी की पूजा तो कर ली, तो अब क्या करना है जो सबसे इम्पोर्टेंट है?
1: गरबा।
0: गरबा आप मुझे फिर से सिखा देना प्लीज।
1: चलो,
0: लेट्स डू इट।
2: तो जरा देखिए यशा रुगानी और ज्योत्सना चंदोला ने कैसे मनाया नवरात्रि का त्यौहार। पर यही एक सिंपल सा तरीका होता है माता रानी के इस त्यौहार को मनाने का, पूजा और गरबा।

0: विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी नवरात्रि। 9 दिन बहुत मजे करना, बहुत गरबा खेलना, बहुत सारा खाना पीना और बहुत ज्यादा एंजॉय करना। एंड माता रानी आप सबको शक्ति देगी बिकॉज दिस इज द फेस्टिवल ऑफ पावर।
1: तो ये थी यशा रुगानिया और ज्योत्सना, जिनका आज नवरात्रि का खास अंदाज हमने दिखाया सास बहू और बेटिया में।

0: स्टीव एंड सन्स।
1: आपके बेटे का मर्डर, हमारी बच्ची सुहानी।
2: कलर्स टीवी के सीरियल महादेव एंड सन्स में भाई आखिरकार रज्जी ने अपना गुनाह सपना के आगे कबूल कर लिया।
1: आपके बेटे का मर्डर, हमारी बच्ची सुहानी। तेरा जब सब सच बता देगा।
3: हम रज्जी झूठ बोल रही है और ये झूठ इसलिए बोल रही है क्योंकि हमें बचाना चाहती।
1: नहीं सप्ता मैम, हमने आपको जो बताया है वो सब सच है।
3: आप हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आपका बेटा जवान था, हट्टा कट्टा था, उसको रज्जी जैसी लड़की कैसे मार सकती है? उसको हमने मारा है,
1: धीरज,
3: हमारे हाथों से मरा है वो।
2: भाई ये तो कहानी का आने वाला ट्विस्ट है, लेकिन आज देखिए कैसे रज्जी और धीरज दोनों ही एक दूसरे के प्यार के रंग में रंग गए हैं। हल्दी का मौका है और देखिए कैसे भाई धीरज तो रज्जी की आँखों में डूब गया।

श्री महादेव के परिवार में टेंशन कितनी भी हो, लेकिन परिवार वाले हर फंक्शन को बेहद ही खूबसूरती से एंजॉय कर रहे हैं। और आज भी देखिए कैसे हल्दी के इस मौके को पूरे घर ने खूब एंजॉय किया, लेकिन उनके सर पर मंडरा रहा है सपना और यश का साया।

0: कॉफी नहीं चाहिए?
1: स्टॉपलेस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में मई अरमान और अभिरा के दिल में कई सारे सवाल हैं। ऐसे में वो झिझक भी रहे हैं कि आखिर मायरा से कैसे बातचीत करें, लेकिन एक माँ बाप का फर्ज तो उन्हें निभाना ही है। लेकिन जाने अनजाने भी वो अपनी बेटी पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं।
0: इतने से लिए बेस्ट है
2: तो फिर
0: आप दोनों की आईज में देख सकती बैड बैड हरकतें करके बहुत नीचे गिर चुकी हूँ माय पेरेंट्स, और आप मुझे इतना लव देके बहुत ऊपर उठ चुके हो। अगर अब मैंने आपके आईज में देखने की कोशिश भी की तो मेरा नेक्स्ट ब्रेन हो जाएगा। ओए, आप 3 दिन घर से बाहर क्या रहे, बड़ी बड़ी बातें करने लगे? चलो इधर आओ। आप प्लीज मुझे अपने पास मत बिठाओ, मैं डिजर्व नहीं करती।
2: बिल्कुल डिजर्व करते हो बेटा, पापा के बेटू हो।
0: पापा के बेटू? आपको नहीं पता पापा के इस बेटू ने क्या ग्रेट काम किया है। कबीर का एक्सीडेंट हमारे घर के बाहर ही हुआ था ना, मुझे लगा आप उसे इंजर्ड सड़क पे मरने के लिए छोड़ आए हो।
2: व्हाट?
0: यस, मैंने माय पापा के बारे में इतनी हॉरिबल बात

0: बच्ची और घर से भाग गई।
1: भाई मायरा के दिल में कबीर के लिए प्यार और उसके चेहरे पर उदासी अभीरा साफ साफ देख पा रही है। तभी तो उसे उसकी बातें समझ नहीं आ रही और वो अपने ही टेंशन में परेशान हो रही है।
2: ओवरथिंक मत करो अभीरा।
3: तुम इतने रिलैक्स कैसे हो?
2: होने होने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने स्ट्रिक्ट पापा, पॉपकॉर्न पापा सब बन के देख लिया, पर मेरी बेटी तो भाग गई ना। अब मैं बेटी पे भरोसा करने की कोशिश करना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता वो हमें अब छोड़ के जाएगी।
3: मुझे तो लग रहा है जैसे हमारी मायरा लौटी ही नहीं है। ऐसा लग रहा है as if कोई और ही नई मायरा आ गई है।
2: अभीरा जो कुछ हुआ उससे उसकी जिंदगी भी हिल गई है। उसे थोड़ा टाइम दो, पुरानी मायरा भी लौट आएगी।
1: ऐसे में आने वाले वक्त में फिर एक बार माँ बेटी के बीच देखने को मिलेगा कंफ्यूजन और रिश्तों में दरार।
3: वो पहले भी हमें हर्ट करने के लिए नहीं भागी थी।
2: मायरा हमारे लिए लौटी है, हमें उस पर भरोसा तो करना ही होगा। वो तुम्हारा मंकी है, गलती करेगा पर दोहराएगा नहीं।
4: थैंक्स कबीर।
3: आप बहुत जोश में गए थे मुंबई कबीर के साथ। अब भी उसे पसंद करते हो, हमसे पहले उसका नाम लेते हो, फिर अचानक वापस कैसे आ गए?
5: तुम देना साथ मेरा।
1: स्टार प्लस की सीरियल ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा में भाई रक्षित काफी टेंशन में है, क्योंकि उसकी नौकरी जो चली गई है। ऐसे में वो सोच रहा है कि आखिर उसके ससुराल वाले उसे किस तरीके से जज करेंगे। लेकिन यहाँ पर अपराजिता बन गई है उसका सहारा।
6: मैंने जॉब छोड़ दी, ये बात कैसे बोलूं उन्हें? नहीं समझेंगे मेरे बारे में। जॉब नहीं संभाल पाया, बेटी को क्या ही संभालेगा?
4: उनकी बेटी संभली हुई है, आपको उनकी बेटी को संभालने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ आपके साथ की जरूरत है। माँ बाप को सब कुछ बता पाना बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार था, और उन्हें भी तो कितनी तसल्ली होगी ना कि बच्चे उनसे कुछ छुपाते हैं। आप माँ पापा से जो भी कहेंगे ना वो समझ जाएंगे।
1: भाई घर में काफी टेंशन है और अपराजिता के भाई के कड़वे बोल सुनकर रक्षित और अपराजिता दोनों ही नाराज हो गए हैं।
4: हम ये घर छोड़ रहे हैं।
6: जब हम घर छोड़ रहे थे ना तब यही प्लान था कि हम अलग रहेंगे।
4: पापा आपने ही सिखाया ना कि अपना बोझ खुद उठाना चाहिए, वो या और अगर आपके बोझ उठाएगा तो आदत पड़ जाएगी, कंधे कमजोर हो जाएंगे। मैं भी सामान पैक कर रही हूँ।
5: ये फिदूर तेरा।
3: पर मुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है?
1: स्टार प्लस की सीरियल तेरा फितूर में भैया सौम्या ने अपनी माँ के सामने कर दिया है जीत से प्यार का इजहार। लेकिन अब काफी देर हो चुकी है, इसीलिए तो देखिए कैसे भाई सौम्या की मम्मी ने उसे ये सलाह दी है कि वो अपने प्यार को भूलकर प्रधान के रिश्ते को कबूल कर ले।
3: पर जीत सर, चुप हो जाओ। उनके और मैंने खुद अपना हाथ बढ़ाया, मैंने ऐसे उनका हाथ पकड़ा। आप जानते हैं माँ मुझे क्या महसूस हुआ?
4: चुप हो जाओ।
3: महसूस मुझे ऐसा लगा कि चाहे इस दुनिया में कुछ भी हो जाए, उनका हाथ मेरे हाथ में है तो महफूज हूँ मैं। पहली बार किसी आदमी का स्पर्श मेरे बीते हुए कल में नहीं, मेरे आने वाले कल में ले जा रहा था। पहली बार किसी के छूने से मेरे दिल को डर नहीं लगा माँ। पहली बार मुझे पता चला है कि प्यार क्या होता है। मैं जीत सर से प्यार करती हूँ।
4: आज मुझे दुनिया की सबसे खुश माँ होना चाहिए था, लेकिन गलत समय पर गलत लड़के से तूने दिल जोड़ लिया सौम्या। नहीं सौम्या, तेरे पापा जीत को नहीं अपनाएंगे।
3: मैं जानती हूँ माँ, पापा
4: रिधान के साथ कल तेरी सगाई है। अपने मन से ये प्यार निकाल दे, निकाल नहीं सकती तो भुला दे, भुला नहीं सकती तो बंद करके ताला लगा के चाबी फेंक दे, क्योंकि तेरा प्यार कभी पूरा नहीं हो सकता।
3: पूरा नहीं हो सकता है माँ? क्यों पूरा नहीं हो सकता? मैं जीत से प्यार करती हूँ, रिधान से सगाई मैं क्यों करूँ? रिधान मेरा दोस्त है माँ, मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ, मैं एक ही इंसान से प्यार करती हूँ, वो जीत सा।
1: भाई सौम्या ने जीत से अपने प्यार का इजहार तो किया, लेकिन अब शुरू होगी दोनों के बीच गलत फहमियाँ।
4: कि राख नहीं रोशन हो गए, इसलिए आज पहली बार इन्हें आवाज देकर आपसे कह देना चाहती हूँ। जीत सर,
0: अभिजीत, आई लव यू।
7: कुछ भी लिखते इस किस को सीरियसली लूं मैं, और वैसे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता।
3: मेरे प्यार के इजहार को बेकार कहते हो।
7: हेलो जूनियर,
8: सीरियल वसुधा में जल्द ही वसुधा और देव शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, और आज हो रही है इनकी हल्दी की रस्म, जहां शुरू हो गया है देव और वसुधा का हल्दी वाला रोमांस। साथ ही लगाई जा रही है देव और वसुधा को शगुन वाली हल्दी।
9: देव और वसुधा की हल्दी की रस्म।

के सीरियल वसुधा में पुनर्विवाह करने जा रहे हैं देव और वसुधा, और ऐसे में शादी की सभी रस्में शुरू हो चुकी है। पहले मेहंदी की रस्म तो हो गई और आज हो रही है हल्दी की रस्म, जिसमें देखिए कैसे वसुधा पीले रंग में रंग गई है। और आज तो उसने पहने हैं ये फूलों वाले गहने, साथ है ये फूलों वाली चुनरी भी। तो वसुधा काफी खूबसूरत लग रही है भाई दुल्हन की हल्दी जो है, लेकिन इस रूप में चार चांद तब लगे, और रूप और ज्यादा निखर कर तब आया जब देव ने वसुधा को हल्दी लगाई और वसुधा ने देव को। तो यहाँ तो शुरू हो गया है देव और वसुधा का हल्दी वाला रोमांस, जहाँ दोनों को एक दूसरे संग टाइम स्पेंड करने का मौका मिल गया। देखिए कैसे दोनों एक दूसरे में खो गए हैं।

0: आशिकी आशिकी चल ही रही होती है कि इनके रोमांस पर ब्रेक लगाने दादी पहुंच जाती है और लगाती है दुल्हा दुल्हन को फटकार, क्योंकि शादी से पहले इन्हें एक दूसरे से मिलना जो नहीं है, मजाक से फटकार लगा रही है और दोनों को एक दूसरे से अलग कर रही है।
1: ब्याह के पहले बन्ना बन्नी एक दूसरे से ना मिलते, पर तू तो अब अगर तूने अपनी लुगाई से मिलने की कोशिश करी ना, तो सबसे पहले मैं तारे पर खतर दूंगी। चल निकल यहाँ से, जा यहाँ से। और तू भी चल अंदर।
2: देव खुश है, बहुत ज्यादा खुश है कि फाइनली अब वसुधा उसकी होने वाली है, और मतलब हर तरह से उसकी होने वाली है जिस तरह वो चाहता है। तो अब दादी को भी शरारतें तो सूझती हैं, तो वो अभी वो कह रही हैं कि नहीं तुम बन्ना बन्नी अब शादी के पहले नहीं मिलोगे एक दूसरे से, हल्दी के पहले भी जैसे बच्चे करते हैं, तो उस चीज़ के लिए उसमें ज़रा प्यार की झड़क है और कुछ नहीं। दादी देव को ही नहीं वसुधा को भी कंट्रोल कर रही है कि अभी नहीं, पता भाई सारी रस्में पूरी हो जाएं, उसके बाद जब चंद्रिका पूरी तरह से अपना ले, क्योंकि अभी तक फेरे भी नहीं हुए हैं, तो जब तक फेरे नहीं हो जाते, जब तक गृह प्रवेश नहीं हो जाता, तब तक उस पर पक्की मोहर नहीं लगी।
0: खैर दुल्हनिया हल्दी की रस्म के लिए आ गई है और देखिए कैसे वसुधा की ग्रैंड एंट्री हुई। पीली चुनरी के नीचे सभी लेडीज होने वाली दुल्हनिया को लेकर आ रही हैं और साथ ही दूल्हे राजा भी आज किसी से कम नहीं लग रहे। दोनों आजू बाजू में ही बैठे हैं और शुरू हो गई है देव और वसुधा की हल्दी की रस्म, जहां सभी लोग एक एक कर दुल्हा दुल्हन को शगुन वाली हल्दी लगा रहे हैं।

0: हमारे घर की नौकरानी मतलब वसु की आंटी।
1: ऐसे में आज वसुधा अपनी माँ की तस्वीर भी अपने हाथ में लेकर आई है, क्योंकि वो अपनी माँ की कमी महसूस जो नहीं होने देना चाहती। सभी लोग इस हल्दी की रस्म में सजे धजे हैं। जहाँ दुल्हा दुल्हन ने पीला रंग चुना है, तो वहीं बाकी लोगों ने पिंक और पर्पल कॉम्बिनेशन के आउटफिट्स पहने हैं और सभी लग रहे हैं काफी कमाल।

वैसे हनुमंत भी देव और वसुधा के लिए गिफ्ट लाए हैं और यहाँ पर भी सारिका के ताने शुरू हो गए हैं। खैर हल्दी में छोटा सा ड्रामा तो हुआ लेकिन बड़ा बवाल होने से टल गया।

0: देव और वसुधा की शादी हो रही है फाइनली, मतलब चंद्रिका अब मान चुकी हैं इस बात के लिए, वो खुशी खुशी वसुधा की शादी देव से करवा रही हैं। तो अभी तक तो शादी हुई है वसुधा की, गृह प्रवेश भी हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरा नहीं था। तो आज 700 एपिसोड के बाद वो पूरा होने जा रहा है, जनता की का क्या बोलते इंतज़ार ख़त्म होने जा रहा है कि अब देव और वसुधा एक होने वाले।
1: आज वसु की हल्दी है और आपको पता ही है कि त्यौहार स्टार्ट हो गया है, वसु और देव की शादी होने जा रही है और हल्दी का सीक्वेंस चल रहा है, तो उसी का वीडियो बना रही हूँ, सब डेकोरेशन दिखा रही हूँ, लेकिन उसे में लाजवंती आ जाती है, आपने देखा, और मैं उसे डांट देती हूँ, अरे गरीब है तू, और भी गरीब लोगों को जो बड़े घर के लोग हैं उनकी शादी देखनी होती है, तो तू क्यों बीच बीच में आ रही है, तो बस वो उसे फटकार देती है। और उसके बाद भी बहुत कुछ हो रहा है, हनुमान जी के साथ भी उसकी टशन फिर से आपको देखने को मिलेगी। तारिका हनुमान जी या नौकरों के प्रति उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो आपको पता ही है वो पसंद नहीं करती है किसी को भी, ना वसु को ना ही हनुमान जी को, क्योंकि वो घर के ड्राइवर है, वो घर के नौकर है और वो उसे पसंद नहीं है। वो कितने भी अच्छे हो, मन से बहुत अच्छे हो, लेकिन उसे पसंद नहीं है। तो अब उसकी तो शादी है और हनुमान जी तो अभी समधी बन जाएंगे, तो एक ड्राइवर घर का समधी बन रहा है और वो जो छोटी सी चीज़ उसे देते हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, चेन दे रहे हैं या टॉफी दे रहे हैं, उसका वो मजाक उड़ा रही है।
2: खैर, हल्दी की रस्म तो खुशी खुशी हो गई और अब दुल्हा दुल्हन को शगुन वाली हल्दी लग गई है। अब शादी अच्छे से होती है या फिर कोई तमाशा होता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा।
3: रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं?
2: मुंबई से कैमरामैन वहादत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा।
4: सीरियल डॉक्टर आरंभी में आरंभी पर लगे हैं इल्जाम और ऐसे में शुरू हो चुका है कोर्ट रूम ड्रामा, जहां विश्वास हो गया है आरंभी के खिलाफ। आइए देखते हैं आखिर आरंभी कैसे कर रही है इन सब का सामना।
2: शुरू हुआ कोर्ट रूम ड्रामा, विश्वास ने लगाए आरंभी पर इल्जाम, आरंभी ने दिया पलट जवाब। कलर्स टीवी के सीरियल डॉक्टर आरंभी में हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, जहां पर आरंभी पर लगा है मर्डर का इल्जाम। ऐसे में कोर्टरूम ड्रामा शुरू हो चुका है, जहां उसका खुद का पति विश्वास आरंभी के खिलाफ हो गया है और देखिए कैसे आरंभी के खिलाफ वो गवाही दे रहा है। ऐसे में आरंभी के साथ अगर कोई खड़ा है तो वो है ध्रुव, लेकिन विश्वास कहां बाज आने वाला है, थप्पड़ तक की बात वो कोर्ट में ले आया है।
5: इसलिए मैं आरंभी टंडन के पति डॉक्टर विश्वास टंडन को कटघरे में बुला उनसे पूछताछ करना चाहता हूं। डॉक्टर विश्वास, आप इस कोर्ट को बताइए, आपके साथ उनका बर्ताव कैसा था, वो कैसी पत्नी है, कैसी माँ है, कैसी बहू वगैरह। अब जैसे आरंभी एक इंसान भी है, मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी औरत की आइडेंटिटी को सिर्फ एक पत्नी, माँ, बेटी, मादर के बिना ना सोचे।
6: दया, बीच में दया पर क्या बात कर रहे हैं?
7: बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन आपको जो भी कहना है आप कर देंगे आगे के लिए।
8: मेरा बच्चा कहाँ तो वो बच्चा तो ये मान नहीं पा रहा कि उसकी माँ क्रिमिनल है। अभी कुछ
9: और मैं ये मन से बातें बना कर नहीं कहता, मेरी मॉम थी वहां पर मौजूद, वो गवाह है इस बात की, वो गवाह है मेरे ऊपर हुए अटैक। सर, अगर एक पति अपनी पत्नी पर हाथ उठा ले तो तुरंत डोमेस्टिक वायलेंस का केस बन जाता है, लेकिन अगर एक पत्नी पति पर हाथ उठाए उस पर अटैक करे तो पति क्या करे, कहाँ जाए?
10: तो पूरी बात बताओ विश्वास सर, कि पहले तो मुंह चलाना है और उसके बाद में
9: कुछ ज्यादा अपने बच्चे को ले। सर, वो मेरा बच्चा बिहार वो एक ऐसी माँ के साथ बिल्कुल सेफ नहीं है जो गुस्से में आकर किसी का मर्डर कर दे। मेरी बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे बच्चे का फ्यूचर, उसकी लाइफ खराब होने से रोकिए सर।
2: भाई विश्वास तो चाहता ही है कि आरम भी उसकी जिंदगी से दूर चली जाए, और इससे अच्छा मौका भला विश्वास को कहां मिलेगा। लेकिन आरम भी चुप नहीं बैठी, उसने भी जज के सामने अपनी सच्चाई पेश की, लेकिन कोर्ट को तो सबूत चाहिए, इसलिए कुछ दिन की मोहलत आरम भी को जरूर मिली है। ऐसे में आरंभी के घर वाले काफी परेशान हैं, क्योंकि सबूत मिल नहीं रहा और उन्हें आरंभी की फिक्र भी हो रही है। लेकिन आरंभी ने ठान लिया है कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ेगी और सबूत ढूंढ कर ही रहेगी, और ऐसे में ध्रुव तो उसके साथ है ही, अब दोनों मिलकर सच का खुलासा करेंगे।
11: आप कोई उपाय भी तो
8: किसी भी हालत सो मेरे अगर वापस आना
10: उसे नाम देकर उसे मुसीबत में नहीं रख सकते।
7: सुंदर आपको कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ ना उसे लाने, और देखो जरूरत पड़ेगी तो हम उसे कोर्ट ले जाने के लिए पुलिस का प्रोटेक्शन भी लेंगे।
12: लोग तेरे पे उंगली उठाए बातें करेंगे, वरना तेरी जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी और मुसीबतें आएगी तेरी जिंदगी।
10: अकेली जाने के लिए तेरा मुझे समझ आ मेरी रहने मुझे रहने।
2: वहीं दूसरी तरफ अपनी बेगुनाही का सबूत ढूंढने के लिए अस्पताल पहुंच गई है आरंभी और साथ है ध्रुव, लेकिन यहां पर भी अवंतिका ने चाल चल दी। इस प्रेग्नेंट महिला का सहारा लेकर वो हॉस्पिटल में एंटर हो गई, और इससे पहले कि आरंभी अस्पताल के अंदर जाती खुद की बेगुनाही का सबूत ढूंढने के लिए, हॉस्पिटल में आग लग जाती है और आरंभी के प्लान पर पानी फिर जाता है, और फिर एक बार उसके हाथ निराशा ही लगती है, सबूत नहीं।
5: एक डेढ़ घंटे और लगेंगे वीडियो क्लिंग करके रिपोर्ट बता बनाने में। ठीक है तो हम अंदर ही बैठे।
2: वैसे बात करें बिहाइंड द सीन की, तो यहाँ पर ध्रुव यानी कि अरजीत का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है इस कार से, लेकिन अरजीत ठीक है,

0: हम तो यही कहेंगे कि आरंभी और ध्रुव की ये जोड़ी लोगों को पसंद भी आ रही है। अब देखना होगा कि कैसे ये दोनों आरंभी को बेगुनाह साबित करने के लिए सबूत जुटा पाते हैं।
1: मुझे ना किसी ने झूठे इल्जाम में फंसा दिया। आपको कोर्ट में आके गवाही देनी है कि मैं यहाँ पर थी।
2: आप जानती हैं?
3: मैं इसे नहीं जानती।
1: आप झूठ क्यों बोल रहे हो?
4: थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था।
2: वो तुम्हें डरा रहा है, धमका रहा है और तुम डर रही हो।
5: तुम लड़ क्यों नहीं रही? विहान के लिए, उसके फ्यूचर के लिए तुम्हें लड़ना होगा आरंभी।
0: मुंबई से कामेंद्र और शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
6: के गुनाहों का हिसाब करने की बारी मेरी है।
7: सीरियल अनुपमा में जहां एक तरफ अनुपमा हो रही है निराश, लेकिन उसके साथ है माता रानी का आशीर्वाद, तो दूसरी तरफ दिग्विजय और आरवी गुंडों से लड़ते नजर आए। ऐसे में सीरियल में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा।
8: हिम्मत नहीं है माता रानी।

वहीं दूसरी तरफ बदमाशों को सबक सिखाने के लिए दिग्विजय के साथ मिलाया प्रेम ने हाथ। प्लस के सीरियल अनुपमा में आज अनुपमा को एहसास हो रहा है कि जंग जीतने से पहले ही उसे हार मिल गई है। तभी तो देखिए कैसे वो बीच सड़क पर बैठकर अपने आंसू बहा रही है, हताश हो रही है। क्योंकि माथिला के खिलाफ लड़ने के लिए जो लोग उसके साथ आए थे सभी ने अपने कदम पीछे हटा लिए हैं। ऐसे में अनुपमा ने हार मान ही ली थी कि तभी सामने से निकलती है माता रानी की झांकी। भाई नवरात्रि शुरू हो गए हैं, ऐसे में

0: माता रानी ने खुद ही आकर अनुपमा को अपने हाथों से आशीर्वाद दे दिया। जरा देखिए कैसे उस पालकी से अनुपमा के हाथों में कमल गिर गया, जिसे पाकर अनुपमा को एहसास हो गया कि माता रानी ने उसे आशीर्वाद दिया है। लेकिन आशीर्वाद के तौर पर वो माता रानी से सलाह भी मांगती है कि आखिर वो उन्हें कोई रास्ता दिखाए। बस फिर क्या, इससे पहले कि अनुपमा पूरी तरह से हार जाती, हो जाती है न्यू एंट्री, जो थाम लेती है अनुपमा का हाथ। ऐसे में अनुपमा उठते हुए जाने अनजाने उसके पैर भी छू लेती है और रोते हुए उसे अपनी व्यथा सुनाती है।
1: आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, आप बाकियों के साथ क्यों नहीं गई?
2: इसकी अवस्थ में बाकियों के साथ चली गई तो तू अकेली रह जाएगी और मैं तुझे अकेली नहीं छोड़ूंगी। इतने दिनों तक आ नहीं पाई लेकिन आज आई हूँ तुझे बताने के लिए कि तू अकेले नहीं गई।
0: अब इस तरह से किसी अनजान का आना, हाथ थामना और साहस बढ़ाना, ये तो माता रानी के आने का ही संकेत है। जरा देखिए कैसे इस अनजान औरत ने रोते ही अनुपमा का साहस बढ़ा दिया और इस लड़ाई को लड़ने के लिए उसका हौसला बुलंद कर दिया।
2: अरे शास्त्र कहते हैं जगत माया है और ब्रह्म सत्य, संसार में सब कुछ माया है, अकेलापन भी ब्रह्म है और किसी का साथ होना भी। हमारे साथ कोई नहीं होता, केवल तीन चीजें होती है, सत्य, विश्वास और श्रद्धा। जो श्रद्धा है
1: तो फिर अकेले होने से डर क्यों रही है?
2: वो अकेले जाके दुश्मनों का संहार करती है, फिर चाहे वो रक्त बीज हो या महिला हो, कोई साथ हो या ना हो, तो एकली बहुत है, अकेली काफी होती है।
0: भाई वाकई अब अनुपमा के साथ कोई हो चाहे ना हो, अनुपमा अकेले ही लड़ेगी और ये जंग अकेले ही जीतेगी। वहीं दूसरी ओर आज दिग्विजय भी अकेले सिंघम बन गए हैं। असल में दिग्विजय चुपचाप घर की ओर जा रहे थे कि तभी कुछ बदमाशों ने उन्हें गिरा दिया, लेकिन दिग्विजय ने उनसे कुछ नहीं कहा और चुपचाप निकलने की तैयारी कर ली। लेकिन उन बदमाशों ने कर दी गलती, सामने खड़ी लड़की को उन्होंने छेड़ना शुरू कर दिया। बस फिर क्या, ये दिग्विजय देख नहीं पाए और देखिए खुद ही अकेले कमान संभाल ली।
3: हाथ छोड़ बुड्ढे,
4: दुपट्टा छोड़ वरना तेरे हाथ के साथ ये दुपट्टा बच्चे को वापस कर दूंगा।
3: अरे कहाना हाथ छोड़। मैं छुड़वाना, बॉडी और दिमाग सब हिल गया, अब बुड्ढे की बहुत ताकत है।
4: अब समझ में आया कि ये थैले उठाने वाले हाथों में कितनी ताकत होती है। घर जाके अपनी मम्मा की हेल्प कर देना, ये कमजोर कलाइयां थोड़ी मजबूत होती हैं।

0: क्यों निकल?
1: तुम जाओ बेटा, इन दोनों को मैं देख लूंगा। यो देश का फ्यूचर है, लेकिन जब फ्यूचर ब्राइट ना लगे तो प्रेजेंट में ही उसे दुरुस्त कर देना चाहिए।
2: भाई दिग्विजय इन दो को तो सबक सिखा ही देते, लेकिन बाकी दो और भी आ गए जिन्होंने दिग्विजय को धक्का दे दिया। वो तो शुक्र है कि दिग्विजय का साथ देने के लिए वहाँ प्रेम पहुँच गया, और उसके साथ तो आरवी भी है। फिलहाल तो प्रेम ने दिग्विजय का हाथ थामा और उन बदमाशों से भिड़ने के लिए आगे बढ़ चले।
3: इन्हें कभी बैसाखी की जरूरत थी ही नहीं, लेकिन अब हम दो तुम पांचों को ऐसा तोड़ेंगे कि तुम बैसाखी के लिए तरसोगे।
4: अरे तुम दो नहीं, एक है एक और एक साथ है सीनियर सिटीजन डिस्काउंट में।
1: अब डिस्काउंट का टाइम खत्म, फुल वसूली का टाइम अब शुरू।
3: बेटा तुम पांच और हम एक और एक यार।
2: भाई प्रेम और दिग्विजय मिलकर इन बदमाशों को सबक सिखा ही रहे थे कि तभी इन बदमाशों में से किसी एक ने कर दिया दिग्विजय पर हमला। लेकिन वहाँ पर आरवी बन गया अपने पापा दिग्विजय का रक्षक। और तो और, अब तो प्रेम के साथ आरवी भी उन बदमाशों से भिड़ गया। खैर बदमाश तो वहाँ से भाग निकले, लेकिन दिग्विजय को चोट लगने के कारण प्रेम उसे अस्पताल ले जाना चाहता है, लेकिन दिग्विजय ने जाने से मना कर दिया और उनकी सारी बातें अनसुना कर वहाँ से आरवी भी चला गया, जो ये जता रहा है कि वो दिग्विजय को नहीं बल्कि अपने दोस्त प्रेम को बचा रहा था, वो भी इन गुंडों से। खैर पापा बेटे के बीच भले ही कितनी ही दूरियां क्यों न हो, लेकिन किस्मत बार बार इनको इस सिचुएशन में डाल ही देती है कि दिग्विजय अपने पापा होने का फर्ज निभाते हैं और आरवी अपने बेटे होने का। देखना होगा कि कब इनके बीच की गलतफहमियां दूर होंगी और कब इनका रिश्ता फिर से सुधरेगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
5: एक तरफ जहां सीरियल की मसाला खबरें हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रियलिटी शोज की दुनिया में लगा है मनोरंजन का तड़का। चलिए देखते हैं कि इस रियलिटी शो में क्या मजेदार हो रहा है।
6: कंट्री को देश कहते हैं और जो आपके सामने खड़ा है उसे हिमेश कहते हैं। हिंदुस्तान मेरी जान, वेलकम टू इंडियन आइडल। वॉइस में विक्ट्री, जोड़ीज में केमिस्ट्री और परफॉर्मेंस जो बदल दे हिस्ट्री। सो लेट द गेम्स बिगिन। यहाँ आए हैं 22 सेलिब्रिटी सिंगर्स जो करेंगे जोड़ियों में परफॉर्म। और पहली बार ये सिंगर्स करेंगे एक दूसरे को स्कोर।
7: अकेले निहाल नहीं दिए ना? नौ। अच्छा ही,
8: बिल्कुल सही था यार। क्या है
7: आप
8: मुझे जो लग रहा है
7: आपने टेन दिए। करेक्ट है, करेक्ट।
8: तो सर सुनो, मेरी बात तो सुनो।
7: फर्स्ट मुझे लगता है आपने अपनी नाक अड़ाई है, एक नंबर का।

0: टॉप होगा तो कोई शायद फ्लॉप होगा।
1: अमित भाई, आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी मुझे। जो भी आपने डांस करने की कोशिश की, पता नहीं डांस करना चाह रहे थे, आपकी फ्लिप करना चाह रहे थे, व्हाटएवर इट इज,
2: जबरदस्ती ग्रेट मत बोलो, ये रिस्पेक्ट तो नहीं है।
3: इस बार पहले सीजन वाले भी जीतते हुए देखेंगे हमें।
0: पॉपकॉर्न बहुत ज्यादा उछल रहे हैं और तवा गर्म हो चुका है।
4: 2004, वो साल जब पूरा इंडिया टीवी के सामने बैठा रहता था। लाखों की लाइन में दो आवाजें ऐसी थी जिनकी तरफ पूरे देश का झुकाव थोड़ा ज्यादा था, अमित सना और प्राजक्ता शुक्रे।
5: सजन आयोडी,
6: अब आ जाइए मुंबई, आ जाइए।
4: इनके सपनों को कुछ यूं सब्सक्राइब किया कि अमित और प्राजक्ता के सपनों को पूरे इंडिया ने अपना लिया।
7: फर्स्ट इंडियन आइडल इज
8: अभिजीत सावंत।
4: लेकिन जब इंडियन आइडल का ताज इनके सर पर सजा नहीं तो मानो फैंस के लिए दुनिया में कुछ बचा नहीं। लेकिन फिर एक बार उन सपनों के सवरने की बारी है, वो लौट कर आ रहे हैं।
0: पल में लोगों को भूल जाते हैं, लेकिन आप दोनों वो हैं जिनको दुनिया आज भी याद रखती है।
9: आप दोनों के लिए एक खास मैसेज आया है।
6: प्राजक्ता एंड अमित, आप दोनों को मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। आप दोनों बाकी सारे सिंगरों के ना छक्के छोड़ा देना।
0: वो
10: मैं छेड़ के मन का साज साज फिर गाऊंगा, फिर सबके दिल को आज आज बहलाऊंगा।
2: अभिजीत सावंत के बिना इंडियन आइडल वन कैन नेवर बी इंडियन आइडल वन।
9: तीनों ओजी हमारे इंडियन आइडल के।
1: और वैसे कौन था वो बुली कर रहा था
2: अमित को?
9: ये है हमारी अगली जोड़ी के दोनों सिंगर्स की म्यूजिकल कुंडलियां। बैरास बॉस ने दोनों की कुंडलियों को मिलाया, 36 के 36 गुण एक दूसरे से मैच कर गए। और जब इन दोनों ने अपने डुएट का वीडियो इंटरनेट पर डाला तो उसको 40 मिलियन प्लस व्यूज मिल गए।

0: एक मिनट, एक मिनट, जलने की बू आ रही है यार, जलने की बू क्यों आ रही है यहाँ से?
1: हाँ तेरी तो
2: पिछले सीजन मैं और मनराज कितने अच्छे दोस्त थे। यार मैं और मनराज इस सीजन में बहुत अच्छे से परफॉर्म किए तो इस सीजन में भी करेंगे, लेकिन एक विनर के लिए टांग दे दी इसने मुझे।
0: आपके दोस्त का सच जो है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए
3: अंशिका के साथ ना कभी एक जो आर्टिस्टिक फ्रीडम होती है ना वो मुझे कभी आई नहीं।
2: मिल गया
4: कौन सा फ्रीडम?

0: डैडी, उनका भी ये फेवरेट गाना था।
1: सीरियल्स के सेट पर मचे हंगामों और पर्दे के पीछे की इनसाइड स्टोरीज के साथ आज का हमारा ये सफर यही पूरा होता है। लेकिन मनोरंजन का ये सिलसिला कल फिर जारी रहेगा और हम लेकर आएंगे कुछ और दिलचस्प और मसालादार खबरें। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
6: एवरेस्ट दिखा लाल, सही दिखा सही लाल।
7: देश भर में सजे माँ दुर्गा के भव्य पंडाल, एमपी के नर्मदापुरम में न्यायमूर्ति के रूप में विराज भी माँ, गुजरात के जामनगर में स्वास्तिक रास की परंपरा। गुजरात में दिखा तकनीक और संस्कृति का संगम, राजकोट में पहली बार रोबोट ने खेला गरबा, पृथ्वी है रोबोट का नाम। यूपी के महोबा में शक्ति उत्सव की धूम, गरबा और डांडिया महोत्सव में 350 से ज्यादा महिलाओं की मनमोहक प्रस्तुति, नन्ही बच्चियों ने भी बढ़ चढ़ कर लिया इसमें हिस्सा। झांसी में दिखा त्रेता जैसे जनकपुर का नजारा। 102 साल पुरानी राम बारात में उमड़ा आस्था का मेला। भव्य झांकियों ने मोहा सभी का मन। छठ दिवाली पर बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए गुड न्यूज आई सामने। दिल्ली से पटना चलेगी 16 कोच की स्पेशल वंदे भारत ट्रेन। लगभग 13 घंटे में पूरा होगा सफर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: नवरात्रि के 14 दिन देश भर में आज माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की हो रही पूजा। मान्यता है कि माँ कुष्मांडा ने अपनी मुस्कान से की थी ब्रह्मांड की रचना। पूरे ब्रह्मांड के तेज की स्वामिनी मानी जाती है माँ कुष्मांडा। माँ कुष्मांडा की पूजा उपासना से रोग शोक का होता है नाश, जटिल रोगों से भी मिलती है मुक्ति। शेर पर सवार आठ भुजाओं वाली बेहद शांत मुद्रा की भक्त वत्सल देवी है माँ कुष्मांडा। हाथों में कुंभ चक्र गदा सिद्धि निधि का जाप करने वाली माला कमल का फूल और अस्त्र शस्त्र धारण करती है माँ कुष्मांडा। हरे वस्त्र धारण करके करना चाहिए माँ कुष्मांडा का पूजन। मान्यताओं के मुताबिक माँ कुष्मांडा को मालपुआ पेठा कद्दू की मिठाई का लगा सकते हैं भोग। माँ की उपासना से जन्म जन्मांतर के कष्ट और निराशा नष्ट हो जाती है। जानकार बताते हैं कि माँ कुष्मांडा की कृपा से आयु यश बल और धन में अपार वृद्धि होती है। दिल्ली के झंडे वाला हनुमान मंदिर में नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा का भव्य श्रृंगार किया गया। माँ कुष्मांडा की उतारी गई आरती, आरती में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। श्रद्धालुओं ने जमकर लगाए जय माता दी के जयकारे। भक्तों ने पूजा कर लिया माँ का आशीर्वाद। दिल्ली के छतरपुर में नवरात्र को लेकर उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में लोगों ने की मां की पूजा अर्चना। सुबह से छतरपुर मंदिर में लगी भक्तों की भीड़, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। हैदराबाद में देवी नवरात्र के चौथे दिन चार मीनार स्थित भाग्यलक्ष्मी मंदिर में महाआरती का आयोजन। सुबह से ही दर्शनों के लिए लगी लंबी कतारें। माँ भाग्यलक्ष्मी मंदिर में माँ का किया गया विशेष श्रृंगार। भक्तों ने जमकर लगाए जयकारे। देवी नवरात्र के चौथे दिन हैदराबाद के भाग्यलक्ष्मी मंदिर में श्रद्धालुओं ने की मां की पूजा अर्चना और की सुख समृद्धि की कामना। पुरी में नवरात्र के चौथे दिन भगवान जगन्नाथ की उतारी गई विशेष आरती। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस दौरान शामिल हुए। भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए सुबह से ही लगी भक्तों की लंबी कतारें। भक्तों ने जमकर लगाए जयकारे। अकोला में मां सप्तशृंगी का प्राचीन मंदिर, वहां पर उमड़ी आस्था। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन पूजन। सप्तशृंगी मंदिर में विजयदशमी के दिन सोना अर्पित करने की विशेष परंपरा है। श्रद्धालु मां के चरणों में सोना चढ़ाकर अपनी आस्था प्रकट करते हैं। मां सप्तशृंगी मंदिर में श्रद्धालु मां की पूजा अर्चना कर परिवार की सुख समृद्धि और मनोकामनाओं की आस लगाते हैं। जमकर लगाए जयकारे। जयपुर में नवरात्र के चौथे दिन मां वैष्णो देवी का भव्य श्रृंगार किया गया। मां को विशेष नीले रंग की साड़ी पहनाकर फूलों से दरबार को सजाया गया। माँ के श्रृंगार की खास परंपरा, दिन भर में 4 से 6 बार तक बदली जाती है माँ की साड़ी। जमशेदपुर में दुर्गा पूजा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह। पूजा पंडालों में दुर्गा माँ के दर्शन के लिए लग रही लोगों की भीड़। जमशेदपुर के विश्वजीत मिल पूजा पंडाल को काल्पनिक थीम पे भव्य पंडाल की तरह सजाया गया। भगवान विष्णु के सभी अवतारों को दर्शाया गया। पूजा पंडाल के जरिए सनातन संस्कृति को जीवंत रखने की पहल। पंडाल बना आकर्षण का मुख्य केंद्र। रायसेन में नवरात्र के चौथे दिन मां कंकाली मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन पूजन। नवरात्र के अवसर पर मां कंकाली के दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंच रहे श्रद्धालु। भक्तों ने की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना। प्रयागराज में पारंपरिक श्रृंगार चौकियों की भव्य शोभा यात्रा। सजी धजी चौकियों और जय श्री राम के जयकारों के बीच श्रद्धालु भक्ति और उत्साह से सराबोर नजर आए। प्रयागराज की रामलीला परंपरा में कोतवाली में भगवान श्री राम और लक्ष्मण की चौकियों का खास मिलन। दृश्य को देख के श्रद्धालु भाव विभोर उठे। श्रृंगार चौकियों की शोभा यात्रा धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विरासत की अनूठी मिसाल पेश की गई। प्रभु श्री राम के आदर्शों और मर्यादा का संदेश देती इस परंपरा को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। अकोला के प्राचीन महाकाली मंदिर में उमड़ी आस्था। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए मां के दर्शन। महाराष्ट्र महाराष्ट्र के अकोला स्थित माँ महाकाली मंदिर में मराठी और हिंदी में आरती करने की वर्षों पुरानी परंपरा, कासार समाज नवरात्र में करते हैं विशेष पूजन। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में नवरात्र के चौथे दिन उतारी गई मां की आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस दौरान शामिल हुए। दिल्ली के चितरंजन पार्क के सबसे बड़े मेला ग्राउंड में नवरात्र का पंडाल बनकर तैयार हुआ, माता की प्रतिमा भी स्थापित की गई, 15 अक्टूबर से होगी पूजा अर्चना। रोहतास में मां दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे कारीगर भव्य पंडाल बनाए गए। दुर्गापुर में निर्माण थीम पर बना पंडाल, बड़ी संख्या में पंडाल देखने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। लोहे के स्ट्रक्चर और फाइबर की मदद से तैयार किया गया पंडाल, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल ने किया इसका उद्घाटन। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के दिखी रौनक, अलग अलग थीम पर बनाए गए दुर्गा पूजा के पंडाल। हावड़ा के सहयात्री क्लब ने तैयार किया भव्य दुर्गा पूजा पंडाल, केदारनाथ धाम की थीम पर तैयार किया गया भव्य पूजा पंडाल। केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर बनाए गए मंडप को देखने पहुंच रहे श्रद्धालु और दर्शक पंडाल के जरिए हावड़ा में ही केदारनाथ की यात्रा का अनुभव ले सकेंगे श्रद्धालु। मंडप के निर्माण में प्राकृतिक सामानों का किया गया है इस्तेमाल, अग्निरोधी सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया गया है इसका निर्माण। लगभग 26 लाख रुपए की लागत से करीब 2 महीने में तैयार किया गया है पूजा पंडाल, उद्घाटन के बाद आम दर्शकों के लिए खोला जाएगा ये मंडप। पश्चिम बंगाल महाअष्टमी से पहले ही दिखने लगी दुर्गा पूजा की रौनक, पुरुलिया में तैयार किया गया भव्य दुर्गा पूजा का पंडाल। पुरुलिया के नहिड़ा बारूयारी दुर्गा पूजा कमेटी का दुर्गा पंडाल बना आकर्षण का मुख्य केंद्र, टेराकोटा थीम पे तैयार किए गए पूजा पंडाल देखने के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। इस साल अपना 100वां साल मना रही है नहिड़ा बारूयारी दुर्गा पूजा कमेटी, खास अंदाज में बेहद सुंदर तरीके से की गई पंडाल की सजावट। पंडाल की सजावट में बंगाल की पारंपरिक कला और स्थानीय संस्कृति की शैली देखने को मिली, पंडाल की थीम के साथ तैयार की गई मां दुर्गा की बेहद सुंदर प्रतिमा। दुर्गा पूजा पंडाल और दुर्गा प्रतिमा की सजावट में भारी कलाकारी और पारंपरिक शिल्प का किया गया है इस्तेमाल, पंडाल में की गई लाइटिंग लगा रही है इसमें चार चांद। झांसी में 102 साल पुरानी धूमधाम से निकली राम बारात, भगवान श्री राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के स्वरूपों के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। राम बारात में भगवान शिव और माता पार्वती की झांकी बनी लोगों के बीच मुख्य आकर्षण का केंद्र। श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा और आरती कर भगवान का किया स्वागत, बैंड बाजे धार्मिक झांकी और जय श्री राम के जयकारों से गूंजा पूरा इलाका। मां काली की झांकी, अग्नि प्रदर्शन और दक्षिण भारत से आए कलाकारों ने दी शानदार प्रस्तुति, लोगों ने कैमरे में कैद की तस्वीरें। 102 साल पुरानी इस परंपरा में बुंदेलखंड के दूर दराज के इलाकों से भी पहुंचते हैं लोग, जमकर लगाए गए जय श्री राम के जयकारे। राजकोट में नवरात्रि के चौथे दिन गरबा की धूम नजर आई, बजरंग गरबी मंडल ने पारंपरिक अग्नि गरबा पेश किया। राजकोट में अग्नि गरबा के दौरान 6 महिलाएं सिर पर जलते हुए गरबा के बर्तन और हाथों में मशाले लेकर नृत्य करते हुए नजर आई, लोगों के बीच मुख्य आकर्षण का केंद्र बना। राजकोट में बजरंग गरबी मंडल की अग्नि गरबा परंपरा लगातार 18वें साल से जारी है, नवरात्रि के दौरान पेश किया जाने वाला यह अनोखा आयोजन गुजराती संस्कृति और पारंपरिक गरबा का। अहमदाबाद नवरात्रि गरबा महोत्सव का आयोजन सीएम भूपेंद्र पटेल और डिप्टी सीएम इस दौरान इसमें शामिल हुए। नवरात्रि के अवसर पर महाआरती का भी आयोजन किया गया, सीएम भूपेंद्र पटेल और डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने मां जगदम्बा की आरती कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। रामनगर में नवरात्रि के दौरान कड़ियावाड़ के युवाओं ने जलते हुए अंगारों पर किया स्वास्तिक रास, बड़ी संख्या में लोग इस दौरान शामिल हुए। रामनगर के कड़ियावाड़ में नवरात्रि के अवसर पर युवाओं ने 52 साल पुरानी परंपरा को जीवंत किया, जलते अंगारों पर रास कर युवाओं ने धार्मिक आस्था और परंपरा का अनूठा उदाहरण पेश किया। जामनगर में नवरात्रि में आस्था और परंपरा का अनोखा संगम देखने को मिला, नवरात्रि के दौरान कड़ियावाड़ का स्वास्थ्य रास आकर्षण का मुख्य केंद्र बना। वडोदरा में गरबा के रंग में रंगी महिलाएं पुलिसकर्मी पारंपरिक गरबा पोशाक में नजर आए। वडोदरा में नवरात्रि के उत्साह के बीच महिला पुलिसकर्मियों का पारंपरिक गरबा लोक आकर्षण का मुख्य केंद्र बना, रंग बिरंगे गुजराती परिधानों ने बढ़ा दी उत्सव की रौनक। सूरत में गरबा उत्सव की धूम नजर आई, पारंपरिक गुजराती परिधानों में महिला और पुरुषों ने जमकर किया गरबा। नवरात्रि के चौथे दिन गरबा महोत्सव में उत्सव चरम पर, ढोल की थाप संगीत पर झूमते नजर आए लोग। नवरात्रि के गरबा महोत्सव में महिलाओं ने सुरक्षा इंतजामों की सराहना की। रात 3 बजे तक किया गरबा डांस। नवसारी में भी गरबा के दिखे रौनक। बड़ी संख्या में लोगों ने लिया इसमें हिस्सा। नवसारी में पारंपरिक डोरी रास की अनूठी छटा देखने को मिली। करीब 120 साल से चली आ रही है ये परंपरा।
5: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

भाई और बहनों नमस्कार, मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूँ वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूँ, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि

इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं, न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं, इसका जीता जागता साबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रविगिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं, दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं, इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं, इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे, और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है? जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है, बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है।

0: न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी धीरे पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है? रोमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है, क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है, जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है। इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं, जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं, उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर यह सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में ये है ज्योतिषमती। ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंध पत्थर। ये गंधपुरा पत्थर में 85-99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग। इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजन करी तेल। इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रोइंटेस्टाइटिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु। ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल। ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है। यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। यह है ट्रिक टू। इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन। अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म। यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है। साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है। यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं। फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
2: दुर्गा सप्तशती के अलग अलग अध्यायों का महत्व क्या है? दुर्गा सप्तशती के किस अध्याय से कौन सा मिलता है वरदान? दुर्गा सप्तशती के पाठ का क्या है विधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: देश भर में सज रहे माँ दुर्गा के भव्य पंडाल, एमपी के नर्मदापुरम में न्याय मूर्ति के रूप में विराजी माँ, गुजरात के जामनगर में स्वास्तिक रास की परंपरा। गुजरात में दिखा तकनीक और संस्कृति का संगम, राजकोट में पहली बार रोबोट ने खेला गरबा, पृथ्वी है रोबोट का नाम। उत्तर प्रदेश के महोबा में शक्ति उत्सव की धूम, गरबा और डांडिया महोत्सव में 350 से ज्यादा महिलाओं की मनमोहक प्रस्तुति, नन्ही बच्चियों ने भी बढ़ चढ़ कर लिया इसमें हिस्सा। झांसी में दिखा त्रेता जैसे कान जनकपुर का नजारा, 102 साल पुरानी राम बरात में उमड़ा आस्था का मेला, भव्य झांकियों ने मोहा सभी का मन। छठ दिवाली पर बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए गुड न्यूज आई सामने, दिल्ली से पटना चलेगी 16 कोच की स्पेशल वंदे भारत ट्रेन, लगभग 13 घंटे में पूरा होगा आपका सफर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुन।
3: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास शो प्रार्थना हो स्वीकार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। नवरात्रि के इस पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है और इन 9 दिनों में देवी माँ की साक्षात कृपा बरसती है। आज महिमा जानेंगे माँ दुर्गा के पांचवें स्वरूप यानी की देवी स्कंद माता की, जिन्हें शास्त्रों में भगवान कार्तिकेय की माता माना गया है। मान्यता है कि माँ स्कंद माता की कृपा हो जाए तो संतान से जुड़ी हर समस्या दूर हो सकती है और मिल सकता है संतान का सुख। ज्योतिष के जानकार ये बताते हैं कि मां स्कंद माता की पूजा करने से आपकी सूनी गोद भर सकती है। तो चलिए जानते हैं नवरात्र के पांचवें दिन मां स्कंद माता से जुड़े कौन से प्रयोग करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं।

नवरात्रि में पाना चाहते हैं संतान का वरदान, स्कंद माता की पूजा से होगा कल्याण, जिनकी कृपा से भर जाती है सोनी गोद, जिनकी कृपा से दूर हो जाते हैं रोग, वो है मां स्कंद माता।

0: देवी स्कंद माता की उपासना उनके लिए बेहद कल्याणकारी है जो संतान सुख से वंचित हैं। सच्चे मन से की गई देवी की आराधना और ज्योतिषीय उपायों को अगर आप अपनाएं तो नवरात्र का पांचवा दिन आपकी संतान की कामना के लिए विशेष फलदायी हो सकता है।
1: जिनको संतान की कामना हो वह संतान के लिए कार्य कर सकती हैं, और जिनको विद्या बुद्धि में एकाग्रता नहीं आती है विद्या प्राप्ति करने में, ऐसे लोगों को भी अपने बच्चों को स्कंद माता का पूजन कराने से उन बच्चों की बुद्धि तीव्र होती है और उनको लाभ मिलता है।
0: स्कंद कुमार की माता यानी देवी पार्वती ने जब सृष्टि को सजा संवार दिया तो जग में हर तरफ बिखर गई खुशियां, लेकिन इन खुशियों पर ग्रहण उस वक्त लग गया जब राक्षसों ने देवलोक से लेकर पृथ्वी तक हाहाकार मचा दिया। यहाँ तक कि असुरों की शक्ति के आगे देवराज इंद्र का सिंहासन भी डगमगाने लगा। उस समय दुष्ट राक्षसों से स्वर्गलोक को बचाने के लिए जगत जननी ने सनत कुमार यानी कुमार कार्तिकेय को जन्म दिया, जिन्होंने बाद में देवताओं का सेनापति बनकर अपनी वीरता और पराक्रम के बल पर देवताओं को असुरों से मुक्ति दिलाई। स्कंद की माता यानी भगवान कार्तिकेय की माता माँ स्कंद माता कहते हैं, इनकी उपासना से सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। देवी के हर स्वरूप की पूजा से आपकी किसी न किसी समस्या का निवारण जरूर होता है। नवरात्रि के पांचवी तिथि पर जो भक्त स्कंद माता की आराधना करते हैं, माता उन पर अपनी संतान के समान स्नेह लुटाती हैं।
1: नवरात्रि के पांचवें दिन पंचमम स्कंद माती, स्कंद माता की पूजा की जाती है। यह भगवती मातृत्व संतान एवं करुणा की शक्ति से भरी हुई हैं, और यह भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता हैं, इसीलिए इन्हें स्कंद माता कहा जाता है, और नवदुर्गा के पांचवें स्वरूप में इनकी पूजा की जाती है।
0: अगर कई कारणों से आपको संतान सुख मिलने में बाधा आ रही है तो पहले समझिए इसके पीछे के ज्योतिषीय कारण क्या हो सकते हैं। कुंडली का पांचवा, नवा और ग्यारहवा भाव संतान से संबंध रखता है। इसके अलावा सप्तम भाव भी गर्भ का भाव है। इन भावों की स्थिति खराब होने पर संतान होने में समस्या आ जाती है। इसके अलावा बृहस्पति संतान कारक होता है, इसकी स्थिति पर विचार करना भी आवश्यक है। इन तमाम चीजों को देखकर ही संतान के बारे में जान सकते हैं। माँ स्कंद माता की पूजा से ही बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना भी अपने आप हो जाती है। देवी की विधि विधान से पूजा कैसे करें, उससे पहले समझिए माँ स्कंद माता की महिमा।
1: देवी पार्वती ने देवसेना के पति के रूप में, जो षोडश मातृकाओं में देवसेना आती हैं, उनके पति के रूप में प्रसिद्ध स्कंद अर्थात कार्तिकेय को जन्म दिया। स्कंद माता का जो स्वरूप है उसी मातृशक्ति का स्वरूप है, जो अपने पुत्र की रक्षा और उसके विकास के लिए निरंतर तत्पर रहती हैं।
0: नौ दुर्गा का पांचवा स्वरूप स्कंद माता का है। कार्तिकेय की माता होने के कारण इनको स्कंद माता कहा जाता है। माता चार भुजाधारी कमल के पुष्प पर बैठती हैं। इनको पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इनकी गोद में कार्तिकेय भी बैठे हुए हैं। इनकी पूजा से कार्तिकेय की पूजा स्वयं हो जाती है। स्कंद माता की पूजा से बृहस्पति से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं। संतान प्राप्ति की हर तरह की समस्या माँ की पूजा से दूर हो जाती है। पाचन तंत्र से जुड़ी बीमारियां माँ की कृपा से दूर होती हैं, गंभीर बीमारियां ठीक होती हैं।
1: कहा गया है कि यह सिंह पर विराजमान है, गोद में बालक स्कंद को धारण किए हैं, हाथों में कमल का पुष्प धारण किए हैं, ऐसे रूप में इनका ध्यान किया जाता है। उनका स्वरूप मातृत्व, करुणा और संरक्षण का प्रतीक है।
0: माँ स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। माँ अपने भक्तों को अलौकिक तेज और कांति से संपन्न बनाती हैं। माँ स्कंद माता की पूजा उन लोगों के लिए विशेष कल्याणकारी है जिनकी गोद अभी तक सूनी है। तो आखिर माँ से कैसे मिलेगा संतान का वरदान, ये भी बताएंगे। माँ स्कंद माता को प्रसन्न करने की क्या पूजा विधि है, ये हम आपको आगे बताएंगे। आप बने रहिए।
2: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि माँ स्कंद माता की उपासना से बुद्धि और यश की प्राप्ति होती है और साथ ही विशुद्ध चक्र जागृत होकर मन में शांति की अनुभूति होती है। कहते हैं कि नवरात्र में माँ से जो भी मांगो वो मुराद माँ पल भर में पूरी कर देती हैं। तो चलिए ऐसे में आपको माँ स्कंद माता का विशेष मंत्र और पूजा विधि के बारे में बताते हैं जिससे आपकी संतान की कामना देवी माँ की कृपा से पूरी हो सकती है।

0: पूरी करती है हर मुराद वो माता। ममता की मूरत है माँ स्कंद माता। संतान सुख किसे प्यारा नहीं होता, सभी अपनी संतान में अपनी झलक देखने के लिए बेताब रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता। संतान सुख से कई दंपत्ति वंचित रह जाते हैं। नवरात्र का ये पावन समय माँ जगदम्बा की कृपा पाने के लिए बेहद फलदायी है। देवी की कृपा और उनकी साधना से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण हो सकती है। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि अगर आप संतान सुख से वंचित हैं, तो स्कंद माता की पूजा आराधना से आपकी झोली खुशियों से भर जाएगी।
1: संतान प्राप्ति के लिए भगवती स्कंद माता के मंदिर में जाकर के और वह जो एक मंत्र है ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः, यह जो मंत्र है वैजयंती की माला से इसका 108 बार जप करने से भगवती से प्रार्थना करें तो भगवान श्री कृष्ण विष्णु स्वरूप हैं, उनका मंत्र भगवती के साक्षी बना करके इन मंत्रों का अगर जो माता जप करे उनको जिस शीघ्र संतान की प्राप्ति होती है।
0: कहते हैं नवरात्र के पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा से भक्तों को शक्ति संग कार्तिकेय की पूजा का भी फल प्राप्त होता है। माँ स्कंद माता की पूजा से बृहस्पति मजबूत होता है, बृहस्पति से जुड़ी तमाम तरह की समस्याएं दूर होती हैं, और जिन माताओं की गोद संतान की खुशियों से वंचित हैं, उन्हें वीर और तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। तो कैसे करें देवी स्कंद माता की पूजा?
1: इन माता को स्कंद माता को सफेद पुष्प, सफेद कमल का पुष्प, श्वेत अक्षत, धूप दीप, नैवेद्य, इनको केले का भोग लगाने का विशेष मान्यता दिया गया है कि केले का भोग लगावें तो ज़्यादा अच्छा होता है। कदली का जो नैवेद्य भगवती को लगता है वह विशेष, क्योंकि केला मनुष्य के लिए ऊर्जादायक होता है और माता का जो भोग होता है वह बालक अगर खाएं उनके अंदर ऊर्जा शक्ति बढ़े, इसलिए भगवती को सभी नैवेद्य के साथ केले का भोग लगाना बहुत आवश्यक है।
0: स्कंद माता की पूजा से संतान की प्राप्ति सरलता से हो सकती है। संतान से कोई कष्ट हो रहा हो तो उसका भी अंत हो जाएगा। स्कंद माता की पूजा में पीले फूल अर्पित करें तथा पीली चीजों का भोग लगाएं। अगर पीले वस्त्र धारण किए जाएं तो पूजा के परिणाम अति शुभ होंगे। संतान संबंधी प्रार्थना करें। किसी भी पूजा को संपूर्ण तभी माना जाता है जब आप अपने आराध्य की कोई प्रिय वस्तु उन्हें भेंट करें या अर्पित करें। तो चलिए अब आपको बताते हैं वो विशेष प्रसाद जिसके अर्पण से माँ स्कंद माता प्रसन्न होती हैं। माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाएं, इसके बाद इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। संतान और स्वास्थ्य दोनों की बाधाएं दूर होंगी। स्कंद माता का रूप और सौंदर्य अद्वितीय है। माता को वात्सल्य और प्रेम की देवी कहा जाता है। तो आइए आपको बताते हैं माँ स्कंद माता का वो विशेष मंत्र जिससे आप माँ तक अपनी संतान की मनोकामना को पहुंचा सकते हैं।
1: इनका जो प्रसिद्ध मंत्र है सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित कर द्वया सुमद आशु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी, यह इनका मंत्र है कि जो सिंहासन पर बैठी हैं, हाथों में पद्म लिए हैं और शुभ हमेशा मनुष्य का शुभ करती स्कंद की जो माता है, यह हम मुझे यश प्रदान करें, यह भगवती का मंत्र है। देवी स्कंद माता यही नमः या ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद मात्रे नमः, इनका विशेष मंत्र है।
0: संतान प्राप्ति का विशेष मंत्र नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तो नाशी श्यामी विंध्याचल निवासिनी। तो आप भी बताए गए मंत्र का जाप करें, माँ स्कंद माता की आराधना करें, माँ आपकी मुरादें जरूर पूरी करेंगी।
2: संतान के होने में देरी या संतान का ना होना जीवन की एक बड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन नवरात्र में एक ज्योतिषीय महाप्रयोग से आपकी संतान संबंधी बाधा का निदान हो सकता है। संतान से जुड़ा अब एक महा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, जिससे आपकी ये मनोकामना पूरी हो सकती है। गौर से देखिए।
0: माँ जगदम्बा ममता की मूर्त है। आदिशक्ति कल्याणमयी है, प्रेममयी है। शक्ति की उपासना की ये दिन महाफलदायी है। माता के दर्शन करने, उनके चरणों में शीश झुकाने, दूर दूर से माता के दरबार में भक्त आते हैं। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने में हर भक्त लगे हैं। इसलिए यदि भक्त सच्चे मन से केवल देवी का नाम भी लें, यानी कि उनके नाम का जप करें, तो सभी संकट दूर हो सकते हैं। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं वो महा उपाय जो आप नवरात्रि में किसी भी दिन कर सकते हैं।
1: जिन दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति करनी है, उन लोगों के लिए उपाय है कि भगवती के यहाँ नित्य ले जा करके 5 फल, वो फल सड़े गले न हो, और उस फल में केला अमरूद निकाल दें, जो कि आशीर्वाद में महिलाओं को दिया नहीं जाता है। उसके अलावा जो भी फल है, वह 5 फल भगवती को नवरात्र में प्रतिदिन अर्पण करें, और कभी कभी ले जा करके मंगलवार के दिन भी भगवती को 5 फल अर्पण करते हैं, तो उन्हें संतान लाभ होता है।
0: अगर संतान प्राप्त करने में समस्या हो रही हो, तो नवरात्रि के किसी भी दिन देवी को एक नारियल अर्पित करें, नारियल के चारों ओर रक्षा सूत्र बांध दें, इसके बाद ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का अधिक से अधिक जप करें। नवरात्रि के बाद इस नारियल को पीले कपड़े में लपेटकर अपने शयन कक्ष में रख लें।
1: जो सरल मंत्र अगर कहा जाए तो देवी स्कंद मातायै नमः, या तो वही ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद मात्रे नमः, यह करने से महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती के साथ साथ स्कंद माता का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है।
0: साधक के लिए शक्ति, उन्नति, ध्यान, भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए नव दुर्गा के हर रूप की उपासना परम कल्याणकारी है। माँ की ममता का कोई पैमाना नहीं है, क्योंकि माँ का आंचल तो ममता से भरा है। देवी माँ अपने भक्तों की पुकार हमेशा सुनती हैं। आदि शक्ति का ध्यान करें, फिर आपकी बिगड़ी बना देंगी माता रानी।
3: क्योंकि उन्होंने मार्कंडेय पुराण में इस बात को कहा है कि जो लोग आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर आश्विन नवमी तक मेरा दर्शन पूजन अर्चन वंदन दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, उन सभी साधकों को सभी प्रकार की समस्याओं से मैं मुक्ति दिलाऊंगी। खासकर शत्रु बाधा, पुत्र बाधा, किसी भी ढंग की बाधा हो, तो निश्चित रूपेण इस दिन माता की आराधना दुर्गा सप्तशती का पाठ करके करने से निश्चित लाभ होता है। नौ देवियों का जो प्रमुख मंत्र है, क्योंकि ये माँ दुर्गा के ही नौ रूप हैं, और जो माँ दुर्गा का जो प्रमुख मंत्र है नवार्ण मंत्र, ओम नमः चंडिकायै, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र से माता की अगर आराधना वंदन पूजन किया जाए तो माता प्रसन्न होकर साधक को आशीर्वाद देती हैं।
2: और इसी के साथ प्रार्थना हो स्वीकार के इस खास शो में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर शक्तिपीठों में भी श्रद्धालुओं की आस्था उमड़ रही है। नवरात्र के दौरान हिमाचल प्रदेश के शक्तिपीठों में भी देश भर से श्रद्धालु जो हैं दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देवी माँ के प्रति आस्था रखने वाली कई जाने माने हस्तियां भी शक्तिपीठों की यात्रा पर निकल रही हैं। प्रसिद्ध कथावाचक जय किशोरी भी कांगड़ा में मौजूद माँ ब्रजेश्वरी देवी के दरबार में पहुंचे। यहाँ उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना कर माता रानी का आशीर्वाद लिया और माँ के चरणों में शीश नवाया। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के तीन प्रमुख शक्तिपीठों माँ ब्रजेश्वरी देवी मंदिर कांगड़ा, माँ चामुंडा देवी मंदिर और माँ ज्वालामुखी मंदिर में नवरात्रि के दौरान विशेष धार्मिक माहौल देखने को मिलता है। नवरात्रि के इन पावन दिनों में शक्तिपीठों में दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु माता रानी से सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हैं। अब आस्था की ताकत और हुनर का अनोखा संगम देखिए। गुजरात के राजकोट में डॉक्टर निकुंज वागड़िया ने महज 1 सेंटीमीटर चौड़ी और 4 सेंटीमीटर लंबी हनुमान चालीसा लिखी है। 21 पन्नों की इस चालीसा का वजन सिर्फ 1 ग्राम है। दावा यह है कि ये दुनिया की सबसे छोटी हनुमान चालीसा है। डॉक्टर निकुंज इस हनुमान चालीसा को अपनी बहादुरी से देश का नाम ऊंचा करने वाले कैप्टन स्मिथ मछार को गिफ्ट करना चाहते हैं।
2: आकार में इतना छोटा है कि उंगलियां भी बड़ी दिख रही हैं, पर आस्था इतनी बड़ी है कि लिखते लिखते पूरी हनुमान चालीसा लिख डाली। लिखावट छोटी है पर साफ है। सिर्फ देखने दिखाने के लिए नहीं लिखी गई है, बल्कि इसे आसानी से पढ़ा जा सके, इसे लिखा है गुजरात के डॉक्टर निकुंज वागड़िया ने। डॉक्टर निकुंज मिनिएचर आर्टिस्ट हैं। उनका दावा है कि उन्होंने दुनिया की सबसे छोटी हनुमान चालीसा लिखी है। इसका आकार महज 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 4 सेंटीमीटर लंबा है। इसमें कुल 21 पन्ने हैं और इसका वजन 1 ग्राम है। आकार इतना छोटा है कि इसे छोटी सी शीशी में संभाल कर रखा जा सकता है। डॉक्टर वागड़िया ने इस हनुमान चालीसा को कैप्टन स्मिथ के नाम किया है। कैप्टन स्मिथ ने अपनी बहादुरी से फ्लाइंग दुबई के 180 यात्रियों की जान बचाई थी। कैप्टन स्मिथ ने बताया था कि जब वो को पायलट के हमले से जख्मी हुए थे, तब उन्हें हनुमान चालीसा पढ़ने से ही शक्ति मिली थी। ये सुनकर ही डॉक्टर निकुंज को ये आइडिया आया।
3: मिनिएचर आर्टिस्ट होने के नाते मैंने विश्व की सबसे छोटी हनुमान चालीसा लिखी है। एक 10 mm by 40 mm उसकी साइज है और ये दुनिया की सबसे छोटी हनुमान चालीसा है, जो जिसका वेट है वो 1 ग्राम ही है और जिसका नॉमिनेशन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हुआ है। तो वो स्पेशली मैंने कैप्टन के लिए तैयार की है और मैं उनको गिफ्ट देना चाहता हूँ, क्योंकि अब दूसरी बार ऐसी कोई भी दुर्घटना उनके साथ ना बने और ऐसा कुछ भी हो तो हनुमान जी का पूर्ण रक्षा उन्हें प्राप्त हो, इसलिए मैंने खास उनके लिए ये सबसे छोटी वाली हनुमान चालीसा तैयार की है, जो विश्व में एक ही है।
2: इस हनुमान चालीसा को खास कागज पर लिखा गया है ताकि ये लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। इसका फॉन्ट भी पुराने धार्मिक ग्रंथों जैसी रखी गई है। डॉक्टर निकुंज वागड़िया के नाम 258 मिनिएचर किताबें लिखने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये रामायण और महाभारत जैसे बड़े ग्रंथों को भी छोटे आकार में लिख चुके हैं। राजकोट से रौनक मजेठिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: प्लास्टिक का कचरा अक्सर हमारे लिए मुसीबत बन जाता है, लेकिन बोलीविया के एक किसान ने इसे कचरे से डीजल बनाने का तरीका जो है वो खोज निकाला है। पुराने टायर, प्लास्टिक की थैलियां और इस्तेमाल किया हुआ तेल, इन सब की मदद से ये किसान अपने ट्रैक्टर चलाने के लिए ईंधन तैयार कर रहा है। इसकी वजह है डीजल की बढ़ती कीमत। देखिए ये खास रिपोर्ट।

0: यह है बोलिविया के किसान एडसन माचा का। इनके लिए खेती करना अब पहले से महंगा हो गया है। वजह है डीजल की बढ़ती कीमत। ट्रैक्टर चलाने के लिए डीजल जरूरी है, लेकिन महंगे ईंधन ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। ऐसे में माचाका ने निकाला एक अनोखा रास्ता, प्लास्टिक के कचरे से डीजल बनाने का रास्ता। माचाका अपने गांव और आसपास के इलाकों से प्लास्टिक की थैलियां और पुराने टायर इकट्ठा करते हैं। यही कचरा उनके लिए ईंधन बनाने का सामान बन जाता है, जिस प्लास्टिक को लोग नदियों और सड़कों के किनारे फेंक देते हैं, माचाका उसको दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं।
1: Nosotros recolectamos esos materiales en nuestra casa, ¿no? También nuestra comunidad, en nuestro barrio, y luego salimos a los ríos también, ¿no? A los caminos, donde que botamos mayormente este producto, ¿no? Que es los plásticos. Entonces nosotros ya damos otra nueva alternativa.
0: लेकिन प्लास्टिक से डीजल बनता कैसे है? चलिए जानते हैं। माचाका प्लास्टिक और दूसरे कचरे को एक साथ बंद मशीन में गर्म करते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की मौजूदगी बहुत कम रखी जाती है, इसे पायरोलिसिस कहते हैं। गर्म करने से कचरा टूटता है और उससे तेल जैसा पदार्थ निकलता है। इसे आगे प्रोसेस करके ईंधन बनाया जाता है। माचाका के इस छोटी सी यूनिट में रोज करीब 80 से 150 लीटर तक पेट्रोल और डीजल बनाया जा सकता है। उनका कहना है कि इस तरह तैयार ईंधन की लागत करीब 7 से 10 बोलीवियन प्रति लीटर पड़ती है, जबकि बाजार में डीजल की कीमत करीब 18 बोलीवियन प्रति लीटर तक पहुंच गई है। यानी खुद ईंधन बनाकर माचाका अपना खर्च काफी हद तक कम कर पा रहे हैं। माचाका इस ईंधन को बाजार में बेचते नहीं है, इसका इस्तेमाल अपने ट्रैक्टरों और खेती के काम में करते हैं। इससे इन्हें महंगे डीजल पर होने वाले खर्च में राहत मिलती है। बोलीविया में डीजल की जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेश से आता है। ऐसे में ईंधन की बढ़ती कीमतों का असर किसानों की जेब पर भी पड़ता है। माचाका की ये कोशिश एक बात जरूर बताती है कि कचरे का सही इस्तेमाल किया जाए तो उससे कुछ उपयोगी चीजें बनाई जा सकती हैं। हालांकि प्लास्टिक से ईंधन बनाने की प्रक्रिया में सुरक्षा और प्रदूषण का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
3: दुर्गा सप्तशती के अलग अलग अध्यायों का महत्व क्या है? दुर्गा सप्तशती के किस अध्याय से कौन सा मिलता है वरदान? दुर्गा सप्तशती के पाठ का क्या है विधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
7: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही ला।
8: देश भर में सजे माँ दुर्गा के भव्य पंडाल, मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में न्यायमूर्ति के रूप में विराजी माँ, गुजरात के जामनगर में स्वास्तिक रास की परंपरा। मुंबई के अंधेरी में असम के प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर के थीम पर सजा पंडाल, माता की मूर्ति की हुई स्थापना, बड़ी संख्या में दर्शन को पहुंच रहे लोग। गुजरात में दिखा तकनीक और संस्कृति का संगम, राजकोट में पहली बार रोबोट ने खेला गरबा, पृथ्वी है रोबोट का नाम।

यूपी के महोबा में गरबा और डांडिया महोत्सव में 350 से ज्यादा महिलाओं की मनमोहक प्रस्तुति, नन्ही बच्चियों ने भी बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। झांसे में दिखा त्रेता जैसी जनकपुर का नजारा, 102 साल पुरानी राम बारात में उमड़ा आस्था का मेला, भव्य झांकियों ने मोहा मन।

0: गरबा डांडिया का नवरात्र कलेक्शन। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा। देखिए, नौराते माँ शक्ति की आराधना, ढोल नगाड़ों की गूंज और गरबा की थाप पर थिरकते हजारों कदम। जी हाँ, नवरात्र में गरबा सिर्फ नृत्य नहीं है बल्कि शक्ति साधना, परंपरा और सामूहिक उत्सव का प्रतीक है। अब सवाल है कि आखिर क्या है गरबा और डांडिया का नवरात्र से नाता? क्यों नौ रातों तक पूरा देश गरबा की धुन पर झूम उठता है? शक्ति की आराधना में गोल घेरे में घूमते कदमों का क्या है महत्व? आधुनिक गरबा आयोजनों के बीच सदियों पुरानी परंपराएं आज भी कैसे अपनी पहचान बनाए हुए हैं? गरबा की ताल, माँ अंबे की भक्ति की धुन से जुड़े तमाम पहलुओं पर हम अगले एक घंटे तक चर्चा करेंगे। चुके हम नवरात्र में बात कर रहे हैं गरबा और डांडिया के कनेक्शन की, तो इस वक्त स्टूडियो में जो हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे परिचय करा दें। दिव्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि गरबा ट्रेनर है और साथ ही साथ जो उनकी ट्रेनी है जो सीख रही हैं। अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए भाई।
1: जी, मेरा नाम है भवनीत कौर।
0: तो भवनीत, ये बताइए कि आपकी गुरु यहाँ पर मौजूद है, कब से आप सीख रही हैं गरबा?
1: जी मैम, मैं लास्ट ईयर से सीख रही हूँ उनसे एंड इट वाज अ वेरी स्पेशल एक्सपीरियंस फॉर मी एंड वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस।
0: दिव्या, ये बताइए, जितने भी लोग देख रहे हैं ना, हालांकि हर साल गुड न्यूज टुडे खास करके गरबा की बात हो तो हम गुजरात जाते हैं और वहां का गरबा जो है वो हम लोगों को दिखाते हैं, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि दिल्ली वाले कितने जोश में रहते हैं गरबा को लेकर?
2: दिल्ली वालों में भी जोश की कोई कमी नहीं है। हाँ। और अब तो दिल्ली वाले गरबा का महत्व भी समझने लग गए हैं। हाँ। सब मिलकर जो पारंपरिक गरबा है वो वापस कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र में वापस आ रहा है, जिसको लोग उसकी महत्व को समझते हुए उसमें और जुड़ते जा रहे हैं।
0: क्या बात है। तो इस बार जो आपके पास लोग आ रहे हैं सीखने के लिए, क्योंकि बैचेस में आते हैं ये तो मुझे पता है, जैसे गुजरात में होता है महीनों से लोग सीखना शुरू करते हैं, यहाँ आप कितने समय से ट्रेनिंग दे रही हैं नवरात्र के लिए?
2: यहाँ पे पिछले 2 महीने से हमारी ट्रेनिंग रेगुलर बेसिस पे चल रही है और हर दिन हम जुड़ते हैं, कई सारे लोग हैं जो बैचेस में आ रहे हैं और हमारे साथ सीख रहे हैं।
0: मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त आपके लिए कितना टायरिंग हो रहा होगा, क्योंकि मल्टीपल बैचेस इस वक्त चल रहे होते हैं एंड बड़ा मुश्किल होता है ट्रेनर के लिए एज ए ट्रेनर कि अपनी एनर्जी लेवल को बनाए रखना, क्योंकि गरबा या फिर डांडिया इसमें एनर्जी बहुत हाई होती है, क्योंकि हर स्टेप ऐसा होता है कि उसमें हाई एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए होती है। तो अगर हमारे पास जो हमारे पीसीआर से लोग हैं उन्हें मैं बता दूं प्रोडक्शन टीम से कि अगर हमारे पास म्यूजिक है शायद है तो उसे अगर आप प्ले करें तो यहां पर हम कुछ स्टेप्स तब तक इनसे जान लेते हैं कि वो कौन कौन से ट्रेंडिंग स्टेप्स हैं जो यहां ये करके हमें दिखाएंगे और वो इस बार ट्रेंड भी हो रहे हैं और जिसने अभी तक नहीं सीखा है वो आज गुड न्यूज टुडे पर सीख सकता है। तो दिव्या देखिए, ये ऑडियो शुरू हुआ, फ्लोर पर जरा ऑडियो दीजिएगा ताकि हम भी सुन सके, दिव्या भी सुन सके। तो दिव्या, सबसे पहले तो ये बताइए कि ट्रेंडिंग स्टेप इस बार यहाँ पर क्या है खास करके?
2: गरबा में जो हम करते हैं 2 ताली 3 ताली ज्यादातर लोग वही फॉलो करते हैं, बट इस बार बहुत सारे नए कोरियोग्राफीज आए हैं जिसमें एक जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग इस समय गलगोटो के स्टेप्स है जो हम यहाँ पे सिखा भी सकते हैं।
0: गलगोटो। तो चलिए भाई, गलगोटो के लिए तैयार हो जाइए, म्यूजिक ऑन द फ्लोर, प्लीज आप फ्लोर पर म्यूजिक दीजिए ताकि हम यहाँ सुन सके। और गलगोटो क्या होता है ये स्टेप बेहद जरूरी है, सुनिए देखिए स्टार्ट। दिव्या, अगर आपको सिखाना है तो आप क्या उसका पहला स्टेप कैसा है?
2: हम पहले अपने जो 8 पोजीशन है दोनों पैरों को दूर करके खड़े होंगे, वी क्लैप इन द सेंटर, क्लैप एंड देन हम अपना लेफ्ट लेग को पीछे रखते हैं और राइट हैंड को आगे। जब हम हाथ को आगे रखते हैं तो वी मेक श्योर कि यहाँ से एक हमारा एल शेप बने और पीछे वाले हाथ से भी हमारा एक एल शेप बनता है। सो अगेन वी क्लैप, वी डू सेम थिंग फ्रॉम द अदर साइड, सो वी डू दिस 6 times, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 and then we take a circle. Okay, so this is what it is. Now we go ahead, we'll do it on the count, 5, 6, 7 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
0: I think मैंने गलत टर्न किया, टर्न किस साइड करना है?
2: टर्न पर लेफ्ट करना है। Yes, we have to turn towards left.
0: और ये हम कर रहे हैं क्लैप 6 times.
2: 6 times क्लैप करके we just tap our leg and we take a circle.
0: Wow, तभी तो आपका घाघरा, आपका लहंगा चोली दिखेगा, क्योंकि इसमें घेरे बहुत होते हैं, खास करके हालांकि मैंने सूट पहना हुआ है लेकिन स्पेशली जो ये स्टेप्स किए जाते हैं वो इन्हीं ड्रेसेस पे सबसे अच्छा लगता है और इसीलिए वहाँ के जो लहंगा चोली होती है उसमें फ्लेयर बहुत होते हैं, कई मीटर बहुत होता है वो। चलिए एक बार फिर से हम करेंगे वो स्टेप, एक फाइनल स्टेप,
2: 5, 6, 7 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 and. सर्कल.
0: गुड, मैंने ठीक किया.
2: हाँ, अच्छा ठीक किया. इसके बाद एक और इसमें सीक्वेंसेस होते हैं गरबा में. सो दिस इज फर्स्ट सीक्वेंस एंड देन वी गो ऑन तीन ताली. जो मैं बता रही थी तीन ताली इज वेरी कॉमन गरबा में होता है. सो वी डू 1 2 3 एंड 1 and 2 and 1 and 2 अगेन इट रिपीट्स. तो ये पूरा एक कॉम्बिनेशन आएगा.
0: ये गलगोटो में ही है.
2: हाँ, ये पूरा एक सीक्वेंस में ये कोरियोग्राफीज है जो इस समय बहुत ट्रेंडिंग है. तो ये पूरा एक सीक्वेंस बना.
0: एक बार फिर से आप करके वो बताइए.
2: पूरा शुरू से करते हैं फ्रॉम द स्टॉप.
0: नहीं, आप पहले ये वाला बता दीजिए फिर हम दो करेंगे.
2: ओके,
0: आप जरा सा अपने उस बाल पीछे कर ले क्योंकि माइक लगा हुआ है तो रसल आ रहा. जी बताए.
2: ओके, सो वी गो वी डू अगेन 1 2 3 क्लैप 1 and 2 and 1 and 2 गो 1 2 3 1 and 2 and 1 and 2
0: नाइस. तो इसको हम एक बार पूरा करेंगे राइट.
2: सो हाउ वी आर गोइंग टू डू, हम ये चीज करेंगे जो हमने पहले सीखा है 2 times एंड देन वी गो दिस 2 times.
0: ठीक है,
2: ठीक है.
0: अगर हमारे पास दूसरा म्यूजिक है तो प्लीज आप उस म्यूजिक को प्ले करें. यूजुअली जो म्यूजिक आप लोग यूज करते हैं तो वो किस तरह के होते हैं, क्योंकि जो गुजरात में गरबा होता है उसमें टिपिकल फोक म्यूजिक इस्तेमाल होता है. यहाँ बॉलीवुड स्टाइल सिखाती है.
2: जी नहीं, मैं यहाँ भी हम गुजरात के ही सॉन्ग्स मेनली यूज कर रहे हैं. अब ये भी होने लग गया है कि हिंदी सॉन्ग्स हम गुजरात के बीच डाल के, जो ताल होती है मेरी वो डाल के भी हमारे जो फेमस सिंगर्स हैं वहाँ के वो सॉन्ग कंपोज कर रहे हैं.
0: क्या बात.
2: तो जो हमारे जैसे एक बहुत ही अच्छा गाना है समय आप जानेंगे, मीठे रस से भरे
0: राधा रानी.
2: तो उसके अगर आप देखेंगे वो विथ गरबा बीट्स अब हमारे अवेलेबल है जिस पे हमने कोरियोग्राफी की है और हम वो भी सिखा सकते हैं.
0: चलिए, तो हम ये पूरा एक कम्प्लीट जो अभी इन्होंने स्टेप बताया ना, इसमें थोड़ा सा इन्होंने कुछ और मॉडिफिकेशन किए हैं. ये नया आपने कुछ ऐड किया है, सीक्वेंस इन्होंने ऐड किया है गलगोटो के साथ, तो वो एक कंप्लीट हम स्टेप जानते हैं. आई विल आल्सो ट्राई. चलिए करिए.
2: सो मैं थोड़ा सा आगे जाती हूं एंड वी गो 1

0: One and two, one and two, go one, two, three. One and two.
1: क्या बात है सबके लिए जोरदार तालियां। तो देखिए बहुत मजा आता है, जितना सीखने में आता है उतना ही आपको करने में भी मजा आएगा। तो आपको बता दें कि नवरात्र में गरबा के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि कहीं हाथों में जलती मशाले और सिर पर अग्नि कलश लेकर अनूठा स्वास्तिक रास हो रहा है, तो कहीं पर 120 साल पुरानी डोरी रास की परंपरा आज भी पूरे उत्साह से निभाई जा रही है। तस्वीरों में देखिए आपको हम दिखा रहे हैं गरबा के रंग, और नवरात्र में, इस पूरे नवरात्र में आपको इस तरह की तस्वीरें खास करके गुजरात से देखने को मिलेगी। यहाँ पर महिला पुलिसकर्मियों का गरबा हो या फिर एक साथ 5,000 से ज्यादा लोगों का पारंपरिक गरबा रास, हर तस्वीर में भक्ति, संस्कृति और उत्साह का अद्भुत संगम नजर आ रहा है। आधुनिकता के इस दौर में भी गुजरात की धरती अपनी प्राचीन परंपराओं को पूरे गर्व के साथ संजोए हुए है। वहीं महिलाएं हाथ में तलवार रास के जरिए आत्मरक्षा का संदेश भी दे रही हैं। गरबा का ये अनूठा रंग है जहां हर थाप में परंपरा है और हर कदम माँ की आराधना है।

तो गुजरात के सूरत में गरबा का उत्साह चरम पर है। विशाल पंडाल में सजे गरबा महोत्सव की रौनक हर किसी को अपनी ओर खींच रही है। ढोल नगाड़ों की थाप और गुजराती लोक धुनों पर हजारों लोग मां की आराधना में झूमते नजर आ रहे हैं। शक्ति की आराधना के इस उत्सव में कोई मां दुर्गा के स्वरूप में नजर आया तो किसी ने भगवान जगन्नाथ का रूप धारण किया। भक्ति रंग बिरंगे परिधानों और पारंपरिक संगीत से सजा ये नजारा आस्था और संस्कृति के अद्भुत संगम की तस्वीर पेश कर रहा है। तो ये देखिए, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये सूरत के एक डोम में ये कार्यक्रम रखा गया है। वहाँ पर कई सारे डोम हैं और बहुत ही बड़े बड़े डोम हैं जहाँ पर परफॉर्मेंस आते हैं और स्टेज पर लोग गीत गा रहे होते हैं, पारंपरिक गीत गा रहे होते हैं। और यहाँ तो सूरत में खास करके बॉलीवुड सॉन्ग्स भी खूब चलते हैं और उसके धुन पर थिरकते हुए आप कदमों को देख सकते हैं। ये चूंकि डोम में होता है तो यहाँ पर एक सर्कल के चारों तरफ कई सर्कल्स नहीं बनते हैं, यहाँ पर कई अलग अलग सर्कल्स बनते हैं। कई समूह के लोग जो हैं वो आते हैं और इस डोम में आपको बता दें कि अलग अलग सर्कल लोग 10, 12, 15 जितना बड़ा डोम है उतना बड़ा सर्कल बनता है। और उसके बाद यहाँ पर लोग अपने अपने हिसाब से जो उनका कॉस्ट्यूम है और उसके बाद ग्रुप में जो उन्होंने प्रैक्टिस किया है, लगभग महीनों से प्रैक्टिस होती है तब जाकर लोग यहाँ पर गरबा कर रहे होते हैं। तो ये अपना ही मिजाज है, अपना ही रंग है और ये रंग आपको सिर्फ और सिर्फ सूरत में या फिर आपको वडोदरा में, अहमदाबाद में नजर आएगा। और अब ये देखिए, अब ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये सूरत की तस्वीर से बिल्कुल अलग, बिल्कुल जुदा है।

बरकरार है। राजकोट के बजरंग गरबी मंडल में इसी परंपरा की अनूठी झलक देखने को मिल रही है, जहां महिलाएं दोनों हाथों में जलती मशालें लेकर और सिर पर अग्नि पात्र धारण कर माँ आदिशक्ति की आराधना करती नजर आ रही है। आग की लपटों के बीच गरबा की ये प्रस्तुति श्रद्धा, साहस और परंपरा का अद्भुत संगम पेश करती है। तो ये तस्वीरें अपने आप में अद्भुत है, जिसमें देखिए उनके हाथों में भी जलती मशालें हैं और साथ ही साथ उन्होंने सर पर अग्नि पात्र रखा हुआ है। एक तो ये स्टेप्स इतने आसान नहीं होते हैं करने, और लगातार इस तरह से जो ये कर रही हैं गरबा, वो भी उनकी भक्ति और शक्ति इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो पूरे गुजरात में आपको हम बता दें कि गरबा की धूम इस वक्त नजर आ रही है, और तस्वीरें देखिए

0: तो नवरात्र में गरबा और डांडिया का कनेक्शन क्या है भाई, ये भी जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक आपने देखा कि नृत्य हो रहा है, लोग गरबा रास कर रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्टूडियो में जो मेहमान है उनसे तो आपको हमने मिलवा ही दिया। अब आपको बता दें हमारे साथ कथावाचक जयसार मधुकर जी जुड़ चुके हैं। मधुकर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, और साथ ही साथ हमारे साथ आपको बता दें डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा जुड़ गई है। नितिशा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, ज्योतिषाचार्य हैं, और साथ ही साथ आपको हमने बताया ही कि दिव्या हमारे साथ हैं ही, और साथ में भवनीत भी हैं। दिव्या ट्रेनर है और भवनीत उनसे सीख रही है, पिछले एक साल से गरबा सीख रही है, और इस बार फिर से जैसे ही नवरात्र आई नहीं उससे पहले से ट्रेनिंग शुरू हो गई है इनकी, क्योंकि ये जोश गरबा का ऐसा ही होता है। आजकल वो हैशटैग चलता है ना, तो ये सारे गरबा पगलू में आते हैं जो इस वक्त आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए मधुकर जी के पास सबसे पहले अब आते हुए, मधुकर जी अगर आपसे समझना चाहे आध्यात्मिक तौर पर, क्योंकि ये शक्ति उपासना है, दुर्गा पूजा की अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल चले जाइए आंख बंद करके, और वहां पर देखिए किस तरह के भव्य पंडाल और दुर्गा आराधना हो रही है। लेकिन जैसे ही यही पूजा होती है, शक्ति उपासना होती है, जब आप गुजरात आ जाते हैं तो गुजरात में बिल्कुल अलग ढंग से यहां शक्ति की उपासना होती है, और वो है गरबा रास के जरिए। तो मुझे तो सबसे पहले यह बताइए कि हमारे शास्त्रों में क्या वर्णन है इसका, कब से इसकी शुरुआत हुई गरबा की, ऐसा कोई उल्लेख?
1: देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, गरबा को रास कहते हैं, ये वृंदावन से प्रकट हुआ है। जब ब्रज गोपियों को श्री कृष्ण से मिलन में थोड़ा सा अहंकार आ गया था, अहम आ गया था, तब श्री कृष्ण ने उनके अहम को कम करने के लिए रास में से गायब हो गए थे। तब ब्रज गोपियों ने कात्यायनी माँ की उपासना की थी श्री राधा रानी के कहने पर, और कात्यायनी उपासना से फिर से ब्रज गोपियों को श्री कृष्ण के साथ महारास करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये शरद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, नवरात्रि के बाद में। नवरात्रि में उपासना की थी ब्रज गोपियों ने माँ कात्यायनी देवी की। वृंदावन में माँ सिद्ध माँ कात्यायनी देवी का मंदिर है वो, तब से ये रास प्रारंभ हुआ शरद पूर्णिमा से, और जिसे नाम गुजरात में खास करके गरबा नाम दिया गया। ये ब्रज उपासना की रास है,
0: यानी कि अब जो रास लीला श्री कृष्ण किया करते थे गोपियों के साथ, दरअसल आप ये कह रहे हैं कि वहीं से इसकी शुरुआत हुई है। और अभी अगर हम वृंदावन जाएं तो वृंदावन में भी जो निधि वन है, निधि वन से जुड़ी जितनी कथाएं हैं, जैसे कि वहां कहते हैं कि जितने भी पेड़ हैं वो गोपियों के रूप में वो हैं, और वहां पर रोज रात में श्री कृष्ण आते हैं और वहां पर गोपियों के साथ रास होती है, तो शायद वहीं से शुरुआत हम माने।
1: बिल्कुल, ब्रिज में 5000 वर्ष पूर्व रास हुआ था, 5000 साल पहले जब श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था, तभी से रास का भी अवतरण हुआ। महारास आज भी होता

0: भी है शरद पूर्णिमा के दिन ब्रिज में, जितने भी वन है 12 वन है ब्रिज में, विहार वन में भी रास होती है, गहवर वन बरसाना में भी रास होती है, भांडेर वन में भी रास होती है, वंशीवट पे भी रास होती है। ये ब्रिज से ही निकला है, नाथ द्वारा ठाकुर जी लेकर अपने साथ आए हैं इस रास को, वहां से गुजरात में प्रकटित हुआ।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही अच्छी कथा आपने बताई गरबा रास से जुड़ी हुई। नितिश जी आपके पास आते हुए, देखिए कथा तो हमने जान ली और कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लग रहा था क्योंकि हमने जब से सुना है और जाना है रास मतलब श्री कृष्ण और गोपियां, यही मन में विचार आता रहा है। लेकिन अभी मधुकर जी ने बता भी दिया कि भाई शास्त्रों में भी इसी तरह से वर्णन है और तभी से कहते हैं कि शुरुआत इसकी हुई। लेकिन आपसे अगर मैं पूछूं भाई, आज के जमाने कि आप हैं, आप भी मतलब क्या आप भी गरबा पगलू हैं या फिर क्या है आपके साथ मामला?
2: थैंक यू श्वेता जी और सभी दर्शकों को जय कारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। आपको गरबा करते देख मुझे बड़ी खुशी हो रही थी और अगर आज मैं वहां होती तो मैंने भी खेलना था गरबा। मुझे
1: यानी कि मैं आपको ये बोलूं कि आपको वहां पर बैठ करके फोमो हो रहा है?
2: बिल्कुल हो रहा है, बहुत मजा आ रहा था जैसे आपने स्टेप किए और आपने पूछा मैंने ठीक किया, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक किया था, बहुत परफेक्ट किया था, मजा आ रहा था आपको देख के। और मैं मधुकर जी से बिल्कुल वहूं कि जो माँ छठा जो माँ का रूप है माँ कात्यानी, वो ब्रज की अधिष्ठात्री देवी है और वहां से ही रास शुरू हुआ। और गरबा का मतलब यही है कि मिट्टी का पात्र जो है वो हमारा शरीर है और उसमें जो हम दीपक रखते हैं वो माँ यानी आत्मा है, ऊर्जा है, और उसको लेकर के गरबा खेला जाता है। और गरबा जो हम खेलते हैं डांस करते करते जो गोल गोल घूमते हैं, वो समाज का समूह का एक प्रदर्शन है कि हम लोग सब एक साथ मिलके सभी आत्माएं सभी शरीरों में एक साथ देवी को प्रणाम करते हैं। तो कई लोग जागरण करते हैं, कई लोग गरबा खेलते हैं, कई लोग साधना करते हैं, तो बेसिकली हम लोग माँ को मनाने का काम करते हैं कि माँ हमारे जीवन में आए। और प्रकृति रूप में हमारे अंदर की जितनी प्रकृति है वो भी चेंज हो रही है, बाहर हम देख रहे हैं कि पर्यावरण में भी चेंजेस आ रहे हैं, हम ठंडक की तरफ बढ़ रहे हैं और ये वही समय है जब अमृत आकाश मंडल से खुद गिरना शुरू हो जाता है ओस के रूप में। तभी ये जो शरद पूर्णिमा की मधुकर जी बात कर रहे थे, ये अमृत बेला हो जाती है, सबसे शुभ समय हो जाता है, कार्तिक मास आगे शुरू होने वाला है और ये पूरा ही समय एक यूनिवर्स कॉस्मिक जो अमृत है एक वॉटर है वो सृष्टि पर जुड़ रहा है सृष्टि को बदलने के लिए और सृष्टि को आगे संचालित करने के लिए। तो ये वो समय और गरबा खेलना बेहद अच्छा है, सबको खेलना चाहिए, इससे आपकी आत्मा के अंदर एक उत्साह एक ऊर्जा जागृत हो जाती है जिससे आपके नव के नव प्लैनेट्स भी अच्छा काम करने लग जाते हैं। कहा जाता है कि माता के हाथों में ग्रहों की गति और मति है, तो गरबा खेलिए, जागरण करिए, साधना करिए, पूजा पाठ जैसे भी, बस माँ से जुड़ जाइए।
1: बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही। और वैसे भी वो लोग जो ये समझते हैं कि गरबा सिर्फ एक डांस फॉर्म है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको एक बार फिर से हम बता दें कि गरबा जो गुजरात में आप देखते हैं खेला जा रहा है, जो आप तस्वीरों में भी देख रहे होंगे कि मशाल लेकर लोग गरबा करते हैं, अग्निपात्र लेकर लोग गरबा करते हैं, दरअसल ये माँ की भक्ति का एक तरीका है उनका और अपनी भक्ति उनसे जुड़ने के लिए वो इसी तरह से कुछ जताते हैं और बताते हैं कि कितना प्रेम है उनका। और चलिए आपको हम बता दें, तस्वीरें आप देख ही रहे हैं लेकिन साथ ही साथ आपको हम बता दें कि स्वास्तिक रास की तस्वीरें भी कुछ हमारे सामने आई हैं और उस रास से जुड़ी क्या कथा है और उस रास से जुड़ी जो तस्वीरें सामने आई है, आइए वो हम आपको दिखाते हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं स्वास्तिक रास, गुजरात के जामनगर में युवाओं ने स्वास्तिक रास की शानदार प्रस्तुतियां दी, जलती मशाले लेकर कलाकारों ने पारंपरिक स्वास्तिक रास का अद्भुत प्रदर्शन किया। गुजरात के जामनगर और आसपास के इलाकों में नवरात्र के दौरान स्वास्तिक रास की खास परंपरा देखने को मिलती है। आग की रोशनी, पारंपरिक धुनों और कदमों के तालमेल के बीच कलाकार इस रास को बेहद खास अंदाज में पेश करते हैं। स्वास्तिक की पवित्र आकृति से जुड़ा ये अनूठा आयोजन गुजरात की समृद्ध लोक संस्कृति और नवरात्र की आस्था का खूबसूरत संगम पेश करता है।

तो भाई जितनी तस्वीरें भी आपने देखी गुजरात की, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि गुजरात में कोई भी ऐसा घर नहीं होता है। आप चाहे किसी भी शहर चले जाएं, आप अहमदाबाद चले जाएं, वडोदरा चले जाएं, सूरत चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, कोई भी ऐसा घर नहीं है जहां पर लोग गरबा खेलने नहीं जाते। यानी कि तमाम लोग शाम के समय कहां होते हैं? गरबा ग्राउंड में होते हैं। उनकी सुरक्षा कौन कर रहा होता है? पुलिस के लोग कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सुरक्षा कर रहे होते हैं भाई, गुजरात के वडोदरा में महिला पुलिसकर्मियों और पुलिस अधिकारियों के लिए खास गरबा का आयोजन किया गया। ड्यूटी की जिम्मेदारियों के बीच महिला पुलिसकर्मियों ने पारंपरिक परिधानों में गरबा की थाप पर कदम मिलाए। रंग बिरंगे चनिया चोली, गुजराती लोक धुनें और तालियों की गूंज, हर तरफ उत्सव का माहौल नजर आया। कानून व्यवस्था संभालने वाली इन महिला कर्मियों का एक अलग अंदाज भी देखने को मिला। किसी ने गोल घेरे में गरबा किया तो किसी ने साथियों के साथ कदम से कदम मिलाकर नृत्य किया।

तो आपने देखा पुलिस अधिकारियों का, पुलिस के लोगों का गरबा। लेकिन आपको बता दें कि आधुनिक दौर में गरबा के भव्य आयोजन, एसी डोम और हाई प्रोफाइल गरबा नाइट्स लोगों को भले ही आकर्षित खूब करते हैं, लेकिन गुजरात में आज भी ऐसी परंपराएं जिंदा है जिनकी पहचान आधुनिकता नहीं बल्कि अपनी अनूठी विरासत है। ऐसी ही एक परंपरा है नवसारी जिले के गणदेवी शहर के कुंभारवाड़ा इलाके की पारंपरिक डोरी रास। यहाँ पर हनुमान जी मंदिर के प्रांगण में नवरात्र के दौरान युवा पारंपरिक अंदाज में डोरी रास खेलते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि डोरी और डांडिया एक अनूठा मेल है। डोरी के साथ डांडिया बांधकर कलाकार लय और ताल के साथ रास प्रस्तुत करते हैं। कदमों का तालमेल और डोरी को साधने का हुनर इस नृत्य को दूसरे गरबा आयोजनों से अलग पहचान देता है। करीब 120 वर्षों से चली आ रही ये परंपरा लगभग 10 पीढ़ियों से आगे बढ़ाई जा रही है। बदलते दौर में भी स्थानीय युवा इसे पूरे उत्साह के साथ निभा रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि यह समय ही शक्ति उपासना का समय है, तो उत्तर प्रदेश के शहरों में भी गरबा की धूम है। महोबा जिले में आयोजित गरबा और डांडिया महोत्सव में सैकड़ों महिलाओं ने हिस्सा लिया। महिलाओं ने गरबा की थाप पर नृत्य किया और तलवार लहराकर महिला सशक्तिकरण का, आत्मरक्षा का संदेश भी दिया। रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य को याद दिलाते हुए महिलाओं ने संदेश दिया कि वे तलवार उठाना भी जानती हैं और जरूरत पड़ने पर वो रौद्र रूप भी धारण कर सकती हैं।

0: की बंदना, ये गरबा कार्यक्रम नहीं है, ये हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है साथ में। और ये गरबा को लेके डांडिया गरबा ये माता रानी को मनाने का, उनकी आराधना करने का एक प्रारूप है। मैं बस समाज में एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि ये छोटे छोटे कार्यक्रमों से पता है घर से निकलती है महिलाएं, घर के काम काज, पढ़ाई, बच्चों को पढ़ाना, घर के काम करना, इसके बाद अपने काम अंदर छुपी हुई प्रतिभा को निखारती है वो महिलाएं। मैं ये भी दिखाना चाहती हूँ यदि हम देवी हैं तो यदि हम रुद्र रूप भी धारण कर सकते हैं, यदि हमारे साथ कोई गलत व्यवहार करता है तो यदि मेरे पास सिंगार है तो तलवार भी है।
1: तो आपने शक्ति उपासना के पर्व में आपने सुना कि देवी खुद क्या कह रही हैं, तो यहाँ स्टूडियो में भी दो देवियाँ हमारे साथ मौजूद हैं इंक्लूडिंग मी, तीन। तो वैसे ये बताइए कि वाकई मतलब ये तो है ना कि हम स्त्री हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं,
2: नहीं?
1: तो मतलब अगर घर में खाना बना सकते हैं, बच्चों को संभाल सकते हैं, पूरा घर देख सकते हैं, तो हम तलवार भी चला सकते हैं, नहीं? तो चलिए शक्ति उपासना में गरबा के कुछ और स्टेप्स हम जान लें, क्योंकि बस शुरू तो हो ही चुका है हर जगह अलग अलग डेट्स में। भले अगर आप दिल्ली की बात करें तो अलग अलग आपको बता दें क्लब्स में या फिर अलग अलग ग्राउंड्स में गरबा के अलग अलग डेट्स दिए गए हैं जिसमें लोग जा रहे हैं और कर रहे हैं गरबा। तो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है उनके लिए क्या बता रही है?
3: अब क्योंकि हम दिल्ली की बात कर रहे हैं तो गुजराती सॉन्ग से थोड़ा सा और, जैसे मैं बता रही थी, अब हिंदी सॉन्ग्स भी हमारे विद कैराओके विद गुजरात बीट्स आ रहे हैं। और इसके लिए एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग है हमारा, मीठे रस से भयो जे राधा रानी लागे, उस पे एक बहुत ही प्यारी कोरियोग्राफी है जो हमारी बैचेस में हम सीख रहे हैं आज, अब वो सीखते हैं।
1: हाँ, तो
3: पहला स्टेप मेरा हाथ जो
1: है, आ जाइए,
3: मेरा हाथ, हाँ मेरा हाथ जो रहेगा, तो फर्स्ट स्टेप हम राइट को आगे रखते हुए वन, एंड देन वी टेक इट टू, अगेन ब्रिंग इट बैक, थ्री एंड फोर एंड फाइव एंड सिक्स, ओके। तो जब हम हाथ नीचे करते हैं और ये इसको हम हल्का सा रोटेट करते हैं, so we go one and two and three and four and five and six, ये करने के बाद we go backwards, क्योंकि गरबा is all about moving in circle, हम circle
1: twirling,
3: हाँ, तो हम पीछे जाएंगे, तो we go one two three and four and then we clap and we come forward, one two three four,
1: wow, क्या
3: अब ये
1: है?
3: हम सर्कल में करेंगे तो ज्यादा हमें समझ आएगा, सो आई विल टेक पोजीशन हियर, ओके, सो वी गो फाइव सिक्स सेवन एंड, मीठे रस से भयो जे राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, पीछे मनो खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे,
1: और ये तो ये इतना प्यारा स्टेप है, ये तो आई थिंक किसी भी सॉन्ग के साथ जल करेगा, नहीं?
3: बिल्कुल बिल्कुल, तो ये एक बहुत ही प्यारी कोरियोग्राफी अभी दिल्ली के बैचेस में हम सिखा रहे हैं अपने बैचेस में, क्योंकि यहाँ पे हिंदी सॉन्ग ज्यादा लोग रिलेट कर पाएंगे, और फिर जैसे उन्होंने बताया था रास होता है, तो ये रास ही है जो अब हम सीख रहे हैं।
1: बिल्कुल, अभी जो आपने बताया सर्कल में करके, बिल्कुल, तो बिल्कुल वो रास वाले स्टेप्स
3: हैं सारे। हाँ जी।
1: तो ये सब लगभग कर लेने में कितना वक्त लगता है, मतलब परफेक्शन पा लेने में कितना वक्त लगता है?
3: काफी समय लगता है, काफी समय लगता है, क्योंकि दो महीने से तो प्रैक्टिस हम लगाता है, बहुत सारे लोग हैं, कई हैं जो नॉन डांसर्स भी होते हैं जिन पहली बार निकल रहे हैं, तो हमारे पास जो बैचेस में बच्चे हैं वो 10 साल से लेके 65 के ऊपर साल के भी लोग हैं, जो एक साथ साथ सब डांस कर रहे हैं, साथ माँ की आराधना करेंगे। जैसा उन्होंने बताया, हम भी एक गरबा रखते हैं, गरबा मतलब मटका जिसमें छेद होते हैं, उसमें दीपक होती है जिसको एक ज्योति और हमारे अंतरात्मा का प्रतीक मानते हैं,
1: शक्ति जो आत्मा है,
3: हाँ। तो उसके ही
1: करते हैं। चलिए क्या बात है, तो आपने बहुत अच्छा स्टेप बताया, हम फिर से इसको बाद में एक बार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर बता दें कि अभी स्टेप्स कुछ और सीखने हमारे बाकी है, आपको बताएंगे वो स्टेप्स कौन कौन से हैं, क्योंकि ये वो लास्ट मोमेंट वाले स्टेप है ना, जो आप कहीं भी जाएंगे और कोई भी सॉन्ग हो, चाहे वो बॉलीवुड का आपको मिले या फिर टिपिकल फोक गुजराती सॉन्ग, हर जगह फिट बैठेगा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: उत्सव यानी कि गुड न्यूज टुडे, जैसा कि हमेशा से हम आपको कहते हैं। और इस बार चूंकि अब नवरात्र है, शक्ति उपासना का पर्व चल रहा है, ऐसे में आज गुड न्यूज टुडे पर स्टूडियो में ही हम आपको दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं और बता भी रहे हैं कि दरअसल गरबा का महत्व क्या है, कब से गरबा की शुरुआत हुई और लास्ट मोमेंट में जिन लोगों ने अभी तक स्टेप्स नहीं सीखा है तो वो यहाँ पर सीख सकते हैं। ट्रेनर हमारे साथ मौजूद हैं, तो दिव्या हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ
1: भवनीत
0: हमारे साथ मौजूद है और इनके साथ ही आपको हम बता दें तो ये दोनों तो हमें सिखाएंगी हैं और बताएंगी, लेकिन हमारे साथ नितिशा जी लगातार बनी हुई है, उनसे आइए बात कर लेते हैं एक बार नितिशा जी से। नितिशा जी, आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे, अभी ये भी बता रही थी दिव्या, बता रही थी कि ये भी जो गरबा जहां पर करती हैं तो वहां पर एक कुंड सा होता है, एक मटकी सी होती है जिसके अंदर दिया अंदर होता है एंड उसके ही चारों तरफ इर्द गिर्द गरबा खेला जाता है। तो गुजरात जब भी मैं जाती हूँ वहां भी मैंने यही देखा है, एक तो माँ अम्बे की मूर्ति वहां पर लगी होती है और आरती का विशेष महत्व होता है वहां पर। हर अलग अलग गरबा ग्राउंड्स की टाइमिंग भले ही अलग होती है लेकिन हर गरबा ग्राउंड में बेहद खूबसूरत माता की मूर्ति होती है और फिर गरबा उनके इर्द गिर्द गरबा खेला जाता है। इसके पीछे की क्या कथा है या फिर मान्यता है ये बताएं
2: जी। श्वेता जी, आपने बड़ा ही प्यारा प्रश्न पूछा और यदिका जी बोल रही थी तो मैं सुन रही थी। ये गर्भदीप है और ये जो मिट्टी का जो पूरा गरबा का जो वो रहता है घड़े टाइप का, वो हमारे शरीर को डिफाइन करता है और उसके अंदर एक दीपक जलाया जाता है जिसे गर्भ दीपक कहा जाता है। ये हमारी आत्मा यानी माँ दुर्गा की असीम शक्ति है जो इस आत्मा के रूप में इस शरीर को चला रही है। तो ये इसका पूरा वर्णन है कि माँ हमारे अंदर है, हम उनको बाहर ढूंढ रहे हैं पूजा से जप से, लेकिन वो हमारे अंदर है। तो गर्भदीप इसलिए जलाया जाता है और ये गुजरात में नहीं और भी बहुत सभी जगह पर इसको अलग अलग तरह से डिफाइन किया जाता है। अभी हम एक रास देख रहे थे, डोरी रास भी यही दिखाता है कि परमात्मा ऊपर बैठ के हमें एक डोरी से चला रहा है एक आत्मा के रूप में और हमारा जो शरीर है जिसमें वो आत्मा है जो परमात्मा से जुड़ी हुई है वो शरीर नाच रहा है, डांस कर रहा है या फिर दुनिया की गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। तो ये जितने भी नृत्य हैं जो हम रास लीला यानी उस पूर्णमासी तक देखते हैं नवरात्रों से स्टार्ट होकर के, ये सभी यही दिखाते हैं कि हमारी जो आत्मा है, हमारा जो शरीर है एक आत्मा से जुड़ा है, वो आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है। तो इसे गर्भ दीपक के नाम से जाना जाता है और गर्भ दीपक चाहे मंदिरों का आंगन हो या घर का आंगन हो या जागरण के लिए हम लोग जो मैदानों को लेते हैं या गरबा के लिए जो हम मैदानों को लेते हैं, नंगे पैर नाचना, सजना संवरना, खुशी को व्यक्त करना, आत्मा को पूरी तरह से प्रफुल्लित कर देना, परमात्मा के साथ जोड़ देना, ये सभी के सभी श्वेता जी नव ग्रहों को एक्टिवेट कर देता है। देखिए इतना उत्साह, इतनी ऊर्जा दिखती है लोगों में, ये मंगल ग्रह को डिफाइन करता है। सब सज रहे हैं, पूरा देखिए चारों तरफ सुंदरता ही सुंदरता है। तो इस शुक्र को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारा मन कितना प्रफुल्लित है ये चंद्रमा को दिखाता है, साथ ही साथ दीपक ऊर्जा अग्नि ये सूर्य तत्व को डिफाइन करती है। हमारा नंगे पैर नृत्य करना, जागरण में बैठना पूरी पूरी रात जागना या साधना में जो लोग हैं वो भी पूरी पूरी रात साधना करते हैं, वो शनि ग्रह को एक्टिवेट कर देता है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हम अपनी प्रकृति के साथ संतुलन बिठा रहे हैं, अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हुए उस संतुलन को मेंटेन कर रहे हैं। तो ये गर्भ दीपक बहुत जरूरी है, अखंड जोत जलाइए या मैदानों में जो गर्भ दीपक जल रहे हैं ये पूरी की पूरी तरह से ऊर्जा का प्रतीक है, आदिशक्ति का प्रतीक है, पराशक्ति का प्रतीक है।
0: बिल्कुल, आपने बहुत बहुत अच्छी बात बताई नितिशा जी। एक छोटा सा जवाब मैं चाहूंगी मधुकर जी से भी। मधुकर जी जरा ये बताइए, जो नितिशा जी ने बात की है उसी से जुड़ा हुआ ये छोटा सा सवाल है। गर्भ दीपक, हम कहते हैं कि वो जो दीपक जिसकी बात हम कर रहे हैं उसको ये भी कहते हैं कि वो एक स्वरूप है, एक प्रतीकात्मक तौर पर, कि जैसे किसी बालक को, किसी अंश को माता अपने गर्भ में 9 महीने तक रखती है तो उसके जन्म से लेकर के उसके जन्म पूरा जब तक उसका जन्म नहीं हो जाता है, उसका जो पूरा लाइफ साइकिल है उसको भी एक तरीके से वो दर्शाता है, वो बताता है गर्भ दीपक। तो हमारे लाइफ साइकिल को दर्शाता वो गर्भ दीपक होता है।
3: बिल्कुल सही बात है, नितिशा जी ने एकदम सही कहा है और मैं आपको गोस्वामी तुलसीदास जी के इस भाव से आपको बताता हूं।
4: जय जय जग जननी
3: जननी देवी सुर नर मुनि असुर से भक्ति मुक्ति दायिनी भय हरणी कालिका जय जग जग जननी देवी जय जय जग जननी देवी रघुपति पद परम प्रेम रघुपति पद परम प्रेम तुझ

0: वरद पावनी जय जय जग जननी देवी जय जय जग जय जग जननी देवी।
1: क्या बात है, क्या बात है। ऐसा अगर एक थोड़ी देर के लिए ना मधुकर जी, ऐसा लगे कि अगर आप हम यहाँ पर स्टूडियो में अपनी आंखें अगर हम बंद कर दें तो ऐसा लगेगा कि किसी गुजरात में गरबा ग्राउंड में हम पहुंच गए हैं और वहां पर कोई लोकगीत ऐसा गा रहा है, ऐसा महसूस होगा। बहुत बहुत बढ़िया आपने गाया
0: गोस्वामी तुलसीदास जी,
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा आपने गाया।
0: और गोस्वामी जी नहीं, माँ की उपासना की है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत सही आपने बताया। और नितिशा जी तो लगातार बता ही रही हैं और माता की शक्ति की आराधना किस तरह से होती है वो भी बता रही हैं, लेकिन जेन जी इंतजार कर रहा होता है किसी और चीज के लिए और वो है गरबा में किस तरह से और नए नए स्टेप्स जो है उसको मॉडिफाई करके और नए नए उसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स हम ला करके कर सकते हैं। तो देखिए अभी भी दिल्ली वालों खास करके यहाँ पर अभी भी समय बाकी है, अभी कई सारे ऐसे जगह हैं जहां पर आप जा करके आप आई थिंक 9th डे तक आप कर सकते हैं वहां पर, क्योंकि 10वीं वाले दिन समाप्त सब कुछ हो जाता है, लेकिन 9वीं वाले दिन तक तो आप धमाल मचा ही सकते हैं। तो उनके लिए बताइए और खास करके हो सकता है यहाँ से गुजरात में भी कोई आपको देख रहा हो और से कुछ सीख ले, तो कौन सा वो सॉन्ग है और स्टेप कौन से?
2: बहुत ही प्यारा एक सॉन्ग है, गोरी राधा ने कालो कान।
1: अरे वो तो गुजरात का है,
2: गुजरात का है। और
1: सभी तो इसको क्या गढ़वी जी ने गाया है वहाँ से?
2: हाँ जी हाँ जी, उन्होंने गाया है। और ये अगेन कृष्ण और राधा के है, गोरी राधा ने कालो कान, कान मतलब कृष्ण जी, उसके स्टेप सीखते हैं हम। सो इसे बहुत ही प्यारी सी कोरियोग्राफी है जो हम करेंगे। वी गो 1 and 2, so we are walking. हम सर्कल में जब होते हैं तो हम चलते हैं 1, 2 and then we make बांसुरी और हम स्विंग करते हैं 3, 4 we clap on the left side, 5 take circle, 6, 7 and 8
1: okay
2: बस clap, 7 and 8 ठीक है। so it goes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1: फिर से एक बार करें,
2: सर्कल में करें।
1: चलिए सर्कल में करते हैं,
2: चलो रेडी 5, 6, 7 एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6
1: यहाँ पर ये रुक गए कि हम हमें जो है जब हम बांसुरी वाला पोज कर रहे हैं तब हमें मूव नहीं करना है,
2: नहीं
1: हम जहाँ हैं हम वहीं पर रहेंगे। सुन लीजिए, मेरी तरफ से गलती मत करिएगा, जो आप सर्कल में कर रहे हो तो आप नहीं करिएगा। तो चलिए अभी सर्कल में हम नहीं, पहले हम एक बार ऐसे करते हैं, देन फाइनली हम सर्कल करेंगे।
2: ओके 5, 6, 7 एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1: अब सर्कल में।
2: हाँ, और जब हम बांसुरी करते हैं तो वैसे हम सेंटर की तरफ अपना बॉडी रखते हैं, जब हम बांसुरी करते हैं तो वी लुक टुवर्ड्स ईच अदर, तो हम सेंटर की तरफ
1: गरबा रहता है,
2: हाँ, उनकी तरफ हम ये करेंगे एंड देन वी अगेन क्लैप। ये भी
1: लेकिन यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाई मैं कर देती हूँ, चूंकि हमारे सामने कैमरा है तो हम कैमरा की तरफ टर्न करके ये करेंगे, ठीक है।
2: चलो
1: चलिए
2: 5, 6, 7 एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8
1: आई थिंक इस बार परफेक्ट, बहुत ही अच्छा रहा। तो ये जो गोरी राधा ने इन्होंने बताया कि वो जो गाना है ये एक्चुअली गढ़वी जी का गाना है और बहुत फेमस वहाँ के वो फोक सिंगर हैं, उनके जितने भी गाने देख लीजिए आप, जितने भी गरबा ग्राउंड्स में जाएंगे आपको सुनने को वहाँ पर मिलेंगे। एंड आई थिंक हम यहाँ भी जो लोग आ रहे हैं वो आप बताइए, चूंकि आप ट्रेनर हैं तो किस तरह से लोग कहते हैं, बॉलीवुड वाले स्टेप्स बताइए या फिर कौन सा फोक बताइए?
2: नहीं नहीं, लोग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं वहाँ के फोक सॉन्ग्स को लेकर, वहाँ के स्टेप्स को लेकर। सो बॉलीवुड से ज़्यादा इंटरेस्ट अब उनको वहाँ के रीजनल वो सीखने में, बस ये है कि हाँ भाषा समझ आती है तो वो और ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं।
1: ये बात तो है। भवनीत आप बताइए, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? आप तो कह रही हैं लगभग कितने, 1 साल से ज़्यादा से आप सीख रही हैं, तो ये जब आप करती हैं, क्योंकि डेली लाइफ जो आपकी होती है, हर कोई वर्किंग है, बिजी रहता है अपनी डेली लाइफ में, लेकिन जब आप उससे निकलकर टाइम निकालकर आप ये कर रही होती हो तो कैसा आपका एक्सपीरियंस है उसको लेकर?
3: यस मैम, ऑफ कोर्स मैम, एक्चुअली डांस हॉबी है लेकिन पूरा दिन ये हमारी प्रैक्टिस जो होती है रात के समय होती है फ्रॉम 9 PM, तो पूरा दिन हम अपने जो हमारी रेगुलर रूटीन है उससे बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं, बट स्टिल जैसे ही 9 PM बजते हैं एक अलग ही एनर्जी आ जाती है कि नहीं जाना है, और वहाँ जाके सब भूल जाते हैं और उसी एनर्जी के साथ हम सब मिलके स्टेप्स सीखते हैं।
1: तो आपकी जो टीचर है वो ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर ट्रेनर है या फिर क्या है, फिर आपको रियायत दे देती है कि कोई नहीं इस बार गलत किया कोई बात नहीं फिर से सिखाएंगे इसको।
3: मैं हाँ जी जो जिन लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है स्टेप सीखने उनके साथ स्ट्रिक्ट होती है, बट अदरवाइज शी इज कूल,
1: इज शी अ गुड लर्नर?
2: डेफिनेटली बहुत ही अच्छी लर्नर है और अभी तो दूसरा साल तक कुछ टाइम में सिखाने भी लगेंगे।
1: अरे वाह क्या बात है। तो चलिए अगर हम क्विकली आपसे ये जाने, हम तीन ताली की भी बात कर रहे थे राइट, तो तीन ताली आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत ही सिंपलेस्ट स्टेप्स में से एक है। तो गुजरात में जब आप जाएंगे ना वहां पे हर साल, क्योंकि मैं पिछले 3 साल से जा रही हूँ तो जब भी मैं जाती हूँ हर बार एक ताली बढ़ चुकी होती है, तो वो लोग कुछ अपना नया ले आते हैं और जो वडोदरा वाले हैं वो कहते हैं कि सबसे अच्छा हम करते हैं, अहमदाबाद वालों को कुछ नहीं आता, जो अहमदाबाद वाले हैं वो कहते हैं सूरत वालों को कुछ नहीं आता, तो वहां पे ये कॉम्पिटिशन आपस में सिटीज में चल रहा होता है। तो ये मुझे बताइए कि तीन ताली, जो लोग तीन ताली नहीं जानते हैं उनके लिए तीन ताली क्या है?
2: सो तीन ताली, हम तीन ताली जैसा नाम कह रहा है, वी क्लैप 1 2 3, अब ये किसी भी तरीके से हो सकता है, सो वी कैन क्लैप हेयर। सो एक स्टेप में सिखाती हूँ जो अभी हम कोरियोग्राफी में भी कर रहे हैं, सो वी गो 1 2 and 3 वी ड्रॉप, सो दिस इज तीन ताली का एक फॉर्मेट। ठीक है, इसी तरीके से तीन ताली 1 2 3, ये भी तीन ताली,
1: 1 2 and 3 आपने नीचे उसको ड्रॉप कर दिया,
2: बस तीन तालियां बजना मीन्स तीन ताली। अब इसके अलग अलग आप वेराइटीज कह सकते हैं, डिफरेंट वर्जन्स कह सकते हैं, जो इस टाइम हम कर रहे हैं मैं एक कोरियोग्राफी और साथ में सिखाती हूँ, बहुत इजी कोरियोग्राफी है। सो वी गो 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2।
1: ये क्या हुआ, ये भी तीन ताली है?
2: ये तीन ताली नहीं हुआ, ये हम एक ताली कर रहे हैं 1 2 1 2 एंड वी आर मूविंग। हम कैसे मूव करते हैं? टैप एंड टैप, क्योंकि गरबा इज ऑल अबाउट फुटवर्क्स आल्सो, मेजरली फुटवर्क्स। तो ये अगेन, अगर ये अगर आप विद जोश देखना चाहते हैं तो हम बताते हैं,
1: विद जोश होने वाला, भाई मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, जरा इन दोनों का कैमरा फोकस किया जाए और जोश के साथ जरा आप दो तीन स्टेप आपस में बात कर लीजिए और वो हमें एक साथ करके दिखाइए।
2: पहले ये करते हैं फिर उसके बाद
1: 5 6 7
2: एंड 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2
1: वाओ क्या बात है, क्या बात है। और दूसरा इसके अलावा कोई स्टेप?
2: हाँ, फिर हम अगर गरबा की बात करेंगे सो हमारा डाकला भी बहुत अच्छा एक फॉर्मेट है।
1: बिल्कुल, डाकला दिखाइए। डाकला भी भाई आपको बता दें कि गुजरात में बहुत ज्यादा खेला जाता है, तो वो भी स्टेप आप जान लीजिए।
2: सर डाकला क्या है? डाकला गरबा का हाई एनर्जी फॉर्मेट, इसमें आपकी जो एनर्जी रहेगी वो काफी हाई रहती है। सो और इसमें मेजरली ये हम ये शो करते हैं कि जैसे माँ जी हमारे बीच में आ चुकी हैं, तो वो जो एनर्जी हमारी ग्रो करती है उनके प्रेजेंस की वजह से, दैट इज एक सॉन्ग है रमतिया वे, माड़ी रमतिया वे,
1: बिल्कुल,
2: तो वो डाकला का सॉन्ग है, मींस रमतिया वे मतलब माता जी आ चुकी हैं अब हमारे जो भी हम आंगन में है वहाँ।
1: चलिए तो एक बार माता का आह्वान भी कर लेते हैं और उसके बाद डाकला, डाकला का मुझे लगता है कि बंगाली अगर मुझे साउंड कर रहा है, डाक यानी आना बुलाना, डाकना है ना, तो उसी से मिलता जुलता है कल्चर, तो भाई सब एक ही है तो हिंदुस्तानी। तो चलिए वो डाकला हम कर लेते हैं।
2: सो डाकला में फर्स्ट स्टेप अगेन जैसे मैंने कहा हाई एनर्जी है, सो वी गो 1 2 3 and 4
1: वाओ
2: ओके
1: अमेजिंग करिए।
2: चलिए 5 6 7 एंड 1 2 3 and 4 गो 1 2 3 and 4 गो 1 2 3 and 4 गो 1 2 3 and 4 गो 1 2 3 and 4
1: वाओ। इसको एक बार फिर से हम करेंगे समापन का समय, चलिए हमारे पास समापन का भाई समय आ गया है इसीलिए हमें यहाँ पर बीच में ब्रेक लेना होगा, लेकिन अब जो यहाँ पर एनर्जी बनी है ना लिटरली मन नहीं कर रहा है कि मैं यहाँ पर ब्रेक लगाऊं, बट हाँ वक्त की थोड़ी कमी है तो हमें इजाजत लेनी होगी। लेकिन नितिशा जी, मधुकर जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, और आप दोनों का भी, दिव्या और आपका भी बहुत बहुत बमीत शुक्रिया यहाँ आने का। आप प्रैक्टिस जारी रखिएगा, आप सिखाते रहिएगा और नौवीं तक यानी कि 9th डे तक जो जो लोग नहीं जा पाए वो इनसे गरबा सीखते रहिएगा। इसी के साथ देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: दुर्गा सप्तशती के अलग अलग अध्यायों का महत्व क्या है, दुर्गा सप्तशती के किस अध्याय से कौन सा मिलता है वरदान, दुर्गा सप्तशती के पाठ का क्या है विधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
0: दुर्गा सप्तशती के अलग अलग अध्यायों का महत्व क्या है, दुर्गा सप्तशती के किस अध्याय से कौन सा मिलता है वरदान, दुर्गा सप्तशती के पाठ का क्या है विधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्लास्टिक का कचरा अक्सर हमारे लिए मुसीबत बन जाता है, लेकिन बोलीविया के एक किसान ने इसी कचरे के डीजल बनाने का तरीका खोज निकाला है। पुराने टायर, प्लास्टिक की थैलियां और इस्तेमाल किया हुआ तेल, इन सब की मदद से ये किसान अपने ट्रैक्टर चलाने के लिए ईंधन तैयार कर रहा है। इसकी वजह है डीजल की बढ़ती कीमत। देखिए ये खास रिपोर्ट।

0: ये है बोलिविया के किसान एडसन माचा का। इनके लिए खेती करना अब पहले से महंगा हो गया है। वजह है डीजल की बढ़ती कीमत। ट्रैक्टर चलाने के लिए डीजल जरूरी है, लेकिन महंगे ईंधन ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। ऐसे में माचाका ने निकाला एक अनोखा रास्ता, प्लास्टिक के कचरे से डीजल बनाने का रास्ता। माचाका अपने गांव और आसपास के इलाकों से प्लास्टिक की थैलियां और पुराने टायर इकट्ठा करते हैं। यही कचरा उनके लिए ईंधन बनाने का सामान बन जाता है, जिस प्लास्टिक को लोग नदियों और सड़कों के किनारे फेंक देते हैं। माचाका उसको दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं।
1: Nosotros recolectamos esos materiales en nuestra casa, ¿no? También nuestra comunidad, nuestro barrio, y luego salimos a los ríos también, ¿no? A los caminos, donde que botamos mayormente este producto, ¿no? Que es los plásticos. Entonces nosotros ya damos otra nueva alternativa.
0: लेकिन प्लास्टिक से डीजल बनता कैसे है? चलिए जानते हैं। माचाका प्लास्टिक और दूसरे कचरे को एक साथ बंद मशीन में गर्म करते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की मौजूदगी बहुत कम रखी जाती है, इसे पायरोलिसिस कहते हैं। गर्म करने से कचरा टूटता है और उससे तेल जैसा पदार्थ निकलता है। इसे आगे प्रोसेस करके ईंधन बनाया जाता है। माचाका के इस छोटी सी यूनिट में रोज करीब 80 से 150 लीटर तक पेट्रोल और डीजल बनाया जा सकता है। उनका कहना है कि इस तरह तैयार ईंधन की लागत करीब 7 से 10 बोलीवियन प्रति लीटर पड़ती है, जबकि बाजार में डीजल की कीमत करीब 18 बोलीवियन प्रति लीटर तक पहुंच गई है। यानी खुद ईंधन बनाकर माचाका अपना खर्च काफी हद तक कम कर पा रहे हैं। माचाका इस ईंधन को बाजार में बेचते नहीं है, इसका इस्तेमाल अपने ट्रैक्टरों और खेती के काम में करते हैं। इससे इन्हें महंगे डीजल पर होने वाले खर्च में राहत मिलती है। बोलीविया में डीजल की जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेश से आता है। ऐसे में ईंधन की बढ़ती कीमतों का असर किसानों की जेब पर भी पड़ता है। माचाका की ये कोशिश एक बात जरूर बताती है कि कचरे का सही इस्तेमाल किया जाए तो उससे कुछ उपयोगी चीजें बनाई जा सकती हैं। हालांकि प्लास्टिक से ईंधन बनाने की प्रक्रिया में सुरक्षा और प्रदूषण का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: दुर्गा सप्तशती के अलग अलग अध्यायों का महत्व क्या है, दुर्गा सप्तशती के किस अध्याय से कौन सा मिलता है वरदान, दुर्गा सप्तशती के पाठ का क्या है विधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
2: नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा। चाय पर चर्चा में आपका स्वागत है। शक्ति की भक्ति के पर्व नवरात्र का उल्लास है, हर तरफ माँ की जयकार है, इसलिए आदि शक्ति की उपासना से ही चाय पर चर्चा का शुभारंभ हम करेंगे। शक्तिपीठों में नवरात्र के चौथे दिन रौनक और इन पावन स्थलों के महत्व को आपको दिखाएंगे, साथ ही शक्ति उपासना के एक और रूप गरबा की भी खूबसूरत तस्वीरें दिखाएंगे। साथ होंगे दुर्गा पूजा के रंग, जहाँ आर्ट है, क्रिएटिविटी है, संस्कृति और हर पंडाल में एक नई कहानी भी।
3: नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। देखिए, त्योहारी सीजन के साथ मौसम भी सर्द हो चला है, खासकर पहाड़ों का मनमोहक नजारा देखने लायक है। तो दिखाएंगे आपको कश्मीर के मैदानों क्षेत्रों में बारिश और ऊंचे इलाकों में हुई बर्फबारी की घाटी की खूबसूरत तस्वीरें, और दिखाएंगे कि किस तरीके से पूरे देश में नवरात्र की रौनक है। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं देश भर की बड़ी खबरें।
4: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
2: त्योहारी सीजन में रेलवे के कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज। केंद्र ने प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस का किया ऐलान, 78 दिन के वेतन के बराबर मिलेगा पैसा। दिल्ली के द्वारका में तैयार हो रहा सबसे ऊंचा 221 फीट ऊंचा रावण, 25 फीट ऊंचा है मुकुट, 7 टन लोहे का हुआ इस्तेमाल, 120 कारीगरों ने किया तैयार। देश भर में बन रहे माँ के एक से बढ़कर एक पंडाल, रांची में द्वारका नगरी की थीम पर हूबहू बना पंडाल, तो रोहतास में माँ वैष्णो देवी की गुफा की तर्ज पर सजा पंडाल। मुंबई के अंधेरी में असम के प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर की थीम पर सजा पंडाल, माता की मूर्ति की हुई स्थापना, बड़ी संख्या में दर्शन को पहुंच रहे लोग। कांगड़ा आर्ट म्यूजियम में दिखी हिमाचल की अनूठी बांस कला, लकड़ी और बांस से तैयार किए मंदिर के हूबहू मॉडल, बैजनाथ शिव मंदिर की कलाकृति तेलंगाना के सीएम को की भेंट। पैक्ड पानी की गुणवत्ता पर एफएसडीए की सख्ती, अब बीआईएस प्रमाणन के बिना नहीं मिलेगा यूपी में लाइसेंस, 31 मार्च 2027 तक प्रमाणन लेना होगा अनिवार्य।

0: देखिए माँ की हर बात ही निराली है, चाहे कोई भी उनका रूप हो, कहीं भी किसी भी कहानी या फिर मान्यताओं के केंद्र में रहकर आस्थावानों को बरसों बरस से शुभता और समृद्धि का आशीर्वाद दे रही हैं। तो आज नवरात्रि के चौथे दिन आपको हम दर्शन कराएंगे ऐसे ही दुर्गा मंदिरों और सिद्धिपीठों से। लेकिन आप ये बताइए, लास्ट टाइम चल रहा है, लास्ट कुछ मोमेंट्स बचे हुए हैं कुछ दिन के, तैयारी पूरी हो गई है गरबा डांडिया खेलने की?
1: बिल्कुल पूरी तैयारी हो गई है, और खासकर की मजा तभी आता है जब वो लास्ट के दिन आते हैं, क्योंकि उस वक्त ही गरबा भी जोर शोर से होता है और धुनूची भी उसी वक्त आती है, तो तैयारी तो लास्ट की ही रहती है। और देखिए आज हम दोनों ने पिंक कलर पहना हुआ है, वैसे आज कलर रॉयल ब्लू है
0: आज का कलर जो माता
1: के हिसाब से जो पहनते हैं, लेकिन तैयारी फुल ऑन होती जा रही है। लेकिन आपका इंतजार है कि कब आप गुजरात जाएंगे और हमें तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि वहां तो एकदम ऑथेंटिक गरबा देखने के लिए मिलता है। बिल्कुल,
0: लेकिन वही जो तस्वीरें भी हम देख रहे हैं ना दीपिका, उसमें भी ये है कि जैसे ही आप गुजरात चले जाओ, आप जहां कहीं भी गरबा हो रहा है, डांडिया हो रहा है फॉर दैट मैटर, वो जो हाई एनर्जी है ना, वो एक अलग ही फील आपको कराती है। और कई लोग ये कहते हैं कि जैसे अगर आप किसी भी भगवान का आप नाम ले, तो एकदम से कई लोग ये है कि भाई आपने उनके सामने बैठ करके हाथ जोड़ करके आपने वो पूजा की, तभी आप एक्चुअली कनेक्ट कर पाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, आप उस फॉर्म में भी जब आप उस हाई एनर्जी पे आप डांस कर रहे होते हैं, आप गरबा कर रहे होते हैं, तो मुझे लगता है कि उस समय तो आप अपने भी कंट्रोल में नहीं होते।
1: और आपने ना नोटिस भी किया होगा, जैसे हम लोग कुछ और काम करते हैं तो हम लोग थक जाते हैं जल्दी, लेकिन जब हम गरबा कर रहे होते हैं या माँ के लिए हम लोग वहां पर मौजूद होते हैं, तो एनर्जी अलग आती है। जिस एनर्जी की आप बात कर रहे हैं, तो वो एनर्जी फील की जा सकती है,
0: और इसी को कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि ये एनर्जी खुद माँ देती हैं। क्योंकि मैं उनसे जब भी पूछती हूँ ना कि रात के 2 बज रहे हैं, आप लोग शाम से गरबा कर रहे हैं, कैसे ये कैसे होता है, तो कि हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, ये माँ करा रही होती है। तो ये उनकी दरअसल शक्ति है, ये उनकी भक्ति है, जिसको लेकर के ये जो तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, जो गुजरात से खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं, वो देखने को मिल रही है। लेकिन चूंकि सिद्धपीठों की बात हो रही है, तस्वीरें आपको दिखाएंगे अनोखे और रहस्यमय ये होते हुए भी देश दुनिया में काफी प्रसिद्ध है।
1: बिल्कुल, देखिए ये आदि शक्ति के ऐसे प्राचीन मंदिर है की कहानियां बड़ी रोचक हैं। कहीं महाकाली का सौभाग्य रूप आपको नजर आएगा, सौम्य रूप आपको नजर आएगा, तो कहीं पर मां की प्रतिमा में उनकी टेढ़ी गर्दन का रहस्य भी एक रोचक पहलू है। इसके साथ ही आपको बेगूसराय की सिद्धपीठ बड़की मंदिर भी लेकर चलेंगे, जिसको लेकर दावा यह किया जाता है कि यह दुनिया का सबसे ऊंचा दुर्गा मंदिर है।
2: हमारे देश की माटी ही इतनी पावन है, जिस पर बसे मंदिर और शक्तिपीठ बरसों बरस से जनमानस के बीच आस्था का प्रवाह अनवरत बनाए हैं। मां के ये पावन धाम अपनी आस्था, अद्भुत मान्यताओं और अनोखी परंपराओं के कारण भक्तों के लिए विशेष स्थान भी रखते आ रहे हैं। तो आज नवरात्रि के दिनों में ऐसे कुछ अनोखे मंदिरों के दर्शन करते हैं जहां मां से जुड़ी कहानियां निराली हैं, तो आस्थावान भी मनोकामनाओं की पूर्ति की आस लेकर आता है और मां से खुशियों की झोली भरकर जाता है। रायसेन में कंकाली माँ के दर्शन को आ रही ये भीड़ भी माँ के प्रति उस अगाध आस्था को ही दर्शा रही है। ये एक ऐसी माँ है जिनकी गर्दन टेढ़ी है, लेकिन मान्यता है कि इनकी गर्दन कुछ पलों के लिए सीधी भी हो जाती है, और जिसने उन पलों को अपनी आंखों से देख लिया, उस पर माँ का आशीर्वाद जरूर बरसता है। जाहिर है मूर्ति में टेढ़ी गर्दन का सीधा होना भी एक रहस्य है, लेकिन इसे कंकाली माँ की महिमा, उनके प्रति अटूट विश्वास और आस्था ही कहा जाएगा कि मान्यताओं के अनुसार उनकी यही विशेषता नवरात्रि के अवसर पर माँ भवानी के दर्शनों को लालायित करती आ रही है। माँ आदिशक्ति का ये मंदिर भोजपुर के गांव गुदावल में बना है, जिसके लगभग 400 साल पुराना होने की मान्यता है, और मंदिर के बनने साथ ही माँ के यहाँ स्थापित होने की कहानी हरलाल मीणा नाम के एक शख्स से जुड़ी हुई है।
3: सन 1731 में हरलाल जी मीणा को माता जी ने स्वप्न में दर्शन दिए, उसी जगह उन्होंने खुदाई की। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, काल भैरव, जहाँ जितनी भी प्राचीन मूर्तियां, सन 1731 में हरलाल मीणा जी ने जमीन से निकलवार की इसकी स्थापना करा दी।
2: स्थानीय लोग मानते हैं कि तब से लेकर आज तक मां कंकाली का मंदिर विशाल आकार ले रहा है। यही कारण है कि सच्चे दरबार में स्थापित कंकाली मां विशेषकर नवरात्रि में स्थानियों के साथ ही दूर दराज से आ रहे भक्तों की आस्था का केंद्र बनी हुई है। नवरात्रि के पावन दिनों में अकोला के महाकाली मंदिर में भी आस्था की बयार खूब बह रही है। माँ महाकाली का ये स्वरूप अपने पारंपरिक रौद्र रूप से अलग, सौम्य और शांत है, जो यहाँ के कासार समाज की कुल देवी है, जिनका दर्शन मात्र श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव देता रहा है। यहाँ आराध्य देवता राजराजेश्वर मंदिर परिसर में बना माँ का ये दरबार लगभग 200 साल पुराना बताया जाता है। खास पहलू ये है कि इस मंदिर में मराठी और हिंदी भाषा में माँ की आरती करने की परंपरा रही है। माँ का ये भव्य मंदिर भी नवरात्रि पर भक्ति और आस्था से गुलजार है। दावा है कि बेगूसराय का ये सिद्ध पीठ बड़की मंदिर दुनिया का सबसे ऊंचा दुर्गा मंदिर है। 11 मंजिला इस मंदिर की ऊंचाई 221 फीट बताई जा रही है। कहते हैं कि ये दुर्गा मंदिर करीब 100 साल पुराना है। यहाँ बीहट गांव में सिद्धपीठ बड़की दुर्गा मंदिर में एक ही रूप में माँ की प्रतिमा बनाई जाती है और मान्यता ये भी है कि माँ से मांगी गई हर मुराद यहाँ पूरी जरूर होती है।
4: जो भी इच्छा मांगते हैं ना मैया, सबका इच्छा पूरी कर देते हैं। सच्चे मन से कोई भी अपनी मनोकामना मांगती है तो मैया उसको पूरा कर देती है।
5: इस मंदिर का बहुत बड़ा मान्यता है, जो भी इच्छा होता है सब पूरा होता है। इस कारण से यहाँ पे भीड़ दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है।
2: बीहट के नाम से ही प्रसिद्ध इस दुर्गा मंदिर को लेकर कहा जाता है कि इससे पहले ये गंगा किनारे के मलहीपुर गांव में बना था। यहाँ करीब 100 साल पहले आई बाढ़ की वजह से इसे बीहट जैसे ऊंचे स्थान पर स्थापित किया गया। फिर साल 2009 से ही इस सिद्ध पीठ को दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर बनाने का अभियान शुरू किया गया और जन सहयोग साथ ही श्रम दान से 2014-15 में ये बनकर तैयार किया गया।
6: निर्माण जन सहयोग से हुआ था और कार सेवा के द्वारा होता। श्रमदान किए थे बेगूसराय जिलावासी और अर्थदान भी किए थे जिलावासी। कोई एक रुपया दिए, कोई एक लाख दिए, सभी के सहयोग से मंदिर बना। जिनके पास अर्थ नहीं था, भगवती ने सामर्थ्य दिया, शारीरिक सामर्थ्य दिया था, वो श्रमदान करके मंदिर निर्माण किए हैं, सब मिलके किए हैं।
2: अब क्योंकि नवरात्रि का समय है, ऐसे में बिहार ही नहीं भारत के अलग अलग राज्यों से और NRI तक भी सिद्धपीठ बड़की मंदिर में माँ की आराधना करने और उनका आशीर्वाद लेने काफी संख्या में पहुँच रहे हैं। जिस तरह देश में रहस्यमय कहानियों और मान्यताओं से जुड़े दुर्गा मंदिरों की भरमार है, तो वहीं अपनी निराली जगदम्बा के प्रति श्रद्धा और भक्ति भी अपार है। माँ के दरबार में जो सच्चे मन से आए उस पर देवी आदि शक्ति का आशीर्वाद बना रहता है। यकीनन ये तमाम मंदिर केवल पूजा अर्चना की पहचान भर नहीं बल्कि विश्वास, शक्ति और मातृभक्ति की भी मिसाल है। मध्य प्रदेश के रायसेन से राजेश कुमार अजक, अकोला से धनंजय साबले और बिहार के बेगूसराय से सौरभ कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो देखिए, श्रद्धा का ये अपार उत्साह विशेषकर नवरात्रि के पावन दिनों में नजर आता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन 9 दिनों में मां की भक्ति से सराबोर देश भर के तमाम मंदिरों, शक्तिपीठों और सिद्ध पीठों पर आस्था देखने लायक रहती है।
7: बिल्कुल, ऐसा कभी हुआ दीपिका कि इन दिनों में खास करके आप किसी ऐसी सिद्धपीठ गई हो?
1: इन दिनों में तो नहीं, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तो वो जगह को ना आप थोड़ा सा इसलिए अवॉइड करते हो कि भीड़ में अच्छे से दर्शन नहीं हो पाते, लेकिन जाना बहुत जरूरी होता है। कहते हैं कि जब ये दिन चल रहे होते हैं तो बहुत शुभ दिन होते हैं, चाहे आप नया घर लीजिए, चाहे आप नई चीजें लीजिए। तो सिद्ध पीठों पर अगर आप जाते हैं तो जाहिर सी बात है आपको पॉजिटिविटी मिलती है।
7: वैसे भी जो जितने भी सिद्ध पीठ हैं उसकी अपनी एक एनर्जी होती है ना, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी होती है जब आप ऐसे भी जाएं। मैं भी अक्सर जैसे कामाख्या देवी का जो मंदिर है वहां भी जब मैं गई थी, हालांकि ये नवरात्र के दिन नहीं चल रहे थे, लेकिन जैसे ही मंदिर प्रांगण में गई ना तो वहां एक अलग ही फील है, एक अलग वाइब है, वो एनर्जी आपको फील होती है। और ये बात सही है, कई लोगों के साथ होता है, मुझे भी ये लगता है कि थोड़ी सी जब शांति होती है ना तो मैं जो मन की बातें हैं उनको कह पाना या उनको देख पाना या महसूस कर पाना वो तब हो पाता है। ज्यादा भीड़ में वो चीज हो नहीं
1: पाती। क्या होता है कि आप दर्शन नहीं कर पाते, जल्दी चलो आगे निकलो, तो वो होता है, आप अपने भगवान से बात कर पाओ, उन्हें अपनी बता पाओ, तो बड़ा अच्छा लगता है।
7: मुझे लगता है वो टू वे कम्युनिकेशन जो है वो बहुत जरूरी होता है। तो देखिए, इन सभी भक्ति स्थलों पर आस्था, उत्साह और विश्वास के बीच माँ के जयकारों की गूंज है। तो आस्थावान माता रानी से सुख समृद्धि और खुशहाली की भी कामना कर रहे हैं।

नवरात्र का पावन अवसर श्रद्धालुओं की आस्था मंदिरों शक्तिपीठों और सिद्ध पीठों की भव्यता को और बढ़ा रही है। हिमाचल प्रदेश के तीन प्रमुख शक्तिपीठों कांगड़ा की बज्रेश्वरी देवी मंदिर, मां चामुंडा देवी मंदिर और मां ज्वालामुखी मंदिर में नवरात्र के दौरान अलग ही वातावरण रहता है। बिलासपुर के मां नैना देवी मंदिर भी श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। नवरात्रि के इन पावन दिनों में शक्तिपीठों में दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु माता रानी से सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हैं। आस्था, उत्साह और विश्वास के बीच श्रद्धालुओं के जयकारों से शक्तिपीठों की रौनक देख

0: इंदौर के प्रसिद्ध माँ अन्नपूर्णा मंदिर में भी नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं का मेला लगा हुआ है। माँ के दर्शन के लिए भक्तों की कतार लग रही है। करीब 7 दशक पुराने इस मंदिर का इतिहास बेहद खास है। हालांकि 2023 में मंदिर को नया और भव्य स्वरूप दिया गया है। यहाँ पर नवरात्र के दौरान दर्शन के साथ साथ अन्न क्षेत्र के माध्यम से सेवा की परंपरा भी निभाई जाती है। माँ अन्नपूर्णा को अन्न और पोषण की देवी माना जाता है। सफेद संगमरमर से बना मंदिर अपने सुंदरता और भव्यता के कारण श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहता है। नवरात्र के दौरान यहाँ की भव्यता देखते ही बनती है। जयपुर के माँ वैष्णो देवी मंदिर में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी हुई है। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जा रही है।
1: शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन यानी कि माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा का आज दिन है और माँ कुष्मांडा के दर्शन हम जयपुर से माँ वैष्णो देवी मंदिर से आप सभी को कराते हैं, जहाँ आज का रंग नीला है तो नीले ही रंग में माँ का भव्य श्रृंगार किया गया है। माँ का जो दरबार है वो फूलों से सजाया गया है और इस मंदिर में सुबह से ही भक्तों की आवाजाही है। सभी भक्त माँ को प्रसन्न करने के लिए फूल लेके आ रहे हैं, चुनरी लेके आ रहे हैं जो माँ को अर्पित कर रहे हैं। साथ ही साथ में भोग की भी खास तैयारियां की गई हैं, जहाँ पे सुबह और शाम अलग अलग परिवार की तरफ से भोग तैयार किया जाता है। हलवा पूरी का भोग यहाँ पे लगाया जाता है।
0: मान्यता है कि माँ कुष्मांडा सृष्टि की रचयिता, आदि शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा की देवी है।
2: पृथ्वी की रचना करने वाली, पृथ्वी को हरा भरा रखने वाली, पृथ्वी को पूर्ण रूप से संचार करने वाली और पृथ्वी का पालन करने वाली मातेश्वरी, ये सदा जन और जीव चराचर को पूर्ण रूप से पालन करती है, उनमें रक्षा और सुरक्षा करती है। हर प्रकार से मातेश्वरी का आशीर्वाद सब जीवों को प्राप्त होता है।
0: इस मंदिर की खासियत है कि माँ की साड़ी दिन भर में 4 से 5 बार और कभी कभी 6 बार तक बदली जाती है। कुल मिलाकर माँ की आराधना, भव्य श्रृंगार और प्रसाद वितरण के बीच जयपुर में नवरात्र की आस्था और सकारात्मक ऊर्जा का माहौल देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली के प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर में नवरात्र के दौरान भव्य भक्ति उत्सव का माहौल बना हुआ है। बड़ी संख्या में भक्त कालकाजी मंदिर पहुँच माता का आशीर्वाद ले रहे हैं। कालकाजी मंदिर में यूं तो सालों भर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्र के दौरान भक्तों की आस्था के रंग की रौनक अद्भुत होती है।
3: माता रानी के मैं दर्शन करने आई हूँ नवरात्र में और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है माता रानी के दरबार में और भाई बहुत ही मनोकामना पूरी करती है माता रानी।
4: माँ के मंदिर में हर एक इच्छा पूरी होती है, जिसने जो भी चीज नहीं सुनी है ना और जहाँ किसी का हल नहीं हुआ है वो इस दरबार पे माथा टेको, हर एक चीज मिलती है यहाँ पे।
0: अब बात बिहार के मुजफ्फरपुर के एक ऐसे मंदिर की, जहाँ विशेष पूजा पद्धति और तांत्रिक साधना की परंपरा भक्तों को खींच लाती है। मुजफ्फरपुर के कच्ची सराय रोड पर स्थित माँ बगलामुखी पीताम्बरी सिद्धपीठ की मंदिर के गर्भगृह में माँ बगलामुखी की 10 भुजाओं वाली अष्टधातु की प्रतिमा स्थापित है। मंदिर की एक प्रमुख विशेषता गर्भगृह के नीचे स्थापित सहस्त्र दल महायंत्र है, जहाँ पर विशेष साधना और पूजा अनुष्ठान किए जाते हैं। माँ बगलामुखी की पूजा में पीले रंग का विशेष महत्व है। श्रद्धालु पूजा के दौरान हल्दी, दही और दूब अर्पित करते हैं। मान्यता है कि माँ की आराधना से संकटों से उबरने और मनोकामनाओं की पूर्ति का संबल मिलता है। धर्मशाला से पूजा शर्मा, इंदौर से धर्मेंद्र शर्मा, जयपुर से रिदम जैन, दिल्ली से आशुतोष कुमार और मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा के साथ रिपोर्ट, गुड स्टडे।
5: तो देखिए, शक्तिपीठों के दर्शन तो आपने किए हैं, लेकिन देश भर में माँ दुर्गा की भक्ति का रंग चूंकि छाया हुआ है तो हर जगह हर तरफ अलग अलग जो है पंडाल आस्था के सैलाब में इस वक्त डूबे हुए हैं और हर झांकी में माँ के दिव्य रूप के दर्शन हो रहे हैं। लेकिन इस बार दुर्गा पूजा खास करके पंडालों की बात करें, क्योंकि वही अभी हम स्टोरी भी हम दिखाने वाले हैं, तो आप ये दीपिका बताइए, चूंकि आप यहीं पली बड़ी हैं तो यहाँ जिस तरह से पंडाल बनते रहे हैं वो किस तरह के पंडाल होते हैं?
6: इनिशियली जब शुरुआत में ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा कोई ग्रैंड पंडाल बनते थे या बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं कोलकाता में शुरुआत से ही बहुत भव्य पंडाल बनते थे, यहाँ पर ऐसा नहीं था। सियार पार्क को छोड़ दीजिए, वहां पर हमेशा से इस तरीके से पंडाल बनते थे, लेकिन अब जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके या जितने ग्रैंडियर से बनाए जाते हैं पंडाल, वो देखने लायक होते हैं, फिर आपको कोलकाता की याद नहीं आती। हालांकि वो बात अलग है कि वो

0: ऑथेंटिक पंडाल
1: फील वाली बात अलग है,
0: बात अलग होती है, लेकिन यहाँ वाले लोग तो यही रहेंगे ना, तो वो एक बहुत ही सुंदर तरीके के जो पंडाल हैं वो काफी सालों से अब बनाते हुए नजर भी आ रहे हैं। गरबा अब तो सोसाइटीज में भी गरबा होने लगा है, पहले इतना नहीं था, इनफैक्ट अब क्लब्स में भी गरबा नाइट होने लगी है, तो कहीं ना कहीं बहुत ऐसी चीजें होती जा रही है जो कल्चर से तो मैच हो ही रही है, और साथ ही जो जेंजी है वो उसमें बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है,
1: वो भी कनेक्ट कर पा रहा है। कुछ दिनों पहले हमने तस्वीरें भी दिखाई थी, आई थिंक कल परसों ही, कहीं एक जगह पंडाल बन रहा है किसी माता के मंदिर को रेप्लिका उसकी पर बनाई जा रही है, 40 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं उस एक पंडाल के लिए। मुझे लगा इसमें तो सही में कोई ना कोई मंदिर बन जाएगा, छोटा सा कोई एक मंदिर वो बन जाएगा, लेकिन उतना पंडाल बन रहा है। तो देखिए वही बात है कि वो एक आस्था होती है लोगों की, और जिस तरह से देखिए समय बदल रहा है, हम अब ये देख रहे हैं कितने हाईटेक पंडाल भी आ गए हैं, और रोबोट, इस बार तो हम गरबा में रोबोट को भी देख रहे हैं कि वो भी गरबा कर रहा है,
0: उस तरीके की ड्रेस पहन के गरबा वाली जो
1: उसको बोलते हैं केडियू, तो वो फ्रॉक स्टाइल होता है जो जो जेंट्स हैं वो पहनते हैं, ऐसे कोटी सी रहती है और नीचे ऐसे फ्रॉक जैसा रहता है, क्योंकि जब आप घूमते हैं ना तो वो घूमता है आपके साथ, तो बड़ा अच्छा लगता है, उसको केडियो बोलते हैं। तो रोबोट केडियू पहन करके गरबा कर रहा है,
0: सोचिए कितना अलग चीजें नजर आ रही
1: है। तो पंडाल भी एक से बढ़कर एक बन रहे हैं, और ये सबसे अच्छी बात है, खूबसूरती है हमारे देश की कि हम अपनी संस्कृति अपनी परंपरा वो लेकिन साथ ही हर एक पंडाल कोई ना कोई मैसेज दे रहा है, और इस बार खास करके हम देख रहे हैं कि देशभक्ति का संदेश भी दिया गया है, आस्था की अनूठी झलक देखने को आपको मिलेगी, और हमारी संस्कृति की खूबसूरत विरासत भी।
0: बिल्कुल, देखिए कहीं मां के दरबार में देश प्रेम की गूंज सुनाई दे रही है, तो कहीं बाबा केदारनाथ के दर्शन जैसा आध्यात्मिक अनुभव मिल रहा है, तो कहीं भगवान विष्णु के अवतारों की झलक मन मोह रही है, तो कहीं बंगाल की सदियों पुरानी टेराकोटा कला अपनी खूबसूरती से सबका दिल अपनी ओर जीत रही है। चलिए मां दुर्गा के इन अनोखे दरबारों की सैर आपको करवाते हैं।

0: ये है कोलकाता की दुर्गा पूजा का अनोखा रंग। यहाँ कला भी है, संस्कृति भी, और हर पंडाल में एक नई कहानी भी है। इस बार कांकुर गाछी मिलन मेला समिति का पूजा पंडाल देशभक्ति के रंग में रंगा है। मौका है वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का, और इस खास मौके पर माँ दुर्गा के दरबार को महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की अमर रचनाओं की झलकियों से सजाया गया है। पंडाल के प्रवेश द्वार से लेकर भीतर के गलियारों तक आनंद मठ, कपाल कुंडला, विश्व वृक्ष और कृष्णकांत का वसीयत नामा जैसी रचनाओं से जुड़े दृश्य लोगों का ध्यान खींच ले रहे हैं। कहीं साहित्य की विरासत है तो कहीं मातृभूमि के प्रति प्रेम का संदेश। पंडाल में गूंजता वंदे मातरम का स्वर और बांसुरी की मधुर धुन वातावरण को और भक्तिमय बना दे रही है।
1: ये वंदे मातरम जो शब्द, ये मैं देश प्रेम के लिए श्री श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय देश प्रेम के लिए भारतवासी को आह्वान किया है, ये आजादी के लिए, ठीक है। और ये जो उसका जो सृष्टि है, उसका वो जो उपन्यास बना हुआ था, जे माने कालजयी जो उपन्यास है, वो कृष्णकांत रुइल, आनंदमठ, पीस बिक्को, ये जो बना है, ये पैंडल में सब उसका निदर्शन है। और जो माता है भारत माता को लिए, और इस भारत माता में यही दिखाई जाता है जे उसका जननी है हम लोग का।
0: पहली नजर में भले ही आपको चारधाम लगे, लेकिन तस्वीरें हावड़ा की हैं। माँ के दर्शन की चाह हो और मन में बाबा केदार के धाम जाने की आस हो तो यहाँ चले आइए। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में सह्याद्री क्लब ने श्रद्धालुओं के लिए यह अनूठी कोशिश की है। मंदिर जैसी बनावट, धाम जैसा माहौल और श्रद्धालुओं के मन में भोलेनाथ के दर्शन का भाव। इस पंडाल को देखने के लिए अभी से ही लोगों की भीड़ उमड़ रही है। उधर जमशेदपुर में भी दुर्गा पूजा को लेकर जबरदस्त उत्साह है। बिष्टुपुर के विश्वजीत मेला पूजा पंडाल में इस बार भगवान विष्णु के अवतारों को खास अंदाज में दर्शाया गया है। कल्पना की उड़ान और भव्य सजावट के जरिए तैयार इस पंडाल में श्रद्धालुओं को भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों की झलक देखने को मिल रही है।
2: माँ दुर्गा की प्रतिमा भी अद्भुत है, और उसके साथ साथ इस बार इन्होंने भगवान विष्णु के 10 अवतार को भी यहाँ प्रदर्शित किया है, बैठाया है। तो जो हमारी नई पीढ़ी है उसको जानकारी मिलेगी इससे।
0: ये पश्चिम बंगाल के पुरुलिया का नडीहा बारोयारी दुर्गा पूजा पंडाल है, जो इस बार अपने शताब्दी वर्ष का उत्सव मना रहा है। और इस खास मौके पर माँ के दरबार को बंगाल की पारंपरिक टेराकोटा कला की शैली में सजाया गया है। मंडप की सजावट में स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक शिल्प की झलक नजर आती है। अब जरा ये खास पंडाल भी देख लीजिए। रांची के इस पूजा पंडाल में कहानी कुछ चटपटी है, या इस बार गोलगप्पों का चटकारा है और बंगाल की मशहूर झालमुड़ी का स्वाद, एक साथ ये सब नजर आ रहा है। बंगाल के चुनाव के दौरान झालमुड़ी की चर्चा खूब हुई थी, और अब रांची में दुर्गा पूजा पर इसी चटपटे अंदाज को पूजा पंडाल की थीम में उतारने की कोशिश हुई है, जिसके पीछे सिर्फ खाने पीने का शौक नहीं बल्कि जिंदगी का एक संदेश भी छिपा है।
3: फुचका यानी गोलगप्पा, गोलगप्पा किसे पसंद नहीं, ये देखिए पंडाल में इस बार आकर्षण का ये केंद्र होगा। गोलगप्पों से इसे तैयार किया जा रहा है।
0: धनबाद, जिसे देश का कोयलांचल भी कहते हैं, यहाँ दुर्गोत्सव को लेकर उत्साह चरम पर है। यहाँ कतरास के GNM दुर्गा पूजा समिति के इस पंडाल ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। पंडाल की थीम थाईलैंड के प्रसिद्ध अरुण टेम्पल पर आधारित है। इस पंडाल को करीब 40 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया है। जाहिर है उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक माँ का दरबार और भव्य पंडाल सज चुका है। इन पंडालों में केवल भक्ति का भाव भर नहीं है, बल्कि संदेशों की अद्भुत गाथा भी है। जमशेदपुर से नीरज, पुरुलिया से अरुण गिरी और रांची से सत्यजीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: तो चलिए अब आपको दक्षिण भारत लिए चलते हैं, जहां नवरात्रि एक अलग अंदाज में मनाई जा रही है। यहां घरों में सीढ़ियों पर रंग बिरंगी गुड़ियों को सजाने का रिवाज है, जिसे गोलू कहा जाता है। तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इस परंपरा का खास महत्व है, और मदुरई के अशोकन तो हर साल नवरात्रि का बेसब्री से इंतजार करते हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि मदुरई में अशोकन पिछले 25 साल से गोलू की गुड़िया इकट्ठा कर रहे हैं। नवरात्रि आते ही उनकी इस खास परंपरा का उत्साह और बढ़ जाता है। दरअसल इस गोलू रिवाज में देवी देवताओं से लेकर आम जीवन और पौराणिक कहानियों से जुड़ी रंग बिरंगी मूर्तियां सजाई जाती हैं।
5: नवरात्र पर केवल आस्था का दिव्य संसार ही नहीं सजता, कुछ परंपराएं भी हर साल नवरात्र को कुछ खास रंगों से और भी दिव्य बना देती हैं। दक्षिण की ऐसी ही एक परंपरा है गोलू। नवरात्र के दिनों में खास तौर पर दक्षिण के राज्यों में मनाया जाने वाला ये वो त्योहार है जिसमें लकड़ियों की सीढ़ियों पर देवी देवताओं या फिर पौराणिक कथाओं की झांकी सजाई जाती है। ऐसी झांकी का गवाह इन दिनों अशोकन का घर बना हुआ है। दक्षिण भारत नवरात्र के दिनों में इसी तरह गुड़ियों को सजाकर भक्ति का साक्षात सत्कार करता है। तमिलनाडु के मदुरई में रहने वाले अशोकन के लिए नवरात्र इसलिए भी खास होती है क्योंकि वो हर साल अपनी गोलू की बनावट में कुछ नया जोड़ते हैं और उससे कुछ न कुछ संदेश देने की कोशिश करते हैं। 25 साल पहले सिर्फ 5 सीढ़ियों से शुरू हुआ ये सफर आज 136 सीढ़ियों और करीब 5400 गुड्डे गुड़ियों तक पहुंच चुका है। खास बात यह है कि अशोकन के गोलू में देवी देवताओं के साथ अलग अलग धर्मों, परंपराओं और राजनीतिक हस्तियों को भी जगह मिलती है। दक्षिण भारत में नवरात्रि के दौरान गोलू सजाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। तमिलनाडु में इसे बुम्बई गोलू के नाम से जानते हैं तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोम्माला कोलू के नाम से इस परंपरा को पुकारते हैं। वहीं कर्नाटक में इसे बॉम्बे हब्बा कहा जाता है। इस परंपरा में सीढ़ियों पर रंग बिरंगी मूर्तियां सलीके से सजाई जाती हैं। कहीं देवी देवताओं के दर्शन होते हैं तो कहीं रामायण और महाभारत के प्रसंग दर्शाया जाता है। अशोकन के घर में इस बार गोलू का नजारा देखते ही बन रहा है। इस बार 136 सीढ़ियों पर करीब 5400 गुड्डे गुड़िया सजे हैं। अब की बार अशोकन ने मदुरई के प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मन मंदिर के कुंभाभिषेक समारोह को गोलू के जरिए जीवंत रूप देने की कोशिश की है। यही नहीं, अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं की मूर्तियां भी इस गोलू में शामिल हैं। अशोकन के गोलू की सबसे खास बात है इसमें दिखाई देने वाली धार्मिक सद्भावना की भावना। उनका मानना है कि हर धर्म में अच्छी बातें और इंसानियत का संदेश है। शारदीय नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा की आराधना के लिए समर्पित होते हैं। देश भर में कहीं गरबा और डांडिया की धूम है तो कहीं पूजा पाठ और भक्ति की परंपराएं। लेकिन मदुरई में अशोकन का गोलू बता रहा है कि त्योहार सिर्फ रस्मों तक सीमित नहीं होते, वे लोगों को जोड़ने का जरिया भी बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
4: चलिए, वक्त हो गया यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पूरे गुजरात में गरबा की धूम।
6: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
6: और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है चाय पर चर्चा में। आगे बढ़े उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
8: त्योहारी सीजन में रेलवे के कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज। केंद्र ने प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस का किया ऐलान, 78 दिन के वेतन के बराबर मिलेगा पैसा। दिल्ली के द्वारका में तैयार हो रहा सबसे ऊंचा 221 फीट का रावण, 25 फीट ऊंचा है मुकुट, 7 टन लोहे का हुआ इस्तेमाल, 120 कारीगरों ने किया तैयार। देश भर में बन रहे मां के एक से बढ़कर एक पंडाल, रांची में द्वारका नगरी की थीम पर हूबहू बना पंडाल, तो रोहतास में मां वैष्णो देवी की गुफा की तर्ज पर सजा पंडाल। मुंबई के अंधेरी में असम के प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर के थीम पर सजा पंडाल, माता की मूर्ति की हुई स्थापना, बड़ी संख्या में दर्शन को पहुंच रहे लोग। कांगड़ा आर्ट म्यूजियम में दिखी हिमाचल की अनूठी बांस कला, लकड़ी और बांस से तैयार किए मंदिरों के हूबहू मॉडल, बैजनाथ शिव मंदिर की कलाकृति तेलंगाना के सीएम को की गई भेंट। पैक्ड पानी की गुणवत्ता पर एफएसडीए की सख्ती, अब बीआईएस प्रमाणन के बिना नहीं मिलेगा यूपी में लाइसेंस, 31 मार्च 2027 तक प्रमाणन लेना होगा अनिवार्य। नवरात्र के दौरान गरबा पंडालों की भी रौनक देखने लायक है, खास करके गुजरात का ये मुख्य पर्व है और ऐसे में गरबा कर मां की भक्ति की जा रही है। कल हमने आपको वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस का रॉयल गरबा इवेंट दिखाया, तो आज भी आपको हम वडोदरा की ही तस्वीरें दिखाते हैं, लेकिन इवेंट वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का है। दरअसल यहां पर वडोदरा नवरात्रि फेस्टिवल के सहयोग से क्लासिकल और लोक संगीत की धुनों पर गुजरात की समृद्ध संस्कृति को प्रमोट किया जा रहा है।
6: तो चलिए फिर वडोदरा ही लिए चलते हैं आपको, जहां इको फ्रेंडली आदिशक्ति की प्रतिमा पर्यावरण को बचाने का संदेश दे रही है। तो गरबा की धुनों पर झूमते नाचते लोग हर बार की तरह इस बार भी नवरात्रि को यादगार बना रहे हैं।
9: आप वडोदरा में हैं तो एक जगह तो गरबा होगा नहीं, तो चलिए जरा एक और जगह आपको लिए चलते हैं, वहां खेलते हैं गरबा, आइए मेरे साथ। और वडोदरा के एक और VNF गरबा में हम लोग मौजूद हैं, जहां पर मां का दरबार भी सजा और साथ ही साथ बड़ी संख्या में भक्त यहां पर गरबा खेल भी रहे हैं। आयोजक भी हमारे साथ हैं। उपेन जी, आपसे जानना चाहूंगी, बहुत ही खूबसूरती से पंडाल सजा गया, हालांकि केवल आरती होती है, लेकिन आप लोगों ने माँ का दरबार बहुत अच्छा सजा है, क्या थीम है इस बार का?
10: हम लोग ऐसा मानते हैं कि बड़ौदा में जो गरबे होते हैं वो विश्व विख्यात है, परंपरागत गरबे की ट्रेंड, यानी आज गुजरात की भी सांस्कृतिक राजधानी अगर कहीं कहा जाए तो वो बड़ौदा है। यहाँ पे गरबे ये कोई कॉन्सर्ट या नाच गाने के तौर पे नहीं होते हैं, यहाँ पे नवरात्र की माँ की आराधना और भक्ति के लिए होते हैं। तो जब माँ की आराधना और भक्ति यहाँ पे इतनी ऊर्जा में लोग खड़े रह के गरबे करते हैं, तो ये सिर्फ उनके लिए मूर्ति नहीं, ये एक मंदिर है, और जितना विशाल गरबे का स्वरूप देख रही हैं तो माँ का दरबार भी उतना ही विशाल होना चाहिए। तो ये सोच रख के हमने इस बार, हर बार हम लोग हमारी थीम अलग होती है, तो इस बार भी माँ का पंडाल इतना भव्य किया है कि यहाँ खड़े होके आप माँ के दर्शन कर ही सकते हैं, लेकिन ग्राउंड में दूर भी आप कहीं भी खड़े होंगे तो वहाँ से भी आपको माँ के दर्शन आराम से हो पाए, इस हिसाब से इसका पूरा आयोजन किया जाता है।
9: 50,000 की संख्या में लोग आते हैं यहाँ पर हर दिन गरबा खेलने के लिए। यहाँ पर माँ का दरबार अलग से सजाया जाता है, बेहद खूबसूरत। आरती के बाद शुरुआत हो जाती है यहाँ पर गरबा खेलने की। दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं गरबा खेलने के लिए। इस पंडाल को इको फ्रेंडली बनाया गया है, जहां पर आप देखेंगे गेंदे के फूलों से इस पूरे पंडाल को सजाया गया है। साथ ही साथ यहां पर मटकी भी रखी गई है, यानी इको फ्रेंडली और संदेश वही देने का कि माँ का दरबार है और जो हमारी संस्कृति हमारे शास्त्र हमें सिखाते हैं कि प्रकृति की पूजा सबसे पहले होनी चाहिए, यहीं से माँ आशीर्वाद भी देती है और उधर लगातार गरबा खेला जाता है। तो वडोदरा से कैंपसन पवन के साथ मैं नवजोत चंदावा।
6: भक्ति और आस्था का पर्व नवरात्र शुरू हो चुका है पूरे देश में, खासकर के गुजरात में शक्ति उपासना के पर्व की रौनक हर तरफ नजर आ रही है। भव्य पंडालों में गरबा डांडिया नाइट्स के लिए शानदार मंच और मैदान सज चुके हैं।
8: बिल्कुल, आपको बता दें कि आस्था उल्लास और भक्ति के संगम के बीच चनिया चोली, साड़ियों, कुर्ते और पारंपरिक आभूषणों में सजी महिलाएं और पुरुष गरबा के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं।

0: नवरात्र उत्सव के ये रंग गुजरात में जगह जगह देखने को मिल रहे हैं। यहाँ के लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है गरबा का रोमांच। ये सिर्फ नृत्य नहीं बल्कि माँ की शक्ति के प्रति भक्ति का एक ऐसा रंग है जो हर किसी को हर्ष से सराबोर कर देता है। शक्ति की आराधना के इस उत्सव में सूरत भी चमक रहा है। सूरत के इस विशाल पंडाल में गरबा का यह भव्य आयोजन हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ढोल नगाड़ों की थाप पर हजारों लोग माँ की आराधना में झूम रहे हैं। महिलाएं खूबसूरत चनिया चोली में सज रही हैं, तो वहीं पुरुष भी पारंपरिक केडियो, जो एक खास तरह का प्रिंटेड या कढ़ाई वाला कुर्ता होता है, के साथ धोती पहने खूब फब रहे हैं। शक्ति की आराधना के इस जश्न में कोई माँ दुर्गा के वेश में नजर आया तो किसी ने जगन्नाथ का रूप धारण किया।
1: जगन्नाथपुरी का फेस बनाया है और पगड़ी पहनी है। मैं 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ। मैं तो बोलना चाह रहा हूँ कि आप सब भी आओ और यशवी फैमिली के साथ सब मजा करो।
0: टोलियां बनाकर गरबे की धुन पर नाचते झूमते इस जन सैलाब में महिलाओं और पुरुषों का उत्सव देखते बन रहा है।
2: बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर गरबा खेल के। हम लोग पिछले 15 साल से गरबा खेल रहे हैं और हम लोग पूरे साल बैठकर करेंगे गरबा का। आज हमारा गरबा का दूसरा दिन है लेकिन बहुत मजा आ रहा है। पूरे साल हम लोग वेट करते हैं। हम लोग 5 महीने पहले से प्रैक्टिस चालू कर देते हैं गरबा खेलने का। बहुत मजा आता है हम लोग को गरबा खेलने।
0: इस जश्न में क्या आम क्या खास, हर शख्स पूरी आस्था के साथ सम्मिलित होता है। अहमदाबाद के आईपीएस मेस में आयोजित नवरात्रि गरबा महोत्सव में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघ भी दोनों शामिल हुए। मां की विशेष आरती के साथ गरबा पंडाल का उद्घाटन हुआ। सीएम और डिप्टी सीएम समेत पुलिस के सभी आला अफसर और उनके परिवार ने अम्बे माँ के दरबार में शीश झुकाया। इसके बाद गरबा के ऐसे रंग बिखरे कि हर कोई झूमने पर मजबूर हो गया। इस कार्यक्रम में उत्सव का माहौल दिखा, जिसमें डिप्टी सीएम हर्ष संघवी भी गरबा की पारंपरिक धुन पर थिरकते नजर आए। गुजरात के उत्सव की धड़कनों में गरबा बसता है। जब गरबा और डांडिया शुरू होता है तो गुजरात में जैसे सारी दुनिया समा जाती है। राजकोट में गरबा के इसी रूप का शानदार नजारा देखने को मिला। रासविला गरबा महोत्सव में जहां पंडाल में पारंपरिक गरबा में एक साथ 5,000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ गरबा किया, ये अद्भुत नजारा हर किसी को मुग्ध करने वाला रहा। इस महोत्सव में गरबा खेलने वालों की भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो माँ के भक्तों का सैलाब ही उमड़ पड़ा हो। रंग बिरंगे परिधान और गुजराती गीतों के धुन पर लोग दिल खोल कर झूमते दिखे। गायक गायिकाओं और वाद्य यंत्र से निकलते सुर गरबा में शामिल लोगों को जोश से भर रहे थे, तो अलग अलग वेशभूषा वाले सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। इतने बड़े पैमाने पर आयोजित गरबा महोत्सव से अलग जामनगर में 8 दशक से भी ज्यादा पुराना पारंपरिक गरबा अभी भी लोकप्रिय है, जिसका नाम है अठंगा रास। गोप गुंडन रास और कान गोपी रास के नाम से भी जाना जाता है।
3: कि हम लोग अठंगा रास भी खेलते हैं, तो भगवान द्वारकाधीश ने गोपियों के साथ किया था वही रास हम यहाँ पे रजू करते हैं।
0: भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़ा श्री आशापुरा गरबी मंडल का ये पारंपरिक रास श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। इस रास में मंडल के 16 सदस्य रस्सियों के माध्यम से तालमेल और अनुशासन के साथ प्रस्तुति देते हैं। रास की अनूठी शैली और कलाकारों के बीच शानदार समन्वय दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। समय के साथ अनेक बदलाव आए हैं, लेकिन जय श्री आशापुरा गरवी मंडल ने अपनी मूल परंपरा, संस्कृति और गौरव को आज भी अक्षुण बनाए रखा है। वाकई में हर साल जब गरबा का उत्सव का शुभारंभ होता है तो गुजरात की रौनक अलग ही रहती है। परंपराओं के निर्वहन के साथ ही बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं, जहाँ हजारों लोग शामिल होते हैं और देर रात तक गरबा खेला जाता है। जामनगर से दर्शन ठक्कर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: तो चलिए, हमारे लिए वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बर्फबारी से कश्मीर की वादियां हुई गुलजार।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: दुर्गा सप्तशती के अलग अलग अध्यायों का महत्व क्या है, दुर्गा सप्तशती के किस अध्याय से कौन सा मिलता है वरदान, दुर्गा सप्तशती के पाठ का क्या है विधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: तो देखिए, कश्मीर में सर्दियों की शुरुआत अभी से हो गई है। मैदानी इलाकों में बारिश और ऊंचे इलाकों में बर्फबारी के कारण घाटी में तापमान काफी गिर चुका है। हालांकि कुछ दिन पहले मौसम कुछ गर्म जरूर था, लेकिन अब सोनमर्ग, गुरेज घाटी समेत कई ऊंचे क्षेत्रों में सर्द मौसम हो चुका है।
12: बिल्कुल, आपको बता दें कि ऊंचे वाले इलाकों में, जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहां पर बर्फबारी के बाद कुदरत का मनमोहक नजारा देखने को मिल रहा है। तो इस बर्फबारी का असर घाटी के मैदानी क्षेत्रों में भी सर्द मौसम के रूप में महसूस हो रहा है। सर्दी का चक्र ऐसे ही चला तो जल्द ही पूरी कश्मीर घाटी सफेद बर्फ की चादर में लिपटी नजर आएगी।

0: सीजन की पहली बर्फबारी के साथ ही पहाड़ों ने सफेदी की चादर ओढ़ ली है। हरी भरी पहाड़ियाँ अब बर्फ की सफेदी में समा गई हैं। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में स्थित कुरेस घाटी की है, जहाँ ऊंचाई वाले इलाकों में जोरदार बर्फबारी हुई है, जबकि श्रीनगर समेत घाटी के मैदानी इलाकों में बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। अक्टूबर का भी आधा महीना ही गुजरा है और गुरेज में पारा शून्य तक लुढ़क चुका है, जबकि श्रीनगर में भी तापमान 15 डिग्री तक गिर चुका है। सैलानियों के साथ साथ स्थानीय किसानों के लिए भी ये बर्फबारी खुशियों की सौगात लेकर आई है। एक और जहां कश्मीर में पर्यटन में तेजी के आसार है, वहीं सूखे के मौसम से किसानों को राहत मिली है।
1: मंगलवार को 15 डिग्री सेंटीग्रेड श्रीनगर का अधिकतम तापमान रहा, जबकि पहाड़ी इलाकों में खासतौर से गुलमर्ग और गुरेज में तापमान शून्य के आसपास ही रिकॉर्ड किया गया, वो भी रात के बीच में। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल आने वाले 48 घंटे तक पहाड़ों पर और हल्की बर्फबारी हो सकती है, जिससे अब पूरी तरह से कश्मीर में ठंड की शुरुआत हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद मौसम फिर संभलेगा। लेकिन पहाड़ों पर हुई इस ताज़ा बर्फबारी से लोगों ने राहत भी ली है, क्योंकि कश्मीर में पिछले कई हफ्तों से सूखे का मौसम चल रहा था, लेकिन अब इस बर्फबारी ने न सिर्फ किसानों के लिए जो है एक राहत लाई है, बल्कि साथ ही साथ अब कश्मीर में विंटर टूरिज्म की भी शुरुआत इस बर्फबारी के साथ होने लगी है।
0: आसमान से लगातार हो रही बर्फबारी आज और कल भी जारी रहने की संभावना है। मैदानी इलाकों में जहां बारिश होगी, वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। मौसम के इस बदले मिजाज ने कश्मीर की वादियों की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं। फिलहाल उत्तरी कश्मीर के इन ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद कुदरत का मनमोहक नज़ारा देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में पूरी घाटी सफेद बर्फ की चादर से ढकी होगी। उत्तराखंड में भी मौसम ने करवट बदल ली है। पिछले दिनों हुई बारिश के आगे भी जारी रहने के आसार है। 15 और 16 अक्टूबर को प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। मौसम में बदलाव के चलते पर्वतीय इलाकों में ठंड बढ़ने और तापमान में गिरावट आने की संभावना है।
2: जो बर्फबारी है अगले अभी दो दिन तो हम 3800 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में देखने को मिल सकती है, जबकि जो है 15-16 तारीख में 3500 मीटर तक के ऊंचाई वाले इलाकों में भी देखने को मिल सकती है। 16 तारीख के बाद एक्टिविटी काफ़ी कम रह जाएगी, सिर्फ नॉर्थ के कुछ जो है बहुत ही बिल्कुल नॉर्थ में हमारे उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जैसे जनपद है, वहीं देखने को मिल सकती है बहुत हल्की से हल्की बारिश।
0: आने वाले दिनों में अच्छी बर्फबारी होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। जाहिर है अक्टूबर में हालात जब ऐसे हैं, तो दिसंबर तक पहाड़ी इलाकों में बर्फ का साम्राज्य कायम हो चुका होगा। श्रीनगर से अशरफ वानी, देहरादून से की शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
3: कश्मीर का मौसम पर्यावरण के लिए भी वरदान है। कश्मीर का साफ और ठंडा बहता पानी काफी समय से रेनबो ट्राउट मछली का प्राकृतिक घर बना हुआ है। अब अनुकूल मौसम की मदद से रेनबो ट्राउट मछलियों का पालन कश्मीर में तेजी से बढ़ रहा है।
4: बिल्कुल, देखिए घाटी में ट्राउट मछली पालन कारोबार आर्थिक विकास के लिए एक बेहतरीन मौके के तौर पर उभर रहा है। हमारे सहयोगी अशरफ वानी बता रहे हैं कि कैसे मछली पालन कश्मीर में रोजगार की तस्वीर बदल रहा है।
1: दुनिया में ट्राउट मछली सबसे ताजा और सबसे स्वादिष्ट मछली मानी जाती है। ट्राउट की कहानी भी अनोखी है। कश्मीर में ट्राउट फिश नहीं थे, लेकिन कहा जा रहा है कि एक अंग्रेज ट्रैवलर ने इंग्लैंड से कश्मीर में ट्राउट फिश लाई और उसके बाद कश्मीर में छोटे पैमाने पर ट्राउट फिश की फार्मिंग जो है वो शुरू हो गई। पहले ये सरकारी स्तर में अलग अलग फिश फार्म्स में पाली जाती थी और अब एशिया का सबसे बड़ा फिश फार्म जो है वो भी कश्मीर में ही बना है। इस फार्म के जो डायरेक्टर हैं उनसे हम बात करेंगे और ट्राउट फिश के बारे में जानना चाहेंगे, आखिर उन्होंने क्यों चुना कि ट्राउट फिश पालने के लिए जो कश्मीर सबसे मौजूद जगह है वहां पर उन्होंने इस एशिया के सबसे बड़े ट्राउट फिश फार्म को शुरू किया।
5: देखिए, जहां तक डिमांड का सवाल है, कश्मीर में ही 97% ट्राउट जो कश्मीर प्रोड्यूस करती है वो कश्मीर में ही कंज्यूम हो जाती है। कश्मीर की प्रोडक्शन लगभग 2500 से 2500 मेट्रिक टन होगी, वो सारी कश्मीर में ही कंज्यूम हो जाती है। ग्लोबली ट्राउट में बहुत डिमांड है। ग्लोबली मार्केट्स जापान है, मिडल ईस्ट, रशिया, इनमें बहुत सारा डिमांड है जहां पर हम अगले साल से केटर इनको भी करना शुरू करेंगे।
1: ये जो ट्राउट फिश है ये क्यों यूनिक है?
5: ट्राउट फिश यूनिक इसलिए है क्योंकि ये एक न्यूट्रिशनली बहुत डेंस फिश है। इसमें 100 ग्राम ट्राउट में 30 ग्राम प्रोटीन आता है जो सब नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए बहुत बेहतरीन एक न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रोवाइड करती है। और उसके अलावा ये एक फ्रेश वाटर फिश है तो इसमें वो मछली की वो स्मेल नहीं होती, ये बहुत क्लीन टेस्टिंग, और जैसे आप इसको पकाएंगे ये वैसे ही आपको फ्लेवर देगी।
4: तो चलिए हमारे लिए वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: तो देखिए, चीन में एक पुरानी और खतरनाक इमारत को खूबसूरत पार्क में तब्दील किया जा रहा है। खास बात यह है कि यहाँ एक बड़ा बरगद का पेड़ इमारत की दीवारों और छत के बीच से फैला हुआ है।
2: बिल्कुल, आपको बता दें कि यही नहीं, इस बरगद के पेड़ की छांव में लोग आराम भी कर सकते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कैसे एक बेकार पड़ी इमारत लोगों के लिए खास जगह बन गई है।
3: एक पुरानी इमारत जो कभी खतरा बनी हुई थी, आज लोगों के लिए सुकून की जगह बन गई है। चीन के फुजियान प्रांत के क्वांजो शहर में इस जगह को एक छोटे से पार्क में बदल दिया गया है। इसे पॉकेट पार्क कहा जाता है, यानी ऐसी छोटी जगह जहां लोग कुछ देर बैठ सके और आराम कर सके। इस पार्क के दरवाजे को बेहद खास तरीके से सजाया गया है। यहाँ चीनी मिट्टी के टूटे टुकड़ों से बनी कलाकारी और पारंपरिक डिजाइन देखने को मिलते हैं। ये डिजाइन इस इलाके की पुरानी संस्कृति की झलक दिखाते हैं। लेकिन इस जगह की सबसे खास बात है ये विशाल बरगद का पेड़। इसकी जड़ें और शाखाएं पुरानी इमारत की दीवारों और छत के साथ फैल गई हैं। पेड़ की घनी पत्तियां धूप से बचाती हैं और नीचे ठंडी छांव देती है। इसी वजह से इस जगह को ट्री हाउस यानी पेड़ वाला घर कहा जा रहा है। करीब 400 स्क्वायर मीटर में फैले इस पार्क को तैयार करने में 5 महीने से ज्यादा का वक्त लगा। ये इमारत कई सालों से खाली पड़ी थी और खतरनाक मानी जाती थी। अब इसे नया रूप देकर लोगों के लिए खोल दिया गया है। आसपास रहने वाले लोग यहां आ सकते हैं और छांव में बैठ सकते हैं और कुछ पल सुकून से बिता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज स्टूडेंट।
2: तो चाय पर चर्चा में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन कल शाम 5 बजे मुलाकात होगी गर्मा गर्म चाय और ढेर सारी खबरों के साथ।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: दुर्गा सप्तशती के अलग अलग अध्यायों का महत्व क्या है, दुर्गा सप्तशती के किस अध्याय से कौन सा मिलता है वरदान, दुर्गा सप्तशती के पाठ का क्या है विधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है।
4: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
5: त्योहारी सीजन में रेलवे के कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, केंद्र ने प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस का किया ऐलान, 78 दिन के वेतन के बराबर मिलेगा पैसा। दिल्ली के द्वारका में तैयार हो रहा सबसे ऊंचा 221 फीट ऊंचा रावण, 25 फीट ऊंचा है मुकुट, 60 टन लोहे का हुआ इस्तेमाल, 120 कारीगरों ने किया तैयार। देश भर में बन रहे मां के एक से बढ़कर एक पंडाल, रांची में द्वारका नगरी की थीम पर हूबहू बना पंडाल, तो रोहतास में मां वैष्णो देवी की गुफा की तर्ज पर सजा पंडाल। हरिद्वार स्थित जूना अखाड़े से आरंभ हुई दशमी छड़ी यात्रा चारधाम और उत्तराखंड के प्रमुख तीर्थस्थलों से होकर वापस हरिद्वार के माया देवी मंदिर में की जाती है प्रतिष्ठित। कांगड़ा आर्ट म्यूजियम में दिखी हिमाचल की अनूठी बांस कला, लकड़ी और बांस से तैयार किए मंदिरों के हूबहू मॉडल, बैजनाथ शिव मंदिर की कलाकृति तेलंगाना के सीएम को की गई भेंट। पैक्ड पानी की गुणवत्ता पर एफएसडीए की सख्ती, अब बीआईएस प्रमाणन के बिना नहीं मिलेगा यूपी में लाइसेंस, 31 मार्च 2027 तक प्रमाणन लेना होगा अनिवार्य।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

0: ரவணம்.
1: फिर से लांघा बजरंग ने सागर का विस्तार, सेतु बांध फिर वानर सेना हो गई सागर पार, धू धू करके धधक उठी है फिर अधर्म की लंका, रावण के घर फिर से गूंजा धर्म विजय का डंका, कुल कुटुंब संग खूब लगाए रावण फिर से जोर, फिर ना पाए राम के बल सीता के धैर्य का छोर, अन्याय की चौखट पर फिर हुई न्याय की दस्तक, दशानन के अहंकार का फिर से कट गया मस्तक।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। आप देख रहे हैं जेएनटी स्पेशल। जेएनटी स्पेशल में आज बात करेंगे रामलीला की। सनातन धर्म की कहानियां श्री राम को विष्णु का अवतार बताती हैं, लेकिन भारत में राम सिर्फ भगवान नहीं बल्कि राम भारत के जीवन और जीवन पद्धति में शामिल है। श्री राम की जिंदगी से जुड़ी कहानियों में मानव जीवन के लिए कई संदेश छुपे हैं। युगों युगों से राम कहानी भारत और भारतवासियों के दिलों में बसी है और हर साल नवरात्र आते ही भारत के लोगों को उसी राम कहानी को नजदीक से देखने और महसूस करने का मौका मिलता है रामलीला के जरिए। आज हम आपके लिए देश और दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों से होने वाली रामलीला की तस्वीर लेकर आए हैं। लेकिन इससे पहले कि देश के बाहर चलें और दिखाएं रामलीला का इंटरनेशनल स्वरूप, सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो रामलीला जहां भारत के मंच पर ही दुनिया की तकनीक सिमट कर आ गई है। राजधानी दिल्ली में न्यूयॉर्क के ब्रॉडवे थिएटर की तर्ज पर भव्य रामलीला हो रही है। रामलीला में भावों का सागर तो पहले ही अपार होता है, लेकिन ब्रॉडवे स्टाइल की इस रामलीला में तकनीक ने रामकथा मंचन की भव्यता को भी कई गुना बढ़ा दिया है।

0: युग युगांतर से समय की धारा के साथ बहती आई रामायण की ये दिव्य कहानी जो भारत के मन मर्म भाव विचार सोच और संवेदनाओं की पोरों में रमी है एक बार फिर से दोहराई जा रही है लेकिन अब की बार बिल्कुल अलग अंदाज में। जब दुनिया के सबसे आधुनिक रंगमंच की तकनीक भारत की हजारों साल पुरानी संस्कृति से मिलती है तो जन्म होता है एक महादृश्य का। ये न्यूयॉर्क का ब्रॉडवे नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली की ब्रॉडवे रामलीला है।
1: इस सभा में उपस्थित सभी सभासदों, ध्यान से सुनो। ये पिनाकी नाम का दिव्य धनुष महादेव रुद्र ने दक्ष के यज्ञ ध्वंस के लिए प्रयुक्त किया था। इस प्रकार आज ये धनुष मिथिला राज वंश के पास मेरे गुरुदेव महादेव शिव की धरोहर के रूप में है। ये कोई स्वयंवर नहीं अपितु षड्यंत्र है।
0: एक ऐसी रामलीला जहां ना तो दृश्यों को बदलने के लिए बार बार पर्दा गिरता है और न ही कहानी को पूरा होने में 10 दिन लगते हैं। यहां पूरी रामायण केवल 3 घंटे के एक हाईटेक संगीतमय नाटक के माध्यम से जीवंत हो उठती है। दिल्ली में होने वाली ब्रॉडवे रामलीला सीधे तौर पर न्यूयॉर्क के ब्रॉडवे थिएटर की तर्ज और उसकी भव्य प्रोडक्शन स्टाइल से प्रेरित है। पारंपरिक रामलीलाओं में जहां खुले मैदानों में कई दिनों तक स्टेज नाटक चलता है वहीं इस रामलीला को पूरी तरह से एक कमर्शियल ब्रॉडवे म्यूजिकल के रूप में ढाला गया है। इस भव्यता के पीछे है अत्याधुनिक तकनीक का हाथ। न्यूयॉर्क ब्रॉडवे शो की तरह ही दिल्ली की इस रामलीला में भव्य 3D स्टेज डिजाइन एडवांस डिजिटल बैकड्रॉप्स और अत्याधुनिक लाइटिंग का इस्तेमाल किया जाता है।
2: ब्रॉडवे रामलीला की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर पारंपरिक तरीके के साथ साथ आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भरपूर दिखाई पड़ेगा। 3,000 square feet में यहाँ पर LED लगाई गई हैं। ये सारी 3D LED हैं और ऐसा 3D माहौल तैयार होता है जैसे आप किसी 3D सिनेमा में महसूस करते हैं। जैसे आपको लगता है कि आप देखते हैं तो आप बिल्कुल उसी माहौल में पहुंच गए। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं जो स्क्रीन पर है ये वो सीन यहाँ पर दिखाया जाएगा जब रावण कैलाश पर्वत पर जाकर तपस्या करता है। जब दर्शक इस सीन को देखते हैं तो वो भी अपने आप को बिल्कुल उसी जगह महसूस करते हैं। ये जो सीन है यहाँ पर केवट का जो सीन है वो दर्शाया जाएगा और बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप किसी समंदर किसी नदी के बीचों बीच पहुँच गए हैं। 3D टेक्नोलॉजी खासियत यही है। ऐसे देखिए अलग अलग जो सीन है आप ये देखिए ये जनकपुर है और कैसे सीता स्वयंवर के समय जब सभी को इन्विटेशन गए थे तो कैसे पूरे जनकपुर को सजाया गया धजाया गया सुंदर बनाया गया ये पूरा सीन इस LED स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा है। और जब दर्शक इसे देखते हैं तो बार बार महसूस करते हैं कि जैसे ये सब कुछ उनकी आंखों के सामने घटित हो रहा है। इसके सामने ही जो तमाम आर्टिस्ट हैं वो परफॉर्म करते हैं। अब आप ये सीन देखिए लगातार किस तरह से जो यात्रा रही प्रभु श्री राम की सीता जी के साथ लक्ष्मण के साथ वनवास की यात्रा वो सीन इस तरह के जो विजुअल्स हैं उस पर दिखाए जाएंगे उस पर दर्शाए जाएंगे।
0: 3D डिजिटल बैकड्रॉप्स एडवांस्ड मैपिंग और मूवेबल स्टेज प्रॉपर्टीज के इस्तेमाल से एक बटन दबाते ही पलक झपकते मंच का माहौल बदल जाता है। तकनीक की जादूगरी से मंच पर त्रेता युग का माहौल जीवंत हो उठता है।
2: ये जनक जी का जो दरबार था उसको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। जनक जी यहाँ पर बैठते थे और जनक जी के साथ साथ किस तरह से जो स्वयंवर की प्रक्रिया होती है वो आगे बढ़ती है उस दृश्य को यहाँ पर दर्शाया जाएगा। ऐसे ही चाहे आप लंका की बात करें चाहे आप दूसरे कैरेक्टर्स की बात करें दूसरी लोकेशंस की बात करें उन सारी लोकेशंस को इस तरह से तैयार किया गया है कि जब भी दर्शक सामने से देखेंगे आप महसूस करिए कि जैसे मैं यहाँ पर हूँ। और यह एक वन का दृश्य देखिए वहाँ पर हिरण बना हुआ है यानी कि वो सीन जब मृग हिरण के पीछे जिस तरह से जो सोने का हिरण उसके पीछे जब वो भागते हैं तब का सीन किस तरह से दर्शाया जाएगा। इस तरह से पूरी LED के जरिए स्टेज को तैयार किया गया है ताकि सामने बैठा दर्शक पूरी तरह से रिलेट कर पाए अपने आप को कि वो खुद उस माहौल में पहुंच गया है, स्वयं प्रभु श्री राम के पास पहुंच गया है, अयोध्या पहुंच गया है, लंका पहुंच गया है। अब देखिए ये कैकई का कमरा है, उसका एक दृश्य है। जब भी कैकई एक आर्टिस्ट के रूप में आएगी तो उनको इस कमरे में दिखाया जाएगा, कैसे उनके नखरे थे, किस तरह से वो बात करती थी, वो यहाँ दिखाई पड़ेगा। ये कोप भवन है, जब नाराज होकर वो जाती हैं कोप भवन में तो ये उस कोप भवन का दृश्य है। आप सोचिए जब यहाँ पर करेक्टर खड़ा होकर उस डायलॉग्स को भूलेगा उस ड्रेस के साथ में, तो हर कोई सामने से कैकई को महसूस कर पाएगा। ऐसे ही तमाम सारे दृश्य हैं, लंका है और जो युद्ध है उसका मैदान यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह से LED के जरिए पूरी रामायण को, संपूर्ण रामायण को जीवंत करने की एक कोशिश है, और इसी कोशिश के लिए ये ब्रॉडवे रामलीला जानी जाती है। और उम्मीद यही कि इस बार भी दर्शक जब यहाँ पहुँचेंगे तो खुद को प्रभु श्री राम के बेहद करीब इस LED के जरिए, इन विजुअल्स के जरिए खुद को महसूस करेंगे।
0: ब्रॉडवे रामलीला के लिए केवल तकनीक ही नहीं बल्कि हर एक पात्र की वेशभूषा पर भी गहरा शोध किया जाता है। राजा दशरथ के राजसी वैभव से लेकर रावण के 10 सिरों के डिजिटल प्रभाव तक हर बारीक चीज को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार डिजाइन किया गया है।
1: रावण मेरे को मिलना मेरे लिए, मैं बोलूंगा, सौभाग्य की बात है, क्योंकि मेरे को लगता है कि रावण एक ऐसा करेक्टर है जो करना ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि अच्छा इंसान तो मैं नेचुरली अगर अपने आप को मानता हूँ, पर स्टेज पे मेरे को दिखाना है कि मैं बुरा इंसान हूँ। उसके साथ साथ ये पता होते हुए कि रावण के अंदर सारा ज्ञान, सब चीज़ों में वो उत्तम था, उसके बावजूद भी स्टेज पर ये जताना कि मैं बुराइयों का प्रतीक हूँ, वो मुझे लगता है थोड़ा एक मेरे लिए चैलेंजिंग पार्ट रहता है, तो मुझे करके काफ़ी अच्छा लगता है। कि जिस प्रोडक्शन में हम काम कर रहे हैं ये मतलब कला दर्शक वाला है, तो यहाँ पर प्रॉपर ऑडिशन, एक पूरी सीरीज है जिससे हम करेक्टर के अंदर चुने जाते हैं, तो प्रॉपर ऑडिशन दिए हमने, तीन चार लोगों के साथ मिलकर ऑडिशन दिया, अलग अलग करेक्टरों के लिए ऑडिशन दिया, उसमें से एक रावण भी था। मेरे को इसके साथ साथ हनुमान, परशुराम, इनके लिए भी ऑडिशन देने का मौका मिला था। बट हाँ, ये बोल सकते हैं कि डायरेक्टर और ऑर्गेनाइजर सबको मेरा रावण किरदार काफ़ी पसंद आया, तो और सौभाग्य से मुझे ये किरदार निभाने का मौका मिला।
0: सिर्फ मेकअप ही नहीं बल्कि ब्रॉडवे स्टाइल में एक्टिंग करना भी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि यहाँ बहुत कम समय में गानों और नृत्य के बीच अभिनय की गहराई को दिखाना होता है, हर भावना को सीधे दर्शकों के दिल तक पहुँचाना होता है।
3: एक्टिंग का मुझे शौक है और मुझे बहुत खुशी होती है कि एक डिवाइन कैरेक्टर जब किसी को भी अगर प्ले करने को दिया जाए तो वो हमारी भावनाएं जुड़ी होती है। हम पुराने टाइम से देख रहे हैं, रामायण हो गई, महाभारत हो गई, तो उस टाइम से कहीं ना कहीं सबके मन में होता है कि कोई ना कोई हम कैरेक्टर करें, और माता सीता जो मतलब हम लोगों के दिलों के इतने करीब हैं, अगर उसका कैरेक्टर करने को मिल रहा है तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं हमेशा ग्रेटफुल हूँ भगवान के लिए, और जो मुझे ये अपॉर्चुनिटी दे रही है मैं उनके लिए भी बहुत ग्रेटफुल हूँ।
0: जैसे ब्रॉडवे नाटकों में पात्रों के मानसिक द्वंद्व और भावनाओं पर बारीकी से काम होता है, ठीक उसी तरह ब्रॉडवे रामलीला में भी चरित्रों पर विशेष अध्ययन होता है जो मंच पर नजर भी आता है। ये केवल कहानी नहीं सुनाती बल्कि रामायण के पात्रों की आंतरिक यात्रा और उनकी दुविधाओं को भी दिखाती है।

0: माता सीता की बात करी जाए तो एक्सप्रेशंस जो हैं वो बिल्कुल नेचुरल है. कैसे वो अपने पति के साथ शादी कर अयोध्या में आई थी, उसके बाद फिर वो वनवास गई थी, तो उसमें अगर थोड़ा भाव देखा जाए तो वो दुखी रही हैं, तो थोड़ा दुख का है. खुशी का तब समय होता है जब स्वयंवर आता है, तो खुशी का है. तो ऐसे एक्सप्रेशंस अलग से नहीं है, पर हाँ मैं मतलब जो भी है बहुत सिंपल है. आप अगर आप स्टेज पे देखेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा.
1: कुल मिलाकर ये पारंपरिक संस्कृति और आधुनिक पश्चिमी रंगमंच कला का ऐसा अनूठा संगम है जो विशेष रूप से आज की युवा पीढ़ी को आकर्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है. जहाँ पारंपरिक रामलीला 9 से 10 दिनों तक चलती है

0: एक ही दिन में हम पूरा राम जन्म से राज्याभिषेक तक एक ही दिन में करें, ताकि बच्चे देखें और उसको समझें भी, क्योंकि सीता समर भी उसी दिन है, वनवास भी उसी दिन है और राज्याभिषेक भी उसी दिन है, सब चीज़ें उसमें होती है। तो बच्चों को समझ में आ जाता है कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहलाए। तो यही हमारा विचार था। इसके लिए हमने जो मैनेज किया यहाँ पे सिस्टम, 7,000 आदमियों की हमारी गैदरिंग होती है, लेकिन यहाँ पे नीचे गैदरिंग का ये सवाल है कि 12,000 आदमी देखते हैं और सामने जो वो लगे हुए हैं उनके ऊपर भी लोग खड़े होकर बैठ कर खड़े होकर भी देखते हैं, मतलब 14,000 आदमी एक बार देखते हैं। मेरे हिसाब से इतना भव्य जो लीला है, मुझे नहीं लगता कि भाई हमने कोई बचपन में देखा हुआ, और हमें भी नहीं पता था कि भगवान रामचंद्र जी हमारे साथ हमारे द्वारा माध्यम से ये लीला ऐसे करें आएंगे।
1: जिस तरह ब्रॉडवे शो की सबसे बड़ी पहचान उसका लाइव या विशेष रूप से तैयार संगीत होता है, इसी तर्ज पर ब्रॉडवे रामलीला के लिए भी कई ओरिजिनल साउंड ट्रैक तैयार किए गए हैं, जिन्हें लोकप्रिय भारतीय गायकों ने अपनी आवाज दी है। बता दें कि दिल्ली के पीतमपुरा में इस भव्य ब्रॉडवे रामलीला का मंचन दशहरा तक होने वाला है। नवरात्र के दौरान युद्ध राजधानी दिल्ली के कई मैदान चौराहों, चौक बाजारों, मेलों और मंचों पर रामकथा का रस बरस रहा है, लेकिन आधुनिक तकनीक ने ब्रॉडवे रामलीला को बेहद अलग, भव्य और खास बना दिया है। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो ये तो थी बात देश में हो रही इंटरनेशनल तकनीक वाली रामलीला की। अब बात उस रामलीला की जिसके मंचन देश के बाहर हो रहे हैं। कभी श्री राम ने मां सीता के लिए सागर लांघा था और अब राम कथा की लहरें 7 समंदर पार कर दुनिया के कई देशों तक पहुंच रही है। कुछ रूप बदला, कुछ कहानी बदली, कुछ पात्र बदले, मगर जहां जहां भारतीय गए, जहां जहां भारतीयता गई, वहां वहां राम कथा भी यात्रा करते हुए पहुंची। कई देशों ने भारतीय संस्कृति में ढली हमारी रामलीला को बेहद श्रद्धा से अपनाया है। यही वजह है कि रामलीला आज भारत और दुनिया के कई हिस्सों के बीच और कई देशों में सांस्कृतिक सेतु बन गई है।

भारत ही नहीं बल्कि राम कथा सागर की लहरें दुनिया के जाने कितने ही देशों तक पहुंचती हैं। थाईलैंड, मॉरिशस, कंबोडिया, म्यांमार और इंडोनेशिया जैसे देशों में अलग अलग रूपों में राम कथा का मंचन किया जाता है। मसलन इंडोनेशिया में आबादी के एक बहुत बड़े समूह का मानना है कि इस्लाम जहां उनका धर्म है तो वहीं रामायण उनकी संस्कृति है। लोग 9वीं सदी में लिखी गई जैवनिस वर्जन ऑफ रामायण को मानते हैं। इंडोनेशिया के जावा में प्रमनाम मंदिर में सेंद्रातारी रामायण लगभग साल भर चलती है। ये राम कथा पर आधारित बैले डांस यानी नृत्य नाटिका है। इसमें सीता हरण और मारीच मरण जैसे दृश्य देखने को मिलते हैं। इसमें एक बार में सैकड़ों कलाकार हिस्सा लेते हैं। कभी कभी तो कलाकारों की संख्या 1000 को भी पार कर जाती है। थाईलैंड में राम की कीर्ति बताने वाली छाया रामलीला का आयोजन होता है। दरअसल थाईलैंड का राष्ट्रीय महाकाव्य रामाकीन है जिसका अर्थ है राम की कीर्ति। ये वाल्मीकि रामायण से लिया गया है और थाई भाषा में है। यहाँ के थिएटर ग्रुप में भी रामलीला भव्य तरीके से आयोजित होती है।

होने वाली छाया रामलीला को स्थानीय भाषा में नंग कहा जाता है। इसको सफेद पर्दे पर दिखाते हैं, फिर उसके सामने पुतलियों को इस तरह नचाया जाता है कि उसकी छाया पर्दे पर पड़े। मुखौटों का इस्तेमाल कर यहाँ रामलीला की जाती है। नाटक के माध्यम से प्रदर्शित की जाने वाली रामलीला को थाईलैंड में खौन के नाम से जाना जाता है। इसी तरह मॉरिशस में भी बेहद श्रद्धा और चाव के साथ रामलीला गाई जाती है। मॉरिशस की कला और सांस्कृतिक मंत्रालय की ओर से हर साल यहां रामलीला का आयोजन होता है, जिसमें झाल ढोलक के साथ रामलीला गाई जाती है। यह रामलीला इतनी लोकप्रिय है कि इसमें अभिनय के लिए भारतीय कलाकारों को भी बुलाया जाता है।

इसी तरह बौद्ध देश कंबोडिया में भी रामायण का मंचन होता है। यहाँ रामायण को रीम कर और भगवान राम को प्रिय रीम कहा जाता है। सीता नेयांग सेडा और लक्ष्मण प्रिय लीक के नाम से जाने जाते हैं। यह रामलीला तुलसीदास रचित रामचरितमानस के आधार पर खेली जाती है। दरअसल कंबोडिया में करीब 600 सालों तक हिंदू खमेर साम्राज्य का शासन था। इसी के चलते यहाँ हिंदू धर्म का खासा प्रभाव देखने को मिलता है। बताया जाता है कि यहाँ रीमकर खमेर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध साहित्य है। इसका प्रभाव आज भी कंबोडिया की कला में साफ दिखाई देता है। जबकि म्यांमार की रामलीला यांपवे कहलाती है। इसमें मुखौटों का इस्तेमाल होता है। यहाँ के लोग हास्य रस के बेहद प्रेमी होते हैं, इसलिए यांपवे में विदूषक की भूमिका मुख्य मानी जाती है। यहाँ की रामलीला में ऐसा बहुत कम होता है जब रंगमंच पर विदूषक मौजूद न हो। रामलीला आरंभ होने से पहले 1-2 घंटे हास परिहास चलता है। नृत्य और संगीत के कार्यक्रम होते हैं।

0: इसी तरह बताया जाता है कि जापान के लोकप्रिय कथा संग्रह होबुत्सुशु में भी संक्षिप्त राम कथा संकलित है, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जीवन गाथा का अमृत आज युगों बाद भी दुनिया के कई कोनों को यूं ही सींच रहा है। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: दुर्गा सप्तशती के अलग अलग अध्यायों का महत्व क्या है, दुर्गा सप्तशती के किस अध्याय से कौन सा मिलता है वरदान, दुर्गा सप्तशती के पाठ का क्या है विधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
8: जारी सीजन में रेलवे के कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, केंद्र ने प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस का किया ऐलान, 78 दिन के वेतन के बराबर मिलेगा पैसा। दिल्ली के द्वारका में तैयार हो रहा सबसे ऊंचा 221 फीट ऊंचा रावण, 25 फीट ऊंचा है मुकुट, 7 टन लोहे का हुआ इस्तेमाल, 120 कारीगरों ने किया तैयार। देश भर में बन रहे मां के एक से बढ़कर एक पंडाल, रांची में द्वारका नगरी की थीम पर हूबहू बना पंडाल, तो रोहतास में मां वैष्णो देवी की गुफा की तर्ज पर सजा पंडाल। हरिद्वार स्थित जूना अखाड़े से आरंभ हुई दशमी छड़ी यात्रा चारधाम और उत्तराखंड के प्रमुख तीर्थ स्थलों से होकर वापस हरिद्वार के माया देवी मंदिर में की जाती है प्रतिष्ठित। कांगड़ा आर्ट म्यूजियम में देखिए हिमाचल की अनूठी बांस कला, लकड़ी और बांस से तैयार किए गए मंदिरों के हूबहू मॉडल। वैजनाथ शिव मंदिर की कलाकृति तेलंगाना के मुख्यमंत्री को की गई भेंट। पैक्ड पानी की गुणवत्ता पर FSDA की सख्ती, अब BIS प्रमाणन के बिना नहीं मिलेगा उत्तर प्रदेश में लाइसेंस, 31 मार्च 2027 तक प्रमाणन लेना होगा अनिवार्य।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
8: नवरात्रि के चौथे दिन देश भर में आज माँ दुर्गा के कूष्मांडा स्वरूप की हो रही है पूजा अर्चना। मान्यता है कि माँ कूष्मांडा ने अपनी मुस्कान से की थी ब्रह्मांड की रचना। पूरे ब्रह्मांड की तेज की स्वामिनी मानी जाती है माँ कूष्मांडा। माँ कूष्मांडा की पूजा उपासना से रोग शोक का होता है नाश। शेर पर सवार 8 भुजाओं वाली बहुत शांत मुद्रा की भक्त वत्सल देवी मानी जाती हैं कूष्मांडा। हाथों में कुंभ चक्र गदा सिद्धि निधि का जाप माला करने वाली माला। हरे वस्त्र धारण करके करना चाहिए माँ कूष्मांडा का पूजन। मान्यताओं के अनुसार माँ कूष्मांडा को मालपुआ पेठा कद्दू की मिठाई लगा सकते हैं भोग। माँ की उपासना से जन्म जन्मांतर के कष्ट और निराशा नष्ट हो जाती है। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा का भव्य श्रृंगार। माँ कूष्मांडा की उतारी गई आरती, आरती में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। श्रद्धालुओं ने जमकर लगाए जय माता दी के जयकारे, भक्तों ने पूजा पाठ करके आशीर्वाद लिया। दिल्ली के छतरपुर में नवरात्र को लेकर उमड़ा आस्था का जनसला, बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। सुबह से छतरपुर मंदिर में लगी भक्तों की लंबी कतार, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। हैदराबाद में देवी नवरात्र के चौथे दिन 4 मीनार स्थित भाग्यलक्ष्मी मंदिर में महाआरती का आयोजन, सुबह से लंबी कतारें। मां भाग्यलक्ष्मी मंदिर में मां का किया गया विशेष श्रृंगार, भक्तों ने जमकर लगाया जयकारे। देवी नवरात्र के चौथे दिन हैदराबाद के भाग्यलक्ष्मी मंदिर में श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना, सुख समृद्धि का वरदान लिया। पुरी में नवरात्र के चौथे दिन भगवान जगन्नाथ की उतारी गई विशेष आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए सुबह से लगी लंबी लंबी कतारें, भक्तों ने जमकर लगाया जयकारे। अकोला में मां सप्तरंगी का प्राचीन मंदिर में उमड़ी आस्था, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किए। सप्तरंगी मंदिर में विजयादशमी के दिन सोना अर्पित करने की विशेष परंपरा, श्रद्धालु मां के चरणों में सोना चढ़ाकर अपनी आस्था करते हैं प्रकट। मां सप्तरंगी मंदिर में श्रद्धालु मां की पूजा अर्चना करके परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। जयपुर में नवरात्र के चौथे दिन मां वैष्णो देवी का भव्य श्रृंगार हुआ, मां को विशेष नीले रंग की साड़ी पहनाई गई। मां के श्रृंगार की खास परंपरा, दिन भर 4 से 6 बार बदली जाती है मां की साड़ी। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में नवरात्र के चौथे दिन उतारी गई मां की आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। दिल्ली के चित्रंजन पार्क में सबसे बड़े मेला ग्राउंड में नवरात्र का पंडाल बनकर हुआ तैयार, माता की प्रतिमा भी स्थापित हुई, 15 अक्टूबर से होगी पूजा। रोहतास में मां दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे हुए कारीगर, भव्य बनाए गए पंडाल। दुर्गापुर में निर्वाण थीम पर बना पंडाल, बड़ी संख्या में पंडाल देखने के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। लोहे के स्ट्रक्चर और फाइबर की मदद से तैयार किया गया है पंडाल, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल ने उद्घाटन किया। झांसी में 102 साल पुरानी धूमधाम से निकाली गई राम बारात, भगवान श्री राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न स्वरूप में दर्शन करने के लिए उमड़े श्रद्धालु। राम बारात में भगवान शिव और माता पार्वती की झांकी बनी लोगों के आकर्षण का केंद्र। श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा और आरती करके भगवान का स्वागत किया, बैंड बाजे धार्मिक झांकी और जय श्री राम की जयकारे। महाकाली की झांकी अग्नि प्रदर्शन और दक्षिण भारत से आए कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुति दी, लोगों ने कैमरे में कैद किया। 102 साल पुरानी इस परंपरा में बुंदेलखंड के दूर दराज के इलाकों से पहुंचते हैं लोग, जमकर लगाए जा रहे हैं जय श्री राम के जयकारे। धनबाद में बनेगा आदिवासी शीश महल, 32 लाख से सजेगा दुर्गा पूजा पंडाल। धनबाद में देखेगी अंडमान निकोबार की झलक, झारखंड मैदान बनेगी शीश महल, बांस और नारियल से सजेगा पंडाल। 23 अक्टूबर को निकलेगी भव्य शोभा यात्रा, बनारस की राधा कृष्ण मंडली करेगी धमाल। प्लास्टिक थर्मोकोल और समिति ने किया है तैयार, इको फ्रेंडली होगा भव्य दुर्गा पंडाल। दुर्गा पूजा में देखेगा भव्य नजर, ढोल चौ और झांकी बनेंगे आकर्षण का मुख्य केंद्र। नर्मदापुरम में सजा न्याय का दरबार, जज की कुर्सी पर विराजे भगवान गणेश, झांकी में गूंजा बेटियों को न्याय का संदेश। मां भवानी के दरबार में अनोखी अदालत, जेल से फांसी तक के देखे दृश्य। दुर्गा पंडाल बना भव्य कोर्टरूम, मास्था के साथ न्याय की अनूठी पहल, बेटियों के गुनाहगारों को सजा का संदेश। मां भवानी की झांकी बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र, नारी सम्मान और सुरक्षा का संदेश दिखा अद्भुत अलौकिक नजारा। मां भवानी के दरबार में उमड़ी भीड़, अनोखी अदालत देखने के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु, बेटी बचाओ का संदेश। रांची में उतरी द्वारका नगरी की भव्य झलक, 1 करोड़ से सजा दुर्गा पूजा पंडाल, प्रधानमंत्री मोदी की डुबकी वाली झांकी बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र। रांची में द्वारकाधीश मंदिर का भव्य और दिव्य स्वरूप, अल्बर्ट एक्का चौक पर सजा खास पंडाल, दर्शन करने के लिए उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। दुर्गा पूजा में प्राचीन द्वारका की झलक, पश्चिम बंगाल के कारीगरों ने रचा कमाल। रांची का थीम पंडाल बना आकर्षण का मुख्य केंद्र, द्वारका नगरी में हूबहू प्रतिकृति तैयार, भक्तों को मंत्रमुग्ध कर रहा है पंडाल। रांची में भक्ति और भव्यता का संगम, द्वारकाधीश मंदिर की तर्ज पर सजा पंडाल। गया जी में मां दुर्गा का अनोखा भक्त शंकर भगत ने सीने पर स्थापित किए 9 कलश, अनूठी भक्ति देखने को उमड़े ग्रामीण। सीने पर 9 कलश रखकर 9 दिन मां की कठिन साधना, नवरात्र में भक्ति बने आकर्षण का मुख्य केंद्र, भक्ति देखकर नतमस्तक हुए लोग। खगड़िया में भक्ति की अनोखी मिसाल, छाती पर कलश रखकर भक्त ने शुरू की मां की कठिन आराधना। शारदीय नवरात्र में भक्ति की अनूठी तस्वीर, अन्न त्याग कर 10 दिनों तक मां की पूजा अर्चना। जारी सीजन में रेलवे के कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, केंद्र ने प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस का किया ऐलान, 78 दिन के वेतन की बराबर पैसा मिलेगा। दुर्गा पूजा के रंगों में नहाया कोलकाता, पुलों चौराहों और घाटों की रंगीन सजावट। गरियाहट ब्रिज गुलाबी नारंगी रंगों से सजा। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 में 221 फीट का रावण, 22 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई। 90-90 फीट के मेघनाथ कुंभकर्ण के भी पुतले, 3 महीने में बनकर विशालकाय पुतला तैयार। 120 कारीगरों ने तैयार किया विशालकाय पुतला, निर्माण में लगा 7 टन लोहा, 25 फीट का मुकुट के साथ रावण की शाही सजावट। नवरात्र पर माता रानी के रंग में रंगा धौलपुर, मंदिरों में पंडालों में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़। रंगीन रोशनी से जगमाया दुर्गा पूजा पंडाल, भजन कीर्तन पर झूमे श्रद्धालु, ढोलक मंजीरों से गुंजायमान हुआ माता का दरबार। धौलपुर में डांडिया गरबा की धूम परिधानों में नजर आ रहे हैं युवा। हरिद्वार के माया देवी मंदिर में उमड़े भक्त, नवरात्र में सिद्ध पीठ पर लगी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, मां के दरबार में गूंज रहे जयकारे। भक्त मां के साथ भैरव के भी कर रहे हैं दर्शन, 51 शक्तिपीठों की मान्यता से जुड़ा है माया देवी मंदिर, हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी है माया। राजकोट में नवरात्र के चौथे दिन गरबा की धूम, बजरंग गरबी मंडल ने पारंपरिक अग्नि गरबा पेश किया। राजकोट में अग्नि गरबा के दौरान 6 महिलाएं सिर पर जलते हुए गरबा के बर्तन और हाथों में मशाले लेकर नृत्य करती हुई नजर आई, लोगों के लिए बना आकर्षण का मुख्य केंद्र। राजकोट में बजरंग गरबी मंडल की अग्नि गरबा परंपरा लगातार 18वें साल जारी है। नवरात्र के दौरान पेश किया जाने वाला यह अनोखा आयोजन गुजराती संस्कृति और परंपरा गरबा। अहमदाबाद नवरात्रि गरबा महोत्सव का आयोजन मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और डिप्टी सीएम शामिल हुए। नवरात्रि के अवसर पर महाआरती का आयोजन मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने मां जगदम्बा की आरती की। जामनगर में नवरात्रि के दौरान काडियावाड़ की युवाओं ने जलते हुए अंगारों पर किया स्वास्थ्य क्रास। जामनगर के काडियावाड़ में नवरात्रि के अवसर पर युवाओं ने 52 साल पुरानी परंपरा को जीवित किया। जामनगर में नवरात्रि में आस्था और परंपरा खानों का संगम। नवरात्रि के दौरान काडियावाड़ का स्वास्थ्य क्रास आकर्षण का मुख्य केंद्र। वडोदरा में गरबा के रंग में रंगी हुई नजर आई महिला पुलिसकर्मी पारंपरिक गरबा पोशाक में नजर आई। वडोदरा में नवरात्रि के उत्सव के बीच महिला पुलिसकर्मियों का पारंपरिक गरबा लोक आकर्षण का मुख्य केंद्र। सूरत में गरबा उत्सव की धूम पारंपरिक गुजराती परिधान में नजर आई महिला पुलिस। नवरात्रि के चौथे दिन गरबा महोत्सव में उत्साह चरम पर ढोल की थाप पर संगीत पर झूमते हुए नजर आए लोग। नवरात्रि के गरबा महोत्सव में महिलाओं ने सुरक्षा इंतजामों को परखा रात 3 बजे तक गरबा डांस। नवसारी में भी गरबा की रौनक बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। नवसारी में पारंपरिक दूरी रास की अनूठी छटा करीब 120 साल से लगातार चली आ रही परंपरा। उत्तर प्रदेश के महोबा में शक्ति उत्सव की धूम गरबा और डांडिया महोत्सव में 350 से ज्यादा महिलाओं की मनमोहक प्रस्तुति। बुंदेलखंड के महोबा में नवरात्रि महोत्सव के दौरान महिलाओं ने तलवार डांस से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। नन्ही बच्चियों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। महोबा के गरबा महोत्सव में महिलाओं बहुओं और बच्चों ने हिस्सा लिया। आयोजन ने भक्ति सांस्कृतिक परंपरा और महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया। सीकर में गरबा महोत्सव की रौनक महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में सज धज कर डांडिया किया। बॉलीवुड गुजराती और राजस्थानी गानों पर जमकर थिरके लोग। धर्मशाला में देखिए हिमाचल की अनूठी बांस कला। बांस लकड़ी से बने मंदिरों के हूबहू मॉडल्स कांगड़ा आर्ट म्यूजियम में सजी प्रदर्शनी। रिटायर्ड शिक्षक की कला ने खींचा सभी का ध्यान। विनय अवस्थी बना रहे हैं मंदिर की प्रतिकृतियां। बांस और लकड़ी से जीवंत हुई मंदिर वास्तुकला। स्लैट पुश मकानों के भी बनाए गए आकर्षक मॉडल। कांगड़ा आर्ट म्यूजियम में उमड़ रहे हैं पर्यटक। पारंपरिक कलाकृतियां देखकर इतिहास से जुड़ रहे हैं लोग। कबाड़ की लकड़ी से तैयार हो रही है शानदार कलाकृतियां। 2019 में शुरू हुआ विनय अवस्थी का कला सफर। त्योहारी सीजन में कारोबारियों के लिए शानदार खबर। सीजन में 7 लाख करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान। दुर्गा पूजा से दिवाली तक बाजार में रौनक की उम्मीद। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने जारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के दमोह पहुंची पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा। कल होगा यात्रा का समापन। अयोध्या के श्रीराम जानकी मंदिर में बनाई जा रही हनुमान जी की 11 फीट ऊंची मूर्ति लकड़ी से की जा रही है तैयार। विमान हादसा टालकर 180 लोगों की जान बचाने वाले कैप्टन स्मिथ माचार को ये सबसे छोटी हनुमान चालीसा गिफ्ट करेंगे निकुंज वागड़िया। जम्मू कश्मीर में मौसम की मेहरबानी बरकरार। कुरेज समेत कई इलाकों में ताजा बर्फबारी। बर्फबारी से चारों ओर बिछी बर्फ की मोटी चादर। सड़कों पर भी जमी हुई है परत। कश्मीर घाटी के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानों में बारिश के चलते मौसम ने करवट ली। तापमान में गिरावट। श्रीनगर में अधिकतम तापमान गिरकर 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। लोगों से सतर्क रहने की अपील। जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में भारी बर्फबारी की संभावना। 1-2 दिन में होगी जबरदस्त बर्फबारी। फिल्म आज का महिषासुर का फर्स्ट लुक हुआ जारी। टेरेंस लुइस के साथ पद्मिनी चंदन रॉय और आयशा ऐमान आएंगे नजर। फिल्म खोसला का घोसला 2 की नई रिलीज डेट का ऐलान, अगले साल 5 मार्च को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की फिल्म उड़ता तीर का दूसरा ट्रेलर आउट, 23 अक्टूबर को रिलीज होगा। हनुमान अंश पर पवन पुत्र की कृपा, 68वें दिन 337 करोड़ का बिजनेस। अजय देवगन की दृश्यम 3 ने रच दिया इतिहास, 12 दिन में 500 करोड़ का आंकड़ा पार।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
8: कश्मीर में सर्दियों की शुरुआत अभी से हो गई है, मैदानी इलाकों में बारिश और ऊंचे इलाकों में बर्फबारी के कारण घाटी में तापमान काफी गिर चुका है। हालांकि कुछ दिन पहले मौसम कुछ गर्म जरूर था, लेकिन अब सोनमर्ग कोरेज घाटी समेत कई ऊंचे क्षेत्रों में सर्द मौसम हो चुका है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद कुदरत का मनमोहक नजारा देखने को मिल रहा है, तो इस बर्फबारी का असर घाटी के मैदानी क्षेत्रों में सर्द मौसम के रूप में महसूस होने लगा है। सर्दी का चक्र ऐसे ही चला तो जल्द ही पूरी कश्मीर घाटी सफेद बर्फ की चादर से लिपट जाएगी।

0: सीजन की पहली बर्फबारी के साथ ही पहाड़ों ने सफेदी की चादर ओढ़ ली है। हरी भरी पहाड़ियाँ अब बर्फ की सफेदी में समा गई हैं। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बानीपोरा जिले में स्थित कुरेज घाटी की है, जहाँ ऊंचाई वाले इलाकों में जोरदार बर्फबारी हुई है, जबकि श्रीनगर समेत घाटी के मैदानी इलाकों में बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। अक्टूबर का भी आधा महीना ही गुजरा है और गुरेज में पारा शून्य तक लुढ़क चुका है, जबकि श्रीनगर में भी तापमान 15 डिग्री तक गिर चुका है। सैलानियों के साथ साथ स्थानीय किसानों के लिए भी ये बर्फबारी खुशियों की सौगात लेकर आई है। एक और जहां कश्मीर में पर्यटन में तेजी के आसार है, वहीं सूखे के मौसम से किसानों को राहत मिली है।
1: मंगलवार को 15 डिग्री सेंटीग्रेड श्रीनगर का अधिकतम तापमान रहा, जबकि पहाड़ी इलाकों में खासतौर से गुलमर्ग और गुरेज में तापमान शून्य के आसपास ही रिकॉर्ड किया गया, वो भी रात के बीच में। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल आने वाले 48 घंटे तक पहाड़ों पर और हल्की बर्फबारी हो सकती है, जिससे अब पूरी तरह से कश्मीर में ठंड की शुरुआत हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद मौसम फिर संभलेगा। लेकिन पहाड़ों पर हुई इस ताज़ा बर्फबारी से लोगों ने राहत भी ली है, क्योंकि कश्मीर में पिछले कई हफ्तों से सूखे का मौसम चल रहा था, लेकिन अब इस बर्फबारी ने न सिर्फ किसानों के लिए जो है एक राहत लाई है, बल्कि साथ ही साथ अब कश्मीर में विंटर टूरिज्म की भी शुरुआत इस बर्फबारी के साथ होने लगी है।
0: आसमान से लगातार हो रही बर्फबारी आज और कल भी जारी रहने की संभावना है। मैदानी इलाकों में जहां बारिश होगी, वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। मौसम के इस बदले मिजाज ने कश्मीर की वादियों की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं। फिलहाल उत्तरी कश्मीर के इन ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद कुदरत का मनमोहक नज़ारा देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में पूरी घाटी सफेद बर्फ की चादर से ढकी होगी। उत्तराखंड में भी मौसम ने करवट बदल ली है। पिछले दिनों हुई बारिश के आगे भी जारी रहने के आसार है। 15 और 16 अक्टूबर को प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। मौसम में बदलाव के चलते पर्वतीय इलाकों में ठंड बढ़ने और तापमान में गिरावट आने की संभावना है।
2: जो बर्फबारी है अगले अभी दो दिन तो हम 3800 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में देखने को मिल सकती है, जबकि जो है 15-16 तारीख में 3500 मीटर तक के ऊंचाई वाले इलाकों में भी देखने को मिल सकती है। 16 तारीख के बाद एक्टिविटी काफ़ी कम रह जाएगी, सिर्फ नॉर्थ के कुछ जो है बहुत ही बिल्कुल नॉर्थ में हमारे उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जैसे जनपद हैं, वहीं देखने को मिल सकती है बहुत हल्की से हल्की बारिश।
0: आने वाले दिनों में अच्छी बर्फबारी होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। जाहिर है अक्टूबर में हालात जब ऐसे हैं, तो दिसंबर तक पहाड़ी इलाकों में बर्फ का साम्राज्य कायम हो चुका होगा। श्रीनगर से अशरफ वानी, देहरादून से की शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
4: स्टेशन के सामने लोगों का हुजूम उमड़ा, प्रदर्शन से दिल्ली बेहाल, रेलवे स्टेशन का ऐसा हाल। दिल्ली में भरभरा कर गिरी बहुमंजिला इमारत, सबसे क्यूट माँ दुर्गा, वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए वैभव शुक्ला के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
10: एवरेस्ट दिखा ला, सही तीखा सही लाल।
11: त्योहारी सीजन में रेलवे के कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, केंद्र ने प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस का किया ऐलान, 78 दिन के वेतन के बराबर मिलेगा पैसा। दिल्ली के द्वारका में तैयार हो रहा सबसे ऊंचा 221 फीट का रावण, 25 फीट ऊंचा है मुकुट, 60 टन लोहे का हुआ इस्तेमाल, 120 कारीगरों ने किया तैयार। देश भर में बन रहे मां के एक से बढ़कर एक पंडाल, रांची में द्वारका नगरी की थीम पर हूबहू बना पंडाल, तो रोहतास में मां वैष्णो देवी की गुफा की तर्ज पर सजा पंडाल। हरिद्वार स्थित जूना अखाड़े से आरंभ हुई दशमी छड़ी यात्रा, चारधाम और उत्तराखंड के प्रमुख तीर्थस्थलों से होकर वापस हरिद्वार के माया देवी मंदिर में की जाती है प्रतिष्ठित। पैक्ड पानी की गुणवत्ता पर एफएसडीए की सख्ती, अब बीआईएस प्रमाणन के बिना नहीं मिलेगा यूपी में लाइसेंस, 31 मार्च 2027 तक प्रमाणन लेना होगा अनिवार्य।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम।
11: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएं, लेकिन सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की, नवरात्र महोत्सव की। देश भर में शक्ति की उपासना का महापर्व पूरे उत्साह और उमंग उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज नवरात्र का 4th दिन है, देश भर के मंदिरों में भक्त माँ कुष्मांडा की आराधना के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में हमारी आज की हमारी जो पहली गुड न्यूज है वो है नवरात्र के 4th दिन मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। जी हाँ, आपको हम बता दें कि नवरात्र की रौनक हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। नवरात्र पर्व के चौथे दिन देश भर के मंदिरों में मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना पूरे भक्तिभाव के साथ की जा रही है। दिल्ली के छतरपुर और कालकाजी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। वहीं झंडेवालान मंदिर में भी मां के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मां कुष्मांडा की भक्ति और आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। हैदराबाद के भाग्यलक्ष्मी मंदिर में भी इस शुभ मौके पर सुबह सुबह महाआरती की गई।
12: और आज नवरात्रि का चौथा दिन, क्योंकि मां कुष्मांडा का दिन है और मां को रॉयल ब्लू कलर से सजाया जाता है। हर दिन एक अलग रंग जो है वो मां के लिए होता है, और आज का जो रंग वो रॉयल ब्लू है। तो रॉयल ब्लू और पर्पल के शेड में ही ये जो मां की साड़ी है वो आज नजर आ रही है। बहुत ही खूबसूरत श्रृंगार जो है वो मां का किया गया है इस मंदिर में। मैं देख पा रही हूँ लगातार जो भक्त हैं वो सुबह से आ रहे हैं, अपनी मनोकामनाएं मां के सामने रख रहे हैं, क्योंकि मां कुष्मांडा को सृष्टि की रचयिता कहा जाता है और ऊर्जा की देवी कहा जाता है। और ऊर्जा की जब हम बात करते हैं तो हर एक व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा चाहता है, पॉजिटिव एनर्जी चाहता है, बस वैसी ही एनर्जी यहाँ आके महसूस होती है। दूसरी ओर मैं आपको भोग की तैयारियां दिखाऊंगी, क्योंकि हर दिन अलग अलग परिवार सुबह और शाम यहाँ पे भोग की व्यवस्था करते हैं, तो वही तैयारियां भी चल रही है। हलवा पूरी का भोग यहाँ पे लगाया जा रहा है। वही श्रृंगार की अगर मैं वापस से बात करूं तो श्रृंगार भी माँ का दिन में एक बार नहीं पर 6 से 7 बार बदला जाता है। तो 6 से 7 रूप हमें हर दिन माँ के देखने को मिलते हैं। और इस समय पे मंदिर में मंत्रोच्चारण चल रहे हैं, भक्तों की आवाजाही चल रही है।
11: दुर्गा पूजा के लिए शहर शहर भव्य पंडाल तैयार हो चुके हैं और उनमें मां दुर्गा विराजमान हो चुकी हैं। माता की आराधना के लिए बड़ी संख्या में लोग भव्य पंडालों में पहुंच रहे हैं। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है, और वो है भव्य दिव्य पंडालों में विराजमान माँ अम्बे। जी हाँ, आपको बता दें कि भव्य और दिव्य पंडालों में रंग बिरंगी रोशनियों से माँ दुर्गा का दरबार सजाया हुआ है। चारों तरफ माँ अम्बे की आराधना हो रही है और जय माता दी के नारों के साथ पूरा इलाका गूंज रहा है।

0: शहर शहर भव्य पंडाल तैयार हो चुके हैं और उनमें माँ दुर्गा विराजमान हो चुकी हैं। चारों तरफ माँ अम्बे की आराधना हो रही है और जय माता दी के नारों के साथ पूरा इलाका गुंजायमान है। देश के अलग अलग हिस्सों में विशाल पंडालों में माँ अम्बे पधार चुकी हैं और वहाँ बड़ी संख्या में लोग माता का आशीर्वाद लेने के लिए पहुँच रहे हैं। हर पंडाल की अलग थीम है और हर पंडाल का अलग नजारा। इन पंडालों की साज सज्जा ऐसी है कि नजरें ठहर जाए और कलाकारी ऐसी कि देखने वाला बस देखता ही रह जाए। पश्चिम बंगाल में एक से बढ़कर एक पंडाल तैयार किए गए हैं। दुर्गापुर के विधान नगर स्थित क्लब सेंटोस ने अपने दुर्गा पूजा की थीम मुक्ति का संदेश देने वाली अवधारणा निर्वाण को बनाया है। 56वें वर्ष में प्रवेश कर रही इस पूजा में अलग अलग कला माध्यमों के जरिए निर्वाण को दर्शाया गया है। इस थीम को जीवंत रूप देने के लिए पूजा पंडाल में लोहे के स्ट्रक्चर और फाइबर का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही लाइव परफॉर्मेंस, मुखौटा अभिनय और प्रोजेक्टर के जरिए शैडो वर्क को भी शामिल किया गया है। आयोजकों को उम्मीद है कि तृतीया से ही दुर्गापुर शहर और आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में लोग पंडाल देखने पहुंचेंगे। मिनी बंगाल के नाम से मशहूर दिल्ली के चितरंजन पार्क में भी दुर्गा पूजा के लिए भव्य पंडाल का निर्माण किया गया है। यहाँ के मेला ग्राउंड में चितरंजन पार्क का सबसे बड़ा पंडाल बनाया गया है।
1: अभी हम दिल्ली के सबसे बड़े पूजा पंडाल मेला ग्राउंड में मौजूद हैं, जहाँ पर तमाम तैयारियां अब अंतिम दौर में हैं। फिनिशिंग का कार्य किया जा रहा है। माँ की प्रतिमा यहाँ स्थापित कर दी गई है, जिसको अंतिम फिनिशिंग देने का कार्य किया जा रहा है। बता दें, चितरंजन पार्क के जितने भी पूजा पंडाल बनाए जाते हैं, उसमें सबसे बड़ा पंडाल जो है मेला ग्राउंड में बनाया जाता है। और यहाँ बीते 50 सालों से पूजा हो रही है और इस साल यहाँ पर 51 साल पूजा के हो रहे हैं और 91 साल को बड़े ही धूमधाम से यहाँ पर मनाया जा रहा है, जिसको लेकर के व्यापक तैयारियां की गई है।
0: यहाँ हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं और नवरात्र उत्सव में शामिल होते हैं। यहाँ पंचमी यानी कल से माता के दर्शन और पूजन किए जा सकेंगे। इस वर्ष मेला ग्राउंड की पूजा को 51 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर खास तैयारी की जा रही है। जमशेदपुर में भी भव्य पूजा का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ दुर्गा पूजा को लेकर गजब का उत्साह देखा जा रहा है। विष्णुपुर में विश्वजीत मेला पूजा पंडाल को भव्य रूप से सजाया गया है। इस पूजा पंडाल में भगवान विष्णु के सब अवतारों को दर्शाया गया है। यहाँ लोग बड़ी संख्या में माता के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं
2: और इसका फुटफॉल है पर डे 1,00,000। और मैं उद्देश्य है ये फोम से हम बताए डिजाइन जो है फोम, और यहाँ लंगर का 10,000 का डेली, 10,000 का आदमी खाना ये करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। आज 600 आदमी डेली सीनियर सिटीजन को बैठे के खिलाता है हम लोग।
0: दुर्गा पूजा के अवसर पर इस बार मध्य हावड़ा स्थित सहायत्री क्लब ने अपने 76वें वर्ष में केदारनाथ धाम की थीम पर भव्य पूजा मंडप तैयार किया है। केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर बनाए गए इस मंडप को देखने के लिए श्रद्धालुओं और दर्शकों की भीड़ उमड़ रही है। इस खास पंडाल के माध्यम से उन लोगों को बाबा केदारनाथ के दर्शन का अनुभव कराने की कोशिश की जा रही है, जो किसी वजह से उत्तराखंड स्थित केदारनाथ धाम की यात्रा नहीं कर पाते हैं। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में भी दुर्गा पूजा की रौनक देखने को मिल रही है। पुरुलिया शहर की चर्चित नडीहा बारुयारी दुर्गा पूजा कमेटी खास आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। पूजा कमेटी इस वर्ष अपनी स्थापना के 100 साल पूरे होने का जश्न मना रही है। शताब्दी वर्ष के मौके पर नडीहा बारुयारी का स्थायी दुर्गा मंडप इस बार टेराकोटा कला की शैली में सजाया गया है। पंडाल की सजावट में बंगाल की पारंपरिक कला और स्थानीय सांस्कृतिक शैली की झलक देखने को मिल रही है। दिल्ली से आशुतोष कुमार, पुरुलिया से अनिल गिरी के साथ जमशेदपुर से नीरज तिवारी, गुड न्यूज टुडे।
3: और इस दुर्गा पूजा पर सिलीगुड़ी में सोने की थीम वाला एक पंडाल बनाया गया है। खास बात यह है कि इस पंडाल में विराजमान देवी दुर्गा को सोने के गहनों से सजाया गया है। सोने से सजा माँ दुर्गा का दरबार देखने में बहुत ही दिव्य और भव्य लग रहा है। इसकी रौनक देखते ही बन रही है। वैसे तो बंगाल में अलग अलग थीम पर हजारों दुर्गा पूजा पंडाल बनाए जाते हैं, लेकिन सोने की थीम पर सजा ये पंडाल लोगों के बीच खास आकर्षण का केंद्र बना है। सोने की थीम पर और सोने के गहनों से सजी माँ दुर्गा को जिस किसी ने भी देखा वो बस देखता ही रह गया। और नवरात्र उत्सव का एक रंग गरबा है, जिसके इतने रूप हैं कि हर रूप अपने आप में अनूठा है। कहीं पारंपरिक गरबा की लय है तो कहीं डांडिया की खनक है, कहीं लोक संस्कृति की झलक है तो कहीं आधुनिकता का नया अंदाज है। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है आस्था परंपरा और उत्साह से सराबोर गरबा। जी हाँ, आपको बता दें कि वक्त के साथ गरबा के रंग और अंदाज भले ही बदल रहे हों लेकिन इसकी आत्मा आज भी वही है। माँ की आराधना, आस्था की अभिव्यक्ति और भक्तों में सराबोर होकर झूमने का उल्लास, और यही वजह है कि गरबा गुजरात की सीमाओं को पार कर पूरे देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुका है।
0: शहर शहर गरबा के अद्भुत रंग, कहीं तलवार से कहीं अंगार से माँ दुर्गा की आराधना की जा रही है, तो कहीं एक से बढ़कर एक पारंपरिक परिधान में कलाकार रंग जमा रहे हैं। आस्था और भक्ति के उल्लास की सबसे भव्य तस्वीर गुजरात के जामनगर में देखने के लिए मिली। ये वो जगह है जो पारंपरिक रास और गरबा के लिए जानी जाती है, और अब इस शहर के कड़ियावाड़ गरबा चौक में ऐसा गरबा खेला गया है कि हर तरफ इसी की चर्चा है। श्री रांदल अंबिका गरबा मंडल पिछले 51 वर्षों से नवरात्रि महोत्सव का आयोजन कर रहा है, लेकिन इस आयोजन का सबसे खास आकर्षण है यहाँ का अनूठा स्वास्तिक रास, जिसमें पारंपरिक नृत्य की लय और स्वस्तिक की पवित्र आकृति का अद्भुत संगम देखने को मिला। आस्था परंपरा और उत्साह से सराबोर ये आयोजन जामनगर के सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के साथ नवरात्रि के रंगों को और भी खास बना रहा है।
4: मैं यहाँ से 7 साल से रहा हूँ, यहाँ रांदल अंबिका गरबी मंडल में स्वस्तिक रास हो रहा है और यहाँ पे 20 लोग हो रहे और इसमें 5-5 जने हो सकते, और स्वस्तिक रास में हम महीनों दिन से प्रैक्टिस करते हैं स्वस्तिक रास में हम सब।
5: ये आकर्षण रहता है, पूरे गुजरात से लोग आते हैं,
4: पूरे गुजरात से देखने आते सब लोग, और यहाँ पे 700 जने देखने आते स्वस्तिक रास को।
0: प्राचीन गरबा की ऐसी ही अनोखी तस्वीर राजकोट में देखने के लिए मिली, जहाँ बजरंग गरबा मंडल ने प्राचीन गरबा का आयोजन किया, जिसमें दोनों हाथों में मशाल और सिर पर आग में लिपटा हुआ गरबा लेकर महिलाओं ने नवरात्र में माता जी की आराधना की। ये रास तीसरे, छठे और नौवे नवरात्रि के दिन आयोजित किया जाता है, जिसे देखने हजारों लोग उमड़ते हैं। पिछले 19 वर्षों से बजरंग गरबी मंडल में जलते गरबा का रास आयोजित होता आ रहा है। राजकोट में गरबा का ऐसा ही दिलचस्प नजारा एक और देखने को मिला। यहाँ गरबा के मैदान में इंसानों के साथ एक रोबोट भी थिरकता नजर आया। राजकोट के कड़वा पाटीदार समाज की ओर से आयोजित क्लब यूवी नवरात्रि महोत्सव में पृथ्वी नाम के रोबोट ने गरबा खेलने पहुंचे प्रतिभागियों के साथ कदम से कदम और ताल से ताल मिलाई। तीसरे नवरात्रि यानी मंगलवार की रात रोबोट को पारंपरिक गरबा की धुन पर थिरकते देख लोग भी उत्साहित नजर आए। आस्था परंपरा और आधुनिक तकनीक का यह अनूठा मेल लोगों को खूब लुभा रहा है, यानी गुजरात में आधुनिकता और प्राचीन गरबा रास का संगम देखने के लिए मिल रहा है। आधुनिक तस्वीर के बाद अब आपको एक प्राचीन गरबे की तस्वीर दिखाते हैं। गुजरात के नवसारी जिले के गढ़देवी शहर में भी गरबा का एक खास रंग देखने को मिल रहा है। यहाँ कुंभारवाड़ इलाके में हनुमान जी मंदिर के प्रांगण में 120 साल पुरानी परंपरा को आज भी पूरे उत्साह के साथ निभाया जा रहा है। इस परंपरा का नाम है डोरी रास, जिसमें युवा डोरियों के साथ पारंपरिक अंदाज में रास खेलते हैं। खास बात यह है कि आज की जेंसी पीढ़ी भी इस विरासत से जुड़कर अपनी सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत कर रही है। डोरियों की लय, कदमों का तालमेल और परंपरा के प्रति युवाओं का उत्साह बता रहा है कि आधुनिक दौर में भी हमारी सांस्कृतिक धरोहर की चमक बरकरार है। सूरत में इस विशाल पंडाल में गरबा का ये भव्य आयोजन हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ढोल नगाड़ों की थाप पर हजारों लोग माँ की आराधना में झूम रहे हैं। महिलाएं खूबसूरत चनिया चोली में सज रही है, तो वहीं पुरुष भी पारंपरिक केडियू जो एक खास तरह का प्रिंटेड या कढ़ाई वाला कुर्ता होता है उसके साथ धोती पहने खूब फब रहे हैं।
6: जगन्नाथपुरी का फेस बनाया है और पगड़ी पहनी है। मैं 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ। मैं तो बोलना चाह रहा हूँ कि आप सब भी आओ और यशवी फैमिली के साथ सब मजा करो।
0: गुजरात की गरबा की यही खासियत है कि पंजाब हो या यूपी, देश का कोई भी कोना हो, गरबा की धुन बजते ही हर कोई इसके रंग में रंग जाता है, कदम खुद ब खुद थिरकने लगते हैं। राजकोट से रौनक मजीठिया, जामनगर से दर्शन ठक्कर और नवसारी से रौनक जानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और जब मंच पर रामायण के किरदार जीवंत होते हैं तो कहानी सिर्फ देखी नहीं जाती बल्कि महसूस भी की जाती है। भगवान राम का आदर्श, सीता का धैर्य और रावण का अहंकार हर किरदार अपने भीतर एक सीख समेटे हुए है। दिल्ली के ब्रॉडवे रामलीला में इसी कथा को नए अंदाज में पेश किया जा रहा है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है 3D डिजाइन के साथ भव्य रामलीला। जी हाँ, दिल्ली के ब्रॉडवे रामलीला में इस साल 100 से ज्यादा कलाकारों की अदाकारी के साथ 3D विजुअल इफेक्ट्स दर्शकों को रामायण के प्रसंगों के करीब ले जाएंगे। परंपरा और आधुनिक तकनीक का ये संगम रामलीला को एक नया अनुभव देने जा रहा है।
7: मंच सजा, किरदार उतरे और रामायण के प्रसंग आंखों के सामने जीवंत हो उठे। दिल्ली की ब्रॉडवे रामलीला में इस बार कहानी कहने का अंदाज बेहद खास है।
8: मैं यथा समय पृथ्वी का सारा भार हर लूंगा।
7: 100 से ज्यादा कलाकार, भव्य मंच और 3D इफेक्ट्स।
8: राम है और ये इनके छोटे भाई लक्ष्मण।
7: इन सब ने मिलकर रामायण के प्रसंगों को जीवंत कर दिया। ऐसा लगा मानो कथा मंच पर नहीं आंखों के सामने घट रही हो।
9: ब्रॉडवे रामलीला की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर पारंपरिक तरीके के साथ साथ आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भरपूर दिखाई पड़ेगा। 3000 स्क्वायर फीट में यहाँ पर LED लगाई गई हैं। ये सारी 3D LED हैं और ऐसा 3D माहौल तैयार होता है जैसे आप किसी 3D सिनेमा में महसूस करते हैं।
7: सीता स्वयंवर का प्रसंग हो और जनकपुर की छटा न दिखे, ऐसा कैसे हो सकता है?
8: राजा दशरथ कौशल्या के अंगना में आए।
7: यहाँ LED स्क्रीन पर जनकपुर की खूबसूरत झलक दिखाई गई।
8: नहीं
7: कथा आगे बढ़ती है तो मंच पर लगे LED स्क्रीन के नज़ारे भी बदल

0: जहां से आगे की कथा एक नया मोड़ लेती है। इस तकनीक को नई पीढ़ी खासकर जेंजी को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने की एक पहल के तौर पर देखा जा रहा है।
1: हमने ये विचार बनाया कि वे एक दिन में ही सारी लीला हो, ताकि कंप्यूटराइज जमाना आ रहा है, इसमें ये हो सके कि एक ही दिन में हम पूरा राम जन्म से राज्याभिषेक तक एक ही दिन में करें, ताकि बच्चे देखें और उसको समझें भी, क्योंकि सीता स्वयंवर भी उसी दिन है, वनवास भी उसी दिन है और राज्याभिषेक भी उसी दिन है, सब चीज़ें उसमें होती है, तो बच्चों को समझ में आ जाता है कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहलाए।
0: रामलीला के हर किरदार को जीवंत बनाने के लिए कलाकार खूब मेहनत कर रहे हैं। इस रामलीला में कई नामी कलाकार अपने अभिनय से किरदारों को जीवंत कर रहे हैं। श्री राम की मर्यादा, माता सीता का धैर्य और रामायण के हर प्रसंग में छिपी जीवन की सीख, यही वो धारा है जो पीढ़ियों से आगे बढ़ती आई है। ब्रॉडवे रामलीला की ये कोशिश इसी विरासत को नए अंदाज में आज की पीढ़ी तक पहुंचाने की है। मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: रामनगरी अयोध्या में इस बार भव्य और आकर्षक तरीके से दीपोत्सव मनाया जाएगा। इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस बार राम की पैड़ी पर 30 लाख दीप जलाकर नया कीर्तिमान स्थापित करने की तैयारी है। दीपोत्सव का ये नजारा देश दुनिया के पर्यटकों और श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगा। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो पांचवी गुड न्यूज है वो है 30 लाख दीयों से रोशन होंगे सरयू के घाट। जी हाँ, आपको बता दें कि इस बार दीपोत्सव पर दीपों की रोशनी से सरयू तट से लेकर शहर के प्रमुख स्थलों तक राममय वातावरण नजर आएगा। इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस बार राम की पैड़ी पर 30 लाख दीप जलाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा और इस कीर्तिमान को बनाने के लिए 35,000 वॉलंटियर तैयार है। वहां पर दीपोत्सव में दीप प्रज्वलन की व्यवस्था की जिम्मेदारी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय को सौंपी गई है। दीपोत्सव को सफल बनाने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने महाविद्यालयों, इंटर कॉलेजों और स्वयंसेवी संस्थाओं को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की है। इनके सहयोग से करीब 35,000 स्वयंसेवकों को तैयार किया जाएगा। ये स्वयंसेवक दीपोत्सव की तैयारियों से लेकर दीप प्रज्वलन तक की जिम्मेदारी निभाएंगे। दीपोत्सव की तैयारियों के तहत जल्द ही राम की पैड़ी के साथ घाटों पर मार्किंग का कार्य भी शुरू किया जाएगा। देश में पहली बार ग्लेशियर झील पर स्वदेशी अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किया गया है। सीबीआरआई रुड़की के वैज्ञानिकों ने विषम परिस्थितियों में इस सिस्टम को स्थापित करके इतिहास रच दिया। इससे किसी भी संभावित आपदा की जानकारी 2 घंटे पहले मिल सकेगी। 8 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले सिस्टम को महज 61 लाख रुपए में ही तैयार किया गया है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो है ग्लेशियर झील फटने की 2 घंटे पहले चेतावनी। जी हाँ, आपको बता दें कि देश में पहली बार किसी ग्लेशियर झील पर स्वदेशी तकनीक से विकसित ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट क्लाउड यानी कि GLOF अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किया गया है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की के वैज्ञानिकों ने अत्यधिक ऊंचाई, बर्फबारी, तेज हवाओं और प्रतिकूल मौसम की चुनौतियों के बीच इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल किया। इस सिस्टम की मदद से ग्लेशियर झील से अचानक पानी निकलने और उससे संभावित बाढ़ जैसी आपदा की चेतावनी लगभग 2 घंटे पहले मिल सकेगी। इससे समय रहते लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और जानमाल के नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी। इस परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता इसकी स्वदेशी तकनीक और कम लागत है। जिस उपकरण की लागत करीब 8 करोड़ रुपए आंकी गई थी उसे सीबीआरआई के वैज्ञानिकों ने महज 61 लाख रुपए में विकसित कर स्थापित किया।
3: देश के वैज्ञानिकों ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ये न सिर्फ देश के लिए बड़ी उपलब्धि है बल्कि हिमालयन जियोलॉजी के क्षेत्र में एक बड़ा कीर्तिमान भी स्थापित किया है। सीएसआईआर, सीबीआरआई, इसके साथ साथ वाडी इंस्टीट्यूट और उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने साथ मिलकर एक अर्ली वार्निंग सिस्टम स्टैब्लिश किया है चमोली के वसुंधरा ताल में। 16,000 फीट की ऊंचाई पर ये ताल स्थित है और जैसा कि आपको मालूम है कि उत्तराखंड में 13 ऐसे ग्लेशियर झीलें हैं जो कि संवेदनशील बनी हुई है। इनमें सबसे जो खतरनाक झीलों में से एक है वसुंधरा ताल, जिसमें करीब 38 मीटर गहरी ये झील है और करीब 1 किलोमीटर की इसने लंबाई पकड़ी हुई है। इसमें एक ऐसा सेंसर लगाया जो 2 घंटे पहले किसी भी ग्लेशियर आउटबर्स्ट को लेकर इंफॉर्मेशन नीचे भेज सकता है, जिसमें जानमाल को होने वाले नुकसान से भी बचाया जा सकता है।
2: जम्मू कश्मीर की खूबसूरत पर्यटन नगरी गुलमर्ग और गुरेज में बर्बाद।

0: बारी के बाद एक अलग ही नजारा है। हर तरफ हरी भरी पहाड़ियां और सफेद बर्फ की चादर आपको देखने को मिलेंगे गुलमर्ग के ऊंचाई वाले इलाकों जिसमें कि बूटा पथरी भी शामिल है। वहां ताजा बर्फबारी हुई है जिसके बाद पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो सातवीं और आखिरी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। अक्टूबर में ही बर्फ से ढकी कश्मीर की पहाड़ियां। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तरी कश्मीर की वादियों में बर्फ की नई परत जमने से यहाँ का नजारा बेहद खूबसूरत हो गया है। खासतौर पर बूटा पथरी में बर्फबारी के बाद पहाड़ों और आसपास के इलाकों ने सफेद चादर ओढ़ ली है।
1: जहाँ तक नजर जाएगी केवल और केवल बर्फ ही दिखेगी। पहाड़ हो या फिर पेड़, गाड़ी या फिर घर, सभी पर बर्फ की सफेद चादर ढक गई है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले के गुरेज घाटी की है। गुरेज के तुलैल में सीजन की पहली बर्फबारी हुई, पूरी वादी का नजारा ही बदल गया है। रात भर ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी होती रही और सुबह होते ही तुलैल घाटी बर्फ की सफेद चादर में लिपटी नजर आई। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक बर्फ की सफेद परत ने कुदरत की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं। दूर दूर तक फैली बर्फ और उसके बीच नजर आते घर, ऐसा लग रहा है मानो कुदरत ने अपने हाथों से घाटी की नई तस्वीर उकेर दी हो। कश्मीर के ज्यादातर ऊंचाई वाले इलाके बर्फ से लथपथ हैं। सोनमर्ग की पहाड़ियों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ी हुई है। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश ने घाटी में सर्दियों का एहसास तेज कर दिया है। कुदरत के इस बदलते मिजाज के बीच कहीं बारिश की बूंदे मौसम को ठंडा कर रही हैं, तो कहीं बर्फ से ढकी पहाड़ियां मनमोहक नजारा पेश कर रही हैं।
2: पहाड़ी इलाकों में खासतौर से गुलमर्ग और गुरेज में तापमान शून्य के आसपास ही रिकॉर्ड किया गया, वो भी रात के बीच में। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल आने वाले 48 घंटे तक पहाड़ों पर और हल्की बर्फबारी हो सकती है, जिससे अब पूरी तरह से कश्मीर में ठंड की शुरुआत हो जाएगी।
1: हालांकि किसानों के लिए ये राहत की खबर है। वैसे कश्मीर की वादियों में बर्फबारी तो रंग जमा ही रही है, साथ ही श्रीनगर में जश्न डल ने भी पर्यटकों का दिल जीता हुआ है। डल लेक में झील की खूबसूरती, कश्मीर की समृद्ध संस्कृति और यहाँ की परंपराओं का संगम देखने के लिए मिल रहा है। जश्न डल के जरिए पर्यटकों को कश्मीर की सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत को करीब से महसूस करने का मौका दिया जा रहा है। डल झील की दिलकश वादियों के बीच इस उत्सव ने लोगों का दिल जीत लिया है। वैसे डल झील के नजारे के अलावा यहां पर्यटकों के लिए वाटर स्पोर्ट्स का भी आयोजन किया गया है।
3: इसमें हमें बहुत ज़्यादा मतलब स्कोप बहुत ज़्यादा है। कायाकिंग, कैनोइंग है, डैम बोट है, स्विमिंग है, ड्रैगन बोट है, एंड मैं पर्सनली ड्रैगन बोट खेल रही हूँ एंड मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है ड्रैगन बोट में, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमारा जश्न डल था एंड अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने फर्स्ट पोजिशन लाई थी उसमें।
1: जाहिर है घाटी की खूबसूरत वादियाँ सैलानियों को अपनी ओर बुला रही हैं। कहीं बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन रही हैं, तो कहीं डल झील में वाटर स्पोर्ट्स का रोमांच सैलानियों को लुभा रहा है। कुदरत की खूबसूरती और रोमांच का ये संगम स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी लेकर आ रहा है। यानी घाटी की वादियों में बिखरी खूबसूरती सिर्फ सुकून ही नहीं देती बल्कि उम्मीद और रोजगार के नए रास्ते भी खोलती है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: स्टेशन के सामने लोगों का हुजूम उमड़ा। प्रदर्शन से दिल्ली बेहाल, रेलवे स्टेशन का ऐसा हाल। दिल्ली में भरभरा कर गिरी बहुमंजिला इमारत। वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए वैभव शुक्ला के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9:00।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
9: त्योहारी सीजन में रेलवे के कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, केंद्र ने प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस का किया ऐलान, 78 दिन के वेतन के बराबर मिलेगा पैसा। दिल्ली के द्वारका में तैयार हो रहा सबसे ऊंचा 221 फीट ऊंचा रावण, 25 फीट ऊंचा मुकुट, 7 टन लोहे का हुआ इस्तेमाल, 120 कारीगरों ने किया तैयार। देश भर में बन रहे हैं मां के एक से बढ़कर एक पंडाल, रांची में द्वारका नगरी की थीम पर हूबहू बना पंडाल, तो रोहतास में मां वैष्णो देवी की गुफा की तर्ज पर सजा पंडाल। नवरात्र में अमरावती के प्राचीन अंबिका माता मंदिर में रोज हो रहे मनोकामना के हजारों अखंड दीप, अद्भुत लग रहा है पूरा मंदिर परिसर। हरिद्वार स्थित जूना अखाड़े से आरंभ हुई दशमी छड़ी यात्रा चारधाम और उत्तराखंड के प्रमुख तीर्थ स्थलों से होकर वापस हरिद्वार के माया देवी मंदिर में की जाती है प्रतिष्ठित।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
9: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राव शुक्ला। देखिए सोशल मीडिया की इस दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैल जाते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंग कर पेश किया जाता है, और लोग बिना जांचे पर इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टेलीविजन की स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर और वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जिसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। नतीजा ये होता है कि लोग बिना जांचे समझे परखे सच मान लेते हैं, शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम करते हैं बेनकाब। तो आज की खबरों पर नजर डालते हैं फैक्ट चेक में। आज सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसमें दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो दिल्ली का है, जहां प्रदर्शन के कारण रेलवे स्टेशन के बाहर भीषण जाम लग गया और कई यात्रियों की ट्रेनें छूट तक गईं। क्या है वायरल दावे की सच्चाई आगे आपको बताएंगे। हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो की जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि 7 अक्टूबर को दिल्ली के सीमापुरी में इमारत गिरने की घटना का ये वीडियो है। क्या है वायरल वीडियो और दावे की सच्चाई आगे आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला।
9: सबसे पहले हम उस खबर की पड़ताल करने जा रहे हैं जिसके जरिए यह दावा किया जा रहा है कि प्रदर्शन की वजह से दिल्ली बेहाल हो गई। विरोध प्रदर्शन के कारण रेलवे स्टेशन के बाहर भीषण जाम लग गया। यह खबर हमारे सामने आई, हमने इसकी पड़ताल की। देखिए,

0: एसआईआर को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार विपक्षी पार्टियों के निशाने पर है। कांग्रेस जनता पार्टी भी इस मुद्दे के जरिए ज्ञानेश कुमार को घेर रही है। दिल्ली में 10 और 11 अक्टूबर को कांग्रेस जनता पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सैकड़ों ट्रेन और मेट्रो स्टेशनों को बंद रखा गया था। अब इसी प्रदर्शन के नाम पर ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो को दिल्ली रेलवे स्टेशन का बताकर दावा किया जा रहा है कि प्रदर्शन के कारण स्टेशन के बाहर भीषण जाम लग गया और कई यात्रियों की ट्रेनें छूट गईं। वीडियो में किसी सड़क पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल दिख रहा है। एक सोशल मीडिया यूजर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि हिंदुस्तान का युवा आर पार के मूड में है। वीडियो लगातार शेयर किया जा रहा है। कई लोग इसके जरिए हिंदुस्तान के युवाओं की ताकत को कम नहीं आंकने की नसीहत भी दे रहे हैं।
1: बता दें, विपक्षी पार्टियां मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर लगातार निशाना साध रही हैं। उनके खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन हो रहे हैं। ये प्रदर्शन एक अखबार के उस मीडिया रिपोर्ट के बाद से शुरू हो गई थी, जिसमें बताया ये गया था कि दो चुनाव आयुक्तों ने पिछले 10 महीनों में एसआईआर सहित चुनाव आयोग के दूसरे फैसले को लेकर कम से कम 14 बार लिखित आपत्ति दर्ज की। हालांकि चुनाव आयोग ने अपनी सफाई में यह साफ कह दिया था कि एसआईआर से जुड़े सभी बड़े फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे। इसके बावजूद कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियों के सवाल खत्म नहीं हुए। विपक्षी पार्टियां और कॉकरोच पार्टी इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतर आई। इन सबके बीच अब ये वीडियो निकलकर सामने आ रहा है, जिसमें किसी स्टेशन के बाहर लोगों का हुजूम आपको नजर आएगा। दावा यह किया जा रहा है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन का ये वीडियो है, जहां पर प्रदर्शन के कारण स्टेशन के बाहर भीषण जाम लग चुका है। हमने इस वीडियो की जांच की और देखिए, वीडियो के तहकीकात के दौरान हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में किसी रेलवे स्टेशन के बाहर भारी भीड़ उमड़ी थी, लेकिन लगातार खोजबीन भी इससे संबंधित कोई विश्वसनीय रिपोर्ट हमको हासिल नहीं हुई। हाँ, ये जरूर हुआ था कि कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान भारी ट्रैफिक जैम और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 10 अक्टूबर को नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाली कुछ विशेष और कई मेल एक्सप्रेस ट्रेन एहतियातन तौर पर रद्द या डाइवर्ट कर दी गई थी। इसके बाद फैक्ट चेक की टीम ने वीडियो को देखा और उसके हर की फ्रेम को गौर से देखा। वीडियो में जो स्टेशन का लुक नजर आया, दिल्ली में इस तरह का देखने वाला कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है। ऐसे में हमें वीडियो पर शक हुआ। वीडियो में एक गौर करने वाली बात यह भी थी कि स्टेशन के बाहर भारी भीड़ जमा है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था नदारद नजर आई। ऐसे में हमारा पहला सवाल जाहिर तौर पर यही उठता है कि यहां भीड़ को संभालने के लिए पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था क्यों दिख रही है। वीडियो में हमें पीले कलर की टैक्सी नजर आई। पीली टैक्सी दिल्ली में नहीं, आमतौर पर कोलकाता में चलती है। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल यह उठता है कि क्या पश्चिम बंगाल की वीडियो को दिल्ली के प्रदर्शन से जोड़कर वायरल किया जा रहा है। हमारा तीसरा सवाल यह होगा कि इसमें सिर्फ बांग्ला आवाजें ही हमको सुनाई क्यों दे रही है। क्या कुछ सच निकलकर सामने आया? पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।

0: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो पुरानी तारीख में कई जगह अपलोड किया हुआ मिला। एक इंस्टाग्राम हैंडल ने 24 जुलाई 2026 को इस वीडियो को कोलकाता स्टूडेंट प्रोटेस्ट का बताकर शेयर किया था। इस मिली जानकारी के आधार पर हमने अपने पड़ताल को आगे बढ़ाया। लगातार खोजबीन करने के बाद हमें यही वीडियो एक फेसबुक पेज पर भी मिला। इसके साथ कैप्शन में लिखा था, कोलकाता सहित देश के कई हिस्सों में छात्रों का आंदोलन जारी। कोलकाता की सड़कों पर छात्रों का भारी हुजूम देखने को मिला। मतलब ये प्रदर्शन नीट पेपर लीक को लेकर किया गया था। जांच को आगे बढ़ाते हुए हमने सियालदह रेलवे स्टेशन के बारे में सर्च करना शुरू किया। हमें YouTube पर एक वीडियो मिला, इसमें सियालदह रेलवे स्टेशन के बाहर का हिस्सा नजर आया। इस वीडियो और दिल्ली रेलवे स्टेशन के नाम पर वायरल हो रहे वीडियो में कई समानताएं नजर आई। ध्यान से देखने पर दोनों वीडियो में हमें स्टेशन के बाहर एक कैनोपी नजर आई। इसके अलावा स्टेशन पर हमें अंग्रेजी बाजार लिखा हुआ नजर आया। सर्च के दौरान ही हमें PIB फैक्ट चेक का पोस्ट भी मिला, जिसमें साफ किया गया था कि वीडियो को लेकर झूठी कहानी परोसी जा रही है। ये वीडियो नई दिल्ली का नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के सियालदह रेलवे स्टेशन का है। बिना जांचे इस तरह के पोस्ट को शेयर कभी ना करें। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। वायरल वीडियो दिल्ली का नहीं बल्कि कोलकाता के सियालदह रेलवे स्टेशन का है। जुलाई 2026 में यहाँ छात्रों का एक प्रदर्शन हुआ था। उसी वक्त के पुराने वीडियो को अब दिल्ली के प्रदर्शन के नाम पर वायरल करके झूठ फैलाया गया है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: बात करते हैं दूसरी खबर की। इस जरिए दावा यह किया जा रहा है कि दिल्ली के सीमापुरी में चंद सेकंड्स में एक बहुमंजिला इमारत को भरभराकर यह गिर गई। हमने इस खबर की पड़ताल की, क्या निकलकर सामने आया, रिपोर्ट देखिए।
2: दिल्ली के न्यू सीमापुरी इलाके में 7 अक्टूबर की दोपहर करीब 3:30 बजे एक 4 मंजिला रिहायशी इमारत अचानक भरभराकर गिर गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अब इसी हादसे से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर ये CCTV फुटेज कुछ तेजी से वायरल किया जा रहा है, जिसमें एक इमारत को भरभराकर गिरते हुए देखा जा रहा है, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। एक इंस्टाग्राम यूजर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि दिल्ली के सीमापुरी में भरभराकर गिरी बहुमंजिला इमारत, CCTV जैसे वीडियो में हादसे का खौफनाक मंजर सामने आया। वीडियो का सच और झूठ जाने बगैर लोग इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
1: बता दें, दिल्ली के सीमापुरी में एक बड़ा हादसा हो गया था। एक 4 मंजिला इमारत गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई थी। इसी हादसे से जोड़ते हुए ये CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। ये वीडियो इस वक्त खूब चर्चा में बना हुआ है। हमारे सामने भी वीडियो आया, हमने इस वीडियो की जांच भी की और देखिए वीडियो का सच और झूठ जानने के लिए हमने सबसे पहले वीडियो को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कुछ ऐसी गलतियां देखने को मिल गई जिससे हमें दावे पर शक हुआ। और इसमें अगर आप देखेंगे तो चल रहे टाइमर में 15:27:16 के बाद 15:27:12 आता है और फिर 15:27:18 आ जाता है। ये कैसे संभव हो सकता है? वीडियो का टाइम मैच नहीं हुआ। अमूमन ऐसा असली वीडियो में देखने को नहीं मिलता। और देखिए वीडियो में एक और बात गौर करने वाली बात यह है कि इमारत गिरते समय आगे की ओर आता हुआ बाइक सवार पीछे की ओर जाने लग जाता है अचानक से। ऐसे में हमारा सवाल ये उठता है कि जान बचाने के लिए शख्स अपने दाएं या फिर तेजी से सीधा क्यों नहीं भागा? वीडियो में कई चीजें स्थिर देखने को मिल रही हैं, असली वीडियो में मोशन यानी गति देखने को मिलती है। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल जाहिर तौर पर यही उठता है कि क्या जानबूझकर एडिटेड मॉफ्ट वीडियो को वायरल तो नहीं किया जा रहा? क्या कुछ सच निकलकर सामने आया? पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
2: वीडियो को हमने भी देखा, सच झूठ जानने के लिए इसकी पड़ताल की। सबसे पहले हमने ये जानने की कोशिश की क्या वायरल हो रहा वीडियो वाकई में दिल्ली के सीमापुरी में हुए हादसे का है। 7 अक्टूबर को हमने सीमापुरी घटना के ओरिजिनल वीडियो और तस्वीरों को निकाला, उससे हमने वायरल वीडियो का मिलान किया तो इससे ये साफ हो गया कि वायरल वीडियो का उस घटना से कोई संबंध नहीं है। इसके बाद हमने वीडियो को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कई खामियां देखने को मिली जिससे हमें वीडियो के दावे पर शक हुआ, लिहाजा हमने वीडियो को AI डिटेक्शन टूल से चेक किया। हमने वीडियो के की फ्रेम्स को सिंथ ID से चेक किया। इसके एनालिसिस के अनुसार ये एआई से बनाए गए हैं। एनवीआई डीआईए सिंथेटिक वीडियो डिटेक्टर पर इस वीडियो को चेक करने का इसका सिंथेटिक स्कोर 52.4% आया। इस एनालिसिस के अनुसार वायरल वीडियो का सिंथेटिक स्कोर 30% से अधिक था, जिसका मतलब है कि सिंथेटिक या एआई जनरेटेड वीडियो है। इस तरह हमारी जांच में वायरल वीडियो एआई निर्मित निकला। हालांकि दिल्ली के सीमापुरी में एक इमारत गिरने से 5 लोगों की मौत हुई है, लेकिन वायरल हो रहा वीडियो असली नहीं है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फिलहाल लेना छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार वायरल वर्ल्ड की हलचल।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: वक्त तो चला फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। आप देखिए कुछ ऐसे वीडियोस जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
2: नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस दौरान पेरेंट्स भी अपने बच्चों खासकर बेटियों को माँ दुर्गा की तरह शौक से सजाते भी हैं। एक बच्ची माँ दुर्गा की तरह तैयार होकर जब अपने पिता को सरप्राइज देती है तो उनकी आंखें ठहरी की ठहरी रह जाती हैं। नन्ही सी बच्ची और पिता का ये प्रेम देखकर लोगों का दिल पिघल गया है। यूजर्स इस वीडियो पर जमकर अपना प्यार लुटा रहे हैं।

आजकल बच्चों की सुरक्षा हर माता पिता की सबसे बड़ी चिंता है। खासकर गुड टच और बैड टच जैसी बातें बच्चों को कैसे समझाएं ये समझना मुश्किल होता है, लेकिन हरियाणा के एक प्ले स्कूल ने इस मुश्किल काम को बहुत आसान और प्यारे तरीके से कर दिखाया है। यमुनानगर के एक प्ले स्कूल में एक टीचर बहुत ही आसानी और प्यार से एक छोटी बच्ची को गुड टच और बैड टच का फर्क समझा रही है। छोटे बच्चों को ऐसी बातें समझाना आसान नहीं होता, लेकिन टीचर ने इसे एक मजेदार गेम बना दिया। बच्ची को अच्छा स्पर्श और बुरा स्पर्श लिखे दो कार्ड दिए गए। फिर टीचर ने कागज से बने हाथों से बच्ची के सिर, गाल और हाथ को छूकर दिखाया। बच्ची ने हर बार सही कार्ड उठाकर बताया कि कौन सा स्पर्श सही है और कौन सा गलत। इस आसान तरीके ने सबका दिल जीत लिया है। इस स्कूल और टीचर की खूब तारीफ हो रही है। हर कोई कह रहा है कि देश के हर स्कूल में बच्चों के लिए ऐसे सेशन होने चाहिए ताकि बच्चे बिना डरे अपनी बात माता पिता को बता सकें।

होते चाहे कितने ही बड़े हो जाएं, दादी का प्यार कम नहीं होता। इस दिल छू लेने वाले नजारे को देखकर लोग इमोशनल हो रहे हैं। पोता बूढ़ी दादी से 100 रुपए मांगता है। दादी छोटा सा पुराना संदूक निकालती है। संदूक में छोटा सा ताला लगा हुआ था। ताला खुलने के बाद उसमें एक रुमाल नजर आता है। रुमाल में सिर्फ 100 रुपए ही थे। दादी पोते को वो 100 रुपए दे देती हैं। पोते को 100 रुपए देने के बाद दादी उससे पूछती हैं कि और पैसे चाहिए क्या। इस पर पोता इनकार कर देता है। दादी फिर कहती हैं कि और पैसे चाहिए हो तो ले ले। दादी का ये प्यार देखकर हर कोई भावुक हो गया।

नाना और नाती का रिश्ता भी बेहद खास होता है, जहाँ प्यार के साथ खूब लाड़ दुलार भी मिलता है। इस वीडियो में नाना और नाती के बीच ऐसा ही प्यारा पल देखने को मिल रहा है। नाती आराम से बिस्तर पर लेटा है और नाना बड़े प्यार से उसके हाथ पैर और पूरे शरीर को दबाते हुए उसकी सेवा कर रहे हैं। बच्चे की हर छोटी जरूरत का ध्यान रखते नाना का अंदाज दिल जीत लेता है। परिवार में बुजुर्गों और बच्चों के बीच ऐसा अपनापन रिश्तों की खूबसूरती को और बढ़ा देता है। नाना का ये दुलार देखकर चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।

इस हैरान कर देने वाले नजारे को देखकर लोग दंग हैं। रास्ता बेहद पथरीला, कच्चा और सीधी चढ़ाई वाला है, जहां आमतौर पर पैदल चलना भी मुश्किल हो सकता है। वहां एक ऑटो ड्राइवर अपने तीन पहियों के वाहन को बिना किसी झिझक के ऊपर चढ़ाता हुआ दिख रहा है। ऑटो का इंजन पूरी ताकत लगाते हुए गूंज रहा है और धूल, छोटे छोटे पत्थर उड़ते नजर आ रहे हैं। चालक की स्टीयरिंग पर पकड़ और संतुलन इतना बेहतरीन है कि ऑटो का संतुलन एक पल के लिए भी नहीं बिगड़ता। रास्ते के किनारे खड़े दर्जनों लोग इस कारनामे को देखकर हैरान रह जाते हैं और चालक का हौसला बढ़ाते हैं।

लड़की की आवाज़ और गाने का अंदाज लोगों को इतना पसंद आ रहा है कि लोग इसे जमकर शेयर कर रहे हैं। कुछ नया और अलग देखने या सुनने वाले लोग इस वीडियो पर जमकर अपना प्यार लुटा रहे हैं।

आमतौर पर गुल्लक इतनी छोटी होती है कि उसे आसानी से हाथों में उठाया जा सकता है या घर के किसी कोने में रखा जा सकता है, लेकिन कोलंबिया में बनी यह गुल्लक अपने विशालकाय आकार के कारण बिल्कुल अलग नजर आती है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी गुल्लक का रिकॉर्ड बनाने वाली इस कलाकृति की ऊंचाई 9 मीटर यानी करीब 29 फीट 6 इंच है। वहीं इसकी लंबाई 10.36 मीटर यानी लगभग 34 फीट।

जब जंगल का राजा और रानी सैर पर निकलते हैं तो नज़ारा देखने लायक होता है। न कोई शोर, न कोई जल्दबाजी, बस शाही अंदाज में कदम बढ़ाते दो खूबसूरत शेर। गुजरात के गिर नेशनल पार्क से ऐसा ही शानदार वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में एक नर और मादा एशियाई शेर जंगल के रास्ते पर पूरे रौब के साथ चलते दिखाई दे रहे हैं। इनकी चाल और आसपास का खूबसूरत नज़ारा देखकर ऐसा लगता है मानो जंगल भी इनके स्वागत में रास्ता छोड़ रहा हो।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
1: दुर्गा सप्तशती के अलग अलग अध्यायों का महत्व क्या है, दुर्गा सप्तशती के किस अध्याय से कौन सा मिलता है वरदान, दुर्गा सप्तशती के पाठ का क्या है विधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश ना रह जाए, बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ लाए, ऐसी अच्छी खबर सच्ची खबर के साथ मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। तो आपको बता दें कि जीवन में सुख और संपन्नता का आशीर्वाद मिलेगा। नवरात्रि के पांचवें दिन मां स्कंद माता को प्रसन्न करने की विधि जानिए। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 100 किलो सोने से सजा आदिशक्ति का दरबार, 56 साल की दुर्गा पूजा वाली पंडाल से निर्वाण का भी संदेश। कलयुग में त्रेता युग वाली अयोध्या, 7 नवंबर को 30 लाख दीपों से जगमगाएगी अवधपुरी। तमाम खबरें होंगी लेकिन पहले हेडलाइंस।
2: एवरेस्ट दिखाला, सही दिखा सही लाल।
1: नवरात्र में अमरावती के प्राचीन अंबिका माता मंदिर में रोज हो रहे मनोकामना के हजारों अखंड दीप, अद्भुत लग रहा पूरा मंदिर परिसर। देश भर में बन रहे मां के एक से बढ़कर एक पंडाल, रांची में द्वारका नगरी की थीम पर हूबहू बना पंडाल, तो रोहतास में मां वैष्णो देवी की गुफा की तर्ज पर सजा पंडाल।

दिल्ली के द्वारका में तैयार हो रहा सबसे ऊंचा 221 फीट का रावण, 25 फीट ऊंचा है मुकुट, 7 टन लोहे का हुआ इस्तेमाल, 120 कारीगरों ने किया तैयार। बरेली में 8 साल बाद आसमान में गूंजा सारंग का शौर्य, हेलीकॉप्टर से दिखाए हैरतअंगेज हवाई करतब, 15 मिनट आसमान में बनाई गई अलग अलग फॉर्मेशन। पुणे को मिला नया मेडिकल कॉलेज, केंद्र से मिला अप्रूवल, एमबीबीएस की होगी 50 सीट, शैक्षणिक वर्ष 2027-28 से होगी पढ़ाई शुरू, सीएम ने दी जानकारी। त्योहारी सीजन में रेलवे के कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, केंद्र ने प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस का किया ऐलान, 78 दिन के वेतन के बराबर मिलेगा पैसा। अच्छी और सच्ची खबर में सबसे पहले बात शारदीय नवरात्र की, जिसका आज चौथा दिन है। आज देवी दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना घरों और मंदिरों में की गई। सुबह से ही देश के तमाम देवी मंदिरों में दर्शन और पूजन के लिए भक्तों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां कुष्मांडा ने अपनी हल्की मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी, इसी कारण उन्हें सृष्टि की आदिशक्ति के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि मां कुष्मांडा की आराधना करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भक्तों को सुख शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है।

0: कोई आया परिवार संग और कोई आया है दोस्त और रिश्तेदारों के साथ देवी माँ का आशीर्वाद लेने। चाहे शहर कोई भी हो या मंदिर कोई भी हो, शक्ति उपासना के स्पर्श की रौनक देखते ही बन रही है। दिल्ली के इन तीन प्राचीन मंदिरों झंडेवाला, छतरपुर और कालका जी से आई इन तस्वीरों में नवरात्रि की इसी रौनक को देखा जा सकता है। सुबह मंदिर के कपाट खुलने से लेकर देर रात तक भक्तों की भीड़ देवी माँ के दरबार में श्रद्धा पूर्वक शीश नवाने पहुँची है।
1: नवरात्रों के दौरान कालका जी मंदिर में लगातार भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। आज नवरात्र का चौथा दिन है और आज भी मध्य रात्रि से आरती के बाद से ही लगातार भक्त कालका जी मंदिर पहुंच रहे हैं और मां के दर्शन कर रहे हैं। बता दें, नवरात्रों के दौरान दिल्ली NCR सहित देश के अलग अलग राज्यों से लगातार भक्त कालका जी मंदिर में पहुँच रहे हैं और जयकारों के साथ माँ के दर्शन कर रहे हैं।
2: माता रानी के मैं दर्शन करने आई हूँ नवरात्रे में और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है माता रानी के दरबार में। मनोकामना पूरी करती है माता रानी।
3: मैंने पहला और आखिरी नवरात्रि का व्रत रखा है जिसमें बहुत ही श्रद्धा पूर्वक व्रत रखा है, जिससे माता रानी ने मुझे आज यहाँ पर बुलाया है, तो मैं बहुत ही आभारी हूँ उनकी।
4: जो भी मांगा है मुझे हमेशा मिला है। जय माता।
0: देश के दूसरे देवी मंदिरों में भी आस्था और भक्ति का ऐसा ही माहौल नवरात्रि के चौथे दिन देखने को मिला है। माँ के इन भक्तों में कोई माँ को प्रसन्न करने के लिए अपने साथ देवी माँ का मनपसंद भोग बनाकर लाया है और कोई चुनरी और नारियल लेकर आया है।
5: शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन यानी कि माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा का आज दिन है और माँ कुष्मांडा के दर्शन हम जयपुर से माँ वैष्णो देवी मंदिर से आप सभी को कराते हैं, जहाँ आज का रंग नीला है तो नीले ही रंग में माँ का भव्य श्रृंगार किया गया है। माँ का जो दरबार है वो फूलों से सजाया गया है और इस मंदिर में सुबह से ही भक्तों की आवाजाही है। सभी भक्त माँ को प्रसन्न करने के लिए फूल लेके आ रहे हैं।
6: हम हर महीने की महीने अलग अलग मंदिरों में 56 भोग लगाते हैं और कीर्तन करते हैं 2 घंटे का। इस बार हमने यहाँ दुर्गा माता के मंदिर में 56 भोग का थाल है हमारे पास में और हमारे माता की साड़ी चुंदड़ी हम सब लेके आए।
0: नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा को समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी दुर्गा के चौथे स्वरूप ने अपनी हल्की मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी, इसी कारण उन्हें सृष्टि की आदि शक्ति के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि माँ कुष्मांडा की आराधना करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भक्तों को सुख शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी उम्मीद के साथ आस्था का ये आनंद सैलाब देवी मंदिरों में उमड़ा है।
7: इन शारदीय नवरात्रों में आज माँ भगवती का चतुर्थ स्वरूप कुष्मांडा के रूप में पूजन किया गया है। आज के दिन माँ भगवती पराम्बा ने जो है इस ब्रह्मांड को अपने उदर में धारण कर लिया था, इसीलिए इनको कुष्मांडा का नाम दिया जाता है। कुष्मांडा के रूप में इनका भक्तजन जो है पूजन करते हैं। आज के दिन साधक जन अपने मन को अनाहत चक्र में स्थित कर भगवती की उपासना और भी भगवती की उपासना का पड़ाव और भी आगे बढ़ा देते हैं, जिससे साधक जनों को भगवती की पूजा अर्चना करने में, भगवती की अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने में एवं भगवती से साक्षात्कार करने के लिए वे निश्चित रूप से अग्रसित होते हैं।
0: माँ कुष्मांडा के बाद नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता को समर्पित माना जाता है। प्रेम और माता के प्रतीक माँ स्कंद माता को विद्या वाहिनी, माहेश्वरी और गौरी भी कहा जाता है। माँ स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता है और माँ को केले या केले से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि माँ स्कंद माता की पूजा करने से भक्तों को ज्ञान की प्राप्ति होती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, माँ अपने भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली भी लाती हैं। दिल्ली से आशुतोष कुमार और जयपुर से रिदम जैन, गुड न्यूज टुडे।
8: और शारदीय नवरात्र के इस पर्व के लिए सजने वाले पूजा पंडाल इन दिनों लोगों के आकर्षण का बड़ा केंद्र बने हुए हैं, क्योंकि ये पूजा पंडाल अलग अलग थीम पर बने हैं, जिनके जरिए कहीं देश के प्राचीन मंदिरों के दर्शन लोगों को कराए जा रहे हैं और कहीं सामाजिक मुद्दों को पूजा पंडाल में जगह दी गई है। अपनी इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको ऐसी ही दुर्गा पूजा पंडालों की सैर कराते हैं।

0: आस्था और भक्ति के साथ जब कला, संस्कृति और रचनात्मकता का संगम होता है तो कुछ इस तरह आकार लेते हैं देवी दुर्गा के ये भव्य पूजा पंडाल। पूजा पंडालों की ये 5 तस्वीरें उस राज्य की हैं जहां की दुर्गा पूजा देश ही नहीं दुनिया भर में मशहूर है। यही वजह है कि इन दिनों लोग इन शानदार पूजा पंडालों को देखने के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी बंगाल के अलग अलग शहरों में पहुँच रहे हैं। अब कोलकाता के इस कानपुर गाछी मिलन मेला समिति के पंडाल को ही देख लीजिए, जिसे वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ की थीम पर सजाया गया है। पंडाल के मुख्य प्रवेश द्वार और अंदर के गलियारों में आनंद मठ, कपाल कुंडला, विश्व वृक्ष और कृष्ण कांतर बिल जैसी कालजयी रचनाओं के दृश्यों को दर्शाया गया है। तो वहीं वंदे मातरम गीत की भावपूर्ण धुने और बांसुरी का मनमोहक संगीत पूरे माहौल को ही एक अलग अनुभव दे रहा है। मूर्ति के पीछे बने आभा मंडल के चारों ओर अविभाजित भारत का एक प्राचीन नक्शा दिखाया गया है और देवी दुर्गा की मूर्ति को भारत माता के स्वरूप में पेश किया गया है। कोलकाता की तरह ही राज्य के दूसरे शहरों में भी ऐसे ही मनोहारी और भव्य पूजा पंडाल देखने को मिल रहे हैं, जिसकी एक तस्वीर सिलीगुड़ी से भी सामने आई है। वहां सोने की थीम वाले इस पंडाल को लोग खासा पसंद भी कर रहे हैं। खास बात यह है कि इस पंडाल में विराजमान देवी दुर्गा की मूर्ति को करीब 100 किलो सोने के गहनों से सजाया गया है। सोने के गहनों से सजी देवी दुर्गा की इस प्रतिमा को जिस किसी ने भी देखा वो बस देखता ही रह गया।
1: तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक से एक दिव्य और भव्य पंडाल सजे हैं। कहीं पर केदारनाथ धाम की प्रतिकृति बनाई गई है, रेप्लिका बनाया गया है। कहीं पर आप देख सकते हैं माता के कामाख्या देवी मंदिर की प्रतिकृति बनाई गई है। और इसी तरह से अलग अलग जगहों पर आप देख सकते हैं कहीं पर इको फ्रेंडली पंडाल बनाया गया है और देश को संदेश दिया जा रहा है। इस बार के पंडालों में खास करके आप देखेंगे कि देशभक्ति की भी जो मधुर धुन है और साथ ही साथ जो संदेश है देशभक्ति को लेकर वो दिखाया गया है। खास करके इस पंडाल में देखें तो सोने से इस पंडाल को बनाया गया है और माता ने जितने भी गहने पहने हैं वो सभी सोने के हैं। और यहाँ पर भारत माता के रूप में देखिए देवी दुर्गा को यहाँ पर दिखाया गया है। तो दुर्गा पूजा पंडालों में न सिर्फ पंडाल, बड़े बड़े पंडाल बने हैं, बल्कि यहाँ पर संदेश के साथ भी हर एक पंडाल आपको नजर आएगा। आइए आपको दिखाते हैं कुछ और संदेश देते हुए इसी तरह के भव्य पंडाल।
0: दुर्गापुर के विधाननगर स्थित क्लब सेंटोस ने दुर्गा पूजा के अपने 56वें साल में बेहद अनोखी थीम चुनी है। इस थीम का नाम है निर्वाण। थीम को जीवंत रूप देने के लिए पूजा पंडाल में लोहे के स्ट्रक्चर और फाइबर का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही लाइव परफॉर्मेंस, मुखौटा अभिनय और प्रोजेक्टर के जरिए शेडो वर्क को भी शामिल किया गया है। आयोजकों के अनुसार इन सभी माध्यमों से लोगों के सामने निर्वाण और मुक्ति की सोच को पेश करने का प्रयास किया गया है। बंगाल के ही एक और शहर हावड़ा में सहयात्री क्लब ने अपने 76वें साल में केदारनाथ मंदिर की थीम पर पंडाल बनाया है, जिसके चलते इस पूजा पंडाल को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। आयोजकों का कहना है कि इस थीम के जरिए उन लोगों को बाबा केदारनाथ के दर्शन का अनुभव कराने की कोशिश की गई है जो किसी कारण उत्तराखंड में मौजूद केदारनाथ धाम नहीं पहुँच पाते हैं।
2: इस बार सोच में हम लोगों ने किया है केदारनाथ टेम्पल, क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसा लोग होता है जो केदारनाथ नहीं पहुँच पाता है,
3: तीर्थ यात्रा नहीं कर पाता है।
2: ऐसा कोई बीमार पड़ने वाला लोग है जो केदारनाथ नहीं पहुँच पाता है, ऐसा पैसे के लिए कोई नहीं पहुँच पाता है। तो ये सब सोच के उस लोग यहाँ पे आके केदारनाथ दर्शन कर पाए, इस सोच के लिए हम यहाँ पे केदारनाथ बनाया है। इस बार
3: यहाँ पर जो बनाए हैं ये क्या क्या चीज से तैयार है?
2: यहाँ पे जो बनाए जूट का है, घास का है, सब ओरिजिनल है।
0: वहीं देश के दूसरे शहरों में भी दुर्गा पूजा की रौनक कुछ कम नहीं है। चाहे दिल्ली हो, जमशेदपुर हो या फिर मध्य प्रदेश का नर्मदापुरम हो, एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल सजे हैं जो अपनी थीम और सुंदरता की वजह से खासी पसंद किए जा रहे हैं। जैसे कि जमशेदपुर के बिष्टपुर स्थित विश्वजीत मैनी मेला दुर्गा पूजा पंडाल, जिसने इस साल इस विशाल पंडाल में भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दर्शाया है।
4: ये बहुत भव्य पंडाल सजा है, माँ दुर्गा की प्रतिमा भी अद्भुत है, और उसके साथ साथ इस बार इन्होंने भगवान विष्णु के 10 अवतार को भी यहाँ प्रदर्शित किया है, बैठाया है। तो जो हमारी नई पीढ़ी है उसको जानकारी मिलेगी इससे।
0: उधर नर्मदापुरम के दुर्गा पंडाल को न्यायालय की थीम पर बनाया गया है, जहां कोर्ट रूम, जेल और फांसी की सजा से जुड़े दृश्य नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि इस पंडाल में भगवान गणेश को जज के रूप में विराजित किया गया है। इस पूजा पंडाल के जरिए बेटियों के खिलाफ अत्याचार रोकने, दोषियों को सजा दिलाने और नारी सम्मान का संदेश देने की कोशिश आयोजकों ने की है। दुर्गापुर से अनिल गिरी, हावड़ा से बैद्यनाथ झा, दिल्ली से आशुतोष कुमार, जमशेदपुर से नीरज तिवारी और नर्मदापुरम से पीताम्बर जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड टुडे।
1: और अब बात अद्भुत, अलौकिक, अविस्मरणीय भगवान राम की नगरी अयोध्या की, जो कि दीपावली के मौके पर दिव्य और भव्य नजर आने के लिए तैयार हो रही है। अवधपुरी में 7 नवंबर को देशवासियों को साक्षात त्रेता युग जैसा एहसास होगा। लंका विजय के उपरांत प्रभु श्री राम का जिस तरह स्वागत हुआ था, उसी अंदाज में इस बार भी सरयू घाट और राम की पैड़ी को दीपों की सुनहरी रोशनी से जगमगाने की तैयारी है। इस साल 30 लाख दीपक प्रज्वलित कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। इसके लिए राम की पैड़ी समेत सरयू के 51 घाटों पर मार्किंग शुरू होने वाली है।
5: अयोध्या कलयुग में त्रेता युग का प्रमाण, और अयोध्या को फिर इंतजार है भव्य और दिव्य दीपो उत्सव का, जब सरयू की घाट और राम की पैड़ी दियों की रोशनी से जगमगा उठेंगे, मानो स्वर्ग साक्षात धरती पर उतर आया हो। हर साल अद्भुत, अलौकिक, अविस्मरणीय दशरथ नंदन भगवान राम की नगरी अयोध्या लाखों दीपों के प्रकाश में जीवंत हो उठती है। कौशल्या नंदन की पावन जन्मभूमि पर जब एक ही वक्त पर लाखों दीपक प्रज्वलित होते हैं, तो ऐसा मनोरम दृश्य हर सनातनी के हृदय को गौरव और राम भक्ति से भर देता है। साल 2017 में रामनगरी में पहली बार शुरू हुई दीपो उत्सव की परंपरा हर साल नए प्रतिमान बनाती है। इस बार भी अवधपुरी में दीपो उत्सव से जुड़ी भव्यता और आकर्षण के नए आयाम स्थापित करने का प्रयास है। इस बार राम की पैड़ी समेत सरयू के 51 घाटों पर 30 लाख दिए बिछाए जाएंगे, जिसको सजाने और जलाने का जिम्मा 35,000 वॉलंटियर्स पर होगा। इसके लिए ऐतिहासिक राम की पैड़ी को नया स्वरूप दिया जा रहा है। राम की पैड़ी के घाटों पर नई सीढ़ियां बनाने, रोशनी की व्यवस्था और दर्शकों

0: 35,000 वॉलंटियर और 51 घाट सजाए जा रहे हैं। मतलब 35,000 वॉलंटियर रहेंगे जो इन घाटों को सजाएंगे दीपों से, और वो रौनक रहेगी अलग, क्योंकि इस बार का दीपोत्सव बहुत ही भव्य स्वरूप दिया जा रहा है और 30 लाख के ऊपर के दीपक यहाँ पे बिछाए जाएंगे इन 51 घाटों पर। तो जो राम की पैड़ी है इसको दुल्हन के तरीके पूरा सजा दिया जा रहा है। जगह जगह अभी कार्य चल रहे हैं और वो 7 नवंबर की तारीख होगी जिस दिन इन घाटों पर वो दिए की रोशनी चमक उठेगी।
1: सरयू तट पर स्थायी महाआरती स्थल भी तैयार किया गया है। लाल और दूसरे पत्थरों से भरे इस स्थल पर मंदिर नुमा गुम्बद, नक्काशीदार खम्बे और रामायण कालीन प्रसंगों से जुड़े शिल्प और चित्र लगाए गए हैं। मरम्मत, रखरखाव और नए निर्माण का काम पूरा होते ही राम की पैड़ी के साथ 51 घाटों पर दियों के लिए मार्किंग का कार्य शुरू किया जाएगा। हर बार की तरह इस बार भी अवध विश्वविद्यालय को इस उत्सव के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है, जिसने दीपो उत्सव को भव्य बनाने के लिए प्लानिंग शुरू कर दी है। अवध विश्वविद्यालय की तरफ से महाविद्यालयों, इंटर कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों के अलावा स्वयंसेवी संस्थाओं को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिन पर राम की पैड़ी और सरयू नदी के घाटों पर सरसों के तेल से भरे दीपों को सजाने और उनमें बाती लगाने की जिम्मेदारी होगी। 30 लाख दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए घाट पर 32 लाख दिए सजाए जाएंगे। दीपो उत्सव के लिए लगभग 64 लाख बातियां और 96,000 लीटर तेल की व्यवस्था की जा रही है।
2: दीपोत्सव 2026 की तैयारियां प्रगति पर है, जिससे संबंधित आईडी जो हमको 35,000 वॉलंटियर्स के बनाने हैं उसका कार्य भी प्रगति पर है और तेजी से चल रहा है। इस आईडी निर्माण में लगभग 40 इंटर कॉलेज, 35 डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय का आवासीय परिसर तथा स्वयं से भी संस्थाएं सम्मिलित होंगी, जिनके आईडी का रजिस्ट्रेशन कार्य प्रगत पर है। घाटों के जो अभी स्लिट वगैरह हैं, जहां पर नदी का स्तर नीचे गया है, पानी का स्तर नीचे गया है, वहां पर जिला प्रशासन के साथ समन्वय बना करके उसकी सफाई भी करना है। तत्पश्चात उसकी मार्किंग का कार्य प्रारंभ कर देंगे। जैसा कि ये विदित है कि गत वर्ष 26,12,215 दियों को बना करके विश्व रिकॉर्ड गिनीज बुक का स्थापित किया गया था, इस वर्ष भी हम एक विश्व रिकॉर्ड जो अपना ही है उसको तोड़ते हुए नए विश्व रिकॉर्ड का कीर्तिमान स्थापित करेंगे।
1: 2017 में जब यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, भगवान राम की नगरी में दीपो उत्सव के आयोजन की परंपरा शुरू हुई। साल दर साल दीपों के मामले में अयोध्या अपने पुराने कीर्तिमान को तोड़कर एक नया रिकॉर्ड स्थापित करती है। दीपो उत्सव श्री राम की लंका विजय के बाद अयोध्या वापस लौटने की स्मृति में मनाया जाता है। इस धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन को देखने के लिए लाखों श्रद्धालु और विदेशी पर्यटकों का भी अयोध्या आगमन होता है। राम की पैड़ी और सरयू के 51 घाटों पर दियों की ये गंगा न सिर्फ राम नगरी को रोशन करती है, बल्कि पूरी दुनिया को भगवान राम की सांस्कृतिक धरोहर का संदेश भी देती है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
3: इसी के साथ अच्छी खबर सच्ची खबर में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन रात 9 बजे मेरे साथ देखना ना भूले न्यूज़ पर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
5: दुर्गा सप्तशती के अलग अलग अध्यायों का महत्व क्या है, दुर्गा सप्तशती के किस अध्याय से कौन सा मिलता है वरदान, दुर्गा सप्तशती के पाठ का क्या है विधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।

0: दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
2: अविश्वास में विश्वास बसता है।
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
0: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है।
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
0: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है।
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
0: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
0: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे दुर्गा सप्तशती के अध्यायों की और इसके महिमा की। इसके अलावा बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक विशेष उपाय। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 15 अक्टूबर 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज आपको बता रहे हैं दुर्गा सप्तशती के अध्यायों के बारे में। अलग अलग अध्यायों का महत्व क्या है इस बारे में आज बात करेंगे। दुर्गा सप्तशती है क्या और इसकी खास बातें क्या हैं? ऐसा माना जाता है कि वेदों की तरह दुर्गा सप्तशती भी अनादि है। कहां से प्रकट हुई, कहां से आई, ये अज्ञात है। मार्कंडे पुराण के माध्यम से दुर्गा सप्तशती जन सामान्य तक पहुंची है। माता दुर्गा की, देवी की उपासना के लिए दुर्गा सप्तशती को सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। दुर्गा सप्तशती में देवी की उपासना के 700 श्लोक दिए गए हैं और ये 700 श्लोक 3 भागों में बांटे गए हैं, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। प्रथम चरित्र में केवल पहला अध्याय, मध्यम चरित्र में दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय और बाकी सारे अध्याय उत्तम चरित्र में रखे गए हैं। दुर्गा सप्तशती तंत्र साधना की बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। इन 700 श्लोकों में तंत्र की शक्तियां हैं, जैसे मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण और विद्वेषण। तंत्र की जो तमाम शक्तियां हैं वो दुर्गा सप्तशती के श्लोकों में दी गई हैं। और कौन से श्लोक में कौन सी ताकत है ये बड़ा गोपनीय है। इसको जानने के लिए आपको किसी समर्थ गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें,
महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ हो सकता है, अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, रिश्तों की समस्या हल होगी, व्यस्तता बढ़ी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर की तमाम समस्याएं हल होंगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान रखें, देवी को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती के अलग अलग अध्यायों का महत्व क्या है। पहले जानते हैं प्रथम अध्याय के बारे में। अगर आप दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय पढ़ते हैं तो इससे आपकी समस्त चिंताएं दूर होती हैं और इससे आपका शत्रु भय दूर होता है, शत्रुओं की बाधा शांत होती है, शत्रु और विरोधी आपको परेशान नहीं करेंगे। दूसरा और तीसरा अध्याय, दूसरे और तीसरे अध्याय के पाठ से मुकदमेबाजी में विजय मिलती है, सफलता मिलती है और झूठे आरोपों से मुक्ति मिलती है। अगर किसी गलत चक्कर में फंस गए हैं तो उससे आपको छुटकारा मिलता है। अगर आप दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का पाठ करते हैं तो इसके पाठ से अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है और चौथे अध्याय के पाठ से देवी की भक्ति भी, देवी की कृपा भी बड़ी आसानी से मिल जाती है। पांचवा अध्याय, पांचवें अध्याय के पाठ से नकारात्मक ऊर्जा का, तंत्र मंत्र आदि का नाश होता है और पांचवें अध्याय का पाठ करने से भय दूर होता है, बुरे सपने दूर होते हैं और तंत्र मंत्र की बाधा का नाश होता है। सिंह राशि, करियर में समस्या हो सकती है, मानसिक चिंताएं रह सकती हैं, लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, धन का लाभ होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
तुला राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी, धन की समस्या हल होगी, संपत्ति का लाभ होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य की स्थिति ठीक रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, देवी को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब दुर्गा सप्तशती के बाकी अध्याय को भी जानते हैं। अगर छठवें अध्याय की बात करें तो दुर्गा सप्तशती के छठवें अध्याय के पाठ से बड़ी बाधा का नाश किया जा सकता है। इसको पढ़ने से बड़ी बाधा दूर होती है। कितना भी बड़ा संकट हो, छठवें अध्याय का पाठ करने से वो दूर हो जाता है। सातवां अध्याय, सातवें अध्याय के पाठ से विशेष गुप्त कामनाओं की पूर्ति होती है। आपके मन में कोई गोपनीय इच्छा है जिसकी आप पूर्ति करना चाहते हैं तो सातवें अध्याय का पाठ आपको करना चाहिए। आठवां अध्याय, आठवें अध्याय के पाठ करने से वशीकरण की, दूसरों को अपने वश में करने की शक्ति मिलती है और नियमित रूप से धन का लाभ जीवन में होना शुरू हो जाता है। नवम अध्याय, नवा अध्याय, नवे अध्याय के पाठ से संपत्ति का लाभ होता है, प्रॉपर्टी मिलती है और खोए हुए व्यक्ति का पता चलता है। अगर कोई व्यक्ति चला गया हो, कोई सूचना ना मिल रही हो तो नवम अध्याय का पाठ करना चाहिए। दसवां अध्याय, दशम अध्याय, दसवें अध्याय के पाठ से भी गुमशुदा की तलाश होती है, अपूर्व शक्ति और संतान सुख की प्राप्ति होती है। अगर आपको जीवन में ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए तो दुर्गा सप्तशती के दसवें अध्याय का पाठ आप कर सकते हैं। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, परिवार में अशांति से बचें, हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, करियर में आपको सफलता मिलेगी, काम की रुकावट दूर होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी,
धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, चोट चपेट से सावधान रहें। देवी को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब जो दुर्गा सप्तशती के अन्य बचे हुए अध्याय हैं उनका महत्व भी जानते हैं। 11वें अध्याय की अगर बात करें तो 11वें अध्याय के पाठ से हर तरह की चिंता दूर हो जाती है, तनाव समाप्त होता है। और 11वें अध्याय के पाठ से व्यापार में बहुत सारी सफलता मिलती है। 12वां अध्याय, 12वें अध्याय के पाठ से रोगों से छुटकारा मिलता है और नाम यश मिलता है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है। 13वां अध्याय, जब आप 13वें अध्याय का पाठ करते हैं तो देवी की कृपा और भक्ति आपको मिलती है और व्यक्ति की हर तरह के संकट से रक्षा होती है। अचानक कोई बड़ा संकट जीवन में आ गया तो 13वें अध्याय का पाठ करिए, आप उस संकट से बाहर निकल आएंगे। अगर आपका कोई बड़ा महत्वपूर्ण काम काफी समय से रुका हुआ है तो नवरात्रि में लगातार 3 दिनों तक देवी को लाल फूलों की माला अर्पित करिएगा। अगर लगातार 3 दिन तक आप देवी को लाल फूलों की माला अर्पित करें तो आपका बड़े से बड़ा काम बड़ी आसानी से बन जाएगा। कि अगर कोई व्यक्ति बीमार हो, हॉस्पिटल में हो, तो क्या करेंगे उसके लिए? रोज सुबह और शाम एक एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे। हर शनिवार हनुमान मंदिर में नारियल अर्पित करेंगे। व्यक्ति जल्दी स्वस्थ हो जाए ये प्रार्थना करके नियमित रूप से सिक्कों का दान करेंगे, व्यक्ति जल्दी स्वस्थ होगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है।
2: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
3: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
2: नवरात्र में अमरावती के प्राचीन अंबिका माता मंदिर में रोशन हो रहे मनोकामना के हजारों अखंड दीप, अद्भुत लग रहा पूरा मंदिर परिसर। देश भर में बन रहे मां के एक से बढ़कर एक पंडाल, रांची में द्वारका नगरी की थीम पर हूबहू बना पंडाल, तो रोहतास में मां वैष्णो देवी की गुफा की तर्ज पर सजा पंडाल। दिल्ली के द्वारका में तैयार हो रहा सबसे ऊंचा 221 फीट का रावण, 25 फीट ऊंचा है मुकुट, 7 टन लोहे का हुआ इस्तेमाल, 120 कारीगरों ने किया तैयार।

0: आसमान में गूंजा सारंग का शौर्य, हेलीकॉप्टर से दिखाए हैरतअंगेज हवाई करतब, 15 मिनट तक आसमान में बनाई अलग अलग फॉर्मेशन। पुणे को मिला नया मेडिकल कॉलेज, केंद्र से मिला अप्रूवल, एमबीबीएस की होगी 50 सीट, शैक्षणिक वर्ष 2027-28 से होगी पढ़ाई शुरू, सीएम ने दी जानकारी। प्रदूषण पर नियंत्रण की तैयारी, अप्रैल 2029 से नई कारों और एसयूवी के लिए BS7 उत्सर्जन मानक लागू करने की तैयारी, 3 चरणों में बदलेंगे कारों और ट्रकों के नियम। आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है, इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है, और चर्चा झांसी में निकली रामलीला से जुड़ी दिव्य राम बारात की भी। देखिए
1: शारदीय नवरात्र के चौथे दिन आज माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा की गई। माँ दुर्गा की आराधना के साथ ही नवरात्र में रामलीला से जुड़े प्रसंगों का मंचन देखने का अवसर भी लोगों को मिल रहा है। यूपी के झांसी में धूमधाम के साथ राम बारात निकाली गई। भगवान राम के धनुष तोड़ने के बाद निकली 102 साल पुरानी इस भव्य बारात में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। बैंड बाजे की गूंज, आकर्षक झांकियों, सजे धजे घोड़ों, देवी देवताओं के स्वरूपों में मनोरम अंदाज में कलाकार दिखे। बारात जहां से भी गुजरी वहां लोगों ने फूल बरसाकर और आरती पूजन कर भगवान राम का स्वागत किया। भगवान शिव और माता पार्वती की झांकी से लेकर दक्षिण भारत के कलाकार अपने अंदाज में हर किसी को आकर्षित करते रहे। इस राम बारात में आस्था, उल्लास और भक्ति का ऐसा अद्भुत संगम देखने को मिला जिसमें पूरे सदर बाजार में जनकपुर नगरी जैसी झलक दिख रही थी। संगम नगरी प्रयागराज में निकली माँ काली की प्राकट्य यात्रा, साथ में दिखा श्रद्धालुओं का रेला। दारागंज मोहल्ले में माँ काली के रूप में हाथ में भुजाली लेकर भीड़ के बीच जब पात्र निकला तो ऐसा लगा जैसे काली माँ ही हो। उनका आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालु आतुर दिखे। इस दौरान पात्र माँ काली की तरह ही व्यवहार करता रहा। ये पूरा प्रसंग रामायण के उस प्रसंग से जुड़ा है जिसमें सूर्पनखा के नाक कान काटने के बाद खर दूषण अपनी सेना लेकर भगवान राम से युद्ध के लिए पहुंचता है और माँ सीता खुद काली का वेश धरकर भगवान राम के रथ के आगे आगे चलती हैं और खर दूषण के वध में भगवान राम की मदद करती हैं। काली प्राकट्य की ये परंपरा 100 साल से भी अधिक पुरानी कही जाती है। इसमें सचिन पिछले कई सालों से माँ काली की भूमिका निभा रहे हैं। नवरात्र के रंगों के साथ दशहरा उत्सव की भी देश भर में तैयारी चल रही है। हरियाणा के करनाल में इस बार दशहरा के अवसर पर दहन के लिए रावण का 75 फीट ऊंचा पुतला तैयार किया जा रहा है। इस विशेष पुतले की सबसे बड़ी विशेषता 3D जैसी मूवमेंट है, यानी ये पुतला चारों ओर घूमकर देखेगा। यूपी के सहारनपुर का रहने वाला मुस्लिम समाज का एक कारीगर परिवार सेक्टर 4 में दशहरा पर दहन के लिए रावण के अलावा कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला भी तैयार कर रहा है। दशहरा के अवसर पर यहां शानदार आतिशबाजी के साथ रावण दहन देखने को मिलेगा। रामनगरी अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। दीपोत्सव को और भव्य बनाने के लिए हर स्तर पर तैयारी जारी है। दीपोत्सव के विशेष अवसर पर सरयू तट से लेकर शहर के प्रमुख स्थल तक दीपों की रोशनी से जगमगाती नजर आएंगे। इस बार राम की पैड़ी पर 30 लाख दीप जलाकर नया कीर्तिमान स्थापित करने की योजना है। दीपोत्सव में दीप प्रज्वलन की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय को सौंपी गई है। उसे इस आयोजन का नोडल बनाया गया है। इसे विश्वविद्यालय के सहयोग से 35,000 स्वयंसेवक तैयार किए जाएंगे जो दीप प्रज्वलन की जिम्मेदारी निभाएंगे। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकेरनाग इलाके की हैं, जहां एक भालू को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया। ये जंगली काला भालू आबादी वाले इलाके में घुस गया और एक दुकान में जाकर छिप गया था, जिसे वाइल्ड लाइफ टीम ने जाल में फंसाकर बेहोश किया। वन्य जीव विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद भालू को सुरक्षित पकड़ लिया और फिर उसे जंगल में छोड़ दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोकेरनाग के गाँव के लोगों का कहना है कि पिछले एक हफ्ते से लगातार भालू को गाँव के आसपास देखा जा रहा था। रात के समय ही घरों के आसपास नजर आ जाता था।
0: और अब बात करते हैं कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी की। कश्मीर में सर्दियों की शुरुआत अभी से हो गई है। मैदानी इलाकों में बारिश और ऊंचे इलाकों में बर्फबारी के कारण कश्मीर में तापमान काफी गिर गया है। अक्टूबर की शुरुआत में मौसम गर्म था, लेकिन अब कश्मीर चिनाब घाटी और पीर पंजाल इलाके में दिन का तापमान गिर रहा है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने यात्रियों और पर्यटकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है, जबकि पर्वतारोहियों को मौसम में सुधार होने तक पर्वतीय यात्राओं से बचने के लिए कहा गया है।

0: जम्मू कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी के साथ ही पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली है। हरी भरी पहाड़ियाँ अब बर्फ की सफेदी में समा गई हैं। उत्तरी कश्मीर की गुरेज घाटी समेत ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है, जबकि श्रीनगर सहित घाटी के मैदानी क्षेत्रों में बारिश से ठंड बढ़ गई है। बर्फबारी की ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में स्थित गुरेज घाटी की है, जहां ऊंचाई वाले इलाकों में जोरदार बर्फबारी हुई है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि रोशनी में ताजा बर्फबारी कितनी खूबसूरत लग रही है। रुई के फाहे से गिरती बर्फ सैलानियों को खूब रास आ रही है। गुरेज घाटी के राजदान टॉप, किलशाई टॉप और काबल गली में ताजा बर्फबारी से पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली है। राजदान टॉप पर लगभग 5 इंच बर्फबारी के बाद फिसलन बढ़ गई है। फिसलन इतनी ज्यादा कि एक गाड़ी पलट गई और बर्फबारी के बीच पर्यटकों को इधर उधर आते जाते देखा जा सकता है। उत्तरी कश्मीर की वादियों में बर्फ की नई परत जमने से यहां का नजारा बेहद खूबसूरत हो गया। खास तौर पर बूटा पथरी में बर्फबारी के बाद पहाड़ों और आसपास के इलाकों ने सफेद चादर ओढ़ ली है।
1: घाटी में सर्दी के मौसम ने अपनी पहली दस्तक दे दी है। जोजीला और सोनमर्ग के पहाड़ों पर पहले बर्फबारी हुई और आज गुलमर्ग जो कि विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, वहां जो पहाड़ हैं सफेद खूबसूरत बर्फ की चादर में ढके दिखे। हालांकि सैयाह और जो पर्यटक हैं उनके लिए बहुत मन मोह लेने वाला दृश्य है, लेकिन बर्फ के साथ साथ ठंड भी बढ़ गई है। मैदानी इलाकों तक जहां मैं हूं श्रीनगर में भी एक जिसको आप कहेंगे चिल, शार्प चिल है। मौसम काफी ठंडा हो गया है, तापमान कई डिग्री नीचे आ गया है और अगर मौसम विभाग का माने तो बर्फबारी जो है अगले 24 से 48 घंटे तक रुक रुक के हो सकती है और दक्षिणी और उत्तरी कश्मीर के जो पहाड़ी इलाके हैं वहां बहुत ज्यादा बर्फबारी हो सकती है। श्रीनगर और मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है और जैसे मैंने कहा कि तापमान में अचानक कमी आई है, तो सर्दी का मौसम जो कि हालांकि अभी अगर आप मेन विंटर्स की बात करें तो 1.5-2 महीने दूर है, लेकिन इस साल ऑटम पतझड़ के मौसम में ही बर्फबारी शुरू हो गई है और जो नवंबर में आप जिस तरीके की ठंड फील करते हैं आज अक्टूबर में ही घाटी में आपको वो महसूस होगी। तो अगले 24 से 48 घंटे तक पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है और तापमान जो है और भी नीचे आ सकता है।
0: बर्फबारी का असर केवल गुरेज तक सीमित नहीं रहा। गुलमर्ग, सोनमर्ग, जोजिला क्षेत्र, पहलगाम और उत्तरी कश्मीर के तुलैल इलाके में भी ताजा बर्फबारी देखी गई। वहीं गांधरबल के ऊंचे इलाकों, हरमुख चोटी के आसपास, साधना टॉप और सिंथन टॉप में भी बर्फबारी हुई है। वहीं घाटी के मैदानी क्षेत्रों में बारिश के बाद तेज हवाओं ने मौसम को सर्द बना दिया है। अक्टूबर का भी आधा महीना ही गुजरा है और गुरेज में पारा शून्य तक लुढ़क चुका है, जबकि श्रीनगर में भी तापमान 15 डिग्री तक गिर चुका है। सैलानियों के साथ साथ किसानों के लिए भी ये बर्फबारी खुशियों की सौगात लेकर आई है। एक ओर जहां कश्मीर में पर्यटन में तेजी के आसार हैं, वहीं सूखे के मौसम से किसानों को राहत मिली है।
2: पूरे कश्मीर में गुरुवार से ही मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हुई, जबकि मैदानी इलाकों में बारिशों के कारण अब ठंड ने दस्तक दी है। अगर श्रीनगर में दिन के तापमान की बात की जाए तो मात्र मंगलवार को 15 डिग्री सेंटीग्रेड श्रीनगर का अधिकतम तापमान रहा, जबकि पहाड़ी इलाकों में खासतौर से गुलमर्ग और गुरेज में तापमान शून्य के आसपास ही रिकॉर्ड किया गया, वो भी रात के बीच में। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल आने वाले 48 घंटे तक पहाड़ों पर और हल्की बर्फबारी हो सकती है, जिससे अब पूरी तरह से कश्मीर में ठंड की शुरुआत हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद मौसम फिर संभलेगा। लेकिन पहाड़ों पर हुई इस ताज़ा बर्फबारी से लोगों ने राहत भी ली है, क्योंकि कश्मीर में पिछले कई हफ्तों से सूखे का मौसम चल रहा था, लेकिन अब इस बर्फबारी ने न सिर्फ किसानों के लिए जो है एक राहत लाई है, बल्कि साथ ही साथ अब कश्मीर में विंटर टूरिज्म की भी शुरुआत इस बर्फबारी के साथ होने लगी है।
0: पहाड़ी इलाकों में पारा गिरने के साथ मैदानी क्षेत्रों में भी गुलाबी ठंड देखने को मिल रही है। गुलमर्ग और गुरेज में मौसम के इस बदले मिजाज ने जहां कश्मीर की वादियों की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं, वहीं उत्तरी कश्मीर के इन ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद कुदरत का मनमोहक नजारा देखने को मिल रहा है और आने वाले समय में पूरी घाटी सफेद बर्फ की चादर से ढकी होगी। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल भी जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक, तेज हवाएं और ओले भी गिर सकते हैं, जबकि 16 अक्टूबर से मौसम में सुधार की उम्मीद है। उत्तराखंड में भी मौसम ने करवट बदल ली है। पिछले दिनों हुई बारिश के आगे भी जारी रहने के आसार हैं। 15 और 16 अक्टूबर को प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम में बदलाव के चलते पर्वतीय इलाकों में ठंड बढ़ने और तापमान में गिरावट आने के आसार हैं।
3: पिछले दो दिन में तो बारिश काफी कम देखने को मिली है, और लेकिन उससे जो शनिवार इतवार में बारिश जो है और ओले और तेज हवाओं की घटनाएं हुई थी, उसके बाद मंडे में जो है हमको कम देखने को मिला, आज भी कम रिपोर्ट हुआ है। और आने वाले टाइम में अभी अगले दो दिन तो हम हल्की से बहुत हल्की बारिश जो है खासतौर से पर्वतीय जनपदों में देखने को मिल सकती है, और उसमें नॉर्थ वाले जनपद ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। उसके बाद 15-16 तारीख में जो हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ साथ जो है हमको प्रदेश के मैदानी इलाके पर्वतीय जनपदों के साथ साथ जो है मैदानी इलाकों में देखने को मिल सकती है। और उसके बाद 16 तारीख को कुमाऊं वाले में क्षेत्र में ज़्यादा प्रभावित रह सकता है, जबकि यहाँ पे गढ़वाल में जो कहीं कहीं पे ये बारिश देखने को मिल सकती है, हल्की से बहुत हल्की बारिश,
0: जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। मौसम में बदलाव के चलते पर्वतीय इलाकों में ठंड बढ़ने और तापमान में गिरावट की आशंका जताई जा रही है।
3: जो बर्फबारी है अगले अभी दो दिन तो हम 3800 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में देखने को मिल सकती है, जबकि जो है 15-16 तारीख में 3500 मीटर तक के ऊंचाई वाले इलाकों में भी देखने को मिल सकती है। 16 तारीख के बाद एक्टिविटी काफ़ी कम रह जाएगी, सिर्फ नॉर्थ के कुछ जो है बहुत ही बिल्कुल नॉर्थ में हमारे उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जैसे जनपद हैं वहीं देखने को मिल सकती है बहुत हल्की से हल्की बारिश।
0: आने वाले दिनों में अच्छी बर्फबारी होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। जाहिर है अक्टूबर में हालात जब ऐसे हैं, तो दिसंबर तक पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदला रहेगा। दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई के बीच वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और उत्तर पूर्व मानसून के सक्रिय होने से कई हिस्सों में बारिश और आंधी का दौर भी देखने को मिलेगा। देहरादून संकेत शर्मा, श्रीनगर से मीर फरीद के साथ अशरफानी, गुड न्यूज टुडे।
4: रेलवे कर्मचारियों को सरकार ने दिया बड़ा दिवाली गिफ्ट। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
0: दशहरा और दिवाली की तैयारियों के बीच केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के वेतन के बराबर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को मंजूरी दी गई है। ये बोनस दशहरा और दिवाली से ठीक पहले कर्मचारियों के खातों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सरकार के फैसले का लाभ रेलवे के करीब 11,40,000 नॉन गजेटेड कर्मचारियों को मिलेगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने चेन्नई में 3,108.55 करोड़ की रिंग मेन पाइपलाइन परियोजना का शोलिंग नल्लूर में शिलान्यास किया। इस प्रोजेक्ट के तहत पीने के पानी के 9 स्रोतों को स्टेनलेस स्टील के पाइपलाइनों के 98 किलोमीटर लंबे कॉमन नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इससे किसी भी जलाशय या स्रोत से अतिरिक्त या जरूरत का पानी चेन्नई के किसी भी हिस्से में आसानी से डाइवर्ट किया जा सकेगा। मतलब जिस क्षेत्र में पानी की कमी होगी वहां दूसरे क्षेत्रों के अतिरिक्त पानी को आसानी से भेजा जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने में 4 साल का समय लगने की उम्मीद है। बोतलबंद पानी की शुद्धता को लेकर FSDA यानी यूपी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। अब यूपी में नई इकाइयों को भारतीय मानक ब्यूरो का सर्टिफिकेशन मिलने के बाद ही खाद्य सुरक्षा लाइसेंस या पंजीकरण जारी किया जाएगा, और जो इकाइयां पहले से संचालित हैं उनके लिए 31 मार्च 2027 तक सर्टिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। तय समय सीमा तक प्रमाणन नहीं लेने वाली इकाइयों का लाइसेंस या पंजीकरण निलंबित रहेगा और उत्पादन भी बंद रहेगा। दुर्गा पूजा के लिए कोलकाता पूरी तरह सज संवर कर तैयार है। शहर की सड़कें हों, मुख्य चौराहे हों या फिर पुल, सब त्योहार के रंग में रंगे हुए हैं। असल में दुर्गा पूजा के जश्न की तैयारी में पश्चिम बंगाल सरकार ने शहर को सुंदर बनाने का एक बड़ा अभियान शुरू किया है, जिसके तहत शहर की मुख्य सड़कों, चौराहों और पुलों को नया और आकर्षक रूप दिया जा रहा है। गरियाहाट ब्रिज जैसी मशहूर जगहों को गुलाबी, नारंगी और पीले जैसे चमकीले रंगों से रंगा गया है, तो वहीं गरिया मोड़ और पार्क सर्कस कनेक्टर के नीचे के इलाकों में चौराहों पर पारंपरिक बंगाली अल्पना के बड़े और बारीक डिजाइन बनाए जा रहे हैं। हरिद्वार के मां माया देवी मंदिर से आज श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े की पौराणिक छड़ी यात्रा का शुभारंभ हो गया। मंदिर में पवित्र छड़ी की विधिवत पूजा अर्चना के बाद यात्रा शुरू हुई। ये छड़ी यात्रा उत्तराखंड के चारों धामों के साथ साथ पूर्णागिरी, टनकपुर, पिथौरागढ़, जागेश्वर और अन्य पर्वतीय क्षेत्रों से होते हुए ओम पर्वत तक जाएगी और विभिन्न धार्मिक स्थलों की परिक्रमा पूरी करते हुए दीपावली के आसपास वापस हरिद्वार लौटेगी। इस छड़ी यात्रा का मकसद पर्वतीय क्षेत्रों के विकास को गति देना, पलायन रोकना और तीर्थाटन एवं सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देना है।
4: और अब बात करते हैं शारदीय नवरात्र की। आज नवरात्र का चौथा दिन है। आज देवी दुर्गा के चौथे स्वरूप यानी कि मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना हो रही है। सुबह से ही देवी मंदिरों में दर्शन और पूजन के लिए भक्तों की कतारें देखने को मिली। मान्यता है कि मां कुष्मांडा की आराधना करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है।

शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर मां के भक्त मंदिरों में उमड़ पड़े हैं। मां की पूजा आराधना के साथ ही जय जयकार हो रही है। शहर कोई भी हो या फिर मंदिर, शक्ति उपासना के इस पर्व की मां दुर्गा की छटा देखते ही बन रही है। पंडालों में मां दुर्गा विराजमान है और मां अम्बे की आराधना हो रही है। हर पंडाल की अलग थीम है और इन पंडालों के साथ सज्जा ऐसी है कि नजरें ठहर जाए और कलाकारी ऐसी कि देखने वाला बस देखता रह जाए। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर के विधान नगर स्थित क्लब सेंटोस ने इस बार की थीम में मुक्ति का संदेश देने वाली अवधारणा निर्वाण को बनाया है। 56वें वर्ष में प्रवेश कर रही इस पूजा में अलग अलग कला माध्यमों के जरिए निर्वाण को दर्शाया गया है। निर्वाण थीम को जीवंत रूप देने के लिए पंडाल में लोहे के स्ट्रक्चर और फाइबर का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही लाइव परफॉर्मेंस, मुखौटाभिनय और प्रोजेक्टर के जरिए शैडो वर्क को भी शामिल किया गया है। वहीं हावड़ा के सहयात्री क्लब ने अपने 76वें वर्ष में केदारनाथ धाम की थीम पर भव्य पूजा मंडप तैयार किया है। केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर बनाए गए इस मंडप को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। इस खास पंडाल के माध्यम से उन लोगों को बाबा केदारनाथ के दर्शन का अनुभव कराने की कोशिश की जा रही है जो किसी वजह से केदारनाथ धाम की यात्रा नहीं कर पाते हैं। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में चर्चित नडिहा बारोयारी दुर्गा पूजा कमेटी खास आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। पूजा कमेटी अपनी स्थापना के 100 साल पूरे होने का जश्न मना रही है। शताब्दी वर्ष के मौके पर नडिहा बारोयारी का स्थायी दुर्गा मंडप इस बार टेराकोटा कला की शैली में सजाया गया है। पंडाल की सजावट में बंगाल की पारंपरिक कला और स्थानीय सांस्कृतिक शैली की झलक देखने को मिल रही है। जमशेदपुर में भी भव्य पूजा का आयोजन किया जा रहा है। यहां दुर्गा पूजा को लेकर गजब का उत्साह देखा जा रहा है।

0: उत्सव में शामिल होते हैं। यहां पंचमी यानी कल से माता के दर्शन और पूजन किए जा सकेंगे।
1: मिनी मंगाल के नाम से जाने जाने वाले दिल्ली के चितरंजन पार्क में नवरात्र उत्सव की तैयारियां अब अपने अंतिम दौर में हैं। यहां के सभी पंडालों में माता की पूजा नवरात्र के पांचवें दिन पंचमी के दिन से शुरू होती है, जो नौवीं और दसवीं तक चलती है, जिसको लेकर के तमाम तैयारियां की जा रही है। अभी हम दिल्ली के सबसे बड़े पूजा पंडाल मेला ग्राउंड में मौजूद हैं, जहां पर तमाम तैयारियां अब अंतिम दौर में हैं। फिनिशिंग का कार्य किया जा रहा है, मां की प्रतिमा यहां स्थापित कर दी गई है, जिसको अंतिम फिनिशिंग देने का कार्य किया जा रहा है।
0: अब दिल्ली के इन तीन प्राचीन मंदिरों झंडेवालान, छतरपुर और कालकाजी से आई इन तस्वीरों में मां दुर्गा के दर्शन कर लीजिए। सुबह मंदिर के कपाट खुलने से लेकर देर रात तक देवी मां के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगी रहती है।
1: नवरात्रों के दौरान कालकाजी मंदिर में लगातार भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। आज नवरात्र का चौथा दिन है और आज भी मध्यरात्रि से आरती के बाद से ही लगातार भक्त कालकाजी मंदिर पहुंच रहे हैं और मां के दर्शन कर रहे हैं। बता दें, नवरात्रों के दौरान दिल्ली NCR सहित देश के अलग अलग राज्यों से लगातार भक्त कालकाजी मंदिर में पहुंच रहे हैं और जयकारों के साथ मां के दर्शन कर रहे हैं।
2: माता रानी के मैं दर्शन करने आई हूँ नवरात्रे में और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है माता रानी के दरबार में और भाई बहुत ही मनोकामना पूरी करती है माता रानी।
3: मतलब माँ के मंदिर में हर एक इच्छा पूरी होती है, जिसने जो भी चीज नहीं सुनी है ना, और जहाँ किसी का हल नहीं हुआ है वो इस दरबार पे माथा टेको, हर एक चीज मिलती है यहाँ पे।
4: खाली आदमी के जो भी मांगा है मुझे हमेशा मिला है। जय माता।
0: देश के दूसरे देवी मंदिरों में भी नवरात्र के चौथे दिन भारी भीड़ देखने को मिली। मां के इन भक्तों में कोई मां का मनपसंद भोग बनाकर लाया है और कोई चुनरी नारियल लेकर आया है।
5: शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन यानी कि मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा का आज दिन है और मां कुष्मांडा के दर्शन हम जयपुर से मां वैष्णो देवी मंदिर से आप सभी को कराते हैं, जहां आज का रंग नीला है तो नीले ही रंग में मां का भव्य श्रृंगार किया गया है। मां का जो दरबार है वो फूलों से सजाया गया है और इस मंदिर में सुबह से ही भक्तों की आवाजाही है। सभी भक्त मां को प्रसन्न करने के लिए फूल लेके आ रहे हैं।
6: हम हर महीने की महीने अलग अलग मंदिरों में 56 भोग लगाते हैं और कीर्तन करते हैं 2 घंटे का। इस बार हमने यहाँ दुर्गा माता के मंदिर में 56 भोग का थाल है हमारे पास में और हमारे माता की साड़ी चुंदड़ी हम सब लेके आए।
0: मान्यता है कि माँ स्कंद माता की पूजा करने से भक्त को ज्ञान की प्राप्ति होती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। पुरुलिया से अनिल गिरी और जमशेदपुर से नीरज तिवारी के साथ दिल्ली से आशुतोष कुमार, गुड न्यूज टुडे।
7: न्यूज वक्त पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको ले चलते हैं धन बाजार।
0: शेयर बाजार में आज गिरावट देखने को मिली। बुधवार 14 अक्टूबर को सेंसेक्स 252 अंक गिरकर 72,782 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 99 अंक फिसला, ये गिरकर 22,623 पर आ गया। सोने की कीमतों में लगातार तीसरे दिन गिरावट आई। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक दिल्ली सराफा बाजार में सोना 1,800 रुपए सस्ता हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 1,50,800 रुपए हो गई। वहीं चांदी भी 5,000 रुपए फिसली। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत घटकर 2,21,000 रुपए पर आ गई। डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली। बुधवार 14 अक्टूबर को रुपया 19 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह एक डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 95 रुपए 17 पैसे हो गई। ये लगातार चौथा सत्र है जब रुपए में बढ़त दर्ज की गई है।
7: फिल्म गन मास्टर G9 का नया गाना हुआ रिलीज। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड़ पर।
0: इमरान हाशमी और जेनेलिया डिसूजा की आने वाली फिल्म गनमास्टर G9 का नया गाना 2 दिन की जिंदगी हुआ रिलीज।

कुछ दिन पहले ही मेकर्स ने इस फिल्म का पहला गाना अफसाना बनाया आपने रिलीज किया था और अब दूसरा गाना रिलीज किया गया है जिसे फिल्म में इमरान हाशमी और जेनेलिया डिसूजा पर फिल्माया गया है। दो दिन की जिंदगी गाने को विशाल मिश्रा और श्रेया घोषाल ने गाया है। गाने के बोल जुनैद वसीम

0: कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस अब एक्टिंग करते भी नजर आने वाले हैं। फिल्म आज का महिषासुर से वो डेब्यू करने जा रहे हैं। मेकर्स ने इस फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर भी जारी कर दिया है। फिल्म की टीम पोस्टर लेकर सबसे पहले मुंबई के प्रसिद्ध मुंबा देवी मंदिर में आशीर्वाद लेने पहुंची। फिल्म के कास्ट में टेरेंस के अलावा खुशाली कुमार, पद्मिनी कोल्हापुरे, तिग्मांशु धूलिया, अभिमन्यु सिंह, चंदन रॉय और आयशा ऐमान शामिल हैं। हालांकि धीरज कुमार निर्देशित फिल्म आज का महिषासुर की रिलीज डेट के बारे में कोई जानकारी अभी सामने नहीं आई है। भगवान अन्नामलाई के दर पर नजर आए संगीतकार अनिरुद्ध रविचंदर। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई स्थित प्रसिद्ध अरुणाचलेश्वर मंदिर पहुंचकर उन्होंने भगवान अन्नामलाई के दर्शन किए और विशेष पूजा अर्चना की। अनिरुद्ध अक्सर इस मंदिर में आशीर्वाद लेने आते हैं। हाल ही में इंडिपेंडेंट सॉन्ग अरविंद को 10 मिलियन व्यूज मिलने के बाद उन्होंने ये आध्यात्मिक यात्रा की है। एक दिन बाद ही यानी 15 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म जेलर 2 के संगीतकार भी अनिरुद्ध ही हैं।
1: न्यूज पथ में खबरों के सफर को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: नवरात्र में अमरावती के प्राचीन अंबिका माता मंदिर में रोशन हो रहे मनोकामना के हजारों अखंड दीप, अद्भुत लग रहा पूरा मंदिर परिसर। देश भर में बन रहे मां के एक से बढ़कर एक पंडाल, रांची में द्वारका नगरी की थीम पर हूबहू बना पंडाल, तो रोहतास में मां वैष्णो देवी की गुफा की तर्ज पर सजा पंडाल। दिल्ली के द्वारका में तैयार हो रहा सबसे ऊंचा 221 फीट का रावण, 25 फीट ऊंचा है मुकुट, 60 टन लोहे का हुआ इस्तेमाल, 120 कारीगरों ने किया तैयार। बरेली में 8 साल बाद आसमान में गूंजा सारंग का शौर्य, हेलीकॉप्टर्स ने दिखाए हैरतअंगेज हवाई करतब, 15 मिनट तक आसमान में बनाई अलग अलग फॉर्मेशन। पुणे को मिला नया मेडिकल कॉलेज, केंद्र से मिला अप्रूवल, MBBS की होगी 50 सीट, शैक्षणिक वर्ष 2027-28 से होगी पढ़ाई शुरू, CM ने दी जानकारी। प्रदूषण पर नियंत्रण की तैयारी, अप्रैल 2029 से नई कारों और SUV के लिए BS7 उत्सर्जन मानक लागू करने की तैयारी, 3 चरणों में बदलेंगे कारों और ट्रकों के नियम। और न्यूज वक्त में खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहां यानी कि वायरल चौक पर। यहां देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।

भाव चेहरे पर उतर आए तो शब्द मायने नहीं रखते। गीत बांग्ला भाषा में है, पर जो ये भाषा नहीं बोलते समझते हैं, यकीनन बात उन तक भी पहुंच रही है, और ना भी पहुंचे तो दिल को सुकून तो दे ही रहे हैं। छोटी बच्चे के पांव की थिरकन, आंखों के इशारे, हाथों का घुमाव, सब मिलजुल कर एक कहानी कह रहे हैं। उसका ये अंदाज लोगों का दिल छू रहा है।

0: रानी लक्ष्मीबाई को हमने नहीं देखा, पर उनकी वीरता और दृढ़ता की जितनी कहानियाँ सुनी हैं, उससे मेल खाती है ये बच्ची। बचपन में ऐसी ही रही होंगी शायद, आत्मविश्वास से भरी, निडर, निर्भीक, हर मुश्किल का सामना करने को तैयार। तलवारबाजी में तो कोई इन्हें हरा ही नहीं सकता, बराबरी की टक्कर दे रही है। बच्ची का रूप, रंग, अंदाज सब लोगों का ध्यान खींच रहा है। लोग उनके इस हुनर की तारीफ कर रहे हैं। बॉलीवुड के गानों की तो बात ही निराली है। क्लासिक सुनना हो तो ओल्ड इज गोल्ड, नहीं तो फिर 90 के दशक के सदाबहार नगमे दुनिया भर में आज भी गुनगुनाए जाते हैं। दीवानगी चीन में भी है। देखिए कैसे दो कलाकार गोविंदा और करिश्मा कपूर के गाने पर थिरक रहे हैं। वेशभूषा अपनी है पर अंदाज हिंदुस्तानी है। इस वीडियो को लोग बार बार देख रहे हैं। इस उम्र में ये जलवा है तो सोचिए जवानी में क्या अंदाज रहा होगा इनका। साथ में युवा चेहरे भी हैं, पर जो बात दादी अम्मा के डांस में है वो किसी और में कहा। पूरी महफिल लूट ली इन्होंने तो। इसे कहते हैं असली डांसर। ये बुजुर्ग जिस एनर्जी के साथ ताल से ताल मिला रहे हैं, उसे देख कर आप डांस के प्रति इनकी दीवानगी समझ सकते हैं। खूबसूरती हो तो ऐसी कि कोई भी दो पल को ठहर जाए। इनकी खूबसूरती के भी चर्चे हैं, इंटरनेट पर वायरल हैं ये। इनके बारे में तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि ये बीजिंग की सबसे खूबसूरत महिला ट्रैफिक पुलिस हैं और एक इंटरनेट सेलिब्रिटी भी। ऐसे में लोग उन्हें देखने अलग अलग शहरों से पहुँचते हैं। इनके फैन फॉलोइंग का तो पता नहीं, पर खूबसूरत तो है ये।
1: न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी देश की राजधानी दिल्ली की। सर्दी की दस्तक के साथ दिल्ली में प्रदूषण के खतरे से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में सर्दियों के दौरान प्रदूषण की समस्या को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट अब पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गया है। आयोग ने दिल्ली नगर निगम को राजधानी में सड़कों और दूसरी जगहों की साफ सफाई के लिए 31 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दे दिया है। एमसीडी को आदेश दिया गया है कि शहर की सड़कों, डिवाइडर, फुटपाथ और खुले मैदानों पर जमा धूल, कूड़ा और निर्माण का मलबा हर हाल में साफ होना चाहिए। आयोग ने एमसीडी को चेतावनी दी है कि अगर प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को लागू करने में अधिकारियों या फिर एजेंसियों ने जरा सी भी लापरवाही बरती तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के साथ हुई बैठक में एमसीडी के सभी 12 जोन के उपायुक्त ने प्रदूषण से निपटने के लिए अपनी रिपोर्ट और आगे की रणनीति पेश की। इन अधिकारियों ने अपने इलाकों का पूरा ब्यौरा देते हुए बताया कि जमीनी स्तर पर सफाई अभियान तेज कर दिया गया है। सड़कों की सफाई के लिए मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन लगाई गई है। प्रदूषण के हॉटस्पॉट पर एंटी स्मॉग गन, जेटिंग मशीन और स्प्रिंकलर से लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है। आयोग का निर्देश है कि धूल रोकने के लिए टूटी सड़कों और गड्ढों की तुरंत मरम्मत की जाए, कच्चे हिस्सों को पक्का किया जाए और वहां ज्यादा से ज्यादा हरियाली विकसित की जाए। इसके साथ ही सर्दियों में खुले में कूड़ा जलाने और अवैध रूप से मलबा फेंकने पर भी कड़ी निगरानी रखने को कहा गया है। दिल्ली में प्रदूषण पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए एमसीडी को पीडब्ल्यूडी, डीडीए, दिल्ली जल बोर्ड और रेलवे के साथ बेहतर तालमेल बिठाने का भी निर्देश दिया गया है। जाहिर सर्दियों में हर साल दिल्ली की हवा जहरीली हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस बार दिल्ली में प्रदूषण को लेकर पहले से ही सख्त कदम उठाने पर जोर दिया जा रहा है। इस मुद्दे पर हमने दिल्ली में लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
2: इससे बहुत लाभ होगा। दिल्ली में हम जानते हैं कि कितना प्रदूषण होता है, एयर पॉल्यूशन इतना है गाड़ियों का लेकर के, तो अगर ऐसा आया है तो ये बहुत लाभदायक रहेगा और खास करके हम जो बच्चे हैं और आगे आने वाली जनरेशन है इसको बहुत फायदा मिलेगा।
3: तो कूड़ा हटने से पॉल्यूशन कम होगा?
2: बिल्कुल बिल्कुल कम होगा। कूड़ा होने से सबसे ज्यादा दिक्कत होता है गाय को, रोड पे चलने वाले लोगों को, और इसके साफ होने से बहुत फायदा होगा।
4: देखिए प्रदूषण जो है वो सारी चीजों का मेल है। जो अभी दिल्ली सरकार ने हमारी जो अभी मुख्यमंत्री जी है श्रीमती रेखा गुप्ता जी, उनने ये जो इनिशिएटिव ली है इसको मेरे जैसे सारे सिटीजन्स को, जितने भी दिल्ली में जितने भी लोग रह रहे हैं उसको बढ़ावा देना चाहिए। और मैं सबसे यही अपील करना चाहूँगा कि आप सब अपने अपने स्तर से, किसी को भी ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना है, बट अपने अपने स्तर से, चाहे वो घरेलू स्तर हो, हाउस होल्ड स्तर हो, या कोई अगर सोशल वर्कर है तो सोशल लेवल पर अपने अपने स्तर से इस चीज़ का सहयोग करें और इस चीज़ को बढ़ावा दें। क्योंकि कचरा जो है वो सिर्फ मात्र कचरे का ढेर नहीं है, अगर उसमें आग लगाइए तो एयर पॉल्यूशन बनता है। प्लास्टिक जैसे अगर हाई माइक्रोन के प्लास्टिक्स हैं तो अगर उनको लैंडफिल्स में डालिए, लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल डिग्रेडेशन होती है, एग्रीकल्चर लैंड बर्बाद हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कचरा एक बहुत बड़ा फैक्टर है प्रदूषण बढ़ाने में।
5: सर राहत क्या मिलेगी, इम्प्लीमेंट करेंगे उससे ज्यादा पता चलेगा, क्योंकि कई सालों से देखते हुए आ रहे हैं कोई इम्प्लीमेंटेशन तो होता नहीं है ठीक से। आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, उसके बाद क्या उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं, बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। तो अगर वो सही से इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर देखा जाएगा कि क्या इसका रणनीति अच्छी बनाई गई है कि बुरी बनाई गई है।
6: 1975 से प्रदूषण कम था।
7: अब
6: जितने गाड़ी बढ़ रही है, दिवाली के पटाखा छूट रही है।
1: और अब बात नवरात्र में उत्सव की दिव्य छटा की। देश में इस समय जगह जगह कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन चल रहा है। गुजरात से लेकर राजस्थान तक गरबा, डांडिया और रास की धूम मच रही है। इसमें संस्कृति और तकनीक का संगम देखने को मिल रहा है। पारंपरिक गरबा का आयोजन तो खैर हो ही रहा है, देखिए।

0: माँ दुर्गा की आराधना का विशेष त्योहार नवरात्र और इसमें होने वाले उत्सव की बात न हो, ये भला कैसे हो सकता है। कहीं गरबा, कहीं डांडिया तो कहीं रास की धूम मच रही है। ये सब सिर्फ मनोरंजन के लिए ही नहीं बल्कि इसके माध्यम से माँ अम्बे की आराधना की जाती है। गरबा डांडिया रास की मुख्य उत्पत्ति गुजरात में मानी जाती है, इसलिए हर वर्ष नवरात्र में विशेषकर गुजरात में जगह जगह इसकी दिव्य छटा बिखरती है। गरबा गुजरात का एक लोक नृत्य है जो देश दुनिया में मशहूर हो चुका है। नवरात्र में गुजरात के कई बड़े शहरों में गरबा नाइट्स का आयोजन होता है, जिनमें एक शहर सूरत भी है, जहां पारंपरिक गुजराती परिधान में बड़ी संख्या में महिला पुरुष सभी पूरे जोश में गरबा में मशगूल दिखे। अब ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो राजकोट की हैं, जिसमें पारंपरिक कपड़ों में मुंह पर मुखौटा जैसा लगाकर आपको कोई गरबा खेलता दिख रहा होगा। हालांकि आपको बता दें कि ये संस्कृति और टेक्नोलॉजी का अनूठा संगम है। गरबा में ताल से ताल मिलाता ये कोई इंसान नहीं बल्कि रोबोट है। यहाँ कड़वा पाटीदार समाज की ओर से आयोजित क्लब यूवी नवरात्रि महोत्सव में पृथ्वी नाम का रोबोट लोगों के साथ गरबा खेलता और ताल से ताल मिलाता नजर आया। अब राजकोट के ही बजरंग गरबी मंडल के चल रहे इस गरबा आयोजन को देखिए। यहाँ दोनों हाथों में मशाल और सिर पर आग में लिपटा हुआ गरबा लेकर भी लड़कियाँ माता रानी की आराधना करती हैं। आग से लिपटे गरबा और लड़कियों के माथे के बीच होता है सिर्फ एक कपड़ा, जिसे देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाते हैं। हालांकि फायर सेफ्टी की दुरुस्त व्यवस्था रहती है।
1: नहीं, डर नहीं लगता क्योंकि नव दुर्गा माँ हमारे साथ खेलती है, तो डरने की तो कोई बात ही नहीं है।
2: ये रस करते समय मुझे ऐसा फील होता है कि साक्षात नव दुर्गा हमारे साथ खेल रही है।
0: जामनगर में भी नवरात्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अलग अलग तरह के आयोजन देखने को मिल रहे हैं। शहर के राजपूतपुरा में जय श्री आशापुरा गरबी मंडल की ओर से अठंगा रास का आयोजन किया गया है, जिसमें रस्सियों के माध्यम से तालमेल और अनुशासन की प्रस्तुति देखने को मिलती है। भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़ा यह पारंपरिक रास श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहता है। वहीं काठियावाड़ के गरबी चौक में श्री रामदल अंबिका गरबी मंडल के नवरात्रि महोत्सव में अनूठा स्वस्तिक रास देखने को मिल रहा है। इस रास की विशेषता यह है कि ऊपर से देखने पर प्रतिभागियों की संरचना स्वास्तिक के आकार में दिखाई देती है। नीचे जलते अंगारों के बीच वो तालमेल और अनुशासन के साथ रास प्रस्तुत करते हैं। नवसारी जिले के गणदेवी शहर के कुंभारवाड़ इलाके में युवाओं की पारंपरिक डोरी रास का आयोजन देखने को मिल रहा है। इस रास की सबसे बड़ी विशेषता है इसमें इस्तेमाल होने वाली डोरी। डोरी के साथ डांडिया बांधकर रास खेला जाता है। नृत्य के दौरान डोरियां इस तरह एक दूसरे में गूंथ जाती हैं, जैसे कि किसी महिला की चोटी गूंथी जा रही हो। नृत्य के दौरान ही अपने आप खुलती भी जाती है। गुजरात के अलावा राजस्थान में भी गरबा और डांडिया रास का बहुत गहरा और पुराना संबंध है। सीकर जिले के फतेहपुर शेखावटी में गरबा महोत्सव की धूम मच रही है। चुरू रोड स्थित देवड़ा स्कूल के मैदान में संगीत की धुन पर हर कोई थिरकता नजर आ रहा है। यहां डांडिया और गरबा की मनोरम छटा बिखर रही है। विशेषकर पारंपरिक रूप से सजी धजी महिलाएं इस महोत्सव का पूरे जोश के साथ आनंद लेती नजर आ रही हैं। राजकोट से रौनक मजीठिया, जामनगर से दर्शन ठक्कर, नवसारी से रौनक जानी, फतेहपुर शेखावटी से राकेश गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: बोलीविया के एक किसान ने प्लास्टिक वेस्ट से बनाया डीजल। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां दुनिया भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
0: बोलीविया के किसान एडसन मचाका ने प्लास्टिक वेस्ट से डीजल बनाने की अनूठी तरकीब ढूंढी है। डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच इनके लिए खेती करना महंगा हो गया था, सो इन्होंने एक प्रयोग किया जो अब चर्चा में है। मचाका अपने गांव और आसपास के इलाकों से प्लास्टिक की थैलियां और पुराने टायर इकट्ठा करते हैं और फिर प्लास्टिक और दूसरे कचरे को एक खास बंद मशीन में गर्म करते हैं, जिससे तेल जैसा पदार्थ निकलता है और इसको ही आगे प्रोसेस करके ईंधन बनाया जाता है। मचाका के इस छोटी सी यूनिट में रोज करीब 80 से 150 लीटर तक पेट्रोल और डीजल बनाया जा सकता है। फिलहाल मचाका इसका इस्तेमाल अपने उपयोग के लिए करते हैं। ये तस्वीर शिनजियांग में कपास केंद्र से आई है, जहां इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर्स ने कॉटन हार्वेस्टर मशीन की ताकत आजमाई। असल में ये एक मजेदार रेस की तरह था, जहां एक तरफ लोगों ने हाथों में तोड़कर कॉटन इकट्ठा किया, तो वहीं दूसरी ओर एक मशीन है जो उसी काम को मिनटों में कई गुना तेजी से निपटा रही है। इन्फ्लुएंसर्स के मुताबिक ये मशीन अकेले 600 कॉटन चुनने वाले मजदूरों की जगह ले सकती है। साथ ही ये लगभग हर 10 मिनट में कपास की एक बंधी हुई गांठ भी तैयार कर देती है। स्थानीय किसानों के मुताबिक वो खेत की जुताई और बुवाई के लिए बड़ी मशीनों, फसल पर छिड़काव के लिए ड्रोन और कपास तोड़ने के लिए कॉटन हार्वेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। मशहूर डच आर्टिस्ट विंसेंट वैन गॉग की एक पुरानी पेंटिंग न्यूयॉर्क में सोथबीज की नीलामी में बिकने जा रही है। उससे पहले हांगकांग पहुंचे इस पेंटिंग को देखने के लिए लोग कतारों में खड़े नजर आए। इस पेंटिंग को अब से पहले पिछले 60 सालों में किसी भी पेंटिंग प्रदर्शनी में नहीं देखा गया है। फूलों से लदे चेस्टनट के पेड़ वाली ये ऑयल पेंटिंग वैन गॉग के आखिरी दिनों की सबसे अहम कृतियों में से एक है, जो उन्होंने पागलखाने से आने के बाद बनाए थे। 18 नवंबर को न्यूयॉर्क में सोथबीज की नीलामी में इस पेंटिंग को 12 ऐसी कलाकृतियों के कलेक्शन के हिस्से के तौर पर बेचा जाएगा, जिन्हें लंबे समय से नहीं देखा गया है। इनमें पॉल सेजान और क्लाउड मोनेट की कृतियां भी शामिल हैं। नीलामी में इसके लगभग $180 मिलियन में बिकने की उम्मीद है।
3: ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मजाइएगा। ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी सोच।
5: 80% असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को
11: को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी।
1: एशियाई खेलों के भारतीय दल से गुरुवार को मिलने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खेल जगत से जुड़ी कुछ और इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले खेल चक्कर।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार 15 अक्टूबर को दिल्ली में एशियन गेम्स 2026 में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल से मुलाकात करेंगे। शाम करीब 4:30 बजे मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय दल के साथ बातचीत करने के साथ पीएम मोदी उन्हें संबोधित भी करेंगे। जापान के एची नागोया में आयोजित एशियाई खेलों में भारत ने 85 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया है। 85 पदकों में 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल हैं। आईसीसी की जारी ताजा T20 रैंकिंग के टॉप 10 में भारत के 4 बल्लेबाज शामिल हैं। बल्लेबाजी की रैंकिंग में ईशान किशन पहले और अभिषेक शर्मा दूसरे नंबर पर हैं, जबकि 3 स्थान के छलांग लगाकर भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। लखनऊ में वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज के पहले मैच में करियर का पहला शतक जड़ने का उन्हें फायदा मिला है, जबकि टॉप 10 में भारत के चौथे बल्लेबाज तिलक वर्मा 9वें नंबर पर हैं। गेंदबाजों की रैंकिंग में भारत के अक्षर पटेल 9वें नंबर पर हैं और ऑलराउंडर की रैंकिंग में हार्दिक पांड्या 8वें नंबर पर हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस सीरीज में फिलहाल टीम इंडिया 2-1 से आगे है। चौथा मैच जीतने पर सीरीज में उसे अजेय बढ़त हासिल हो जाएगी, जबकि वेस्टइंडीज की टीम चौथे मुकाबले में सीरीज में 2-2 की बराबरी करने के इरादे से मैदान पर उतरी है। आईपीएल 2027 से पहले सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स की फ्रेंचाइजी ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत बाएं हाथ के तेज गेंदबाज टी नटराजन एक बार फिर अपनी पुरानी टीम सनराइजर्स हैदराबाद में लौट आए हैं, जो 5 करोड़ रुपए की संशोधित फीस पर वापस हैदराबाद की टीम से जुड़ रहे हैं। वहीं युवा लेग स्पिनर जुशान अंसारी अब दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा होंगे, जो अपनी मौजूदा 40 लाख रुपए की फीस पर टीम से जुड़ने जा रहे हैं।
1: इसी के साथ न्यूज़पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
1: दुर्गा सप्तशती के किस अध्याय के पाठ से देवी की भक्ति मिलती है? दुर्गा सप्तशती के कौन से अध्याय का पाठ व्यापार में सफलता दिलाता है? और दुर्गा सप्तशती के किस अध्याय के पाठ से संकट कट जाते हैं? कौन से हैं दुर्गा सप्तशती के चमत्कारी अध्याय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे
8: गुड न्यूज़ टुडे पर।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है।
9: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
10: नवरात्र में अमरावती के प्राचीन अंबिका माता मंदिर में रोज हो रहे हैं मनोकामना के हजारों अखंड दीप, अद्भुत लग रहा है पूरा मंदिर परिसर। देश भर में बन रहे हैं मां के एक से बढ़कर एक पंडाल, रांची में द्वारिका नगरी की थीम पर हूबहू बना पंडाल, तो रोहतास में मां वैष्णो देवी की गुफा की तर्ज पर सजा पंडाल। बरेली में 8 साल बाद आसमान में गूंजा सारंग का शौर्य, हेलीकॉप्टर से दिखाए गए हैरतअंगेज हवाई करतब, 15 मिनट तक आसमान में बनाई अलग अलग फॉर्मेशंस।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
10: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं दशानन की। चंद रोज बाद ही विजयादशमी के दिन जिसका दहन हो जाएगा, अधर्म और अहंकार के प्रतीक रावण का पुतला जलाना धर्म और अच्छाई की जीत का संदेश होता है। रावण जैसा शक्तिशाली दिखाने के लिए उसके विशाल पुतले बनाए जाते हैं। आज आपको दिल्ली में बनाए गए एक ऐसा ही पुतला हम दिखाने जा रहे हैं जिसकी ऊंचाई जो है 22 मंजिल इमारत जितनी है, और दावा यह किया जा रहा है कि देश का सबसे ऊंचा पुतला है। इसके साथ ही देश को दूसरे शहरों में भी बनाए जा रहे पुतलों पर भी हम बात करेंगे, तस्वीरें दिखाएंगे, साथ ही साथ आपको दिखाएंगे दिल्ली की एक हाईटेक रामलीला जिसमें हमेशा की तरह रावण के किरदार का प्रभावशाली अभिनय दिखेगा। आखिर क्यों चुनौतीपूर्ण होता है रावण का अभिनय, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत रावण के विशालकाय पुतले के साथ करते हैं जिसे दिल्ली के द्वारका में बनाया गया है विजयादशमी पर दहन करने के लिए। आमतौर पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले काफी ऊंचे बनाए जाते हैं, लेकिन दिल्ली में इस बार 22 मंजिला इमारत बराबर रावण तैयार किया गया है जिसे रंगीन कपड़े और भव्य मुकुट से सजाया गया है। दिल्ली ही नहीं, आपको बता दें देश के दूसरे इलाकों में विशालकाय पुतले बनाए गए हैं। चलिए आपको ऐसे ही कुछ पुतले दिखाते हैं।

0: जगजीवन में गूंज रहा लंकेश का अट्टहास, क्योंकि रणभूमि में अभी अपराजय है समर राम रावण का। विजय के लिए इधर शक्ति पूजा में लीन है मर्यादा पुरुषोत्तम, उधर आखिरी युद्ध के लिए तैयार हो रहा दशानन। रामकथा में प्रतीक्षा है उस घड़ी की जब लंकेश धराशाही होगा, माता सीता का प्रभु राम से मिलन होगा, साथ ही अधर्म के प्रतीक रावण का दहन होगा।
1: जले पाप की लंका।
0: हालांकि दशमी में कुछ देर है, लेकिन रावण के पुतले बनकर सजकर तैयार हैं। देखिए जैसे रावण का अहंकार वैसे पुतला विशाल, साथ में भाई कुंभकर्ण और बेटा मेघनाथ। ये तस्वीरें दिल्ली के द्वारका की हैं, जहां 222 फीट का रावण बनाया गया है। करीब 22 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई है इस पुतले की, और दावा किया जा रहा है कि ये देश का सबसे ऊंचा रावण है।
2: रावण तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन दिल्ली के द्वारका में एक ऐसा रावण तैयार किया गया है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा रावण है। और जो आप हाईराइज सोसाइटीज देखते हैं, किसी 22 मंजिला इमारत के बराबर का ये रावण बनाया गया है, और बार बार इसके आयोजक दावा कर रहे हैं कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा रावण अब तक का बनाया गया है। आपको बता दें कि लगभग 3 महीने का समय लगा है इस रावण को तैयार करने में। 120 मजदूर इसमें लगातार लगे रहे, वो दिन रात काम करते रहे, तब जाकर ये 3 महीने के भीतर तैयार हो पाया है। 7 टन लोहा इसे बनाने में इस्तेमाल किया गया है, और ये टिका रहे आसानी से, आंधी आए हवा तेज चले तो गिरे नहीं। इसके लिए लगभग 10 फीट नीचे गहरा गड्ढा किया गया है, और उस 10 फीट नीचे गहरे से इसकी नींव डालनी शुरू की गई थी। 40 लाख के आसपास इसका खर्च आया है। चंडीगढ़ के कारीगर इसमें बुलाए गए थे, और कहा जा रहा है कि लगभग जो भी यहाँ पर आप रावण देख रहे हैं, इस रावण के साथ साथ जैसे कि दूसरे और पुतले बनते हैं मेघनाथ और कुंभकर्ण के भी, उनके पुतले भी लगभग 90-90 फीट के बनाए गए हैं।
0: वैसे तो रावण अधर्म और अत्याचार का प्रतीक है, पर यहाँ जो पुतला बना है उसकी भव्यता देखने वाली है। वेलवेट से तैयार रंगीन कपड़े और उस पर ऐसा चमकता दमकता मुकुट जो करीब 25 फीट ऊंचा है। हाँ, एक बात और, ये कपड़े वाटरप्रूफ है, इसलिए बारिश हुई तो रावण गलेगा नहीं, उसे शर्तिया जलना ही होगा।
3: 221 फीट का विशाल रावण तो दिख ही रहा है। इसको हमने जब स्थापित करा अपने द्वारका श्री रामलला सोसाइटी प्रांगण में, हमने 12 फुट पहले गहरा गड्ढा खोदा है, उसके अंदर इसको 12 फुट इसके स्ट्रक्चर को डाला है, ताकि कोई भी आंधी आए चाहे तूफान आए, ये अपनी जगह से टस से मस ना हो। और आपने देखा होगा हमारी रामलला, ये अपने रावण के चारों तरफ हमने लोहे की वायर से एकदम कोने कोने पे इसको बांध रखा है, ताकि इसकी पोजीशन अपनी जगह से ना हिले।
2: कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया, कैसे सोचा गया इसके बारे में?
3: देखिए, हमारी ये द्वारका श्री रामलला सोसाइटी पिछले 15 वर्षों से लगातार द्वारका सेक्टर 10 के अंदर रामलला करवाती आ रही है, और हमारा हर साल का प्रयास रहता है कुछ ना कुछ अपने राम भक्तों को कुछ ना कुछ नया करके दिखाएं, ताकि एक समाज में एक हमारी मैसेज भी अच्छा जाए और कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट भी सबको देखने को मिले। जैसे आपको पता होगा 2024 में भी हमने देश का सबसे बड़ा रावण हमने यहाँ पे दहन करा था, जिसकी हाइट थी 221 फीट। अब की बारी हम अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए 222 फुट का रावण दहन करने जा रहे हैं, और जैसे आप इसकी सुंदरता देखोगे, हमने पूरे के पूरे रावण के ऊपर आप देखो वेलवेट के कपड़े से इसकी सजावट करी हुई है। साथ साथ जो आप इसका फेस देखोगे रावण का, ये बिल्कुल पूरा का पूरा हैंड पेंटेड है। हमारे इसमें दूर दूर से कलाकार आए थे, उन्होंने इसको पूरी ढंग से, मैं कह सकता हूँ इस पूरे रावण के अंदर 3.5 महीने से ज्यादा समय लगते हुए इतना विशाल का रावण आपके सामने प्रस्तुत किया गया है।
0: इस विशाल का रावण का दहन भी खास अंदाज में होगा। भगवान राम का तीर तो चलेगा, लेकिन असल में दहन रिमोट के जरिए होगा। पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे, इसलिए ग्रीन क्रैकर्स का इंतजाम है। यानी कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, आखिरकार बुराई के प्रतीक रावण को खत्म होना है।
2: हम सबको ये बात हमेशा याद रखनी है कि रावण कितना भी भव्य हो, दिव्य हो, ऊंचा हो, आखिर में उसे राख होकर मिट्टी में ही मिलना है, और उसे ही कहते हैं कि बुराई पर सच्चाई ने जीत हासिल कर ली।
0: रावण की जैसी छवि है, कारीगर उसके पुतले में वैसा ही भाव देने का प्रयास करते हैं। रौबदार चेहरा, ऐठी हुई मूछ और दूर से नजर आने वाली विशाल आकृति। यह तस्वीर करनाल की है, जहां रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले लगभग तैयार हैं। कुछ अलग करने की ललक में यहां भी इस बार 75 फुट का पुतला तैयार किया गया है। खास बात यह है कि दहन से पहले इस रावण की गर्दन घूमेगी।
4: करनाल का जो पुतला है वो 75 फुट का है इस बार, और इस बार जो है रावण की गर्दन घूमेगी। जो दर्शक आएंगे देखने के लिए, रावण उनको अपना आप देखेगा घूम घूम करके। लगभग जो है हम अपने पिताजी के साथ में ये काम करते थे छोटे से ही, बचपन से ही। लगभग जो हमारे पास काम है ये एक महीना लगता है इसके अंदर। शुरू जो है हमने जन्माष्टमी के बाद से कर रखी है। इसमें कोई भी कास्ट या धर्म का कोई मामला नहीं है। इंसान का काम करना एक क्रम है, जो इंसान का क्रम है हमने अपने पिताजी से सीखा। और जाहिर सी बात है, जो इंसान जिस काम को करता है इंसान उसी के पास जाता है काम कराने के लिए। कोई भी इंसान,
5: लोग आपके पास आते हैं?
4: हमारे पास लगभग सभी जगह से आते हैं काम कराने के लिए, लेकिन फिलहाल जो है हम करनाल डिस्ट्रिक्ट के ही काम पकड़ रहे हैं।
0: इन कारीगरों को रावण के पुतले बनाने का लंबा अनुभव है। 2 दशक से ज्यादा वक्त से दोनों भाई ये काम करते आ रहे हैं और भली भांति जानते हैं कि विजयदशमी पर दहन से पहले रावण का ऊंचा पुतला लोगों को आकर्षित करता है और इसके जलने पर खुशी मिलती है। इसलिए कारीगरों ने दहन के लिए शानदार आतिशबाजी का भी इंतजाम किया है।
6: इस बार हम कलर भी अच्छा देने वाले हैं और गर्दन भी घुमाएंगे। गर्दन के साथ जो आतिशबाजी होती है वो साइडों में भी लगाएंगे हम। गर्दन बहुत अच्छी तरह से घूमेगी और दशहरा भी बहुत ही अच्छा बनेगा जो बात है जी। और हम इसमें 2 महीने से इसमें लगे हुए हैं काम में, रात दिन काम चल रहा है हमारा। आसपास के गांवों के भी काम है, तरावडी के भी काम है, नीलोखेड़ी के भी काम है, करनाल का भी है, और करीब करीब सारे ही गांवों के काम है हमारे पास। एकता का तो ये है जी, हमारे दादाजी करते थे, हमारे पिताजी करते थे और अब हम करते हैं जी।
0: रावण बुरा तो है, पर दहन के लिए तैयार हो रहे उसके पुतले कुछ परिवारों के लिए कमाई का जरिया है। देखिए, राजस्थान के कोटा में रावण के छोटे बड़े पुतले तैयार हैं। एक तरफ लोग दशहरे के लिए पुतले खरीद रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कारीगर दिन रात मेहनत कर इन्हें तैयार करने में जुटे हैं। बांस, बल्ली, अखबार और रंगों से तैयार होने वाले इन पुतलों के पीछे कारीगरों का हुनर और कई दिनों की मेहनत छिपी है।
7: 5 साल से बना रहे कोटा में, अब 6 साल हो जाएंगे। हम पहले बांस लाते हैं, बांस के लकड़ी के ढांचे बनाते हैं, ढांचे से फिर पेपर आते हैं, पेपर लगाते हैं, पेपर से फिर रंगील पेपर आते हैं। 3 बार होता है ये मेहनत। फिर इससे मूछे हुए, मुंह हुए, कांखे ये बनाते हैं। 400 से 25 हजार तक है हमारे पास रावण। अब हो चुका है ये नॉर्थ आ रहे, नॉर्थ से सब चालू हो रहे हैं।
0: एक पुतला तैयार करने में बांस की कटाई से लेकर ढांचा बनाने, कागज चढ़ाने और रंगाई करने तक के कई चरणों से गुजरना पड़ता है। हर काम में मेहनत लगती है, समय लगता है। हाँ, पर 2 से 5 हजार तक की लागत वाले ऐसे पुतले 20 हजार तक में बिक जाते हैं। यानी बुराई के बावजूद रावण कमाई करा देता है।
8: माल तो कम्प्लीट हो रहा है, अभी 2-3 बाकी है बड़े बड़े जो सब बना रहे हैं सियालदह सर्किल दशहरा मैदान के पास। अब तैयार हो गए आधे तो 15 फीट 20 फीट के तो तैयार हो गए, 4 फीट के भी तैयार हो गए। अब बड़ों की बारी है।
0: रावण दहन का धार्मिक पक्ष है, पर इन कारीगरों के लिए दशहरे का सीजन कमाई का भी अवसर होता है। जब रावण का पुतला जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया जाएगा तो उसमें कई दिनों तक मेहनत करने वाले इन कारीगरों का योगदान भी शामिल होगा। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: भगवान राम जहां मर्यादा पुरुषोत्तम है, वहीं रावण अहंकार और अधर्म की पहचान है। कौशल्या नंदन करुणा से भरे हैं तो रावण अभिमान से। रावण की इन बुराइयों को मंच पर दिखाना चुनौतीपूर्ण होता है, इसलिए राम कथा की प्रस्तुति में रावण का किरदार हमेशा फोकस में रहता है। गरजती हुई आवाज, दर्प से भरी हंसी और भयभीत करने वाली भाव भंगिमाएं, रावण की किरदार दर्शकों को रोमांचित करता है। तो चलिए आपको दिल्ली की एक हाईटेक रामलीला दिखाते हैं और रावण की भूमिका निभाने वाले एक्टर से मिलवाते हैं।

0: दर्प से भरी आवाज, अभिमान से भरी हंसी, लंबा चौड़ा कद और भयभीत कर देने वाली भाव भंगिमा। आसान नहीं है रावण का किरदार निभाना। जितना प्रभावशाली होगा रावण, उतना ही असरदार होगा राम कथा का ये संदेश कि आखिरकार अधर्म पर धर्म की विजय होगी। बुराई का नाश होगा और इसीलिए दिल्ली की इस रामलीला में रावण का चरित्र निभाने वाले सिद्धांत ने खास तैयारी की है।
1: रावण नोन फॉर इट्स लाफ, जैसे वो हंसता है, आपकी हंसी है क्या उस तरह से? दिखाना पड़ेगा आपको। तो ब्रॉडवे रामलीला के ग्रीन रूम में है हम, और मेरे साथ इस रामलीला के विशाल काय, भीम काय, रावण मेरे साथ में है। और फिलहाल रावण ग्रीन रूम में कतार में है। कतार में क्यों? क्योंकि अभी उनका मेकअप नहीं हुआ है, मेकअप उनका होना है, लेकिन उसके पहले ही हमने उन्हें पकड़ लिया है। सिद्धांत नाम है इनका, और पेशे से बिजनेसमैन है। पिछले 6 साल से वो रावण का रोल प्ले कर रहे हैं।
0: रामलीला में जहाँ जहाँ रावण की एंट्री होती है, कथा में नाटकीयता आती है। दशानन की गरजती आवाज जब गूंजती है तो दर्शकों को रोमांच का अनुभव होता है।

0: इसीलिए किसी भी कलाकार के लिए रावण का अभिनय एक चुनौती होती है।
1: चुना किसने कि रावण प्ले करना है, जितनी आपकी हाइट है, जैसा आपका शरीर है, ऑर्गेनाइजर्स ने या फिर डायरेक्टर ने चूज किया, या आपकी ही चॉइस थी कि मैं शायद इसी रोल के लिए बनाऊं?
2: सर, यहाँ पर चॉइस वाला सिस्टम तो खत्म हो जाता है, क्योंकि जिस प्रोडक्शन में हम काम कर रहे हैं ये मतलब कला दर्शक वाला है, तो यहाँ पर प्रॉपर ऑडिशन, एक पूरी सीरीज है जिससे हम करेक्टर के अंदर चुने जाते हैं, तो प्रॉपर ऑडिशन दिए हमने, तीन चार लोगों के साथ मिलकर ऑडिशन दिया, अलग अलग करेक्टरों के लिए ऑडिशन दिया, उसमें से एक रावण भी था। मेरे को इसके साथ साथ हनुमान, परशुराम, इनके लिए भी ऑडिशन देने का मौका मिला था। बट हाँ, ये बोल सकते हैं कि डायरेक्टर और ऑर्गेनाइजर सबको मेरा रावण किरदार काफ़ी पसंद आया, तो और सौभाग्य से मुझे ये किरदार निभाने का मौका मिला।
1: ब्रॉडवे रामलीला की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर पारंपरिक तरीके के साथ साथ आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भरपूर दिखाई पड़ेगा। 3000 स्क्वायर फीट में यहाँ पर LED लगाई गई हैं, ये सारी 3D LED हैं, और ऐसा 3D माहौल तैयार होता है जैसे आप किसी 3D सिनेमा में महसूस करते हैं। जैसे आपको लगता है कि आप देखते हैं तो आप बिल्कुल उसी माहौल में पहुँच गए, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं जो स्क्रीन पर है, ये वो सीन यहाँ पर दिखाया जाएगा जब रावण कैलाश पर्वत पर जाकर तपस्या करता है। जब दर्शक इस सीन को देखते हैं तो वो भी अपने आप को बिल्कुल उसी जगह महसूस करते हैं। ये जो सीन है यहाँ पर केवट का जो सीन है वो दर्शाया जाएगा, और बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप किसी समंदर, किसी नदी के बीचों बीच पहुँच गए हैं। 3D टेक्नोलॉजी खासियत यही है। ऐसे देखिए, अलग अलग जो सीन है, आप ये देखिए, ये जनकपुर है, और कैसे सीता स्वयंवर के समय जब सभी को इन्विटेशन गए थे तो कैसे पूरे जनकपुर को सजाया गया, धजाया गया, सुंदर बनाया गया, ये पूरा सीन इस LED स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा है। और जब दर्शक इसे देखते हैं तो बार बार महसूस करते हैं कि जैसे ये सब कुछ उनकी आंखों के सामने घटित हो रहा है।
0: 100 से ज्यादा कलाकार, 3D विजुअल डिजाइन और आधुनिक विजुअल इफेक्ट्स, सभी का संगम जब स्टेज पर दिखेगा तो यकीनन असरदार होगा। आर्यन हेरिटेज फाउंडेशन की ओर से आयोजित रामलीला की इस साल थीम है चरित्रों का अध्ययन।
3: हम लोगों का ये 12वां साल है आपकी बार हम लोगों ने ये कर रहे हैं, और LED में हमने सिर्फ LED प्लेन LED नहीं लगाई, हम लोगों ने जो है ना इसको 3D में लगाया है। आप देखेंगे, जो अगर महल का सीन है तो आपको लगेगा कि ये महल वास्तव में महल जैसा लग रहा है। अगर आप पार्क में का सीन देखेंगे तो लगेगा आपको पार्क का सीन है। हम लोग 3 घंटे में जो है ना पूरी रामायण डेली जो है वो दिखाते हैं, और इसमें सबसे अच्छी बात ये है हमारी, हम शुद्ध हिंदी में हम लोगों ने इसको बनाया है, जिसको बच्चे जो बहुत आसानी से और बढ़त तरीके से इसको

0: एक दोस्त के घर पे गया था, उसके बच्चे 4 या 5 साल का बच्चा हुआ, उसको एक ही करेक्टर का नाम याद था उसकी, जैसे राम लक्ष्मण सीता वगैरह जो है इनके उनका तो नाम था ही था, सुमित्रा का नाम जो केकई वगैरह का नाम, इनका सबका नाम याद था, तो
1: ये भी बड़ा अच्छा कि बच्चे सीखे आज के।
0: बिल्कुल, और मेन अच्छी हमें ये लगता है कि भी इससे बच्चे जो है हमारे को हमारी संस्कृति के बारे में, हमारी रामायण के बारे में, राम के आचरण के बारे में बहुत अच्छा सीखते हैं और बहुत हमें अच्छा लगता है और इसमें हम लोग चेंजेज भी करते रहते हैं।
2: वैसे तो दिल्ली में कई मशहूर रामलीला का मंचन होता है, लेकिन पीतमपुरा के इस रामलीला में तकनीक का हो रहा इस्तेमाल आकर्षित करने वाला है। इसके अलावा कलाकारों की मेहनत भी साफ दिखती है। यहाँ सीता का रोल वो कलाकार निभा रहे हैं जो अयोध्या में पिछले 2 साल से होने वाली रामलीला में सीता का रोल निभा रहे हैं।
3: निकिता थपलियाल मेरे साथ में है, सीता बनी है यहाँ पर, और खास बात ये है कि अयोध्या में जो रामलीला होती है वहाँ भी पिछले 2 साल से सीता का रोल निकिता ही प्ले कर रही हैं। कथक डांसर हैं, आर्टिस्ट हैं, इतना लंबा परिचय है, लेकिन इन सारे परिचय के बीच में जब आपको कोई कहता है कि सीता हैं ये, पहला फीलिंग क्या होता है?
4: मुझे बहुत खुशी होती है कि एक डिवाइन कैरेक्टर जब किसी को भी अगर प्ले करने को दिया जाए तो वो हमारी भावनाएं जुड़ी होती है। हम पुराने टाइम से देख रहे हैं, रामायण हो गई, महाभारत हो गई, तो उस टाइम से कहीं ना कहीं सबके मन में होता है कि कोई ना कोई हम कैरेक्टर करें, और माता सीता जो मतलब हम लोगों के दिलों के इतने करीब हैं, अगर उसका कैरेक्टर करने को मिल रहा है तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं हमेशा ग्रेटफुल हूँ भगवान के लिए, और जो मुझे ये अपॉर्चुनिटी दे रही है मैं उनके लिए भी बहुत ग्रेटफुल हूँ।
2: इस अद्भुत रामलीला में सिर्फ राम कथा नहीं है, बल्कि रामायण के प्रमुख पात्रों के व्यक्तित्व, उनके निर्णयों और उनके आदर्शों को समझने समझाने का प्रयास है। जेन और अल्फा जनरेशन को रामलीला से जोड़ने के लिए रामलीला में दादा और पोते का संवाद भी रखा गया है।
0: हमने इसमें अभी की बार कुछ सीन जो है ना वो वाल्मीकि के रामायण का डालना चाहा है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग जैसे स्वयंवर है, तुलसीदास जी के रामायण में अलग अलग देशों से राजा आते हैं, वो धनुष उठाने की कोशिश करते हैं, और जब धनुष पे राम जी पतंजलि चढ़ाते हैं तो स्वयंवर के बाद में परशुराम जी जो है वो आते हैं और लक्ष्मण जी के साथ में संवाद करते हैं। वाल्मीकि के रामायण में ऐसा नहीं है। वाल्मीकि के रामायण में प्रतिज्ञा तो वही होती है, और विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण जी को जनक जी के पास लेके आते हैं तो उसको बता रहे होते हैं कि भाई ऐसे ऐसे हमने प्रतिज्ञा की हुई है, तो वहाँ पे जाए राम जी जाए वो धनुष को पतंजलि चढ़ाते हैं, और जब बारात वापस जा रही होती है तब रास्ते में जाए उनको परशुराम जी मिलते हैं, और उनका संवाद लक्ष्मण से नहीं होता, राम जी और दशरथ जी से होता है। तो ये इसमें हमने फिर दादा और पोते को इसलिए लेना पड़ा क्योंकि हमने जो देखी है रामायण उसमें परशुराम जी आते हैं और लक्ष्मण जी के साथ में संवाद होता है। बच्चे पूछते हैं दादा से, दादा हमने तो ऐसी रामायण नहीं देखी थी, या आप हमें क्या दिखा रहे हैं? तो इस प्रकार से हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा अच्छी से अच्छी चीजें जोड़े हैं।
3: मतलब इस रामायण के बीच में एक दादा पुत्र करेक्टर भी आता है जो आज के जमाने का है,
0: जमाने के हिसाब से उसको कनेक्ट करता है, और हमने इसमें कुछ चीजें साइंस टेक्नोलॉजी से लेके भी मतलब जोड़ने की कोशिश की है, जैसे वेलोसिटी, जैसे कि धनुष का भारी होने का उसका क्या मतलब है, हम लोग पूजा करते हैं तो वो क्यों करते हैं, दादाजी आरती कर रहे होते हैं तो बच्चे पूछते हैं जी दादाजी आरती करते हैं इससे क्या होता है, राम जी सब कुछ कर सकते हैं तो फिर उनको क्या जरूरत थी कि भैया वनवास जाकर रोज सब करने की। तो बहुत सारी चीजें हमने ऐसी दिखाने की कोशिश की है जो आज के रेल के हिसाब से भी रेलेवेंट है।
2: पारंपरिक कथा के साथ आधुनिक तकनीक का मेल, यानी कोशिश है कि रामायण का संदेश नई पीढ़ी तक प्रभावी ढंग से पहुंचे। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: देखिए, भगवान राम के व्यक्तित्व में सौम्यता है तो रावण के व्यक्तित्व में अभिमान, ये फर्क रामलीला के दौरान दोनों के संवाद से भी साफ तौर पर झलकता है, और इसीलिए रावण की भूमिका निभा रहे कलाकारों के लिए संवाद अदायगी महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए आपको ऐसे ही संवादों की कुछ झलक दिखाते हैं।

0: का मंडन करके त्रिलोक विजेता रावण को डराने की चेष्टा कर रहे हो, वो भी उस त्रिलोक विजेता लंकापति रावण को, जिसके भय से भयभीत होता है। रावण
1: ये बनवासी ठोक रहे लंकापति नरेश रावण से युद्ध करेंगे। वाह, हे राम, याद रख मेरे जीते जी, तुम लंका में प्रवेश नहीं करवाओगे, ये रावण का वादा है। राम, युद्ध करो राम, चलाओ अपने बाण। राम तो वन वन भटक रहा होगा, जंगल ढूंढ रहा होगा, बिगड़ को, हिरण को ढूंढ रहा होगा तेरा राम।

0: मैं हूँ रावण, जगत नरेश रावण, मैं वो रावण हूँ जिसकी गर्जना पर से गर्भवती स्त्रियों की कोख तक गिर जाती है। मैं हूँ वो रावण।
1: कायर शत्रु की

खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
7: नवरात्र में अमरावती के प्राचीन अंबिका माता मंदिर में रोष हो रहे हैं मनोकामना के हजारों खंड दीपक, अद्भुत लग रहा है पूरा मंदिर परिसर। देश भर में बन रहा है मां के एक से बढ़कर एक पंडाल, रांची में द्वारिका नगरी की थीम पर हूबहू बना पंडाल, तो रोहतास में मां वैष्णो देवी की गुफा की तर्ज पर सजा पंडाल। बरेली में 8 साल बाद आसमान में गूंजा सारंग का शौर्य, हेलीकॉप्टर से देखा हैरत अंगेज हवाई करतब, 15 मिनट तक आसमान में बनाई अलग अलग फॉर्मेशंस। पुणे को मिला नया मेडिकल कॉलेज, केंद्र से मिला अप्रूवल, MBBS की होंगी 50 सीट्स, शैक्षणिक वर्ष 2027-28 से होगी पढ़ाई शुरू, मुख्यमंत्री ने दी जानकारी। प्रदूषण पर नियंत्रण की तैयारी, अप्रैल 2029 से नई कारों और SUV के लिए BS7 उत्सर्जन मानक लागू करने की तैयारी, 3 चरणों में बदलेंगे कारों और ट्रकों के नियम।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
7: अमरावती के अंबिका माता मंदिर में बड़ा आस्था का जनसैलाब, हजारों दीपों से जगमगाया मंदिर परिसर। कृष्ण रुक्मणी की पौराणिक कथा से जुड़ा है ये मंदिर, यहीं से भगवान श्री कृष्ण ने किया रुक्मणी का हरण। नवरात्र पर 9 दिनों तक विशेष पूजा अर्चना, मनोकामना पूरे होने पर दीप जला रहे भक्त। मां के देवी दरबार की भव्य सजावट, भक्त ऑनलाइन बुकिंग से भी जलवा रहे हैं अखंड दीप। महाराष्ट्र के प्राचीन मंदिर में भक्ति का अनूठा नजारा, अंबिका माता के तेजस्वी स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं श्रद्धालु। झांसी में मां काली का अनोखा दरबार, ना खड़क ना मुंडमाला, कन्या स्वरूप में मां काली। मां महाकाली का शांत और सौम्य स्वरूप, 5 गुड़हल के फूल चढ़ाने की मान्यता। झांसी में मां काली का बालिका रूप आकर्षण का मुख्य केंद्र, स्वयंभू विग्रह होने की धार्मिक मान्यता। ओरछा के राजा वीर सिंह जुदेव से जुड़ी मान्यता, मां के दरबार में दर्शन पूजन को पहुंचे भक्त। लक्ष्मी तालाब के पास स्थित है विद्यापीठ। झांसी में 102 साल पुरानी धूमधाम से निकली राम बारात, भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के स्वरूप के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु उमड़े। राम बारात में भगवान शिव और माता पार्वती की झांकी बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र। श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा और आरती करके भगवान का किया स्वागत, बैंड बाजे, धार्मिक झांकियां और जय श्री राम के जयकारे। मां काली की झांकी, अग्नि प्रदर्शन और दक्षिण भारत से आए कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी। 102 साल पुरानी इस परंपरा में बुंदेलखंड के दूर दूर दराज से पहुंच रहे हैं लोग, जमकर लगाए जा रहे हैं जय श्री राम की जयकारे। धनबाद में बनेगा आदिवासी शीश महल, 32 लाख से सजेगा दुर्गा पूजा पंडाल। धनबाद में देखेगी अंडमान निकोबार की झलक, झारखंड मैदान में बनेगी शीश महल, बांस और नारियल से सजेगा पंडाल। 23 अक्टूबर को निकलेगी भव्य शोभा यात्रा, बनारस की राधा कृष्ण मंडली करेगी धमाल। प्लास्टिक थर्मोकॉल को सीमित समिति ने कहा इको फ्रेंडली होगा भव्य दुर्गा पूजा पंडाल। दुर्गा पूजा में दिखेगा भव्य नजारा, ढोल छऊ और झांकियां बनेंगी आकर्षण का मुख्य केंद्र। नर्मदापुरम में सजा न्याय का दरबार, जज की कुर्सी पर विराजे हैं भगवान गणेश, झांकी के गुंजा पेटियों को न्याय का संदेश। मां भवानी के दरबार में अनोखी अदालत, जेल से फांसी तक दिखे दृश्य, नारी सुरक्षा पर उठाए सवाल। दुर्गा पंडाल बना भव्य कोर्ट रूम, आस्था के साथ साथ न्याय की अनूठी पहल, बेटियों के गुनाहगारों को सजा का संदेश। मां भवानी की झांकी बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र, नारी सम्मान और सुरक्षा का संदेश, दिखा अद्भुत अलौकिक नजारा। मां भवानी के दरबार में उमड़ी भारी भीड़, अनोखी अदालत देखने के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। रांची में उत्तरी द्वारका नगरी की भव्य झलक, 1 करोड़ से ज्यादा सजा दुर्गा पूजा पंडाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डुबकी वाली झांकी बनी आकर्षण का केंद्र। रांची में द्वारकाधीश मंदिर का भव्य और दिव्य स्वरूप, अल्बर्ट पक्का चौक पर सजा खास पंडाल। दुर्गा पूजा में प्राचीन द्वारका की झलक, पश्चिम बंगाल के कारीगरों ने रचा कमाल। रांची का थीम पंडाल बना आकर्षण का मुख्य केंद्र, द्वारका नगरी की हूबहू प्रतिकृति तैयार हुई, भक्तों को मंत्रमुग्ध कर रहा है पंडाल। रांची में भक्ति और भव्यता का संगम, द्वारकाधीश मंदिर की तर्ज पर सजा पंडाल, श्रद्धालु में दिखा जबरदस्त उत्साह। गया जी में मां दुर्गा का अनोखा भक्त शंकर भगत ने सीने पर स्थापित किए 9 कलश। सीने पर 9 कलश रखकर 9 दिन मां की कठिन साधना, नवरात्र में भक्ति बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र। खगड़िया में भक्ति की अनोखी मिसाल, छाती पर कलश रखकर भक्त ने शुरू की मां की कठिन आराधना। शारदीय नवरात्र में भक्ति की अनूठी तस्वीर, अन्न त्याग कर 10 दिनों तक मां की पूजा अर्चना। त्योहारी सीजन में रेलवे के कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, केंद्र ने प्रोडक्टिविटी लिंक का बोनस का किया ऐलान। दुर्गा पूजा के रंगों में नहाया कोलकाता, पुलों चौराहों और घाटों की रंगीन सजावट। गरियाहाट ब्रिज गुलाबी नारंगी रंगों से पूरी तरीके से सजा हुआ है, अलग अलग समुदाय के कलाकारों ने बनाई। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 में 221 फीट का रावण 22 मंजिला इमारत के बराबर, 90 फीट के मेघनाथ और कुंभकर्ण के भी पुतले 3 महीने में बनकर हुआ तैयार, 120 कारीगरों ने तैयार किया विशाल का पुतला, निर्माण में लगा है 7 टन लोहा, 25 फीट का मुकुट के साथ रावण की शाही सजावट, सहरसा में मां कूष्मांडा की विशेष पूजा, दुर्गा मंदिर में उमड़े श्रद्धालु जयकारों की गूंज, उग्रतारा मंदिर में नवरात्र की धूम, दुर्गा सप्तशती के पाठ से गुंजायमान हुआ मंदिर परिसर, मुंगेर में सीने पर कलश रखकर कठिन साधना, भक्त विश्वजीत की 9 दिनों की अनोखी तपस्या, वेद मंत्रों के साथ स्थापित हुआ कलश, पेश की अटूट आस्था और भक्ति की मिसाल, संभल के हाईटेक सत्यव्रत पुलिस चौक में नवरात्र पर दुर्गा सप्तशती का पाठ, डीएम एसपी और पुलिस कर्मियों ने शत चंडी यज्ञ में आहुतियां दी, नवरात्र पर माता रानी के रंग में रंगा हुआ है धौलपुर, राम मंदिरों पंडालों में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़, रंगीन रोशनी से जगमगाया दुर्गा पंडाल, लाभजन कीर्तन पर झूम रहे श्रद्धालु, ढोलक मजीरों से गुंजायमान हुआ मंदिर परिसर, धौलपुर में डांडिया गरबा की धूम, पारंपरिक परिधानों में थिरक रहे हैं युवा, हरिद्वार के माया देवी मंदिर में उमड़ रहे हैं भक्त, नवरात्र में सिद्ध पीठ पर लगी श्रद्धालुओं की कतार, मां के दरबार में गूंज रहे हैं जयकारे, भक्त मां के साथ भैरव के भी कर रहे हैं दर्शन, 51 शक्तिपीठ की मान्यता से जुड़ा हुआ है देवी मंदिर, हरिद्वार से रवाना हुई पवित्र दशनामी छड़ी यात्रा, मां माया देवी मंदिर में विधि विधान के साथ पूजन, उत्तराखंड के चारों धामों तक जाएगी छड़ी यात्रा, ओम पर्वत तक पहुंची साधु संतों की टोली, तीर्थाटन और पर्वतीय विकास का संदेश लेकर निकली यात्रा, भैरव मंदिर में भी विशेष पूजन, संतों के जयघोष के साथ गुंजायमान हुआ अखाड़ा, यात्रा की सफलता के लिए प्रार्थनाएं, कुंभ मेले की सफलता के लिए संतों ने प्रार्थना की, छड़ी यात्रा के शुभारंभ पर कई साधु संत रहे मौजूद, राजकोट में पहली बार रोबोट ने खेला शानदार गरबा, रोबोट पृथ्वी ने इंसानों संग मिलाया कदम, कार्बोनाइट में रोबोट ने जमकर मचाया धमाल, रोबोट पृथ्वी के डांस ने खींचा सभी का ध्यान, गुजरात के गरबा महोत्सव में लगा हाईटेक तड़का, लड़कियों संग थिरकता नजर आया रोबोट पृथ्वी, नवरात्र में रोबोट ने दिखाया अपना अनोखा अंदाज, गरबा खेलते रोबोट पृथ्वी को देखने के लिए बड़ी संख्या में उमड़े लोग, रोबोट पृथ्वी ने अपने डांस मूव से सबको चौंका दिया, दर्शकों के लिए यादगार बना अनोखा अनुभव, गरबा की धुन पर रोबोट ने भी दिखाया स्टेप्स, जामनगर में नवरात्रि के दौरान ना कार्डियावाड़ के युवाओं ने जलते हुए अंगारों पर किया स्वास्थ्य क्रास, जामनगर के कार्डियावाड़ में नवरात्रि के अवसर पर युवाओं ने 52 साल पुरानी परंपरा को निभाया, जलते अंगारों पर रास किया, जामनगर में नवरात्रि में आस्था और परंपरा गानों का संगम, नवरात्रि के दौरान कार्डियावाड़ का स्वास्थ्य क्रास आकर्षण का मुख्य केंद्र, वडोदरा में गरबा के रंग में रंगी महिला पुलिसकर्मी, वडोदरा में नवरात्रि के उत्सव के बीच महिला पुलिसकर्मियों का पारंपरिक गरबा लोक आकर्षण का मुख्य केंद्र, रंग बिरंगे गुजराती परिधानों ने बढ़ा दिए रौनक, सूरत में गरबा उत्सव की धूम, पारंपरिक गुजराती परिधानों में महिला और पुरुष ने गरबा किया, गरबा महोत्सव में उत्साह चरम पर देखने को मिल रहा, ढोल की थाप और संगीत पर झूमते हुए नजर आए लोग, नवरात्रि के गरबा महोत्सव में महिलाओं ने सुरक्षा इंतजामों को परखा, रात 3 बजे तक गरबा डांस, नवसारी में भी गरबा की रौनक, बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की, नवसारी में पारंपरिक डोरी रास की अनूठी छटा, करीब 120 साल से चली आ रही है परंपरा, उत्तर प्रदेश के महोबा में शक्ति उत्सव की धूम, गरबा और डांडिया महोत्सव में 350 से ज्यादा महिलाओं की मनमोहक प्रस्तुति, बुंदेलखंड के महोबा में नवरात्र महोत्सव के दौरान महिलाओं ने तलवार डांस से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, नन्ही बच्चियों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया, बाबा के गरबा महोत्सव में महिलाओं, बहुओं और बच्चियों ने भाग लिया। आयोजन ने भक्ति, सांस्कृतिक परंपरा और महिला सशक्तिकरण का संदेश। सीकर में गरबा महोत्सव की रौनक, महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में सजकर डांडिया किया। बॉलीवुड, गुजराती और राजस्थानी गानों की धुन पर जमकर थिरके लोग, छोटे छोटे बच्चे भी गुजराती पारंपरिक परिधानों में नजर आए। धर्मशाला में देखिए हिमाचल की अनूठी बांस कला, बांस लकड़ी से बने मंदिरों के हूबहू मॉडल्स, कांगड़ा आर्ट म्यूजियम में सजी प्रदर्शनी। रिटायर्ड शिक्षक की कला ने खींचा सभी का ध्यान, विनय अवस्थी बना रहे मंदिरों की प्रतिकृतियां। बांस और लकड़ी से जीवंत हुई मंदिर वास्तुकला, स्लैब पोष मकानों के भी बनाए जा रहे हैं आकर्षक मॉडल। कांगड़ा आर्ट म्यूजियम में उड़ रहे हैं पर्यटक, पारंपरिक कलाकृतियां देखकर इतिहास से जुड़ रहे हैं। कबाड़ की लकड़ी से तैयार हो रही हैं शानदार कलाकृतियां। बरेली में 8 साल बाद लौटी भारतीय वायुसेना की सारंग टीम, स्वदेशी ध्रुव हेलीकॉप्टर से हैरतअंगेज करतबों का प्रदर्शन, सटीक उड़ान और शानदार फॉर्मेशन। दिल्ली में BIS की सिल्वर रिफाइनरी स्कीम लॉन्च, चांदी की शुद्धता और हॉलमार्किंग को मिलेगा बढ़ावा। चांदी के कारोबार में शुद्धता की नई व्यवस्था, डिजिटल स्टैंडर्ड्स रीडर 2.0 का बीटा वर्जन जारी। आयुष और रोबोटिक्स के नए मानक भी हुए पेश, EV चार्जिंग केबल्स के लिए भी नए स्टैंडर्ड्स। पैक्ड पानी की गुणवत्ता पर FSDA की सख्ती, अब BIS प्रमाणन के बिना नहीं मिलेगा उत्तर प्रदेश में लाइसेंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जापान में आयोजित एशियन गेम्स 2026 के पदक वीरों से मिलेंगे, दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में शाम 4:30 बजे कार्यक्रम। जापान में एशियाई खेलों मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों से संवाद करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एशियाई खेलों में भारत के 85 पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया था, भारत की झोली में आए थे 21 गोल्ड 27 सिल्वर 37 ब्रॉन्ज। चेन्नई में 3108 करोड़ की वाटर पाइपलाइन परियोजना का शुभारंभ, मुख्यमंत्री विजय ने परियोजना का आधारशिला रखी। 98 किलोमीटर लंबी लोहे की पाइपलाइन बिछाई जाएगी, 9 प्रमुख जल स्रोतों को आपस में जोड़ेंगी नई पाइपलाइंस। हैदराबाद के हुसैन सागर झील में डूबती बच्ची को बचाने पर 3 लोगों को सम्मान मिला, पुलिस कमिश्नर VC नकद पुरस्कार देकर 3 लोगों को सम्मानित किया। मुंबई में भारत कनाडा की कंपनियों के बीच कई अहम समझौते। इंडो अल्बर्टा चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के साथ भी सहयोग समझौता। प्रयागराज में पद्मलोक आवास योजना का कल भूमि पूजन करने जा रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शकिया के कसारी मसारी में 602 फ्लैट्स बनाने की तैयारी तेज। त्योहारी सीजन में कारोबारियों के लिए शानदार खबर, सीजन में 7 लाख करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान। दुर्गा पूजा से दिवाली तक बाजार में रौनक की उम्मीद, द कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने जारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के दमोह पहुंची पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा, कल होगा समापन। अयोध्या के श्री राम जानकी मंदिर में बनाई जा रही है हनुमान जी की 11 फीट ऊंची मूर्ति। विमान हादसा टालकर 180 लोगों की जान बचाने वाले कैप्टन स्मिथ मच्छार को सबसे छोटी हनुमान चालीसा गिफ्ट करने जा रहे हैं निकुंज।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
8: दुर्गा सप्तशती के किस अध्याय के पाठ से देवी की भक्ति मिलती है? दुर्गा सप्तशती के कौन से अध्याय का पाठ व्यापार में सफलता दिलाता है? और दुर्गा सप्तशती के किस अध्याय के पाठ से संकट कट जाते हैं? कौन से हैं दुर्गा सप्तशती के चमत्कारी अध्याय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: दुर्गा सप्तशती के किस अध्याय के पाठ से देवी की भक्ति मिलती है? दुर्गा सप्तशती के कौन से अध्याय का पाठ व्यापार में सफलता दिलाता है? और दुर्गा सप्तशती के किस अध्याय के पाठ से संकट कट जाते हैं? कौन से हैं दुर्गा सप्तशती के चमत्कारी अध्याय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
3: नवरात्र में अमरावती की प्राचीन अंबिका माता मंदिर में रोष हो रहे हैं, मनोकामना के हजारों खंड, दीपक अद्भुत लग रहा है पूरा मंदिर परिसर। देश भर में बन रहे मां के एक से बढ़कर एक पंडाल, रांची में द्वारका नगरी की थीम पर हूबहू बना पंडाल, तो रोहतास में मां वैष्णो देवी की गुफा की तर्ज पर सजा पंडाल। बरेली में 8 साल बाद आसमान में गूंजा सारंग का शौर्य, हेलीकॉप्टर से दिखाए गए हैरतअंगेज हवाई करतब, 15 मिनट तक आसमान में बनाई अलग अलग फॉर्मेशंस। पुणे को मिला नया मेडिकल कॉलेज, केंद्र से मिला अप्रूवल, एमबीबीएस की होंगी 50 सीट, शैक्षणिक वर्ष 2027-28 से होगी पढ़ाई शुरू, मुख्यमंत्री ने जानकारी दी। प्रदूषण पर नियंत्रण की तैयारी, अप्रैल 2029 से नई कारों और एसयूवीज के लिए BS7 उत्सर्जन मानक लागू करने की तैयारी, 3 चरणों में बदलेंगे कारों और ट्रकों के नियम।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे दुर्गा सप्तशती के बारे में। जी हाँ, दुर्गा सप्तशती में अलग अलग तरह के अध्याय दिए हुए हैं, तो इन अध्यायों का चमत्कारी महत्व क्या है, इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं आज का गुडलक मंत्र।
1: अगर आपका कोई बड़ा महत्वपूर्ण काम काफी समय से रुका हुआ है तो नवरात्रि में लगातार 3 दिनों तक देवी को लाल फूलों की माला अर्पित करिएगा। अगर लगातार 3 दिन तक आप देवी को लाल फूलों की माला अर्पित करें तो आपका बड़े से बड़ा काम बड़ी आसानी से बन जाएगा।
0: और आइए अब जान लेते हैं 15 अक्टूबर 2026 यानी कि बृहस्पतिवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 15 अक्टूबर 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: और आइए अब जानेंगे पंडित जी से क्या है दुर्गा सप्तशती और इसकी खास बातें क्या हैं।
1: हम आज आपको बता रहे हैं दुर्गा सप्तशती के अध्यायों के बारे में, अलग अलग अध्यायों का महत्व क्या है इस बारे में आज बात करेंगे। दुर्गा सप्तशती है क्या और इसकी खास बातें क्या हैं? ऐसा माना जाता है कि वेदों की तरह दुर्गा सप्तशती भी अनादि है। कहां से प्रकट हुई, कहां से आई, ये अज्ञात है। मार्कंडे पुराण के माध्यम से दुर्गा सप्तशती जन सामान्य तक पहुंची है। माता दुर्गा की देवी की उपासना के लिए दुर्गा सप्तशती को सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। दुर्गा सप्तशती में देवी की उपासना के 700 श्लोक दिए गए हैं और ये 700 श्लोक 3 भागों में बांटे गए हैं, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। प्रथम चरित्र में केवल पहला अध्याय, मध्यम चरित्र में दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय और बाकी सारे अध्याय उत्तम चरित्र में रखे गए हैं। दुर्गा सप्तशती तंत्र साधना की बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। इन 700 श्लोकों में तंत्र की शक्ति शक्तियां हैं जैसे मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण और विद्वेषण। तंत्र की जो तमाम शक्तियां हैं वो दुर्गा सप्तशती के श्लोकों में दी गई हैं। और कौन से श्लोक में कौन सी ताकत है ये बड़ा गोपनीय है। इसको जानने के लिए आपको किसी समर्थ गुरु की आवश्यकता पड़ेगी।
0: और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का क्या कहता है राशिफल।
1: मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ हो सकता है, अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, रिश्तों की समस्या हल होगी, व्यस्तता बढ़ी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और आइए जान लेते हैं दुर्गा सप्तशती के अलग अलग अध्याय का महत्व क्या है।
1: अब जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती के अलग अलग अध्यायों का महत्व क्या है। पहले जानते हैं प्रथम अध्याय के बारे में। अगर आप दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय पढ़ते हैं तो इससे आपकी समस्त चिंताएं दूर होती हैं और इससे आपका शत्रु भय दूर होता है, शत्रुओं की बाधा शांत होती है, शत्रु और विरोधी आपको परेशान नहीं करेंगे। दूसरा और तीसरा अध्याय, दूसरे और तीसरे अध्याय के पाठ से मुकदमेबाजी में विजय मिलती है, सफलता मिलती है और झूठे आरोपों से मुक्ति मिलती है। अगर किसी गलत चक्कर में फंस गए हैं तो उससे आपको छुटकारा मिलता है। चतुर्थ अध्याय, अगर आप दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का पाठ करते हैं तो इसके पाठ से अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है और चौथे अध्याय के पाठ से देवी की भक्ति भी, देवी की कृपा भी बड़ी आसानी से मिल जाती है। पांचवा अध्याय, पांचवें अध्याय के पाठ से नकारात्मक ऊर्जा का, तंत्र मंत्र आदि का नाश होता है और पांचवें अध्याय का पाठ करने से भय दूर होता है, बुरे सपने दूर होते हैं और तंत्र मंत्र की बाधा का नाश होता है।
0: और अब वक्त हो गया है कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के राशिफल को जानने का।
1: कर्क राशि, करियर की तमाम समस्याएं हल होंगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान रखें, देवी को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर में समस्या हो सकती है, मानसिक चिंताएं रह सकती हैं, लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, धन का लाभ होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और गुडलक में वक्त हो गया है सवालों का और उनके जवाब देने का, तो चलिए जान लेते हैं पंडित जी से ही कि आज का पहला सवाल वो किसका लेने वाले हैं।
1: जी, आज का पहला प्रश्न मनीषा जी ने हमें लिखा है और मनीषा जी हमें मेल लिखती हैं रामपुर उत्तर प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 7 दिसंबर 1986। जन्म का समय रात में 11:52। जन्म स्थान है रामपुर। मनीषा कह रही हैं कि मेरी एक शादी हुई थी जिसमें पिछले साल मेरा डिवोर्स हो चुका है, तो आगे मेरे दूसरे विवाह की क्या संभावना बनती है। मनीषा, आपकी कुंडली के हिसाब से 2027 में आपके दूसरे विवाह की संभावना बनती है और दूसरा विवाह आपका कुल मिला जुला कर बेहतर दिख रहा है, उसमें ज्यादा दिक्कत आने की संभावना नहीं बनती है। आपकी कुंडली के हिसाब से दूसरा विवाह सफल रहेगा। एक ओपल बनवा करके पहन लीजिएगा, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
0: अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं पंडित जी से उसका जवाब, तो आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। हमें सवाल भेजने के लिए हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का, तो जानेंगे पंडित जी से आज के दूसरे सवाल के बारे में।
1: जी, अगला प्रश्न अभिषेक जी ने हमें लिखा है, पुणे महाराष्ट्र से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 22 मार्च 1994। जन्म का समय सुबह के 7 बजे और जन्म का स्थान है नासिक महाराष्ट्र, और मेल लिखते हैं पुणे से। अभिषेक कह रहे हैं कि मैं नौकरी करने के लिए विदेश जाना चाहता हूं, तो मैं कब विदेश जा पाऊंगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? अभिषेक, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी विदेश जाने की संभावना नहीं बनती है। साल 2028 में अगर दुनिया के हालात ठीक रहते हैं तो 2028 में अप्रैल के बाद कोशिश करिएगा। वर्तमान नौकरी आपकी बिल्कुल ठीक चल रही है, नौकरी में करियर में इस समय रिस्क ना लें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: तो दुर्गा सप्तशती के 5 अध्यायों के बारे में तो हमने पंडित जी से जान लिया, बाकी अध्याय का महत्व क्या है चलिए जान लेते हैं पंडित जी से ही।
1: अब दुर्गा सप्तशती के बाकी अध्याय को भी जानते हैं। अगर 6वें अध्याय की बात करें तो दुर्गा सप्तशती के 6वें अध्याय के पाठ से बड़ी से बड़ी बाधा का नाश किया जा सकता है। इसको पढ़ने से बड़ी बाधा दूर होती है। कितना भी बड़ा संकट हो, 6वें अध्याय का पाठ करने से वो दूर हो जाता है। 7वां अध्याय, 7वें अध्याय के पाठ से विशेष गुप्त कामनाओं की पूर्ति होती है। आपके मन में कोई गोपनीय इच्छा है जिसकी आप पूर्ति करना चाहते हैं तो 7वें अध्याय का पाठ आपको करना चाहिए। 8वां अध्याय, 8वें अध्याय के पाठ करने से वशीकरण की, दूसरों को अपने वश में करने की शक्ति मिलती है और नियमित रूप से धन का लाभ जीवन में होना शुरू हो जाता है। 9वां अध्याय, 9वें अध्याय के पाठ से संपत्ति का लाभ होता है, प्रॉपर्टी मिलती है और खोए हुए व्यक्ति का पता चलता है। अगर कोई व्यक्ति चला गया हो, कोई सूचना ना मिल रही हो तो 9वां अध्याय का पाठ करना चाहिए। दसवां अध्याय, दशम अध्याय, दसवें अध्याय के पाठ से भी गुमशुदा की तलाश होती है, अपूर्व शक्ति और संतान सुख की प्राप्ति होती है। अगर आपको जीवन में ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए, तो दुर्गा सप्तशती के दसवें अध्याय का पाठ आप कर सकते हैं।
0: और अब वक्त हो गया है तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के राशिफल को जानने का।
1: तुला राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी, धन की समस्या हल होगी, संपत्ति का लाभ होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य की स्थिति ठीक रहेगी, धन लाभ के

0: होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, परिवार में अशांति से बचें, हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: तो दुर्गा सप्तशती के 10 अध्यायों के बारे में तो हमने जान लिया, आइए अब बाकी अन्य अध्यायों का महत्व क्या है वो भी समझ लेते हैं।
0: अब जो दुर्गा सप्तशती के अन्य बचे हुए अध्याय हैं उनका महत्व भी जानते हैं। 11वें अध्याय की अगर बात करें तो 11वें अध्याय के पाठ से हर तरह की चिंता दूर हो जाती है, तनाव समाप्त होता है, और 11वें अध्याय के पाठ से व्यापार में बहुत सारी सफलता मिलती है। 12वां अध्याय, 12वें अध्याय के पाठ से रोगों से छुटकारा मिलता है और नाम यश मिलता है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है। 13वां अध्याय, जब आप 13वें अध्याय का पाठ करते हैं तो देवी की कृपा और भक्ति आपको मिलती है और व्यक्ति की हर तरह के संकट से रक्षा होती है। अचानक कोई बड़ा संकट जीवन में आ गया तो 13वें अध्याय का पाठ करिए, आप उस संकट से बाहर निकल आएंगे।
1: और अब वक्त हो गया आज के अंतिम राशियों के राशिफल को जानने का, तो आइए जानते हैं जिन लोगों की राशि है मकर, कुंभ और मीन, क्या कहता है उनका राशिफल।
0: मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, करियर में आपको सफलता मिलेगी, काम की रुकावट दूर होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: समाप्त होंगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, चोट चपेट से सावधान रहें। देवी को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब जानेंगे पंडित जी से ही कि आज का तीसरा प्रश्न वो किसका और कहां से लेने वाले हैं।
0: जी अगला प्रश्न चंद्रकला जी ने हमें लिखा है और चंद्रकला जी हमें मुंगेर से मेल लिखती हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। इनकी पुत्री की जन्म की तारीख है 13 मई 1996। जन्म का समय दोपहर में 1 बजे। जन्म स्थान है जमालपुर मुंगेर बिहार। ये पूछ रही हैं कि मेरी पुत्री का विवाह कब तक होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। चंद्रकला जी, आपकी पुत्री की कुंडली के हिसाब से उनके विवाह का समय चल रहा है साल 2027 के शुरुआती समय में। इनका विवाह अवश्य हो जाएगा और वैवाहिक जीवन कुल मिला जुला के बेहतर रहेगा। आपकी पुत्री के साथ ज्यादातर संभावना ये बनती है कि उनका विवाह उनकी अपनी इच्छा से होगा, जाने पहचाने लड़के के साथ। फिलहाल आप ऐसा करें, अपनी पुत्री को एक मोती बनवा करके पहना दें, 8-10 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनको एक मोती पहनाएं और रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए कहें तो काफी बेहतर होगा।
1: पंडित जी, अब वक्त हो गया आज के चौथे प्रश्न का, तो आज का चौथा प्रश्न आप किसका लेने वाले हैं।
0: जी आज का अंतिम प्रश्न राजन जी ने हमें लिखा है और राजन जी हमें मेल लिखते हैं इंदौर से। इनकी जन्म की तारीख है 9 अक्टूबर 1981। जन्म का समय शाम के 7 बजे। जन्म का स्थान है उज्जैन। मेल लिखते हैं इंदौर से। राजन जी कह रहे हैं कि व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है और मेरे ऊपर बहुत सारा कर्ज हो गया है, तो कर्ज से मुक्ति कब तक मिलेगी और भविष्य कैसा रहेगा। राजन जी, आपकी कुंडली के हिसाब से कर्ज से मुक्ति पाने में अभी 1.5 साल का समय लगेगा। लगभग 2028 में मई के बाद आप कर्ज से छुटकारा पा सकेंगे। आने वाले समय में आपके व्यापार के हालात बेहतर होंगे और आर्थिक स्थिति आपकी लगातार बेहतर होती चली जाएगी। फिलहाल आप ऐसा करें, सुबह और शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें और एक पन्ना लगभग 6-8 रत्ती का चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को धारण करें तो आपको लाभ होगा।
1: पंडित जी, आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती के बारे में। तो क्या दुर्गा सप्तशती का पाठ कोई भी व्यक्ति कर सकता है या इसे करने के कुछ नियम होते हैं?
0: जी देखिए, वैसे तो ऐसी कोई वर्जना नहीं है कि कौन करेगा नहीं करेगा, कोई भी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि दुर्गा सप्तशती को मंत्रों के माध्यम से कीलित कर दिया गया है, बांध दिया गया है। तो दुर्गा सप्तशती के पाठ के पहले उसका उत्कीलन करना होता है, उसके मंत्रों को खोलना होता है। जब आप सप्तशती का उत्कीलन कर लेते हैं और उसके बाद पाठ करते हैं तो दुर्गा सप्तशती का वास्तविक फायदा आपको होता है। बिना उत्कीलन के और पाठ के बाद बिना शाप विमोचन के दुर्गा सप्तशती का पाठ संपूर्ण नहीं होता और तब फायदा होने की संभावना नहीं होती।
1: जिनका जन्मदिन आने वाला है उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए जानेंगे पंडित जी से कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है।

0: 15 अक्टूबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, करियर में बड़ा बदलाव होगा, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी, अविवाहितों के विवाह में विलंब होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की उपासना करें तो आपके लिए बेहतर होगा।
1: और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि भगवान राम का माँ दुर्गा से, देवी से विशेष संबंध क्या है। देखिए, श्री राम के अंदर देवी का शक्ति स्वरूप विद्यमान है। चैत्र नवरात्रि में श्री राम का प्राकट्य हुआ था और आश्विन नवरात्रि में श्री राम ने शक्ति की पूजा करके रावण का वध किया था। बिना देवी की कृपा और शक्ति के श्री राम के अंदर शक्ति का अंश नहीं आ सकता।
1: और अब जानेंगे आज के शुभ पहर के बारे में, तो चलिए जान लेते हैं 15 अक्टूबर 2026 यानी कि बृहस्पतिवार का शुभ पहर कौन सा है।
0: दिनांक 15 अक्टूबर 2026 दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में देवी को फूल अर्पित कर दीजिएगा। शिक्षा और एकाग्रता के मामले में लाभ होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 15 अक्टूबर बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: गुडलक में अब जानेंगे आज की गुडलक राशि के बारे में, तो आइए जान लेते हैं आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों की शिक्षा का हाल कैसा रहता है। आज की गुडलक राशि है कुंभ। इनकी शिक्षा साधारण रहती है, लेकिन आगे चल के कोई अलग तरह की शिक्षा लेट जीवन में ग्रहण करते हैं। शिक्षा में सफलता के लिए इनको गणेश जी की उपासना करने से लाभ होगा।
1: गुडलक में हम पहुंच गए हैं आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी,

0: हैं कि अगर कोई व्यक्ति बीमार हो, हॉस्पिटल में हो, तो क्या करेंगे उसके लिए? रोज सुबह और शाम एक एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे। हर शनिवार हनुमान मंदिर में नारियल अर्पित करेंगे। व्यक्ति जल्दी स्वस्थ हो जाए ये प्रार्थना करके नियमित रूप से सिक्कों का दान करेंगे, व्यक्ति जल्दी स्वस्थ होगा।
1: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया, बाकी देशों दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

फिर से लांघा बजरंग ने सागर का विस्तार। सेतु बांध फिर वानर सेना हो गई सागर पार। धू धू करके धधक उठी है फिर अधर्म की लंका। रावण के घर फिर से गूंजा धर्म विजय का डंका। कुल कुटुंब संग खूब लगाए रावण फिर से जोर। फिर ना पाए राम के बल सीता के धैर्य का छोर। अन्याय की चौखट पर फिर हुई न्याय की दस्तक। दशानन के अहंकार का फिर से कट गया मस्तक।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। आप देख रहे हैं जेएनटी स्पेशल। जेएनटी स्पेशल में आज बात करेंगे रामलीला की। सनातन धर्म की कहानियां श्री राम को विष्णु का अवतार बताती हैं, लेकिन भारत में राम सिर्फ भगवान नहीं बल्कि राम भारत के जीवन और जीवन पद्धति में शामिल हैं। श्री राम की जिंदगी से जुड़ी कहानियों में मानव जीवन के लिए कई संदेश छुपे हैं। युगों युगों से राम कहानी भारत और भारतवासियों के दिलों में बसी है और हर साल नवरात्र आते ही भारत के लोगों को उसी राम कहानी को नजदीक से देखने और महसूस करने का मौका मिलता है रामलीला के जरिए। आज हम आपके लिए देश और दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों से होने वाली रामलीला की तस्वीर लेकर आए हैं, लेकिन इससे पहले कि देश के बाहर चलें और दिखाएं रामलीला का इंटरनेशनल स्वरूप, सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो रामलीला जहां भारत के मंच पर ही दुनिया की तकनीक सिमट कर आ गई है। राजधानी दिल्ली में न्यूयॉर्क के ब्रॉडवे थिएटर की तर्ज पर भव्य रामलीला हो रही है। रामलीला में भावों का सागर तो पहले ही अपार होता है, लेकिन ब्रॉडवे स्टाइल की इस रामलीला में तकनीक ने रामकथा मंचन की भव्यता को भी कई गुना बढ़ा दिया है।

0: युग युगांतर से समय की धारा के साथ बहती आई रामायण की ये दिव्य कहानी जो भारत के मन मर्म भाव विचार सोच और संवेदनाओं की पोरों में रमी है एक बार फिर से दोहराई जा रही है लेकिन अब की बार बिल्कुल अलग अंदाज में। जब दुनिया के सबसे आधुनिक रंगमंच की तकनीक भारत की हजारों साल पुरानी संस्कृति से मिलती है तो जन्म होता है एक महादृश्य का। ये न्यूयॉर्क का ब्रॉडवे नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली की ब्रॉडवे रामलीला है।
1: इस सभा में उपस्थित सभी सभासदों, ध्यान से सुनो। ये पिनाकी नाम का दिव्य धनुष महादेव रुद्र ने दक्ष के यज्ञ ध्वंस के लिए प्रयुक्त किया था। इस प्रकार आज ये धनुष मिथिला राजवंश के पास मेरे गुरुदेव महादेव शिव की धरोहर के रूप में है। ये कोई स्वयंवर नहीं अपितु षड्यंत्र है।
0: एक ऐसी रामलीला जहां ना तो दृश्यों को बदलने के लिए बार बार पर्दा गिरता है और न ही कहानी को पूरा होने में 10 दिन लगते हैं। यह पूरी रामायण केवल 3 घंटे के एक हाईटेक संगीतमय नाटक के माध्यम से जीवंत हो उठती है। दिल्ली में होने वाली ब्रॉडवे रामलीला सीधे तौर पर न्यूयॉर्क के ब्रॉडवे थिएटर की तर्ज और उसकी भव्य प्रोडक्शन स्टाइल से प्रेरित है। पारंपरिक रामलीलाओं में जहां खुले मैदानों में कई दिनों तक स्टेज नाटक चलता है वहीं इस रामलीला को पूरी तरह से एक कमर्शियल ब्रॉडवे म्यूजिकल के रूप में ढाला गया है। इस भव्यता के पीछे है अत्याधुनिक तकनीक का हाथ। न्यूयॉर्क ब्रॉडवे शो की तरह ही दिल्ली की इस रामलीला में भव्य 3D स्टेज डिजाइन एडवांस डिजिटल बैकड्रॉप्स और अत्याधुनिक लाइटिंग का इस्तेमाल किया जाता है।
2: ब्रॉडवे रामलीला की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर पारंपरिक तरीके के साथ साथ आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भरपूर दिखाई पड़ेगा। 3000 स्क्वायर फीट में यहाँ पर LED लगाई गई हैं। ये सारी 3D LED हैं और ऐसा 3D माहौल तैयार होता है जैसे आप किसी 3D सिनेमा में महसूस करते हैं। जैसे आपको लगता है कि आप देखते हैं तो आप बिल्कुल उसी माहौल में पहुँच गए। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं जो स्क्रीन पर है ये वो सीन यहाँ पर दिखाया जाएगा जब रावण कैलाश पर्वत पर जाकर तपस्या करता है। जब दर्शक इस सीन को देखते हैं तो वो भी अपने आप को बिल्कुल उसी जगह महसूस करते हैं। ये जो सीन है यहाँ पर केवट का जो सीन है वो दर्शाया जाएगा और बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप किसी समंदर किसी नदी के बीचों बीच पहुँच गए हैं। 3D टेक्नोलॉजी खासियत यही है। ऐसे देखिए अलग अलग जो सीन है आप ये देखिए ये जनकपुर है और कैसे सीता स्वयंवर के समय जब सभी को इनविटेशन गए थे तो कैसे पूरे जनकपुर को सजाया गया धजाया गया सुंदर बनाया गया ये पूरा सीन इस LED स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा है। और जब दर्शक इसे देखते हैं तो बार बार महसूस करते हैं कि जैसे ये सब कुछ उनकी आंखों के सामने घटित हो रहा है। इसके सामने ही जो तमाम आर्टिस्ट हैं वो परफॉर्म करते हैं। अब आप ये सीन देखिए लगातार किस तरह से जो यात्रा रही प्रभु श्री राम की सीता जी के साथ लक्ष्मण के साथ वनवास की यात्रा वो सीन इस तरह के जो विजुअल्स हैं उस पर दिखाए जाएंगे उस पर दर्शाए जाएंगे।
0: 3D डिजिटल बैकड्रॉप्स एडवांस्ड मैपिंग और मूवेबल स्टेज प्रॉपर्टीज के इस्तेमाल से एक बटन दबाते ही पलक झपकते मंच का माहौल बदल जाता है। तकनीक की जादूगरी से मंच पर त्रेता युग का माहौल जीवंत हो उठता है।
2: ये जनक जी का जो दरबार था उसको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। जनक जी यहाँ पर बैठते थे और जनक जी के साथ साथ किस तरह से जो स्वयंवर की प्रक्रिया होती है वो आगे बढ़ती है उस दृश्य को यहाँ पर दर्शाया जाएगा। ऐसे ही चाहे आप लंका की बात करें चाहे आप दूसरे करेक्टर्स की बात करें दूसरी लोकेशंस की बात करें उन सारी लोकेशंस को इस तरह से तैयार किया गया है कि जब भी दर्शक सामने से देखेंगे आप महसूस करिए कि जैसे मैं यहाँ पर हूँ। और यह एक वन का दृश्य देखिए वहाँ पर हिरण बना हुआ है यानी कि वो सीन जब मृग हिरण के पीछे जिस तरह से जो सोने का हिरण उसके पीछे जब वो भागते हैं तब का सीन किस तरह से दर्शाया जाएगा। इस तरह से पूरी LED के जरिए स्टेज को तैयार किया गया है ताकि सामने बैठा दर्शक पूरी तरह से रिलेट कर पाए अपने आप को कि वो खुद उस माहौल में पहुंच गया है, स्वयं प्रभु श्री राम के पास पहुंच गया है, अयोध्या पहुंच गया है, लंका पहुंच गया है। अब देखिए ये कैकई का कमरा है, उसका एक दृश्य है। जब भी कैकई एक आर्टिस्ट के रूप में आएगी तो उनको इस कमरे में दिखाया जाएगा, कैसे उनके नखरे थे, किस तरह से वो बात करती थी, वो यहाँ दिखाई पड़ेगा। ये कोप भवन है, जब नाराज होकर वो जाती हैं कोप भवन में तो ये उस कोप भवन का दृश्य है। आप सोचिए जब यहाँ पर करेक्टर खड़ा होकर उस डायलॉग्स को बोलेगा उस ड्रेस के साथ में, तो हर कोई सामने से कैकई को महसूस कर पाएगा। ऐसे ही तमाम सारे दृश्य हैं, लंका है और जो युद्ध है उसका मैदान यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह से LED के जरिए पूरी रामायण को, संपूर्ण रामायण को जीवंत करने की एक कोशिश है, और इसी कोशिश के लिए ये ब्रॉडवे रामलीला जानी जाती है। और उम्मीद यही कि इस बार भी दर्शक जब यहाँ पहुँचेंगे तो खुद को प्रभु श्री राम के बेहद करीब इस LED के जरिए, इन विजुअल्स के जरिए खुद को महसूस करेंगे।
0: ब्रॉडवे रामलीला के लिए केवल तकनीक ही नहीं बल्कि हर एक पात्र की वेशभूषा पर भी गहरा शोध किया जाता है। राजा दशरथ के राजसी वैभव से लेकर रावण के 10 सिरों के डिजिटल प्रभाव तक हर बारीक चीज को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार डिजाइन किया गया है।
1: रावण मेरे को मिलना मेरे लिए, मैं बोलूंगा, सौभाग्य की बात है, क्योंकि मेरे को लगता है कि रावण एक ऐसा करेक्टर है जो करना ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि अच्छा इंसान तो मैं नेचुरली अगर अपने आप को मानता हूँ, पर स्टेज पे मेरे को दिखाना है कि मैं बुरा इंसान हूँ। उसके साथ साथ ये पता होते हुए कि रावण के अंदर सारा ज्ञान, सब चीज़ों में वो उत्तम था, उसके बावजूद भी स्टेज पर ये जताना कि मैं बुराइयों का प्रतीक हूँ, वो मुझे लगता है थोड़ा एक मेरे लिए चैलेंजिंग पार्ट रहता है, तो मुझे करके काफ़ी अच्छा लगता है। कि जिस प्रोडक्शन में हम काम कर रहे हैं ये, मतलब

0: कला दर्शक वाला है, तो यहाँ पर प्रॉपर ऑडिशन, एक पूरी सीरीज है जिससे हम करेक्टर के अंदर चुने जाते हैं, तो प्रॉपर ऑडिशन दिए हमने, तीन चार लोगों के साथ मिलकर ऑडिशन दिया, अलग अलग करेक्टरों के लिए ऑडिशन दिया, उसमें से एक रावण भी था मेरे को, इसके साथ साथ हनुमान, परशुराम, इनके लिए भी ऑडिशन देने का मौका मिला था। बट हाँ, ये बोल सकते हैं कि डायरेक्टर और ऑर्गेनाइजर सबको मेरा रावण किरदार काफ़ी पसंद आया, तो और सौभाग्य से मुझे ये किरदार निभाने का मौका मिला।
1: सिर्फ मेकअप ही नहीं बल्कि ब्रॉडवे स्टाइल में एक्टिंग करना भी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि यहाँ बहुत कम समय में गानों और नृत्य के बीच अभिनय की गहराई को दिखाना होता है, हर भावना को सीधे दर्शकों के दिल तक पहुँचाना होता है।
2: एक्टिंग का मुझे शौक है और मुझे बहुत खुशी होती है कि एक डिवाइन कैरेक्टर जब किसी को भी अगर प्ले करने को दिया जाए तो वो हमारी भावनाएं जुड़ी होती है। हम पुराने टाइम से देख रहे हैं, रामायण हो गई, महाभारत हो गई, तो उस टाइम से कहीं ना कहीं सबके मन में होता है कि कोई ना कोई हम कैरेक्टर करें, और माता सीता जो मतलब हम लोगों के दिलों के इतने करीब हैं, अगर उसका कैरेक्टर करने को मिल रहा है तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं हमेशा ग्रेटफुल हूँ भगवान के लिए, और जो मुझे ये अपॉर्चुनिटी दे रही है मैं उनके लिए भी बहुत ग्रेटफुल हूँ।
1: जैसे ब्रॉडवे नाटकों में पात्रों के मानसिक द्वंद और भावनाओं पर बारीकी से काम होता है, ठीक उसी तरह ब्रॉडवे रामलीला में भी चरित्रों पर विशेष अध्ययन होता है जो मंच पर नजर भी आता है। ये केवल कहानी नहीं सुनाती बल्कि रामायण के पात्रों की आंतरिक यात्रा और उनकी दुविधाओं को भी दिखाती है।

0: माता सीता की बात करी जाए तो एक्सप्रेशंस जो हैं वो बिल्कुल नेचुरल है. कैसे वो अपने पति के साथ शादी कर अयोध्या में आई थी, उसके बाद फिर वो वनवास गई थी, तो उसमें अगर थोड़ा भाव देखा जाए तो वो दुखी रही हैं, तो थोड़ा दुख का है. खुशी का तब समय होता है जब स्वयंवर आता है, तो खुशी का है. तो ऐसे एक्सप्रेशंस अलग से नहीं हैं, पर हाँ मैं मतलब जो भी है बहुत सिंपल है. आप अगर आप स्टेज पे देखेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा.
1: कुल मिलाकर ये पारंपरिक संस्कृति और आधुनिक पश्चिमी रंगमंच कला का ऐसा अनूठा संगम है जो विशेष रूप से आज की युवा पीढ़ी को आकर्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है. जहाँ पारंपरिक रामलीला 9 से 10 दिनों तक चलती है, वहीं ब्रॉडवे की तर्ज पर इस पूरी प्रस्तुति को मात्र 3 घंटे के एक ही शो में समेट दिया गया है. इसमें भगवान राम के जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक की पूरी कहानी बेहद तेज गति और मनोरंजन के साथ दिखाई जाती है.
2: हमने ये विचार बनाया कि वे एक दिन में ही सारी लीला हो, ताकि कंप्यूटराइज जमाना आ रहा है, इसमें ये हो सके कि एक ही दिन में हम पूरा राम जन्म से राज्याभिषेक तक एक ही दिन में करें, ताकि बच्चे देखें और उसको समझें भी, क्योंकि सीता स्वयंवर भी उसी दिन है, वनवास भी उसी दिन है और राज्याभिषेक भी उसी दिन है, सब चीज़ें उसमें होती है. तो बच्चों को समझ में आ जाता है कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहलाए. तो यही हमारा विचार था. इसके लिए हमने जो मैनेज किया यहाँ पे सिस्टम, 7,000 आदमियों की हमारी गैदरिंग होती है, लेकिन यहाँ पे नीचे गैदरिंग का ये सवाल है कि 12,000 आदमी देखते हैं और सामने जो वो लगे हुए हैं उनके ऊपर भी लोग खड़े होकर के बैठ कर देख खड़े होकर के भी देखते हैं, मतलब 14,000 आदमी एक बार देखते हैं. मेरे हिसाब से इतना भव्य जो लीला है, मुझे नहीं लगता कि भाई हमने कभी बचपन में देखा होगा, और हमें भी नहीं पता था कि भगवान रामचंद्र जी हमारे साथ हमारे द्वारा माध्यम से ये लीला ऐसे करें आएंगे.
1: जिस तरह ब्रॉडवे शो की सबसे बड़ी पहचान उसका लाइव या विशेष रूप से तैयार संगीत होता है, इसी तर्ज पर ब्रॉडवे रामलीला के लिए भी कई ओरिजिनल साउंडट्रैक तैयार किए गए हैं, जिन्हें लोकप्रिय भारतीय गायकों ने अपनी आवाज दी. बता दें कि दिल्ली के पीतमपुरा में इस भव्य ब्रॉडवे रामलीला का मंचन दशहरा तक होने वाला है. नवरात्र के दौरान युद्ध राजधानी दिल्ली के कई मैदान चौराहों, चौक बाजारों, मेलों और मंचों पर रामकथा का रस बरस रहा है, लेकिन आधुनिक तकनीक ने ब्रॉडवे रामलीला को बेहद अलग, भव्य और खास बना दिया है. दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे.
3: तो ये तो थी बात देश में हो रही इंटरनेशनल तकनीक वाली रामलीला की. अब बात उस रामलीला की जिसके मंचन देश के बाहर हो रहे हैं. कभी श्री राम ने मां सीता के लिए सागर लांघा था और अब राम कथा की लहरें 7 समंदर पार कर दुनिया के कई देशों तक पहुंच रही है. कुछ रूप बदला, कुछ कहानी बदली, कुछ पात्र बदले, मगर जहां जहां भारतीय गए, जहां जहां भारतीयता गई, वहां वहां रामकथा भी यात्रा करते हुए पहुंची. कई देशों ने भारतीय संस्कृति में ढली हमारी रामलीला को बेहद श्रद्धा से अपनाया है. यही वजह है कि रामलीला आज भारत और दुनिया के कई हिस्सों के बीच और कई देशों में सांस्कृतिक सेतु बन गई है.

सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि राम कथा सागर की लहरें दुनिया के जाने कितने ही देशों तक पहुंचती हैं। थाईलैंड, मॉरिशस, कंबोडिया, म्यांमार और इंडोनेशिया जैसे देशों में अलग अलग रूपों में राम कथा का मंचन किया जाता है। मसलन इंडोनेशिया में आबादी के एक बहुत बड़े समूह का मानना है कि इस्लाम जहां उनका धर्म है तो वहीं रामायण उनकी संस्कृति है। नौवीं सदी में लिखी गई जैवनिस वर्जन ऑफ रामायण को मानते हैं। इंडोनेशिया के जावा में प्रमनाम मंदिर में सेंद्रातारी रामायण लगभग साल भर चलती है। ये राम कथा पर आधारित बैली डांस यानी नृत्य नाटिका है। इसमें सीता हरण और मारीच मरण जैसे दृश्य देखने को मिलते हैं। इसमें एक बार में सैकड़ों कलाकार हिस्सा लेते हैं। कभी कभी तो कलाकारों की संख्या 1000 को भी पार कर जाती है। तो वहीं थाईलैंड में राम की कीर्ति बताने वाली छाया रामलीला का आयोजन होता है। दरअसल थाईलैंड का राष्ट्रीय महाकाव्य रामाकीन है जिसका अर्थ है राम की कीर्ति। ये वाल्मीकि रामायण से लिया गया है और थाई भाषा में है। यहाँ के थिएटर ग्रुप में भी रामलीला भव्य तरीके से आयोजित होती है। थाईलैंड में होने वाली छाया रामलीला को स्थानीय भाषा में नंग कहा जाता है। इसको सफेद पर्दे पर दिखाते हैं, फिर उसके सामने पुतलियों को इस तरह नचाया जाता है कि उसकी छाया पर्दे पर पड़े। मुखौटों का इस्तेमाल कर यहाँ रामलीला की जाती है। नाटक के माध्यम से प्रदर्शित की जाने वाली रामलीला को थाईलैंड में खौन के नाम से जाना जाता है। इसी तरह मॉरिशस में भी बेहद श्रद्धा और चाव के साथ रामलीला गाई जाती है। मॉरिशस की कला और सांस्कृतिक मंत्रालय की ओर से हर साल यहाँ रामलीला का आयोजन होता है जिसमें झाल ढोलक के साथ रामलीला गाई जाती है। यहाँ रामलीला इतनी लोकप्रिय है कि इसमें अभिनय के लिए भारतीय कलाकारों को भी बुलाया जाता है।

इसी तरह बौद्ध देश कंबोडिया में भी रामायण का मंचन होता है। यहाँ रामायण को रीम कर और भगवान राम को प्रिय रीम कहा जाता है। सीता नेयांग सेडा और लक्ष्मण प्रिय लीक के नाम से जाने जाते हैं। यह रामलीला तुलसीदास रचित रामचरितमानस के आधार पर खेली जाती है। दरअसल कंबोडिया में करीब 600 सालों तक हिंदू खमेर साम्राज्य का शासन था। इसी के चलते यहाँ हिंदू धर्म का खासा प्रभाव देखने को मिलता है। बताया जाता है कि यहाँ रीमकर खमेर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध साहित्य है। इसका प्रभाव आज भी कंबोडिया की कला में साफ दिखाई देता है।

के म्यांमार की रामलीला यांपवे कहलाती है। इसमें मुखौटों का इस्तेमाल होता है। यहाँ के लोग हास्य रस के बेहद प्रेमी होते हैं, इसलिए यांपवे में विदूषक की भूमिका मुख्य मानी जाती है।

जब रंगमंच पर विदूषक मौजूद न हो। रामलीला आरंभ होने से पहले एक दो घंटे हास परिहास चलता है, नृत्य और संगीत के कार्यक्रम होते हैं,

0: इसी तरह बताया जाता है कि जापान के लोकप्रिय कथा संग्रह होबुत्सुशु में भी संक्षिप्त राम कथा संकलित है, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जीवन गाथा का अमृत आज युगों बाद भी दुनिया के कई कोनों को यूं ही सींच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
1: कश्मीर में सर्दियों की शुरुआत अभी से हो गई है। मैदानी इलाकों में बारिश और ऊंचे इलाकों में बर्फबारी के कारण घाटी में तापमान काफी गिर चुका है। हालांकि कुछ दिन पहले मौसम कुछ गर्म जरूर था, लेकिन अब सोनमर्ग कोरेज घाटी समेत कई ऊंचे क्षेत्रों में सर्द मौसम हो चुका है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद कुदरत का मनमोहक नजारा देखने को मिल रहा है, तो इस बर्फबारी का असर घाटी के मैदानी क्षेत्रों में सर्द मौसम के रूप में महसूस होने लगा है। सर्दी का चक्र ऐसे ही चला तो जल्द ही पूरी कश्मीर घाटी सफेद बर्फ की चादर से लिपट जाएगी।

0: सीजन की पहली बर्फबारी के साथ ही पहाड़ों ने सफेदी की चादर ओढ़ ली है। हरी भरी पहाड़ियाँ अब बर्फ की सफेदी में समा गई हैं। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में स्थित कुरेस घाटी की है, जहाँ ऊंचाई वाले इलाकों में जोरदार बर्फबारी हुई है, जबकि श्रीनगर समेत घाटी के मैदानी इलाकों में बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। अक्टूबर का भी आधा महीना ही गुजरा है और गुरेज में पारा शून्य तक लुढ़क चुका है, जबकि श्रीनगर में भी तापमान 15 डिग्री तक गिर चुका है। सैलानियों के साथ साथ स्थानीय किसानों के लिए भी ये बर्फबारी खुशियों की सौगात लेकर आई है। एक और जहां कश्मीर में पर्यटन में तेजी के आसार है, वही सूखे के मौसम से किसानों को राहत मिली है।
1: मंगलवार को 15 डिग्री सेंटीग्रेड श्रीनगर का अधिकतम तापमान रहा, जबकि पहाड़ी इलाकों में खासतौर से गुलमर्ग और गुरेज में तापमान शून्य के आसपास ही रिकॉर्ड किया गया, वो भी रात के बीच में। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल आने वाले 48 घंटे तक पहाड़ों पर और हल्की बर्फबारी हो सकती है, जिससे अब पूरी तरह से कश्मीर में ठंड की शुरुआत हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद मौसम फिर संभलेगा। लेकिन पहाड़ों पर हुई इस ताज़ा बर्फबारी से लोगों ने राहत भी ली है, क्योंकि कश्मीर में पिछले कई हफ्तों से सूखे का मौसम चल रहा था, लेकिन अब इस बर्फबारी ने न सिर्फ किसानों के लिए जो है एक राहत लाई है, बल्कि साथ ही साथ अब कश्मीर में विंटर टूरिज्म की भी शुरुआत इस बर्फबारी के साथ होने लगी है।
0: आसमान से लगातार हो रही बर्फबारी आज और कल भी जारी रहने की संभावना है। मैदानी इलाकों में जहां बारिश होगी, वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। मौसम के इस बदले मिजाज ने कश्मीर की वादियों की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं। फिलहाल उत्तरी कश्मीर के इन ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद कुदरत का मनमोहक नज़ारा देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में पूरी घाटी सफेद बर्फ की चादर से ढकी होगी। उत्तराखंड में भी मौसम ने करवट बदल ली है। पिछले दिनों हुई बारिश के आगे भी जारी रहने के आसार है। 15 और 16 अक्टूबर को प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। मौसम में बदलाव के चलते पर्वतीय इलाकों में ठंड बढ़ने और तापमान में गिरावट आने की संभावना है।
2: जो बर्फबारी है अगले अभी दो दिन तो हम 3800 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में देखने को मिल सकती है, जब

0: जो है 15-16 तारीख में 3500 मीटर तक के ऊंचाई वाले इलाकों में भी देखने को मिल सकती है। 16 तारीख के बाद एक्टिविटी काफ़ी कम रह जाएगी, सिर्फ नॉर्थ के कुछ जो है बहुत ही बिल्कुल नॉर्थ में हमारे उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रपुर पिथौरागढ़ जैसे जनपद है वहीं देखने को मिल सकती है बहुत हल्की से हल्की बारिश।
1: आने वाले दिनों में अच्छी बर्फबारी होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। जाहिर है अक्टूबर में हालात जब ऐसे हैं तो दिसंबर तक पहाड़ी इलाकों में बर्फ का साम्राज्य कायम हो चुका होगा। श्रीनगर से अशरफ वानी और देहरादून से किशन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही है।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: नवरात्र में अमरावती की प्राचीन अंबिका माता मंदिर में रोष हो रहे हैं, मनोकामना के हजारों खंड, दीपक अद्भुत लग रहा है पूरा मंदिर परिसर। देश भर में बन रहे मां के एक से बढ़कर एक पंडाल, रांची में द्वारका नगरी की थीम पर हूबहू बना पंडाल, तो रोहतास में मां वैष्णो देवी की गुफा की तर्ज पर सजा पंडाल। बरेली में 8 साल बाद आसमान में गूंजा सारंग का शौर्य, हेलीकॉप्टर से दिखाए गए हैरतअंगेज हवाई करतब, 15 मिनट तक आसमान में बनाई अलग अलग फॉर्मेशन। पुणे को मिला नया मेडिकल कॉलेज, केंद्र से मिला अप्रूवल, MBBS की होंगी 50 सीट, शैक्षणिक वर्ष 2027-28 से होगी पढ़ाई शुरू, मुख्यमंत्री ने जानकारी दी। प्रदूषण पर नियंत्रण की तैयारी, अप्रैल 2029 से नई कारों और SUVs के लिए BS7 उत्सर्जन मानक लागू करने की तैयारी, 3 चरणों में बदलेंगे कारों और ट्रकों के नियम। नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में जहां हम बात कर रहे हैं दशानन की। चंद रोज बाद ही विजयादशमी के दिन जिसका दहन हो जाएगा, अधर्म और अहंकार के प्रतीक रावण का पुतला जलाना धर्म और अच्छाई की जीत का संदेश होता है, रावण जैसा शक्तिशाली दिखाने के लिए उसके विशाल पुतले बनाए जाते हैं। आज आपको दिल्ली में बनाए गए एक ऐसा ही पुतला हम दिखाने जा रहे हैं जिसकी ऊंचाई जो है 22 मंजिल इमारत जितनी है, और दावा यह किया जा रहा है कि देश का सबसे ऊंचा पुतला है। इसके साथ ही देश को दूसरे शहरों में भी बनाए जा रहे पुतलों पर भी हम बात करेंगे, तस्वीरें दिखाएंगे, साथ ही साथ आपको दिखाएंगे दिल्ली की एक हाईटेक रामलीला जिसमें हमेशा की तरह रावण के किरदार का प्रभावशाली अभिनय दिखेगा। आखिर क्यों चुनौतीपूर्ण होता है रावण का अभिनय, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत रावण के विशालकाय पुतले के साथ करते हैं जिसे दिल्ली के द्वारका में बनाया गया है विजयादशमी पर दहन करने के लिए। आमतौर पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले काफी ऊंचे बनाए जाते हैं, लेकिन दिल्ली में इस बार 22 मंजिला इमारत बराबर रावण तैयार किया गया है जिसे रंगीन कपड़े और भव्य मुकुट से सजाया गया है। दिल्ली ही नहीं, आपको बता दें देश के दूसरे इलाकों में विशालकाय पुतले बनाए गए हैं। चलिए आपको ऐसे ही कुछ पुतले दिखाते हैं।

0: जगजीवन में गूंज रहा लंकेश का अट्टहास, क्योंकि रणभूमि में अभी अपराजय है समर राम रावण का। विजय के लिए इधर शक्ति पूजा में लीन है मर्यादा पुरुषोत्तम, उधर आखिरी युद्ध के लिए तैयार हो रहा दशानन। रामकथा में प्रतीक्षा है उस घड़ी की जब लंकेश धराशाही होगा, माता सीता का प्रभु राम से मिलन होगा, साथ ही अधर्म के प्रतीक रावण का दहन होगा। हालांकि दशमी में कुछ देर है, लेकिन रावण के पुतले बनकर सजकर तैयार हैं। देखिए जैसे रावण का अहंकार वैसे पुतला विशाल, साथ में भाई कुंभकर्ण और बेटा मेघनाथ। ये तस्वीरें दिल्ली के द्वारका की हैं, जहां 222 फीट का रावण बनाया गया है। करीब 22 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई है इस पुतले की, और दावा किया जा रहा है कि ये देश का सबसे ऊंचा रावण है।
1: रावण तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन दिल्ली के द्वारका में एक ऐसा रावण तैयार किया गया है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा रावण है। और जो आप हाईराइज सोसाइटीज देखते हैं, किसी 22 मंजिला इमारत के बराबर का ये रावण बनाया गया है, और बार बार इसके आयोजक दावा कर रहे हैं कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा रावण अब तक का बनाया गया है। आपको बता दें कि लगभग 3 महीने का समय लगा है इस रावण को तैयार करने में। 120 मजदूर इसमें लगातार लगे रहे, वो दिन रात काम करते रहे, तब जाकर ये 3 महीने के भीतर तैयार हो पाया है। 7 टन लोहा इसे बनाने में इस्तेमाल किया गया है, और ये टिका रहे आसानी से, आंधी आए हवा तेज चले तो गिरे नहीं। इसके लिए लगभग 10 फीट नीचे गहरा गड्ढा किया गया है, और उस 10 फीट नीचे गहरे से इसकी नींव डालनी शुरू की गई थी। 40 लाख के आसपास इसका खर्च आया है। चंडीगढ़ के कारीगर इसमें बुलाए गए थे, और कहा जा रहा है कि लगभग जो भी यहाँ पर आप रावण देख रहे हैं, इस रावण के साथ साथ जैसे कि दूसरे और पुतले बनते हैं मेघनाथ और कुंभकर्ण के भी, उनके पुतले भी लगभग 90-90 फीट के बनाए गए हैं।
0: वैसे तो रावण अधर्म और अत्याचार का प्रतीक है, पर यहाँ जो पुतला बना है उसकी भव्यता देखने वाली है। वेलवेट से तैयार रंगीन कपड़े और उस पर ऐसा चमकता दमकता मुकुट जो करीब 25 फीट ऊंचा है। हाँ, एक बात और, ये कपड़े वाटरप्रूफ है, इसलिए बारिश हुई तो रावण गलेगा नहीं, उसे शर्तिया जलना ही होगा।
2: 221 फीट का विशाल रावण तो दिख रहा है। इसको हमने जब स्थापित करा अपने द्वारका श्री रामला सोसाइटी प्रांगण में, हमने 12 फुट पहले गहरा गड्ढा खोदा है, उसके अंदर इसको 12 फुट इसके स्ट्रक्चर को डाला है, ताकि कोई भी आंधी आए चाहे तूफान आए, ये अपनी जगह से टस से मस ना हो। और आपने देखा होगा हमारी रामला, ये अपने रावण के चारों तरफ हमने लोहे की वायर से एकदम कोने कोनों पे इसको बांध रखा है, ताकि इसकी पोजीशन अपनी जगह से ना हिले।
1: कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया, कैसे सोचा गया इसके बारे में?
2: देखिए, हमारी ये द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी पिछले 15 वर्षों से लगातार द्वारका सेक्टर 10 के अंदर रामलीला करवाती आ रही है, और हमारा हर साल का प्रयास रहता है कुछ ना कुछ अपने राम भक्तों को कुछ ना कुछ नया करके दिखाएं, ताकि एक समाज में एक हमारी मैसेज भी अच्छा जाए और कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट भी सबको देखने को मिले। जैसे आपको पता होगा 2024 में भी हमने देश का सबसे बड़ा रावण हमने यहाँ पे दहन करा था, जिसकी हाइट थी 221 फीट। अब की बारी हम अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए 222 फुट का रावण दहन करने जा रहे हैं, और जैसे आप इसकी सुंदरता देखोगे, हमने पूरे के पूरे रावण के ऊपर आप देखो वेलवेट के कपड़े से इसकी सजावट करी हुई है। साथ साथ जो आप इसका फेस देखोगे रावण का, ये बिल्कुल पूरा का पूरा हैंड पेंटेड है। हमारे इसमें दूर दूर से कलाकार आए थे, उन्होंने इसको पूरी ढंग से, मैं कह सकता हूँ इस पूरे रावण के अंदर 3.5 महीने से ज्यादा समय लगते हुए इतना विशाल का रावण आपके सामने प्रस्तुत किया गया है।
0: इस विशाल का रावण का दहन भी खास अंदाज में होगा। भगवान राम का तीर तो चलेगा, लेकिन असल में दहन रिमोट के जरिए होगा। पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे, इसलिए ग्रीन क्रैकर्स का इंतजाम है। यानी कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, आखिरकार बुराई के प्रतीक रावण को खत्म होना है।
1: हम सबको ये बात हमेशा याद रखनी है कि रावण कितना भी भव्य हो, दिव्य हो, ऊंचा हो, आखिर में उसे राख होकर मिट्टी में ही मिलना है, और उसे ही कहते हैं कि बुराई पर सच्चाई ने जीत हासिल कर ली।
0: रावण की जैसी छवि है, कारीगर उसके पुतले में वैसा ही भाव देने का प्रयास करते हैं। रौबदार चेहरा, ऐठी हुई मूछ और दूर से नजर आने वाली विशाल आकृति। यह तस्वीर करनाल की है, जहां रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले लगभग तैयार हैं। कुछ अलग करने की ललक में यहां भी इस बार 75 फुट का पुतला तैयार किया गया है। खास बात यह है कि दहन से पहले इस रावण की गर्दन घूमेगी।
3: करनाल का जो पुतला है वो 75 फुट का है इस बार, और इस बार जो है रावण की गर्दन घूमेगी। जो दर्शक आएंगे देखने के लिए, रावण उनको अपना आप देखेगा घूम घूम करके। लगभग जो है हम अपने पिताजी के साथ में ये काम करते थे छोटे से ही, बचपन से ही। लगभग जो हमारे पास काम है ये एक महीना लगता है इसके अंदर। शुरू जो है हमने जन्माष्टमी के बाद से कर रखी है। इसमें कोई भी कास्ट या धर्म का कोई मामला नहीं है। इंसान का काम करना एक क्रम है, जो इंसान का क्रम है हमने अपने पिताजी से सीखा। और जाहिर सी बात है जो इंसान जिस काम को करता है इंसान उसी के पास जाता है काम कराने के लिए। कोई भी इंसान,
4: लोग आपके पास आते हैं?
3: हमारे पास लगभग सभी जगह से आते हैं काम कराने के लिए, लेकिन फिलहाल जो है हम करनाल डिस्ट्रिक्ट के ही काम पकड़ रहे हैं।
0: इन कारीगरों को रावण के पुतले बनाने का लंबा अनुभव है। 2 दशक से ज्यादा वक्त से दोनों भाई ये काम करते आ रहे हैं और भली भांति जानते हैं कि विजयदशमी पर दहन से पहले रावण का ऊंचा पुतला लोगों को आकर्षित करता है और इसके जलने पर खुशी मिलती है। इसलिए कारीगरों ने दहन के लिए शानदार आतिशबाजी का भी इंतजाम किया है।
5: इस बार हम कलर भी अच्छा देने वाले हैं और गर्दन भी घुमाएंगे। गर्दन के साथ जो आतिशबाजी होती है वो साइडों में भी लगाएंगे हम। गर्दन बहुत अच्छी तरह से घूमेगी और दशहरा भी बहुत ही अच्छा बनेगा जो बात है जी। और हम इसमें 2 महीने से इसमें लगे हुए हैं काम में, रात दिन काम चल रहा है हमारा। आसपास के गांवों के भी काम है, तरावडी के भी काम है, नीलोखेड़ी के भी काम है, करनाल का भी है, और करीब करीब सारे ही गांवों के काम है हमारे पास। एकता का तो ये है जी, हमारे दादाजी करते थे, हमारे पिताजी करते थे और अब हम करते हैं जी।
0: रावण बुरा तो है पर दहन के लिए तैयार हो रहे उसके पुतले कुछ परिवारों के लिए कमाई का जरिया है। देखिए, राजस्थान के कोटा में रावण के छोटे बड़े पुतले तैयार हैं। एक तरफ लोग दशहरे के लिए पुतले खरीद रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कारीगर दिन रात मेहनत कर इन्हें तैयार करने में जुटे हैं। बांस, बल्ली, अखबार और रंगों से तैयार होने वाले इन पुतलों के पीछे कारीगरों का हुनर और कई दिनों की मेहनत छिपी है।
6: 5 साल से बना रहे कोटा में, अब 6 साल हो जाएंगे। हम पहले बांस लाते हैं, बांस की लकड़ी के ढांचे बनाते हैं, ढांचे से फिर पेपर आते हैं, पेपर लगाते हैं, पेपर से फिर रंगील पेपर आते हैं। 3 बार होता है ये मेहनत। फिर इससे मूछे हुए, मुंह हुए, कांखे ये बनाते हैं। 400 से 25 हजार तक है हमारे पास रावण। अब हो चुका है ये नॉर्थ आ रहे, नॉर्थ से सब चालू हो रहे हैं।
0: एक पुतला तैयार करने में बांस की कटाई से लेकर ढांचा बनाने, कागज चढ़ाने और रंगाई करने तक के कई चरणों से गुजरना पड़ता है। हर काम में मेहनत लगती है, समय लगता है। हाँ, पर 2 से 5 हजार तक की लागत वाले ऐसे पुतले 20 हजार तक में बिक जाते हैं। यानी बुराई के बावजूद रावण कमाई करा देता है।
7: माल तो कंप्लीट हो रहा है, अभी 2-3 बाकी है बड़े बड़े, जो सब बना रहे हैं सियालदह सर्किल दशहरा मैदान के पास। अब तैयार हो गए हैं आधे तो, 15 फीट 20 फीट के तो तैयार हो गए हैं, 4 फीट के भी तैयार हो गए हैं। अब बड़ों की बारी है।
0: रावण दहन का धार्मिक पक्ष है, पर इन कारीगरों के लिए दशहरे का सीजन कमाई का भी अवसर होता है। जब रावण का पुतला जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया जाएगा तो उसमें कई दिनों तक मेहनत करने वाले इन कारीगरों का योगदान भी शामिल होगा। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: भगवान राम जहां मर्यादा पुरुषोत्तम है, वहीं रावण अहंकार और अधर्म की पहचान है। कौशल्यानंदन करुणा से भरे हैं तो रावण अभिमान से। रावण की इन बुराइयों को मंच पर दिखाना चुनौतीपूर्ण होता है, इसलिए राम कथा की प्रस्तुति में रावण का किरदार हमेशा फोकस में रहता है। गरजती हुई आवाज, दर्प से भरी हंसी और भयभीत करने वाली भाव भंगिमाएं, रावण के किरदार दर्शकों को रोमांचित करता है। तो चलिए आपको दिल्ली की एक हाईटेक रामलीला दिखाते हैं और रावण की भूमिका निभाने वाले एक्टर से मिलवाते हैं।

दर्प से भरी आवाज, अभिमान से भरी हंसी, लंबा चौड़ा कद और भयभीत कर देने वाली भाव भंगिमा। आसान नहीं है रावण का किरदार निभाना।

0: जितना प्रभावशाली होगा रावण उतना ही असरदार होगा राम कथा का ये संदेश कि आखिरकार अधर्म पर धर्म की विजय होगी। बुराई का नाश होगा और इसीलिए दिल्ली की इस रामलीला में रावण का चरित्र निभाने वाले सिद्धांत ने खास तैयारी की है।
1: रावण नोन फॉर इट्स हिज लाफ, जैसे वो हंसता है, आपकी हंसी है क्या उस तरह से? दिखाना पड़ेगा आपको। तो ब्रॉडवे रामलीला के ग्रीन रूम में है हम, और मेरे साथ इस रामलीला के विशाल काय, भीम काय, रावण मेरे साथ में है। और फिलहाल रावण ग्रीन रूम में कतार में है। कतार में क्यों? क्योंकि अभी उनका मेकअप नहीं हुआ है, मेकअप उनका होना है, लेकिन उसके पहले ही हमने उन्हें पकड़ लिया है। सिद्धांत नाम है इनका और पेशे से बिजनेसमैन है। पिछले 6 साल से वो रावण का रोल प्ले कर रहे हैं।
0: रामलीला में जहाँ जहाँ रावण की एंट्री होती है, कथा में नाटकीयता आती है। दशानन की गरजती आवाज जब गूंजती है तो दर्शकों को रोमांच का अनुभव होता है। इसीलिए किसी भी कलाकार के लिए रावण का अभिनय एक चुनौती होती है।
1: चुना किसने कि रावण प्ले करना है? जितनी आपकी हाइट है, जैसा आपका शरीर है, ऑर्गेनाइजर्स ने या फिर डायरेक्टर ने चूज किया, या आपकी ही चॉइस थी कि मैं शायद इसी रोल के लिए बनाऊं?
2: सर, यहाँ पर चॉइस वाला सिस्टम तो खत्म हो जाता है, क्योंकि जिस प्रोडक्शन में हम काम कर रहे हैं ये मतलब कला दर्शक वाला है, तो यहाँ पर प्रॉपर ऑडिशन, एक पूरी सीरीज है जिससे हम करेक्टर के अंदर चुने जाते हैं, तो प्रॉपर ऑडिशन दिए हमने। तीन चार लोगों के साथ मिलकर ऑडिशन दिया, अलग अलग करेक्टरों के लिए ऑडिशन दिया, उसमें से एक रावण भी था। मेरे को इसके साथ साथ हनुमान, परशुराम, इनके लिए भी ऑडिशन देने का मौका मिला था। बट हाँ, ये बोल सकते हैं कि डायरेक्टर और ऑर्गेनाइजर सबको मेरा रावण किरदार काफ़ी पसंद आया, तो और सौभाग्य से मुझे ये किरदार निभाने का मौका मिला।
1: ब्रॉडवे रामलीला की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर पारंपरिक तरीके के साथ साथ आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भरपूर दिखाई पड़ेगा। 3000 स्क्वायर फीट में यहाँ पर LED लगाई गई हैं। ये सारी 3D LED हैं और ऐसा 3D माहौल तैयार होता है जैसे आप किसी 3D सिनेमा में महसूस करते हैं। जैसे आपको लगता है कि आप देखते हैं तो आप बिल्कुल उसी माहौल में पहुँच गए। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं जो स्क्रीन पर है, ये वो सीन यहाँ पर दिखाया जाएगा जब रावण कैलाश पर्वत पर जाकर तपस्या करता है। जब दर्शक इस सीन को देखते हैं तो वो भी अपने आप को बिल्कुल उसी जगह महसूस करते हैं। ये जो सीन है, यहाँ पर केवट का जो सीन है वो दर्शाया जाएगा, और बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप किसी समंदर, किसी नदी के बीचों बीच पहुँच गए हैं। 3D टेक्नोलॉजी खासियत यही है। ऐसे देखिए, अलग अलग जो सीन है, आप ये देखिए, ये जनकपुर है, और कैसे सीता स्वयंवर के समय जब सभी को इनविटेशन गए थे तो कैसे पूरे जनकपुर को सजाया गया, धजाया गया, सुंदर बनाया गया, ये पूरा सीन इस LED स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा है। और जब दर्शक इसे देखते हैं तो बार बार महसूस करते हैं कि जैसे ये सब कुछ उनकी आंखों के सामने घटित हो रहा है।
0: 100 से ज्यादा कलाकार, 3D विजुअल डिजाइन और आधुनिक विजुअल इफेक्ट्स, सभी का संगम जब स्टेज पर दिखेगा तो यकीनन असरदार होगा। आर्यन हेरिटेज फाउंडेशन की ओर से आयोजित रामलीला की इस साल थीम है चरित्रों का अध्ययन।
3: हम लोगों का ये 12वां साल है आपकी बार हम लोगों ने ये कर रहे हैं, और LED में हमने सिर्फ LED प्लेन LED नहीं लगाई, हम लोगों ने जो है ना इसको 3D में लगाया है। आप देखेंगे, जो अगर महल का सीन है तो आपको लगेगा कि ये महल वास्तव में महल जैसा लग रहा है। अगर आप पार्क में का सीन देखेंगे तो लगेगा आपको पार्क का सीन है। हम लोग 3 घंटे में जो है ना पूरी रामायण डेली जो है वो दिखाते हैं, और इसमें सबसे अच्छी बात ये है हमारी, हम शुद्ध हिंदी में हम लोगों ने इसको बनाया है, जिसको बच्चे जो बहुत आसानी से और बढ़िया तरीके से इसको समझते हैं, और हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम बड़े लोग कहते हैं यार बस बहुत हो गया, इतना लंबा हो गया, बाकी कल देख लेंगे, बच्चे हमें नहीं उठने देते। और उनको एक एक चीज़ याद रहती है और घर जाके वो उसकी प्रैक्टिस करते हैं, रिहर्सल करते हैं। मैं भी पीछे अपने एक दोस्त के घर पे गया था, उसके बच्चे 4 या 5 साल का बच्चा हुआ, उसको एक एक करेक्टर का नाम याद था उसकी, जैसे राम लक्ष्मण सीता वगैरह जो है इनके उनका तो नाम था ही था, सुमित्रा का नाम, जो केकई वगैरह का नाम, इनका सबका नाम याद था। तो बड़ा अच्छा
4: लगता है कि बच्चे सीखे आज के,
3: बिल्कुल। और मेन अच्छी हमें ये लगता है कि भी इससे बच्चे जो है हमारे को हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे रामायण के बारे में, राम के आचरण के बारे में बहुत अच्छा सीखते हैं और बहुत हमें अच्छा लगता है और इसमें हम लोग चेंजेज भी करते रहते हैं।
0: वैसे तो दिल्ली में कई मशहूर रामलीला का मंचन होता है, लेकिन पीतमपुरा के इस रामलीला में तकनीक का हो रहा इस्तेमाल आकर्षित करने वाला है। इसके अलावा कलाकारों की मेहनत भी साफ दिखती है। यहाँ सीता का रोल वो कलाकार निभा रही हैं, जो अयोध्या में पिछले 2 साल से होने वाली रामलीला में सीता का रोल निभा रही है।
1: निकिता थपलियाल मेरे साथ में है, सीता बनी है यहाँ पर, और खास बात ये है कि अयोध्या में जो रामलीला होती है वहाँ भी पिछले 2 साल से सीता का रोल निकिता ही प्ले कर रही हैं। कथक डांसर हैं, आर्टिस्ट हैं, इतना लंबा परिचय है, लेकिन इन सारे परिचय के बीच में जब आपको कोई कहता है कि सीता हैं, ये पहला फीलिंग क्या होता है?
5: मुझे बहुत खुशी होती है कि एक डिवाइन कैरेक्टर जब किसी को भी अगर प्ले करने को दिया जाए तो वो हमारी भावनाएं जुड़ी होती है। हम पुराने टाइम से देख रहे हैं, रामायण हो गई, महाभारत हो गई, तो उस टाइम से कहीं ना कहीं सबके मन में होता है कि कोई ना कोई हम कैरेक्टर करें, और माता सीता जो मतलब हम लोगों के दिलों के इतने करीब हैं, अगर उसका कैरेक्टर करने को मिल रहा है तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं हमेशा ग्रेटफुल हूँ भगवान के लिए, और जो मुझे ये अपॉर्चुनिटी दे रही है मैं उनके लिए भी बहुत ग्रेटफुल हूँ।
0: इस अद्भुत रामलीला में सिर्फ राम कथा नहीं है, बल्कि रामायण के प्रमुख पात्रों के व्यक्तित्व, उनके निर्णयों और उनके आदर्शों को समझने समझाने का प्रयास है। जेन और अल्फा जनरेशन को रामलीला से जोड़ने के लिए रामलीला में दादा और पोते का संवाद भी रखा गया है।
3: हमने इसमें अभी की बार कुछ सीन जो है ना वो वाल्मीकि के रामायण का डालना चाहा है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग जैसे स्वयंवर है, तुलसीदास जी के रामायण में अलग अलग देशों से राजा आते हैं, वो धनुष उठाने की कोशिश करते हैं, और जब धनुष पे राम जी पतंचा चढ़ाते हैं तो स्वयंवर के बाद में परशुराम जी जो है वो आते हैं और लक्ष्मण जी के साथ में संवाद करते हैं। वाल्मीकि के रामायण में ऐसा नहीं है। वाल्मीकि के रामायण में प्रतिज्ञा तो वही होती है, और विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण जी को जनक जी के पास लेके आते हैं तो उसको बता रहे होते हैं कि भाई ऐसे ऐसे हमने प्रतिज्ञा की हुई है, तो वहाँ पे जो है राम जी जो है वो धनुष को पतंजा चढ़ाते हैं, और जब बारात वापस जा रही होती है तब रास्ते में जो है उनको परशुराम जी मिलते हैं, और उनका संवाद लक्ष्मण से नहीं होता, राम जी और दशरथ जी से होता है। तो ये इसमें हमने फिर दादा पोते को इसलिए लेना पड़ा क्योंकि हमने जो देखी है रामायण उसमें परशुराम जी आते हैं और लक्ष्मण जी के साथ में संवाद होता है। बच्चे पूछते हैं दादा से, दादा हमने तो ऐसी रामायण नहीं देखी थी, या हमें क्या दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा अच्छी से अच्छी चीजें जोड़े हैं।
1: अब इस रामायण के बीच में एक दादा पुत्र करेक्टर भी आता है जो आज के जमाने का है,
3: जमाने के हिसाब से उसको कनेक्ट करता है, और हमने इसमें कुछ चीजें साइंस टेक्नोलॉजी से लेके भी मतलब जोड़ने की कोशिश की है, जैसे वेलोसिटी, जैसे धनुष का भारी होने का उसका क्या मतलब है, हम लोग पूजा करते हैं तो वो क्यों करते हैं, दादाजी आरती कर रहे होते हैं तो बच्चे पूछते हैं जी दादाजी आरती करते हैं इससे क्या होता है, राम जी सब कुछ कर सकते हैं तो फिर उनको क्या जरूरत थी कि भैया वनवास जाकर रोज सब करने की। तो बहुत सारी चीज़ें हमने ऐसी दिखाने की कोशिश की है जो आज के रेल के हिसाब से भी रेलेवेंट है।
0: पारंपरिक कथा के साथ आधुनिक तकनीक का मेल, यानी कोशिश है कि रामायण का संदेश नई पीढ़ी तक प्रभावी ढंग से पहुंचे। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: देखिए, भगवान राम के व्यक्तित्व में सौम्यता है तो रावण के व्यक्तित्व में अभिमान, ये फर्क रामलीला के दौरान दोनों के संवाद से भी साफ तौर पर झलकता है, और इसीलिए रावण की भूमिका निभा रहे कलाकारों के लिए संवाद अदायगी महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए आपको ऐसे ही संवादों की कुछ झलक दिखाते हैं।

0: है ओ रावण, जगत नरेश रावण, मैं वो रावण हूं जिसकी गर्जना पर से गर्भवती स्त्रियों की कोख तक गिर जाती है, मैं हूं वो रावण।
1: कायर, शत्रु की महिमा का मंडन करके लोग विजेता रावण को डराने की चेष्टा कर रहे हो, वो भी उस त्रिलोक विजेता लंकापति रावण को जिसके भय से भयभी भी होता है। रावण
0: ये बनवासी छोक रहे लंकापति नरेश रावण से युद्ध करेंगे। वाह, हे राम, याद रख मेरे जीते जी, तुम लंका में प्रवेश नहीं करवाओगे, ये रावण का वादा है। रावण का वादा है। राम, युद्ध करो राम, चलाओ अपने बाण। राम तो वन वन भटक रहा होगा, जंगल जंगल ढूंढ रहा होगा, बिग्र को, हिरण को ढूंढ रहा होगा, तेरा राम।

0: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
3: और न्यूज वक्त में खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।

भाव चेहरे पर उतर आए तो शब्द मायने नहीं रखते। गीत बांग्ला भाषा में है, पर जो ये भाषा नहीं बोलते समझते हैं, यकीनन बात उन तक भी पहुंच रही है, और ना भी पहुंचे तो दिल को सुकून तो दे ही रहे हैं। छोटी बच्चे के पांव की थिरकन, आंखों के इशारे, हाथों का घुमाव, सब मिलजुल कर एक कहानी कह रहे हैं। उसका ये अंदाज लोगों का दिल छू रहा है।

0: रानी लक्ष्मीबाई को हमने नहीं देखा, पर उनकी वीरता और दृढ़ता की जितनी कहानियाँ सुनी हैं, उससे मेल खाती है ये बच्ची। बचपन में ऐसी ही रही होंगी शायद, आत्मविश्वास से भरी, निडर, निर्भीक, हर मुश्किल का सामना करने को तैयार। तलवारबाजी में तो कोई इन्हें हरा ही नहीं सकता, बराबरी की टक्कर दे रही है। बच्ची का रूप, रंग, अंदाज सब लोगों का ध्यान खींच रहा है। लोग उनके इस हुनर की तारीफ कर रहे हैं। बॉलीवुड के गानों की तो बात ही निराली है। क्लासिक सुनना हो तो ओल्ड इज गोल्ड, नहीं तो फिर 90 के दशक के सदाबहार नगमे दुनिया भर में आज भी गुनगुनाए जाते हैं। दीवानगी चीन में भी है। देखिए कैसे दो कलाकार गोविंदा और करिश्मा कपूर के गाने पर थिरक रहे हैं। वेशभूषा अपनी है पर अंदाज हिंदुस्तानी है। इस वीडियो को लोग बार बार देख रहे हैं। इस उम्र में ये जलवा है तो सोचिए जवानी में क्या अंदाज रहा होगा इनका। साथ में युवा चेहरे भी हैं, पर जो बात दादी अम्मा के डांस में है वो किसी और में कहा। पूरी महफिल लूट ली इन्होंने तो। इसे कहते हैं असली डांसर। ये बुजुर्ग जिस एनर्जी के साथ ताल से ताल मिला रहे हैं, उसे देखकर आप डांस के प्रति इनकी दीवानगी समझ सकते हैं। खूबसूरती हो तो ऐसी कि कोई भी दो पल को ठहर जाए। इनकी खूबसूरती के भी चर्चे हैं। इंटरनेट पर वायरल हैं ये। इनके बारे में तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि ये बीजिंग की सबसे खूबसूरत महिला ट्रैफिक पुलिस हैं और एक इंटरनेट सेलिब्रिटी भी। ऐसे में लोग उन्हें देखने अलग अलग शहरों से पहुँचते हैं। इनके फैन फॉलोइंग का तो पता नहीं, पर खूबसूरत तो है ये।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
2: नवरात्र में अमरावती की प्राचीन अंबिका माता मंदिर में रोष हो रहे हैं। मनोकामना के हजारों खंड, दीपक अद्भुत लग रहा है पूरा मंदिर परिसर। देश भर में बन रहे मां के एक से बढ़कर एक पंडाल। रांची में द्वारका नगरी की थीम पर हूबहू बना पंडाल, तो रोहतास में मां वैष्णो देवी की गुफा की तर्ज पर सजा पंडाल। बरेली में 8 साल बाद आसमान में गूंजा सारंग का शौर्य। हेलीकॉप्टर से दिखाए गए हैरत अंगेज हवाई करतब। 15 मिनट तक आसमान में बनाई अलग अलग फॉर्मेशन। पुणे को मिला नया मेडिकल कॉलेज, केंद्र से मिला अप्रूवल। MBBS की होंगी 50 सीट। शैक्षणिक वर्ष 2027-28 से होगी पढ़ाई शुरू, मुख्यमंत्री ने जानकारी दी। प्रदूषण पर नियंत्रण की तैयारी, अप्रैल 2029 से नई कारों और SUVs के लिए BS7 उत्सर्जन मानक लागू करने की तैयारी। 3 चरणों में बदलेंगे कारों और ट्रकों के नियम।

फिर से लांघा बजरंग ने सागर का विस्तार। सेंदु बांध फिर वानर सेना हो गई सागर पार। धू धू करके धधक उठी है फिर अधर्म की लंका। रावण के घर फिर से गूंजा धर्म विजय का डंका। कुल कुटुंब संग खूब लगाए रावण फिर से जोर। फिर ना पाए राम के बल सीता के धैर्य का छोर। अन्याय की चौखट पर फिर हुई न्याय की दस्तक। दशानन के अहंकार का फिर से कट गया मस्तक।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात करेंगे रामलीला की। सनातन धर्म की कहानियां श्री राम को विष्णु का अवतार बताती हैं, लेकिन भारत में राम सिर्फ भगवान नहीं बल्कि राम भारत के जीवन और जीवन पद्धति में शामिल है। श्री राम की जिंदगी से जुड़ी कहानियों में मानव जीवन के लिए कई संदेश छुपे हैं। युगों युगों से राम कहानी भारत और भारतवासियों के दिलों में बसी है और हर साल नवरात्र आते ही भारत के लोगों को उसी राम कहानी को नजदीक से देखने और महसूस करने का मौका मिलता है रामलीला के जरिए। आज हम आपके लिए देश और दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों से होने वाली रामलीला की तस्वीर लेकर आए हैं। लेकिन इससे पहले कि देश के बाहर चलें और दिखाएं रामलीला का इंटरनेशनल स्वरूप, सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो रामलीला जहां भारत के मंच पर ही दुनिया की तकनीक सिमट कर आ गई है। राजधानी दिल्ली में न्यूयॉर्क के ब्रॉडवे थिएटर की तर्ज पर भव्य रामलीला हो रही है। रामलीला में भावों का सागर तो पहले ही अपार होता है, लेकिन ब्रॉडवे स्टाइल की इस रामलीला में तकनीक ने रामकथा मंचन की भव्यता को भी कई गुना बढ़ा दिया है।

0: युग युगांतर से समय की धारा के साथ बहती आई रामायण की ये दिव्य कहानी जो भारत के मन मर्म भाव विचार सोच और संवेदनाओं की पोरों में रमी है, एक बार फिर से दोहराई जा रही है, लेकिन अब की बार बिल्कुल अलग अंदाज में। जब दुनिया के सबसे आधुनिक रंगमंच की तकनीक भारत की हजारों साल पुरानी संस्कृति से मिलती है तो जन्म होता है एक महादृश्य का। ये न्यूयॉर्क का ब्रॉडवे नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली की ब्रॉडवे रामलीला है।
1: इस सभा में उपस्थित सभी सभासदों, ध्यान से सुनो। ये पिनाकी नाम का दिव्य धनुष महादेव रुद्र ने दक्ष के यज्ञ ध्वंस के लिए प्रयुक्त किया था। इस प्रकार आज ये धनुष मिथिला राजवंश के पास मेरे गुरुदेव महादेव शिव की धरोहर के रूप में है। ये कोई स्वयंवर नहीं अपितु षड्यंत्र है।
0: एक ऐसी रामलीला जहां ना तो दृश्यों को बदलने के लिए बार बार पर्दा गिरता है और न ही कहानी को पूरा होने में 10 दिन लगते हैं। यहां पूरी रामायण केवल 3 घंटे के एक हाईटेक संगीतमय नाटक के माध्यम से जीवंत हो उठती है। दिल्ली में होने वाली ब्रॉडवे रामलीला सीधे तौर पर न्यूयॉर्क के ब्रॉडवे थिएटर की तर्ज और उसकी भव्य प्रोडक्शन स्टाइल से प्रेरित है। पारंपरिक रामलीलाओं में जहां खुले मैदानों में कई दिनों तक स्टेज नाटक चलता है, वहीं इस रामलीला को पूरी तरह से एक कमर्शियल ब्रॉडवे म्यूजिकल के रूप में ढाला गया है। इस भव्यता के पीछे है अत्याधुनिक तकनीक का हाथ। न्यूयॉर्क ब्रॉडवे शो की तरह ही दिल्ली की इस रामलीला में भव्य 3D स्टेज डिजाइन, एडवांस डिजिटल बैकड्रॉप्स और अत्याधुनिक लाइटिंग का इस्तेमाल किया जाता है।
2: ब्रॉडवे रामलीला की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर पारंपरिक तरीके के साथ साथ आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भरपूर दिखाई पड़ेगा। 3000 स्क्वायर फीट में यहाँ पर LED लगाई गई हैं। ये सारी 3D LED हैं और ऐसा 3D माहौल तैयार होता है जैसे आप किसी 3D सिनेमा में महसूस करते हैं। जैसे आपको लगता है कि आप देखते हैं तो आप बिल्कुल उसी माहौल में पहुँच गए। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं जो स्क्रीन पर है, ये वो सीन यहाँ पर दिखाया जाएगा जब रावण कैलाश पर्वत पर जाकर तपस्या करता है। जब दर्शक इस सीन को देखते हैं तो वो भी अपने आप को बिल्कुल उसी जगह महसूस करते हैं। ये जो सीन है यहाँ पर केवट का जो सीन है वो दर्शाया जाएगा और बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप किसी समंदर किसी नदी के बीचों बीच पहुँच गए हैं। 3D टेक्नोलॉजी खासियत यही है। ऐसे देखिए अलग अलग जो सीन है, आप ये देखिए, ये जनकपुर है और कैसे सीता स्वयंवर के समय जब सभी को इनविटेशन गए थे तो कैसे पूरे जनकपुर को सजाया गया, धजाया गया, सुंदर बनाया गया, ये पूरा सीन इस LED स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा है। और जब दर्शक इसे देखते हैं तो बार बार महसूस करते हैं कि जैसे ये सब कुछ उनकी आंखों के सामने घटित हो रहा है। इसके सामने ही जो तमाम आर्टिस्ट हैं वो परफॉर्म करते हैं। अब आप ये सीन देखिए लगातार किस तरह से जो यात्रा रही प्रभु श्री राम की सीता जी के साथ, लक्ष्मण के साथ वनवास की यात्रा, वो सीन इस तरह के जो विजुअल्स हैं उस पर दिखाए जाएंगे, उस पर दर्शाए जाएंगे।
0: 3D डिजिटल बैकड्रॉप्स, एडवांस्ड मैपिंग और मूवेबल स्टेज प्रॉपर्टीज के इस्तेमाल से एक बटन दबाते ही पलक झपकते मंच का माहौल बदल जाता है। तकनीक की जादूगरी से मंच पर त्रेता युग का माहौल जीवंत हो उठता है।
2: ये जनक जी का जो दरबार था उसको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। जनक जी यहाँ पर बैठते थे और जनक जी के साथ साथ किस तरह से जो स्वयंवर की प्रक्रिया होती है वो आगे बढ़ती है, उस दृश्य को यहाँ पर दर्शाया जाएगा। ऐसे ही चाहे आप लंका की बात करें, चाहे आप दूसरे करेक्टर्स की बात करें, दूसरी लोकेशंस की बात करें, उन सारी लोकेशंस को इस तरह से तैयार किया गया है कि जब भी दर्शक सामने से देखेंगे आप महसूस करिए कि जैसे मैं यहाँ पर हूँ। और यह एक वन का दृश्य, देखिए वहाँ पर हिरण बना हुआ है, यानी कि वो सीन जब मृग हिरण के पीछे, जिस तरह से जो सोने का हिरण उसके पीछे जब वो भागते हैं तब का सीन किस तरह से दर्शाया जाएगा। इस तरह से पूरी LED के जरिए स्टेज को तैयार किया गया है ताकि सामने बैठा दर्शक पूरी तरह से रिलेट कर पाया अपने आप को कि वो खुद उस माहौल में पहुंच गया है, स्वयं प्रभु श्री राम के पास पहुंच गया है, अयोध्या पहुंच गया है, लंका पहुंच गया है। अब देखिए ये कैकई का कमरा है, उसका एक दृश्य है। जब भी कैकई एक आर्टिस्ट के रूप में आएगी तो उनको इस कमरे में दिखाया जाएगा, कैसे उनके नखरे थे, किस तरह से वो बात करती थी, वो यहाँ दिखाई पड़ेगा। ये कोप भवन है। जब नाराज होकर वो जाती हैं कोप भवन में तो ये उस कोप भवन का दृश्य है। आप सोचिए जब यहाँ पर करेक्टर खड़ा होकर उस डायलॉग्स को बोलेगा उस ड्रेस के साथ में, तो हर कोई सामने से कैकई को महसूस कर पाएगा। ऐसे ही तमाम सारे दृश्य हैं, लंका है और जो युद्ध है उसका मैदान यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह से LED के जरिए पूरी रामायण को, संपूर्ण रामायण को जीवंत करने की एक कोशिश है, और इसी कोशिश के लिए ये ब्रॉडवे रामलीला जानी जाती है। और उम्मीद यही कि इस बार भी दर्शक जब यहाँ पहुँचेंगे तो खुद को प्रभु श्री राम के बेहद करीब इस LED के जरिए, इन विजुअल्स के जरिए खुद को महसूस करेंगे।
0: ब्रॉडवे रामलीला के लिए केवल तकनीक ही नहीं बल्कि हर एक पात्र की वेशभूषा पर भी गहरा शोध किया जाता है। राजा दशरथ के राजसी वैभव से लेकर रावण के 10 सिरों के डिजिटल प्रभाव तक हर बारीक चीज को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार डिजाइन किया गया है।
1: रावण मेरे को मिलना मेरे लिए, मैं बोलूँगा, सौभाग्य की बात है, क्योंकि मेरे को लगता है कि रावण एक ऐसा करेक्टर है जो करना ज्यादा डिफिकल्ट है। क्योंकि अच्छा इंसान तो मैं नेचुरली अगर अपने आप को मानता हूँ, पर स्टेज पे मेरे को दिखाना है कि मैं बुरा इंसान हूँ। उसके साथ साथ ये पता होते हुए कि रावण के अंदर सारा ज्ञान, सब चीज़ों में वो उत्तम था, उसके बावजूद भी स्टेज पर ये जताना कि मैं बुराइयों का प्रतीक हूँ, वो मुझे लगता है थोड़ा एक मेरे लिए चैलेंजिंग पार्ट रहता है। तो मुझे करके काफ़ी अच्छा लगता है कि जिस प्रोडक्शन में हम काम कर रहे हैं ये मतलब कला दर्शक वाला है, तो यहाँ पर प्रॉपर ऑडिशन, एक पूरी सीरीज है जिससे हम करेक्टर के अंदर चुने जाते हैं, तो प्रॉपर ऑडिशन दिए हमने, तीन चार लोगों के साथ मिलकर ऑडिशन दिया, अलग अलग करेक्टरों के लिए ऑडिशन दिया, उसमें से एक रावण भी था। मेरे को इसके साथ साथ हनुमान, परशुराम, इनके लिए भी ऑडिशन देने का मौका मिला था। बट हाँ, ये बोल सकते हैं कि डायरेक्टर और ऑर्गेनाइजर सबको मेरा रावण किरदार काफ़ी पसंद आया, तो और सौभाग्य से मुझे ये किरदार निभाने का मौका मिला।
0: सिर्फ मेकअप ही नहीं बल्कि ब्रॉडवे स्टाइल में एक्टिंग करना भी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि यहाँ बहुत कम समय में गानों और नृत्य के बीच अभिनय की गहराई को दिखाना होता है, हर भावना को सीधे दर्शकों के दिल तक पहुँचाना होता है।
3: एक्टिंग का मुझे शौक है और मुझे बहुत खुशी होती है कि एक डिवाइन कैरेक्टर जब किसी को भी अगर प्ले करने को दिया जाए तो वो हमारी भावनाएं जुड़ी होती है। हम पुराने टाइम से देख रहे हैं, रामायण हो गई, महाभारत हो गई, तो उस टाइम से कहीं ना कहीं सबके मन में होता है कि कोई ना कोई हम कैरेक्टर करें, और माता सीता जो मतलब हम लोगों के दिलों के इतने करीब हैं, अगर उसका कैरेक्टर करने को मिल रहा है तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं हमेशा ग्रेटफुल हूँ भगवान के लिए, और जो मुझे ये अपॉर्चुनिटी दे रही है मैं उनके लिए भी बहुत ग्रेटफुल हूँ।
0: जैसे ब्रॉडवे नाटकों में पात्रों के मानसिक द्वंद और भावनाओं पर बारीकी से काम होता है, ठीक उसी तरह ब्रॉडवे रामलीला में भी चरित्रों पर विशेष अध्ययन होता है जो मंच पर नजर भी आता है। ये केवल कहानी नहीं सुनाती बल्कि रामायण के पात्रों की आंतरिक यात्रा और उनकी दुविधाओं को भी दिखाती है।

0: माता सीता की बात करी जाए तो एक्सप्रेशंस जो हैं वो बिल्कुल नेचुरल है. कैसे वो अपने पति के साथ शादी कर अयोध्या में आई थी, उसके बाद फिर वो वनवास गई थी, तो उसमें अगर थोड़ा भाव देखा जाए तो वो दुखी रही हैं, तो थोड़ा दुख का है. खुशी का तब समय होता है जब स्वयंवर आता है, तो खुशी का है. तो ऐसे एक्सप्रेशंस अलग से नहीं है, पर हाँ मैं मतलब जो भी है बहुत सिंपल है. आप अगर आप स्टेज पे देखेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा.
1: कुल मिलाकर ये पारंपरिक संस्कृति और आधुनिक पश्चिमी रंगमंच कला का ऐसा अनूठा संगम है जो विशेष रूप से आज की युवा पीढ़ी को आकर्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है. जहाँ पारंपरिक रामलीला 9 से 10 दिनों तक चलती है, वहीं ब्रॉडवे की तर्ज पर इस पूरी प्रस्तुति को मात्र 3 घंटे के एक ही शो में समेट दिया गया है. इसमें भगवान राम के जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक की पूरी कहानी बेहद तेज गति और मनोरंजन के साथ दिखाई जाती है.
2: हमने ये विचार बनाया कि एक दिन में ही सारी लीला हो, ताकि कंप्यूटराइज जमाना आ रहा है, इसमें ये हो सके कि एक ही दिन में हम पूरा राम जन्म से राज्याभिषेक तक एक ही दिन में करें, ताकि बच्चे देखें और उसको समझें भी, क्योंकि सीता स्वयंवर भी उसी दिन है, वनवास भी उसी दिन है और राज्याभिषेक भी उसी दिन है, सब चीज़ें उसमें होती है. तो बच्चों को समझ में आ जाता है कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहलाए. तो यही हमारा विचार था. इसके लिए हमने जो मैनेज किया यहाँ पे सिस्टम, 7,000 आदमियों की हमारी गैदरिंग होती है, लेकिन यहाँ पे नीचे गैदरिंग का ये सवाल है कि 12,000 आदमी देखते हैं और सामने जो वो लगे हुए हैं उनके ऊपर भी लोग खड़े होकर बैठ कर देख, खड़े होकर भी देखते हैं, मतलब 14,000 आदमी एक बार देखते हैं. मेरे हिसाब से इतना भव्य जो लीला है, मुझे नहीं लगता कि भाई हमने कभी बचपन में देखा होगा, और हमें भी नहीं पता था कि भगवान रामचंद्र जी हमारे साथ हमारे द्वारा माध्यम से ये लीला ऐसे करें आएंगे.
1: जिस तरह ब्रॉडवे शो की सबसे बड़ी पहचान उसका लाइव या विशेष रूप से तैयार संगीत होता है, इसी तर्ज पर ब्रॉडवे रामलीला के लिए भी कई ओरिजिनल साउंडट्रैक तैयार किए गए हैं, जिन्हें लोकप्रिय भारतीय गायकों ने अपनी आवाज दी है. बता दें कि दिल्ली के पीतमपुरा में इस भव्य ब्रॉडवे रामलीला का मंचन दशहरा तक होने वाला है. नवरात्र के दौरान युद्ध राजधानी दिल्ली के कई मैदान चौराहों, चौक बाजारों, मेलों और मंचों पर रामकथा का रस बरस रहा है, लेकिन आधुनिक तकनीक ने ब्रॉडवे रामलीला को बेहद अलग, भव्य और खास बना दिया है. दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे.
3: और उन्हीं के यहाँ सूर्यवंश में अवतार ही होता.
4: तो ये तो थी बात देश में हो रही इंटरनेशनल तकनीक वाली रामलीला की. अब बात उस रामलीला की जिसके मंचन देश के बाहर हो रहे हैं. कभी श्री राम ने मां सीता के लिए सागर लांघा था, और अब राम कथा की लहरें 7 समंदर पार कर दुनिया के कई देशों तक पहुंच रही है. कुछ रूप बदला, कुछ कहानी बदली, कुछ पात्र बदले, मगर जहां जहां भारतीय गए, जहां जहां भारतीयता गई, वहां वहां राम कथा भी यात्रा करते हुए पहुंची. कई देशों ने भारतीय संस्कृति में ढली हमारी रामलीला को बेहद श्रद्धा से अपनाया है. यही वजह है कि रामलीला आज भारत और दुनिया के कई हिस्सों के बीच और कई देशों में सांस्कृतिक सेतु बन गई है.

भारत ही नहीं बल्कि राम कथा सागर की लहरें दुनिया के जाने कितने ही देशों तक पहुंचती हैं। थाईलैंड, मॉरिशस, कंबोडिया, म्यांमार और इंडोनेशिया जैसे देशों में अलग अलग रूपों में राम कथा का मंचन किया जाता है। मसलन इंडोनेशिया में आबादी के एक बहुत बड़े समूह का मानना है कि इस्लाम जहां उनका धर्म है तो वही रामायण उनकी संस्कृति है। लोग 9वीं सदी में लिखी गई जैवनिस वर्जन ऑफ रामायण को मानते हैं। इंडोनेशिया के जावा में प्रमनाम मंदिर में सेंद्रातारी रामायण लगभग साल भर चलती है। ये राम कथा पर आधारित बैले डांस यानी नृत्य नाटिका है। इसमें सीता हरण और मारीच मरण जैसे दृश्य देखने को मिलते हैं। इसमें एक बार में सैकड़ों कलाकार हिस्सा लेते हैं। कभी कभी तो कलाकारों की संख्या 1000 को भी पार कर जाती है। थाईलैंड में राम की कीर्ति बताने वाली छाया रामलीला का आयोजन होता है। दरअसल थाईलैंड का राष्ट्रीय महाकाव्य रामाकीन है जिसका अर्थ है राम की कीर्ति। ये वाल्मीकि रामायण से लिया गया है और थाई भाषा में है। यहाँ के थिएटर ग्रुप में भी रामलीला भव्य तरीके से आयोजित होती है। थाईलैंड में होने वाली छाया रामलीला को स्थानीय भाषा में नंग कहा जाता है। इसको सफेद पर्दे पर दिखाते हैं, फिर उसके सामने पुतलियों को इस तरह नचाया जाता है कि उसकी छाया पर्दे पर पड़े। मुखौटों का इस्तेमाल कर यहाँ रामलीला की जाती है। नाटक के माध्यम से प्रदर्शित की जाने वाली रामलीला को थाईलैंड में खौन के नाम से जाना जाता है। तरह मॉरिशस में भी बेहद श्रद्धा और चाव के साथ रामलीला गाई जाती है। मॉरिशस की कला और सांस्कृतिक मंत्रालय की ओर से हर साल यहां रामलीला का आयोजन होता है जिसमें झाल ढोलक के साथ रामलीला गाई जाती है। यहां रामलीला इतनी लोकप्रिय है कि इसमें अभिनय के लिए भारतीय कलाकारों को भी बुलाया जाता है।

इसी तरह बौद्ध देश कंबोडिया में भी रामायण का मंचन होता है। यहाँ रामायण को रीम कर और भगवान राम को प्रिय रीम कहा जाता है। सीता नेयांग सेडा और लक्ष्मण प्रिय लीक के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ रामलीला तुलसीदास रचित रामचरितमानस के आधार पर खेली जाती है। दरअसल कंबोडिया में करीब 600 सालों तक हिंदू खमेर साम्राज्य का शासन था। इसी के चलते यहाँ हिंदू धर्म का खासा प्रभाव देखने को मिलता है। बताया जाता है कि यहाँ रीमकर खमेर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध साहित्य है। इसका प्रभाव आज भी कंबोडिया की कला में साफ दिखाई देता है। जबकि म्यांमार की रामलीला यांपवे कहलाती है। इसमें मुखौटों का इस्तेमाल होता है। यहाँ के लोग हास्य रस के बेहद प्रेमी होते हैं, इसलिए यांपवे में विदूषक की भूमिका मुख्य मानी जाती है। यहाँ की रामलीला में ऐसा बहुत कम होता है जब रंगमंच पर विदूषक मौजूद न हो। रामलीला आरंभ होने से पहले एक दो घंटे हास परिहास चलता है। नृत्य और संगीत के कार्यक्रम होते हैं।

इसी तरह बताया जाता है कि जापान के लोकप्रिय कथा संग्रह होबुत्सुशु में भी संक्षिप्त राम कथा संकलित है, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जीवन गाथा का अमृत आज युगों बाद भी

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: कश्मीर में सर्दियों की शुरुआत अभी से हो गई है। मैदानी इलाकों में बारिश और ऊंचे इलाकों में बर्फबारी के कारण घाटी में तापमान काफी गिर चुका है। हालांकि कुछ दिन पहले मौसम कुछ गर्म जरूर था, लेकिन अब सोनमर्ग, कोरेज घाटी समेत कई ऊंचे क्षेत्रों में सर्द मौसम हो चुका है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद कुदरत का मनमोहक नजारा देखने को मिल रहा है, तो इस बर्फबारी का असर घाटी के मैदानी क्षेत्रों में सर्द मौसम के रूप में महसूस होने लगा है। सर्दी का चक्र ऐसे ही चला तो जल्द ही पूरी कश्मीर घाटी सफेद बर्फ की चादर से लिपट जाएगी।

0: सीजन की पहली बर्फबारी के साथ ही पहाड़ों ने सफेदी की चादर ओढ़ ली है। हरी भरी पहाड़ियाँ अब बर्फ की सफेदी में समा गई हैं। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में स्थित कुरेस घाटी की है, जहाँ ऊंचाई वाले इलाकों में जोरदार बर्फबारी हुई है, जबकि श्रीनगर समेत घाटी के मैदानी इलाकों में बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। अक्टूबर का भी आधा महीना ही गुजरा है और गुरेज में पारा शून्य तक लुढ़क चुका है, जबकि श्रीनगर में भी तापमान 15 डिग्री तक गिर चुका है। सैलानियों के साथ साथ स्थानीय किसानों के लिए भी ये बर्फबारी खुशियों की सौगात लेकर आई है। एक और जहां कश्मीर में पर्यटन में तेजी के आसार है, वहीं सूखे के मौसम से किसानों को राहत मिली है।
1: मंगलवार को 15 डिग्री सेंटीग्रेड श्रीनगर का अधिकतम तापमान रहा, जबकि पहाड़ी इलाकों में खासतौर से गुलमर्ग और गुरेज में तापमान शून्य के आसपास ही रिकॉर्ड किया गया, वो भी रात के बीच में। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल आने वाले 48 घंटे तक पहाड़ों पर और हल्की बर्फबारी हो सकती है, जिससे अब पूरी तरह से कश्मीर में ठंड की शुरुआत हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद मौसम फिर संभलेगा। लेकिन पहाड़ों पर हुई इस ताज़ा बर्फबारी से लोगों ने राहत भी ली है, क्योंकि कश्मीर में पिछले कई हफ्तों से सूखे का मौसम चल रहा था, लेकिन अब इस बर्फबारी ने न सिर्फ किसानों के लिए जो है एक राहत लाई है, बल्कि साथ ही साथ अब कश्मीर में विंटर टूरिज्म की भी शुरुआत इस बर्फबारी के साथ होने लगी है।
0: आसमान से लगातार हो रही बर्फबारी आज और कल भी जारी रहने की संभावना है। मैदानी इलाकों में जहां बारिश होगी, वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। मौसम के इस बदले मिजाज ने कश्मीर की वादियों की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं। फिलहाल उत्तरी कश्मीर के इन ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद कुदरत का मनमोहक नजारा देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में पूरी घाटी सफेद बर्फ की चादर से ढकी होगी। उत्तराखंड में भी मौसम ने करवट बदल ली है। पिछले दिनों हुई बारिश के आगे भी जारी रहने के आसार हैं। 15 और 16 अक्टूबर को प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। मौसम में बदलाव के चलते पर्वतीय इलाकों में ठंड बढ़ने और तापमान में गिरावट आने की संभावना है।
2: जो बर्फबारी है अगले अभी दो दिन तो हम 3800 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में देखने को मिल सकती है, जबकि जो है 15-16 तारीख में 3500 मीटर तक के ऊंचाई वाले इलाकों में भी देखने को मिल सकती है। 16 तारीख के बाद एक्टिविटी काफ़ी कम रह जाएगी, सिर्फ नॉर्थ के कुछ जो है बहुत ही बिल्कुल नॉर्थ में हमारे उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जैसे जनपद है, वहीं देखने को मिल सकती है बहुत हल्की से हल्की बारिश।
0: आने वाले दिनों में अच्छी बर्फबारी होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। जाहिर है अक्टूबर में हालात जब ऐसे हैं, तो दिसंबर तक पहाड़ी इलाकों में बर्फ का साम्राज्य कायम हो चुका होगा। श्रीनगर से अशरफ वानी, देहरादून से की शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।

0: पोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे,
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: नवरात्र में अमरावती की प्राचीन अंबिका माता मंदिर में रोष हो रहे हैं, मनोकामना के हजारों खंड, दीपक अद्भुत लग रहा है पूरा मंदिर परिसर। देश भर में बन रहे मां के एक से बढ़कर एक पंडाल, रांची में द्वारका नगरी की थीम पर हूबहू बना पंडाल, तो रोहतास में मां वैष्णो देवी की गुफा की तर्ज पर सजा पंडाल। बरेली में 8 साल बाद आसमान में गूंजा सारंग का शौर्य, हेलीकॉप्टर से दिखाए गए हैरतअंगेज हवाई करतब, 15 मिनट तक आसमान में बनाई अलग अलग फॉर्मेशंस। पुणे को मिला नया मेडिकल कॉलेज, केंद्र से मिला अप्रूवल, MBBS की होंगी 50 सीट्स, शैक्षणिक वर्ष 2027-28 से होगी पढ़ाई शुरू, मुख्यमंत्री ने जानकारी दी। प्रदूषण पर नियंत्रण की तैयारी, अप्रैल 2029 से नई कारों और SUVs के लिए BS7 उत्सर्जन मानक लागू करने की तैयारी, 3 चरणों में बदलेंगे कारों और ट्रकों के नियम। नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में जहां बात कर रहे हैं दशानन की। चंद रोज बाद ही विजयादशमी के दिन जिसका दहन हो जाएगा, अधर्म और अहंकार के प्रतीक रावण का पुतला जलाना धर्म और अच्छाई की जीत का संदेश होता है, रावण जैसा शक्तिशाली दिखाने के लिए उसके विशाल पुतले बनाए जाते हैं। आज आपको दिल्ली में बनाए गए एक ऐसा ही पुतला हम दिखाने जा रहे हैं जिसकी ऊंचाई जो है 22 मंजिल इमारत जितनी है, और दावा यह किया जा रहा है कि देश का सबसे ऊंचा पुतला है। इसके साथ ही देश को दूसरे शहरों में भी बनाए जा रहे पुतलों पर भी हम बात करेंगे, तस्वीरें दिखाएंगे, साथ ही साथ आपको दिखाएंगे दिल्ली की एक हाईटेक रामलीला जिसमें हमेशा की तरह रावण के किरदार का प्रभावशाली अभिनय दिखेगा। आखिर क्यों चुनौतीपूर्ण होता है रावण का अभिनय, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत रावण के विशालकाय पुतले के साथ करते हैं जिसे दिल्ली के द्वारका में बनाया गया है विजयादशमी पर दहन करने के लिए। आमतौर पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले काफी ऊंचे बनाए जाते हैं, लेकिन दिल्ली में इस बार 22 मंजिला इमारत बराबर रावण तैयार किया गया है जिसे रंगीन कपड़े और भव्य मुकुट से सजाया गया है। दिल्ली ही नहीं, आपको बता दें देश के दूसरे इलाकों में विशालकाय पुतले बनाए गए हैं। चलिए आपको ऐसे ही कुछ पुतले दिखाते हैं।

0: जगजीवन में गूंज रहा लंकेश का अट्टहास, क्योंकि रणभूमि में अभी अपराजय है समर राम रावण का। विजय के लिए इधर शक्ति पूजा में लीन है मर्यादा पुरुषोत्तम, उधर आखिरी युद्ध के लिए तैयार हो रहा दशानन। रामकथा में प्रतीक्षा है उस घड़ी की जब लंकेश धराशाही होगा, माता सीता का प्रभु राम से मिलन होगा, साथ ही अधर्म के प्रतीक रावण का दहन होगा। हालांकि दशमी में कुछ देर है, लेकिन रावण के पुतले बनकर सज कर तैयार हैं। देखिए जैसे रावण का अहंकार वैसे पुतला विशाल, साथ में भाई कुंभकर्ण और बेटा मेघनाथ। ये तस्वीरें दिल्ली के द्वारका की है, जहां 222 फीट का रावण बनाया गया है। करीब 22 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई है इस पुतले की, और दावा किया जा रहा है कि यह देश का सबसे ऊंचा रावण है।
1: रावण तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन दिल्ली के द्वारका में एक ऐसा रावण तैयार किया गया है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा रावण है। और जो आप हाई राइज सोसाइटीज देखते हैं, किसी 22 मंजिला इमारत के बराबर का ये रावण बनाया गया है, और बार बार इसके आयोजक दावा कर रहे हैं कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा रावण अब तक का बनाया गया है। आपको बता दें कि लगभग 3 महीने का समय लगा है इस रावण को तैयार करने में। 120 मजदूर इसमें लगातार लगे रहे, वो दिन रात काम करते रहे, तब जाकर ये 3 महीने के भीतर तैयार हो पाया है। 7 टन लोहा इसे बनाने में इस्तेमाल किया गया है, और ये टिका रहे, आसानी से आंधी आए हवा तेज चले तो गिरे नहीं। इसके लिए लगभग 10 फीट नीचे गहरा गड्ढा किया गया है, और उस 10 फीट नीचे गहरे से इसकी नींव डालनी शुरू की गई थी। 40 लाख के आसपास इसका खर्च आया है। चंडीगढ़ के कारीगर इसमें बुलाए गए थे, और कहा जा रहा है कि लगभग जो भी यहाँ पर आप रावण देख रहे हैं, इस रावण के साथ साथ जैसे कि दूसरे और पुतले बनते हैं मेघनाथ और कुंभकर्ण के भी, उनके पुतले भी लगभग 90-90 फीट के बनाए गए हैं।
0: वैसे तो रावण अधर्म और अत्याचार का प्रतीक है, पर यहाँ जो पुतला बना है उसकी भव्यता देखने वाली है। वेलवेट से तैयार रंगीन कपड़े और उस पर ऐसा चमकता दमकता मुकुट जो करीब 25 फीट ऊंचा है। हाँ, एक बात और, ये कपड़े वाटरप्रूफ है, इसलिए बारिश हुई तो रावण गलेगा नहीं, उसे शर्तिया जलना ही होगा।
2: 221 फीट का विशाल रावण तो दिख ही रहा है। इसको हमने जब स्थापित करा अपने द्वारका श्री रामलला सोसाइटी के प्रांगण में, हमने 12 फुट पहले गहरा गड्ढा खोदा है, उसके अंदर इसको 12 फुट इसके स्ट्रक्चर को डाला है, ताकि कोई भी आंधी आए चाहे तूफान आए, ये अपनी जगह से टस से मस ना हो। और आपने देखा होगा हमारे रामलला, ये अपने रावण के चारों तरफ हमने लोहे की वायर से एकदम कोने कोने पे इसको बांध रखा है, ताकि इसकी पोजीशन अपनी जगह से ना हिले।
1: कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया, कैसे सोचा गया इसके बारे में?
2: देखिए, हमारी ये द्वारका श्री रामलला सोसाइटी पिछले 15 वर्षों से लगातार द्वारका सेक्टर 10 के अंदर रामलला करवाती आ रही है, और हमारा हर साल का प्रयास रहता है कुछ ना कुछ अपने राम भक्तों को कुछ ना कुछ नया करके दिखाएं, ताकि एक समाज में एक हमारी मैसेज भी अच्छा जाए और कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट भी सबको देखने को मिले। जैसे आपको पता होगा 2024 में भी हमने देश का सबसे बड़ा रावण हमने यहाँ पे दहन करा था, जिसकी हाइट थी 221 फीट। अब की बारी हम अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए 222 फुट का रावण दहन करने जा रहे हैं, और जैसे आप इसकी सुंदरता देखोगे, हमने पूरे के पूरे रावण के ऊपर आप देखो वेलवेट के कपड़े से इसकी सजावट करी हुई है। साथ साथ जो आप इसका फेस देखोगे रावण का, ये बिल्कुल पूरा का पूरा हैंड पेंटेड है। हमारे इसमें दूर दूर से कलाकार आए थे, उन्होंने इसको पूरी ढंग से, मैं कह सकता हूँ इस पूरे रावण के अंदर 3.5 महीने से ज्यादा समय लगते हुए इतना विशाल का रावण आपके सामने प्रस्तुत किया गया है।
0: इस विशाल का रावण का दहन भी खास अंदाज में होगा। भगवान राम का तीर तो चलेगा, लेकिन असल में दहन रिमोट के जरिए होगा। पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे, इसलिए ग्रीन क्रैकर्स का इंतजाम है। यानी कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, आखिरकार बुराई के प्रतीक रावण को खत्म होना है।
1: हम सबको ये बात हमेशा याद रखनी है कि रावण कितना भी भव्य हो, दिव्य हो, ऊंचा हो, आखिर में उसे राख होकर मिट्टी में ही मिलना है, और उसे ही कहते हैं कि बुराई पर सच्चाई ने जीत हासिल कर ली।
0: रावण की जैसी छवि है, कारीगर उसके पुतले में वैसा ही भाव देने का प्रयास करते हैं। रौबदार चेहरा, ऐठी हुई मूछ और दूर से नजर आने वाली विशाल आकृति। यह तस्वीर करनाल की है, जहां रावण मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले लगभग तैयार हैं। कुछ अलग करने की ललक में यहां भी इस बार 75 फुट का पुतला तैयार किया गया है। खास बात यह है कि दहन से पहले इस रावण की गर्दन घूमेगी।
3: करनाल का जो पुतला है वो 75 फुट का है इस बार, और इस बार जो है रावण की गर्दन घूमेगी। जो दर्शक आएंगे देखने के लिए, रावण उनको अपना आप देखेगा घूम घूम करके। लगभग जो है हम अपने पिताजी के साथ में ये काम करते थे छोटे से ही, बचपन से ही। लगभग जो हमारे पास काम है ये एक महीना लगता है इसके अंदर। शुरू जो है हमने जन्माष्टमी के बाद से कर रखी है। इसमें कोई भी कास्ट या धर्म का कोई मामला नहीं है। इंसान का काम करना एक क्रम है, जो इंसान का क्रम है हमने अपने पिताजी से सीखा। और जाहिर सी बात है जो इंसान जिस काम को करता है इंसान उसी के पास जाता है काम कराने के लिए। कोई भी इंसान,
4: लोग आपके पास आते हैं?
3: हमारे पास लगभग सभी जगह से आते हैं काम कराने के लिए, लेकिन फिलहाल जो है हम करनाल डिस्ट्रिक्ट के ही काम पकड़ रहे हैं।
0: इन कारीगरों को रावण के पुतले बनाने का लंबा अनुभव है। 2 दशक से ज्यादा वक्त से दोनों भाई ये काम करते आ रहे हैं और भली भांति जानते हैं कि विजयदशमी पर दहन से पहले रावण का ऊंचा पुतला लोगों को आकर्षित करता है और इसके जलने पर खुशी मिलती है। इसलिए कारीगरों ने दहन के लिए शानदार आतिशबाजी का भी इंतजाम किया है।
5: इस बार हम कलर भी अच्छा देने वाले हैं और गर्दन भी घुमाएंगे। गर्दन के साथ जो आतिशबाजी होती है वो साइडों में भी लगाएंगे हम। गर्दन बहुत अच्छी तरह से घूमेगी और दशहरा भी बहुत ही अच्छा बनेगा जो बात है जी। और हम इसमें 2 महीने से इसमें लगे हुए हैं काम में, रात दिन काम चल रहा है हमारा। आसपास के गांवों के भी काम है, तरावडी के भी काम है, नीलोखेड़ी के भी काम है, करनाल का भी है और करीब करीब सारे ही गांवों के काम है हमारे पास। एकता का तो ये है जी, हमारे दादाजी करते थे, हमारे पिताजी करते थे और अब हम करते हैं जी।
0: रावण बुरा तो है पर दहन के लिए तैयार हो रहे उसके पुतले कुछ परिवारों के लिए कमाई का जरिया है। देखिए राजस्थान के कोटा में रावण के छोटे बड़े पुतले तैयार हैं। एक तरफ लोग दशहरे के लिए पुतले खरीद रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कारीगर दिन रात मेहनत कर इन्हें तैयार करने में जुटे हैं। बांस, बल्ली, अखबार और रंगों से तैयार होने वाले इन पुतलों के पीछे कारीगरों का हुनर और कई दिनों की मेहनत छिपी है।
6: 5 साल से बना रहे कोटा में, अब 6 साल हो जाएंगे। हम पहले बांस लाते हैं, बांस की ट्रक लकड़ी के ढांचे बनाते हैं, ढांचे से फिर पेपर आते हैं, पेपर लगाते हैं, पेपर से फिर रंगील पेपर आते हैं। 3 बार होता है ये मेहनत। फिर इससे मूछे हुए, मुंह हुए, कांखे ये बनाते हैं। 400 से 25 हजार तक है हमारे पास रावण। अब हो चुका है ये नॉर्थ आ रहे, नॉर्थ से सब चालू हो रहे हैं।
0: एक पुतला तैयार करने में बांस की कटाई से लेकर ढांचा बनाने, कागज चढ़ाने और रंगाई करने तक के कई चरणों से गुजरना पड़ता है। हर काम में मेहनत लगती है, समय लगता है। हाँ, पर 2 से 5 हजार तक की लागत वाले ऐसे पुतले 20 हजार तक में बिक जाते हैं। यानी बुराई के बावजूद रावण कमाई करा देता है।
7: माल तो कम्प्लीट हो रहा है, अभी 2-3 बाकी है बड़े बड़े जो सब मना रहे हैं सियालदह सर्किल दशहरा मैदान के पास। अब तैयार हो गए हैं आधे, तो 15 फीट 20 फीट के तो तैयार हो गए हैं, 4 फीट के भी तैयार हो गए हैं। अब बड़ों की बारी है।
0: रावण दहन का धार्मिक पक्ष है पर इन कारीगरों के लिए दशहरे का सीजन कमाई का भी अवसर होता है। जब रावण का पुतला जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया जाएगा तो उसमें कई दिनों तक मेहनत करने वाले इन कारीगरों का योगदान भी शामिल होगा। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: भगवान राम जहां मर्यादा पुरुषोत्तम है वहीं रावण अहंकार और अधर्म की पहचान है। कौशल्या नंदन करुणा से भरे हैं तो रावण अभिमान से। रावण की इन बुराइयों को मंच पर दिखाना चुनौतीपूर्ण होता है, इसलिए राम कथा की प्रस्तुति में रावण का किरदार हमेशा फोकस में रहता है। गरजती हुई आवाज, दर्प से भरी हंसी और भयभीत करने वाली भाव भंगिमाएं, रावण का किरदार दर्शकों को रोमांचित करता है। तो चलिए आपको दिल्ली की एक हाईटेक रामलीला दिखाते हैं और रावण की भूमिका निभाने वाले एक्टर से मिलवाते हैं।

दर्प से भरी आवाज, अभिमान से भरी हंसी, लंबा चौड़ा कद और भयभीत कर देने वाली भाव भंगिमा। आसान नहीं है रावण का किरदार निभाना।

0: जितना प्रभावशाली होगा रावण उतना ही असरदार होगा राम कथा का ये संदेश कि आखिरकार अधर्म पर धर्म की विजय होगी। बुराई का नाश होगा और इसीलिए दिल्ली की इस रामलीला में रावण का चरित्र निभाने वाले सिद्धांत ने खास तैयारी की है।
1: रावण नोन फॉर इट्स लाफ, जैसे वो हंसता है, आपकी हंसी है क्या उस तरह से? दिखाना पड़ेगा आपको। तो ब्रॉडवे रामलीला के ग्रीन रूम में है हम, और मेरे साथ इस रामलीला के विशाल काय, भीम काय, रावण मेरे साथ में है। और फिलहाल रावण ग्रीन रूम में कतार में है। कतार में क्यों? क्योंकि अभी उनका मेकअप नहीं हुआ है, मेकअप उनका होना है, लेकिन उसके पहले ही हमने उन्हें पकड़ लिया है। सिद्धांत नाम है इनका और पेशे से बिजनेसमैन है। पिछले 6 साल से वो रावण का रोल प्ले कर रहे हैं।
0: रामलीला में जहाँ जहाँ रावण की एंट्री होती है, कथा में नाटकीयता आती है। दशानन की गरजती आवाज जब गूंजती है तो दर्शकों को रोमांच का अनुभव होता है।

0: इसीलिए किसी भी कलाकार के लिए रावण का अभिनय एक चुनौती होती है।
1: चुना किसने कि रावण प्ले करना है, जितनी आपकी हाइट है, जैसा आपका शरीर है, ऑर्गेनाइजर्स ने या फिर डायरेक्टर ने चूज किया, या आपकी ही चॉइस थी कि मैं शायद इसी रोल के लिए बनाऊं?
2: सर, यहाँ पर चॉइस वाला सिस्टम तो खत्म हो जाता है, क्योंकि जिस प्रोडक्शन में हम काम कर रहे हैं ये मतलब कला दर्शक वाला है, तो यहाँ पर प्रॉपर ऑडिशन, एक पूरी सीरीज है जिससे हम करेक्टर के अंदर चुने जाते हैं, तो प्रॉपर ऑडिशन दिए हमने, तीन चार लोगों के साथ मिलकर ऑडिशन दिया, अलग अलग करेक्टरों के लिए ऑडिशन दिया, उसमें से एक रावण भी था। मेरे को इसके साथ साथ हनुमान, परशुराम, इनके लिए भी ऑडिशन देने का मौका मिला था। बट हाँ, ये बोल सकते हैं कि डायरेक्टर और ऑर्गेनाइजर सबको मेरा रावण किरदार काफ़ी पसंद आया, तो और सौभाग्य से मुझे ये किरदार निभाने का मौका मिला।
1: ब्रॉडवे रामलीला की सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर पारंपरिक तरीके के साथ साथ आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भरपूर दिखाई पड़ेगा। 3000 स्क्वायर फीट में यहाँ पर LED लगाई गई हैं, ये सारी 3D LED हैं, और ऐसा 3D माहौल तैयार होता है जैसे आप किसी 3D सिनेमा में महसूस करते हैं। जैसे आपको लगता है कि आप देखते हैं तो आप बिल्कुल उसी माहौल में पहुँच गए, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं जो स्क्रीन पर है, ये वो सीन यहाँ पर दिखाया जाएगा जब रावण कैलाश पर्वत पर जाकर तपस्या करता है। जब दर्शक इस सीन को देखते हैं तो वो भी अपने आप को बिल्कुल उसी जगह महसूस करते हैं। ये जो सीन है यहाँ पर केवट का जो सीन है वो दर्शाया जाएगा, और बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप किसी समंदर, किसी नदी के बीचों बीच पहुँच गए हैं। 3D टेक्नोलॉजी खासियत यही है। ऐसे देखिए अलग अलग जो सीन है, आप ये देखिए, ये जनकपुर है, और कैसे सीता स्वयंवर के समय जब सभी को इनविटेशन गए थे तो कैसे पूरे जनकपुर को सजाया गया, धजाया गया, सुंदर बनाया गया, ये पूरा सीन इस LED स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा है। और जब दर्शक इसे देखते हैं तो बार बार महसूस करते हैं कि जैसे ये सब कुछ उनकी आंखों के सामने घटित हो रहा है।
0: 100 से ज्यादा कलाकार, 3D विजुअल डिजाइन और आधुनिक विजुअल इफेक्ट्स, सभी का संगम जब स्टेज पर दिखेगा तो यकीनन असरदार होगा। आर्यन हेरिटेज फाउंडेशन की ओर से आयोजित रामलीला की इस साल थीम है चरित्रों का अध्ययन।
3: हम लोगों का ये 12वां साल है, अब की बार हम लोगों ने ये कर रहे हैं, और LED में हमने सिर्फ LED प्लेन LED नहीं लगाई, हम लोगों ने जो है ना इसको 3D में लगाया है। आप देखेंगे जो अगर महल का सीन है तो आपको लगेगा कि ये महल वास्तव में महल जैसा लग रहा है, अगर आप पार्क में का सीन देखेंगे तो लगेगा आपको पार्क का सीन है। हम लोग 3 घंटे में जो है ना पूरी रामायण डेली जो है वो दिखाते हैं, और इसमें सबसे अच्छी बात यह है हमारी, हम शुद्ध हिंदी में हम लोगों ने इसको बनाया है, जिसको बच्चे जो बहुत आसानी से और बढ़त तरीके से इसको समझते हैं, और हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम बड़े लोग कहते हैं यार बस बहुत हो गया, इतना लंबा हो गया, बाकी कल देख लेंगे, बच्चे हमें नहीं उठने देते, और उनको एक एक चीज़ याद रहती है और वो घर जाके उसकी प्रैक्टिस करते हैं, रिहर्सल करते हैं। मैं अभी पीछे अपने एक दोस्त के घर पे गया था, उसके बच्चे 4 या 5 साल का बच्चा हुआ, उसको एक एक करेक्टर का नाम याद था, उसकी जैसे राम, लक्ष्मण, सीता वगैरह जो है इनके उनका तो नाम था ही था, सुमित्रा का नाम, जो केकई वगैरह का नाम, इनका सबका नाम याद था, तो
1: ये बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चे सीखे आज के।
3: बिल्कुल, और मेन अच्छी हमें ये लगता है कि भी इससे बच्चे जो है हमारे को हमारी संस्कृति के बारे में, हमारी रामायण के बारे में, राम के आचरण के बारे में बहुत अच्छा सीखते हैं, और बहुत हमें अच्छा लगता है, और इसमें हम लोग चेंजेज भी करते रहते हैं।
0: वैसे तो दिल्ली में कई मशहूर रामलीला का मंचन होता है, लेकिन पीतमपुरा के इस रामलीला में तकनीक का हो रहा इस्तेमाल आकर्षित करने वाला है। इसके अलावा कलाकारों की मेहनत भी साफ दिखती है। यहाँ सीता का रोल वो कलाकार निभा रही हैं जो अयोध्या में पिछले 2 साल से होने वाली रामलीला में सीता का रोल निभा रही है।
1: निकिता थपलियाल मेरे साथ में है, सीता बनी है यहाँ पर, और खास बात ये है कि अयोध्या में जो रामलीला होती है वहाँ भी पिछले 2 साल से सीता का रोल निकिता ही प्ले कर रही हैं। कथक डांसर हैं, आर्टिस्ट हैं, इतना लंबा परिचय है, लेकिन इन सारे परिचय के बीच में जब आपको कोई कहता है कि सीता है, ये पहला फीलिंग क्या होता है?
4: मुझे बहुत खुशी होती है कि एक डिवाइन कैरेक्टर जब किसी को भी अगर प्ले करने को दिया जाए तो वो हमारी भावनाएं जुड़ी होती है। हम पुराने टाइम से देख रहे हैं, रामायण हो गई, महाभारत हो गई, तो उस टाइम से कहीं ना कहीं सबके मन में होता है कि कोई ना कोई हम कैरेक्टर करें। और माता सीता जो मतलब हम लोगों के दिलों के इतने करीब हैं, अगर उसका कैरेक्टर करने को मिल रहा है तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं हमेशा ग्रेटफुल हूँ भगवान के लिए, और जो मुझे ये अपॉर्चुनिटी दे रही है मैं उनके लिए भी बहुत ग्रेटफुल हूँ।
0: इस अद्भुत रामलीला में सिर्फ राम कथा नहीं है, बल्कि रामायण के प्रमुख पात्रों के व्यक्तित्व, उनके निर्णयों और उनके आदर्शों को समझने समझाने का प्रयास है। जेन और अल्फा जनरेशन को रामलीला से जोड़ने के लिए रामलीला में दादा और पोते का संवाद भी रखा गया है।
3: हमने इसमें अभी की बार कुछ सीन जो है ना वो वाल्मीकि के रामायण का डालना चाहा। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग जैसे स्वयंवर है, तुलसीदास जी के रामायण में अलग अलग देशों से राजा आते हैं, वो धनुष उठाने की कोशिश करते हैं, और जब धनुष पे राम जी पतंचा चढ़ाते हैं तो स्वयंवर के बाद में परशुराम जी जो है वो आते हैं और लक्ष्मण जी के साथ में संवाद करते हैं। वाल्मीकि के रामायण में ऐसा नहीं है। वाल्मीकि के रामायण में प्रतिज्ञा तो वही होती है, और विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण जी को जनक जी के पास लेके आते हैं तो उसको बता रहे होते हैं कि भाई ऐसे ऐसे हमने प्रतिज्ञा की हुई है, तो वहाँ पे जो है राम जी जो है वो धनुष को पतंजा चढ़ाते हैं, और जब बारात वापस जा रही होती है तब रास्ते में जो है उनको परशुराम जी मिलते हैं, और उनका संवाद लक्ष्मण से नहीं होता, राम जी और दशरथ जी से होता है। तो ये इसमें हमने फिर दादा और पोते को इसलिए लेना पड़ा क्योंकि हमने जो देखी है रामायण उसमें परशुराम जी आते हैं और लक्ष्मण जी के साथ में संवाद होता है। बच्चे पूछते हैं दादा से, दादा हमने तो ऐसी रामायण नहीं देखी थी, या हमें क्या दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जो कोशिश करते हैं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा अच्छी से अच्छी चीजें जोड़ें।
1: मतलब इस रामायण के बीच में एक दादा पुत्र करेक्टर भी आता है जो आज के जमाने का है,
3: जमाने के हिसाब से उसको कनेक्ट करता है, और हमने इसमें कुछ चीजें साइंस टेक्नोलॉजी से लेके भी मतलब जोड़ने की कोशिश की है, जैसे वेलोसिटी, जैसे कि धनुष का भारी होने का उसका क्या मतलब है, हम लोग पूजा करते हैं तो वो क्यों करते हैं, दादाजी आरती कर रहे होते हैं बच्चे पूछते हैं जी दादाजी आरती करते हैं इससे क्या होता है, राम जी सब कुछ कर सकते हैं तो फिर उनको क्या जरूरत थी कि भैया वनवास जाकर रोज सब करने की। तो बहुत सारी चीजें हमने ऐसी दिखाने की कोशिश की है जो आज के रेल के हिसाब से भी रेलेवेंट है।
0: पारंपरिक कथा के साथ आधुनिक तकनीक का मेल, यानी कोशिश है कि रामायण का संदेश नई पीढ़ी तक प्रभावी ढंग से पहुंचे। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: देखिए, भगवान राम के व्यक्तित्व में सौम्यता है तो रावण के व्यक्तित्व में अभिमान, ये फर्क रामलीला के दौरान दोनों के संवाद से भी साफ तौर पर झलकता है, और इसीलिए रावण की भूमिका निभा रहे कलाकारों के लिए संवाद अदायगी महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए आपको ऐसे ही संवादों की कुछ झलक दिखाते हैं।
6: मैं हूं रावण, जगत नरेश रावण, मैं वो रावण हूं जिसकी गर्जना भर से गर्भवती स्त्रियों की कोख तक गिर जाती है, मैं हूं वो रावण। कायर शत्रु की महिमा का मंडन करके त्रिलोक विजेता रावण को डराने की चेष्टा कर रहे हो, वो भी उस त्रिलोक विजेता लंकापति रावण को जिसके भय से भयभी भी होता है। रावण ये बनवासी छोक रहे लंकापति नरेश रावण से युद्ध करेंगे। वाह, हे राम, याद रख मेरे जीते जी तुम लंका में प्रवेश नहीं करवाओगे, ये रावण का वादा है। रावण का वादा है, राम युद्ध करो राम, चलाओ अपने बाण। राम तो वन वन भटक रहा होगा, जंगल जंगल ढूंढ रहा होगा, मिग्र को, हिरन को ढूंढ रहा होगा तेरा राम।

0: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: और न्यूज वक्त में खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।

भाव चेहरे पर उतर आए तो शब्द मायने नहीं रखते। गीत बांग्ला भाषा में है, पर जो ये भाषा नहीं बोलते समझते हैं, यकीनन बात उन तक भी पहुंच रही है, और ना भी पहुंचे तो दिल को सुकून तो दे ही रहे हैं। छोटी बच्चे के पांव की थिरकन, आंखों के इशारे, हाथों का घुमाव, सब मिलजुल कर एक कहानी कह रहे हैं। उसका ये अंदाज लोगों का दिल छू रहा है।

0: रानी लक्ष्मीबाई को हमने नहीं देखा, पर उनकी वीरता और दृढ़ता की जितनी कहानियाँ सुनी हैं, उससे मेल खाती है ये बच्ची। बचपन में ऐसी ही रही होंगी शायद, आत्मविश्वास से भरी, निडर, निर्भीक, हर मुश्किल का सामना करने को तैयार। तलवारबाजी में तो कोई इन्हें हरा ही नहीं सकता, बराबरी की टक्कर दे रही है। बच्ची का रूप, रंग, अंदाज सब लोगों का ध्यान खींच रहा है। लोग उनके इस हुनर की तारीफ कर रहे हैं। बॉलीवुड के गानों की तो बात ही निराली है। क्लासिक सुनना हो तो ओल्ड इज गोल्ड, नहीं तो फिर 90 के दशक के सदाबहार नगमे दुनिया भर में आज भी गुनगुनाए जाते हैं। दीवानगी चीन में भी है। देखिए कैसे दो कलाकार गोविंदा और करिश्मा कपूर के गाने पर थिरक रहे हैं। वेशभूषा अपनी है पर अंदाज हिंदुस्तानी है। इस वीडियो को लोग बार बार देख रहे हैं। इस उम्र में ये जलवा है तो सोचिए जवानी में क्या अंदाज रहा होगा इनका। साथ में युवा चेहरे भी हैं, पर जो बात दादी अम्मा के डांस में है वो किसी और में कहा। पूरी महफिल लूट ली इन्होंने तो। इसे कहते हैं असली डांसर। ये बुजुर्ग जिस एनर्जी के साथ ताल से ताल मिला रहे हैं, उसे देख कर आप डांस के प्रति इनकी दीवानगी समझ सकते हैं। खूबसूरती हो तो ऐसी कि कोई भी दो पल को ठहर जाए। इनकी खूबसूरती के भी चर्चे हैं, इंटरनेट पर वायरल हैं ये। इनके बारे में तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि ये बीजिंग की सबसे खूबसूरत महिला ट्रैफिक पुलिस हैं और एक इंटरनेट सेलिब्रिटी भी। ऐसे में लोग उन्हें देखने अलग अलग शहरों से पहुँचते हैं। इनके फैन फॉलोइंग का तो पता नहीं, पर खूबसूरत तो है ये।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं। मुझे तकरीबन 21 ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
4: नवरात्र में अमरावती की प्राचीन अंबिका माता मंदिर में रोष हो रहे हैं। मनोकामना के हजारों खंड, दीपक अद्भुत लग रहा है पूरा मंदिर परिसर। देश भर में बन रहे मां के एक से बढ़कर एक पंडाल। रांची में द्वारका नगरी की थीम पर हूबहू बना पंडाल, तो रोहतास में मां वैष्णो देवी की गुफा की तर्ज पर सजा पंडाल। बरेली में 8 साल बाद आसमान में गूंजा सारंग का शौर्य। हेलीकॉप्टर से दिखाए गए हैरतअंगेज हवाई करतब। 15 मिनट तक आसमान में बनाई अलग अलग फॉर्मेशंस। पुणे को मिला नया मेडिकल कॉलेज, केंद्र से मिला अप्रूवल। एमबीबीएस की होंगी 50 सीट। शैक्षणिक वर्ष 2027-28 से होगी पढ़ाई शुरू, मुख्यमंत्री ने जानकारी दी। प्रदूषण पर नियंत्रण की तैयारी, अप्रैल 2029 से नई कारों और एसयूवीज के लिए BS7 उत्सर्जन मानक लागू करने की तैयारी। 3 चरणों में बदलेंगे कारों और ट्रकों के नियम।

फिर से लांघा बजरंग ने सागर का विस्तार। सेतु बांध फिर वानर सेना हो गई सागर पार। धू धू करके धधक उठी है फिर अधर्म की लंका। रावण के घर फिर से गूंजा धर्म विजय का डंका। कुल कुटुंब संग खूब लगाए रावण फिर से जोर। फिर ना पाए राम के बल सीता के धैर्य का छोर। अन्याय की चौखट पर फिर हुई न्याय की दस्तक। दशानन के अहंकार का फिर से कट गया मस्तक।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात करेंगे रामलीला की। सनातन धर्म की कहानियां श्री राम को विष्णु का अवतार बताती हैं, लेकिन भारत में राम सिर्फ भगवान नहीं बल्कि राम भारत के जीवन और जीवन पद्धति में शामिल हैं। श्री राम की जिंदगी से जुड़ी कहानियों में मानव जीवन के लिए कई संदेश छुपे हैं। युगों युगों से राम कहानी भारत और भारतवासियों के दिलों में बसी है और हर साल नवरात्र आते ही भारत के लोगों को उसी राम कहानी को नजदीक से देखने और महसूस करने का मौका मिलता है रामलीला के जरिए। आज हम आपके लिए देश और दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों से होने वाली रामलीला की तस्वीर लेकर आए हैं। लेकिन इससे पहले कि देश के बाहर चलें और दिखाएं रामलीला का इंटरनेशनल स्वरूप, सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो रामलीला जहां भारत के मंच पर ही दुनिया की तकनीक सिमट कर आ गई है। राजधानी दिल्ली में न्यूयॉर्क के ब्रॉडवे थिएटर की तर्ज पर भव्य रामलीला हो रही है। रामलीला में भावों का सागर तो पहले ही अपार होता है, लेकिन ब्रॉडवे स्टाइल की इस रामलीला में तकनीक ने रामकथा मंचन की भव्यता को भी कई गुना बढ़ा दिया है।

0: युग युगांतर से समय की धारा के साथ बहती आई रामायण की ये दिव्य कहानी जो भारत के मन मर्म भाव विचार सोच और संवेदनाओं की पोरों में रमी है एक बार फिर से दोहराई जा रही है लेकिन अब की बार बिल्कुल अलग अंदाज में। जब दुनिया के सबसे आधुनिक रंगमंच की तकनीक भारत की हजारों साल पुरानी संस्कृति से मिलती है तो जन्म होता है एक महादृश्य का। ये न्यूयॉर्क का ब्रॉडवे नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली की ब्रॉडवे रामलीला है।
1: इस सभा में उपस्थित सभी सभासदों, ध्यान से सुनो। ये पिनाकी नाम का दिव्य धनुष महादेव रुद्र ने दक्ष के यज्ञ ध्वंस के लिए प्रयुक्त किया था। इस प्रकार आज ये धनुष मिथिला राजवंश के पास मेरे गुरुदेव महादेव शिव की धरोहर के रूप में है। ये कोई स्वयंवर नहीं अपितु षड्यंत्र है।
0: एक ऐसी रामलीला जहां ना तो दृश्यों को बदलने के लिए बार बार पर्दा गिरता है और न ही कहानी को पूरा होने में 10 दिन लगते हैं। यह पूरी रामायण केवल 3 घंटे के एक हाईटेक संगीतमय नाटक के माध्यम से जीवंत हो उठती है। दिल्ली में होने वाली ब्रॉडवे रामलीला सीधे तौर पर न्यूयॉर्क के ब्रॉडवे थिएटर की तर्ज और उसकी भव्य प्रोडक्शन स्टाइल से प्रेरित है। पारंपरिक रामलीलाओं में जहां खुले मैदानों में कई दिनों तक स्टेज नाटक चलता है वहीं इस रामलीला को पूरी तरह से एक कमर्शियल ब्रॉडवे म्यूजिकल के रूप में ढाला गया है। इस भव्यता के पीछे है अत्याधुनिक तकनीक का हाथ। न्यूयॉर्क ब्रॉडवे शो की तरह ही दिल्ली की इस रामलीला में भव्य 3D स्टेज डिजाइन एडवांस डिजिटल बैकड्रॉप्स और अत्याधुनिक लाइटिंग का इस्तेमाल किया जाता है।
2: ब्रॉडवे रामलीला की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर पारंपरिक तरीके के साथ साथ आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भरपूर दिखाई पड़ेगा। 3000 स्क्वायर फीट में यहाँ पर LED लगाई गई हैं। ये सारी 3D LED हैं और ऐसा 3D माहौल तैयार होता है जैसे आप किसी 3D सिनेमा में महसूस करते हैं। जैसे आपको लगता है कि आप देखते हैं तो आप बिल्कुल उसी माहौल में पहुँच गए। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं जो स्क्रीन पर है ये वो सीन यहाँ पर दिखाया जाएगा जब रावण कैलाश पर्वत पर जाकर तपस्या करता है। जब दर्शक इस सीन को देखते हैं तो वो भी अपने आप को बिल्कुल उसी जगह महसूस करते हैं। ये जो सीन है यहाँ पर केवट का जो सीन है वो दर्शाया जाएगा और बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप किसी समुंदर किसी नदी के बीचों बीच पहुँच गए हैं। 3D टेक्नोलॉजी खासियत यही है। ऐसे देखिए अलग अलग जो सीन है आप ये देखिए ये जनकपुर है और कैसे सीता स्वयंवर के समय जब सभी को इनविटेशन गए थे तो कैसे पूरे जनकपुर को सजाया गया धजाया गया सुंदर बनाया गया ये पूरा सीन इस LED स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा है। और जब दर्शक इसे देखते हैं तो बार बार महसूस करते हैं कि जैसे ये सब कुछ उनकी आंखों के सामने घटित हो रहा है। इसके सामने ही जो तमाम आर्टिस्ट हैं वो परफॉर्म करते हैं। अब आप ये सीन देखिए लगातार किस तरह से जो यात्रा रही प्रभु श्री राम की सीता जी के साथ लक्ष्मण के साथ वनवास की यात्रा वो सीन इस तरह के जो विजुअल्स हैं उस पर दिखाए जाएंगे उस पर दर्शाए जाएंगे।
0: 3D डिजिटल बैकड्रॉप्स एडवांस्ड मैपिंग और मूवेबल स्टेज प्रॉपर्टीज के इस्तेमाल से एक बटन दबाते ही पलक झपकते मंच का माहौल बदल जाता है। तकनीक की जादूगरी से मंच पर त्रेता युग का माहौल जीवंत हो उठता है।
2: ये जनक जी का जो दरबार था उसको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। जनक जी यहाँ पर बैठते थे और जनक जी के साथ साथ किस तरह से जो स्वयंवर की प्रक्रिया होती है वो आगे बढ़ती है उस दृश्य को यहाँ पर दर्शाया जाएगा। ऐसे ही चाहे आप लंका की बात करें चाहे आप दूसरे करेक्टर्स की बात करें दूसरी लोकेशंस की बात करें उन सारी लोकेशंस को इस तरह से तैयार किया गया है कि जब भी दर्शक सामने से देखेंगे आप महसूस करिए कि जैसे मैं यहाँ पर हूँ। और यह एक वन का दृश्य देखिए वहाँ पर हिरण बना हुआ है यानी कि वो सीन जब मृग हिरण के पीछे जिस तरह से जो सोने का हिरण उसके पीछे जब वो भागते हैं तब का सीन किस तरह से दर्शाया जाएगा। इस तरह से पूरी LED के जरिए स्टेज को तैयार किया गया है ताकि सामने बैठा दर्शक पूरी तरह से रिलेट कर पाए अपने आप को कि वो खुद उस माहौल में पहुंच गया है, स्वयं प्रभु श्री राम के पास पहुंच गया है, अयोध्या पहुंच गया है, लंका पहुंच गया है। अब देखिए ये कैकई का कमरा है, उसका एक दृश्य है। जब भी कैकई एक आर्टिस्ट के रूप में आएगी तो उनको इस कमरे में दिखाया जाएगा, कैसे उनके नखरे थे, किस तरह से वो बात करती थी, वो यहाँ दिखाई पड़ेगा। ये को भवन है, जब नाराज होकर वो जाती हैं को भवन में तो ये उस को भवन का दृश्य है। आप सोचिए जब यहाँ पर करेक्टर खड़ा होकर उस डायलॉग्स को बोलेगा उस ड्रेस के साथ में, तो हर कोई सामने से कैकई को महसूस कर पाएगा। ऐसे ही तमाम सारे दृश्य हैं, लंका है और जो युद्ध है उसका मैदान यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह से LED के जरिए पूरी रामायण को, संपूर्ण रामायण को जीवंत करने की एक कोशिश है, और इसी कोशिश के लिए ये ब्रॉडवे रामलीला जानी जाती है। और उम्मीद यही कि इस बार भी दर्शक जब यहाँ पहुँचेंगे तो खुद को प्रभु श्री राम के बेहद करीब इस LED के जरिए, इन विजुअल्स के जरिए खुद को महसूस करेंगे।
0: ब्रॉडवे रामलीला के लिए केवल तकनीक ही नहीं बल्कि हर एक पात्र की वेशभूषा पर भी गहरा शोध किया जाता है। राजा दशरथ के राजसी वैभव से लेकर रावण के 10 सिरों के डिजिटल प्रभाव तक हर बारीक चीज को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार डिजाइन किया गया है।
1: रावण मेरे को मिलना मेरे लिए, मैं बोलूँगा, सौभाग्य की बात है, क्योंकि मेरे को लगता है कि रावण एक ऐसा करेक्टर है जो करना ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि अच्छा इंसान तो मैं नेचुरली अगर अपने आप को मानता हूँ, पर स्टेज पे मेरे को दिखाना है कि मैं बुरा इंसान हूँ। उसके साथ साथ ये पता होते हुए कि रावण के अंदर सारा ज्ञान, सब चीज़ों में वो उत्तम था, उसके बावजूद भी स्टेज पर ये जताना कि मैं बुराइयों का प्रतीक हूँ, वो मुझे लगता है थोड़ा एक मेरे लिए चैलेंजिंग पार्ट रहता है। तो मुझे करके काफ़ी अच्छा लगता है कि जिस प्रोडक्शन में हम काम कर रहे हैं ये मतलब कला दर्शक वाला है, तो यहाँ पर प्रॉपर ऑडिशन, एक पूरी सीरीज है जिससे हम करेक्टर के अंदर चुने जाते हैं, तो प्रॉपर ऑडिशन दिए हमने, तीन चार लोगों के साथ मिलकर ऑडिशन दिया, अलग अलग करेक्टरों के लिए ऑडिशन दिया, उसमें से एक रावण भी था। मेरे को इसके साथ साथ हनुमान, परशुराम, इनके लिए भी ऑडिशन देने का मौका मिला था। बट हाँ, ये बोल सकते हैं कि डायरेक्टर और ऑर्गेनाइजर सबको मेरा रावण किरदार काफ़ी पसंद आया, तो और सौभाग्य से मुझे ये किरदार निभाने का मौका मिला।
0: सिर्फ मेकअप ही नहीं बल्कि ब्रॉडवे स्टाइल में एक्टिंग करना भी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि यहाँ बहुत कम समय में गानों और नृत्य के बीच अभिनय की गहराई को दिखाना होता है, हर भावना को सीधे दर्शकों के दिल तक पहुँचाना होता है।
3: एक्टिंग का मुझे शौक है और मुझे बहुत खुशी होती है कि एक डिवाइन कैरेक्टर जब किसी को भी अगर प्ले करने को दिया जाए तो वो हमारी भावनाएं जुड़ी होती है। हम पुराने टाइम से देख रहे हैं, रामायण हो गई, महाभारत हो गई, तो उस टाइम से कहीं ना कहीं सबके मन में होता है कि कोई ना कोई हम कैरेक्टर करें, और माता सीता जो मतलब हम लोगों के दिलों के इतने करीब हैं, अगर उसका कैरेक्टर करने को मिल रहा है तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं हमेशा ग्रेटफुल हूँ भगवान के लिए, और जो मुझे ये अपॉर्चुनिटी दे रही है मैं उनके लिए भी बहुत ग्रेटफुल हूँ।
0: जैसे ब्रॉडवे नाटकों में पात्रों के मानसिक द्वंद और भावनाओं पर बारीकी से काम होता है, ठीक उसी तरह ब्रॉडवे रामलीला में भी चरित्रों पर विशेष अध्ययन होता है जो मंच पर नजर भी आता है। ये केवल कहानी नहीं सुनाती बल्कि रामायण के पात्रों की आंतरिक यात्रा और उनकी दुविधाओं को भी दिखाती है।

0: माता सीता की बात करी जाए तो एक्सप्रेशंस जो हैं वो बिल्कुल नेचुरल है। कैसे वो अपने पति के साथ शादी कर अयोध्या में आई थी, उसके बाद फिर वो वनवास गई थी, तो उसमें अगर थोड़ा भाव देखा जाए तो वो दुखी रही हैं, तो थोड़ा दुख का है। खुशी का तब समय होता है जब स्वयंवर आता है, तो खुशी का है, तो ऐसे एक्सप्रेशंस अलग से नहीं है। पर हाँ, मैं मतलब जो भी है बहुत सिंपल है, आप अगर आप स्टेज पे देखेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा।
1: कुल मिलाकर ये पारंपरिक संस्कृति और आधुनिक पश्चिमी रंगमंच कला का ऐसा अनूठा संगम है जो विशेष रूप से आज की युवा पीढ़ी को आकर्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। जहाँ पारंपरिक रामलीला 9 से 10 दिनों तक चलती है, वहीं ब्रॉडवे की तर्ज पर इस पूरी प्रस्तुति को मात्र 3 घंटे के एक ही शो में समेट दिया गया है। इसमें भगवान राम के जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक की पूरी कहानी बेहद तेज गति और मनोरंजन के साथ दिखाई जाती है।
2: हमने ये विचार बनाया कि वे एक दिन में ही सारी लीला हो, ताकि कंप्यूटराइज जमाना आ रहा है, इसमें ये हो सके कि एक ही दिन में हम पूरा राम जन्म से राज्याभिषेक तक एक ही दिन में करें, ताकि बच्चे देखें और उसको समझें भी, क्योंकि सीता स्वयंवर भी उसी दिन है, वनवास भी उसी दिन है और राज्याभिषेक भी उसी दिन है, सब चीज़ें उसमें होती है, तो बच्चों को समझ में आ जाता है कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहलाए। तो यही हमारा विचार था। इसके लिए हमने जो मैनेज किया यहाँ पे सिस्टम, 7,000 आदमियों की हमारी गैदरिंग होती है, लेकिन यहाँ पे नीचे गैदरिंग का ये सवाल है कि 12,000 आदमी देखते हैं और सामने जो वो लगे हुए हैं उनके ऊपर भी लोग खड़े होकर बैठ कर देख, खड़े होकर भी देखते हैं, मतलब 14,000 आदमी एक बार देखते हैं। मेरे हिसाब से इतना भव्य जो लीला है, मुझे नहीं लगता कि भी हमने कभी बचपन में देखा होगा, और हमें भी नहीं पता था कि भगवान रामचंद्र जी हमारे साथ हमारे द्वारा माध्यम से ये लीला ऐसे करें आएंगे।
1: जिस तरह ब्रॉडवे शो की सबसे बड़ी पहचान उसका लाइव या विशेष रूप से तैयार संगीत होता है, इसी तर्ज पर ब्रॉडवे रामलीला के लिए भी कई ओरिजिनल साउंडट्रैक तैयार किए गए हैं, जिन्हें लोकप्रिय भारतीय गायकों ने अपनी आवाज दी है। बता दें कि दिल्ली के पीतमपुरा में इस भव्य ब्रॉडवे रामलीला का मंचन दशहरा तक होने वाला है। नवरात्र के दौरान युद्ध राजधानी दिल्ली के कई मैदान चौराहों, चौक बाजारों, मेलों और मंचों पर रामकथा का रस बरस रहा है, लेकिन आधुनिक तकनीक ने ब्रॉडवे रामलीला को बेहद अलग, भव्य और खास बना दिया है। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो ये तो थी बात देश में हो रही इंटरनेशनल तकनीक वाली रामलीला की। अब बात उस रामलीला की जिसके मंचन देश के बाहर हो रहे हैं। कभी श्री राम ने मां सीता के लिए सागर लांघा था और अब राम कथा की लहरें 7 समंदर पार कर दुनिया के कई देशों तक पहुंच रही है। कुछ रूप बदला, कुछ कहानी बदली, कुछ पात्र बदले, मगर जहां जहां भारतीय गए, जहां जहां भारतीयता गई, वहां वहां रामकथा भी यात्रा करते हुए पहुंची। कई देशों ने भारतीय संस्कृति में ढली हमारी रामलीला को बेहद श्रद्धा से अपनाया है। यही वजह है कि रामलीला आज भारत और दुनिया के कई हिस्सों के बीच और कई देशों में सांस्कृतिक सेतु बन गई है।

इसी तरह मॉरिशस में भी बेहद श्रद्धा और चाव के साथ रामलीला गाई जाती है। मॉरिशस की कला और सांस्कृतिक मंत्रालय की ओर से हर साल यहाँ रामलीला का आयोजन होता है, जिसमें झाल ढोलक के साथ रामलीला गाई जाती है। यह रामलीला इतनी लोकप्रिय है कि इसमें अभिनय के लिए भारतीय कलाकारों को भी बुलाया जाता है।

इसी तरह बौद्ध देश कंबोडिया में भी रामायण का मंचन होता है। यहाँ रामायण को रीम कर और भगवान राम को प्रिय रीम कहा जाता है। सीता नेयांग सेडा और लक्ष्मण प्रिय लीक के नाम से जाने जाते हैं। यह रामलीला तुलसीदास रचित रामचरितमानस के आधार पर खेली जाती है। दरअसल कंबोडिया में करीब 600 सालों तक हिंदू खमेर साम्राज्य का शासन था। इसी के चलते यहाँ हिंदू धर्म का खासा प्रभाव देखने को मिलता है। बताया जाता है कि यहाँ रीमकर खमेर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध साहित्य है। इसका प्रभाव आज भी कंबोडिया की कला में साफ दिखाई देता है। जबकि म्यांमार की रामलीला यांपवे कहलाती है। इसमें मुखौटों का इस्तेमाल होता है। यहाँ के लोग हास्य रस के बेहद प्रेमी होते हैं, इसलिए यांपवे में विदूषक की भूमिका मुख्य मानी जाती है। यहाँ की रामलीला में ऐसा बहुत कम होता है जब रंगमंच पर विदूषक मौजूद न हो। रामलीला आरंभ होने से पहले 1-2 घंटे हास परिहास चलता है। नृत्य और संगीत के कार्यक्रम होते हैं।

0: इसी तरह बताया जाता है कि जापान के लोकप्रिय कथा संग्रह होबुत्सुशु में भी संक्षिप्त राम कथा संकलित है, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जीवन गाथा का अमृत आज युगों बाद भी दुनिया के कई कोनों को यूं ही सींच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: कश्मीर में सर्दियों की शुरुआत अभी से हो गई है। मैदानी इलाकों में बारिश और ऊंचे इलाकों में बर्फबारी के कारण घाटी में तापमान काफी गिर चुका है। हालांकि कुछ दिन पहले मौसम कुछ गर्म जरूर था, लेकिन अब सोनमर्ग, कोरेज घाटी समेत कई ऊंचे क्षेत्रों में सर्द मौसम हो चुका है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद कुदरत का मनमोहक नजारा देखने को मिल रहा है, तो इस बर्फबारी का असर घाटी के मैदानी क्षेत्रों में सर्द मौसम के रूप में महसूस होने लगा है। सर्दी का चक्र ऐसे ही चला तो जल्द ही पूरी कश्मीर घाटी सफेद बर्फ की चादर से लिपट जाएगी।

सीजन की पहली बर्फबारी के साथ ही पहाड़ों ने सफेदी की चादर ओढ़ ली है। हरी भरी पहाड़ियाँ अब बर्फ की सफेदी में समा गई हैं। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में स्थित कुरेस घाटी की है, जहाँ ऊंचाई वाले इलाकों में जोरदार बर्फबारी हुई है, जबकि श्रीनगर समेत घाटी के मैदानी इलाकों में बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। अक्टूबर का भी आधा महीना ही गुजरा है और गुरेज में पारा शून्य तक लुढ़क चुका है, जबकि श्रीनगर में भी तापमान 15 डिग्री तक गिर

0: खासतौर से गुलमर्ग और गुरेज में तापमान शून्य के आसपास ही रिकॉर्ड किया गया, वो भी रात के बीच में। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल आने वाले 48 घंटे तक पहाड़ों पर और हल्की बर्फबारी हो सकती है, जिससे अब पूरी तरह से कश्मीर में ठंड की शुरुआत हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद मौसम फिर संभलेगा। लेकिन पहाड़ों पर हुई इस ताज़ा बर्फबारी से लोगों ने राहत भी ली है, क्योंकि कश्मीर में पिछले कई हफ्तों से सूखे का मौसम चल रहा था, लेकिन अब इस बर्फबारी ने न सिर्फ किसानों के लिए जो है एक राहत लाई है, बल्कि साथ ही साथ अब कश्मीर में विंटर टूरिज्म की भी शुरुआत इस बर्फबारी के साथ होने लगी है।
1: आसमान से लगातार हो रही बर्फबारी आज और कल भी जारी रहने की संभावना है। मैदानी इलाकों में जहां बारिश होगी, वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। मौसम के इस बदले मिजाज ने कश्मीर की वादियों की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं। फिलहाल उत्तरी कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद कुदरत का मनमोहक नज़ारा देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में पूरी घाटी सफेद बर्फ की चादर से ढकी होगी। उत्तराखंड में भी मौसम ने करवट बदल ली है। पिछले दिनों हुई बारिश के आगे भी जारी रहने के आसार है। 15 और 16 अक्टूबर को प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। मौसम में बदलाव के चलते पर्वतीय इलाकों में ठंड बढ़ने और तापमान में गिरावट आने की संभावना है।
2: जो बर्फबारी है अगले अभी दो दिन तो हम 3800 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में देखने को मिल सकती है, जबकि जो है 15-16 तारीख में 3500 मीटर तक के ऊंचाई वाले इलाकों में भी देखने को मिल सकती है। 16 तारीख के बाद एक्टिविटी काफ़ी कम रह जाएगी, सिर्फ नॉर्थ के कुछ जो है बहुत ही बिल्कुल नॉर्थ में हमारे उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जैसे जनपद हैं वहीं देखने को मिल सकती है बहुत हल्की से हल्की बारिश।
1: आने वाले दिनों में अच्छी बर्फबारी होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। जाहिर है अक्टूबर में हालात जब ऐसे हैं, तो दिसंबर तक पहाड़ी इलाकों में बर्फ का साम्राज्य कायम हो चुका होगा। श्रीनगर से अशरफ वानी, देहरादून से अकीश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: नवरात्र में अमरावती की प्राचीन अंबिका माता मंदिर में रोष हो रहे हैं, मनोकामना के हजारों खंड, दीपक अद्भुत लग रहा है पूरा मंदिर परिसर। देश भर में बन रहे मां के एक से बढ़कर एक पंडाल, रांची में द्वारका नगरी की थीम पर हूबहू बना पंडाल, तो रोहतास में मां वैष्णो देवी की गुफा की तर्ज पर सजा पंडाल। बरेली में 8 साल बाद आसमान में गूंजा सारंग का शौर्य, हेलीकॉप्टर से दिखाए गए हैरतअंगेज हवाई करतब, 15 मिनट तक आसमान में बनाई अलग अलग फॉर्मेशन। पुणे को मिला नया मेडिकल कॉलेज, केंद्र से मिला अप्रूवल, MBBS की होंगी 50 सीट्स, शैक्षणिक वर्ष 2027-28 से होगी पढ़ाई शुरू, मुख्यमंत्री ने जानकारी दी। प्रदूषण पर नियंत्रण की तैयारी, अप्रैल 2029 से नई कारों और एसयूवीज के लिए BS7 उत्सर्जन मानक लागू करने की तैयारी।

तीन चरणों में बदलेंगे कारों और ट्रकों के नियम। नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं दशानन की। चंद रोज बाद ही विजयादशमी के दिन, जिसका दहन हो जाएगा। अधर्म और अहंकार के प्रतीक रावण का पुतला जलाना धर्म और अच्छाई की जीत का संदेश होता है। रावण जैसा शक्तिशाली दिखाने के लिए उसके विशाल पुतले बनाए जाते हैं। आज आपको दिल्ली में बनाए गए एक ऐसा ही पुतला हम दिखाने जा रहे हैं, जिसकी ऊंचाई जो है 22 मंजिल इमारत जितनी है। और दावा यह किया जा रहा है कि देश का सबसे ऊंचा पुतला है। इसके साथ ही देश को दूसरे शहरों में भी बनाए जा रहे पुतलों पर भी हम बात करेंगे, तस्वीरें दिखाएंगे, साथ ही साथ आपको दिखाएंगे दिल्ली की एक हाईटेक रामलीला, जिसमें हमेशा की तरह रावण के किरदार का प्रभावशाली अभिनव दिखेगा। आखिर क्यों चुनौतीपूर्ण होता है रावण का अभिनय, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत रावण के विशालकाय पुतले के साथ करते हैं, जिसे दिल्ली के द्वारका में बनाया गया है विजयादशमी पर दहन करने के लिए। आमतौर पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले काफी ऊंचे बनाए जाते हैं, लेकिन दिल्ली में इस बार 22 मंजिला इमारत बराबर रावण तैयार किया गया है, जिसे रंगीन कपड़े और भव्य मुकुट से सजाया गया है। दिल्ली ही नहीं, आपको बता दें देश के दूसरे इलाकों में विशालकाय पुतले बनाए गए हैं। चलिए आपको ऐसे ही कुछ पुतले दिखाते हैं।

0: जगजीवन में गूंज रहा लंकेश का अट्टहास, क्योंकि रणभूमि में अभी अपराजय है समर राम रावण का। विजय के लिए इधर शक्ति पूजा में लीन है मर्यादा पुरुषोत्तम, उधर आखिरी युद्ध के लिए तैयार हो रहा दशानन। रामकथा में प्रतीक्षा है उस घड़ी की जब लंकेश धराशाही होगा, माता सीता का प्रभु राम से मिलन होगा, साथ ही अधर्म के प्रतीक रावण का दहन होगा।
1: जले पाप की लंका।
0: हालांकि दशमी में कुछ देर है, लेकिन रावण के पुतले बनकर सजकर तैयार हैं। देखिए जैसे रावण का अहंकार वैसे पुतला विशाल, साथ में भाई कुंभकर्ण और बेटा मेघनाथ। ये तस्वीरें दिल्ली के द्वारका की है, जहां 222 फीट का रावण बनाया गया है। करीब 22 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई है इस पुतले की, और दावा किया जा रहा है कि ये देश का सबसे ऊंचा रावण है।
2: रावण तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन दिल्ली के द्वारका में एक ऐसा रावण तैयार किया गया है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा रावण है। और जो आप हाईराइज सोसाइटीज देखते हैं, किसी 22 मंजिला इमारत के बराबर का ये रावण बनाया गया है, और बार बार इसके आयोजक दावा कर रहे हैं कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा रावण अब तक का बनाया गया है। आपको बता दें कि लगभग 3 महीने का समय लगा है इस रावण को तैयार करने में। 120 मजदूर इसमें लगातार लगे रहे, वो दिन रात काम करते रहे, तब जाकर ये 3 महीने के भीतर तैयार हो पाया है। 7 टन लोहा इसे बनाने में इस्तेमाल किया गया है, और ये टिका रहे आसानी से, आंधी आए हवा तेज चले तो गिरे नहीं। इसके लिए लगभग 10 फीट नीचे गहरा गड्ढा किया गया है, और उस 10 फीट नीचे गहरे से इसकी नींव डालनी शुरू की गई थी। 40 लाख के आसपास इसका खर्च आया है। चंडीगढ़ के कारीगर इसमें बुलाए गए थे, और कहा जा रहा है कि लगभग जो भी यहाँ पर आप रावण देख रहे हैं, इस रावण के साथ साथ जैसे कि दूसरे और पुतले बनते हैं मेघनाथ और कुंभकर्ण के भी, उनके पुतले भी लगभग 90-90 फीट के बनाए गए हैं।
0: वैसे तो रावण अधर्म और अत्याचार का प्रतीक है, पर यहाँ जो पुतला बना है उसकी भव्यता देखने वाली है। वेलवेट से तैयार रंगीन कपड़े और उस पर ऐसा चमकता दमकता मुकुट जो करीब 25 फीट ऊंचा है। हाँ, एक बात और, ये कपड़े वाटरप्रूफ है, इसलिए बारिश हुई तो रावण गलेगा नहीं, उसे शर्तिया जलना ही होगा।
3: 221 फीट का विशाल रावण तो दिख ही रहा है। इसको हमने जब स्थापित करा अपने द्वारका श्री रामला सोसाइटी प्रांगण में, हमने 12 फुट पहले गहरा गड्ढा खोदा है, उसके अंदर इसको 12 फुट इसके स्ट्रक्चर को डाला है, ताकि कोई भी आंधी आए चाहे तूफान आए, ये अपनी जगह से टस से मस ना हो। और आपने देखा होगा हमारी रामलीला, ये अपने रावण के चारों तरफ हमने लोहे की वायर से एकदम कोने कोने पे इसको बांध रखा है, ताकि इसकी पोजीशन अपनी जगह से ना हिले।
2: कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया, कैसे सोचा गया इसके बारे में?
3: देखिए, हमारी ये द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी पिछले 15 वर्षों से लगातार द्वारका सेक्टर 10 के अंदर रामलीला करवाती आ रही है, और हमारा हर साल का प्रयास रहता है कुछ ना कुछ अपने राम भक्तों को कुछ ना कुछ नया करके दिखाएं, ताकि एक समाज में एक हमारी मैसेज भी अच्छा जाए और कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट भी सबको देखने को मिले। जैसे आपको पता होगा 2024 में भी हमने देश का सबसे बड़ा रावण हमने यहाँ पे दहन करा था, जिसकी हाइट थी 221 फीट। अब की बारी हम अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए 222 फुट का रावण दहन करने जा रहे हैं, और जैसे आप इसकी सुंदरता देखोगे, हमने पूरे के पूरे रावण के ऊपर आप देखो वेलवेट के कपड़े से इसकी सजावट करी हुई है। साथ साथ जो आप इसका फेस देखोगे रावण का, ये बिल्कुल पूरा का पूरा हैंड पेंटेड है। हमारे इसमें दूर दूर से कलाकार आए थे, उन्होंने इसको पूरी ढंग से, मैं कह सकता हूँ इस पूरे रावण के अंदर 3.5 महीने से ज्यादा समय लगते हुए इतना विशाल का रावण आपके सामने प्रस्तुत किया गया है।
0: इस विशाल का रावण का दहन भी खास अंदाज में होगा। भगवान राम का तीर तो चलेगा, लेकिन असल में दहन रिमोट के जरिए होगा। पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे, इसलिए ग्रीन क्रैकर्स का इंतजाम है। यानी कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, आखिरकार बुराई के प्रतीक रावण को खत्म होना है।
2: हम सबको ये बात हमेशा याद रखनी है कि रावण कितना भी भव्य हो, दिव्य हो, ऊंचा हो, आखिर में उसे राख होकर मिट्टी में ही मिलना है, और उसे ही कहते हैं कि बुराई पर सच्चाई ने जीत हासिल कर ली।
0: रावण की जैसी छवि है, कारीगर उसके पुतले में वैसा ही भाव देने का प्रयास करते हैं। रौबदार चेहरा, ऐठी हुई मूछ और दूर से नजर आने वाली विशाल आकृति। यह तस्वीर करनाल की है, जहां रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले लगभग तैयार हैं। कुछ अलग करने की ललक में यहां भी इस बार 75 फुट का पुतला तैयार किया गया है। खास बात यह है कि दहन से पहले इस रावण की गर्दन घूमेगी।
4: करनाल का जो पुतला है वो 75 फुट का है इस बार, और इस बार जो है रावण की गर्दन घूमेगी। जो दर्शक आएंगे देखने के लिए, रावण उनको अपना आप देखेगा घूम घूम करके। लगभग जो है हम अपने पिताजी के साथ में ये काम करते थे छोटे से ही, बचपन से ही। लगभग जो हमारे पास काम है ये 1 महीना लगता है इसके अंदर। शुरू जो है हमने जन्माष्टमी के बाद से कर रखी है। इसमें कोई भी कास्ट या धर्म का कोई मामला नहीं है। इंसान का काम करना एक क्रम है, जो इंसान का क्रम है हमने अपने पिताजी से सीखा। और जाहिर सी बात है, जो इंसान जिस काम को करता है इंसान उसी के पास जाता है काम कराने के लिए। कोई भी इंसान,
5: लोग आपके पास आते हैं?
4: हमारे पास लगभग सभी जगह से आते हैं काम कराने के लिए, लेकिन फिलहाल जो है हम करनाल डिस्ट्रिक्ट के ही काम पकड़ रहे हैं।
0: इन कारीगरों को रावण के पुतले बनाने का लंबा अनुभव है। 2 दशक से ज्यादा वक्त से दोनों भाई ये काम करते आ रहे हैं और भली भांति जानते हैं कि विजयदशमी पर दहन से पहले रावण का ऊंचा पुतला लोगों को आकर्षित करता है और इसके जलने पर खुशी मिलती है। इसलिए कारीगरों ने दहन के लिए शानदार आतिशबाजी का भी इंतजाम किया है।
6: इस बार हम कलर भी अच्छा देने वाले हैं और गर्दन भी घुमाएंगे। गर्दन के साथ जो आतिशबाजी होती है वो साइडों में भी लगाएंगे हम। गर्दन बहुत अच्छी तरह से घूमेगी और दशहरा भी बहुत ही अच्छा बनेगा जो बात है जी। और हम इसमें 2 महीने से इसमें लगे हुए हैं काम में, रात दिन काम चल रहा है हमारा। आसपास के गांवों के भी काम है, तरावड़ी के भी काम है, नीलोखेड़ी के भी काम है, करनाल का भी है और करीब करीब सारे ही गांवों के काम है हमारे पास। एकता का तो ये है जी, हमारे दादाजी करते थे, हमारे पिताजी करते थे और अब हम करते हैं जी।
0: रावण बुरा तो है पर दहन के लिए तैयार हो रहे उसके पुतले कुछ परिवारों के लिए कमाई का जरिया है। देखिए राजस्थान के कोटा में रावण के छोटे बड़े पुतले तैयार हैं। एक तरफ लोग दशहरे के लिए पुतले खरीद रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कारीगर दिन रात मेहनत कर इन्हें तैयार करने में जुटे हैं। बांस, बल्ली, अखबार और रंगों से तैयार होने वाले इन पुतलों के पीछे कारीगरों का हुनर और कई दिनों की मेहनत छिपी है।
7: 5 साल से बना रहे कोटा में, अब 6 साल हो जाएंगे। हम पहले बांस लाते हैं, बांस की तरह लकड़ी के ढांचे बनाते हैं, ढांचे से फिर पेपर आते हैं, पेपर लगाते हैं, पेपर से फिर रंगील पेपर आते हैं। 3 बार होता है ये मेहनत। फिर इससे मूछे हुए, मुंह हुए, कांखे ये बनाते हैं। 400 से 25 हजार तक है हमारे पास रावण। अब हो चुका है ये नॉर्थ आ रहे, नॉर्थ से सब चालू हो रहे हैं।
0: एक पुतला तैयार करने में बांस की कटाई से लेकर ढांचा बनाने, कागज चढ़ाने और रंगाई करने तक के कई चरणों से गुजरना पड़ता है। हर काम में मेहनत लगती है, समय लगता है। हाँ, पर 2 से 5 हजार तक की लागत वाले ऐसे पुतले 20 हजार तक में बिक जाते हैं। यानी बुराई के बावजूद रावण कमाई करा देता है।
8: माल तो कम्प्लीट हो रहा है, अभी 2-3 बाकी है बड़े बड़े जो सब मना रहे हैं सियालदह सर्किल दशहरा मैदान के पास। अब तैयार हो गए आधे तो, 15 फीट 20 फीट के तो तैयार हो गए, 4 फीट के भी तैयार हो गए। अब बड़ों की बारी है।
0: रावण दहन का धार्मिक पक्ष है, पर इन कारीगरों के लिए दशहरे का सीजन कमाई का भी अवसर होता है। जब रावण का पुतला जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया जाएगा तो उसमें कई दिनों तक मेहनत करने वाले इन कारीगरों का योगदान भी शामिल होगा। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: भगवान राम जहां मर्यादा पुरुषोत्तम है, वहीं रावण अहंकार और अधर्म की पहचान है। कौशल्या नंदन करुणा से भरे हैं तो रावण अभिमान से। रावण की इन बुराइयों को मंच पर दिखाना चुनौतीपूर्ण होता है, इसलिए राम कथा की प्रस्तुति में रावण का किरदार हमेशा फोकस में रहता है। गरजती हुई आवाज, दर्प से भरी हंसी और भयभीत करने वाली भाव भंगिमाएं, रावण के किरदार दर्शकों को रोमांचित करता है। तो चलिए आपको दिल्ली की एक हाईटेक रामलीला दिखाते हैं और रावण की भूमिका निभाने वाले एक्टर से मिलवाते हैं।

दर्प से भरी आवाज, अभिमान से भरी हंसी, लंबा चौड़ा कद और भयभीत कर देने वाली भाव भंगिमा। आसान नहीं है रावण का किरदार निभाना।

0: जितना प्रभावशाली होगा रावण उतना ही असरदार होगा राम कथा का ये संदेश कि आखिरकार अधर्म पर धर्म की विजय होगी। बुराई का नाश होगा और इसीलिए दिल्ली की इस रामलीला में रावण का चरित्र निभाने वाले सिद्धांत ने खास तैयारी की है।
1: रावण is known for its his laugh, जैसे वो हंसता है, आपकी हंसी है क्या उस तरह से? दिखाना पड़ेगा आपको। तो ब्रॉडवे रामलीला के ग्रीन रूम में है हम, और मेरे साथ इस रामलीला के विशाल काय, भीम काय, रावण मेरे साथ में है। और फिलहाल रावण ग्रीन रूम में कतार में है। कतार में क्यों? क्योंकि अभी उनका मेकअप नहीं हुआ है, मेकअप उनका होना है, लेकिन उसके पहले ही हमने उन्हें पकड़ लिया है। सिद्धांत नाम है इनका और पेशे से बिजनेसमैन है। पिछले 6 साल से वो रावण का रोल प्ले कर रहे हैं।
0: रामलीला में जहाँ जहाँ रावण की एंट्री होती है, कथा में नाटकीयता आती है। दशानन की गरजती आवाज जब गूंजती है तो दर्शकों को रोमांच का अनुभव होता है।

0: इसीलिए किसी भी कलाकार के लिए रावण का अभिनय एक चुनौती होती है।
1: चुना किसने कि रावण प्ले करना है, जितनी आपकी हाइट है, जैसा आपका शरीर है, ऑर्गेनाइजर्स ने या फिर डायरेक्टर ने चूज किया, या आपकी ही चॉइस थी कि मैं शायद इसी रोल के लिए बनाऊं?
2: सर, यहाँ पर चॉइस वाला सिस्टम तो खत्म हो जाता है, क्योंकि जिस प्रोडक्शन में हम काम कर रहे हैं ये मतलब कला दर्शक वाला है, तो यहाँ पर प्रॉपर ऑडिशन, एक पूरी सीरीज है जिससे हम करेक्टर के अंदर चुने जाते हैं, तो प्रॉपर ऑडिशन दिए हमने, तीन चार लोगों के साथ मिलकर ऑडिशन दिया, अलग अलग करेक्टरों के लिए ऑडिशन दिया, उसमें से एक रावण भी था। मेरे को इसके साथ साथ हनुमान, परशुराम, इनके लिए भी ऑडिशन देने का मौका मिला था। बट हाँ, ये बोल सकते हैं कि डायरेक्टर और ऑर्गेनाइजर सबको मेरा रावण किरदार काफ़ी पसंद आया, तो और सौभाग्य से मुझे ये किरदार निभाने का मौका मिला।
1: ब्रॉडवे रामलीला की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर पारंपरिक तरीके के साथ साथ आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भरपूर दिखाई पड़ेगा। 3000 स्क्वायर फीट में यहाँ पर LED लगाई गई हैं, ये सारी 3D LED हैं, और ऐसा 3D माहौल तैयार होता है जैसे आप किसी 3D सिनेमा में महसूस करते हैं। जैसे आपको लगता है कि आप देखते हैं तो आप बिल्कुल उसी माहौल में पहुँच गए, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं जो स्क्रीन पर है, ये वो सीन यहाँ पर दिखाया जाएगा जब रावण कैलाश पर्वत पर जाकर तपस्या करता है। जब दर्शक इस सीन को देखते हैं तो वो भी अपने आप को बिल्कुल उसी जगह महसूस करते हैं। ये जो सीन है यहाँ पर केवट का जो सीन है वो दर्शाया जाएगा, और बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप किसी समंदर, किसी नदी के बीचों बीच पहुँच गए हैं। 3D टेक्नोलॉजी खासियत यही है। ऐसे देखिए अलग अलग जो सीन है, आप ये देखिए, ये जनकपुर है, और कैसे सीता स्वयंवर के समय जब सभी को इन्विटेशन गए थे तो कैसे पूरे जनकपुर को सजाया गया, धजाया गया, सुंदर बनाया गया, ये पूरा सीन इस LED स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा है। और जब दर्शक इसे देखते हैं तो बार बार महसूस करते हैं कि जैसे ये सब कुछ उनकी आंखों के सामने घटित हो रहा है।
0: 100 से ज्यादा कलाकार, 3D विजुअल डिजाइन और आधुनिक विजुअल इफेक्ट्स, सभी का संगम जब स्टेज पर दिखेगा तो यकीनन असरदार होगा। आर्यन हेरिटेज फाउंडेशन की ओर से आयोजित रामलीला की स्टाइल थीम है चरित्रों का अध्ययन।
3: हम लोगों का ये 12वां साल है, अब की बार हम लोगों ने ये कर रहे हैं, और LED में हमने सिर्फ LED प्लेन LED नहीं लगाई, हम लोगों ने जो है ना इसको 3D में लगाया है। आप देखेंगे जो अगर महल का सीन है तो आपको लगेगा कि ये महल वास्तव में महल जैसा लग रहा है, अगर आप पार्क में का सीन देखेंगे तो लगेगा आपको पार्क का सीन है। हम लोग 3 घंटे में जो है ना पूरी रामायण डेली जो है वो दिखाते हैं, और इसमें सबसे अच्छी बात ये है हमारी, हम शुद्ध हिंदी में हम लोगों ने इसको बनाया है, जिसको बच्चे जो बहुत आसानी से और बढ़िया तरीके से इसको समझते हैं, और हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम बड़े लोग कहते हैं यार बस बहुत हो गया, इतना लंबा हो गया, बाकी कल देख लेंगे, बच्चे हमें नहीं उठने देते, और उनको एक एक चीज़ याद रहती है और घर जाके वो उसकी प्रैक्टिस करते हैं, रिहर्सल करते हैं। मैं अभी पीछे अपने एक दोस्त के घर पे गया था, उसके बच्चे 4 या 5 साल का बच्चा हुआ, उसको एक एक करेक्टर का नाम याद था, उसकी जैसे राम, लक्ष्मण, सीता वगैरह जो है इनके उनका तो नाम था ही था, सुमित्रा का नाम, जो केकई वगैरह का नाम, इनका सबका नाम याद था,
1: तो बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चे सीखे आज के।
3: बिल्कुल, और मेन अच्छी हमें ये लगता है कि भी इससे बच्चे जो है हमारे को हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे रामायण के बारे में, राम के आचरण के बारे में बहुत अच्छा सीखते हैं, और बहुत हमें अच्छा लगता है, और इसमें हम लोग चेंजेज भी करते रहते हैं।
0: वैसे तो दिल्ली में कई मशहूर रामलीला का मंचन होता है, लेकिन पीतमपुरा के इस रामलीला में तकनीक का हो रहा इस्तेमाल आकर्षित करने वाला है। इसके अलावा कलाकारों की मेहनत भी साफ दिखती है। यहाँ सीता का रोल वो कलाकार निभा रहे हैं जो अयोध्या में पिछले 2 साल से होने वाली रामलीला में सीता का रोल निभा रहे हैं।
1: निकिता थपलियाल मेरे साथ में है, सीता बनी है यहाँ पर, और खास बात ये है कि अयोध्या में जो रामलीला होती है वहाँ भी पिछले 2 साल से सीता का रोल निकिता ही प्ले कर रही हैं। कथक डांसर हैं, आर्टिस्ट हैं, इतना लंबा परिचय है, लेकिन इन सारे परिचय के बीच में जब आपको कोई कहता है कि सीता हैं, ये पहला फीलिंग क्या होता है?
4: मुझे बहुत खुशी होती है कि एक डिवाइन कैरेक्टर जब किसी को भी अगर प्ले करने को दिया जाए तो वो हमारी भावनाएं जुड़ी होती है। हम पुराने टाइम से देख रहे हैं, रामायण हो गई, महाभारत हो गई, तो उस टाइम से कहीं ना कहीं सबके मन में होता है कि कोई ना कोई हम कैरेक्टर करें। और माता सीता जो मतलब हम लोगों के दिलों के इतने करीब हैं, अगर उसका कैरेक्टर करने को मिल रहा है तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं हमेशा ग्रेटफुल हूँ भगवान के लिए, और जो मुझे ये अपॉर्चुनिटी दे रही है मैं उनके लिए भी बहुत ग्रेटफुल हूँ।
0: इस अद्भुत रामलीला में सिर्फ राम कथा नहीं है, बल्कि रामायण के प्रमुख पात्रों के व्यक्तित्व, उनके निर्णयों और उनके आदर्शों को समझने समझाने का प्रयास है। जेन और अल्फा जनरेशन को रामलीला से जोड़ने के लिए रामलीला में दादा और पोते का संवाद भी रखा गया है।
3: हमने इसमें अब की बार कुछ सीन जो है ना वो वाल्मीकि के रामायण का डालना चाहा है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग जैसे स्वयंवर है, तुलसीदास जी के रामायण में अलग अलग देशों से राजा आते हैं, वो धनुष उठाने की कोशिश करते हैं, और जब धनुष पे राम जी पतंचा चढ़ाते हैं तो स्वयंवर के बाद में परशुराम जी जो है वो आते हैं और लक्ष्मण जी के साथ में संवाद करते हैं। वाल्मीकि के रामायण में ऐसा नहीं है। वाल्मीकि के रामायण में प्रतिज्ञा तो वही होती है, और विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण जी को जनक जी के पास लेके आते हैं तो उसको बता रहे होते हैं कि भाई ऐसे ऐसे प्रतिज्ञा की हुई है, तो वहाँ पे जो है राम जी जो है वो धनुष को पतंजा चढ़ाते हैं, और जब बारात वापस जा रही होती है तब रास्ते में जो है उनको परशुराम जी मिलते हैं, और उनका संवाद लक्ष्मण से नहीं होता, राम जी और दशरथ जी से होता है। तो ये इसमें हमने फिर दादा और पोते को इसलिए लेना पड़ा क्योंकि हमने जो देखी है रामायण उसमें परशुराम जी आते हैं और लक्ष्मण जी के साथ में संवाद होता है। बच्चे पूछते हैं दादा से, दादा हमने तो ऐसी रामायण नहीं देखी थी, या आप हमें क्या दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा अच्छी से अच्छी चीजें जोड़े हैं।
1: मतलब इस रामायण के बीच में एक दादा पुत्र करेक्टर भी आता है जो आज के जमाने का है,
3: जमाने के हिसाब से उसको कनेक्ट करता है, और हमने इसमें कुछ चीजें साइंस टेक्नोलॉजी से लेके भी मतलब जोड़ने की कोशिश की है, जैसे वेलोसिटी, जैसे कि धनुष का भारी होने का उसका क्या मतलब है, हम लोग पूजा करते हैं तो वो क्यों करते हैं, दादाजी आरती कर रहे होते हैं बच्चे पूछते हैं जी दादाजी आरती करते हैं इससे क्या होता है, राम जी सब कुछ कर सकते हैं तो फिर उनको क्या जरूरत थी कि भैया वनवास जाकर रोज सब करने की। तो बहुत सारी चीजें हमने ऐसी दिखाने की कोशिश की है जो आज के रेल के हिसाब से भी रेलेवेंट है।
0: पारंपरिक कथा के साथ आधुनिक तकनीक का मेल, यानी कोशिश है कि रामायण का संदेश नई पीढ़ी तक प्रभावी ढंग से पहुंचे। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: देखिए, भगवान राम के व्यक्तित्व में सौम्यता है तो रावण के व्यक्तित्व में अभिमान, ये फर्क रामलीला के दौरान दोनों के संवाद से भी साफ तौर पर झलकता है, और इसीलिए रावण की भूमिका निभा रहे कलाकारों के लिए संवाद अदायगी महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए आपको ऐसे ही संवादों की कुछ झलक दिखाते हैं।
6: मैं हूं रावण, जगत नरेश रावण, मैं वो रावण हूं जिसकी गर्जना पर से गर्भवती स्त्रियों की कोख तक गिर जाती है, मैं हूं वो रावण। कायर शत्रु की महिमा का मंडन करके त्रिलोक विजेता रावण को डराने की चेष्टा कर रहे हो, वो भी उस त्रिलोक विजेता लंकापति रावण को जिसके भय से भयभीत होता है। रावण ये बनवासी छोक रहे लंकापति नरेश रावण से युद्ध करेंगे। वाह, हे राम, याद रख मेरे जीते जी, तुम लंका में प्रवेश नहीं करवाओगे, ये रावण का वादा है। रावण का युद्ध करो राम, चलाओ अपने बाण। राम तो वन वन भटक रहा होगा, जंगल जंगल ढूंढ रहा होगा, बिग्र को, हिरन को ढूंढ रहा होगा तेरा राम।

0: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: और न्यूज वक्त में खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।

भाव चेहरे पर उतर आए तो शब्द मायने नहीं रखते। गीत बांग्ला भाषा में है, पर जो ये भाषा नहीं बोलते समझते हैं, यकीनन बात उन तक भी पहुंच रही है, और ना भी पहुंचे तो दिल को सुकून तो दे ही रहे हैं। छोटी बच्चे के पांव की थिरकन, आंखों के इशारे, हाथों का घुमाव, सब मिलजुल कर एक कहानी कह रहे हैं। उसका ये अंदाज लोगों का दिल छू रहा है।

0: रानी लक्ष्मीबाई को हमने नहीं देखा, पर उनकी वीरता और दृढ़ता की जितनी कहानियाँ सुनी हैं, उससे मेल खाती है ये बच्ची। बचपन में ऐसी ही रही होंगी शायद, आत्मविश्वास से भरी, निडर, निर्भीक, हर मुश्किल का सामना करने को तैयार। तलवारबाजी में तो कोई इन्हें हरा ही नहीं सकता, बराबरी की टक्कर दे रही है। बच्ची का रूप, रंग, अंदाज सब लोगों का ध्यान खींच रहा है। लोग उनके इस हुनर की तारीफ कर रहे हैं। बॉलीवुड के गानों की तो बात ही निराली है। क्लासिक सुनना हो तो ओल्ड इज गोल्ड, नहीं तो फिर 90 के दशक के सदाबहार नगमे दुनिया भर में आज भी गुनगुनाए जाते हैं। दीवानगी चीन में भी है। देखिए कैसे दो कलाकार गोविंदा और करिश्मा कपूर के गाने पर थिरक रहे हैं। वेशभूषा अपनी है पर अंदाज हिंदुस्तानी है। इस वीडियो को लोग बार बार देख रहे हैं। इस उम्र में ये जलवा है तो सोचिए जवानी में क्या अंदाज रहा होगा इनका। साथ में युवा चेहरे भी हैं, पर जो बात दादी अम्मा के डांस में है वो किसी और में कहा। पूरी महफिल लूट ली इन्होंने तो। इसे कहते हैं असली डांसर। ये बुजुर्ग जिस एनर्जी के साथ ताल से ताल मिला रहे हैं, उसे देखकर आप डांस के प्रति इनकी दीवानगी समझ सकते हैं। खूबसूरती हो तो ऐसी कि कोई भी दो पल को ठहर जाए। इनकी खूबसूरती के भी चर्चे हैं, इंटरनेट पर वायरल हैं ये। इनके बारे में तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि ये बीजिंग की सबसे खूबसूरत महिला ट्रैफिक पुलिस हैं और एक इंटरनेट सेलिब्रिटी भी। ऐसे में लोग उन्हें देखने अलग अलग शहरों से पहुँचते हैं। इनके फैन फॉलोइंग का तो पता नहीं, पर खूबसूरत तो है ये।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को।
4: नवरात्र में अमरावती की प्राचीन अंबिका माता मंदिर में रोष हो रहे हैं। मनोकामना के हजारों खंड, दीपक अद्भुत लग रहा है पूरा मंदिर परिसर। देश भर में बन रहे मां के एक से बढ़कर एक पंडाल। रांची में द्वारका नगरी की थीम पर हूबहू बना पंडाल, तो रोहतास में मां वैष्णो देवी की गुफा की तर्ज पर सजा पंडाल। बरेली में 8 साल बाद आसमान में गूंजा सारंग का शौर्य। हेलीकॉप्टर से दिखाए गए हैरत अंगेज हवाई करतब। 15 मिनट तक आसमान में बनाई अलग अलग फॉर्मेशन। पुणे को मिला नया मेडिकल कॉलेज, केंद्र से मिला अप्रूवल। MBBS की होंगी 50 सीट। शैक्षणिक वर्ष 2027-28 से होगी पढ़ाई शुरू, मुख्यमंत्री ने जानकारी दी। प्रदूषण पर नियंत्रण की तैयारी, अप्रैल 2029 से नई कारों और SUVs के लिए BS7 उत्सर्जन मानक लागू करने की तैयारी। 3 चरणों में बदलेंगे कारों और ट्रकों के नियम।

0: ரவணம்.
1: फिर से लांघा बजरंग ने सागर का विस्तार, सेंदु बांध फिर वानर सेना हो गई सागर पार, धू धू करके धधक उठी है फिर अधर्म की लंका। रावण के घर फिर से गूंजा धर्म विजय का डंका, कुल कुटुंब संग खूब लगाए रावण फिर से जोर, फिर ना पाए राम के बल सीता के धैर्य का छोर। अन्याय की चौखट पर फिर हुई न्याय की दस्तक, दशानन के अहंकार का फिर से कट गया मस्तक।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। आप देख रहे हैं जेएनटी स्पेशल। जेएनटी स्पेशल में आज बात करेंगे रामलीला की। सनातन धर्म की कहानियां श्री राम को विष्णु का अवतार बताती हैं, लेकिन भारत में राम सिर्फ भगवान नहीं बल्कि राम भारत के जीवन और जीवन पद्धति में शामिल हैं। श्री राम की जिंदगी से जुड़ी कहानियों में मानव जीवन के लिए कई संदेश छुपे हैं। युगों युगों से राम कहानी भारत और भारतवासियों के दिलों में बसी है और हर साल नवरात्र आते ही भारत के लोगों को उसी राम कहानी को नजदीक से देखने और महसूस करने का मौका मिलता है रामलीला के जरिए। आज हम आपके लिए देश और दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों से होने वाली रामलीला की तस्वीर लेकर आए हैं। लेकिन इससे पहले कि देश के बाहर चलें और दिखाएं रामलीला का इंटरनेशनल स्वरूप, सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो रामलीला जहां भारत के मंच पर ही दुनिया की तकनीक सिमट कर आ गई है। राजधानी दिल्ली में न्यूयॉर्क के ब्रॉडवे थिएटर की तर्ज पर भव्य रामलीला हो रही है। रामलीला में भावों का सागर तो पहले ही अपार होता है, लेकिन ब्रॉडवे स्टाइल की इस रामलीला में तकनीक ने रामकथा मंचन की भव्यता को भी कई गुना बढ़ा दिया है।

0: युग युगांतर से समय की धारा के साथ बहती आई रामायण की ये दिव्य कहानी जो भारत के मन मर्म भाव विचार सोच और संवेदनाओं की पोरों में रमी है, एक बार फिर से दोहराई जा रही है, लेकिन अब की बार बिल्कुल अलग अंदाज में। जब दुनिया के सबसे आधुनिक रंगमंच की तकनीक भारत की हजारों साल पुरानी संस्कृति से मिलती है तो जन्म होता है एक महादृश्य का। ये न्यूयॉर्क का ब्रॉडवे नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली की ब्रॉडवे रामलीला है।
1: इस सभा में उपस्थित सभी सभासदों, ध्यान से सुनो। ये पिनाकी नाम का दिव्य धनुष महादेव रुद्र ने दक्ष के यज्ञ ध्वंस के लिए प्रयुक्त किया था। इस प्रकार आज ये धनुष मिथिला राजवंश के पास मेरे गुरुदेव महादेव शिव की धरोहर के रूप में है। ये कोई स्वयंवर नहीं अपितु षड्यंत्र है।
0: एक ऐसी रामलीला जहां ना तो दृश्यों को बदलने के लिए बार बार पर्दा गिरता है और न ही कहानी को पूरा होने में 10 दिन लगते हैं। यह पूरी रामायण केवल 3 घंटे के एक हाईटेक संगीतमय नाटक के माध्यम से जीवंत हो उठती है। दिल्ली में होने वाली ब्रॉडवे रामलीला सीधे तौर पर न्यूयॉर्क के ब्रॉडवे थिएटर की तर्ज और उसकी भव्य प्रोडक्शन स्टाइल से प्रेरित है। पारंपरिक रामलीलाओं में जहां खुले मैदानों में कई दिनों तक स्टेज नाटक चलता है, वहीं इस रामलीला को पूरी तरह से एक कमर्शियल ब्रॉडवे म्यूजिकल के रूप में ढाला गया है। इस भव्यता के पीछे है अत्याधुनिक तकनीक का हाथ। न्यूयॉर्क ब्रॉडवे शो की तरह ही दिल्ली की इस रामलीला में भव्य 3D स्टेज डिजाइन, एडवांस डिजिटल बैकड्रॉप्स और अत्याधुनिक लाइटिंग का इस्तेमाल किया जाता है।
2: ब्रॉडवे रामलीला की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर पारंपरिक तरीके के साथ साथ आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भरपूर दिखाई पड़ेगा। 3000 स्क्वायर फीट में यहाँ पर LED लगाई गई हैं। ये सारी 3D LED हैं और ऐसा 3D माहौल तैयार होता है जैसे आप किसी 3D सिनेमा में महसूस करते हैं। जैसे आपको लगता है कि आप देखते हैं तो आप बिल्कुल उसी माहौल में पहुँच गए। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं जो स्क्रीन पर है, ये वो सीन यहाँ पर दिखाया जाएगा जब रावण कैलाश पर्वत पर जाकर तपस्या करता है। जब दर्शक इस सीन को देखते हैं तो वो भी अपने आप को बिल्कुल उसी जगह महसूस करते हैं। ये जो सीन है यहाँ पर केवट का जो सीन है वो दर्शाया जाएगा और बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप किसी समंदर किसी नदी के बीचों बीच पहुँच गए हैं। 3D टेक्नोलॉजी खासियत यही है। ऐसे देखिए अलग अलग जो सीन है, आप ये देखिए, ये जनकपुर है और कैसे सीता स्वयंवर के समय जब सभी को इनविटेशन गए थे तो कैसे पूरे जनकपुर को सजाया गया, धजाया गया, सुंदर बनाया गया, ये पूरा सीन इस LED स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा है। और जब दर्शक इसे देखते हैं तो बार बार महसूस करते हैं कि जैसे ये सब कुछ उनकी आंखों के सामने घटित हो रहा है। इसके सामने ही जो तमाम आर्टिस्ट हैं वो परफॉर्म करते हैं। अब आप ये सीन देखिए लगातार किस तरह से जो यात्रा रही प्रभु श्री राम की सीता जी के साथ, लक्ष्मण के साथ वनवास की यात्रा, वो सीन इस तरह के जो विजुअल्स हैं उस पर दिखाए जाएंगे, उस पर दर्शाए जाएंगे।
0: 3D डिजिटल बैकड्रॉप्स, एडवांस्ड मैपिंग और मूवेबल स्टेज प्रॉपर्टीज के इस्तेमाल से एक बटन दबाते ही पलक झपकते मंच का माहौल बदल जाता है। तकनीक की जादूगरी से मंच पर त्रेता युग का माहौल जीवंत हो उठता है।
2: ये जनक जी का जो दरबार था उसको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। जनक जी यहाँ पर बैठते थे और जनक जी के साथ साथ किस तरह से जो स्वयंवर की प्रक्रिया होती है वो आगे बढ़ती है, उस दृश्य को यहाँ पर दर्शाया जाएगा। ऐसे ही चाहे आप लंका की बात करें, चाहे आप दूसरे करेक्टर्स की बात करें, दूसरी लोकेशंस की बात करें, उन सारी लोकेशंस को इस तरह से तैयार किया गया है कि जब भी दर्शक सामने से देखेंगे आप महसूस करिए कि जैसे मैं यहाँ पर हूँ। और यह एक वन का दृश्य, देखिए वहाँ पर हिरण बना हुआ है, यानी कि वो सीन जब मृग हिरण के पीछे, जिस तरह से जो सोने का हिरण उसके पीछे जब वो भागते हैं, तब का सीन किस तरह से दर्शाया जाएगा। इस तरह से पूरी LED के जरिए स्टेज को तैयार किया गया है ताकि सामने बैठा दर्शक पूरी तरह से रिलेट कर पाए अपने आप को कि वो खुद उस माहौल में पहुंच गया है, स्वयं प्रभु श्री राम के पास पहुंच गया है, अयोध्या पहुंच गया है, लंका पहुंच गया है। अब देखिए ये कैकई का कमरा है, उसका एक दृश्य है। जब भी कैकई एक आर्टिस्ट के रूप में आएगी तो उनको इस कमरे में दिखाया जाएगा, कैसे उनके नखरे थे, किस तरह से वो बात करती थी, वो यहाँ दिखाई पड़ेगा। ये कोप भवन है, जब नाराज होकर वो जाती हैं कोप भवन में तो ये उस कोप भवन का दृश्य है। आप सोचिए जब यहाँ पर करेक्टर खड़ा होकर उस डायलॉग्स को बोलेगा उस ड्रेस के साथ में, तो हर कोई सामने से कैकई को महसूस कर पाएगा। ऐसे ही तमाम सारे दृश्य हैं, लंका है और जो युद्ध है उसका मैदान यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह से LED के जरिए पूरी रामायण को, संपूर्ण रामायण को जीवंत करने की एक कोशिश है, और इसी कोशिश के लिए ये ब्रॉडवे रामलीला जानी जाती है। और उम्मीद यही कि इस बार भी दर्शक जब यहाँ पहुँचेंगे तो खुद को प्रभु श्री राम के बेहद करीब इस LED के जरिए, इन विजुअल्स के जरिए खुद को महसूस करेंगे।
0: ब्रॉडवे रामलीला के लिए केवल तकनीक ही नहीं बल्कि हर एक पात्र की वेशभूषा पर भी गहरा शोध किया जाता है। राजा दशरथ के राजसी वैभव से लेकर रावण के 10 सिरों के डिजिटल प्रभाव तक हर बारीक चीज को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार डिजाइन किया गया है।
1: रावण मेरे को मिलना मेरे लिए, मैं बोलूंगा, सौभाग्य की बात है, क्योंकि मेरे को लगता है कि रावण एक ऐसा करेक्टर है जो करना ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि अच्छा इंसान तो मैं नेचुरली अगर अपने आप को मानता हूँ, पर स्टेज पे मेरे को दिखाना है कि मैं बुरा इंसान हूँ। उसके साथ साथ ये पता होते हुए कि रावण के अंदर सारा ज्ञान, सब चीज़ों में वो उत्तम था, उसके बावजूद भी स्टेज पर ये जताना कि मैं बुराइयों का प्रतीक हूँ, वो मुझे लगता है थोड़ा एक मेरे लिए चैलेंजिंग पार्ट रहता है। तो मुझे करके काफ़ी अच्छा लगता है कि जिस प्रोडक्शन में हम काम कर रहे हैं ये मतलब कला दर्शक वाला है, तो यहाँ पर प्रॉपर ऑडिशन, एक पूरी सीरीज है जिससे हम करेक्टर के अंदर चुने जाते हैं, तो प्रॉपर ऑडिशन दिए हमने, तीन चार लोगों के साथ मिलकर ऑडिशन दिया, अलग अलग करेक्टरों के लिए ऑडिशन दिया, उसमें से एक रावण भी था। मेरे को इसके साथ साथ हनुमान, परशुराम, इनके लिए भी ऑडिशन देने का मौका मिला था। बट हाँ, ये बोल सकते हैं कि डायरेक्टर और ऑर्गेनाइजर सबको मेरा रावण किरदार काफ़ी पसंद आया, तो और सौभाग्य से मुझे ये किरदार निभाने का मौका मिला।
0: सिर्फ मेकअप ही नहीं बल्कि ब्रॉडवे स्टाइल में एक्टिंग करना भी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि यहाँ बहुत कम समय में गानों और नृत्य के बीच अभिनय की गहराई को दिखाना होता है, हर भावना को सीधे दर्शकों के दिल तक पहुँचाना होता है।
3: एक्टिंग का मुझे शौक है और मुझे बहुत खुशी होती है कि एक डिवाइन कैरेक्टर जब किसी को भी अगर प्ले करने को दिया जाए तो वो हमारी भावनाएं जुड़ी होती है। हम पुराने टाइम से देख रहे हैं, रामायण हो गई, महाभारत हो गई, तो उस टाइम से कहीं ना कहीं सबके मन में होता है कि कोई ना कोई हम कैरेक्टर करें, और माता सीता जो मतलब हम लोगों के दिलों के इतने करीब हैं, अगर उसका कैरेक्टर करने को मिल रहा है तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं हमेशा ग्रेटफुल हूँ भगवान के लिए, और जो मुझे ये अपॉर्चुनिटी दे रही है मैं उनके लिए भी बहुत ग्रेटफुल हूँ।
0: जैसे ब्रॉडवे नाटकों में पात्रों के मानसिक द्वंद और भावनाओं पर बारीकी से काम होता है, ठीक उसी तरह ब्रॉडवे रामलीला में भी चरित्रों पर विशेष अध्ययन होता है जो मंच पर नजर भी आता है। ये केवल कहानी नहीं सुनाती बल्कि रामायण के पात्रों की आंतरिक यात्रा और उनकी दुविधाओं को भी दिखाती है।

0: माता सीता की बात करी जाए तो एक्सप्रेशंस जो हैं वो बिल्कुल नेचुरल है। कैसे वो अपने पति के साथ शादी कर अयोध्या में आई थी, उसके बाद फिर वो वनवास गई थी, तो उसमें अगर थोड़ा भाव देखा जाए तो वो दुखी रही हैं, तो थोड़ा दुख का है। खुशी का तब समय होता है जब स्वयंवर आता है, तो खुशी का है। तो ऐसे एक्सप्रेशंस अलग से नहीं है, पर हाँ मैं मतलब जो भी है बहुत सिंपल है, आप अगर आप स्टेज पे देखेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा।
1: कुल मिलाकर ये पारंपरिक संस्कृति और आधुनिक पश्चिमी रंगमंच कला का ऐसा अनूठा संगम है जो विशेष रूप से आज की युवा पीढ़ी को आकर्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। जहाँ पारंपरिक रामलीला 9 से 10 दिनों तक चलती है, वहीं ब्रॉडवे की तर्ज पर इस पूरी प्रस्तुति को मात्र 3 घंटे के एक ही शो में समेट दिया गया है। इसमें भगवान राम के जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक की पूरी कहानी बेहद तेज गति और मनोरंजन के साथ दिखाई जाती है।
2: हमने ये विचार बनाया कि वे एक दिन में ही सारी लीला हो, ताकि कंप्यूटराइज जमाना आ रहा है, इसमें ये हो सके कि एक ही दिन में हम पूरा राम जन्म से राज्याभिषेक तक एक ही दिन में करें, ताकि बच्चे देखें और उसको समझें भी, क्योंकि सीता स्वयंवर भी उसी दिन है, वनवास भी उसी दिन है और राज्याभिषेक भी उसी दिन है, सब चीज़ें उसमें होती है, तो बच्चों को समझ में आ जाता है कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहलाए। तो यही हमारा विचार था। इसके लिए हमने जो मैनेज किया यहाँ पे सिस्टम, 7,000 आदमियों की हमारी गैदरिंग होती है, लेकिन यहाँ पे नीचे गैदरिंग का ये सवाल है कि 12,000 आदमी देखते हैं और सामने जो वो लगे हुए हैं उनके ऊपर भी लोग खड़े होकर बैठ कर देख खड़े होकर भी देखते हैं, मतलब 14,000 आदमी एक बार देखते हैं। मेरे हिसाब से इतना भव्य जो लीला है, मुझे नहीं लगता कि भाई हमने कभी बचपन में देखा होगा, और हमें भी नहीं पता रहा कि भगवान रामचंद्र जी हमारे साथ हमारे द्वारा माध्यम से ये लीला ऐसे करें आएंगे।
1: जिस तरह ब्रॉडवे शो की सबसे बड़ी पहचान उसका लाइव या विशेष रूप से तैयार संगीत होता है, इसी तर्ज पर ब्रॉडवे रामलीला के लिए भी कई ओरिजिनल साउंड ट्रैक तैयार किए गए हैं, जिन्हें लोकप्रिय भारतीय गायकों ने अपनी आवाज दी है। बता दें कि दिल्ली के पीतमपुरा में इस भव्य ब्रॉडवे रामलीला का मंचन दशहरा तक होने वाला है। नवरात्र के दौरान युद्ध राजधानी दिल्ली के कई मैदान चौराहों, चौक बाजारों, मेलों और मंचों पर रामकथा का रस बरस रहा है, लेकिन आधुनिक तकनीक ने ब्रॉडवे रामलीला को बेहद अलग, भव्य और खास बना दिया है। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो ये तो थी बात देश में हो रही इंटरनेशनल तकनीक वाली रामलीला की। अब बात उस रामलीला की जिसके मंचन देश के बाहर हो रहे हैं। कभी श्री राम ने मां सीता के लिए सागर लांघा था और अब राम कथा की लहरें 7 समंदर पार कर दुनिया के कई देशों तक पहुंच रही है। कुछ रूप बदला, कुछ कहानी बदली, कुछ पात्र बदले, मगर जहां जहां भारतीय गए, जहां जहां भारतीयता गई, वहां वहां राम कथा भी यात्रा करते हुए पहुंची। कई देशों ने भारतीय संस्कृति में ढली हमारी रामलीला को बेहद श्रद्धा से अपनाया है। यही वजह है कि रामलीला आज भारत और दुनिया के कई हिस्सों के बीच और कई देशों में सांस्कृतिक सेतु बन गई है।

भारत ही नहीं बल्कि राम कथा सागर की लहरें दुनिया के जाने कितने ही देशों तक पहुंचती हैं। थाईलैंड, मॉरिशस, कंबोडिया, म्यांमार और इंडोनेशिया जैसे देशों में अलग अलग रूपों में राम कथा का मंचन किया जाता है। मसलन इंडोनेशिया में आबादी के एक बहुत बड़े समूह का मानना है कि इस्लाम जहां उनका धर्म है तो वहीं रामायण उनकी संस्कृति है। लोग 9वीं सदी में लिखी गई जैवनिस वर्जन ऑफ रामायण को मानते हैं। इंडोनेशिया के जावा में प्रमनाम मंदिर में सेंद्रातारी रामायण लगभग साल भर चलती है। ये राम कथा पर आधारित बैले डांस यानी नृत्य नाटिका है। इसमें सीता हरण और मारीच मरण जैसे दृश्य देखने को मिलते हैं। इसमें एक बार में सैकड़ों कलाकार हिस्सा लेते हैं। कभी कभी तो कलाकारों की संख्या 1000 को भी पार कर जाती है। थाईलैंड में राम की कीर्ति बताने वाली छाया रामलीला का आयोजन होता है। दरअसल थाईलैंड का राष्ट्रीय महाकाव्य रामाकीन है जिसका अर्थ है राम की कीर्ति। ये वाल्मीकि रामायण से लिया गया है और थाई भाषा में है। यहाँ के थिएटर ग्रुप में भी रामलीला भव्य तरीके से आयोजित होती है। थाईलैंड में होने वाली छाया रामलीला को स्थानीय भाषा में नंग कहा जाता है। इसको सफेद पर्दे पर दिखाते हैं, फिर उसके सामने पुतलियों को इस तरह नचाया जाता है कि उसकी छाया पर्दे पर पड़े। मुखौटों का इस्तेमाल कर यहाँ रामलीला की जाती है। नाटक के माध्यम से प्रदर्शित की जाने वाली रामलीला को थाईलैंड में खौन के नाम से जाना जाता है। इसी तरह मॉरिशस में भी बेहद श्रद्धा और चाव के साथ रामलीला गाई जाती है। मॉरिशस की कला और सांस्कृतिक मंत्रालय की ओर से हर साल यहां रामलीला का आयोजन होता है जिसमें झाल ढोलक के साथ रामलीला गाई जाती है। यहां रामलीला इतनी लोकप्रिय है कि इसमें अभिनय के लिए भारतीय कलाकारों को भी बुलाया जाता है।

इसी तरह बौद्ध देश कंबोडिया में भी रामायण का मंचन होता है। यहाँ रामायण को रीम कर और भगवान राम को प्रिय रीम कहा जाता है। सीता नेयांग सेडा और लक्ष्मण प्रिय लीक के नाम से जाने जाते हैं। यह रामलीला तुलसीदास रचित रामचरितमानस के आधार पर खेली जाती है। दरअसल कंबोडिया में करीब 600 सालों तक हिंदू खमेर साम्राज्य का शासन था। इसी के चलते यहाँ हिंदू धर्म का खासा प्रभाव देखने को मिलता है। बताया जाता है कि यहाँ रीमकर खमेर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध साहित्य है। इसका प्रभाव आज भी कंबोडिया की कला में साफ दिखाई देता है। जबकि म्यांमार की रामलीला यांपवे कहलाती है। इसमें मुखौटों का इस्तेमाल होता है। यहाँ के लोग हास्य रस के बेहद प्रेमी होते हैं, इसलिए यांपवे में विदूषक की भूमिका मुख्य मानी जाती है। यहाँ की रामलीला में ऐसा बहुत कम होता है जब रंगमंच पर विदूषक मौजूद न हो। रामलीला आरंभ होने से पहले 1-2 घंटे हास परिहास चलता है। नृत्य और संगीत के कार्यक्रम होते हैं।

0: इसी तरह बताया जाता है कि जापान के लोकप्रिय कथा संग्रह होबुत्सुशु में भी संक्षिप्त राम कथा संकलित है, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जीवन गाथा का अमृत आज युगों बाद भी दुनिया के कई कोनों को यूं ही सींच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: कश्मीर में सर्दियों की शुरुआत अभी से हो गई है। मैदानी इलाकों में बारिश और ऊंचे इलाकों में बर्फबारी के कारण घाटी में तापमान काफी गिर चुका है। हालांकि कुछ दिन पहले मौसम कुछ गर्म जरूर था, लेकिन अब सोनमर्ग, कोरेज घाटी समेत कई ऊंचे क्षेत्रों में सर्द मौसम हो चुका है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद कुदरत का मनमोहक नजारा देखने को मिल रहा है, तो इस बर्फबारी का असर घाटी के मैदानी क्षेत्रों में सर्द मौसम के रूप में महसूस होने लगा है। सर्दी का चक्र ऐसे ही चला तो जल्द ही पूरी कश्मीर घाटी सफेद बर्फ की चादर से लिपट जाएगी।

सीजन की पहली बर्फबारी के साथ ही पहाड़ों ने सफेदी की चादर ओढ़ ली है। हरी भरी पहाड़ियाँ अब बर्फ की सफेदी में समा गई हैं। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बालीपोरा जिले में स्थित कुरेस घाटी की है, जहाँ ऊंचाई वाले इलाकों में जोरदार सीजन की पहली बर्फबारी के

0: साथ ही पहाड़ों ने सफेदी की चादर ओढ़ ली है। हरी भरी पहाड़ियाँ अब बर्फ की सफेदी में समा गई हैं। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में स्थित कुरेस घाटी की है, जहाँ ऊंचाई वाले इलाकों में जोरदार बर्फबारी हुई है, जबकि श्रीनगर समेत घाटी के मैदानी इलाकों में बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। अक्टूबर का भी आधा महीना ही गुजरा है और गुरेज में पारा शून्य तक लुढ़क चुका है, जबकि श्रीनगर में भी तापमान 15 डिग्री तक गिर चुका है। सैलानियों के साथ साथ स्थानीय किसानों के लिए भी ये बर्फबारी खुशियों की सौगात लेकर आई है। एक और जहां कश्मीर में पर्यटन में तेजी के आसार है, वहीं सूखे के मौसम से किसानों को राहत मिली है।
1: मंगलवार को 15 डिग्री सेंटीग्रेड श्रीनगर का अधिकतम तापमान रहा, जबकि पहाड़ी इलाकों में खासतौर से गुलमर्ग,

0: बाद मौसम फिर संभलेगा, लेकिन पहाड़ों पर हुई इस ताज़ा बर्फबारी से लोगों ने राहत भी ली है, क्योंकि कश्मीर में पिछले कई हफ्तों से सूखे का मौसम चल रहा था, लेकिन अब इस बर्फबारी ने न सिर्फ किसानों के लिए जो है एक राहत लाई है, बल्कि साथ ही साथ अब कश्मीर में विंटर टूरिज्म की भी शुरुआत इस बर्फबारी के साथ होने लगी है।
1: आसमान से लगातार हो रही बर्फबारी आज और कल भी जारी रहने की संभावना है। मैदानी इलाकों में जहां बारिश होगी, वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। मौसम के इस बदले मिजाज ने कश्मीर की वादियों की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं। फिलहाल उत्तरी कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद कुदरत का मनमोहक नज़ारा देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में पूरी घाटी सफेद बर्फ की चादर से ढकी होगी। उत्तराखंड में भी मौसम ने करवट बदल ली है। पिछले दिनों हुई बारिश के आगे भी जारी रहने के आसार है। 15 और 16 अक्टूबर को प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। मौसम में बदलाव के चलते पर्वतीय इलाकों में ठंड बढ़ने और तापमान में गिरावट आने की संभावना है।
2: जो बर्फबारी है अगले अभी दो दिन तो हम 3800 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में देखने को मिल सकती है, जबकि जो है 15-16 तारीख में 3500 मीटर तक के ऊंचाई वाले इलाकों में भी देखने को मिल सकती है। 16 तारीख के बाद एक्टिविटी काफ़ी कम रह जाएगी, सिर्फ नॉर्थ के कुछ जो है बहुत ही बिल्कुल नॉर्थ में हमारे उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जैसे जनपद हैं वहीं देखने को मिल सकती है बहुत हल्की से हल्की बारिश।
1: आने वाले दिनों में अच्छी बर्फबारी होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। जाहिर है अक्टूबर में हालात जब ऐसे हैं, तो दिसंबर तक पहाड़ी इलाकों में बर्फ का साम्राज्य कायम हो चुका होगा। श्रीनगर से अशरफ वानी, देहरादून से की शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
4: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: नवरात्र में अमरावती की प्राचीन अंबिका माता मंदिर में रोष हो रहे हैं, मनोकामना के हजारों खंड, दीपक अद्भुत लग रहा है पूरा मंदिर परिसर। देश भर में बन रहे मां के एक से बढ़कर एक पंडाल, रांची में द्वारका नगरी की थीम पर हूबहू बना पंडाल, तो रोहतास में मां वैष्णो देवी की गुफा की तर्ज पर सजा पंडाल। बरेली में 8 साल बाद आसमान में गूंजा सारंग का शौर्य, हेलीकॉप्टर से दिखाए गए हैरतअंगेज हवाई करतब, 15 मिनट तक आसमान में बनाई अलग अलग फॉर्मेशन। पुणे को मिला नया मेडिकल कॉलेज, केंद्र से मिला अप्रूवल, MBBS की होंगी 50 सीट्स, शैक्षणिक वर्ष 2027-28 से होगी पढ़ाई शुरू, मुख्यमंत्री ने जानकारी दी। प्रदूषण पर नियंत्रण की तैयारी, अप्रैल 2029 से नई कारों और SUVs के लिए BS7 उत्सर्जन मानक लागू करने की तैयारी, 3 चरणों में बदलेंगे कारों और ट्रकों के नियम। शुरुआत रावण की विशालकाय पुतले के साथ करते हैं, जिसे दिल्ली के द्वारका में बनाया गया है विजयादशमी पर दहन करने के लिए। आमतौर पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले काफी ऊंचे बनाए जाते हैं, लेकिन दिल्ली में इस बार 22 मंजिला इमारत बराबर रावण तैयार किया गया है, जिसे रंगीन कपड़े और भव्य मुकुट से सजाया गया है। दिल्ली ही नहीं, आपको बता दें देश के दूसरे इलाकों में विशालकाय पुतले बनाए गए हैं। चलिए आपको ऐसे ही कुछ पुतले दिखाते हैं।

0: आखिरी युद्ध के लिए तैयार हो रहा दशानन। रामकथा में प्रतीक्षा है उस घड़ी की जब लंकेश धराशाही होगा, माता सीता का प्रभु राम से मिलन होगा, साथ ही अधर्म के प्रतीक रावण का दहन होगा। हालांकि दशमी में कुछ देर है, लेकिन रावण के पुतले बनकर सजकर तैयार हैं। देखिए जैसे रावण का अहंकार वैसे पुतला विशाल, साथ में भाई कुंभकर्ण और बेटा मेघनाथ। ये तस्वीरें दिल्ली के द्वारका की हैं, जहां 222 फीट का रावण बनाया गया है। करीब 22 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई है इस पुतले की, और दावा किया जा रहा है कि ये देश का सबसे ऊंचा रावण है।
1: रावण तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन दिल्ली के द्वारका में एक ऐसा रावण तैयार किया गया है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा रावण है। और जो आप हाई राइज सोसाइटीज देखते हैं, किसी 22 मंजिला इमारत के बराबर का ये रावण बनाया गया है, और बार बार इसके आयोजक दावा कर रहे हैं कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा रावण अब तक का बनाया गया है। आपको बता दें कि लगभग 3 महीने का समय लगा है इस रावण को तैयार करने में। 120 मजदूर इसमें लगातार लगे रहे, वो दिन रात काम करते रहे, तब जाकर ये 3 महीने के भीतर तैयार हो पाया है। 7 टन लोहा इसे बनाने में इस्तेमाल किया गया है, और ये टिका रहे आसानी से, आंधी आए हवा तेज चले तो गिरे नहीं। इसके लिए लगभग 10 फीट नीचे गहरा गड्ढा किया गया है, और उस 10 फीट नीचे गहरे से इसकी नींव डालनी शुरू की गई थी। 40 लाख के आसपास इसका खर्च आया है। चंडीगढ़ के कारीगर इसमें बुलाए गए थे, और कहा जा रहा है कि लगभग जो भी यहाँ पर आप रावण देख रहे हैं, इस रावण के साथ साथ जैसे कि दूसरे और पुतले बनते हैं मेघनाथ और कुंभकर्ण के भी, उनके पुतले भी लगभग 90-90 फीट के बनाए गए हैं।
0: वैसे तो रावण अधर्म और अत्याचार का प्रतीक है, पर यहाँ जो पुतला बना है उसकी भव्यता देखने वाली है। वेलवेट से तैयार रंगीन कपड़े और उस पर ऐसा चमकता दमकता मुकुट जो करीब 25 फीट ऊंचा है। हाँ, एक बात और, ये कपड़े वाटरप्रूफ है, इसलिए बारिश हुई तो रावण गलेगा नहीं, उसे शर्तिया जलना ही होगा।
2: 221 फीट का विशाल रावण तो दिख ही रहा है। इसको हमने जब स्थापित करा अपने द्वारका श्री रामला सोसाइटी प्रांगण में, हमने 12 फुट पहले गहरा गड्ढा खोदा है, उसके अंदर इसको 12 फुट इसके स्ट्रक्चर को डाला है, ताकि कोई भी आंधी आए चाहे तूफान आए, ये अपनी जगह से टस से मस ना हो। और आपने देखा होगा हमारे रामला, ये अपने रावण के चारों तरफ हमने लोहे की वायर से एकदम कोने कोने पे इसको बांध रखा है, ताकि इसकी पोजीशन अपनी जगह से ना हिले।
1: कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया, कैसे सोचा गया इसके बारे में?
2: देखिए, हमारी ये द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी पिछले 15 वर्षों से लगातार द्वारका सेक्टर 10 के अंदर रामलीला करवाती आ रही है, और हमारा हर साल का प्रयास रहता है कुछ ना कुछ अपने राम भक्तों को कुछ ना कुछ नया करके दिखाएं, ताकि एक समाज में एक हमारी मैसेज भी अच्छा जाए और कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट भी सबको देखने को मिले। जैसे आपको पता होगा 2024 में भी हमने देश का सबसे बड़ा रावण हमने यहाँ पे दहन करा था, जिसकी हाइट थी 221 फीट। अब की बारी हम अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए 222 फुट का रावण दहन करने जा रहे हैं, और जैसे आप इसकी सुंदरता देखोगे, हमने पूरे के पूरे रावण के ऊपर आप देखो वेलवेट के कपड़े से इसकी सजावट करी हुई है। साथ साथ जो आप इसका फेस देखोगे रावण का, ये बिल्कुल पूरा का पूरा हैंड पेंटेड है। हमारे इसमें दूर दूर से कलाकार आए थे, उन्होंने इसको पूरी ढंग से, मैं कह सकता हूँ इस पूरे रावण के अंदर 3.5 महीने से ज्यादा समय लगते हुए इतना विशाल का रावण आपके सामने प्रस्तुत किया गया है।
0: इस विशाल का रावण का दहन भी खास अंदाज में होगा। भगवान राम का तीर तो चलेगा, लेकिन असल में दहन रिमोट के जरिए होगा। पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे, इसलिए ग्रीन क्रैकर्स का इंतजाम है। यानी कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, आखिरकार बुराई के प्रतीक रावण को खत्म होना है।
1: हम सबको ये बात हमेशा याद रखनी है कि रावण कितना भी भव्य हो, दिव्य हो, ऊंचा हो, आखिर में उसे राख होकर मिट्टी में ही मिलना है, और उसे ही कहते हैं कि बुराई पर सच्चाई ने जीत हासिल कर ली।
0: रावण की जैसी छवि है, कारीगर उसके पुतले में वैसा ही भाव देने का प्रयास करते हैं। रौबदार चेहरा, ऐठी हुई मूछ और दूर से नजर आने वाली विशाल आकृति। ये तस्वीर करनाल की है, जहां रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले लगभग तैयार हैं। कुछ अलग करने की ललक में यहाँ भी इस बार 75 फुट का पुतला तैयार किया गया है। खास बात यह है कि दहन से पहले इस रावण की गर्दन घूमेगी।
3: करनाल का जो पुतला है वो 75 फुट का है इस बार, और इस बार जो है रावण की गर्दन घूमेगी। जो दर्शक आएंगे देखने के लिए, रावण उनको अपना आप देखेगा घूम घूम करके। लगभग जो है हम अपने पिताजी के साथ में ये काम करते थे छोटे से ही, बचपन से ही। लगभग जो हमारे पास काम है ये एक महीना लगता है इसके अंदर। शुरू जो है हमने जन्माष्टमी के बाद से कर रखी है। इसमें कोई भी कास्ट या धर्म का कोई मामला नहीं है। इंसान का काम करना एक क्रम है, जो इंसान का क्रम है हमने अपने पिताजी से सीखा। और जाहिर सी बात है जो इंसान जिस काम को करता है इंसान उसी के पास जाता है काम कराने के लिए। कोई भी इंसान हमारे पास लगभग सभी जगह से आते हैं काम कराने के लिए, लेकिन फिलहाल जो है हम करनाल डिस्ट्रिक्ट के ही काम पकड़ रहे हैं।
0: इन कारीगरों को रावण के पुतले बनाने का लंबा अनुभव है। 2 दशक से ज्यादा वक्त से दोनों भाई ये काम करते आ रहे हैं और भली भांति जानते हैं कि विजयदशमी पर दहन से पहले रावण का ऊंचा पुतला लोगों को आकर्षित करता है और इसके जलने पर खुशी मिलती है। इसलिए कारीगरों ने दहन के लिए शानदार आतिशबाजी का भी इंतजाम किया है।
4: इस बार हम कलर भी अच्छा देने वाले हैं और गर्दन भी घुमाएंगे। गर्दन के साथ जो आतिशबाजी होती है वो साइडों में भी लगाएंगे हम। गर्दन बहुत अच्छी तरह से घूमेगी और दशहरा भी बहुत ही अच्छा बनेगा जो बात है जी। और हम इसमें 2 महीने से इसमें लगे हुए हैं काम में, रात दिन काम चल रहा है हमारा। आसपास के गांवों के भी काम है, तरावडी के भी काम है, नीलोखेड़ी के भी काम है, करनाल का भी है और करीब करीब सारे ही गांवों के काम है हमारे पास। एकता का तो ये है जी, हमारे दादाजी करते थे, हमारे पिताजी करते थे और अब हम करते हैं जी।
0: रावण बुरा तो है पर दहन के लिए तैयार हो रहे उसके पुतले कुछ परिवारों के लिए कमाई का जरिया है। देखिए राजस्थान के कोटा में रावण के छोटे बड़े पुतले तैयार हैं। एक तरफ लोग दशहरे के लिए पुतले खरीद रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कारीगर दिन रात मेहनत कर इन्हें तैयार करने में जुटे हैं। बांस, बल्ली, अखबार और रंगों से तैयार होने वाले इन पुतलों के पीछे कारीगरों का हुनर और कई दिनों की मेहनत छिपी है।
5: 5 साल से बना रहे कोटा में, अब 6 साल हो जाएंगे। हम पहले बांस लाते हैं, बांस की तरह लकड़ी के ढांचे बनाते हैं, ढांचे से फिर पेपर आते हैं, पेपर लगाते हैं, पेपर से फिर रंगील पेपर आते हैं। 3 बार होता है ये मेहनत। फिर इससे मूछे हुए, मुंह हुए, कांखे ये बनाते हैं। 400 से 25 हजार तक है हमारे पास रावण। अब हो चुका है ये नॉर्थ आ रहे, नॉर्थ से सब चालू हो रहे हैं।
0: एक पुतला तैयार करने में बांस की कटाई से लेकर ढांचा बनाने, कागज चढ़ाने और रंगाई करने तक के कई चरणों से गुजरना पड़ता है। हर काम में मेहनत लगती है, समय लगता है। हाँ, पर 2 से 5 हजार तक की लागत वाले ऐसे पुतले 20 हजार तक में बिक जाते हैं। यानी बुराई के बावजूद रावण कमाई करा देता है।
6: माल तो कम्प्लीट हो रहा है, अभी 2-3 बाकी है बड़े बड़े जो सब बना रहे हैं सियालदह सर्किल दशहरा मैदान के पास। अब तैयार हो गए हैं आधे तो, 15 फीट 20 फीट के तो तैयार हो गए, 4 फीट के भी तैयार हो गए। अब बड़ों की बारी है।
0: रावण दहन का धार्मिक पक्ष है पर इन कारीगरों के लिए दशहरे का सीजन कमाई का भी अवसर होता है। जब रावण का पुतला जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया जाएगा तो उसमें कई दिनों तक मेहनत करने वाले इन कारीगरों का योगदान भी शामिल होगा। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: भगवान राम जहां मर्यादा पुरुषोत्तम है वहीं रावण अहंकार और अधर्म की पहचान है। कौशल्या नंदन करुणा से भरे हैं तो रावण अभिमान से। रावण की इन बुराइयों को मंच पर दिखाना चुनौतीपूर्ण होता है, इसलिए राम कथा की प्रस्तुति में रावण का किरदार हमेशा फोकस में रहता है। गरजती हुई आवाज, दर्प से भरी हंसी और भयभीत करने वाली भाव भंगिमाएं, रावण के किरदार दर्शकों को रोमांचित करता है। तो चलिए आपको दिल्ली की एक हाईटेक रामलीला दिखाते हैं और रावण की भूमिका निभाने वाले एक्टर से मिलवाते हैं।

जगजीवन में गूंज रहा लंकेश का अट्टहास, क्योंकि रणभूमि में अभी अपराजय है समर राम रावण का। विजय के लिए इधर शक्ति पूजा में लीन है मर्यादा पुरुषोत्तम,

दर्प से भरी आवाज, अभिमान से भरी हंसी, लंबा चौड़ा कद और भयभीत कर देने वाली भाव भंगिमा। आसान नहीं है रावण का किरदार निभाना।

0: जितना प्रभावशाली होगा रावण उतना ही असरदार होगा राम कथा का ये संदेश कि आखिरकार अधर्म पर धर्म की विजय होगी। बुराई का नाश होगा और इसीलिए दिल्ली की इस रामलीला में रावण का चरित्र निभाने वाले सिद्धांत ने खास तैयारी की है।
1: रावण नोन फॉर इट्स लाफ, जैसे वो हंसता है, आपकी हंसी है क्या उस तरह से? दिखाना पड़ेगा आपको। तो ब्रॉडवे रामलीला के ग्रीन रूम में है हम, और मेरे साथ इस रामलीला के विशाल काय, भीम काय, रावण मेरे साथ में है। और फिलहाल रावण ग्रीन रूम में कतार में है। कतार में क्यों? क्योंकि अभी उनका मेकअप नहीं हुआ है, मेकअप उनका होना है, लेकिन उसके पहले ही हमने उन्हें पकड़ लिया है। सिद्धांत नाम है इनका और पेशे से बिजनेसमैन है। पिछले 6 साल से वो रावण का रोल प्ले कर रहे हैं।
0: रामलीला में जहाँ जहाँ रावण की एंट्री होती है, कथा में नाटकीयता आती है। दशानन की गरजती आवाज जब गूंजती है तो दर्शकों को रोमांच का अनुभव होता है।

0: इसीलिए किसी भी कलाकार के लिए रावण का अभिनय एक चुनौती होती है।
1: चुना किसने कि रावण प्ले करना है, जितनी आपकी हाइट है, जैसा आपका शरीर है, ऑर्गेनाइजर्स ने या फिर डायरेक्टर ने चूज किया, या आपकी ही चॉइस थी कि मैं शायद इसी रोल के लिए बनाऊं?
2: सर, यहाँ पर चॉइस वाला सिस्टम तो खत्म हो जाता है, क्योंकि जिस प्रोडक्शन में हम काम कर रहे हैं ये मतलब कला दर्शक वाला है, तो यहाँ पर प्रॉपर ऑडिशन, एक पूरी सीरीज है जिससे हम करेक्टर के अंदर चुने जाते हैं, तो प्रॉपर ऑडिशन दिए हमने, तीन चार लोगों के साथ मिलकर ऑडिशन दिया, अलग अलग करेक्टरों के लिए ऑडिशन दिया, उसमें से एक रावण भी था मेरे को, इसके साथ साथ हनुमान, परशुराम, इनके लिए भी ऑडिशन देने का मौका मिला था। बट हाँ, ये बोल सकते हैं कि डायरेक्टर और ऑर्गेनाइजर सबको मेरा रावण किरदार काफ़ी पसंद आया, तो और सौभाग्य से मुझे ये किरदार निभाने का मौका मिला।
1: ब्रॉडवे रामलीला की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर पारंपरिक तरीके के साथ साथ आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भरपूर दिखाई पड़ेगा। 3000 स्क्वायर फीट में यहाँ पर LED लगाई गई हैं, ये सारी 3D LED हैं, और ऐसा 3D माहौल तैयार होता है जैसे आप किसी 3D सिनेमा में महसूस करते हैं। जैसे आपको लगता है कि आप देखते हैं तो आप बिल्कुल उसी माहौल में पहुँच गए, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं जो स्क्रीन पर है, ये वो सीन यहाँ पर दिखाया जाएगा जब रावण कैलाश पर्वत पर जाकर तपस्या करता है। जब दर्शक इस सीन को देखते हैं तो वो भी अपने आप को बिल्कुल उसी जगह महसूस करते हैं। ये जो सीन है यहाँ पर केवट का जो सीन है वो दर्शाया जाएगा, और बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप किसी समंदर, किसी नदी के बीचों बीच पहुँच गए हैं। 3D टेक्नोलॉजी खासियत यही है। ऐसे देखिए अलग अलग जो सीन है, आप ये देखिए, ये जनकपुर है, और कैसे सीता स्वयंवर के समय जब सभी को इनविटेशन गए थे तो कैसे पूरे जनकपुर को सजाया गया, धजाया गया, सुंदर बनाया गया, ये पूरा सीन इस LED स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा है। और जब दर्शक इसे देखते हैं तो बार बार महसूस करते हैं कि जैसे ये सब कुछ उनकी आंखों के सामने घटित हो रहा है।
0: 100 से ज्यादा कलाकार, 3D विजुअल डिजाइन और आधुनिक विजुअल इफेक्ट्स, सभी का संगम जब स्टेज पर दिखेगा तो यकीनन असरदार होगा। आर्यन हेरिटेज फाउंडेशन की ओर से आयोजित रामलीला की इस साल थीम है चरित्रों का अध्ययन।
3: हम लोगों का ये 12वां साल है अब की बार हम लोगों ने ये कर रहे हैं, और LED में हमने सिर्फ LED प्लेन LED नहीं लगाई, हम लोगों ने जो है ना इसको 3D में लगाया है। आप देखेंगे जो अगर महल का सीन है तो आपको लगेगा कि ये महल वास्तव में महल जैसा लग रहा है, अगर आप पार्क में का सीन देखेंगे तो लगेगा आपको पार्क का सीन है। हम लोग 3 घंटे में जो है ना पूरी रामायण डेली जो है वो दिखाते हैं, और इसमें सबसे अच्छी बात ये है हमारी, हम शुद्ध हिंदी में हम लोगों ने इसको बनाया है, जिसको बच्चे जो बहुत आसानी से और बढ़त तरीके से इसको समझते हैं, और हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम बड़े लोग कहते हैं यार बस बहुत हो गया, इतना लंबा हो गया, बाकी कल देख लेंगे, बच्चे हमें नहीं उठने देते, और उनको एक एक चीज़ याद रहती है और घर जाके उसकी प्रैक्टिस करते हैं, रिहर्सल करते हैं। मैं अभी पीछे अपने एक दोस्त के घर पर गया था, उसके बच्चे 4 या 5 साल का बच्चा हुआ, उसको एक एक करेक्टर का नाम याद था उसकी, जैसे राम, लक्ष्मण, सीता वगैरह जो है इनके उनका तो नाम था ही था, सुमित्रा का नाम, जो केकई वगैरह का नाम, इनका सबका नाम याद था, तो
1: ये भी बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चे सीखे आज के।
3: बिल्कुल, और मेन अच्छी हमें ये लगता है कि भी इससे बच्चे जो है हमारे को हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे रामायण के बारे में, राम के आचरण के बारे में बहुत अच्छा सीखते हैं, और बहुत हमें अच्छा लगता है, और इसमें हम लोग चेंजेज भी करते रहते हैं।
0: वैसे तो दिल्ली में कई मशहूर रामलीला का मंचन होता है, लेकिन पीतमपुरा के इस रामलीला में तकनीक का हो रहा इस्तेमाल आकर्षित करने वाला है। इसके अलावा कलाकारों की मेहनत भी साफ दिखती है। यहाँ सीता का रोल वो कलाकार निभा रहे हैं जो अयोध्या में पिछले 2 साल से होने वाली रामलीला में सीता का रोल निभा रहे हैं।
1: निकिता थपलियाल मेरे साथ में है, सीता बनी है यहाँ पर, और खास बात ये है कि अयोध्या में जो रामलीला होती है वहाँ भी पिछले 2 साल से सीता का रोल निकिता ही प्ले कर रही हैं। कथक डांसर हैं, आर्टिस्ट हैं, इतना लंबा परिचय है, लेकिन इन सारे परिचय के बीच में जब आपको कोई कहता है कि सीता है, ये पहला फीलिंग क्या होता है?
4: मुझे बहुत खुशी होती है कि एक डिवाइन कैरेक्टर जब किसी को भी अगर प्ले करने को दिया जाए तो वो हमारी भावनाएं जुड़ी होती है। हम पुराने टाइम से देख रहे हैं, रामायण हो गई, महाभारत हो गई, तो उस टाइम से कहीं ना कहीं सबके मन में होता है कि कोई ना कोई हम कैरेक्टर करें। और माता सीता जो मतलब हम लोगों के दिलों के इतने करीब हैं, अगर उसका कैरेक्टर करने को मिल रहा है तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं हमेशा ग्रेटफुल हूँ भगवान के लिए, और जो मुझे ये अपॉर्चुनिटी दे रही है मैं उनके लिए भी बहुत ग्रेटफुल हूँ।
0: इस अद्भुत रामलीला में सिर्फ राम कथा नहीं है, बल्कि रामायण के प्रमुख पात्रों के व्यक्तित्व, उनके निर्णयों और उनके आदर्शों को समझने समझाने का प्रयास है। जेन और अल्फा जनरेशन को रामलीला से जोड़ने के लिए रामलीला में दादा और पोते का संवाद भी रखा गया है।
3: हमने इसमें अभी की बार कुछ सीन जो है ना वो वाल्मीकि के रामायण का डालना चाहा। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग जैसे स्वयंवर है, तुलसीदास जी के रामायण में अलग अलग देशों से राजा आते हैं, वो धनुष उठाने की कोशिश करते हैं, और जब धनुष पे राम जी पतंचा चढ़ाते हैं तो स्वयंवर के बाद में परशुराम जी जो है वो आते हैं और लक्ष्मण जी के साथ में संवाद करते हैं। वाल्मीकि के रामायण में ऐसा नहीं है। वाल्मीकि के रामायण में प्रतिज्ञा तो वही होती है, और विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण जी को जनक जी के पास लेके आते हैं तो उसको बता रहे होते हैं कि भाई ऐसे ऐसे हमने प्रतिज्ञा की हुई है, तो वहाँ पे जो है राम जी जो है वो धनुष को पतंजा चढ़ाते हैं, और जब बारात वापस जा रही होती है तब रास्ते में जो है उनको परशुराम जी मिलते हैं, और उनका संवाद लक्ष्मण से नहीं होता, राम जी और दशरथ जी से होता है। तो ये इसमें हमने फिर दादा और पोते को इसलिए लेना पड़ा क्योंकि हमने जो देखी है रामायण उसमें परशुराम जी आते हैं और लक्ष्मण जी के साथ में संवाद होता है। बच्चे पूछते हैं दादा से, दादा हमने तो ऐसी रामायण नहीं देखी थी, या हमें क्या दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा अच्छी से अच्छी चीजें जोड़े।
1: मतलब इस रामायण के बीच में एक दादा पुत्र का करेक्टर भी आता है जो आज के जमाने का है,
3: जमाने के हिसाब से उसको कनेक्ट करता है, और हमने इसमें कुछ चीजें साइंस टेक्नोलॉजी से लेके भी मतलब जोड़ने की कोशिश की है, जैसे वेलोसिटी, जैसे कि धनुष का भारी होने का उसका क्या मतलब है, हम लोग पूजा करते हैं तो वो क्यों करते हैं, दादाजी आरती कर रहे होते हैं तो बच्चे पूछते हैं जी दादाजी आरती करते हैं इससे क्या होता है, राम जी सब कुछ कर सकते हैं तो फिर उनको क्या जरूरत थी कि भैया वनवास जाकर रोज सब करने की। तो बहुत सारी चीजें हमने ऐसी दिखाने की कोशिश की है जो आज के रेल के हिसाब से भी रेलेवेंट है।
0: पारंपरिक कथा के साथ आधुनिक तकनीक का मेल, यानी कोशिश है कि रामायण का संदेश नई पीढ़ी तक प्रभावी ढंग से पहुंचे। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: देखिए, भगवान राम के व्यक्तित्व में सौम्यता है तो रावण के व्यक्तित्व में अभिमान, ये फर्क रामलीला के दौरान दोनों के संवाद से भी साफ तौर पर झलकता है, और इसीलिए रावण की भूमिका निभा रहे कलाकारों के लिए संवाद अदायगी महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए आपको ऐसे ही संवादों की कुछ झलक दिखाते हैं।
6: मैं हूं रावण, जगत नरेश रावण, मैं वो रावण हूं जिसकी गर्जना भर से गर्भवती स्त्रियों की कोख तक गिर जाती है, मैं हूं वो रावण। कायर शत्रु की महिमा का मंडन करके त्रिलोक विजेता रावण को डराने की चेष्टा कर रहे हो, वो भी उस त्रिलोक विजेता लंकापति रावण को जिसके भय से भयभीत होता है। रावण ये बनवासी ठोक रहे लंकापति नरेश रावण से युद्ध करेंगे। वाह, हे राम, याद रख मेरे जीते जी तुम लंका में प्रवेश नहीं करवाओगे, ये रावण का वादा है। रावण का वादा है, राम युद्ध करो राम, चलाओ अपने बाण। राम तो वन वन भटक रहा होगा, जंगल जंगल ढूंढ रहा होगा, मिग्र को, हिरण को ढूंढ रहा होगा तेरा राम।

0: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: और न्यूज वक्त में खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।

भाव चेहरे पर उतर आए तो शब्द मायने नहीं रखते। गीत बांग्ला भाषा में है, पर जो ये भाषा नहीं बोलते समझते हैं, यकीनन बात उन तक भी पहुंच रही है, और ना भी पहुंचे तो दिल को सुकून तो दे ही रहे हैं। छोटी बच्चे के पांव की थिरकन, आंखों के इशारे, हाथों का घुमाव, सब मिलजुल कर एक कहानी कह रहे हैं। उसका ये अंदाज लोगों का दिल छू रहा है।

0: रानी लक्ष्मीबाई को हमने नहीं देखा, पर उनकी वीरता और दृढ़ता की जितनी कहानियां सुनी हैं, उससे मेल खाती है ये बच्ची। बचपन में ऐसी ही रही होंगी शायद, आत्मविश्वास से भरी, निडर, निर्भीक, हर मुश्किल का सामना करने को तैयार। तलवारबाजी में तो कोई इन्हें हरा ही नहीं सकता, बराबरी की टक्कर दे रही है। बच्ची का रूप, रंग, अंदाज सब लोगों का ध्यान खींच रहा है। लोग उनके इस हुनर की तारीफ कर रहे हैं। बॉलीवुड के गानों की तो बात ही निराली है। क्लासिक सुनना हो तो ओल्ड इज गोल्ड, नहीं तो फिर 90 के दशक के सदाबहार नगमे दुनिया भर में आज भी गुनगुनाए जाते हैं। दीवानगी चीन में भी है। देखिए कैसे दो कलाकार गोविंदा और करिश्मा कपूर के गाने पर थिरक रहे हैं। वेशभूषा अपनी है पर अंदाज हिंदुस्तानी है। इस वीडियो को लोग बार बार देख रहे हैं। इस उम्र में ये जलवा है तो सोचिए जवानी में क्या अंदाज रहा होगा इनका। साथ में युवा चेहरे भी हैं, पर जो बात दादी अम्मा के डांस में है वो किसी और में कहा। पूरी महफिल लूट ली इन्होंने तो। इसे कहते हैं असली डांसर। ये बुजुर्ग जिस एनर्जी के साथ ताल से ताल मिला रहे हैं, उसे देखकर आप डांस के प्रति इनकी दीवानगी समझ सकते हैं। खूबसूरती हो तो ऐसी कि कोई भी दो पल को ठहर जाए। इनकी खूबसूरती के भी चर्चे हैं, इंटरनेट पर वायरल हैं ये। इनके बारे में तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि ये बीजिंग की सबसे खूबसूरत महिला ट्रैफिक पुलिस हैं और एक इंटरनेट सेलिब्रिटी भी। ऐसे में लोग उन्हें देखने अलग अलग शहरों से पहुँचते हैं। इनके फैन फॉलोइंग का तो पता नहीं, पर खूबसूरत तो है ये।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: नवरात्र में अमरावती की प्राचीन अंबिका माता मंदिर में रोष हो रहे हैं, मनोकामना के हजारों खंड, दीपक अद्भुत लग रहा है पूरा मंदिर परिसर। देश भर में बन रहे मां के एक से बढ़कर एक पंडाल, रांची में द्वारका नगरी की थीम पर हूबहू बना पंडाल, तो रोहतास में मां वैष्णो देवी की गुफा की तर्ज पर सजा पंडाल। बरेली में 8 साल बाद आसमान में गूंजा सारंग का शौर्य, हेलीकॉप्टर से दिखाए गए हैरतअंगेज हवाई करतब, 15 मिनट तक आसमान में बनाई अलग अलग फॉर्मेशंस। पुणे को मिला नया मेडिकल कॉलेज, केंद्र से मिला अप्रूवल, MBBS की होंगी 50 सीट्स, शैक्षणिक वर्ष 2027-28 से होगी पढ़ाई शुरू, मुख्यमंत्री ने जानकारी दी। प्रदूषण पर नियंत्रण की तैयारी, अप्रैल 2029 से नई कारों और SUVs के लिए BS7 उत्सर्जन मानक लागू करने की तैयारी, 3 चरणों में बदलेंगे कारों और ट्रकों के नियम।

फिर से लांघा बजरंग ने सागर का विस्तार। सेतु बांध फिर वानर सेना हो गई सागर पार। धू धू करके धधक उठी है फिर अधर्म की लंका। रावण के घर फिर से गूंजा धर्म विजय का डंका। कुल कुटुंब संग खूब लगाए रावण फिर से जोर। फिर ना पाए राम के बल सीता के धैर्य का छोर। अन्याय की चौखट पर फिर हुई न्याय की दस्तक। दशानन के अहंकार का फिर से कट गया मस्तक।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात करेंगे रामलीला की। सनातन धर्म की कहानियां श्री राम को विष्णु का अवतार बताती हैं, लेकिन भारत में राम सिर्फ भगवान नहीं बल्कि राम भारत के जीवन और जीवन पद्धति में शामिल हैं। श्री राम की जिंदगी से जुड़ी कहानियों में मानव जीवन के लिए कई संदेश छुपे हैं। युगों युगों से राम कहानी भारत और भारतवासियों के दिलों में बसी है और हर साल नवरात्र आते ही भारत के लोगों को उसी राम कहानी को नजदीक से देखने और महसूस करने का मौका मिलता है रामलीला के जरिए। आज हम आपके लिए देश और दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों से होने वाली रामलीला की तस्वीर लेकर आए हैं। लेकिन इससे पहले कि देश के बाहर चलें और दिखाएं रामलीला का इंटरनेशनल स्वरूप, सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो रामलीला जहां भारत के मंच पर ही दुनिया की तकनीक सिमट कर आ गई है। राजधानी दिल्ली में न्यूयॉर्क के ब्रॉडवे थिएटर की तर्ज पर भव्य रामलीला हो रही है। रामलीला में भावों का सागर तो पहले ही अपार होता है, लेकिन ब्रॉडवे स्टाइल की इस रामलीला में तकनीक ने रामकथा मंचन की भव्यता को भी कई गुना बढ़ा दिया है।

0: युग युगांतर से समय की धारा के साथ बहती आई रामायण की ये दिव्य कहानी जो भारत के मन मर्म भाव विचार सोच और संवेदनाओं की पोरों में रमी है एक बार फिर से दोहराई जा रही है लेकिन अब की बार बिल्कुल अलग अंदाज में। जब दुनिया के सबसे आधुनिक रंगमंच की तकनीक भारत की हजारों साल पुरानी संस्कृति से मिलती है तो जन्म होता है एक महादृश्य का। ये न्यूयॉर्क का ब्रॉडवे नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली की ब्रॉडवे रामलीला है।
1: इस सभा में उपस्थित सभी सभासदों ध्यान से सुनो, ये पिनाकी नाम का दिव्य धनुष महादेव रुद्र ने दक्ष के यज्ञ ध्वंस के लिए प्रयुक्त किया था। इस प्रकार आज ये धनुष मिथिला राज वंश के पास मेरे गुरुदेव महादेव शिव की धरोहर के रूप में है। ये कोई स्वयंवर नहीं अपितु षड्यंत्र है।
0: एक ऐसी रामलीला जहां ना तो दृश्यों को बदलने के लिए बार बार पर्दा गिरता है और न ही कहानी को पूरा होने में 10 दिन लगते हैं। यहां पूरी रामायण केवल 3 घंटे के एक हाईटेक संगीतमय नाटक के माध्यम से जीवंत हो उठती है। दिल्ली में होने वाली ब्रॉडवे रामलीला सीधे तौर पर न्यूयॉर्क के ब्रॉडवे थिएटर की तर्ज और उसकी भव्य प्रोडक्शन स्टाइल से प्रेरित है। पारंपरिक रामलीलाओं में जहां खुले मैदानों में कई दिनों तक स्टेज नाटक चलता है वहीं इस रामलीला को पूरी तरह से एक कमर्शियल ब्रॉडवे म्यूजिकल के रूप में ढाला गया है। इस भव्यता के पीछे है अत्याधुनिक तकनीक का हाथ। न्यूयॉर्क ब्रॉडवे शो की तरह ही दिल्ली की इस रामलीला में भव्य 3D स्टेज डिजाइन एडवांस डिजिटल बैकड्रॉप्स और अत्याधुनिक लाइटिंग का इस्तेमाल किया जाता है।
2: ब्रॉडवे रामलीला की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर पारंपरिक तरीके के साथ साथ आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भरपूर दिखाई पड़ेगा। 3000 स्क्वायर फीट में यहाँ पर LED लगाई गई हैं। ये सारी 3D LED हैं और ऐसा 3D माहौल तैयार होता है जैसे आप किसी 3D सिनेमा में महसूस करते हैं। जैसे आपको लगता है कि आप देखते हैं तो आप बिल्कुल उसी माहौल में पहुंच गए। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं जो स्क्रीन पर है ये वो सीन यहाँ पर दिखाया जाएगा जब रावण कैलाश पर्वत पर जाकर तपस्या करता है। जब दर्शक इस सीन को देखते हैं तो वो भी अपने आप को बिल्कुल उसी जगह महसूस करते हैं। ये जो सीन है यहाँ पर केवट का जो सीन है वो दर्शाया जाएगा और बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप किसी समंदर किसी नदी के बीचों बीच पहुँच गए हैं। 3D टेक्नोलॉजी खासियत यही है। ऐसे देखिए अलग अलग जो सीन है आप ये देखिए ये जनकपुर है और कैसे सीता स्वयंवर के समय जब सभी को इनविटेशन गए थे तो कैसे पूरे जनकपुर को सजाया गया धजाया गया सुंदर बनाया गया ये पूरा सीन इस LED स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा है। और जब दर्शक इसे देखते हैं तो बार बार महसूस करते हैं कि जैसे ये सब कुछ उनकी आंखों के सामने घटित हो रहा है। इसके सामने ही जो तमाम आर्टिस्ट हैं वो परफॉर्म करते हैं। अब आप ये सीन देखिए लगातार किस तरह से जो यात्रा रही प्रभु श्री राम की सीता जी के साथ लक्ष्मण के साथ वनवास की यात्रा वो सीन इस तरह के जो विजुअल्स हैं उस पर दिखाए जाएंगे उस पर दर्शाए जाएंगे।
0: 3D डिजिटल बैकड्रॉप्स एडवांस्ड मैपिंग और मूवेबल स्टेज प्रॉपर्टीज के इस्तेमाल से एक बटन दबाते ही पलक झपकते मंच का माहौल बदल जाता है। तकनीक की जादूगरी से मंच पर त्रेता युग का माहौल जीवंत हो उठता है।
2: ये जनक जी का जो दरबार था उसको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। जनक जी यहाँ पर बैठते थे और जनक जी के साथ साथ किस तरह से जो स्वयंवर की प्रक्रिया होती है वो आगे बढ़ती है उस दृश्य को यहाँ पर दर्शाया जाएगा। ऐसे ही चाहे आप लंका की बात करें चाहे आप दूसरे कैरेक्टर्स की बात करें दूसरी लोकेशंस की बात करें उन सारी लोकेशंस को इस तरह से तैयार किया गया है कि जब भी दर्शक सामने से देखेंगे आप महसूस करिए कि जैसे मैं यहाँ पर हूँ। और यह एक वन का दृश्य देखिए वहाँ पर हिरण बना हुआ है यानी कि वो सीन जब मृग हिरण के पीछे जिस तरह से जो सोने का हिरण उसके पीछे जब वो भागते हैं तब का सीन किस तरह से दर्शाया जाएगा। इस तरह से पूरी LED के जरिए स्टेज को तैयार किया गया है ताकि सामने बैठा दर्शक पूरी तरह से रिलेट कर पाए अपने आप को कि वो खुद उस माहौल में पहुंच गया है, स्वयं प्रभु श्री राम के पास पहुंच गया है, अयोध्या पहुंच गया है, लंका पहुंच गया है। अब देखिए ये कैकई का कमरा है, उसका एक दृश्य है। जब भी कैकई एक आर्टिस्ट के रूप में आएगी तो उनको इस कमरे में दिखाया जाएगा, कैसे उनके नखरे थे, किस तरह से वो बात करती थी, वो यहाँ दिखाई पड़ेगा। ये कोप भवन है। जब नाराज होकर वो जाती हैं कोप भवन में तो ये उस कोप भवन का दृश्य है। आप सोचिए जब यहाँ पर करेक्टर खड़ा होकर उस डायलॉग्स को बोलेगा उस ड्रेस के साथ में, तो हर कोई सामने से कैकई को महसूस कर पाएगा। ऐसे ही तमाम सारे दृश्य हैं, लंका है और जो युद्ध है उसका मैदान यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह से LED के जरिए पूरी रामायण को, संपूर्ण रामायण को जीवंत करने की एक कोशिश है और इसी कोशिश के लिए ये ब्रॉडवे रामलीला जानी जाती है। और उम्मीद यही कि इस बार भी दर्शक जब यहाँ पहुँचेंगे तो खुद को प्रभु श्री राम के बेहद करीब इस LED के जरिए, इन विजुअल्स के जरिए खुद को महसूस करेंगे।
0: ब्रॉडवे रामलीला के लिए केवल तकनीक ही नहीं बल्कि हर एक पात्र की वेशभूषा पर भी गहरा शोध किया जाता है। राजा दशरथ के राजसी वैभव से लेकर रावण के 10 सिरों के डिजिटल प्रभाव तक हर बारीक चीज को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार डिजाइन किया गया है।
1: रावण मेरे को मिलना मेरे लिए, मैं बोलूंगा, सौभाग्य की बात है, क्योंकि मेरे को लगता है कि रावण एक ऐसा करेक्टर है जो करना ज्यादा डिफिकल्ट है। क्योंकि अच्छा इंसान तो मैं नेचुरली अगर अपने आप को मानता हूँ, पर स्टेज पे मेरे को दिखाना है कि मैं बुरा इंसान हूँ। उसके साथ साथ ये पता होते हुए कि रावण के अंदर सारा ज्ञान, सब चीज़ों में वो उत्तम था, उसके बावजूद भी स्टेज पर ये जताना कि मैं बुराइयों का प्रतीक हूँ, वो मुझे लगता है थोड़ा एक मेरे लिए चैलेंजिंग पार्ट रहता है। तो मुझे करके काफ़ी अच्छा लगता है कि जिस प्रोडक्शन में हम काम कर रहे हैं ये मतलब कला दर्शक वाला है, तो यहाँ पर प्रॉपर ऑडिशन, एक पूरी सीरीज है जिससे हम करेक्टर के अंदर चुने जाते हैं, तो प्रॉपर ऑडिशन दिए हमने, तीन चार लोगों के साथ मिलकर ऑडिशन दिया, अलग अलग करेक्टरों के लिए ऑडिशन दिया, उसमें से एक रावण भी था। मेरे को इसके साथ साथ हनुमान, परशुराम, इनके लिए भी ऑडिशन देने का मौका मिला था। बट हाँ, ये बोल सकते हैं कि डायरेक्टर और ऑर्गेनाइजर सबको मेरा रावण किरदार काफ़ी पसंद आया, तो और सौभाग्य से मुझे ये किरदार निभाने का मौका मिला।
0: सिर्फ मेकअप ही नहीं बल्कि ब्रॉडवे स्टाइल में एक्टिंग करना भी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि यहाँ बहुत कम समय में गानों और नृत्य के बीच अभिनय की गहराई को दिखाना होता है, हर भावना को सीधे दर्शकों के दिल तक पहुँचाना होता है।
3: एक्टिंग का मुझे शौक है और मुझे बहुत खुशी होती है कि एक डिवाइन कैरेक्टर जब किसी को भी अगर प्ले करने को दिया जाए तो वो हमारी भावनाएं जुड़ी होती है। हम पुराने टाइम से देख रहे हैं, रामायण हो गई, महाभारत हो गई, तो उस टाइम से कहीं ना कहीं सबके मन में होता है कि कोई ना कोई हम कैरेक्टर करें। और माता सीता जो मतलब हम लोगों के दिलों के इतने करीब हैं, अगर उसका कैरेक्टर करने को मिल रहा है तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं हमेशा ग्रेटफुल हूँ भगवान के लिए, और जो मुझे ये अपॉर्चुनिटी दे रही है मैं उनके लिए भी बहुत ग्रेटफुल हूँ।
0: जैसे ब्रॉडवे नाटकों में पात्रों के मानसिक द्वंद्व और भावनाओं पर बारीकी से काम होता है, ठीक उसी तरह ब्रॉडवे रामलीला में भी चरित्रों पर विशेष अध्ययन होता है जो मंच पर नजर भी आता है। ये केवल कहानी नहीं सुनाती बल्कि रामायण के पात्रों की आंतरिक यात्रा और उनकी दुविधाओं को भी दिखाती है।

0: माता सीता की बात करी जाए तो एक्सप्रेशंस जो हैं वो बिल्कुल नेचुरल है. कैसे वो अपने पति के साथ शादी कर अयोध्या में आई थी, उसके बाद फिर वो वनवास गई थी, तो उसमें अगर थोड़ा भाव देखा जाए तो वो दुखी रही हैं, तो थोड़ा दुख का है. खुशी का तब समय होता है जब स्वयंवर आता है, तो खुशी का है. तो ऐसे एक्सप्रेशंस अलग से नहीं है, पर हाँ मैं मतलब जो भी है बहुत सिंपल है. आप अगर आप स्टेज पे देखेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा.
1: कुल मिलाकर ये पारंपरिक संस्कृति और आधुनिक पश्चिमी रंगमंच कला का ऐसा अनूठा संगम है जो विशेष रूप से आज की युवा पीढ़ी को आकर्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है. जहाँ पारंपरिक रामलीला 9 से 10 दिनों तक चलती है, वहीं ब्रॉडवे की तर्ज पर इस पूरी प्रस्तुति को मात्र 3 घंटे के एक ही शो में समेट दिया गया है. इसमें भगवान राम के जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक की पूरी कहानी बेहद तेज गति और मनोरंजन के साथ दिखाई जाती है.
2: हमने ये विचार बनाया कि वे एक दिन में ही सारी लीला हो, चाहे कंप्यूटराइज जमाना आ रहा है, इसमें ये हो सके कि एक ही दिन में हम पूरा राम जन्म से राज्याभिषेक तक एक ही दिन में करें, ताकि बच्चे देखें और उसको समझें भी, क्योंकि सीता स्वयंवर भी उसी दिन है, वनवास भी उसी दिन है और राज्याभिषेक भी उसी दिन है, सब चीज़ें उसमें होती है. तो बच्चों को समझ में आ जाता है कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहलाए. तो यही हमारा विचार था. इसके लिए हमने जो मैनेज किया यहाँ पे सिस्टम, 7,000 आदमियों की हमारी गैदरिंग होती है, लेकिन यहाँ पे नीचे गैदरिंग का ये सवाल है कि 12,000 आदमी देखते हैं और सामने जो वो लगे हुए हैं उनके ऊपर भी लोग खड़े होकर बैठ कर खड़े होकर भी देखते हैं, मतलब 14,000 आदमी एक बार देखते हैं. मेरे हिसाब से इतना भव्य जो लीला है, मुझे नहीं लगता कि भी हमने कभी बचपन में देखा होगा, और हमें भी नहीं पता रहा कि भगवान रामचंद्र जी हमारे द्वारा माध्यम से ये लीला ऐसे करें आएंगे.
1: जिस तरह ब्रॉडवे शो की सबसे बड़ी पहचान उसका लाइव या विशेष रूप से तैयार संगीत होता है, इसी तर्ज पर ब्रॉडवे रामलीला के लिए भी कई ओरिजिनल साउंडट्रैक तैयार किए गए हैं, जिन्हें लोकप्रिय भारतीय गायकों ने अपनी आवाज दी है. बता दें कि दिल्ली के पीतमपुरा में इस भव्य ब्रॉडवे रामलीला का मंचन दशहरा तक होने वाला है. नवरात्र के दौरान युद्ध राजधानी दिल्ली के कई मैदान चौराहों, चौक बाजारों, मेलों और मंचों पर रामकथा का रस बरस रहा है, लेकिन आधुनिक तकनीक ने ब्रॉडवे रामलीला को बेहद अलग, भव्य और खास बना दिया है. दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे.
3: तो ये तो थी बात देश में हो रही इंटरनेशनल तकनीक वाली रामलीला की. अब बात उस रामलीला की जिसके मंचन देश के बाहर हो रहे हैं. कभी श्री राम ने मां सीता के लिए सागर लांघा था और अब राम कथा की लहरें 7 समंदर पार कर दुनिया के कई देशों तक पहुंच रही है. कुछ रूप बदला, कुछ कहानी बदली, कुछ पात्र बदले, मगर जहां जहां भारतीय गए, जहां जहां भारतीयता गई, वहां वहां रामकथा भी यात्रा करते हुए पहुंची. कई देशों ने भारतीय संस्कृति में ढली हमारी रामलीला को बेहद श्रद्धा से अपनाया है. यही वजह है कि रामलीला आज भारत और दुनिया के कई हिस्सों के बीच और कई देशों में सांस्कृतिक सेतु बन गई है.

सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि राम कथा सागर की लहरें दुनिया के जाने कितने ही देशों तक पहुंचती हैं। थाईलैंड, मॉरिशस, कंबोडिया, म्यांमार और इंडोनेशिया जैसे देशों में अलग अलग रूपों में राम कथा का मंचन किया जाता है। मसलन इंडोनेशिया में आबादी के एक बहुत बड़े समूह का मानना है कि इस्लाम जहां उनका धर्म है तो वही रामायण उनकी संस्कृति है। नौवीं सदी में लिखी गई जैवनिस वर्जन ऑफ रामायण को मानते हैं। इंडोनेशिया के जावा में प्रमनाम मंदिर में सेंद्रातारी रामायण लगभग साल भर चलती है। ये राम कथा पर आधारित बैली डांस यानी नृत्य नाटिका है। इसमें सीता हरण और मारीच मरण जैसे दृश्य देखने को मिलते हैं। इसमें एक बार में सैकड़ों कलाकार हिस्सा लेते हैं। कभी कभी तो कलाकारों की संख्या 1000 को भी पार कर जाती है। तो वहीं थाईलैंड में राम की कीर्ति बताने वाली छाया रामलीला का आयोजन होता है। दरअसल थाईलैंड का राष्ट्रीय महाकाव्य रामाकीन है जिसका अर्थ है राम की कीर्ति। ये वाल्मीकि रामायण से लिया गया है और थाई भाषा में है। यहाँ के थिएटर ग्रुप में भी रामलीला भव्य तरीके से आयोजित होती है। थाईलैंड में होने वाली छाया रामलीला को स्थानीय भाषा में नंग कहा जाता है। इसको सफेद पर्दे पर दिखाते हैं, फिर उसके सामने पुतलियों को इस तरह नचाया जाता है कि उसकी छाया पर्दे पर पड़े। मुखौटों का इस्तेमाल कर यहाँ रामलीला की जाती है। नाटक के माध्यम से प्रदर्शित की जाने वाली रामलीला को थाईलैंड में खौन के नाम से जाना जाता है। इसी तरह मॉरिशस में भी बेहद श्रद्धा और चाव के साथ रामलीला गाई जाती है। मॉरिशस की कला और सांस्कृतिक मंत्रालय की ओर से हर साल यहाँ रामलीला का आयोजन होता है जिसमें झाल ढोलक के साथ रामलीला गाई जाती है। यहाँ रामलीला इतनी लोकप्रिय है कि इसमें अभिनय के लिए भारतीय कलाकारों को भी बुलाया जाता है।

इसी तरह बौद्ध देश कंबोडिया में भी रामायण का मंचन होता है। यहाँ रामायण को रीम कर और भगवान राम को प्रिय रीम कहा जाता है। सीता नेयांग सेडा और लक्ष्मण प्रिय लीक के नाम से जाने जाते हैं। यह रामलीला तुलसीदास रचित रामचरितमानस के आधार पर खेली जाती है। दरअसल कंबोडिया में करीब 600 सालों तक हिंदू खमेर साम्राज्य का शासन था। इसी के चलते यहाँ हिंदू धर्म का खासा प्रभाव देखने को मिलता है। बताया जाता है कि यहाँ रीमकर खमेर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध साहित्य है। इसका प्रभाव आज भी कंबोडिया की कला में साफ दिखाई देता है। जबकि म्यांमार की रामलीला यांपवे कहलाती है। इसमें मुखौटों का इस्तेमाल होता है। यहाँ के लोग हास्य रस के बेहद प्रेमी होते हैं, इसलिए यांपवे में विदूषक की भूमिका मुख्य मानी जाती है। यहाँ की रामलीला में ऐसा बहुत कम होता है जब रंगमंच पर विदूषक मौजूद न हो। रामलीला आरंभ होने से पहले 1-2 घंटे हास परिहास चलता है। नृत्य और संगीत के कार्यक्रम होते हैं।

0: इसी तरह बताया जाता है कि जापान के लोकप्रिय कथा संग्रह होबुत्सुशु में भी संक्षिप्त राम कथा संकलित है, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जीवन गाथा का अमृत आज युगों बाद भी दुनिया के कई कोनों को यूं ही सींच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
1: कश्मीर में सर्दियों की शुरुआत अभी से हो गई है। मैदानी इलाकों में बारिश और ऊंचे इलाकों में बर्फबारी के कारण घाटी में तापमान काफी गिर चुका है। हालांकि कुछ दिन पहले मौसम कुछ गर्म जरूर था, लेकिन अब सोनमर्ग, कोरेज घाटी समेत कई ऊंचे क्षेत्रों में सर्द मौसम हो चुका है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद कुदरत का मनमोहक नजारा देखने को मिल रहा है, तो इस बर्फबारी का असर घाटी के मैदानी क्षेत्रों में सर्द मौसम के रूप में महसूस होने लगा है। सर्दी का चक्र ऐसे ही चला तो जल्द ही पूरी कश्मीर घाटी सफेद बर्फ की चादर से लिपट जाएगी।

0: सीजन की पहली बर्फबारी के साथ ही पहाड़ों ने सफेदी की चादर ओढ़ ली है। हरी भरी पहाड़ियाँ अब बर्फ की सफेदी में समा गई हैं। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बानीपोरा जिले में स्थित कुरेस घाटी की है, जहाँ ऊंचाई वाले इलाकों में जोरदार बर्फबारी हुई है, जबकि श्रीनगर समेत घाटी के मैदानी इलाकों में बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। अक्टूबर का भी आधा महीना ही गुजरा है और गुरेज में पारा शून्य तक लुढ़क चुका है, जबकि श्रीनगर में भी तापमान 15 डिग्री तक गिर चुका है। सैलानियों के साथ साथ स्थानीय किसानों के लिए भी ये बर्फबारी खुशियों की सौगात लेकर आई है। एक और जहां कश्मीर में पर्यटन में तेजी के आसार है, वहीं सूखे के मौसम से किसानों को राहत मिली है।
1: मंगलवार को 15 डिग्री सेंटीग्रेड श्रीनगर का अधिकतम तापमान रहा, जबकि पहाड़ी इलाकों में खासतौर से गुलमर्ग और गुरेज में तापमान शून्य के आसपास ही रिकॉर्ड किया गया, वो भी रात के बीच में। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल आने वाले 48 घंटे तक पहाड़ों पर और हल्की बर्फबारी हो सकती है, जिससे अब पूरी तरह से कश्मीर में ठंड की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन उसके बाद मौसम फिर संभलेगा। लेकिन पहाड़ों पर हुई इस ताज़ा बर्फबारी से लोगों ने राहत भी ली है, क्योंकि कश्मीर में पिछले कई हफ्तों से सूखे का मौसम चल रहा था, लेकिन अब इस बर्फबारी ने न सिर्फ किसानों के लिए जो है एक राहत लाई है, बल्कि साथ ही साथ अब कश्मीर में विंटर टूरिज्म की भी शुरुआत इस बर्फबारी के साथ होने लगी है।
0: आसमान से लगातार हो रही बर्फबारी आज और कल भी जारी रहने की संभावना है। मैदानी इलाकों में जहां बारिश होगी, वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। मौसम के इस बदले मिजाज ने कश्मीर की वादियों की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं। फिलहाल उत्तरी कश्मीर के इन ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद कुदरत का मनमोहक नज़ारा देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में पूरी घाटी सफेद बर्फ की चादर से ढकी होगी। उत्तराखंड में भी मौसम ने करवट बदल ली है। पिछले दिनों हुई बारिश के आगे भी जारी रहने के आसार है। 15 और 16 अक्टूबर को प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। मौसम में बदलाव के चलते पर्वतीय इलाकों में ठंड बढ़ने और तापमान में गिरावट आने की संभावना है।
2: जो बर्फबारी है अगले अभी दो दिन तो हम 3800 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में देखने को मिल सकती है, जबकि जो है 15-16 तारीख में 3500 मीटर तक के ऊंचाई वाले इलाकों में भी देखने को मिल सकती है। 16 तारीख के बाद एक्टिविटी काफ़ी कम रह जाएगी, सिर्फ नॉर्थ के कुछ जो है बहुत ही बिल्कुल नॉर्थ में हमारे उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जैसे जनपद हैं, वहीं देखने को मिल सकती है।

0: वानिया देहरादून से की शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।